0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों आपका बहुत बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा की पूर्व संध्या पर प्रसारित होने वाले विशेष कार्यक्रम रेडियो रिवीजन में। आप सभी को पता है कि कल लास्ट एग्जाम है थर्ड ईयर के सिक्स्थ सेमेस्टर का और कल है आपके कोर्स APG 321 का एग्जाम यानी कि क्रॉप इम्प्रूवमेंट टू रबी क्रॉप्स। और आपके कोर्स टीचर डॉक्टर श्रेया सेन हमारे स्टूडियो में आज के रेडियो रिवीजन के लिए। तो मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। आइए मैम रेडियो रिवीजन शुरू करें।
2: डियर स्टूडेंट्स, APG 321 में बेसिकली जो हम लोग पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं क्रॉप्स जो रिलेटेड है रबी क्रॉप्स से, रबी सीजन से। इसमें जो मुख्यतः क्रॉप है वो है व्हीट, बार्ले, ओट्स, फिल्पी, लेंटिल, लेथायरस, रेपसीड, मस्टर्ड, लिनसीड। फॉरेज क्रॉप में नेपियर, बाजरा, सरगम, मीज और कैश क्रॉप में शुगर केन एंड पोटैटो है। क्रॉप्स के बारे में पढ़ते हैं तो बेसिक चीज जो हम लोगों को ध्यान रखनी होती है वो रखनी होती है क्रॉप का साइंटिफिक नेम, उसकी फैमिली, क्रोमोसोम नंबर, उसका इवोल्यूशन कैसा हुआ, उसके प्रोजिनेटर्स कौन कौन से हैं, ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव क्या है और ब्रीडिंग मेथड्स कौन कौन से ऑप्ट करते हैं। तो हम वन बाय वन देखेंगे कि किस क्रॉप को हम लोग को कैसे डील करना है। जैसे सबसे पहले यदि हम वीट की बात करें तो वीट का साइंटिफिक नेम ट्राइटिकम एस्टिवम है जिसका क्रोमोसोम नंबर 42 होता है। इसका जो सेंटर ऑफ ओरिजिन है वो एशिया माइनर है। ये एक तरह का सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है और इसमें क्लिस्टोगैमी पाई जाती है। यदि हम इसकी इवोल्यूशन की बात करें तो वीट जो है वो एलो पॉलीप्लॉइड नेचर का होता है एंड हेक्साप्लॉइड नेचर का होता है ये, जिसमें कि ए, बी और डी जीनोम पाया जाता है। ए जीनोम की सोर्स की बात करें तो वो ट्राइटिकम मोनोकोकम है। बी का जो सोर्स है वो एजिलॉप्स स्पीसीज है और जब ए और बी जीनोम का क्रॉस हो गया था तो उससे बना था ट्राइटिकम टर्जिडम जिसका कि जीनोमिक कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो AABB है। और डी जीनोम का जो सोर्स है वो ट्राइटिकम टाउची है। जो आज का कल्टीवेटेड वीट है उसके जीनोम में ए, बी और डी जीनोम पाया जाता है। यदि हम इसमें ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव की बात करें तो बेसिक ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव है वो है ब्रीडिंग फॉर हायर यील्ड। तो जब भी आप हायर यील्ड की बात करते हैं तो आपको मेंशन करना होगा कि हायर यील्ड के लिए कौन कौन से ट्रेट्स रिस्पॉन्सिबल हैं, जैसे कि इंक्रीज इन नंबर ऑफ स्पाइकलेट लेंथ, इंक्रीज इन नंबर ऑफ स्पाइकलेट्स, नंबर ऑफ सीड पर स्पाइकलेट, इंक्रीज इन सीड साइज। ये सारे जो एट्रीब्यूट्स हैं वो यील्ड के इंक्रीज के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। फिर ब्रीडिंग फॉर अर्लीनेस, ब्रीडिंग फॉर डिजीज एंड पेस्ट रेजिस्टेंस। तो डिजीज एंड पेस्ट रेजिस्टेंस की जब भी आप बात करें तो उसमें आपको मेंशन करना पड़ेगा कि कौन कौन सी वैसे मेजर डिजीजेस हैं जिसके कारण की वीट में लॉसेस होते हैं, जैसे कि रस्ट हो गया, स्पॉच ब्लॉच हो गया। यदि आप इंसेक्ट की बात करें तो उसमें जो मेजर इंसेक्ट है वो है फॉल आर्मी वॉर्म, एफिड्स, सकिंग पेस्ट, जो भी है। वीट में मेजर अभी जो इशू चल रहा है दैट इज ब्रीडिंग फॉर एबायोटिक स्ट्रेसेस। इसमें जो मेजर एबायोटिक स्ट्रेस है दैट इज हीट एंड ड्रॉट। ब्रीडिंग फॉर क्वालिटी जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। यदि हम क्वालिटी की बात करें तो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स जो वीट का होता है वो डिपेंड करता है ग्रेन वेट, ग्रेन के हार्डीनेस, ग्रेन के साइज, शेप एंड कलर पे। स्टूडेंट्स ये ध्यान रखना, टेस्ट वेट को हम लोग हेक्टोलीटर मास से भी रिप्रेजेंट करते हैं। वीट के दो कलर्स होते हैं बेसिकली, रेड वीट एंड व्हाइट वीट। तो रेड वीट इज कंसिडर्ड मोर सुपीरियर देन व्हाइट वीट। यदि हम प्रोटीन की बात करें तो वीट में जो मेजर प्रोटीन पाया जाता है डैट इज ग्लूटेन। ग्लूटेन के कारण ही बेकिंग हम अच्छे से कर सकते हैं और ग्लूटेन का जो मेजरमेंट होता है डैट इज इन द फॉर्म ऑफ सेडिमेंटेशन वैल्यू। ब्रीडिंग मेथड्स की बात करें तो वीट में जो मेजर ब्रीडिंग मेथड्स है दैट इज प्योर लाइन सेलेक्शन, पेडिग्री मेथड, बल्क मेथड, सिंगल सीड डिसेंट मेथड, बैकक्रॉस मेथड, म्यूटेशन ब्रीडिंग, मल्टी लाइन ब्रीडिंग एंड इवन हाइब्रिड ब्रीडिंग। यदि मल्टी लाइन्स जब भी आप एक्सप्लेन करो तो यू हैव टू मेंशन द क्लीन एंड डर्टी क्लीन क्रॉप अप्रोच एंड डर्टी क्रॉप अप्रोच एंड द मेथड्स। जैसे कल्याण सोना की काफ़ी सारी मल्टी लाइन डेवलप की गई है तो यू हैव टू कोट एग्जांपल इन ईच ब्रीडिंग मेथड कि कौन कौन सी वैरायटीज किस ब्रीडिंग मेथड से डेवलप की गई है। म्यूटेशन ब्रीडिंग में जो सरबती सोनोरा है एंड पूसा लर्मा, यू हैव टू मेंशन द सोर्स ऑफ म्यूटाजेन एंड एग्जांपल्स ऑफ कोर्स। यदि हम हाइब्रिड वीट की बात करें तो हाइब्रिड वीट कमर्शियली एक्सप्लॉइट नहीं किया गया है। इसके जो मेजर रीजन है वो ये है कि आपको डाइवर्स एनवायरमेंट के अक्रॉस हेट्रोसिस नहीं मिलता है और इसमें फर्टिलिटी रिस्टोरेशन का भी इशू है। मोर ओवर हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन का कॉस्ट बहुत ज़्यादा जाता है। नेक्स्ट क्रॉप हमारा है बार्ली। बार्ली का साइंटिफिक नेम हॉडियम वल्गारे है और इसका क्रोमोसोम नंबर 14 है। इसका सेंटर ऑफ ओरिजिन वेस्टर्न एशिया या इथोपिया है। प्रोजिनेटर की बात करें तो ये हॉडियम स्पॉन्टेनियम है। बार्ली बेसिकली दो तरह का होता है, टू रूट बार्ली एंड सिक्स रूट बार्ली। यदि टू रूट बार्ली का हम एग्जाम्पल दें तो दैट इज हॉडियम स्पॉन्टेनियम एंड हॉडियम डिस्टिचम। सिक्स रूट बार्ली का एग्जाम्पल दें तो दैट इज हॉडियम वल्गारे। तो बार्ली में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है वो होता है बल्बोसम मेथड को एक्सप्लेन करना। बल्बोसम मेथड जो है वो क्रोमोसोम एलिमिनेशन टेक्निक है, जिससे कि आप किसी भी स्पीसीज को यदि हॉडियम बल्बोसम से क्रॉस करेंगे तो इन F1 जनरेशन जैसे ही उसका एम्ब्रायो फॉर्मेशन होता है उसके कुछ दिन के बाद जो हॉडियम बल्बोसम का है वो क्रोमोसोम वो एलिमिनेट हो जाता है और आपको रैपिडली जो होता है वो एक हैप्लॉइड प्लांट मिल जाता है। और जैसे ही आप क्रोमोसोम डेवलप करोगे तो 100% होमोजाइगस प्लांट मिल जाता है। ये भी सेल्फ पॉलिनेटेड नेचर का होता है और इसका जो मेजर ब्रीडिंग मेथड्स है दैट इज प्योर लाइन सिलेक्शन, पेडिग्री सिलेक्शन एंड म्यूटेशन ब्रीडिंग। नेक्स्ट क्रॉप है हमारा ओट्स। ओट्स का साइंटिफिक नेम एवाइना सटाइवा है, जिसका क्रोमोसोम नंबर 42 होता है। ये पोएसी फैमिली से बिलोंग करता है। ये भी एलोपॉलीप्लॉइड नेचर का होता है, दैट इज नेचुरली हेक्साप्लॉइड स्पीसीज। नेक्स्ट क्रॉप है अपना चना। चना का साइंटिफिक नेम साइकर एरियंटेनम है, फैमिली फेबेसी है, क्रोमोसोम नंबर 16 है। इसका प्रोजेनेटर जो है साइकर रेटिकुलेटम है। ये सेल्फ पॉलिनेटेड नेचर का होता है। यदि हम डिजीज की बात करें तो इसमें जो मेजर डिजीज लगती है वो फ्यूजेरियम विल्ट लगती है। इसमें बहुत बार ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन चिकपी एंड काबली पी। तो इसके कुछ मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं, फ्लावर कलर में डिफरेंसेस है, सीड साइज में डिफरेंसेस है, तो वो आप लोगों को अच्छे से देख लेना है। जो बेसिक ब्रीडिंग मेथड इस्तेमाल होता है इसमें पेडिग्री और बैक क्रॉस ब्रीडिंग मेथड का इस्तेमाल होता है। अब हम पल्सेस की बात करें तो पल्सेस में आपको पढ़ना है लेंटिल, लेथाइरस पी। लेंटिल में जो है वो आपका दो तरह का लेंटिल होता है, दैट इज माइक्रोस्पर्मा एंड मैक्रोस्पर्मा, जो कि सीड के बेसिस पे है। जो छोटी सीड वाली मसूर होती है वो माइक्रोस्पर्मा होती है और बड़ी सीड वाली को मैक्रोस्पर्मा बोला जाता है। मसूर में एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर भी प्रेजेंट होते हैं जिसको कि कहते हैं ट्रिप्सिन। इसका सेंटर ऑफ ओरिजिन जो है वो साउथ वेस्ट एशिया है। इसका साइंटिफिक नेम लेंस कुलिनारिस है और क्रोमोसोम नंबर 14 है। दाल बहुत ही अच्छा माना जाता है क्योंकि इसमें 24-28% प्रोटीन होता है अलॉन्ग विथ आयरन। मटर का साइंटिफिक नेम जो है पीसम सेटाइवम है, क्रोमोसोम नंबर 14 है। और लेथाइडस का भी साइंटिफिक नेम लेथाइडस सेटाइवस विथ क्रोमोसोम नंबर 14। इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है पी में मेजर इशू डिजीज का कौन सा होता है, दैट इज पाउडरी मिल्ड्यू। और लेथाइडस में एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर्स कौन सा प्रेजेंट होता है, दैट इज BOAA, जो कि न्यूरोटॉक्सिन है। जब भी हम लेथाइडस ब्रीडिंग की बात करते हैं तो हमें ये ध्यान देना है कि ब्रीडिंग फॉर एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर शुड बी कंसिडर्ड। अब जो मेजर ऑयल सीड क्रॉप है दैट इज रेपसीड एंड मस्टर्ड। रेपसीड एंड मस्टर्ड जो है यदि हम इसकी साइंटिफिक नेम की बात करें तो दैट इज ब्रासिका स्पीसीज। इसमें तीन अलग अलग तरह के स्पीसीज होते हैं, ब्रासिका निग्रा, ब्रासिका कॉम्पेस्ट्रिस या जिसको ब्रासिका रैपा भी बोलते हैं, ब्रासिका ओलेरेसिया। ब्रासिका के इवोल्यूशन को नागा हेरू ने दिया था और इस इवोल्यूशन का क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो यदि हम ब्रासिका कॉम्पेस्ट्रिस की बात करें तो इसके जीनोम का कंपोजिशन AA होता है और क्रोमोसोम नंबर इसका 20 होता है। ब्रासिका निग्रा का जीनोम BB होता है, क्रोमोसोम नंबर 16 होता है। और ब्रासिका ओलेरेसिया का जीनोम C होता है और क्रोमोसोम नंबर 18 होता है। ब्रासिका कॉम्पेस्ट्रिस और ब्रासिका निग्रा के क्रॉस से बनता है ब्रासिका जेंसिया, जिसको कि हम लोग इंडियन राई भी बोलते हैं। और इसका जीनोमिक कॉन्स्टिट्यूशन AABB होता है विथ क्रोमोसोम नंबर 36। ब्रासिका निग्रा और ब्रासिका ओलेरेसिया के क्रॉस से बनता है ब्रासिका कैरिनेटा, जिसका जीनोमिक कंपोजिशन BBCC होता है और क्रोमोसोम नंबर 34 होता है। ब्रासिका कॉम्पेस्ट्रिस और ब्रासिका ओलेरेसिया के क्रॉस से बनता है ब्रासिका नापस, जिसका कि जीनोमिक कॉन्स्टिट्यूशन AACC होता है और क्रोमोसोम नंबर 38 होता है। अब यदि हम इसकी नेचर ऑफ पॉलिनेशन की बात करें तो कुछ स्पीसीज जो होते हैं वो क्रॉस पॉलिनेटेड होते हैं, कुछ सेल्फ पॉलिनेटेड होते हैं। तो यदि ब्रासिका में जो तोरिया, तारामीरा और ब्राउन सरसो है वो क्रॉस पॉलिनेटेड नेचर का होता है और ये सेल्फ इनकम्पैटिबल होता है। जबकि यदि येलो सरसों की हम बात करें, इंडियन सरसों की बात करें, तो ये सेल्फ कंपैटिबल होता है और सेल्फ पॉलिनेटेड नेचर का होता है। ये ध्यान रखना जो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी होती है वो स्पोरोफाइटिक टाइप ऑफ सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी पाई जाती है मस्टर्ड में, और इसका जीन एक्शन जो होता है वो डोमिनेंट होता है। मस्टर्ड में एक चीज और भी ध्यान रखना है कि इसमें जो एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर होता है दैट इज एरोसिक एसिड एंड ग्लूकोसिनोलेट। तो इस एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर को रिड्यूस करके बनाया गया कनोला। कनोला मस्टर्ड की वो वैरायटी है जिसमें कि एरोसिक एसिड और ग्लाइसिनोलेट बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है। ये दो तरह के होते हैं, जीरो टाइप एंड जीरो जीरो टाइप। तो जो जीरो टाइप होता है उसमें क्या होता है, या तो एरोसिक एसिड कम होगा या ग्लाइकोसिनोलेट कम होगा। इसके एग्जाम्पल्स यदि आप देखो तो एग्जाम्पल्स हैं पूसा करिश्मा, पूसा मस्टर्ड 21, PM24 एंड PM22। वही यदि 00 मस्टर्ड की बात करें तो इसमें दोनों एरोसिक एसिड भी कम होता है जो कि लेस देन 2% होता है, और ग्लूकोसिनोलेट की बात करें तो वो भी कम होता है दैट इज लेस देन 30 माइक्रोमोल पर ग्राम। इसका एग्जाम्पल है पूसा 00 मस्टर्ड 31। मस्टर्ड में एक और फेनोमिना है जो कि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, दैट इज बर्निज बर्स्टा सिस्टम ऑफ मेल स्टरिलिटी जो पाई जाती है। तो बर्निज जो है वो जीन है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है स्टरिलिटी के लिए, जो कि आइसोलेट किया गया है फ्रॉम बैक्टीरिया बेसिलस एमाइलो लिक्विफेसियंस। ये जो होता है ये आपका बेसिकली टेपिटम के सेल्स में एक्सप्रेस होता है जो कि स्टरिलिटी काउज करती है। और बर्स्टार जीन जो है वो भी बेसिलस एमाइलो लिक्विफेसियंस से आइसोलेट किया गया है, और इसका मेजर जो काम होता है वो होता है फर्टिलिटी को रिस्टोर करना। नेक्स्ट अपने को पढ़ना है दैट इज शुगरकेन। शुगरकेन में नोबलाइजेशन ऑफ शुगरकेन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। शुगरकेन के टाइप्स पूछे जाते हैं, जैसे नॉर्दर्न इंडिया में बेसिकली जो ग्रो होता है दैट इज सकैरम बारबेरी, सकैरम साइनेसिस, और जो बेसिकली जो न्यू जो शुगरकेन की ओरिजिन है वो न्यू जीनिया में हुई है। जो नोबलाइज शुगरकेन बोलते हैं दैट इज सकैरम ऑफिसिनारम को बोलते हैं, जिसका क्रोमोजोम नंबर 80 होता है। प्रोजिनेटर की बात करें तो इसके प्रोजिनेटर सकैरम रोबस्टम है। शुगर केन के फ्लावरिंग के लिए बहुत ही वार्म नाइट चाहिए, ह्यूमिड कंडीशन चाहिए और हाई रेनफॉल चाहिए, जो कि सिर्फ TNAU कोयम्बटूर में अवेलेबल है। इसलिए मेजर जो ब्रीडिंग का काम होता है वो TNAU कोयम्बटूर में होता है। यदि किसी को भी कोई भी क्रॉसेस अटेम्प्ट करना है तो दैट शुड बी डन एट शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट कोयम्बटूर। पोटैटो की बात करें तो पोटैटो का क्रोमोजोम नंबर 48 होता है, और साइंटिफिक नेम इसका सोलानम ट्यूबरोसम होता है। इट मे बी आइदर डिप्लॉइड ट्रिप्लॉइड टेट्राप्लॉइड और पेंटाप्लॉइड। इसकी भी जो फ्लावरिंग होती है वो फ्लावरिंग आपकी बेसिकली कुफरी में होती है। तो जो भी ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव होता है, जो भी जिसको भी ब्रीडिंग का वर्क करना होता है दैट शुड बी डन एट कुफरी हिमाचल प्रदेश। इसका जो सेंटर ऑफ ओरिजिन है वो साउथ अमेरिका है या पेरू भी बोलते हैं। प्रोजिनेटर जो है वो सोलानम स्टिनोमम है। इसका इवोल्यूशन की बात करें तो सोलानम स्टिनोमम का डबलिंग के कारण जो है नेचुरली कल्टीवेटेड टेट्राप्लॉइड दैट इज सोलानम ट्यूबरोसम का डेवलपमेंट हुआ है। इसके बाद जो अपने को पढ़ना है वो फॉरेज में पढ़ना है। फॉरेज में जो बेसिकली ध्यान देने वाली चीजें हैं वो है आपका नेपियर बाजरा, उसके बाद फिर फॉरेस्ट सॉर्गम्स। और इससे जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो बेसिकली ये पूछा जाता है कि सॉर्गम में कौन सा एंटी न्यूट्रिशनल सब्सटेंस प्रेजेंट है, तो उसको SCN बोलते हैं या दूरीन भी बोलते हैं उसको। और कुछ विशिष्ट बातें जो ध्यान देनी है वो ये है कि ब्रीडिंग मेथड्स, सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप में कौन सा ब्रीडिंग मेथड होता है, क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप में कौन सा ब्रीडिंग मेथड होता है। तो यदि हम ध्यान दें तो सेल्फ पॉलिनेटेड में बेसिकली जो आपका होता है वो प्योर लाइन सिलेक्शन, पेडिग्री, बल्क मेथड, बैक क्रॉस मेथड, सिंगल सीट डिसेंट मेथड होते हैं। और जो एग्जाम में ज़्यादातर पूछा जाता है वो बैक क्रॉस मेथड और पेडिग्री मेथड होता है। जब भी आप इन मेथड्स को एक्सप्लेन करें तो कोशिश करें विद डायग्राम आप उसको एक्सप्लेन करें, और हर मेथड का एडवांटेज और डिसएडवांटेज जरूर मेंशन करें। आपके कोर्सेज में ब्रीडिंग फॉर बायोटिक एंड एबायोटिक रेजिस्टेंस भी है, तो इसमें जब भी आप लिखे जैसे ब्रीडिंग फॉर बायोटिक रेजिस्टेंस में बेसिकली ब्रीडिंग फॉर डिजीज एंड इंसेक्ट रेजिस्टेंस आता है, और एबायोटिक में आपका ड्रॉट, हीट स्ट्रेस, फ्लड, वाटर लॉगिंग, चिलिंग स्ट्रेस, फ्रिज स्ट्रेस, ये सभी आते हैं। तो इसमें जो इम्पॉर्टेंट है वो है आपका स्क्रीनिंग टेक्निक और ब्रीडिंग मेथड्स आप क्या क्या ऑप्ट करते हो। एक और इम्पॉर्टेंट है बरसीम। बरसीम में ये चीज़ पूछा जाता है कि ट्रिपिंग किस में पाया जाता है, तो ट्रिपिंग जो है वो बरसीम में पाया जाता है ताकि पॉलिनेशन इंश्योर हो। जब भी आप क्रॉस पॉलिनेशन का मेथड बताएं तो उसमें ध्यान रखें जो बेसिक मेथड आता है वो पॉपुलेशन इम्प्रूवमेंट का आता है, जिसमें आपका रिकरेंट सिलेक्शन है। रिकरेंट सिलेक्शन के भी काफ़ी सारे टाइप्स हैं, सिंपल रिकरेंट सिलेक्शन, रिकरेंट सिलेक्शन फॉर GCA, रिकरेंट सिलेक्शन फॉर SCA एंड रेसिप्रोकल रिकरेंट सिलेक्शन। हर मेथड्स का अपना एडवांटेज है। नेक्स्ट आपको देखना है आइडियोटाइप, कुछ कुछ क्रॉप्स जैसे वीट, मेज, कॉटन, इन सब का आइडियोटाइप भी पूछा जाता है, तो ये आइडियोटाइप का भी ध्यान रखना है। क्वेश्चन रिलेटेड आता है हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन से भी, तो जब भी आप हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन लिखे तो ये ध्यान दें कि उसमें जो ए लाइन, बी लाइन और आर लाइन का इस्तेमाल हो रहा है उसको कैसे मेंटेन करना है, हैबिट कैसे बनाना है, ये सब चीज़ डायग्रामेटिकली मेंशन करें। तो स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, इन सबको ध्यान रखिए और प्रिपेयर कीजिए एग्जाम के लिए। थैंक यू।
1: थैंक यू सो मच मैम, उम्मीद है कि हमारे स्टूडेंट्स के लिए ये काफी यूजफुल होगा। तो आप कल बिना हेजिटेशन के एग्जाम दीजिए और आप सभी को बेस्ट ऑफ लक।

तैयार है आम के अद्भुत संसार से रूबरू होने के लिए। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर लेकर आ रहा है राष्ट्रीय आम समागम 2026, जिसका आयोजन 27 से 28 जून तक किया जाएगा। आइए और देखिए देश भर की सैकड़ों आम किस्मों की आकर्षक प्रदर्शनी, जहां स्वाद, सुगंध और रंगों का अनूठा संगम आपका स्वागत करेगा। इस विशेष आयोजन की थीम है स्वाद, संस्कृति और समृद्धि का संगम। आम समागम में किसानों, वैज्ञानिकों, उद्यमियों और आम प्रेमियों को एक ही मंच पर आने का अवसर मिलेगा। कार्यक्रम के दौरान आयोजित होगी राष्ट्रीय कार्यशाला, जिसका विषय है आधुनिक तकनीक से गुणवत्ता युक्त उत्पादन, भंडारण एवं प्रसंस्करण। देश के प्रतिष्ठित विशेषज्ञ आम उत्पादन, मूल्य संवर्धन और प्रसंस्करण की आधुनिक तकनीकों पर अपने अनुभव साझा करेंगे। इस अवसर पर आयोजित होगा किसान वैज्ञानिक सम्मान समारोह, जिसमें बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश के उत्कृष्ट आम उत्पादकों को बेस्ट मैंगो फार्मर अवार्ड प्रदान किया जाएगा। महिला आम उत्पादकों एवं मूल्य संवर्धन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिला उद्यमियों के लिए भी विशेष सम्मान और नगद पुरस्कार की व्यवस्था की गई है। और अब आपके लिए एक सुनहरा अवसर, यदि आपके बाग में उत्कृष्ट गुणवत्ता के आम हैं या आपके पास किसी विशेष किस्म के आम उपलब्ध हैं, आप भी आम प्रदर्शनी में अपनी आम की किस्मों को प्रदर्शित कर सकते हैं। आपकी प्रविष्टियों का मूल्यांकन विशेषज्ञों द्वारा किया जाएगा और चयनित प्रतिभागियों को आकर्षक पुरस्कार एवं नगद राशि से सम्मानित किया जाएगा। और हाँ, आम प्रेमियों के लिए होगा एक विशेष आकर्षण, मैंगो ईटिंग प्रतियोगिता। इस रोमांचक प्रतियोगिता के विजेताओं को भी आकर्षक नगद पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। तो देर किस बात की, अपने श्रेष्ठ आमों के साथ आइए, प्रदर्शनी में भाग लीजिए, विशेषज्ञों से सीखिए, नई तकनीकों को जानिए और आकर्षक पुरस्कार जीतने का अवसर पाइए। 27 से 28 जून राष्ट्रीय आम समागम 2026 बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है।

0: Coco Kasi.
1: Kasi, Coco Kasi.
2: खांसी एक, खांसी दो, खांसी तीन, बज गई भैया देश की बीन। टीबी के कारण को जानो, खांसी हो तो मुंह ढक कर खांसो। टीबी रोग हवा में फैले, रखो अपना औरों का ध्यान। घर में धूप रोशनी हवा मिले तो कीटाणु सब मर जाएंगे, रोग मुक्त हम हो जाएंगे। खांसी खोखो खांसी। बलगम में है भरे कीटाणु, रख कागज में इसे जला दो या डाल राख में इसे दबा दो, रहे न टीबी नाम मिटा दो। खांसी खोखो खांसी। टीबी मुक्त भारत बनाए,
3: खुद भी बचे देश भी बचाए।
4: टीबी हारेगा देश जीतेगा।
5: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
6: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
5: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
6: आपकी सेहत की बातें,
5: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
6: युवाओं के रोजगार करियर की बातें,
5: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
6: वो कहाँ पर?
5: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
6: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
5: उन्नत कृषि। नमस्कार श्रोताओं, आपने ट्यून किया है 90.8 मेगाहर्ट्ज़। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से हमारा यह सामुदायिक रेडियो स्टेशन। और जी हां, हम लेकर आते हैं हमारे किसान भाइयों के लिए बहुत ही ज़रूरी उपयोगी बातें। तो आज भी एक ऐसे ही विषय को हम अपने उन्नत कृषि कार्यक्रम में लेकर आए हैं, और हमारा विषय है मक्के की फसल में फॉल आर्मी वर्म कीट का पहचान एवं इनका नियंत्रण। और इस विषय के साथ आज हमारे साथ हैं डॉक्टर श्याम बाबू साह, और सर वैज्ञानिक हैं इंटोमोलॉजी डिपार्टमेंट बिहार एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी सबौर से। सर, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
7: धन्यवाद। किसान भाइयों, सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि ये जो फॉल आर्मी वर्म है, ये मक्के में किस सीजन में सबसे ज़्यादा आते हैं। तो अमूमन आप किसान भाइयों, जो हम लोग बिहार में देखते हैं कि दो सीजन में मक्के लोग लगाते हैं, एक अभी जो लगाए होंगे खरीफ सीजन में जो इनका अभी चल रहा है, और दूसरा जो है कि रबी सीजन में लगाते हैं। तो उनका जो है वितरण अलग अलग ज़िले में लोग अलग अलग, जिनको जैसा लगता है वैसे लगाते हैं। तो ये जो फॉल आर्मी वर्म है, ये आप किसान भाइयों में इसको पहचानने में थोड़ा सा उनको दिक्कत होता है, क्योंकि ये जो कीट है एक तना छेदक होता है, तो तना छेदक के जैसा ही ये मिलता जुलता है। लेकिन दोनों में तुलना करना बहुत ज़रूरी होगा, इसलिए कि अगर तना छेदक आपका लगा हुआ है तो उसके लिए अलग उसका नियंत्रण होता है, और फॉल आर्मी वर्म अगर लगा हुआ है तो उसके लिए आपको अलग से उसका नियंत्रण के उपाय करने होंगे, कीटनाशक देने होंगे। तो सबसे पहले दोनों को आपको समझना है कि कैसे इनका कैसे नियंत्रण होता है या कैसे इसको पहचानेंगे। तो जब तना छेदक मुख्यतः जब होता है, तो आप देखेंगे कि या आपके मक्के के जो पौधे हैं, जब घुटने या उसके नीचे भी जब रहता है, तो आप देखेंगे कि जो मक्का के जो पत्तियां हैं उसमें लाइन से तीन आपको गोला गोला कटे हुए का निशान दिखेंगे। तो ये तना छेदक के चलते हो सकता है। और आप जब देखेंगे कि जो उनका जो बढ़वार होने वाला जो पोजीशन होता है, या जिसको हम लोग मक्के का कंठ कह सकते हैं, तो वहाँ पे आप देखेंगे क्या कि हो सकता है कि कुछ जो इसके जो शिशु होते हैं वो तना छेदक के, वो उसमें मिलेंगे आपको। तो ये है तना छेदक का। और ये जो तना छेदक है, मतलब आपके फसल को थोड़ा धीमी रफ्तार से क्षतिग्रस्त करते हैं। लेकिन उसके उल्टा, अगर फॉल आर्मी वर्म से अगर आपके पौधे अगर आक्रांत हो जाते हैं, तो ये आपके पौधे को बड़ी तेज़ी से क्षतिग्रस्त करते हैं। और साथ ही में ये जब आपके मक्के का जो कंठ होता है, ये भी उसी में छुपे हुए रहते हैं। लेकिन इसमें क्या है कि ये अपना स्क्रीटा, या कहे कि उत्सर्जन, जो इनका छोटा छोटा जो जैसे कि केचुआ का जो जो बिष्टा होता है, मल होता है, उसी टाइप से इसके छोटे छोटे आपके उसके कंठ में दिखाई देंगे कि पड़ा हुआ, जो काले कलर का मुख्यतः होता है। साथ ही में ये फॉल आर्मी वर्म जो होते हैं वो साइज में बड़े होते हैं। अब मुख्यतः जैसे कि दो सीजन में हम अभी बात कर रहे थे कि हम लोग मक्का लगाते हैं, तो अमूमन देखा गया क्या कि ये जो खरीफ सीजन होता है, खरीफ सीजन में इसका प्रकोप रबी के तुलना में जो ठंडे सीजन में हम लोग जो करते हैं उसके तुलना में इसमें इसके समस्या ज़्यादा आती है। तो इसके आने के कारण बहुत सारे कारण हैं, उसमें मुख्य कारण ये है कि इस मौसम में वर्षा होती रहती है और जो ह्यूमिडिटी है वो बहुत ज़्यादा होता है, टेम्परेचर भी ज़्यादा रहता है, जो इस कीट के बढ़वार के लिए बहुत ही उपयुक्त है। तो यही कारण है कि इसमें ये ज़्यादा होता है। अब है क्या कि कुछ और कारण हैं कि उसको कैसे आप पहचानिएगा, कैसे मतलब जो कीट है तो तना छेदक है या फॉलर मीवर्म का कीट है उसको आप कैसे पहचानिएगा, क्योंकि जब तक आप उसको सही से पहचानेंगे नहीं तब तक आप उसका समुचित उपचार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दोनों का आक्रामकता भी हमने अभी तुरंत बताया है आपको कि अलग अलग है। एक थोड़ा धीमी रफ्तार से आपके पौधे को क्षतिग्रस्त करता है, दूसरा जल्दी जिसमें आर्मी लगा हुआ है। आर्मी का काम आप लोग सब लोग को पता है कि आर्मी अपने काम बहुत तेज़ी रफ्तार से करता है, इसीलिए इसमें आर्मी शब्द जोड़ा गया है। ठीक है, तो अब इसको बचाने कैसे, तो हम आपको फॉल आर्मी बॉम के बारे में बता रहे हैं। अभी तना छेदक को आप रहने दीजिए, उसको जो जितना हम बताए लगभग उसे तना छेदक आप पहचान जाएंगे। अब फॉल आर्मी बॉम को कैसे पहचानेंगे, तो ये जो कीट होता है तना छेदक की तरह दिखता है लेकिन ये उससे मोटा और लंबा होता है, साथ में ही इनके जो शरीर होता है उस पे काले धारियां आगे से पीछे तक, मतलब सर से उसके पूंछ तक काले धारियां रहती हैं। अब एक चीज, दो चीज़ और है जो आप बड़ी आसानी से इसको समझ सकते हैं। इसका जो जिधर जो मुंह होता है या अगला हिस्सा में, तो इंग्लिश का जो वाई होता है वो इंग्लिश का उल्टा वाई इसके माथे पे निशान होता है, जैसे हर जैसे कि किसी किसी पशु है या जो भी है उस पर कुछ ना कुछ निशान होता है हम लोग पहचानते हैं, उसी तरह से इसमें जो उल्टा वाई का निशान होता है इसके आगे वाला पोर्शन जिधर सर बोलते हैं उस साइड में, और जब पीछे साइड में जब आप आएंगे तो पीछे साइड में इसके चार काले काले धब्बे होते हैं जो बड़ी आसानी से आप ऐसे ही आँख से आप देख सकते हैं। तो ये हुआ इसके पहचानने का। अब दूसरी बात क्या है, ये जो पहचानने का है तो इसमें लगभग नहीं 6 इन स्टार होते हैं। अभी आप बताएंगे कि इन स्टार क्या होता है, ये इंग्लिश शब्द है थोड़ा सा, तो इसको हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे हमारे मनुष्य के जो बच्चे होते हैं तो सबसे पहले बहुत छोटा होता है, फिर उसके बाद वो पहले सोया रहता है, फिर उसके बाद बैठना शुरू करता है, फिर उसके बाद वो खड़ा होना शुरू करता है, फिर खड़ा होने के बाद वो रफ्तार से चलने लगता है। तो जब तक वो, तो ये अलग अलग उनके फेज है हमारे जो मनुष्य हैं उनके बच्चे का, इसी तरह से इस कीट के भी 6 फेज है। तो 6 फेज में जो उनका जो फेज 1 होगा या 2 होगा, तो वो अंडा के बाद, जस्ट अंडा के बाद जो निकलने वाला वो उसका अवस्था होता है, फेज इंग्लिश में बोले अवस्था होता है। तो उस कंडीशन में उस कीट का साइज छोटा होगा, और साइज जब छोटा होगा तो उसी रफ्तार में वो आपके फसल को भी उस समय में थोड़ा धीमा धीमा रफ्तार करेंगे, और उसको कंट्रोल भी थोड़ा सा आप कर सकते हैं आसानी से। लेकिन जब यही कीट जब है खाते खाते जब कुछ वो 3-4 इन स्टार वाले फेज में जब चले जाएंगे, तो उस कंडीशन में ये ज़्यादा बड़ा और ज़्यादा मोटा हो जाता है, और उस कंडीशन में वो जो सिंपल आपका जो कीटनाशी है उससे हो सकता है कि उसका नियंत्रण ना हो। तो सबसे पहले तो आपको पहचानने का हमने तरीका बता दिया। अब ये क्षतिग्रस्त कैसे करता है, ये किस किस भाग को, मक्का के किस किस भाग को क्षतिग्रस्त करता है, ये कब कब आता है, तो ये इसके आने का टाइमिंग जो है ये कभी भी आ सकता है, लेकिन मुख्यतः जो है जब हमारा मक्का जब मुख्यतः जब 4-5 पत्तियों का हो या गले की एक महीने के जब आसपास होता है, उसके आगे जब बढ़ना होता है तो उस समय में इसका प्रकोप देखने को मिलता है। अब ये करेगा क्या कि आपकी जो पत्तियां हैं जो बढ़ने वाली पत्तियां हैं उसी के ऊपर ये आक्रमण करता है, उसको ये पूरी तरह से खा जाता है। और खाने के साथ साथ बहुत बार ये होता है कि आपका जो पत्तियां हैं उसको ये जाली नुमा बना देंगे। जाली नुमा कहने का मतलब ये आर पार उसको कट नहीं करते, आर पार उसको खा करके ख़त्म नहीं करते, बल्कि नीचे से वो खुरच लेते हैं, उनका जो हरा जो पत्तियां का जो हरा भाग होता है उसको खुरच के उसको खा जाते हैं। और पत्ती जो है वो लगेगा कि पेपर की तरह, जैसे कि जो अखबार या जो कोई कागज़ होता है उसमें कैसे थोड़ा थोड़ा दिखते रहता है, उस टाइप से आपकी पत्तियां दिखेंगे। जो तना छेदक में ऐसा नहीं होता है। तो ऐसा अगर आपको सिम्टम दिख रहा है कि एक तो आपके पत्तियां को पूरा जो कंठ वाले हैं जो बढ़ने वाले उसको तो खा ही गया, और जो दूसरी जो पत्तियां बची हुई हैं उसको आर पर दिख रहा है बहुत सारे पत्तियों में, तो ये हो सकता है कि आपका ये फॉल आर्मीवर्म के चलते ऐसा हो रहा है। तो पहला तो ये हो गया। दूसरा जो है कि ये जो कंठ में है ये कंठ में छुपा हुआ रहता है, तो जब कंठ की आप जब देखेंगे उसको जब खोलेंगे तो वहाँ पे ये इनके कीट आपको दिखाई देंगे आसानी से। साथ ही साथ वहाँ उसके बहुत सारे मल मूत्र भी उसमें रखे रहते हैं जिनकी संख्या ज़्यादा होती है, उनका साइज भी जो पिलेट साइज बोलते हैं तो वो मतलब वो बड़ा बड़ा होता है। तो ये हो गया। अब अगर ये ज़्यादा आपको इसका प्रकोप हो गए तो ये 3 से 4 दिन में आपके जो मक्के की फसल है उसको पूरी तरह ये नष्ट कर देते हैं। अब ये जो आपका जो फॉल आर्मीवर्म है ये जब अगर मक्का अगर क्या पौधा अगर नहीं रहे, जब मक्का हम हार्वेस्ट कर लेते हैं तब ये कहाँ जाता है। तो ये जो फॉल आर्मीवर्म है ये मुख्यतः जितने भी जो ग्रामनी फैमिली के जो हमारे फसल है तो उन पे भी, मैंने कहने का मतलब ये है कि ये आपको ज्वार बाजरा ये सब पे भी ये जा सकता है, शिफ्ट कर सकता है। अगर इनको इधर से अगर मक्का ख़त्म हो गया, मक्का कोई काट लिए तो आसपास में अगर ये लगी हुई हैं तो उस पे भी जा सकता है। अब तो इसीलिए ये नहीं कहते हैं कि मक्का अगर नहीं होगा तो ये नहीं रहेगा, इसके कई अल्टरनेट होस्ट है, इस अल्टरनेट होस्ट पे ये चले जाते हैं, शिफ्ट कर जाते हैं। इसके जो वयस्क हैं वो एक रात में बहुत लंबी लंबी दूरी तक ये चले जाते हैं, लगभग 80 से 100 किलोमीटर भी ये उड़ सकते हैं, ऐसी इनमें कैपेसिटी है इनके जो वयस्क हैं उनका। इनका जो जो क्षति करने वाला है ये इनके वयस्क क्षति करते हैं जो चलते हैं, जो चल के सिकुड़ते हुए चलते हैं उस ये क्षतिग्रस्त करते हैं। तो ये हमको लगता है कि ये चीज़ें हो गई, ये काफ़ी आपको समझने के लिए हो गया। दूसरी बात ये है कि आपको अगर किसान भाई अलग अलग टाइमिंग में अगर मक्का को लगाते हैं, कोई मक्का आज लगाए कोई फिर उसके 15 दिन बाद लगाते हैं, कोई फिर उसके 15 दिन बाद लगाते हैं, अगर और उस क्षेत्र में अगर इसका प्रकोप ज़्यादा है तो वैसे कंडीशन में किसान भाइयों को सलाह दिया जाता है कि सारे किसान भाई मिल करके एक साथ अपने मक्का की फसल को लगाएं, ताकि ये होता क्या है कि अलग अलग अगर अवस्था में आपके पौधे रहते हैं तो उसको ये ज़्यादा क्षतिग्रस्त करते हैं, उसके ओर ये एक को क्षतिग्रस्त करते हुए फिर जो पौधा उस अवस्था में आता है तो उधर वो शिफ्ट करके उधर वो आ करके उसको ज़्यादा क्षतिग्रस्त करते हैं। तो इसीलिए अगर जिधर इनकी समस्या ज़्यादा होती है वहाँ पे किसान भाइयों को चाहिए कि सब किसान भाई मिल करके एक ही टाइम में अपना जो है इसके बीज को लगाइए, ताकि पौधा आप सब किसान भाइयों का पौधा एक टाइप का रहे और इनका प्रकोप कम से कम हो। साथ ही में अगर जहाँ भी ये होगा तो अगर एक किसान भाई के फील्ड में अगर दिखाई दे रहा है तो हो सकता है कि दूसरे जगह भी ये मूव करे। और इसका जो है कि अगर 100 में से 5 पौधे में अगर आपको दिखता है कि ऐसा हो गया है, इसका फॉल आर्मीवर्म की समस्या है, तो आपको इसका कंट्रोल करना बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन अगर इसे कम है तो आप इसको नज़रअंदाज कर सकते हैं। लेकिन किसान भाइयों ये मैं बोलूँगा कि जब भी अगर ऐसा आपको दिखे तो आपको अपने खेत को फ्रिक्वेंट, मतलब है कि हर दिन लगभग आपके फील्ड में खेत में जाना चाहिए कि इनका क्या स्थिति है, कहीं कोई मतलब इसका कैसे फैलाव है, ज़्यादा तो फैल नहीं रहा है, तो वैसे आपको इसको रोकथाम करना है। अब क्या है कि इसको कैसे, इसका उपचार कैसे करें। तो वो उपचार तो हम कुछ आपको बताए हैं कि अलग अलग टाइम ना दे करके एक साथ रोपाई करें। दूसरी बात है कि हमको इसकी तैयारी शुरू से ही करनी पड़ेगी। हम अच्छे गुणवत्ता वाला बीज लें सबसे पहले, जो लोकल बीज का चयन ना करें, अच्छी गुणवत्ता वाली बीज लें जिसमें किसी भी कीट का प्रकोप कम से कम होता है। खाद समुचित मात्रा में देना है। बहुत किसान भाइयों में ये रहता है कि हम यूरिया ज़्यादा दे देंगे तो हमारा जो है बटवाड़ ज़्यादा होगा, हमारी फसल ज़्यादा होगा। लेकिन जो अनुशंसित मात्रा है यूरिया देने से का, उससे अगर हम जब ज़्यादा देते हैं यूरिया तो क्या होता है कि ये फसल में तेज़ी से बटवाड़ होता है। उसके जो फिजिकल कंडीशन है, मतलब जो पौधे की पत्तियां या पौधे की लंबाई बढ़ने की जो होता है वो तेज़ी से होता है, और उसका जो टिशू है, सेल है, वो मुलायम हो जाता है। और ये ऐसा होने के चलते जो फॉल आर्मी वर्म या कोई भी कीट उसको आसानी से उसको क्षतिग्रस्त करते हैं। साथ ही साथ अगर कभी तेज हवा आई तो उसमें आपका गिरने की भी समस्या रहती है। इसीलिए यूरिया की मात्रा उतना ही देना है जितना अनुशंसित है। साथ में फर्टिलाइज़र में जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फेट और पोटाश तीनों देने की होती है संतुलित मात्रा, उसमें पोटेशियम की कमी कभी नहीं करें। अगर आप पोटेशियम की कमी करते हैं, जिसको म्यूरेट ऑफ पोटाश बोलते हैं, तो इसके चलते भी आप में कीटों की समस्या ज़्यादा होती है। पोटेशियम ऐसा उर्वरक है जो आपको कीटों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाता है, इसीलिए पोटेशियम आपको देना ही है, म्यूरेट ऑफ पोटाश देना है। और जो हम लोग जो उसके बोलते हैं कि अलग अलग, ऐसा नहीं है कि यूरिया एक ही बार में दे देना है, उसको बांट बांट करके फसलों के अलग अलग फेज में देना है, तो वो आपको करना है। साथ में जब अगर हम केमिकल पे जब आ जाते हैं कि उसको रासायनिक विधि से कैसे करना है, ये सब तो आपको बचाव के लिए करना है, लाइन आपको मेंटेन करना है, पौधे से पौधे की दूरी आपको जो है वो मेंटेन करना है। और इन सारे चीज़ों को करते हुए भी अगर जब फॉल आर्मी वर्म का जब आपका प्रकोप होता है, तो एक सिंपल है, अगर पहला और दूसरा स्टेज में है तो इमामेक्टिन बेंजोएट, जो 5SG इमामेक्टिन बेंजोएट 5SG जो झिल्ली की तरह होता है, झिल्ली नुमा होता है, इसको पहले आपको थोड़ा सा पानी में घुलाना है, और जब घुल जाए तब इसको फिर से आप अपने जो स्प्रेयर है उसमें इसको डाल करके करना है। अब इसकी मात्रा कितनी होनी चाहिए, तो यहाँ ध्यान देने वाली बात है किसान भाइयों, इसको 10 लीटर पानी में मात्र 4 ग्राम आपको ये झिल्ली वाला दवा लगता है। मतलब पहले उसको पानी में घुलाना है, मतलब आप हिसाब से कर लीजिए, अगर आपका पीठ वाला अगर 15 लीटर का है स्प्रेयर, तो उसके लिए आपको कि पहले एक छोटा सा ढक्कन या कोई भी पात्र में 6 ग्राम आपको कीटनाशी डालना है, ये इमामेक्टिन बेंजोएट डालना है, और उसके बाद डालने के बाद उसको जो है आपको फिर आपको स्प्रेयर में डाल करके उसको शाम के समय में छिड़काव करना है, जनरली 4 बजे के आसपास करना है, और उसको मेर पे भी करिए। ये है। दूसरी बात है कि जब अगर थर्ड और फोर्थ स्टेज में जब चला जाता है, तो दो कीटनाशी और है जो आपको थोड़ा ये कॉस्टली है लेकिन आप लोगों को जानना चाहिए। एक है उसमें थायोमेथोक्जम 12.6% प्लस लैम्डा साइलोहोलिन 9.6%, इसकी जो है 0.25 ग्राम, मतलब कहने का मतलब है कि ये इसकी 1 ml दवाई जो है 4 लीटर पानी में आपको डालना है। मतलब कहे कि अगर 15 लीटर वाला स्प्रेयर है तो उसमें 4 ml दवाई थायोमेथोक्जम 12.6% प्लस लैम्डा साइलोहोलिन 9.5% का देना है। और जब भी आप कीटनाशी जब देते हैं तो उसमें जो है कोई जो उसको हम लोग बोलते हैं कि शैम्पू या वेटिंग कोई भी चीज़ उसको आपको देना है, ताकि वो आपके सरफेस टेंशन को बढ़ाता है, आपके कीटनाशी की एफिशिएंसी को बढ़ाता है। और दूसरा जो एक और इंसेक्टिसाइड है उसका नाम है स्पाइनोटोरम, 11.7%, इसकी 0.5 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी में और कुछ स्टिकर मिला करके इसको आपको छिड़काव करना है। इसके छिड़काव करने से आपका जो है

तैयार है आम के अद्भुत संसार से रूबरू होने के लिए। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर लेकर आ रहा है राष्ट्रीय आम समागम 2026, जिसका आयोजन 27 से 28 जून तक किया जाएगा। आइए और देखिए देश भर की सैकड़ों आम किस्मों की आकर्षक प्रदर्शनी, जहां स्वाद, सुगंध और रंगों का अनूठा संगम आपका स्वागत करेगा। इस विशेष आयोजन की थीम है स्वाद, संस्कृति और समृद्धि का संगम। आम समागम में किसानों, वैज्ञानिकों, उद्यमियों और आम प्रेमियों को एक ही मंच पर आने का अवसर मिलेगा। कार्यक्रम के दौरान आयोजित होगी राष्ट्रीय कार्यशाला, जिसका विषय है आधुनिक तकनीक से गुणवत्ता युक्त उत्पादन, भंडारण एवं प्रसंस्करण। देश के प्रतिष्ठित विशेषज्ञ आम उत्पादन, मूल्य संवर्धन और प्रसंस्करण की आधुनिक तकनीकों पर अपने अनुभव साझा करेंगे। इस अवसर पर आयोजित होगा किसान वैज्ञानिक सम्मान समारोह, जिसमें बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश के उत्कृष्ट आम उत्पादकों को बेस्ट मैंगो फार्मर अवार्ड प्रदान किया जाएगा। महिला आम उत्पादकों एवं मूल्य संवर्धन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिला उद्यमियों के लिए भी विशेष सम्मान और नगद पुरस्कार की व्यवस्था की गई है। और अब आपके लिए एक सुनहरा अवसर, यदि आपके बाग में उत्कृष्ट गुणवत्ता के आम हैं या आपके पास किसी विशेष किस्म के आम उपलब्ध हैं, तो आप भी आम प्रदर्शनी में अपनी आम की किस्मों को प्रदर्शित कर सकते हैं। आपकी प्रविष्टियों का मूल्यांकन विशेषज्ञों द्वारा किया जाएगा और चयनित प्रतिभागियों को आकर्षक पुरस्कार एवं नगद राशि से सम्मानित किया जाएगा। और हाँ, आम प्रेमियों के लिए होगा एक विशेष आकर्षण, मैंगो ईटिंग प्रतियोगिता। इस रोमांचक प्रतियोगिता के विजेताओं को भी आकर्षक नगद पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। तो देर किस बात की, अपने श्रेष्ठ आमों के साथ आइए, प्रदर्शनी में भाग लीजिए, विशेषज्ञों से सीखिए, नई तकनीकों को जानिए और आकर्षक पुरस्कार जीतने का अवसर पाइए। 27 से 28 जून राष्ट्रीय आम समागम 2026 बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है।

0: खसरा कितनी गंभीर बीमारी है। टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MR का 9 से 12 महीने और दूसरा MR का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर है, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MR का लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हों, तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 ग्रीन FM।
5: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार और आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई में। दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि सरकार ने HPV का टीका सभी 14 साल से ऊपर के बच्चों के लिए मुफ्त कर दिया है। HPV का टीका लगाना शुरू तो हो गया है, लेकिन अभी भी बहुत सारे हमारे श्रोताओं के मन में बहुत सारे सवाल हैं। तो आज हम बात करेंगे HPV टीके की और कोशिश रहेगी कि आपके मन में जो भी सवाल हैं उनके जवाब भी हम दे सके। जब भी कोई पहल होती है, खास तौर पर सेहत के मामले में, तो हमारे परिवारजनों के मन में डर रहता है और कई सारे सवाल भी रहते हैं, खासकर जब सोशल मीडिया हमारे पास है और सोशल मीडिया और मोबाइल पर चल रही बहुत सी बातें होती है, बहुत सी अफवाहें होती है। तो उन अफवाहों से लोगों के मन में उलझन और सवाल दोनों ही पैदा होते हैं। इसलिए आज हम कुछ आम सवाल उठाएंगे और आसान भाषा में उनके जवाब देंगे। तो बस आप हमारे साथ अंत तक बने रहिए, आपको आज HPV टीकाकरण से जुड़े ढेर सारे सवाल मिलने वाले हैं। इसलिए क्योंकि हमने बहुत से सवाल इकट्ठे किए हैं और एक के बाद एक हम उन सवालों को पढ़ेंगे और जवाब भी देंगे। तो पहला सवाल है, HPV टीका किस लिए लगाया जाता है? दोस्तों, HPV टीका सर्वाइकल कैंसर यानी बच्चेदानी के मुंह के कैंसर से बचाव में मदद करता है। ये कैंसर महिलाओं में होने वाली गंभीर बीमारियों में से एक है। अगर समय पर बचाव हो जाए तो बीमारी का खतरा काफी कम किया जा सकता है। इसलिए बहुत जरूरी होता है कि महिलाएं HPV टीका जरूर लगाएं। और दूसरा सवाल है कि क्या HPV टीका सुरक्षित है? जी हाँ, बिल्कुल सुरक्षित है। HPV टीका सुरक्षित माना जाता है और ये दुनिया के कई देशों में लगाया जा रहा है। ये कोई नई बात नहीं है। टीका लगने के बाद हाथ में हल्का दर्द, सूजन, हल्का बुखार, सिर दर्द या चक्कर आ सकते हैं और ये सामान्य बातें हैं। आमतौर पर जल्दी ठीक हो जाती है और कोई भी टीका आप लेते हैं तो ऐसी परेशानी थोड़ी बहुत होती है जो कि कुछ दिनों में ठीक भी हो जाती है। अब तीसरा सवाल, क्या इसका कोई बड़ा दुष्प्रभाव होता है? गंभीर दुष्प्रभाव बहुत दुर्लभ है, यानी कि गंभीर दुष्प्रभाव ना के बराबर होते हैं। इसलिए आप अफवाहों पर भरोसा ना करें कि अगर आप HPV टीका अपनी बच्ची को लगवाएंगे तो उन्हें कोई परेशानी हो जाएगी। और अगर आपके मन में फिर भी कोई सवाल बचते हैं, कोई चिंता होती है, तो आप आशा दीदी, ANM, CHO या फिर नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में भी आप बात कर सकते हैं। वो आपको और भी अच्छी तरीके से समझाएंगे कि इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं होता है और बहुत रेयर होता है। चौथा सवाल कि ये टीका बच्चियों को ही क्यों लगाया जा रहा है? देखिए, क्योंकि HPV संक्रमण आगे चलकर सर्वाइकल कैंसर का कारण बन सकता है और ये बीमारी महिलाओं में होती है, इसलिए किशोरियों को, बच्चियों को बीमारी आने से पहले ही सुरक्षा देने के लिए टीका लगाया जाता है। कहते हैं ना कि बाद में इलाज से बेहतर है कि आप पहले ही बचाव कर ले, तो ये टीका बचाव के लिए है। पांचवा सवाल जो बहुत सारे लोगों के मन में उठ रहे हैं और बहुत सारी लड़कियां इस सवाल से चिंतित है कि क्या इससे भविष्य में मां बनने पर असर पड़ेगा? बिल्कुल नहीं पड़ेगा, ये बिल्कुल कोरी अफवाह है। HPV टीका मां बनने की क्षमता पर कोई असर नहीं डालता। ये कैंसर से बचाव के लिए है। बांझपन या कमजोरी से इसका कोई संबंध नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ आपको कैंसर से बचाता है, सर्वाइकल कैंसर से बचाता है। छठा सवाल ये है कि क्या मोबाइल और सोशल मीडिया पर चल रही बातें सही है? बस यही बात तो आपको हम बताने आए हैं कि हर बात जो मोबाइल और सोशल मीडिया पर चल रही है वो सही नहीं होती। कई बार बिना जांचे परखे डर फैलाया जाता है और कई बार कुछ बातें ऐसी होती है जो किन्हीं तक एक पहुंची और उसने अपने पास वाले को दो बातें पहुंचाई, फिर तीन बातें, चार बातें, इस तरीके से बहुत बड़ी चढ़ी बात हम तक पहुंचती है। इसलिए कोई भी बात आप तक सोशल मीडिया या मोबाइल के जरिए पहुंचे तो उसे बिना जांचे परखे उस पर भरोसा ना करें। स्वास्थ्य से जुड़ी जो भी जानकारी होती है वो हमेशा आपको चाहिए कि प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मी या सरकारी स्वास्थ्य केंद्र से ही ले। आपको इन्हीं जगहों से सबसे भरोसेमंद जानकारी मिल सकती है। अब सातवां सवाल कि टीका कब और कहां लगेगा। जी हां, अगर आपके मन के जो भी सवाल हैं और जो उलझन है वो दूर हो गए हैं तो सबसे जरूरी सवाल कि टीका कब और कहां लगेगा, इसके लिए आप अपनी आशा, ANM या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। वहीं आपको सही तारीख, जगह और पात्र उम्र की जानकारी देंगे। तो साथियों याद रखिए, अफवाह से नहीं सही जानकारी से फैसला लें। HPV टीका बेटियों को सर्वाइकल कैंसर से बचाने की दिशा में एक बहुत जरूरी कदम है। सेहत सही लाभ कई की ओर से ये संदेश जनहित में जारी है। आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें। फिलहाल मुझे यानी कि आपकी होस्ट और दोस्त उमा को दीजिए इजाजत, लेकिन जाने से पहले खास बात की स्वस्थ रहें, खुश रहें और अफवाहों से बचें। नमस्कार।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 20 से 24 जून के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी आने और साथ ही हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 25 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 60 से 70 प्रतिशत और दोपहर में 25 से 30 प्रतिशत रहने की संभावना है। साथ ही अनुमान है कि 20 से 24 जून के दौरान 8 से 9 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दक्षिण पूर्वी हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए। जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दें, धान की मध्यम अवधि वाली किस्में जैसे संतोष, सीता, सरोज, सहभागी धान और राजेंद्र श्वेता और सुगंधित किस्में जैसे राजेंद्र धान की मध्यम अवधि वाली किस्में हैं संतोष, सीता, सरोज, सहभागी धान और राजेंद्र श्वेता और सुगंधित किस्में जैसे राजेंद्र सुवासिनी, राजेंद्र कस्तूरी और राजेंद्र भगवती। किसान भाई बहनों इन किस्मों की नर्सरी में बुआई जरूर कर लें। जो मक्का की खेती करना चाहते हैं उन्हें बता दें, खरीफ मक्का की बुआई आसमान साफ रहने पर ही करें और खेत की जुताई में 10 से 15 टन गोबर की सड़ी खाद प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें। ध्यान रखें कि बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 30 किलोग्राम नेत्रजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटाश जरूर डालना चाहिए। और आपको बता दें अनुशंसित मक्का की किस्में हैं सुवान, देवकी, शक्तिमान 1, शक्तिमान 2, राजेंद्र संकर मक्का 3, गंगा 11। जिनके खेत में मूंग लगे हैं उन्हें बता दें, मूंग की तैयार फलियों की तुड़ाई कर ले और हरी खाद के लिए उसके पौधों को मिट्टी पलटने वाले हल से जमीन में गाड़ दे। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दें, भिंडी, कद्दू, खीरा, नेनुआ और लौकी जैसी फसलों की निराई गुड़ाई जरूर करें। साथ ही खरपतवार नियंत्रित करना भी बहुत जरूरी होता है। पत्ती खाने वाले सुंडियों और फल छेदक कीटों की नियमित निगरानी करें और अगर आपकी सब्जियों में पत्ती खाने वाले सुंडियों या फल छेदक कीटों का प्रकोप दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में डाइमेथोएट 30 सीसी की 1 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। जो खरीफ सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दें, खरीफ प्याज की खेती के लिए नर्सरी यानी कि बीज स्थली की तैयारी तभी करें जब आसमान साफ हो। स्वस्थ पौधों के लिए नर्सरी में गोबर की खाद जरूर डालें और खरीफ प्याज के लिए NO53 एग्रीफाउंड डार्क रेड, अर्का कल्याण, सीमा सुपर ये किस्में अनुशंसित है। प्याज के बीज की व्यवस्था प्रमाणित स्रोत से ही करें और ध्यान दें कि बीज गिराने के पहले बीजोपचार करना बहुत जरूरी होता है। बीजोपचार करने से आपके पौधे स्वस्थ होते हैं और फसल अच्छी होती है। बीज की दर 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, लीची तोड़ने के बाद खासकर बरसात शुरू होने से पहले बगीचे की जुताई जरूर कर ले और खाद उर्वरकों का प्रयोग तभी करें जब आसमान साफ हो। प्रति प्रौढ़ पेड़ 60 से 80 किलोग्राम सड़ी गोबर की खाद, 2.5 किलोग्राम यूरिया, 1.5 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट और 1 किलो 300 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश और 50 ग्राम सुहागा मिलाकर वृक्ष के चारों ओर समान रूप से मिट्टी में मिला दें। पशुपालक भाई बहन ध्यान दें, गलाघोटू और लंगड़ी रोगों से बचाव के लिए टीकाकरण कराने की जरूरत होती है, इसलिए सभी दुधारू पशुओं में टीकाकरण जरूर कराएं और नए गेहूं के भूसा को खिलाने से पहले ध्यान दें कि करीब 2 घंटा नए गेहूं के भूसा को पानी में फुला ले और 50 ग्राम खनिज मिश्रण और 50 ग्राम नमक चारा दाना मिलाकर दें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 एफएम ग्रीन के साथ बने रहें।

बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर आप सबका स्वागत करता है स्वाद संस्कृति और समृद्धि के संगम राष्ट्रीय आम समागम सह कार्यशाला में। तारीख याद रखें 27 से 28 जून 2026।

0: आप हर समय थकान महसूस करते हैं, छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है, ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है, बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।
1: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
0: उन्नत कृषि। नमस्कार, आपने ट्यून किया है 90.8 मेगाहर्ट्ज, ये है बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर का अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन, जी हाँ FM ग्रीन। और आज फिर से हम हमारा जो खास प्रोग्राम है उन्नत कृषि लेकर आ चुके हैं और आज हम एक खास विषय उर्वरक बचत हेतु धान की फसल में अजोला का प्रयोग, आज इसके बारे में आप सभी को बताएंगे। तो इस विषय के साथ आज हमारे बीच हैं डॉक्टर AK झा, जो कि जी हाँ वैज्ञानिक हैं, मृदा वैज्ञानिक हैं, सॉइल साइंस डिपार्टमेंट बिहार एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी सबौर से। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है और हम आपसे जानना चाहेंगे कि अजोला क्या है।
2: अजोला एक फर्न है, जलीय फर्न है। वास्तव में इस फर्न की पत्तियों में एनाबिना अजोली नाम का एक नीलहरित शैवाल रहता है, यानी कह सकते हैं कि इस फर्न का और नीलहरित शैवाल का एक सिम्बियोटिक एसोसिएशनशिप है, तो यानी सहजीवी व्यवस्था है। और इस नीलहरित शैवाल के कारण ये नाइट्रोजन का स्थिरीकरण भी करता है।
0: और अजोला को किस किस काम के लिए हम प्रयोग मिला सकते हैं?
2: बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न आपने पूछ दिया। वास्तव में अजोला एक ऐसा फर्न है जिसका प्रयोग आप खेती में उर्वरक बचत के लिए कर सकते हैं, खास करके धान की फसल में। दूसरी बात, यदि इसको आप प्याज में करके देखें तो यहाँ पर करके देखा गया है कि प्याज की फसल में, खास करके खरीफ प्याज में, सड़ने की ज्यादा समस्या होती है, और यदि हम अजोला का प्रयोग करते हैं तो उसमें सड़न कम होता है, उत्पादन बढ़ता है और इसका जो रंग है वो ज्यादा बढ़िया होकर के आता है। तो यह हमने देखा है कि इसमें खरीफ फसल, खरीफ ऑनियन में, खरीफ प्याज में ये फायदा कर सकता है। साथ ही साथ इसका प्रयोग लोग जो पशुपालन है उसमें भी करते हैं, पशुओं के आहार के लिए। और यह यहाँ पर शोध करके देखा गया कि यदि हम 1 किलो सुबह और 1 किलो शाम यदि गाय को अजोला देते हैं तो उसमें 8 से लेकर 15.6% तक दुग्ध उत्पादन बढ़ जाता है। साथ ही साथ यह बताएं कि कई देशों में इसको लोग पशु आहार के अतिरिक्त, पशु आहार मतलब कि बकरी का के आहार के रूप में भी प्रयोग किया जाता है, मुर्गी के आहार के रूप में भी प्रयोग किया जाता है, कहीं कहीं इसको मनुष्य भी भोजन करते हैं। ये पेपर में है, ये हम लोगों ने नहीं करके देखा है, लेकिन यह जो पेपर में है, पेपर में यह है कि हाँ, क्योंकि इसमें प्रोटीन काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है, 25 से 35% प्रोटीन पाया जाता है, विटामिन B12 पाया जाता है, बीटा कैरोटीन पाया जाता है, बहुत सारे खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। तो यह मनुष्य आहार में भी देखा गया है। और साथ ही साथ एक शोध में तो यह भी देखा गया कि यदि हम कैंसर पेशेंट्स को या HIV पेशेंट्स को यदि हम देते हैं तो उसकी रिकवरी तेज होती है। लेकिन इस पर हम बहुत ज़्यादा बल नहीं देंगे, हम तो कृषि के हैं, तो कृषि में हमने बताया कि आप खेती में प्रयोग कर सकते हैं, पशुपालन में, पशु आहार के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं।
0: अभी आपने बताया कि धान की फसल में उर्वरक बचत के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, तो कितने उर्वरक की बचत होती है?
2: देखिए, यहाँ जो हम लोगों ने शोध करके देखा है, जिस पर टेक्नोलॉजी भी विश्वविद्यालय का है, कि यदि हम अजोला का ग्रीन मैन्योरिंग करते हैं तो उससे जो भी उस धान की अनुशंसित नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाश की मात्रा है वह आपको आधी की बचत हो जाएगी। यानी कहने का मतलब, यदि आपको 6,000 रुपया उर्वरक के खरीद पे लगता है तो 50% नाइट्रोजन, 50% फास्फोरस और 50% पोटास उसका कम कर दीजिए, जिस पर कि मोटा मोटी 2,500-3,000 रुपए की बचत आपकी प्रति हेक्टेयर हो सकती है यदि आप इसमें प्रयोग करते हैं तो।
0: धान की फसल में जो अजोला का प्रयोग किया जाता है तो अजोला का उत्पादन हम कैसे करेंगे और धान की फसल में इसका उपयोग कैसे करेंगे?
2: ये बड़ा महत्वपूर्ण और समीचीन प्रश्न है। वास्तव में क्या है कि अजोला की आवश्यकता ज्यादा मात्रा में होती है। यदि आप ग्रीन मैन्योरिंग करते हैं तो 10 टन पर हेक्टेयर की अनुशंसा है, तो 10 टन पर हेक्टेयर उत्पादन करने में तो टफ है। तो इसके लिए क्या करते हैं, जो खेत में ही 2 मीटर गुने 10 मीटर की क्यारी बना लेते हैं, बरसात में तो ऐसे भी पानी रहता है, तो उसमें आप मेड़ बना दें और वहां पर उस क्यारी में आपको करना यह है कि इसमें पानी आपको रखना होगा, कम से कम 10 सेंटीमीटर पानी हर समय आपको रखना पड़ेगा। पानी रखने के बाद यहां पर आपको क्या है कि ये 1.5 किलो लगभग गोबर, यानी कहने का तो प्रत्येक क्यारी में आप 3 किलो कर लीजिए, क्योंकि देखिए 10 × 2 यानी कितना होगा 20 स्क्वायर मीटर हो गया, तो उसमें 3 किलोग्राम गोबर को लेकर के आप 20-25 लीटर पानी में घोल करके और जो चलनी आता है जो जिसे बालू वालू छानते हैं उसे छान करके उसको आप फैला दीजिए उसमें। ये करने के बाद उसमें सिंगल सुपर फॉस्फेट ये आपको 5 ग्राम प्रति स्क्वायर मीटर के हिसाब से आपको डालना चाहिए। ये डाल करके इसमें अजोला डाल देते हैं लगभग 200 ग्राम, आप फ्रेश अजोला जो बिल्कुल ताजा है उस अजोला को उसमें डाल देते हैं, और या आप देखेंगे कि यदि आप 2-3 हफ्ते तक ये पानी का स्तर आपने बरकरार रखा तो आपको ये पूरा का पूरा जो सरफेस है वो ढक जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि इसके लिए आपको करना क्या है, क्यारी बना लेना है 10 मीटर × 2 मीटर का, उसमें आपको 3 किलोग्राम गोबर को 20-25 लीटर पानी में घोल करके छान करके उसमें डाल देना है, उसके बाद 5 ग्राम प्रति स्क्वायर मीटर के हिसाब से सिंगल सुपर फॉस्फेट डाल देना है, 200 ग्राम अजोला डाल देना है, 10 सेंटीमीटर पानी को आपको मेंटेन रखना है हर समय, और वह आप मेंटेन किए रहेंगे तो 2 से 3 हफ्ते में पूरा ये कवर हो जाएगा और पर्याप्त मात्रा में होगा। तो जितने एरिया में आपको धान की फसल करनी है उतने एरिया के हिसाब से आप क्यारी बना करके वहां पैदा कर सकते हैं। लेकिन अब प्रश्न ये उठता है कि बहुत सारे किसान हैं कि इतना अजोला पैदा नहीं करते हैं या नहीं करना चाहते हैं, तो उसके लिए दूसरा भी तरीका है। वो दूसरा तरीका है डुअल क्रॉपिंग, कि डुअल क्रॉपिंग में आप क्या करते हैं कि जब 1 हफ्ते का आपका जब धान रोपने के बाद 1 हफ्ते का हो गया तो उसमें ही आप जस्ट उसका 1/10 भाग, यानी आप 10 टन डाल रहे थे तो 1 टन के हिसाब से आप वहां पर अजोला डाल देंगे, और डाल करके उसमें जो आपका फॉस्फोरस की मात्रा है वो लगभग 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आप उसको बढ़ा देंगे, और ये बढ़ा करके पानी का स्तर 2 से 3 हफ्ते तक आप मेंटेन रखेंगे तो देखेंगे क्या कि ये अजोला उस सरफेस को ढक लिया है। उस समय क्या करेंगे आप कि 2-3 हफ्ते के बाद उस पानी को कम कर देंगे तो ये सब जमीन पकड़ लेगा और ये बहुत जल्दी सड़ करके उसको पोषक तत्व देने का काम करना शुरू कर देता है। तो इस ढंग से यदि आप करते हैं तो इसको कहते हैं डुअल क्रॉपिंग। और वो पहला वाला जो बताया था वो ग्रीन मैन्यूरिंग था कि आपने पैदा किया और वहीं पर जैसे आप ढेंचा पलटते हैं वैसे ही आप इस अजोला को पलटेंगे, और अजोला को पलट करके अब उसके बाद फिर आप रोपनी कर देंगे और ये सारी प्रक्रिया होगी। हाँ, एक बात जरूर है कि यदि आप चाहते हैं कि हमारा अजोला तेजी से बढ़े तो उसमें चाहे वो क्यारी आप बनाए हुए हो चाहे खेत में डाल रहे हो, तो वह जो मैंने 20 केजी पर हेक्टेयर आपको कहा था उसको आप 3 हिस्सों में बांट करके हफ्ता भर के इंटरवल पर उस SSP को दीजिएगा। अब आप ये प्रश्न पूछिएगा कि भाई ये SSP पर इतना जोर क्यों, तो वास्तव में क्या है कि अजोला फास्फोरस थोड़ा ज्यादा रिक्वायर करता है, तो फास्फोरस आप यदि उसमें डालते हैं तो अजोला की बढ़वार तेजी से होगी और आपको अजोला का ज्यादा बायोमास मिलेगा। वैसे अजोला तो आपको जान के ताज्जुब होगा कि 2 से 5 दिन में जब वातावरण उपयुक्त है तो 2 से 5 दिन में यदि आपने 1 किलो अजोला डाला तो वो 2 केजी हो जाएगा, लेकिन बिहार में इसका ज्यादा प्रयोग पशुपालन में हो रहा है। तो ये तरीका है। आप पशुपालन में जो आप करते हैं उसके लिए तो छोटा सा गड्ढा बनाते हैं जहां पर आपका फार्म है, जहां पर जानवर है उसी के बगल में, और वहीं पर आप इसको पैदा करते हैं।
0: तो श्रोताओं, आज हम जान रहे थे उर्वरक बचत हेतु धान की फसल में अजोला का प्रयोग, और इसमें बहुत सारी बातों पर डॉक्टर साहब ने आप सभी का जो ध्यान है वो आकर्षित किया। धान की फसल में प्रयोग करने वाले अजोला का उत्पादन आप कैसे करेंगे और इसका उपयोग कैसे करेंगे, साथ ही उर्वरक बचत किस तरीके से आप करेंगे, तो आज के लिए इतना ही। अगले दिन आप सभी से एक नए विषय के साथ हम जुड़ेंगे इसी फ्रिक्वेंसी 90.8 MHz पर। नमस्कार।
3: उन्नत कृषि

तैयार है आम के अद्भुत संसार से रूबरू होने के लिए। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर लेकर आ रहा है राष्ट्रीय आम समागम 2026, जिसका आयोजन 27 से 28 जून तक किया जाएगा। आइए और देखिए देश भर की सैकड़ों आम किस्मों की आकर्षक प्रदर्शनी, जहां स्वाद, सुगंध और रंगों का अनूठा संगम आपका स्वागत करेगा। इस विशेष आयोजन की थीम है स्वाद, संस्कृति और समृद्धि का संगम। आम समागम में किसानों, वैज्ञानिकों, उद्यमियों और आम प्रेमियों को एक ही मंच पर आने का अवसर मिलेगा। कार्यक्रम के दौरान आयोजित होगी राष्ट्रीय कार्यशाला, जिसका विषय है आधुनिक तकनीक से गुणवत्ता युक्त उत्पादन, भंडारण एवं प्रसंस्करण। देश के प्रतिष्ठित विशेषज्ञ आम उत्पादन, मूल्य संवर्धन और प्रसंस्करण की आधुनिक तकनीकों पर अपने अनुभव साझा करेंगे। इस अवसर पर आयोजित होगा किसान वैज्ञानिक सम्मान समारोह, जिसमें बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश के उत्कृष्ट आम उत्पादकों को बेस्ट मैंगो फार्मर अवार्ड प्रदान किया जाएगा। महिला आम उत्पादकों एवं मूल्य संवर्धन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिला उद्यमियों के लिए भी विशेष सम्मान और नगद पुरस्कार की व्यवस्था की गई है। और अब आपके लिए एक सुनहरा अवसर, यदि आपके बाग में उत्कृष्ट गुणवत्ता के आम हैं या आपके पास किसी विशेष किस्म के आम उपलब्ध हैं, आप भी आम प्रदर्शनी में अपनी आम की किस्मों को प्रदर्शित कर सकते हैं। आपकी प्रविष्टियों का मूल्यांकन विशेषज्ञों द्वारा किया जाएगा और चयनित प्रतिभागियों को आकर्षक पुरस्कार एवं नगद राशि से सम्मानित किया जाएगा। और हाँ, आम प्रेमियों के लिए होगा एक विशेष आकर्षण, मैंगो ईटिंग प्रतियोगिता। इस रोमांचक प्रतियोगिता के विजेताओं को भी आकर्षक नगद पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। तो देर किस बात की, अपने श्रेष्ठ आमों के साथ आइए, प्रदर्शनी में भाग लीजिए, विशेषज्ञों से सीखिए, नई तकनीकों को जानिए और आकर्षक पुरस्कार जीतने का अवसर पाइए। 27 से 28 जून राष्ट्रीय आम समागम 2026 बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है।

0: खांसी एक, खांसी दो, खांसी तीन, बच गई भैया देश की बीन। टीबी के कारण को जानो, खांसी हो तो मुंह ढक कर खांसो। टीबी रोग हवा में फैले, रखो अपना औरों का ध्यान। घर में धूप रोशनी हवा मिले तो कीटाणु सब मर जाएंगे, रोग मुक्त हम हो जाएंगे। खांसी खोखो खांसी। बलगम में है भरे कीटाणु, रख कागज में इसे जला दो या डाल राख में इसे दबा दो, रहे न टीबी नाम मिटा दो। खांसी खोखो खांसी। टीबी मुक्त भारत बनाए,
1: खुद भी बचे देश भी बचाए।
2: टीबी हारेगा देश जीतेगा।
3: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
4: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
3: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
4: आपकी सेहत की बातें,
3: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
4: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
3: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
4: वो कहाँ पर?
3: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
4: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
3: उन्नत कृषि। नमस्कार साथियों, आप जुड़ चुके हैं मेरे साथ 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। मैं हूं आरजे अनु और एक बार फिर हर रोज़ की तरह उन्नत कृषि कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करती हूं। दोस्तों, मशरूम की अगर बात करें तो हम सभी वाकिफ हैं इसके पोषक गुणों से और पोषक तत्व जो इसमें मौजूद होते हैं, कैसे ये बीमारियों से हमें बचाता है। पोषक तत्व बहुत सारे इसमें हमें हमारे स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी होते हैं। तो खेती की अगर बात करें तो खेती की तरफ भी किसान भाई और ख़ासतौर पर ग्रामीण महिलाओं की मैं बात करूँ तो उनके लिए ये एक बहुत अच्छा जरिया हो चुका है आज आर्थिक तौर पर मुनाफा पाने का। अब बात कर ले भूमिहीन किसान भाइयों की तो वो भी इसकी खेती आराम से कर सकते हैं। तो आज हम जानेंगे मशरूम के एक अलग प्रकार के बारे में, ऑयस्टर मशरूम के बारे में। और इस विषय को लेकर आज हमारे बीच हैं डॉक्टर संतोष कुमार। मैं आप सभी को बता दूं, ये असिस्टेंट प्रोफेसर हैं प्लांट पैथोलॉजी डिपार्टमेंट बिहार एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी सबौर में। डॉक्टर साहब स्वागत है आपका।
5: थैंक यू मैडम।
3: सबसे पहले तो ऑयस्टर मशरूम की प्रजातियों के बारे में बता दें डॉक्टर साहब, कौन कौन से अच्छे प्रजाति हैं?
5: जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ऑयस्टर मशरूम को अगर हिंदी भाषा में बोलते हैं तो ढिंगरी मशरूम बोलते हैं, जो किसानों के बीच में बहुत पहले से ही प्रचलित है
3: जी।
5: इसमें अगर प्रजातियों की बात की जाए तो एक्चुअली जीनस के नाम इसमें प्लोरोटस आता है, तो उसमें प्लोरोटस सोजोर काजू, प्लोरोटस ऑस्ट्रिएटस, कई सारी प्रजातियाँ होती हैं, जिसमें दो मुख्य प्रजातियाँ जो हमने अभी बताया, ऑस्ट्रस प्लोरोटस ऑस्ट्रिएटस और प्लोरोटस सोजोर काजू। तो ये डेजेमर भी एक वैरायटी है, तो ये तीन प्रजातियाँ बेसिकली फेमस मानी जाती है। एक है प्लोरोटस फ्लोरिडा जो बिल्कुल व्हाइट कलर का होता है, और ये बेसिकली जो टेम्परेचर बहुत कम होता है ठंडक में, उसमें इसको उगाया जा सकता है। और अगर हम प्लोरोटस सोजोर काजू की बात की जाए, तब जब टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ता है, मान लीजिए फरवरी में थोड़ा सा टेम्परेचर 25 के या 26 तक पहुंचता है, उस समय प्लोरोटस सोजोर काजू की खेती आराम से कर सकते हैं। तो ये दो तीन प्रजातियां हैं जो ऑयस्टर मशरूम या ढिंगरी मशरूम में प्रचलित हैं किसानों के बीच में
3: जी। तो ये तो हो गई प्रजातियों की बात, और खासियत के बारे में बताएं डॉक्टर साहब, की अन्य जो मशरूम के प्रकार है उनसे कैसे खास है?
5: खास बात इसमें होती है, इसकी खेती करना बहुत ही आसान है। इसकी खेती करने के लिए आपको बहुत कुछ सामान की जरूरत नहीं पड़ती है, बस अगर पोषाहार की बात की जाए तो इसमें गेहूं का भूसा या कुछ हमारे जो दलहन भूसा होते हैं, जैसे चने का भूसा, मसूर का भूसा, या आप तिल का भूसा भी ले सकते हैं। और इसको आप एक नाइट पानी में भिगो देते हैं, दूसरे दिन आप इसमें इसको सुखा के बिजाई कर देते हैं। और तो इसलिए इसमें दूसरे मशरूमों से इसलिए अलग है कि इसकी खेती करना बिल्कुल आसान है, और अगर तत्व की बात की जाए, प्रोटीन न्यूट्रिएंट्स की बात की जाए, तो ये दूसरे मशरूमों से कम नहीं है
3: जी। मतलब इसमें बहुत सारे पोषक तत्व मिलेंगे। और इसके बाद बात करते हैं खेती की, तो किस समय इसकी खेती की जाती है मुख्य तौर पर?
5: जी मैडम, अगर खेती की बात की जाए तो वैसे तो ये ठंडक का मशरूम है, ठंडक में इसकी खेती आसानी से की जा सकती है, बिना कोई बाहर से अवरोध दिए हुए।
3: मतलब टेम्परेचर इसमें कम चाहिए?
5: जी मैडम, टेम्परेचर कम चाहिए। टेम्परेचर की बात करते हैं हम, तो ये 22 डिग्री सेंटीग्रेड से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसकी आराम से खेती की जा सकती है। जैसे हमने अभी एक स्पीसीज की बात की थी प्लोरोटस सोजोर काजू, इसकी खेती हम 28 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक कर सकते हैं। अगर मंथ की बात की जाए तो हम अक्टूबर से मार्च तक इसकी खेती आराम से कर सकते हैं
3: जी,
5: बिना कोई रुकावट किए हुए।
3: मतलब ये ठंड के मौसम में इसकी खेती ज्यादा कर सकते हैं। और अब पोषाहार की बात करते हैं डॉक्टर साहब, तो कौन कौन से पोषाहार की जरूरत होती है इसकी खेती?
5: अगर पोषाहार की बात की जाए तो हम भूसा की जरूरत पड़ती है इसमें है। भूसा बेसिकली हमारे बिहार में गेहूं की खेती खूब होती है, तो गेहूं को हम रोग प्रयोग कर सकते हैं अच्छे से, और गेहूं का भूसा ही सबसे अच्छा माना जाता है। इसके अलावा मक्के की खेती भी बहुत अच्छे से होती है, तो मक्के की कुट्टी को काट कर हम भूसे के रूप में बदल कर उस पर हम लोग खेती कर सकते हैं। इसके अलावा जो किसान भाई जिनके खेत में दलहन का भूसा, दलहन की खेती होती है, जैसे चना हुआ, मटर हुआ, मसूर हुआ, उसका भी भूसा हम इसकी खेती के लिए प्रयोग में ला सकते हैं
3: जी। और एक अगर खेती की बात कर रहे हैं तो क्या कुछ ये प्रक्रिया होती है इसकी खेती के लिए, वो भी जानना चाहेंगे, कैसे स्टार्ट करें हम?
5: जी मैडम, जैसे आपने अभी बताया था कि ये बिना खेत की खेती है, तो इसमें खेत की खेत की जरूरत नहीं पड़ती है। बस एक छोटी सी झोपड़ी आप बना लीजिए, झोपड़ी के अंदर आप या तो मेज या चचरी बना लीजिए बांस की, उस पे आप बैग मेज की खेती की जाती है क्लस्टर मशरूम की। तो इसके लिए आपको मान लीजिए भूसा की बात किया, तो गेहूं मान लीजिए आपने गेहूं का भूसा लिया, तो उसको आप एक रात भिगोएंगे पानी में
3: जी।
5: भिगोने के बाद उसको शाम को भिगो दिया आपने, और सुबह दूसरे दिन उसको भूसे को ड्रम या किसी से बाहर निकाल लिया। निकालने के बाद उसको 4-5 घंटे इसको छाया में सुखाते हैं। सुखाने के बाद इसमें बिल्कुल, जब हम सुखाने के बाद कितना हम ये कैसे ज्ञात करते हैं कि ये हमारा भूसा बीज में बीज मिलाने लायक हो गया, तो हम मुट्ठी में भूसे को पकड़ते हैं और प्रेस करते हैं मुट्ठी को, तो अगर पानी मुट्ठी से बाहर नहीं निकलता है तो इसका मतलब मान लेते हैं कि ये भूसा हमारा बिजाई के लायक हो गया, तब इसमें हम बिजाई करेंगे। बेसिकली 1 kg बीज से हम लोग 10 बैग भर सकते हैं। बैग का जो साइज होगा 45x35 cm, 35 cm चौड़ाई होगी और 45 cm लंबाई होगी। उस एक बैग में लगभग 3 kg भूसा आएगा, तो 3 kg भूसा में हम 100 ग्राम बिजाई मशरूम की बीज की करेंगे
3: जी।
5: और उसके बाद हम जब बैग आपका बिजाई हो जाए अच्छी तरह से, बैग को हम टाइटली बांध देंगे और बैग में 15-16 छिद्र कर देंगे चारों तरफ, और उसको फिर हम मशरूम हट में रख देंगे। और मशरूम हट में रखने के बाद आप 10 दिन बाद देखेंगे कि जो बैग है, बैग के अंदर सफ़ेद सफ़ेद मशरूम की माइसीलियम फैल जाएगी। जब सफ़ेद सफ़ेद मशरूम की माइसीलियम बैग के अंदर फैल जाए, तब आप उसमें सुबह शाम हल्का सा 1000 के रूप में पानी का स्प्रे बैग में करेंगे, और सफ़ेद माइसीलियम निकलने होने के लगभग 10 दिन बाद आपको मशरूम की पहली फलन प्राप्त होगी। इस तरीके से आप एक बार बैग से 3 मशरूम के फलन प्राप्त कर सकते हैं।
3: तो ये तो पूरी प्रक्रिया हुई कि कैसे इसके ऑयस्टर मशरूम की हम खेती कर सकते हैं। प्रबंधन की बात करें, कुछ उसमें देखरेख की जरूरत होती है, सावधानी की जरूरत होती है?
5: अगर प्रबंधन की बात किया है तो पहले तो जो हमारा झोपड़ी है उसको उसमें उसके अंदर साफ सफाई रखना चाहिए, और झोपड़ी के 1-2 मीटर तक चारों तरफ से 2-3 मीटर तक किसी प्रकार का कोई खरपतवार या जंगल नहीं होना चाहिए। एक चीज और ध्यान देना चाहिए, जब हम पोषाहार लेते हैं तो पोषाहार में किसी तरीके की बदबू या महक नहीं आनी चाहिए, कोई उसके अंदर दूसरा कवक या कीड़ा मकोड़ा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा आपको लगता है कि कुछ ऐसा हो सकता है, तब आपको भूसा को, जब हम भूसा को पानी में भिगोएंगे एक रात के लिए, उस समय हम 2 केमिकल का प्रयोग भूसे में करेंगे पानी में। तो अगर मान लीजिए 1 क्विंटल अगर 50 kg भूसा को हमको भिगोना है, तो आप 80-90 लीटर ड्रम में पानी ले लीजिए, ड्रम में या किसी नाद में सीमेंट की, उसमें हम 1 क्विंटल 100 लीटर पानी के लिए लगभग 80 ग्राम बेबस्टीन केमिकल और 100 ml फार्मलिन सॉल्यूशन उसमें घोल देंगे, और उसके बाद उसमें भूसे को हम डिप कर देंगे, डुबो देंगे एक रात के लिए, जैसे हमने पहले बताया, और सुबह इसको हम लोग उसे निकाल देंगे, तो कोई भी कीड़ा मकोड़ा होगा तो वो भूसे से एक केमिकल दोनों उसको मार देंगे। तो ये सावधानी पहले बरतनी है। इसके बाद सबसे मुख्य बात होती है कि जब हम बिजाई करते हैं उस समय हम ये देखते हैं कि भूसे में बहुत ज़्यादा नमी नहीं होनी चाहिए, 70-75% नमी होनी चाहिए। अगर ज़्यादा नमी होगी तो मशरूम जो बीज बोया है वो उसमें जो वाइट सफ़ेद माइसीलियम है वो नहीं आएगी, क्योंकि उसमें मॉइस्चर ज़्यादा है और मशरूम उसी में ही मर जाएगा। तो ये बहुत बड़ी सावधानी की बात है। नंबर 3, जब हम बिजाई, जब हम बैग में मशरूम निकलने लगता है उस समय हम ये ध्यान दे, क्योंकि सुबह शाम को 1000 के रूप में हल्का सा पानी देने की जरूरत पड़ती है, लेकिन पानी कभी नहीं देना चाहिए जब उसमें फ्रूटिंग फल हो लगा हुआ। तो फल लगते समय हम उस पर बैग पे स्प्रे नहीं करेंगे, हमेशा फल तोड़ने के बाद ही स्प्रे करेंगे, नहीं तो जो फल पे अगर स्प्रे कर देंगे तो जो फल का कलर बदल जाएगा, और आप जब बेचने जाएंगे मार्केट में तो वो उसको कोई नहीं खरीदेगा, क्योंकि वो देखने में नहीं अच्छा लगेगा। तीसरी बात ये कि ये बीच बीच हम हटके जब हम मतलब एक फलन आपने तोड़ एक एक बैग से पूरा तीनों फलन तोड़ने के बाद जब हम दोबारा बैग लगाएंगे तो अच्छे से बैग झोपड़ी की सफाई करने के बाद उसमें हम किसी दवा का स्प्रे कर देंगे, जैसे बेफेस्टिन का स्प्रे कर देंगे, जिससे कि उसमें जो भी अगर कोई रोग वगैरह हो वो निकल जाना चाहिए। और ये भी एक खास बात ध्यान देनी चाहिए कि झोपड़ी के अंदर लोगों का आना जाना कम होना चाहिए। जो जो मैन जो आदमी उसको उसकी देख रेख कर रहा है वही सुबह शाम अंदर जाए, और बेफालतू में झोपड़ी को खुला नहीं रखना चाहिए। ये सावधानियाँ
3: तो ये कुछ सावधानियाँ हैं, प्रबंधन है जब आप ओयस्टर मशरूम की खेती कर रहे हैं तो। और मुझे लगता है कि यहाँ पर जो भी बातें डॉक्टर साहब ने बताई हैं ओयस्टर मशरूम की खेती के लिए काफ़ी है। आप अगर इसकी खेती करना चाहते हैं तो इस वार्ता को सुनकर आपको बहुत कुछ जानने को मिल जाएगा, क्या कुछ सावधानियाँ बरतनी है, कौन से पोषाहार का इस्तेमाल करना है, आपको किस समय इसकी खेती की जाती है ये भी आपने जान लिया, कितना टेम्परेचर होना चाहिए। तो आशा करते हैं आज आपको लाभ मिलेगा आज के इस वार्ता से, और अगले दिन एक अलग विषय के साथ हाजिर होंगे इसी फ्रीक्वेंसी पर। तब तक के लिए नमस्कार। उन्नत कृषि।

तैयार है आम के अद्भुत संसार से रूबरू होने के लिए। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर लेकर आ रहा है राष्ट्रीय आम समागम 2026, जिसका आयोजन 27 से 28 जून तक किया जाएगा। आइए और देखिए देश भर की सैकड़ों आम किस्मों की आकर्षक प्रदर्शनी, जहां स्वाद, सुगंध और रंगों का अनूठा संगम आपका स्वागत करेगा। इस विशेष आयोजन की थीम है स्वाद, संस्कृति और समृद्धि का संगम। आम समागम में किसानों, वैज्ञानिकों, उद्यमियों और आम प्रेमियों को एक ही मंच पर आने का अवसर मिलेगा। कार्यक्रम के दौरान आयोजित होगी राष्ट्रीय कार्यशाला, जिसका विषय है आधुनिक तकनीक से गुणवत्ता युक्त उत्पादन, भंडारण एवं प्रसंस्करण। देश के प्रतिष्ठित विशेषज्ञ आम उत्पादन, मूल्य संवर्धन और प्रसंस्करण की आधुनिक तकनीकों पर अपने अनुभव साझा करेंगे। इस अवसर पर आयोजित होगा किसान वैज्ञानिक सम्मान समारोह, जिसमें बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश के उत्कृष्ट आम उत्पादकों को बेस्ट मैंगो फार्मर अवार्ड प्रदान किया जाएगा। महिला आम उत्पादकों एवं मूल्य संवर्धन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिला उद्यमियों के लिए भी विशेष सम्मान और नगद पुरस्कार की व्यवस्था की गई है। और अब आपके लिए एक सुनहरा अवसर, यदि आपके बाग में उत्कृष्ट गुणवत्ता के आम हैं या आपके पास किसी विशेष किस्म के आम उपलब्ध हैं, आप भी आम प्रदर्शनी में अपनी आम की किस्मों को प्रदर्शित कर सकते हैं। आपकी प्रविष्टियों का मूल्यांकन विशेषज्ञों द्वारा किया जाएगा और चयनित प्रतिभागियों को आकर्षक पुरस्कार एवं नगद राशि से सम्मानित किया जाएगा। और हाँ, आम प्रेमियों के लिए होगा एक विशेष आकर्षण, मैंगो ईटिंग प्रतियोगिता। इस रोमांचक प्रतियोगिता के विजेताओं को भी आकर्षक नगद पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। तो देर किस बात की, अपने श्रेष्ठ आमों के साथ आइए, प्रदर्शनी में भाग लीजिए, विशेषज्ञों से सीखिए, नई तकनीकों को जानिए और आकर्षक पुरस्कार जीतने का अवसर पाइए। 27 से 28 जून राष्ट्रीय आम समागम 2026 बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है।

0: कितनी गंभीर बीमारी है। टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MR टीका 9 से 12 महीने और दूसरा MR टीका 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर है, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MR टीका लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हो तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है किसान भाई बहनों को संबोधित हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। उन्नत कृषि में आज हम बात करने वाले हैं धान की बुआई की विभिन्न तकनीकों के बारे में। किसान भाई बहनों, हम सब जानते हैं कि धान हमारे लिए एक प्रमुख खाद्यान्न है, साथ ही हमारी कृषि अर्थव्यवस्था को भी मजबूत बनाता है, इसलिए कई मायनों में धान काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए जरूरी है कि धान की फसल अच्छी हो, उपज अच्छी हो, और इसके लिए बहुत जरूरी होता है कि किसान भाई बहन ये समझे, ये जाने कि किस तरह की मिट्टी में किस तरह की बुआई करनी चाहिए। आइए इस बारे में जानते हैं डॉक्टर गायत्री कुमारी से। मैम, आप हैं असिस्टेंट प्रोफेसर कम जूनियर साइंटिस्ट, आप हैं सस्य विज्ञान विभाग से। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
5: जी धन्यवाद उमा, नमस्कार।
4: मैम, आपसे सबसे पहला सवाल कि धान की बुआई की कितने प्रकार की तकनीकें होती हैं?
5: विशेषतः धान की बुआई जो हम करते हैं वो कई हद तक डिपेंड करती है कि किस तरह की मिट्टी है या किस तरह का जल वहाँ पे अवेलेबल है। तो अगर हम तरीकों की बात करें, विभिन्न तकनीकों की बात करें, तो बेसिकली 3-4 तकनीकें होती हैं। एक होती है डायरेक्ट सोइंग, जिसको हम सीधी बुआई बोलते हैं। एक होती है ट्रांसप्लांटिंग, जिसको हम रोपाई विधि बोलते हैं। उसके बाद होती है श्री विधि, जिसको हम सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन बोलते हैं। और एक होती है मैकेनिकल सीडिंग, जिसमें हम अगर ड्रम सीडर वगैरह कोई मशीन्स यूज करके हम बुआई करते हैं बीज की। तो ये कुछ तकनीकें होती हैं। अब किसानों के पास जो भी फैसिलिटी अवेलेबल है, कैसा ज़मीन है, उस पर जल जमा हो रहा है या नहीं, या मिट्टी किस तरह का है, तो उस पर डिपेंड करता है कि वो किस तरह की बुआई तकनीकें इस्तेमाल करना चाहते हैं।
4: जी मैम, तो मैम आप इन तीनों तकनीकों को विस्तार से समझा दीजिए।
5: पहली जो हमारी डायरेक्ट सोइंग यानी सीधी बुआई हो गई, तो डायरेक्ट सोइंग कहने का मतलब ही है कि हम या जब बुआई कर रहे हैं तो हम सीधे अपने जो मेन लैंड है, अपनी जो ज़मीन है, उस पर हम सीधे बुआई कर रहे हैं। तो दो प्रकार की डायरेक्ट सोइंग होती है, यानी सीधी बुआई दो तरीके के होती हैं। एक तो हमारी सूखी बुआई होती है और एक गीली बुआई होती है। सूखी को जिसको हम ड्राई DSR बोलते हैं और गीली बुआई जिसको हम वेट DSR बोलते हैं। तो सूखी क्या होती है कि जब किसानों के पास अगर पानी, वर्षा नहीं हो रही है बहुत ज़्यादा, या फिर पानी की कमी है, इरिगेशन नहीं दे पा रहे हैं, तो उस समय जल जमाव बहुत कम होता है ज़मीन पे। तो उस केस में क्या कर सकते हैं कि जब हम वर्षा, जैसी पहली वर्षा आती है उसमें हम प्लाविंग करते हैं और उसको सूखने के बाद, मतलब ज़मीन हमारी जो होती है वो हल्की सूखी होती है, और उसके बाद हम उसकी बुआई करते हैं, अपने धान की बुआई करते हैं। और दूसरी जो होती है गीली बुआई, गीली DSR जो होती है, उसमें जब अगर हमारे पास पहले क्या करते हैं DSR जिसको बोलते हैं, उसमें हम थोड़ा इरिगेशन दे देते हैं। वर्षा अगर रहती है तो मिट्टी काफ़ी गीली रहती है, तो हम उस समय प्लविंग करते हैं, उसके बाद हम पानी के ड्राई होने का वेट करते हैं। और जब हमारी मिट्टी में फील्ड कैपेसिटी जिसको बोलते हैं, यानी कि जब हल्की बहुत मॉइस्चर रहे मिट्टी में, तो हम सीधी बुआई करना चालू करते हैं धान की। अब सीधी बुआई करना कैसे है, हम सीधी बुआई करने के लिए जैसे धान की कोई भी वैरायटी है, अगर आप उसकी स्पेसिंग तो पहले देख लेते हैं, मतलब जनरली 20 पाइप 10 के स्पेसिंग पे हम बुआई करते हैं, तो क्या करेंगे कि हम लाइन 20 रो, जो हमारी रो के रो की डिस्टेंस होती है वो होती है 20 सेंटीमीटर, तो 20 सेंटीमीटर की दूरी पे हम जब रो बनाते हैं उस पे लाइन, तो हम लाइन बनाकर और उस पे जो धान होता है उस पे सीधे तरीके से धान हम गिराते जाते हैं, उसको हम लाइन सोइंग बोलते हैं, और उसके बाद हम उसकी थिनिंग करके उसकी डिस्टेंस को मेनटेन करते हैं 10 सेंटीमीटर। तो इस तरह की सीधी बुआई से क्या फ़ायदे होते हैं कि हम काफ़ी हद तक पानी की बचत करते हैं, हमें बहुत ज़्यादा मिट्टी को कोड़ना नहीं पड़ा या पडलिंग नहीं करनी पड़ी, मजदूरी कम हो जाती है इसके वजह से, और काफ़ी हद तक समय की भी बचत होती है। जिन किसानों के पास मतलब पानी या जल जमाव नहीं है या पानी का फैसिलिटी नहीं है, तो उस केस में हम DSR जाते हैं, और DSR से काफ़ी सारे फ़ायदे भी होते हैं, जैसे कि हमारे काफ़ी उसकी जो उपज होती है वो काफ़ी अच्छी होती है, और पानी जब बचता है, पानी मतलब पानी की बहुत ज़्यादा खपत नहीं होती है DSR में। दूसरी होती है हमारी ट्रांसप्लांटिंग विधि। तो ट्रांसप्लांटिंग विधि में क्या होता है कि पहले हमें नर्सरी लगाना होता है, तो नर्सरी हम अलग जगह करते हैं, और फिर जब नर्सरी का पौधा हमारा 20 से 25 दिन का हो जाता है, तो उस 20 से 25 दिन पुराने पौधे को हम उखाड़ कर एक एक करके हम उसको ज़मीन में लगाते हैं, हमारे मेन लैंड में लगाते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जब हम नर्सरी लगाते हैं तो नर्सरी में जब बुआई कर रहे हैं तो नर्सरी मेन लैंड जब हम अपना प्रिपेयर कर रहे हैं उसके, समझ लीजिए मेन लैंड के सोइंग के 20 से 25 दिन पहले हमें अपना नर्सरी तैयार करके अपना बिछड़ा गिरा देना होता है। तो नर्सरी भी हम कई तरीके से तैयार करते हैं, चाहे वेट नर्सरी हो गया, ड्राई नर्सरी हो गया, डेपॉग नर्सरी हो गया, जो भी। तो अब हम जनरल जब बिछड़ा गिरा देते हैं तो उसके बाद 20 से 25 दिन के बाद क्या होता है कि जब हमारा धान में दो पत्तियां, दो लीफ जब अंकुरित होकर निकल आती हैं, तो उस समय उसको हम निकालते हैं और अपने मेन लैंड की तैयारी जो हमने कर रखी होती है, मेन लैंड की तैयारी कैसे करनी होती है, पडलिंग करना होता है, इरिगेशन करके उसको अच्छे से कोड़ना होता है, ताकि जब हम बीज निकाल रहे हैं, जो सीडलिंग्स हम जो निकाल रहे हैं उसके जड़ें काफ़ी अच्छे से पकड़ ले हमारी मिट्टी को, तो इसके लिए हमें पडलिंग की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है।
4: पडलिंग यानी कि
5: हम कई बार, एक पडलर होता है तो पडलर से हम कई बार मिट्टी को कोड़ रहे, अच्छी तरह से मिट्टी को मिला रहे, हमने पानी दिया, इरिगेशन दिया अपने मिट्टी में, और उसके बाद हमने कई बार पडलर चला दिया। इससे क्या होता है कि जो मिट्टी, जो बड़े बड़े ढेर थे वो अच्छे अच्छे फाइन मतलब काफ़ी छोटे छोटे कणों में टूट जाते हैं, और ये टूट जाने से क्या होता है कि वो काफ़ी स्टिकी मतलब काफ़ी अच्छे से वो जड़ों को पकड़ लेते हैं। तो जब हम ट्रांसप्लांट करेंगे, मतलब जब हम वो सीडलिंग्स को, हम अपने बिछड़े जब हमारे बड़े हो जाते हैं, दो पत्ते जितने बड़े हो जाते हैं, तो उसको हम जब उखाड़ते हैं और दोबारा मेन लैंड में ला कर लगाते हैं, तो वो मेन लैंड में काफ़ी अच्छे से उनकी जड़ें पकड़ लेती हैं। तो इसलिए पडलिंग करना बहुत ज़रूरी हो जाता है हमारे मेन लैंड के लिए, इस केस में जब हम ट्रांसप्लांटिंग कर रहे हैं तब। तो ट्रांसप्लांटिंग में क्या किया हमने, पहले नर्सरी तैयार किया, जब हमारा बिछड़ा गिराया हमने, और जब वो 20 से 25 दिन पुराना हो गया तो हमने उस बिछड़े को, हमने उस पौधे को, मतलब हमने उस सीडलिंग को निकाला, और निकाल कर उसने मेन लैंड में उसको ट्रांसप्लांट कर दिया। और ट्रांसप्लांट करने के समय हमें ये ध्यान जरूर रखना है कि हमारी मिट्टी की पडलिंग काफ़ी अच्छे से हो गई हो, अतः क्या होगा कि जड़ें हमारी जो पौधे रहेंगे उसके जड़ें पकड़ेंगे नहीं मिट्टी पे, तो इसलिए ट्रांसप्लांट करना बहुत ज़रूरी होता है। और इस पे कुछ विशेष ध्यान रखनी पड़ती है हमारी ट्रांसप्लांटिंग में, वो ये कि जब हम ट्रांसप्लांट करते हैं तो उसमें दूरी अच्छे से मेंटेन होनी चाहिए, 20 से 25 या 20 से 10, मतलब 20 बाई 10 या 20 बाई 25, ये हमारा 20 बाई 10 या 20 बाई 15, तो ये हमारा ट्रांसप्लांटिंग करने का स्पेस होता है, यानी दो रो टू रो के बीच की स्पेसिंग हमारी 20 होती है और

से कर सकते हैं। तो जिस जगह पे पानी का जल जमाव नहीं होता उस केस में हम DSR कर सकते हैं। तो ये फर्क हो गया। और तीसरी विधि हो गई जो हमारी श्री विधि। तो श्री विधि तो और साइंटिफिक विधि हम जिसको बोलते हैं सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन, ये थोड़ा साइंटिफिक इसलिए हो जाता है क्योंकि इसमें किसानों को विशेषतः बहुत सारे चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। पहली चीज़ें तो हो गई हमारी नर्सरी की प्रिपरेशन। तो जो हम नर्सरी तैयार करते हैं, अभी जैसे मैंने ट्रांसप्लांटिंग के समय बताया हमने कहीं पे भी नर्सरी लगा दिया 20 से 25 दिन पे, तो उस केस में हमारे SRI के केस में क्या होता है कि हम जो नर्सरी तैयार करते हैं वो काफ़ी एरिया में, छोटे एरिया में करते हैं, और या तो हम डिपॉग नर्सरी भी तैयार करते हैं। तो उस डिपॉग नर्सरी में क्या होता है कि जब पौधे जो आपके 12 से 14 दिन के हो जाते हैं, तो उस केस में हम 12 से 14 दिन के पुराने पौधों को हम उठाकर उसको अलग अलग कर करके और फिर हम मिट्टी में लगाते हैं। तो यहाँ पे भी हम ट्रांसप्लांटिंग ही कर रहे हैं, पर ये ट्रांसप्लांटिंग से अलग इसलिए है क्योंकि यहाँ पे पहले तो हमने नर्सरी जो लगाया था पहले तो वो 20 से 25 दिन पुराना था। यहाँ पे जो हमारा नर्सरी है वो हम 10 से 12 14 दिन पुरानी सीडलिंग को ही उठाकर हम मिट्टी में लगाते हैं। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमने जो अपनी मिट्टी को तैयार किया है वो और भी ज़्यादा हद तक, कई ज़्यादा हद तक पडलिंग हमने किया है। हमारी जो मिट्टी जो तैयार हुई है वो एकदम स्टिकी होती है, मतलब क्लेई होती है। स्टिकी मतलब कि जैसे आप हाथ से उठाइएगा तो चिपचिपी मिट्टी लगेगी। तो हमने मिट्टी को इस तरह से तोड़ देना है पडलर से। तो हम इरिगेशन देते हैं, पानी की कोई कमी नहीं होती हमारे खेत पे, हमने इरिगेशन दे दिया, मिट्टी पडलिंग कर दिया कई बार, और उसके बाद पडलिंग करके हमने अपने मिट्टी को इतने छोटे छोटे कण में तोड़ दिया कि जो छोटे छोटे ट्रांसप्लांटेड सीडलिंग्स जो हम निकाल रहे हैं अपने डिपॉग नर्सरी से वो काफ़ी अच्छे से चिपक जाते हैं। इसमें जो एक दूसरी ध्यान हमें ये देनी है कि जो हम स्पेसिंग मेंटेन करते हैं वो 25-25, मतलब 25-25 रो टू रो होता है डिस्टेंस, और 25-25 प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस मेंटेन करते हैं श्री विधि में। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि हम मानते हैं कि श्री विधि के जो छोटे छोटे जो सीडलिंग्स हैं अगर हम उनको ज़्यादा जगह देंगे तो उससे ज़्यादा टिलर्स निकलेंगे, मतलब ज़्यादा सेकेंडरी रूट्स, सेकेंडरी स्टेम्स निकलेंगे। तो इसलिए हम क्या करते हैं इसमें कि हम ये स्पेसिंग मेंटेन ज़रूर करते हैं 25x25 सेंटीमीटर का। दूसरी चीज़ कि जब हमने ट्रांसप्लांटिंग पहले जैसे किया था तो उसमें हमने सीडलिंग्स जो 20 से 25 दिन पुराना निकाला था तो उसमें हमने एक जगह पे, जिसको हिल बोलते हैं, कई बार होता है कि हमने एक जगह पे एक से दो सीडलिंग्स डाल दिए, पर हमें श्री विधि में एक तरीका विशेष ध्यान ये देना होता है कि एक जगह पे हमें एक ही सीडलिंग डालना है और उसको बस चिपका देते हैं, बहुत ज़्यादा अंदर गाड़ते नहीं है उसको, बस वो इतना छोटा पौधा होता है कि वो आराम से आप अंगूठे से प्रेस कीजिएगा तो वो चिपक जाएगा। तो ये होता है, ये कुछ चीज़ें जो हमें विशेषतः ध्यान देनी होती है। तो पहला चीज़ ये हो गया कि नर्सरी 10 से 14 दिन होनी चाहिए। दूसरी चीज़ ये कि जब आप उसको हटा रहे हैं, जब आप हर सीडलिंग्स को अलग कर रहे हैं तो एक एक सीडलिंग को ही हम एक जगह पे डालते हैं और बहुत ज़्यादा ज़ोर से मतलब अंदर घुसाते नहीं, जस्ट मतलब हमको बस थोड़ा सा उसको चिपका देना है, मिट्टी पे सटा देना है, वो अपने आप खड़े हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने आप बहुत काफ़ी अच्छे से टेलरिंग होती है उसकी और काफ़ी ज़्यादा ईल्ड भी होती है। तो ये साइंटिफिक हमारा रिसर्च कहता है कि जब हम श्री विधि में लगाते हैं, प्रॉपर साइंटिफिक वे में धान लगाते हैं, तो हमारा ईल्ड जो होता है धान का, जो हमारा उपज जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर होता है बाकी दोनों विधियों से। तो ये हो गई हमारे श्री विधि की कुछ और विशेषता। ध्यान इसमें ये देना होता है कि श्री विधि में हम जो, जैसे आपने, हमने नॉर्मल ट्रांसप्लांटिंग किया था तो उसमें हमने कहा था कि पानी को हमें 3 से 5 सेंटीमीटर तक मेंटेन रखना है स्टेजेस में उन पौधे में। तो लेकिन श्री विधि में क्या होता है कि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता कि हमें हर समय 2 से 5 सेंटीमीटर का पानी उसमें जमा करके रखना है, नहीं। हम क्या करते हैं, अगर किसानों के पास जैसे अगर इरिगेशन की फैसिलिटी नहीं है, इसमें हम अल्टरनेट ड्राइंग एंड वेटिंग मेथड इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप पानी दे रहे हैं उसके बाद हम देखते हैं कि कुछ दिन बाद जब मिट्टी में हल्के हल्के क्रैक्स, एकदम पतले सुई धागे जितने पतले क्रैक्स अगर जब नज़र आने लगे तो ही हम दूसरा इरिगेशन देते हैं। तो इसको हम अल्टरनेट ड्राइंग एंड वेटिंग मेथड बोलते हैं, जो कि हम श्री विधि में विशेषतः इस्तेमाल करते हैं। तो इससे क्या हुआ कि हमारे पानी बचे रहे और काफ़ी साइंटिफिक तरीके से हमने जल को उसी समय डाला जब प्लांट पौधे को उस जल की आवश्यकता है, ना कि हमने हर समय डालकर
अपने जल की भी बर्बादी की, और मतलब पौधे को जब ज़रूरत है तो ही हम जल डाल रहे हैं इसमें श्री विधि में, तो ये होती है। और इसके अलावा एक चीज़ का मतलब जिसको हम लिमिटेशन बोल सकते हैं श्री विधि की, वो ये होती है कि थोड़े लेबर भले ज़्यादा लगते हैं इसमें, पर इसमें उपज

0: जो कहते हैं उपज काफ़ी हद तक बेहतर आती है श्री विधि से अगर हम बुआई करें तो, अगर ट्रांसप्लांटिंग या DSR की अपेक्षा करें, तुलना करें तो उससे ज़्यादा श्री विधि में हम पाते हैं अगर आप साइंटिफिकली बुआई उसकी करें तो। तो ये हमारी 3 तकनीकें थी। इसके अलावा एक होती है कि अगर किसानों के पास मैकेनिकल सीडिंग की अगर उनके पास सुविधा है, तो जैसे ड्रम सीडर मेथड हो गया, तो इसमें क्या होता है कि ड्रम सीडर एक मशीन आता है जिससे सीधे सीधे अंकुरित बीजें जो होती हैं वो ड्रम सीडर में हम डालते हैं और ड्रम सीडर को चलाते हैं, और जैसे चलते जाएगा वैसे वैसे वो सीडलिंग की बुआई होते जाएगी कुछ अपने डिस्टेंस पे। तो वो ड्रम सीडर होता है क्या, वो ऐसा मशीन होता है जिसे चक्के पे कुछ 20-25 सेंटीमीटर की दूरी पर कांटे होते हैं, तो जब जब हम उसको चलाएंगे तो वो कांटे के साथ साथ वो छेद मतलब उसी कांटे से वो जो अपना अंकुरित बीज है वो निकल कर और अपने निर्धारित स्पेस पर अपने आप लगते जाएगा जैसे जैसे हम उस मशीन को चलाएंगे। तो ये तो तब बात हो गई जब अगर किसानों के पास ये मशीन है। अगर किसानों के पास ये मशीन नहीं है तो ऊपर में से जो मैंने 3 बताए आप उन 3 में से किसी भी तकनीकों को इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पे जल आपके पास कितना अवेलेबल है, आप कितना खर्च कर सकते हैं, उस पे डिपेंडेंट है ये सब।
1: जी मैम, मैम इन तकनीकों को समझाते हुए कई बार आपने नर्सरी के बारे में बात की और एक बार आपने ये भी कहा कि कई प्रकार की नर्सरियां होती है।
0: जी
1: तो मैम कितने प्रकार की नर्सरी होती है?
0: बेसिकली ये तो जब मैंने नर्सरी का बात करना इसमें इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि जब हम तीनों जब हमने विभिन्न तकनीकें की बुआई करने की जब बात की तो उसमें हम नर्सरी एक ही तरीके का नहीं लगाते। जैसे मैंने अभी बताया कि नर्सरी जो हमारी श्री विधि में थी वो डिपॉग नर्सरी होती है। अगर हम ट्रांसप्लांट करें तो हम वेट नर्सरी भी कर सकते हैं, ड्राई नर्सरी भी कर सकते हैं। और DSR क्या होता है, DSR में तो हम डायरेक्टली बुआई कर रहे हैं तो उसमें हमें नर्सरी लगाने की ज़रूरत नहीं होती। तो नर्सरी बहुत हद तक हमें डिपेंड करता है कि हम कब अपने पौधे की बुआई करना चाहते हैं। जैसे कभी क्या हो गया कि अगर हमारे हम जो धान के पहले हमने जिस पौधों को लगा रखा है अगर उसके काटने के बाद हमारे पास ज़्यादा समय अगर नहीं है धान को लगाने के, तो उस केस में हम क्या करते हैं कि हम नर्सरी अपना तैयार कर लेते हैं। तो जैसे ही हम अपना पौधा काटेंगे तो तुरंत से उसकी ट्रांसप्लांटिंग कर सकेंगे। तो अब नर्सरी बेसिकली 3 तरीके की होती है। एक होती है अपलान नर्सरी, एक लोलान नर्सरी और तीसरी होती है डिपॉग नर्सरी। तो अपलान नर्सरी हम वहाँ इस्तेमाल करते हैं जहाँ पर ज़्यादा पानी नहीं है, किसानों के पास इरीगेशन की फैसिलिटी नहीं है, सिंचाई का कोई फैसिलिटी नहीं है। तो उसमें क्या कर सकते हैं किसान, उसमें ड्राई मेथड से करना क्या होता है कि हम उसमें जो हमारा अपलैंड ज़मीन होता है, अपलैंड ज़मीन मतलब कि जहाँ पे पानी जल जमाव ना हो, तो उसमें हम उसको छोटे छोटे उस जो मिट्टी है जो हमारी ज़मीन है उनको हम छोटे छोटे बेड में बांट लेते हैं। तो जैसे 1 से 1.5 मीटर के चौड़ाई तक के बेड में बांट लेते हैं। अब हम क्या करते हैं कि जो हमारा जो धान रहता है हम उसको पहले अंकुरित करा देते हैं, जिसको हम बोलते हैं प्री जर्मिनेटेड सीड। तो आपको क्या करना है कि पहले 1 दिन 72 घंटे के लिए आपको जो धान है उसको पानी में भिगो कर रखना है। देखिएगा कि जब उसमें अंकुरण थोड़ी सी हो जाए तो उसको उस जौ को हम क्या बोलते हैं प्री जर्मिनेटेड सीड। तो उस जौ को आपको छिड़क देना है, जो आपने अभी बेड बनाया था उसके ऊपर आपको स्प्रेड कर देना है और उसको अच्छे से हल्के हाथ से प्रेस कर देना है। प्रेस करने के बाद आप उसके ऊपर गनी बैग मतलब जो जूट के बैग होते हैं उसके ऊपर लगा दीजिए, बिछा दीजिए और अपना हल्का हल्का पानी आप हर 2-3 दिन में देते रहिए। तो इससे क्या रहेगा कि अंदर का मॉइस्चर काफ़ी हद तक मेंटेन रहेगा और उसके बाद कुछ 4-5 दिनों के बाद आप गनी बैग को हटा दीजिए, देखिएगा कि वो आपका जो बीज है वो अंकुरण हो गया है। दूसरा विधि हो गया हमारा लोलान नर्सरी। तो लोलान नर्सरी तो सिंपल होता है, जहाँ पे पानी है आप पडलिंग कीजिए अपने ज़मीन पे, पडलिंग करके उसमें पानी की कोई कमी नहीं है, पानी ठहर रहा है, उसमें प्री जर्मिनेटेड सीड लेने की ज़रूरत नहीं है। जो आपका नेचुरल जैसा सीड आता है आप उसको सिंपल ब्रॉडकास्ट कर दीजिए। प्री जर्मिनेटेड सीड दीजिएगा तो काफ़ी अच्छा होगा क्योंकि अगर प्री जर्मिनेटेड है तो वो एक जगह पर इकट्ठा नहीं होगा। तो बेहतर है कि आप प्री जर्मिनेटेड सीड ही लें और उसको आप ब्रॉडकास्ट कर दें, और ब्रॉडकास्ट करने के बाद जैसे हम नॉर्मली अपना ब्रॉडकास्ट करने के बाद हम वेट करेंगे 20 से 25 दिन के बाद हम उसको निकाल के ट्रांसप्लांट करेंगे। और तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है, जो मैंने श्री विधि के लिए बताया था डिपॉग नर्सरी, तो ये डिपॉग नर्सरी के लिए तो हमें ज़मीन की ज़रूरत ही नहीं है। मतलब हम सीधे क्या कर सकते हैं कि अपने सीमेंट एरिया पर भी अपना वो नर्सरी तैयार कर सकते हैं। क्या करना है, प्लास्टिक शीट लेना है, उसके ऊपर कुछ 2 से 5 सेंटीमीटर का बालू हमें परत बना लेनी है उसकी, और उस बालू के ऊपर हमने क्या करना है कि हमने बीजों को काफ़ी घने मात्रा में ब्रॉडकास्ट करके वो बीज जो हम छिड़क रहे हैं वो काफी घना होना चाहिए। तो घना इसलिए होना चाहिए कि जब वो बड़ा होगा, अंकुरण जब होगी उसमें और जब उसकी जड़ें आएंगी तो वो जड़ें आपस में मिल जाएंगी, मतलब वो जड़ें आपस में एक दूसरे से बहुत एक दूसरे को पकड़ लेंगी। तो इससे क्या होगा कि एक तरह का मैट बन जाता है। तो जब आप उसको निकालिएगा बालू से तो आप उसको रोल करके निकाल सकते हैं, ऐसे ही रोल मैट बनाकर आप उसको खेत पे लेके जाइए। खेत पे लेके जाने के बाद हर एक सीडलिंग को आप अलग कीजिए और उस सीडलिंग को आप मिट्टी में लगा दीजिए। तो ये होता है डपॉग नर्सरी। तो ये डपॉग नर्सरी हम श्री विधि में इसलिए लगाते हैं क्योंकि जब मैंने बताया था कि पानी मॉइस्चर जो होता है वहाँ पे काफ़ी स्टिकनेस होती है, तो जब आप डपॉग नर्सरी के जो पौधे होते हैं वो काफ़ी छोटे होते हैं और काफ़ी आसानी से वो चिपक जाता है, तो इसलिए हम श्री विधि में यूजुअली डपॉग नर्सरी का ही इस्तेमाल करते हैं। तो ये तीन बेसिक नर्सरी हैं हमारे।
1: तो मैम आपने बहुत ही अच्छी तरीके से बताया कि कितने तरीके से धान की बुआई होती है, साथ ही कितने प्रकार से नर्सरी तैयार की जाती है अलग अलग बुआई के लिए। मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद धन्यवाद मुझे।
1: तो किसान भाई बहनों, आप अलग अलग तरीके से धान की बुआई कर सकते हैं, जिस तरह की मिट्टी है उस तरीके से, और साथ ही अलग अलग बुआई के लिए अलग अलग तरीके से नर्सरी तैयार करनी होती है और कभी कभी नर्सरी नहीं भी तैयार करनी होती है, जैसे कि सीधी बुआई में। तो किसान भाई बहनों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि हमारी आज की ये चर्चा काफी उपयोगी साबित होगी। हमें दीजिए इजाजत, लेकिन जाने से पहले खास बात की अपना और अपनी फसलों का रखे विशेष ध्यान और अपनी मिट्टी से करे ढेर सारा प्यार। नमस्कार। उन्नत कृषि।

तैयार है आम के अद्भुत संसार से रूबरू होने के लिए। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर लेकर आ रहा है राष्ट्रीय आम समागम 2026, जिसका आयोजन 27 से 28 जून तक किया जाएगा। आइए और देखिए देश भर की सैकड़ों आम किस्मों की आकर्षक प्रदर्शनी, जहां स्वाद, सुगंध और रंगों का अनूठा संगम आपका स्वागत करेगा। इस विशेष आयोजन की थीम है स्वाद, संस्कृति और समृद्धि का संगम। आम समागम में किसानों, वैज्ञानिकों, उद्यमियों और आम प्रेमियों को एक ही मंच पर आने का अवसर मिलेगा। कार्यक्रम के दौरान आयोजित होगी राष्ट्रीय कार्यशाला, जिसका विषय है आधुनिक तकनीक से गुणवत्ता युक्त उत्पादन, भंडारण एवं प्रसंस्करण। देश के प्रतिष्ठित विशेषज्ञ आम उत्पादन, मूल्य संवर्धन और प्रसंस्करण की आधुनिक तकनीकों पर अपने अनुभव साझा करेंगे। इस अवसर पर आयोजित होगा किसान वैज्ञानिक सम्मान समारोह, जिसमें बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश के उत्कृष्ट आम उत्पादकों को बेस्ट मैंगो फार्मर अवार्ड प्रदान किया जाएगा। महिला आम उत्पादकों एवं मूल्य संवर्धन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिला उद्यमियों के लिए भी विशेष सम्मान और नगद पुरस्कार की व्यवस्था की गई है। और अब आपके लिए एक सुनहरा अवसर, यदि आपके बाग में उत्कृष्ट गुणवत्ता के आम हैं या आपके पास किसी विशेष किस्म के आम उपलब्ध हैं, आप भी आम प्रदर्शनी में अपनी आम की किस्मों को प्रदर्शित कर सकते हैं। आपकी प्रविष्टियों का मूल्यांकन विशेषज्ञों द्वारा किया जाएगा और चयनित प्रतिभागियों को आकर्षक पुरस्कार एवं नगद राशि से सम्मानित किया जाएगा। और हाँ, आम प्रेमियों के लिए होगा एक विशेष आकर्षण, मैंगो ईटिंग प्रतियोगिता। इस रोमांचक प्रतियोगिता के विजेताओं को भी आकर्षक नगद पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। तो देर किस बात की, अपने श्रेष्ठ आमों के साथ आइए, प्रदर्शनी में भाग लीजिए, विशेषज्ञों से सीखिए, नई तकनीकों को जानिए और आकर्षक पुरस्कार जीतने का अवसर पाइए। 27 से 28 जून राष्ट्रीय आम समागम 2026 बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है।

0: सुनो सुनो मेहरबान कदरदान, मम्मी पापा दादा दादी चाचा चाची बहनों भाइयों अड़ोसी पड़ोसी आंटी अंकल, मेरी बात पर भी दो जरा ध्यान।
1: अरे टीकू, स्क्रिप्ट में मेरा डायलॉग है, तुम ढोल बजाओ, मैं बताती हूँ।

0: सभी करो एक जरूरी काम, करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
1: चल टिक्की, अभी हमें और भी गांव जाना है।
2: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
3: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
4: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
3: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
4: आपकी सेहत की बातें,
3: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
4: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
3: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
4: वो कहाँ पर?
3: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
4: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।

सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 20 से 24 जून के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी आने और साथ ही हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 25 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 60 से 70 प्रतिशत और दोपहर में 25 से 30 प्रतिशत रहने की संभावना है। साथ ही अनुमान है कि 20 से 24 जून के दौरान 8 से 9 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दक्षिण पूर्वी हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए, जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दें, धान की मध्यम अवधि वाली किस्में जैसे संतोष, सीता, सरोज, सहभागी धान और राजेंद्र श्वेता और सुगंधित किस्में जैसे राजेंद्र धान की मध्यम अवधि वाली किस्में हैं संतोष, सीता, सरोज, सहभागी धान और राजेंद्र श्वेता और सुगंधित किस्में जैसे राजेंद्र सुवासिनी, राजेंद्र कस्तूरी और राजेंद्र भगवती। किसान भाई बहनों इन किस्मों की नर्सरी में बुआई जरूर कर लें। जो मक्का की खेती करना चाहते हैं उन्हें बता दें, खरीफ मक्का की बुआई आसमान साफ रहने पर ही करें और खेत की जुताई में 10 से 15 टन गोबर की सड़ी खाद प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें। ध्यान रखें कि बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 30 किलोग्राम नेत्रजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटाश जरूर डालना चाहिए। और आपको बता दें अनुशंसित मक्का की किस्में हैं सुआन, देवकी, शक्तिमान 1, शक्तिमान 2, राजेंद्र संकर मक्का 3, गंगा 11। जिनके खेत में मूंग लगे हैं उन्हें बता दें, मूंग की तैयार फलियों की तुड़ाई कर ले और हरी खाद के लिए उसके पौधों को मिट्टी पलटने वाले हल से जमीन में गाड़ दे। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दें, भिंडी, कद्दू, खीरा, नेनुआ और लौकी जैसी फसलों की निराई गुड़ाई जरूर करें। साथ ही खर पतवार नियंत्रित करना भी बहुत जरूरी होता है। पत्ती खाने वाले सुंडियों और फल छेदक कीटों की नियमित निगरानी करें और अगर आपकी सब्जियों में पत्ती खाने वाले सुंडियों या फल छेदक कीटों का प्रकोप दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में डाइमिथोएट 30 सीसी की 1 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। जो खरीफ सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दें, खरीफ प्याज की खेती के लिए नर्सरी यानी कि बीज स्थली की तैयारी तभी करें जब आसमान साफ हो। स्वस्थ पौधों के लिए नर्सरी में गोबर की खाद जरूर डालें और खरीफ प्याज के लिए NO53 एग्रीफाउंड डार्क रेड, अर्का कल्याण, सीमा सुपर ये किस्में अनुशंसित है। प्याज के बीज की व्यवस्था प्रमाणित स्रोत से ही करें और ध्यान दें कि बीज गिराने के पहले बीजोपचार करना बहुत जरूरी होता है। बीजोपचार करने से आपके पौधे स्वस्थ होते हैं और फसल अच्छी होती है। बीज की दर 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, लीची तोड़ने के बाद खासकर बरसात शुरू होने से पहले बगीचे की जुताई जरूर कर ले और खाद उर्वरकों का प्रयोग तभी करें जब आसमान साफ हो। प्रति प्रौढ़ पेड़ 60 से 80 किलोग्राम सड़ी गोबर की खाद, 2.5 किलोग्राम यूरिया, 1.5 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट और 1 किलो 300 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश और 50 ग्राम सुहागा मिलाकर वृक्ष के चारों ओर समान रूप से मिट्टी में मिला दें। पशुपालक भाई बहन ध्यान दें, गलाघोटू और लंगड़ी रोगों से बचाव के लिए टीकाकरण कराने की जरूरत होती है, इसलिए सभी दुधारू पशुओं में टीकाकरण जरूर कराएं और नए गेहूं के भूसा को खिलाने से पहले ध्यान दें कि करीब 2 घंटा नए गेहूं के भूसा को पानी में फुला लें और 50 ग्राम खनिज मिश्रण और 50 ग्राम नमक चारा दाना मिलाकर दें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 एफएम ग्रीन के साथ बने रहें।

आप हर समय थकान महसूस करते हैं, छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है, ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है, बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर आप सबका स्वागत करता है स्वाद संस्कृति और समृद्धि के संगम राष्ट्रीय आम समागम सह कार्यशाला में। तारीख याद रखें 27 से 28 जून 2026।

0: क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही लाभ कई।
1: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
0: लेडीज फर्स्ट। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, आपका स्वागत है आपके कार्यक्रम लेडीज फर्स्ट में। और लेडीज फर्स्ट में आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में, और ये विषय है खास तौर से उन महिलाओं के बारे में जो कामकाजी हैं। और आज के समय में हर दूसरी महिला कामकाजी हैं और होना भी चाहिए, क्योंकि ये उन्हें इंडिपेंडेंट बनाता है, आत्मविश्वासी बनाता है। लेकिन कई बार उनके साथ कुछ ऐसा घटित होता है कि उनका कॉन्फिडेंस, उनका आत्मविश्वास डगमगा जाता है, और ख़ास तौर से ये उसी जगह पर होता है जहां वो काम करने जाती हैं। जी हां, आज हम बात करने वाले हैं कामकाजी महिलाओं के एक बेहद ही अच्छे साथी के बारे में, एक ऐसे साथी के बारे में जो उन्हें उनके कार्यस्थल पर उन्हें सुरक्षित महसूस कराता है। और उनका ये साथी है, या फिर कहें कि उनकी ये दोस्त है, शी बॉक्स। शी बॉक्स क्या है, आइए इसके बारे में हम जानते हैं। दोस्तों, कई बार ना क्या होता है कि महिला अपने काम पे निकली, बहुत ही अच्छे से निकली, लेकिन वहाँ पर उन्हें असहज महसूस होता है, क्योंकि उनके साथ कोई अनुचित व्यवहार कर देता है, या फिर कोई उनसे ऐसी अभद्र बातें कह देता है कि महिला को बहुत बुरा लगता है, या फिर किसी लड़की को बहुत अजीब महसूस होता है। ऐसे में वो परेशान हो जाती है कि किससे कहें, क्या कहें और कैसे कहें, इसका क्या निदान निकलेगा, इसका समाधान निकलेगा। और आज इन्हीं सारे सवालों का जवाब हम जानने वाले हैं। सबसे पहले तो हम जानेंगे कि महिलाओं का, कामकाजी महिलाओं का साथी, या फिर कामकाजी महिलाओं की दोस्त कौन है, शी बॉक्स ये क्या है। अगर मैं आपको शी बॉक्स का पूरा नाम बताऊं तो वो है सेक्सुअल हरासमेंट इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स, यानी कि ये एक ऐसा बॉक्स है जहां पर आप यौन उत्पीड़न के बारे में बातें बता सकते हैं, शिकायत दर्ज करा सकते हैं। दोस्तों, ये भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा शुरू किया गया है, और एक ये ऑनलाइन पोर्टल है, यानी कि आप घर बैठे बैठे या ऑफिस में ही आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। और इसका उद्देश्य बिल्कुल साफ है कि कामकाजी महिलाओं को सुरक्षित रखना। पता है, सबसे जरूरी बात ये है कि अब चुप रहना नहीं है, डरना नहीं है, बल्कि जरूरी है कि आप अपनी आवाज उठाएं और आप इससे संबंधित विभाग तक पहुंचें, तभी आप खुद को सुरक्षित रख पाएंगे। और सिर्फ अपने आप को नहीं, बल्कि जिन्होंने आपके साथ गलत व्यवहार किया है ना, वो सिर्फ आपके साथ व्यवहार नहीं करेगा गलत, और लड़कियों के साथ भी वो गलत व्यवहार ही करेगा। इसलिए ज़रूरी होता है कि वैसे लोगों को जितनी जल्दी हो सके रोक दिया जाए। और आप आवाज़ उठाएंगे तो यकीन मानिए कि आपका डर ख़त्म होगा, लेकिन उस इंसान के अंदर डर ज़रूर आ जाएगा कि अब हमें ऐसी कोई भी घटना को अंजाम नहीं देना है जिससे किसी महिला को परेशानी हो। शी बॉक्स कैसे काम करता है और ये कानून से कैसे जुड़ा है, आइए इसके बारे में जानते हैं। अगर हम शी बॉक्स के कानून के बारे में बात करें तो सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ विमेन एट वर्कप्लेस एक्ट, यानी कि पॉश एक्ट 2013 में आया था, और इसी के तहत शी बॉक्स को लाया गया था। और अगर हम बात करें कि इस कानून के अनुसार क्या क्या होता है, तो सबसे पहले तो जरूरी है कि हर संस्था के अंदर शिकायत की जांच 90 दिनों के अंदर पूरी हो जानी चाहिए। और इसके साथ ही ये भी ज़रूरी होता है कि महिला अपनी पहचान को गोपनीय रख सकती है। अगर वो शिकायत कराती भी है तो ऐसे में उनकी पहचान बिल्कुल गोपनीय रहती है। और कौन शिकायत कर सकता है, तो जो भी सरकारी कर्मचारी है, या फिर प्राइवेट कंपनी में भी अगर आप काम कर रही हैं तो भी आप शिकायत कर सकती हैं। यहाँ तक कि अगर आप इंटर्न हैं तो भी आप शिकायत कर सकती हैं। आप कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रही हैं, या फिर आप अस्थाई कर्मचारी हैं और आपके साथ कोई दुर्व्यवहार हुआ है, तो भी आप शिकायत कर सकती हैं। ये प्लेटफॉर्म बिल्कुल आपके लिए ही है, आपको सुरक्षित करने के लिए है, आपको ये बताने के लिए है कि आप अपने घर के बाहर, आप अपने वर्क प्लेस पे भी बिल्कुल सेफ हैं। दोस्तों, अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि हम शिकायत कैसे दर्ज कर सकते हैं? तो सबसे पहले तो आपको शी बॉक्स की आधिकारिक वेबसाइट पे जाना होगा। अगर हम शी बॉक्स के आधिकारिक वेबसाइट के बारे में आपको बताएं तो इसका आधिकारिक वेबसाइट है shebox.wcd.gov.in, यानी कि shebox.wcd.gov.in। इस वेबसाइट पर आप जाइए और आपकी जो भी शिकायत है आप दर्ज कराइए और यकीन मानिए 90 दिनों के अंदर आपको समस्या का समाधान मिल जाएगा और आपकी जो भी शिकायत है उसके बारे में बिल्कुल काम किया जाएगा और साथ ही आपकी पहचान भी गोपनीय रखी जाएगी। आप जैसे ही आधिकारिक वेबसाइट पर जाते हैं वहाँ पर आपसे आपका जो भी विवरण है वो पूछा जाएगा और आपके साथ जो घटना हुई है उसका भी विवरण वहाँ पर आपसे पूछा जाएगा और ये सारी चीज़ें आप वहाँ पर सबमिट कर देंगे। और ध्यान रखें कि ये प्रोसेस थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो उनमें छोटी सी छोटी जो डिटेल होती है ना वो भी बहुत ज़रूरी होती है। और अगर आप चाहते हैं कि आपको आपकी परेशानी का समाधान मिले तो जो भी वहाँ पर पूछा जा रहा है बिल्कुल ईमानदारी से लिख दीजिए, भले ही वो थोड़ा लंबा हो पर लिखिए ज़रूर। और इसके बाद आपको एक ट्रैकिंग नंबर मिलता है जिसे आप अपनी शिकायत की स्थिति देख सकते हैं कि आपने जो शिकायत की है वो अब कहाँ तक पहुँची है। दोस्तों आखिर शी बॉक्स ज़रूरी क्यों है ये तो बिल्कुल आप समझ ही गई होंगी, क्योंकि कई बार क्या होता है कि कई महिलाएँ डर के कारण चुप रह जाती है कि लोग क्या कहेंगे, कहीं नौकरी चली गई तो क्या होगा। और साथ ही सबसे बड़ा जो हमारे मन में सवाल होता है वो ये होता है कि कोई विश्वास नहीं करेगा। कई बार लोग कहते हैं कि ये लड़की बहुत नाटक कर रही है, इनके तो बहुत नखरे हैं। ऐसी स्थिति भी उत्पन्न कर दी जाती है कि महिलाएं ये सारी बातें सोचकर ही चुप रह जाती है और उन्हें लगता है कि अगर बात करेंगे तो बात बढ़ेगी। जी नहीं, याद रखिए कि अगर आप बात करेंगे तो बात रुकेगी और आप अपने साथ साथ दूसरी महिलाओं को भी सुरक्षित करेंगे, क्योंकि आज जो आपके साथ कोई गलत कर रहा है ना तो वो कल दूसरों के साथ भी गलत करेगा और उसका मन लगातार बढ़ता जाएगा और आज वो छोटी सी घटना को अंजाम दे रहा है कल किसी बड़ी घटना को अंजाम दे सकता है। इसलिए ये मत सोचिए कि लोग क्या कहेंगे, आपकी नौकरी चली गई तो क्या होगा और कोई विश्वास नहीं करेगा तो क्या होगा। हो सकता है कि शुरुआत में आपके साथ बहुत कम लोग खड़े हों लेकिन आपका साथ देने के लिए शी बॉक्स है। और ध्यान रखिए कि आपकी नौकरी नहीं जाएगी क्योंकि आपकी जो पहचान है वो बिल्कुल गोपनीय रखी जाएगी। और लोग क्या कहेंगे ये हम क्यों सोचे, बस इतना सोचिए कि आप खुद को सुरक्षित रखिए और जब आप अपनी जगह पर सही होती हैं तो उसका परिणाम भी सही ही आता है। ध्यान रखिए कि कोई भी चुप्पी समस्या को ख़त्म नहीं करती है बल्कि उसे और मजबूत कर देती है। इसलिए शी बॉक्स महिलाओं को ये भरोसा देता है कि उनकी बात सुनी जाएगी। दोस्तों कई बार हम ये समझ ही नहीं पाते हैं कि कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न क्या होता है। दोस्तों यौन उत्पीड़न के अंतर्गत बहुत सारी घटनाएं आ सकती है। मान लीजिए आपके ऊपर किसी ने अनुचित टिप्पणी कर दी, मोबाइल पर आपको कोई अश्लील संदेश भेजता है या फिर किसी भी तरीके से आपको कोई अश्लील संदेश भेजता है या फिर आपको कोई बिना अनुमति के छूता भी है तो ये भी यौन उत्पीड़न का मामला होता है। अगर आपको किसी ने ऐसी कोई बात कह दी, आपके शरीर पर कोई टिप्पणी कर दी तो ये भी यौन उत्पीड़न ही है। और कई जगहों पर ये देखा जाता है कि प्रमोशन के बदले गलत प्रस्ताव दिए जाते हैं, प्रमोशन के बदले गलत फेवर मांगे जाते हैं तो ये भी यौन उत्पीड़न का ही मामला है। और आप बहुत विश्वास के साथ बिना डरे शी बॉक्स पर इन बातों के कंप्लेन कर सकते हैं। और अगर आपको कोई डरा रहा है, आपके ऊपर कोई दबाव बना रहा है किसी चीज़ के लिए तो भी आप शी बॉक्स पे कंप्लेन कर सकते हैं। अगर इनमें से कुछ भी हो रहा है आपके साथ तो ध्यान रखिए कि ये मजाक नहीं है, ये अपराध है। अगर कोई मजाक मजाक में भी आपसे कुछ अश्लील बातें कर रहा है या कोई ऐसी टिप्पणी कर रहा है, अगर उसे आपको असहज महसूस हो रहा है तो उसे कहिए, रोकिए कि मुझे बुरा लग रहा है। और अगर इसके बाद भी वो रुकता नहीं है और अपनी हरकतों को जारी रखता है तो आप कंप्लेन करने के लिए बिल्कुल आज़ाद हैं। और दोस्तों जब तक हमारी नारी बोलेंगी नहीं ना तब तक व्यवस्था नहीं बदलेगी। और जब नारी बोलती है तो सबसे ज़रूरी होता है कि हम नारी ही उनका साथ दें, डटकर उनका साथ दे, तभी अन्याय खत्म होगा। क्योंकि आज लगभग हर जगह पर जहां भी महिलाएं काम कर रही है वहां कोई ना कोई एक ऐसा इंसान ज़रूर होता है जिसके इरादे गलत होते हैं, जिसकी सोच गलत होती है। और कई बार ऐसे लोग मजाक मजाक में ऐसी बातें कह जाते हैं जो आपको बिल्कुल असहज कर देता है और कुछ पल के लिए नहीं बल्कि वो बातें बहुत लंबे समय तक हमारे मन में रह जाती है और हम उस बारे में सोचते रहते हैं और खुद को समझाते रहते हैं कि मजाक ही तो था। जी नहीं, ये मजाक नहीं था। अगर आपको कोई बात असहज कर रही है तो आप साफ साफ कहिए कि मुझे ये बात नहीं पसंद है। अगर सामने वाला समझदार है और वो उसने जानबूझकर आपके साथ वो मजाक नहीं किया है तो वो समझ जाएगा कि हाँ इससे नहीं पसंद है तो आगे से मैं ऐसा नहीं करूंगा। लेकिन अगर उसने जानबूझकर किया है और आपको असहज महसूस कराने के लिए ही किया है तो वो नहीं रुकेगा और वो सिलसिला दोहराएगा, तो फिर आपको उसे रोकना होगा, आप उसके खिलाफ कंप्लेन कर सकती हैं। अच्छा, जो भी हमारी महिला मित्र सुन रही हैं या फिर जो पुरुष भी सुन रहे हैं, क्या आपके कार्यस्थल पर कोई इंटरनल कमिटी है जहां पर ऐसे परेशानियों का समाधान किया जाता है? क्या आप जिस संस्था में काम करते हैं वहां पर पोश की यानी कि POSH की ट्रेनिंग होती है? इस ट्रेनिंग में ये समझाया जाता है कि क्या सही है, क्या गलत है, यौन उत्पीड़न क्या है और क्या क्या व्यवहार अनुचित माना जाता है, मजाक और उत्पीड़न में क्या फर्क होता है, क्योंकि कई बार लोग मजाक और उत्पीड़न में फर्क भूल जाते हैं और कई बार लोग जानबूझकर ही ऐसी हरकतें करते हैं और उसे मजाक का नाम दे देते हैं। शिकायत कैसे दर्ज कर सकते हैं ये भी पोश की ट्रेनिंग में बताया जाता है, और IC की भूमिका क्या है यानी कि इंटरनल कमिटी की भूमिका क्या है ये भी आपको पोश की ट्रेनिंग में बताया जाता है। और महिलाओं के बारे में तो हमने बात कर ली, उनके लिए शी बॉक्स है और महिलाएं खुद भी उनके लिए हैं, लेकिन पुरुषों का साथ भी बहुत जरूरी होता है। पुरुषों के लिए बस एक छोटा सा संदेश ये है कि ये जो मुद्दा है ना, ये सिर्फ महिलाओं का मुद्दा नहीं है। सम्मान देना दोस्तों हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है, क्योंकि अगर आप दूसरी महिला को सम्मान देंगे तो आपके घर के जो लड़के हैं ना वो भी यही सीखेंगे कि महिलाओं को कैसे सम्मान देना है। कहीं ना कहीं आप एक बेहतर समाज बनाने के लिए आप अपनी तरफ से एक छोटी सी कदम उठाते हैं तो आपके घर की लड़कियां भी सुरक्षित रहती है। तो दोस्तों ये सिर्फ महिलाओं की नहीं पुरुषों की भी जिम्मेदारी है कि अगर आपके सामने कोई दूसरा पुरुष ऐसी हरकतें कर रहा है जो कि उचित नहीं है तो आप उसे रोकिए। पता है आपके ऐसा करने से जिस महिला के साथ ये हो रहा है उसके मन में आपके लिए सम्मान तो बढ़ेगा ही, इसके साथ ही वो और भी ज्यादा सशक्त महसूस करेंगी, उनके अंदर एक विश्वास आएगा कि कोई है जो उनका साथ देने के लिए है, एक समाज है जो बेहतर है, उन्हें ये विश्वास होगा कि समाज में आज भी कुछ बेहतर लोग मौजूद हैं। दोस्तों तो जो जागरूक पुरुष हैं जो एक बेहतर समाज बनाना चाहते हैं वो ज़रूर अपने आसपास गलत होते हुए देखते होंगे तो रोकते होंगे। और दोस्तों शी बॉक्स सिर्फ एक वेबसाइट नहीं है, ये एक सुरक्षा कवच है और ये एक कदम है महिलाओं की गरिमा और सम्मान को बचाने के लिए। दोस्तों अगर आपके साथ या आपके किसी जानने वाले के साथ कार्यस्थल पर उत्पीड़न होता है तो चुप मत रहिए, शिकायत कीजिए, क्योंकि लेडीज फर्स्ट का मतलब ही है महिलाओं की सुरक्षा सबसे पहले, सम्मान पहले और अधिकार बराबर की। तो दोस्तों इन्हीं कुछ बातों के साथ मुझे यानी कि आपकी होस्ट आपके दोस्त उमा को दीजिए इजाजत। उम्मीद है कि आप चुप नहीं रहेंगी अगर आपके साथ कुछ भी गलत हो रहा है तो, और जो पुरुष भी सुन रहे हैं वो भी ये समझेंगे कि अगर आप एक बेहतर समाज बनाना चाहते हैं अपने आप के लिए, अपने घर की औरतों के लिए, तो फिर आपको भी आवाज उठाना ही पड़ेगा। आवाज उठाइए क्योंकि आपकी आवाज ही आपकी ताकत है। जाने से पहले खास बात की अपना और अपने अपनों का रखें खास ख्याल और खुद से करें ढेर सारा प्यार। नमस्कार, आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें क्योंकि हम हैं हरियाली से खुशहाली तक। लेडीज फर्स्ट,
2: सुनो सुनो मेहरबान कदरदान, मम्मी पापा दादा दादी चाचा चाची बहनों भाइयों अड़ोसी पड़ोसी आंटी अंकल, मेरी बात पर भी दो जरा ध्यान।
3: अरे टीकू, स्क्रिप्ट में मेरा डायलॉग है, तुम ढोल बजाओ मैं बताती हूँ।

0: सभी करो एक जरूरी काम, करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
1: चल टिक्की, अभी हमें और भी गांव जाना है।
2: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।

तैयार है आम के अद्भुत संसार से रूबरू होने के लिए। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर लेकर आ रहा है राष्ट्रीय आम समागम 2026, जिसका आयोजन 27 से 28 जून तक किया जाएगा। आइए और देखिए देश भर की सैकड़ों आम किस्मों की आकर्षक प्रदर्शनी, जहां स्वाद, सुगंध और रंगों का अनूठा संगम आपका स्वागत करेगा। इस विशेष आयोजन की थीम है स्वाद, संस्कृति और समृद्धि का संगम। आम समागम में किसानों, वैज्ञानिकों, उद्यमियों और आम प्रेमियों को एक ही मंच पर आने का अवसर मिलेगा। कार्यक्रम के दौरान आयोजित होगी राष्ट्रीय कार्यशाला, जिसका विषय है आधुनिक तकनीक से गुणवत्ता युक्त उत्पादन, भंडारण एवं प्रसंस्करण। देश के प्रतिष्ठित विशेषज्ञ आम उत्पादन, मूल्य संवर्धन और प्रसंस्करण की आधुनिक तकनीकों पर अपने अनुभव साझा करेंगे। इस अवसर पर आयोजित होगा किसान वैज्ञानिक सम्मान समारोह, जिसमें बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश के उत्कृष्ट आम उत्पादकों को बेस्ट मैंगो फार्मर अवार्ड प्रदान किया जाएगा। महिला आम उत्पादकों एवं मूल्य संवर्धन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिला उद्यमियों के लिए भी विशेष सम्मान और नगद पुरस्कार की व्यवस्था की गई है। और अब आपके लिए एक सुनहरा अवसर, यदि आपके बाग में उत्कृष्ट गुणवत्ता के आम हैं या आपके पास किसी विशेष किस्म के आम उपलब्ध हैं, तो आप भी आम प्रदर्शनी में अपनी आम की किस्मों को प्रदर्शित कर सकते हैं। आपकी प्रविष्टियों का मूल्यांकन विशेषज्ञों द्वारा किया जाएगा और चयनित प्रतिभागियों को आकर्षक पुरस्कार एवं नगद राशि से सम्मानित किया जाएगा। और हाँ, आम प्रेमियों के लिए होगा एक विशेष आकर्षण, मैंगो ईटिंग प्रतियोगिता। इस रोमांचक प्रतियोगिता के विजेताओं को भी आकर्षक नगद पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। तो देर किस बात की, अपने श्रेष्ठ आमों के साथ आइए, प्रदर्शनी में भाग लीजिए, विशेषज्ञों से सीखिए, नई तकनीकों को जानिए और आकर्षक पुरस्कार जीतने का अवसर पाइए। 27 से 28 जून राष्ट्रीय आम समागम 2026 बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है।

0: सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि नमस्कार, आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो 90.8 एफएम ग्रीन और मैं हूँ आरजे अनु। तो आज फिर उन्नत कृषि कार्यक्रम में हम एक खास विषय लेकर आए हैं और किसान भाइयों के लिए खास है क्योंकि हम आज बात करेंगे कृषि उद्यमिता की। जी हाँ, और बिहार क्षेत्र की बात करें तो बिहार में कृषि उद्यमिता के क्षेत्र में बायोटेक किसान हब की भूमिका, इसके बारे में आज हम जानेंगे। और इस विषय को लेकर आज हमारे बीच हैं डॉक्टर सी के पांडा, ये असिस्टेंट प्रोफेसर हैं एक्सटेंशन डिपार्टमेंट बिहार एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी सबौर से। और आज बहुत सारी बातें हम जानेंगे डॉक्टर साहब से, बायोटेक किसान हब क्या है, इसका उद्देश्य क्या है और इसके तहत क्या कुछ कार्यक्रम चलाया जाता है और कैसे किसानों को हेल्प करता है ये परियोजना, इसके बारे में आज डॉक्टर साहब हमें बताएंगे। सबसे पहले डॉक्टर साहब ये बताएं कि बायोटेक किसान हब क्या है।
1: आज हम लोग बात करेंगे बायोटेक किसान हब कैसे बिहार में एग्री एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के लिए काम कर रहा है 2018 से। देखिए, बायोटेक किसान हब डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, भारत सरकार का अधीनस्थ एक प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम बायोटेक जो किसान हब है, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने इसको मिशन प्रोग्राम के आधार पर लिए है। ये किसान मतलब हुआ कृषि इनोवेशन साइंस एप्लीकेशन नेटवर्क है। ये सारा देश की 15 जो हमारा एग्रोक्लाइमेटिक जोन है, ये 15 एग्रोक्लाइमेटिक जोन में चल रहा है। इसी के आधार पर हमारा अपना जो बिहार स्टेट में भी चल रहा है और बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी उनका जो डायरेक्टर है, डायरेक्टोरेट ऑफ एक्सटेंशन के नियंत्रण में डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट में इसका कार्यक्रम चल रहा है।
0: जी, अब इसके उद्देश्य की बात करते हैं, इसका क्या कुछ उद्देश्य है उसके बारे में बताएं डॉक्टर साहब।
1: हाँ, बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे अपने मैडम। ये इसका जो ऑब्जेक्टिव्स है, जो उद्देश्य है, बहुत महत्व है। ये एक्चुअली किसान के लिए है ये प्रोजेक्ट, ये जो प्रोग्राम जो भी बोलिए, बायोटेक किसान हब। अब देखिए, किसान जो लोकल लेवल में काम करते हैं उनका नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स होता है, तरह तरह का प्रॉब्लम खेती के आधार पर वो लोग प्रॉब्लम फेस करते हैं। प्रॉब्लम जब है उसका सोल्यूशन भी डेवलप होता है, कृषि विश्वविद्यालय बोलिए, कृषि का जो गवेषणागार होता है, रिसर्च स्टेशन होता है, उसमें भी उसका जो प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी निकाल के आते हैं। लेकिन इस सोल्यूशन किसान तक पहुँचना चाहिए। उस किसान का जो भी प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को सोल्यूशन के आधार पर किसान के पास पहुंचाने का काम ही करता है बायोटेक किसान हब।
0: जी,
1: ये एक ऑब्जेक्टिव है। दूसरा काम क्या है ना, दूसरा काम सबसे बड़ा, दूसरा प्रोग्राम से इसका अंतर क्या है, देखिए दूसरा प्रोग्राम से के साथ इसका अंतर है, इसमें साइंटिस्ट ज़्यादा क्लोजली किसान के साथ जुड़े हुए हैं। और सबसे ज़्यादा देखिए, हमारा राज्य में जो स्मॉल एंड मार्जिनल जो फार्मर है, अब बोलते हैं छोटा जो किसान है, तो उस किसान का नंबर ज़्यादा है। तो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर के साथ इकट्ठा होकर हम लोग काम करते हैं, उनका भी कुछ भी प्रॉब्लम जो होता है उस प्रॉब्लम प्रोडक्शन रिलेटेड जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को पहले हम लोग सॉल्व करते हैं। जब प्रोडक्शन हो जाता है, प्रोडक्शन के बाद उसको मार्केट तक कैसे पहुँच पाए, उसके लिए किसान के अंदर जो एग्री एंटरप्रेन्योरशिप को डेवलपमेंट करना, वही काम हम लोग करते हैं। एक कोई किसान अपने लेवल में करते हैं उसको भी हम लोग सपोर्ट करते हैं, और बहुत किसान, छोटा किसान बा स्मॉल एंड मार्जिनल जो किसान होता है, सब इकट्ठा जब आ जाते हैं, एक साथ जब आ जाते हैं, उनको भी एक साथ लेके भी हम लोग आगे बढ़ते हैं।
0: तो ये उद्देश्य है बायोटेक किसान हब परियोजना के। और बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर की हम बात करें डॉक्टर साहब, तो क्या यह परियोजना यहाँ चलाई जा रही है, अगर चलाई जा रही है तो वो कब से चलाई जा रही है उसकी जानकारी दें।
1: हाँ मैडम, ये देखिए 2018 साल से अक्टूबर महीना से हम लोग इस प्रोग्राम को शुरू किए हैं। पहले शुरू हुआ था 3 डिस्ट्रिक्ट में हमारा बिहार का, बिहार का पटना है, लखीसराय है और गया, ये तीनों डिस्ट्रिक्ट में हम लोग काम शुरू किए थे। पहला जो काम था, छोटा एक काम लेके हम लोग आगे बढ़े थे, वो है आपको पता होगा खेसारी बा ग्रासपी जो बोलते हैं, उसी को लिए हम लोग शुरू किए थे। जो एक्चुअली एक समय बिहार में खेसारी का आबादी बहुत होता था, लेकिन बाद में कुछ प्रॉब्लम आया जिसको हम लोग बोआ बा ओडा बोलते हैं, जो लोकल टर्म में हम लोग बोलते हैं, कुछ केमिकल रह जाता है खेसारी के अंदर जो खाने से किसान आदमी के शरीर में थोड़ा कुछ प्रॉब्लम होता है। लेकिन बात क्या हुआ, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट हुआ, रतन एंड प्रतीक करके दो वैरायटी भी है। तो उस प्रॉब्लम जो था, उस प्रॉब्लम को हम लोग, हम पहले बताया था ऑब्जेक्टिव में स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर बोले, उनका जो प्रॉब्लम को हम लोग एड्रेस करते थे। जो प्रॉब्लम था लोकल जो वैरायटी है उसमें ओडाप कंटेंट व बुआ कंटेंट ज़्यादा था, तो उस आधार पर जो रतन एंड प्रतीक जो वैरायटी जो था उस वैरायटी में जो ओडाप व बुआ कंटेंट व जो केमिकल का कंटेंट है कम था, उसी वैरायटी को हम लोग किसान के अंदर प्रचार किया। जैसे हम स्टेटिस्टिकली बताए तो 2018 साल में हम लोग जब शुरू किए थे तब हम लोग 33 एकड़ एरिया में शुरू किए थे और उस समय हम लोग पहुँचे थे 66 फार्मर के पास पहुँचे थे। उसके बाद 2019-20 फाइनेंशियल ईयर में हम लोग 210 एकड़ एरिया में जो खेसारी का व ग्रासपी का हम लोग डेमोन्स्ट्रेशन किए थे किसान का फील्ड में, डायरेक्टली किसान का फील्ड में, और उसमें 242 किसान भी बेनिफिटेड हुए थे। 2020-21 में हम लोग और भी एरिया बढ़ाया था, 225 एकड़ तक पहुँचा, उस समय हम लोग 260 किसान के पास पहुँचे। और हम लोग का काम करने का तरीका यही था, फार्मर एक इंटरेस्ट ग्रुप हम लोग बनाए थे किसान के सहायता में, समूह के आधार पर वो लोग सीड प्रोडक्शन करते था और हम लोग उसके लिए सीड सपोर्ट करते थे, रतन एंड प्रतीक का सीड देते थे, कुछ बायो फर्टिलाइजर देते थे और वो लोग प्रोडक्शन करते थे। उसके बाद हम लोग सीड को प्रोसेसिंग करके फिर उन लोगों और फिर रिसाइकलिंग किया जाता है, मतलब नेक्स्ट ईयर फिर किसान को हम लोग देते थे। इसी आधार पर अभी भी उस जो प्रोजेक्ट जो है ना उसको हम लोग स्केल अप किया है। जैसे आपको पता होगा हमारा यूनिवर्सिटी में क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर एक प्रोग्राम भी चल रहा है, उसी के साथ ये प्रोजेक्ट को जुड़ के हम लोग और भी ज़्यादा जो डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर खेसारी का आबादी होता है उस जगह पर भी हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं मैडम।
0: तो डॉक्टर साहब ये तो बातें हो गई हैं कि विश्वविद्यालय में कब से चल रहा है ये कार्यक्रम और अभी क्या कुछ कार्यक्रम चल रहे हैं इस परियोजना के तहत हमारे विश्वविद्यालय में।
1: हाँ मैडम, इसके आधार पर हम लोग का यहाँ पर और भी काम चल रहा है। एक्चुअली उस पहला जो प्रोजेक्ट हम लोग को मिला था 3 डिस्ट्रिक्ट में खेसारी के लिए, वो जो अच्छा काम हुआ था वो देखते हुए डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी अगले 2019 के दिसंबर महीना से हम लोग के 6 एस्पिरेशनल जो डिस्ट्रिक्ट आकांक्षित डिस्ट्रिक्ट होता है उस डिस्ट्रिक्ट के लिए भी हम लोग को प्रोग्राम दिया था। जैसे 6 डिस्ट्रिक्ट था हमारा, अभी भी वहाँ पर काम भी चल रहा है, अरारिया है, औरंगाबाद है, बांका है, कटिहार है, खगड़िया और पूर्णिया है। और अब इस सब डिस्ट्रिक्ट में हम लोग क्या काम कर रहे हैं ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट बात है। देखिए ये सब डिस्ट्रिक्ट में हम लोग, जैसे मान लिया अरारिया, अरारिया में हम लोग काम कर रहे हैं। देखिए बिहार में हमारा मखाना एक इम्पोर्टेंट क्रॉप है और हमारा यूनिवर्सिटी के द्वारा एक इम्पोर्टेंट वैरायटी भी हम लोग डेवलप किए सबर मखाना 1। तो सबर मखाना 1 हम लोग किसान के पास लेके जा रहे हैं। अभी अरारिया में 25 हेक्टर एरिया में हम लोग डेमोन्स्ट्रेट किए हैं। और अब एक आप लोगों को पता होगा बिहार में केला का खेती भी बहुत होता है, तो केला में कुछ प्रॉब्लम आ रहा था तो उस आधार पर देखते हुए हमारा यूनिवर्सिटी का भी टिश्यू कल्चर बनाना का लैब है, तो हम लोग टिश्यू कल्चर बनाना प्रोडक्शन करते हैं और केले का पौधा हम लोग किसान बंधु को देते थे। और अरारिया में 10 एकड़ हुआ था। और एक चीज़ देखिए, एक गोट है, जैसे हम लोग बोलते हैं बकरी एक ATM हम लोग बोलते हैं, तो बकरी का भी कुछ इम्पोर्टेंट रोल है किसान का फाइनेंशियल डेवलपमेंट करने के लिए। तो अरारिया में हम लोग बकरी का

0: छह डिस्ट्रिक्ट के बारे में बताते हैं। हर डिस्ट्रिक्ट में हम लोग किसान बंधु को सपोर्ट करते हैं और बी कीपिंग भी हम लोग कराते हैं। जो मधुमक्खी पालन है वो मधुमक्खी पालन भी कराते हैं। आपको पता होगा हमारे यूनिवर्सिटी में बी कीपिंग का एक प्रोसेसिंग का यूनिट भी है और उसमें भी हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट में भी सपोर्ट कर रहे हैं
1: जी। तो ये कुछ कार्यक्रम है जो हमारे विश्वविद्यालय में चल रहा है और आगे इस दिशा में अगर हम आकांक्षी योजनाओं के बारे में बात करें तो थोड़ी सी जानकारी उसके बारे में भी दें।
0: हाँ देखिए, आकांक्षी एरिया में हम लोग कैसे किसान बंधु को सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे हम एक्टिविटी जैसे आपको बताया था ना, जैसे केला के बारे में, केला का जो G9 वैरायटी का जो पौधा होता है ना, वो पौधा हम लोग किसान बंधु को देते हैं, उसका किसान बंधु को खाद भी देते हैं। जैसे प्लांट प्रोटेक्शन केमिकल, जैसे कीड़ा वगैरह को कंट्रोल करने के लिए, उसके लिए भी किसान बंधु को सपोर्ट करते हैं। पन्नी भी देते हैं और मल्चिंग मटेरियल भी देते हैं। वो नहीं, उसके साथ साथ देखिए, हमारा हर केवीके में दो यंग प्रोफेशनल है, वो लोग किसान के पास जाते हैं, रेगुलरली विजिट करते हैं, साइंटिस्ट भी जाते हैं। किसान का कुछ ही तरह का प्रोडक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम होता तो किसान को सपोर्ट करते हैं। उसी तरह से जैसे मधुमक्खी पालन में हम लोग किसान बंधु को बी बॉक्स देते हैं, फ्रेम देते हैं, फाउंडेशन सीट देते हैं, सुपार देते हैं, एम्प्टी बॉक्स भी देते हैं। तो इस तरह हम लोग बी कीपिंग के आधार पर किसान को सपोर्ट करते हैं। और मशरूम में हम लोग किसान बंधु को देते हैं, जैसे स्पॉन देते हैं, सबस्ट्रेट देते हैं, पीपी बैग देते हैं, फॉर्मालिन देते हैं, हैंड स्प्रे देते हैं। तो इस तरह किसान बंधु को हम लोग सपोर्ट करते हैं। और जो बाकी जैसे गोट के आधार पर, गोट के भी हम लोग जैसे डीवार्मिंग करने के लिए, वैक्सीनेशन करने के लिए, और जो बच्चा होता है बकरी का बच्चा, वो भी हम लोग सपोर्ट करते हैं। और रेगुलरली जैसे होता है किसान के लिए एक प्रॉब्लम होता है बकरी पालन में, जो फोडर का प्रॉब्लम होता है, तो उस आधार पर हम लोग पेरिनियल जो फोडर कल्टीवेशन करने के लिए भी किसान को हम लोग सपोर्ट करते हैं। पेरिनियल फोडर मतलब जो देखिए कोई को क्या क्या होता है ना, लीन पीरियड के समय जब होता है किसान को बकरी के लिए खाना नहीं मिलता, उस समय हम लोग सपोर्ट करते हैं। और उसके साथ UAMB ब्लॉक बोलते हैं, एक मिसाल फीड मटेरियल हम लोग डेवलप किए हैं, हमारे साइंटिस्ट लोग ने यहाँ का लोकल के आधार पर जैसे जरूरत पड़े उसी तरह उसको मॉडिफाई भी किया है, और उसके आधार पर किसान लोगों को हम लोग सपोर्ट भी करते हैं। और दूसरा जो मखाना जो आबादी होते हैं, जो सबर मखाना जो वन का जो प्रभेद है, वो हम लोग किसान को देते हैं, और कुछ खाद भी देते हैं, इंसेक्टिसाइड भी देते हैं, और रेगुलरली हमारा जो साइंटिस्ट है वहाँ पर किसान के जगह पर विजिट करते हैं
1: जी। तो ये कुछ बातें हैं जो बायोटेक किसान हब के आधार पर किसानों को सपोर्ट किया जा रहा है। और आगे बढ़ते हुए डॉक्टर साहब, कृषि उद्यमिता के विकास के लिए और क्या कुछ कार्य हो रहा है उसके बारे में हम जानना चाहेंगे।
0: हाँ देखिए, प्रोडक्शन के बाद सबसे बड़ा चैलेंज आता है किसान बंधु के पास, उसका मार्केट का सेलिंग करना, मार्केट तक पहुँचना, प्रोडक्ट को बेचना सबसे बड़ा चैलेंजिंग होते हैं। देखिए, हमारा सबसे ज़्यादा जो बायोटेक किसान आपका मेन टारगेट था स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर को सपोर्ट करना। देखिए, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर का इंडिविजुअल लेवल में मार्केट में बार्गेनिंग करने का पावर ज़्यादा नहीं रहते, तो उसी प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए मोस्टली हम लोग क्या किया है, सेल्फ हेल्प ग्रुप जो होता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया है। और टोटल हम लोग 34 सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए हैं किसान बंधुओं का। वो सेल्फ हेल्प ग्रुप को जो सदस्य है उन लोगों को हम लोग ट्रेनिंग देते हैं और उन लोगों को इकट्ठा करके करते हैं, उसके आधार पर प्रोडक्ट बेचने का बंदोबस्त करते हैं। जैसे हम मान लीजिए मशरूम एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। देखिए, रॉ मशरूम जो होता है जिस दिन का प्रोडक्शन उस दिन नहीं बेच पाते तो किसान के लिए प्रॉब्लम हो जाता, उसके आधार पर हम लोग कुछ प्रोडक्ट डेवलपमेंट उन लोगों को सपोर्ट किए, जैसे मशरूम का बिस्किट, मशरूम का पाउडर, उसका अचार व पिकेल जो बोले, ड्राई सूप, इस तरह प्रोडक्ट डेवलपमेंट किसान को सपोर्ट भी किए। और शायद के बारे में, हानि के बारे में, हम देखिए हमारा यूनिवर्सिटी में प्रोसेसिंग यूनिट है, तो किसान को हम लोग प्रोसेसिंग कैसे करना चाहिए उसको सिखाते हैं, उसका एक्सट्रैक्शन का भी बंदोबस्त करते हैं, करने के बाद कैसे बॉटलिंग करके और का प्रोजेक्ट के लोगों के आधार पर प्रोडक्ट को हम लोग ब्रांडिंग करते हैं, ब्रांडिंग करके लोकल मार्केट और डिस्टेंट जो मार्केट है उस जगह पर बेचने के लिए भी सपोर्ट करते हैं। और मखाना, आप पता होगा मखाना हमारे बिहार में तो ऑलरेडी एक नॉन प्रोडक्ट है, नॉन क्रॉप है, तो और मखाना का, बिहार का मखाना का बहुत डिमांड भी है। तो हम लोग मखाने के लिए पहले देखिए किसान लोग क्या करते थे, पहले किसान लोग जो उसका जो सीड होता है, जब प्रोडक्ट मिलता था उसी को जस्ट मिडिलमैन में बेच देते थे। लेकिन अभी हम लोग कोशिश कर रहे हैं उन लोगों को उसको कैसे अपना डोर लेवल में प्रोसेस करके, पैकिंग करके, प्रोजेक्ट का लोगो लगा के मार्केट में बेच सकते हैं, उसके लिए हम लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं। उसमें फ़ायदा भी हो रहा है, वो लोग ज़्यादा मुनाफा भी मिल रहा है, और उन लोग FPO फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी जुड़े हुए हैं, और अल्टीमेटली उन लोगों को बेनिफिट भी मिल रहा है। और केले के बारे में बताएंगे, केले बहुत ज़्यादा अभी प्रोडक्शन हो रहा है और उसके बेनिफिट भी किसान बंधु को मिल रहा है। तो किसान बंधु, बायोटेक किसान

0: हब हमारा जो सिक्स एस्पिरेशनल जो डिस्ट्रिक्ट वहाँ पर चल रहा है, तो वहाँ पर किसान को भी सपोर्ट भी मिल रहा है और हम लोग उम्मीद रखते हैं बायोटेक किसान के आधार पर जो एग्री एंटरप्रेन्योरशिप हम लोग डेवलप कर रहे हैं, किसान को उसमें मुनाफा तो जरूर मिल रहा है और भविष्य में भी मुनाफा उन लोगों को मिलते रहेंगे। तो इसी बात के साथ आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद।
1: तो किसान भाइयों और हमारे श्रोताओं, अगर बायोटेक किसान हब का नाम आप सुनते हैं तो आप समझ जाइए कि क्या कुछ इसके तहत किया जाता है, किसानों के लिए कैसे ये मददगार साबित होता है। आज जितनी भी बातें यहाँ पर आपको डॉक्टर साहब ने बताई हैं, तो मुझे लगता है कि अगर आपके मन में बायोटेक किसान हब को लेकर संशय होगा तो ज़रूर खत्म हो गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, अगले दिन आप सभी से और भी बातें होंगी इसी फ्रिक्वेंसी पर, 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। नमस्कार। उन्नत कृषि।

तैयार है आम के अद्भुत संसार से रूबरू होने के लिए। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर लेकर आ रहा है राष्ट्रीय आम समागम 2026, जिसका आयोजन 27 से 28 जून तक किया जाएगा। आइए और देखिए देश भर की सैकड़ों आम किस्मों की आकर्षक प्रदर्शनी, जहां स्वाद, सुगंध और रंगों का अनूठा संगम आपका स्वागत करेगा। इस विशेष आयोजन की थीम है स्वाद, संस्कृति और समृद्धि का संगम। आम समागम में किसानों, वैज्ञानिकों, उद्यमियों और आम प्रेमियों को एक ही मंच पर आने का अवसर मिलेगा। कार्यक्रम के दौरान आयोजित होगी राष्ट्रीय कार्यशाला, जिसका विषय है आधुनिक तकनीक से गुणवत्ता युक्त उत्पादन, भंडारण एवं प्रसंस्करण। देश के प्रतिष्ठित विशेषज्ञ आम उत्पादन, मूल्य संवर्धन और प्रसंस्करण की आधुनिक तकनीकों पर अपने अनुभव साझा करेंगे। इस अवसर पर आयोजित होगा किसान वैज्ञानिक सम्मान समारोह, जिसमें बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश के उत्कृष्ट आम उत्पादकों को बेस्ट मैंगो फार्मर अवार्ड प्रदान किया जाएगा। महिला आम उत्पादकों एवं मूल्य संवर्धन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिला उद्यमियों के लिए भी विशेष सम्मान और नगद पुरस्कार की व्यवस्था की गई है। और अब आपके लिए एक सुनहरा अवसर, यदि आपके बाग में उत्कृष्ट गुणवत्ता के आम हैं या आपके पास किसी विशेष किस्म के आम उपलब्ध हैं, आप भी आम प्रदर्शनी में अपनी आम की किस्मों को प्रदर्शित कर सकते हैं। आपकी प्रविष्टियों का मूल्यांकन विशेषज्ञों द्वारा किया जाएगा और चयनित प्रतिभागियों को आकर्षक पुरस्कार एवं नगद राशि से सम्मानित किया जाएगा। और हाँ, आम प्रेमियों के लिए होगा एक विशेष आकर्षण, मैंगो ईटिंग प्रतियोगिता। इस रोमांचक प्रतियोगिता के विजेताओं को भी आकर्षक नगद पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। तो देर किस बात की, अपने श्रेष्ठ आमों के साथ आइए, प्रदर्शनी में भाग लीजिए, विशेषज्ञों से सीखिए, नई तकनीकों को जानिए और आकर्षक पुरस्कार जीतने का अवसर पाइए। 27 से 28 जून राष्ट्रीय आम समागम 2026 बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है।

0: क्या आप सब खसरे के बारे में जानते हैं? हाँ या ना?
1: ऐसे बच्चे कभी ना कभी हम सभी ने अपने परिवार में या आस पड़ोस में देखे होंगे, हाँ या ना?
2: हाँ।
0: इसे ही कहते हैं खसरा, जिसे एक साधारण बीमारी समझा जाता है और इलाज की जगह पूजा पाठ करवा कर सोचते हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगा।
1: खसरा बहुत गंभीर बीमारी है जिसके कारण हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। अगर एक बच्चे को खसरा है तो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे को भी खसरा होना निश्चित है।
2: ये तो गंभीर समस्या है भाई।
0: समस्या तो गंभीर है चाचा, पर इसका सरल है उपाय।
2: क्या क्या क्या?
1: बच्चे को पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाने से इससे बचा जा सकता है।
2: अच्छा,
3: तो सबकी समझ में आ गया ना? खसरा रुबेला बीमारी है घातक, आइए इसे मिटाए जड़ तक।
4: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
5: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
4: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
5: आपकी सेहत की बातें,
4: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
5: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
4: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
5: वो कहाँ पर?
4: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
5: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
4: उन्नत कृषि। नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं अनु और हर रोज की तरह आप सभी के लिए उन्नत कृषि कार्यक्रम में खेती से जुड़ी बातें। और अभी फिलहाल यहां इस समय परवल जो है बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। नए अगर सब्जियों की बात करें तो उसमें परवल भी शामिल हो जाता है गर्मी के मौसम में। अब यहां पर खेती की बात कर रहे हैं तो इस समय हमारे जो किसान भाई हैं परवल की खेती करके अधिक मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे खेती परवल की और क्या क्या सावधानियां बरतनी हमारे किसान भाइयों को इसकी खेती के दौरान, और भी बहुत सारी बातें परवल की खेती से जुड़ी, इस विषय को लेकर आज हमारे बीच हैं डॉक्टर ममता कुमारी मैडम। मैं आप सभी को बता दूं, ये वैज्ञानिक हैं KVK सबौर, बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सबौर से। मैडम आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
6: थैंक यू अनु।
4: मैडम सबसे पहले तो हमारे सभी श्रोताओं और किसान भाइयों को परवल की खासियत के बारे में बता दीजिए कि इसमें क्या क्या गुण हैं।
6: परवल एक कद्वरीय सब्जी का महत्वपूर्ण सदस्य है और परवल के बारे में, परवल की बहुत सारी चीज़ें अपने घरों में बनती हैं।
4: जी,
6: जैसे अचार है, सब्जी है, चटनी है, इसका लोग कम तेल मसाला में भी अलग अलग उत्पाद बना करके खाना पसंद करते हैं। खास बात यह है भागलपुर के क्षेत्र के लिए कि भागलपुर में लगभग ये जितना भी दियरा का क्षेत्र है उसका मुख्य फसल परवल है और यहाँ हजारों एकड़ में परवल की खेती होती है। किसान के लिए आने वाले समय में कद्दूवर्गीय सब्जी का एक महत्वपूर्ण उत्पाद की तरह परवल आता है और यह नाथनगर, सुल्तानगंज, नाथनगर, सबौर, कहलगांव, पीरपैंती जैसे ब्लॉकों प्रखंडों में परवल की खेती बहुत बड़े भूभाग में की जाती है और इसमें किसान जो लगाते हैं इसको जब सितंबर अक्टूबर में पानी निकल जाता है बाढ़ का, उसके बाद लोग परवल लगाना प्रारंभ करते हैं और परवल लगाते हैं। परवल के साथ साथ वो करेले की बीज को भी डाल देते हैं। करेले की बीज को डाल देते हैं तो परवल समय के आने के साथ साथ परवल अपना बढ़वार में आता है, लेकिन उससे पहले हमारे किसान हैं जो करेले को एक इंटरक्रॉप की तरह लेकर के उत्पाद ले लेते हैं और करेला का फसल को बेच लेते हैं। हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे किसान भी हैं जो नीचे में परवल लगाते हैं और ऊपर की तरफ मिर्च लगाते हैं, जैसे वो मिर्च का भी उत्पादन अभी परवल के साथ साथ ले रहे हैं।
4: जी मैडम, अभी क्षेत्र के बारे में थोड़ा विस्तार से जानते हैं कि किस प्रकार की क्षेत्र होनी चाहिए जहाँ परवल की खेती हमारे किसान भाई कर पाए, या फिर जलवायु की बात करते हैं तो जलवायु कैसा होना चाहिए इसकी खेती के लिए?
6: परवल मुख्यतः सालों भर भी आप रख सकते हैं अगर है, लेकिन चूंकि यह दीरा क्षेत्र में लगता है तो दीरा क्षेत्र बाढ़ ग्रसित होता है।
4: जी, जी, जी।
6: और जुलाई अगस्त में जब बाढ़ आता है तो किसानों का स्टैंडिंग क्रॉप जो होता है फलन पे रहता है, फलन के एकदम उत्कर्ष चरम पे रहता है उस समय हमारे किसान भाइयों का फसल बह जाता है,
4: जी।
6: तो अब आने वाले दिनों में देखा गया है कि बहुत सारा ऐसा गांव है, आप जैसे खैरपुर है, लत्तीपुर है, इन सब गांव में परवल जो है ऊपरी भूमि में भी किसान अब लगाना प्रारंभ कर दिए हैं, जिससे उनको स्वयं का लत मिलना प्रारंभ हो गया है।
4: जी, मिट्टी किस प्रकार की होनी चाहिए मैडम इसकी?
6: इसके लिए मुख्यतः मिट्टी एक है कि दीरा में बलुआही मिट्टी होती है, और चूंकि परवल जब जमीन पर चलता है तो जहां जहां गांठ होता है वहां वहां से परवल का जड़ें आ जाती हैं और वो ज़्यादा तेजी से फैलाव दीरा वाले क्षेत्र में ही होता है। लेकिन ऐसी ये एक भ्रम के तौर पर ही है, क्योंकि जब ये ऊपरी भूमि में जाने लगे और हमारे किसान इसको अलान पर देने लगे तो इस तरह की समस्याओं का कोई या इस तरह के किसी भी प्रकार का इनपुट वहाँ नहीं रहता है, फिर भी परवल की खेती बहुत अच्छे तरीके से हो रही है।
4: जी, तो यहाँ पर अभी मैडम ने बताया कि परवल आप किस क्षेत्र में उगा सकते हैं, और एक भ्रांति के बारे में भी मैडम ने बताया कि लोग सोचते हैं कि ये बालू वाली जगह पर ही इसका जो है उत्पादन किया जा सकता है, लेकिन अभी मैडम ने बताया कि किसान भाई अब जो है ऊपर ज़मीन पर भी इसकी खेती कर रहे हैं। तो अब जो खेती हो रही है मैडम परवल की, उसमें बहुत सारी सावधानियों की ज़रूरत होती है, किसान भाइयों को पता होना चाहिए कि कहाँ पर वो गलती कर रहे हैं और सुधार कहाँ पर करनी है, तो कुछ ऐसी बातों के बारे में बताइए जब हमारे किसान भाई खेती कर रहे हैं तो सावधानियां उनको बरतनी चाहिए।
6: जी, परवल में सबसे पहले तो हमारे किसान भाइयों को सावधानी यह लेनी चाहिए कि किस परवल में नर और मादा अलग अलग पौधों में होता है
4: जी।
6: तो वो नर और मादा का सही अनुपात को मेंटेन करें, सही अनुपात में लगाएं, और अनुशंसित जो है नर मादा का वो 5 नर मादा पे 1 नर लगाना चाहिए, मतलब कि 10:2 के इस अनुपात में किसानों को लगाना चाहिए। लेकिन किसान भाई से जब बहुत सारे किसानों से जब बात मेरी हुई तो किसानों ने अपना जो बताया कि जब हम 5 और 1 पर देते हैं तो नर है जो बहुत तेजी से फैलता है और मादा को ये कर देता है, ढकने का प्रयास करने लगता है। उस केस में किसानों ने अपना 1:9 का रेशियो अनुपात में लगाया, 1 नर और 9 मादा, तो उनको उत्पादन बहुत अच्छा प्राप्त हुआ। पहला सावधानी ये है। दूसरा सावधानी क्या होता है कि नर और मादा का अनुपात सही मायने में नहीं रखा जाता है तो परागण की क्रिया सही सही नहीं होती है, और जब परागण की क्रिया सही नहीं होती है तो फल है जो सही अनुपात में लगता नहीं है, जो उनको एक उत्पादन प्राप्त होना चाहिए, हमारे किसान भाइयों को उत्पादन नहीं प्राप्त होता है। दूसरा क्या होता है कि फल में परागण हो भी जाता है और सही परागण तरीके से नहीं हो पाता है तो छोटे छोटे फल सड़ करके गिरना प्रारंभ कर देते हैं, जिससे किसान को ही कहीं ना कहीं हानि होती है। किसान इस तरह का अनुपात को पहला मेंटेन करें। दूसरा चीज़ है कि परवल के बारे में, कि परवल में सफ़ेद फूल होता है। सफ़ेद फूल होता है तो होता क्या है कि परवल में फल मक्खी की भी बहुत सारी समस्याएं आती हैं
4: जी।
6: तो किसान को लाइट ट्रैप पर जाना चाहिए, किसान को परवल में लाइट ट्रैप जरूर लगाएं जिससे फल मक्खी से उनको निदान प्राप्त हो जाता है
4: जी।
6: तीसरी समस्या आती है कि चूंकि यह दीरा में ज़्यादा लगाया जाता है और दीरा में गंगा जी की मिट्टी में निमाटोड का बहुत ज़्यादा आक्रमण हो रहा है, जड़ों में गांठ हो जाती है परवल में, और जड़ में गांठ होने जाने के कारण जो पोषक तत्व हैं सारा ऊपर की तरफ नहीं जा पाता है, और जब पौधा फलन में आता है तो पौधे का जो मांग होता है वो बढ़ जाता है, और उस स्थिति में क्या होता है कि पूरा का पूरा लत सूख जाता है फलन पर आने वाली अवस्था में। तो किसान भाइयों को चाहिए कि उसमें नीमयुक्त खली का उपयोग करें, नीमयुक्त कीटनाशक का प्रयोग करें, और साथ साथ गेंदा को अंतर्वर्ती फसल के तौर पर परवल में लगाएं, सरसों को अंतर्वर्ती फसल के तौर पर परवल में लगाएं, जो कि प्राकृतिक रूप से निमाटोड का नियंत्रण हो जाता है
4: जी। मैडम, अभी बाजार में जब हम परवल खरीदने जाते हैं तो 2 किस्म के परवल हमें देखने को मिलते हैं, एक डार्क ग्रीन और एक हल्का ग्रीन, और एक में वाइट धारीदार भी रहता है, तो इसमें क्या अंतर है, क्या बीज से ये अंतर उत्पन्न होती है या फिर क्या है ये, इसके बारे में थोड़ा बताएं।
6: परवल की कई प्रजातियां हमारे यहाँ लोकल में लगती हैं, जैसे स्वर्ण रेखा लगती है, स्वर्ण रेखा।
4: तो कौन सी किस्म हमारे क्षेत्र के लिए बहुत मतलब किसान भाइयों को बीज जो है वो चयन करना?
6: हमारे यहाँ बहुत पुराने समय से स्वर्ण रेखा, स्वर्ण अलौकिक जो कि बिना धारी वाला होता है, थोड़ा चमकीला होता है, हल्के रंग का होता है,
4: इसको बहुत ज्यादा
6: करता है। स्वर्ण रेखा काफी दिनों से हमारे यहाँ लग रहा है। बहुत सारी लोकल प्रजातियां हैं, जैसे निमिया है, डंडाली है, ये सब भी किसान लगा रहे हैं। और मुख्यतः किसान परवल का जो लत है बाढ़ में बह जाने के कारण बंगाल से ला रहे हैं, गया से ला रहे हैं, समस्तीपुर से ला रहे हैं। तो किसान अपने द्वारा बहुत सारे ऊपरी भूमि में भी रखे हुए हैं, तो किसान लोकल भी है, इसकी आपूर्ति करना प्रारंभ करती है।
4: जी, तो किसान भाइयों अभी आप जान रहे थे परवल की खेती आपको कैसी करनी चाहिए और क्या कुछ सावधानियां हैं जो मैडम ने बताई, वो बहुत ज़रूरी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। इससे आपको हानि बिल्कुल भी नहीं होगी और मुनाफा, आपके उत्पादन में अधिक मुनाफा मिलेगा आपको। तो अगले दिन एक अलग विषय के साथ हम हाजिर होंगे। फ्रिक्वेंसी यही है, याद रखिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ FM ग्रीन। नमस्कार। उन्नत कृषि

तैयार है आम के अद्भुत संसार से रूबरू होने के लिए। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर लेकर आ रहा है राष्ट्रीय आम समागम 2026, जिसका आयोजन 27 से 28 जून तक किया जाएगा। आइए और देखिए देश भर की सैकड़ों आम किस्मों की आकर्षक प्रदर्शनी, जहां स्वाद, सुगंध और रंगों का अनूठा संगम आपका स्वागत करेगा। इस विशेष आयोजन की थीम है स्वाद, संस्कृति और समृद्धि का संगम। आम समागम में किसानों, वैज्ञानिकों, उद्यमियों और आम प्रेमियों को एक ही मंच पर आने का अवसर मिलेगा। कार्यक्रम के दौरान आयोजित होगी राष्ट्रीय कार्यशाला, जिसका विषय है आधुनिक तकनीक से गुणवत्ता युक्त उत्पादन, भंडारण एवं प्रसंस्करण। देश के प्रतिष्ठित विशेषज्ञ आम उत्पादन, मूल्य संवर्धन और प्रसंस्करण की आधुनिक तकनीकों पर अपने अनुभव साझा करेंगे। इस अवसर पर आयोजित होगा किसान वैज्ञानिक सम्मान समारोह, जिसमें बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश के उत्कृष्ट आम उत्पादकों को बेस्ट मैंगो फार्मर अवार्ड प्रदान किया जाएगा। महिला आम उत्पादकों एवं मूल्य संवर्धन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिला उद्यमियों के लिए भी विशेष सम्मान और नगद पुरस्कार की व्यवस्था की गई है। और अब आपके लिए एक सुनहरा अवसर, यदि आपके बाग में उत्कृष्ट गुणवत्ता के आम हैं या आपके पास किसी विशेष किस्म के आम उपलब्ध हैं, आप भी आम प्रदर्शनी में अपनी आम की किस्मों को प्रदर्शित कर सकते हैं। आपकी प्रविष्टियों का मूल्यांकन विशेषज्ञों द्वारा किया जाएगा और चयनित प्रतिभागियों को आकर्षक पुरस्कार एवं नगद राशि से सम्मानित किया जाएगा। और हाँ, आम प्रेमियों के लिए होगा एक विशेष आकर्षण, मैंगो ईटिंग प्रतियोगिता। इस रोमांचक प्रतियोगिता के विजेताओं को भी आकर्षक नगद पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। तो देर किस बात की, अपने श्रेष्ठ आमों के साथ आइए, प्रदर्शनी में भाग लीजिए, विशेषज्ञों से सीखिए, नई तकनीकों को जानिए और आकर्षक पुरस्कार जीतने का अवसर पाइए। 27 से 28 जून राष्ट्रीय आम समागम 2026 बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है।

0: खसरा कितनी गंभीर बीमारी है। टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MR टीका 9 से 12 महीने और दूसरा MR टीका 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर है, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MR टीका लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हों, तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि। नमस्कार श्रोताओं, सभी के लिए आप सभी के बीच लेकर आ गए हैं खास विषय। गर्मी का मौसम आ चुका है और ऐसे में पशुओं की खास देखभाल करना बहुत ज़रूरी होता है। उनके आहार की, उन्हें समय समय पर आप किस तरह के आहार दे रहे हैं, चारा दे रहे हैं, उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है। और आज हम एक खास विषय लेकर आए हैं। जी हाँ, आज हम बात करेंगे पशुओं को उपचारित भूसा खिलाने के महत्व के बारे में। तो इस विषय को लेकर आज हमारे बीच डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार, जो कि पशु वैज्ञानिक हैं KVK बांका से, और आज वो बहुत सारी जानकारी आपको देंगे उपचारित भूसा के बारे में कि कैसे आप खिलाएं, क्या महत्व है इसका, अगर आप पशुओं को खिलाते हैं तो क्या फ़ायदे मिलेंगे आपको, सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में।
5: धन्यवाद मैडम।
4: डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो बताएं कि ये उपचारित भूसा क्या होता है।
5: एक्चुअली हमारे पशुपालक जो भूसा को खिलाते हैं ना, भूसा को खिलाते हैं तो उसमें पौष्टिकता कम होती है, सुपाच भी बहुत ज़्यादा नहीं होती है, तो उसको हम लोग उपचारित करते हैं, बहुत सारे केमिकल रसायन से उपचारित करते हैं। उसमें सबसे ज़्यादा प्रचलित है जो यूरिया से उपचारित करने की, तो यूरिया से उपचारित जो करते हैं उसी भूसा को जब पशु खिलाते हैं उसको उपचारित भूसा कहते हैं।
4: जी, उपचारित भूसा आपने जाना कि क्या होता है और इसके खिलाने के क्या कुछ फ़ायदे मिल सकते हैं।
5: एक्चुअली जब हम किसी चीज़ से उपचारित करते हैं, एग्जाम्पल ले लें, हम लोग यूरिया उपचारित की बात कर रहे हैं, यदि यूरिया से उपचारित करते हैं तो इसमें क्या होता है, वो जो भूसा है वो ज़्यादा सुपाच हो जाती है। जैसे कि मक्के की डंठल हो गई या चावल का छिलका हो गया, धान का छिलका, यदि इसको उपचारित कर देते हैं तो ये मुलायम हो जाती है, मतलब अधिक पलेटेबल, अधिक स्वाद लेकर पशु खाती है। इसके साथ साथ इसमें पौष्टिकता भी बढ़ जाती है, तो ये सब काफ़ी फायदे हो जाते हैं, मतलब उसकी उपयोगिता बढ़ जाती है। इसलिए
4: पौष्टिकता से बढ़ जाती है और सुपाच हो जाता है, आसानी से पचने वाला है पशुओं के लिए। जी, तो डॉक्टर साहब, अब तो अगर इसे खिला रहे हैं अपने पशुओं को, हम हमारे किसान भाई, पशुपालक भाई, तो क्या कुछ सावधानियां उन्हें बरतनी चाहिए उपचारित भूसा को खिलाने समय।
5: एक्चुअली है क्या कि यदि उपचारित भूसा, यदि यूरिया से उपचारित करके खिला रहे हैं, इसके जो नियम है इसके अंतर्गत है कि उपचारित किए हैं तो 21 दिन के बाद ही इसको खिलाना है ना।
4: अच्छा।
5: तुरंत खिलाएंगे तो यूरिया के कारण हानि भी कर सकती है, तो 21 दिन के बाद खिलानी है। और इसमें क्या होता है, जानवर जो खाती है उसमें उसका स्वाद बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, उसकी गंध जो निकलती है, तो इसके कारण अमोनिया गंध निकलती है, जिसके कारण शुरुआत में खाना कम पसंद करती है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो भूसा उपचारित भूसा है उसको आधे घंटे के लिए कम से कम बाहर में बिछा कर छोड़ देना, किसी पेपर पे या प्लास्टिक बिछा कर छोड़ देना,
4: या धूप में,
5: शेड में है। अच्छा। शेड में है या धूप ही थोड़ा रहे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन कहीं पर ही बिछा देना ताकि केवल उसका गैस निकल जाए। वो गैस निकल जाने के बाद आप उसको, हाँ, उसकी गंध निकल जाए, उसके बाद आप अपने पशु को खिला सकते हैं। और उपचारित करने समय खासकर ध्यान देने की जरूरत है कि जो घोल बना के रखे हैं उसको जानवर डायरेक्ट पी नहीं जाए, इसकी सावधानी रखने की जरूरत है और बच्चों से दूर रखने की जरूरत है।
4: अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो आपने कहा कि मतलब डायरेक्ट ना पी जाए, तो फिर कैसे पिलाना होगा उन्हें?
5: नहीं, उसको पिलाना नहीं बल्कि उस घोल से उसको उपचारित करना है।
4: अच्छा,
5: और इसको उपचारित करने के जो तरीके हैं वो हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि यदि आपके पास भूसा है तो 100 किलो भूसा लेंगे, 100 किलो भूसा के लिए मात्रा जो बता रहे हैं, 100 किलो भूसा किसी चीज का, या तो पुआल की कुट्टी हो, या गेहूं का भूसा हो, या मकई का डंठल हो, या मकई की बलरी हो, सभी चीज का आप यूरिया उपचारित कर सकते हैं। इसको करने के लिए 100 किलो भूसे के लिए आपको 4 किलो यूरिया लगेगी, है ना। 4 किलो यूरिया का 40 लीटर पानी में घोल बनानी है, 40 लीटर पानी लेंगे, उसमें 4 किलो यूरिया डाल देंगे, उसका बढ़िया से डंडे से घुमाकर घोल लेंगे, एक घोल तैयार हो गई। उसके बाद क्या करना है, उस 100 किलो भूसे को एक प्लेन सरफेस पे बिछा देना, बिछा देना तो उसकी जो भूसे हैं उसकी मोटाई जो थिकनेस होती है वो लगभग 6 इंच की होनी चाहिए, है ना, इतनी मोटा बिछा दिए। उसके बाद उसके बराबर मात्रा में हाथ से भी या कोई छलनी लेकर उस पर छिड़क देना है, बराबर मात्रा में छिड़क दिए तो 100 किलो भूसा के लिए हो गया। फिर से दूसरा 100 किलो भूसा लेना, उसी पर दूसरे परत के रूप में बिछा देनी है और अलग से फिर से 4 किलो यूरिया और 40 लीटर पानी का घोल बनाकर छिड़कना है। इसी तरह तह पे तह बनाते जाएंगे। उसके बाद दो आदमी उस पर चल के उसको बैठाएंगे, दबाएंगे, मतलब कि अच्छी तरह से पैक हो जाए। इस तरह से मान लिया कि 1 टन भूसे को उपचारित करना था तो 10 लेयर 10 परत बनेगी, 10वां परत समाप्त हो जाती है। उसके बाद एक प्लास्टिक ले लें, उससे ऊपर से ढक दें। यदि प्लास्टिक की व्यवस्था आपके पास नहीं है तो नॉर्मल पुआल जो होते हैं सूखा पुआल वो भी डाल दे सकते हैं, उसके ऊपर जूट का बोरा या प्लास्टिक का बोरा रख दें। इस प्रकार से उसको 21 दिन के लिए छोड़ देना। 21 दिन के बाद क्या होगा कि ये जो भूसा है वो देखिएगा थोड़ा कलर डाउन हो जाएगी, लेकिन रंग उसकी डाउन हो जाएगी, भूरा टाइप पर थोड़ी हो जाएगी, लेकिन बहुत मुलायम हो जाएगी और सुपाच हो जाती है। अब इसको खिलाने के लिए वही करना है कि आधे घंटे के लिए बाहर छोड़ देना है और धीरे धीरे करके पशु को आदत लगानी इसको खिलाने के लिए। इसके कारण होती क्या है, एक्चुअली भूसा जो होती है उसमें लिग्निन रहता है, सेलुलोज लिग्निन बॉन्ड, लिग्नोसेलुलोज बॉन्ड रहती है, उसके कारण सुपाच नहीं रहती है। अब यूरिया जो डाले इससे अमोनिया गैस बनती है, वो अमोनिया गैस उसको तोड़ देती है जिसके कारण ये मुलायम हो जाती है और ये नाइट्रोजन का बहुत अच्छा सोर्स हो जाता है। मतलब कि जिस भूसे में प्रोटीन की मात्रा मात्र 2 से 2.5% तक होती है वो बढ़ के 6 से 7% हो जाती है, मतलब कि प्रोटीन की मात्रा 2 से 3 गुना तक बढ़ जाती है, यानी आपके पशु को प्रोटीन सस्ते में उपलब्ध हो जाएगी और सुपाच हो जाएगी। खास करके मक्के का डंठल या चावल का छिलका, जो धान का छिलका है वो यदि पशु नहीं ऐसे खा रहे हैं उसको यूरिया उपचारित करके खिलाइए, बहुत अच्छी तरह से खाएगी और उसको पौष्टिकता भी अधिक मिलेगी
4: जी। और अगर मान लीजिए कि हम गाय और भैंस को खिलाते हैं और मेन मोटिव है हमारा कि हम दूध का उत्पादन कर रहे हैं, तो क्या इससे ये जो भूसा जो है उपचारित करके खिलाया जाता है तो क्या वृद्धि होती है दूध में? हाँ,
5: बहुत अच्छा प्रश्न है खासकर पशुपालकों के लिए कि यदि आप यूरिया उपचारित करके भूसा खिलाते हैं तो आपको खल्ली मतलब प्रोटीन का सोर्स होता है वो कम देनी पड़ेगी और दूध भी इससे बढ़ेगी। हमारे यहाँ किसान जो पूरी तरह संतुलित रूप में खिला रहे हैं उनको इतना फायदा हो रहा है कि यदि वो 5 किलो दाना खिला रहे हैं पशु को और यूरिया उपचारित भूसा यदि खिलाना शुरू करते हैं, पहले वो प्लेन भूसा खिला रहे थे तो 5 किलो दाना देने की जरूरत पड़ती थी, यदि यूरिया उपचारित भूसा देना शुरू कर दिए हैं तो 5 किलो की जगह मात्र 4 किलो दाना देने से काम चल जाती है। मतलब कि प्रत्येक दिन एक जानवर पर 1 किलो दाना, मतलब कि 24 रुपया की बचत कर ले रहे हैं, यानी 10 गाय उनके पास है, 240 रुपये की प्रत्येक दिन की बचत हो जा रही है, यानी कि महीने में एक लेबर का खर्च बचा ले रहे हैं। और नॉर्मल किसान जिनकी गाय 4 से 5 लीटर दूध दे रही है वो यदि यूरिया उपचारित भूसा खिलाते हैं तो उनको खल्ली भी देने की बहुत कम आवश्यकता पड़ेगी। ये बहुत फायदेमंद चीज़ होती है जिसमें खर्च भी कम है, केवल थोड़ी सी मेहनत है
4: जी। मतलब मेहनत है और जितना ज़्यादा आपका खर्च लगता था अन्य जो भूसे हैं या फिर चारा वगैरह लाने में, उसमें भी ये अगर उपचारित भूसा खिलाते हैं तो उसमें भी कमी आएगी, है ना?
5: हाँ, इसमें भी कमी आती है और खास करके इसके संग्रह करने में बहुत किसान भाइयों की हेल्प मिलेगी। इसलिए हेल्प मिलती है कि इसको जब दबा कर हम रखते हैं ना तो इसके कारण क्या होते हैं, जिस जगह पे आप 1 टन भूसा रख पा रहे थे वहां पर अब 2 से 2.5 टन भूसा आप रख पाएंगे।
4: ये हल्का होता है,
5: ये चूंकि ये बहुत ज्यादा पैक हो जाती है, अच्छा। हल्का होने कारण कम अटती थी, लेकिन अब इसको पानी की मात्रा मिल गई और 2 आदमी मिलकर चढ़ के दबा रहे हैं जिसके कारण क्या होती है कम जगह में ज्यादा स्टोर कर पा रहे हैं। और इसके साथ साथ इसमें अमोनिया की जो गंध होती है जिसके कारण इसमें चूहे नहीं लगते हैं, अच्छा। और कोई भी फंगस नहीं लेंगे, कीड़े नहीं लेंगे। पशुपालक भाई को जब ये उपचार करने के तरीके बताए जाते हैं तो उनको 2 तरह की परेशानी नजर आती है। एक तो होती है कि 4 किलो यूरिया मिला रहे इसके कारण मेरे जानवर को कुछ हो तो नहीं जाएगी, दूसरी परेशानी रहती, 40 लीटर पानी मिला रहे हैं तो सड़ तो नहीं जाएगी मेरी भूसे। तो एक किसान पशुपालक भाई ये आपको बता दें कि जो 21 दिन के लिए हम लोग छोड़ रहे हैं तो यूरिया नहीं रह जाती है। आप लोग सभी जानते हैं जब पानी में यूरिया को मिलाई जाती है तो अमोनिया गैस बन जाती है, वही अमोनिया गैस उस भूसे में रहती है, इसलिए उससे डरने की बात नहीं है। और दूसरी बात, पानी जो मिला रहे हैं इसमें अमोनिया गैस के कारण इसमें फंगस तक नहीं लगेंगे। आप इसको 2-4 साल तक भी संग्रह कर सकते हैं, इसमें चूहे भी नहीं लगेंगे, जो कि आपकी समस्या होती है चूहे लगने की। केवल परेशानी एक ही चीज आपकी आएगी कि जो भूसे में आप अनाज गेहूं ये सब अंदर में रखते हैं वो नहीं रख पाएंगे यदि यूरिया उपचारित भूसा करते हैं तो। बाकी स्टोर करने, संग्रह करने के लिए बहुत अच्छा तरीका भी है।
4: तो सर ये कितने दिन तक स्टोर कर सकते हैं?
5: इसको पैक करके रख सकते हैं 2-4 साल तक आराम से रख सकते हैं, मतलब कह सकते हैं 5 साल तक आराम से स्टोर करके रख सकते हैं यदि आप ऊपर से पैक करके रख सकते हैं कि अमोनिया गैस बाहर नहीं निकल जाए। यदि पूरे खुले में कर रहे हैं प्लास्टिक से नहीं ढक पा रहे हैं तो 1 साल तक आराम से आप रख सकते हैं, यदि प्लास्टिक से बढ़िया से पैक कर दिया तो 5 साल तक कोई समस्या नहीं आएगी आप।
4: जी, तो किसान भाइयों और हमारे पशुपालक भाइयों, आज उपचारित भूसा के बारे में आपने जाना। डॉक्टर साहब, ज्यादा ज्यादा कोई संदेश आप हमारे किसान भाइयों और पशुपालक भाइयों को देना चाहेंगे?
5: पशुपालक भाई को हम एक ही संदेश देना चाहेंगे कि हम लोग की जो पशुपालन में सबसे अधिक खर्च होती है वो खिलाने पे खर्च होती है, तो हम लोग ये कोशिश करें कैसे कम खर्च में अधिक पौष्टिकता अपने पशु को उपलब्ध करा पाएं। इसके लिए नई नई तकनीक आती है, जैसे भूसे को यूरिया उपचारित करके खिलाना, मक्के को डंठल को खिलाना, ये सब तरीके अपनाएं और नई तकनीकें जो पशुपालन में है उसका उपयोग करके हम लोग आधुनिक रूप से पशुपालन करें, तभी हम लोग फायदा ले सकते हैं।
4: और अगर आप बांका के आसपास हैं तो कृषि विज्ञान केंद्र बांका भी जा सकते हैं, डॉक्टर धर्मेंद्र सर से आप जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं अगर आप, आपके पशु को लेकर कुछ भी समस्याएं हो रही हैं तो। तो आज के लिए रेडियो वार्ता में तो इतना ही, अगले दिन एक अलग विषय के साथ हम हाजिर होंगे आप सभी के बीच। सुनते रहिए उन्नत कृषि कार्यक्रम। नमस्कार। उन्नत कृषि
6: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर आप सबका स्वागत करता है स्वाद संस्कृति और समृद्धि के संगम राष्ट्रीय आम समागम सह कार्यशाला में। तारीख याद रखें 27 से 28 जून 2026।

तैयार है आम के अद्भुत संसार से रूबरू होने के लिए। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर लेकर आ रहा है राष्ट्रीय आम समागम 2026, जिसका आयोजन 27 से 28 जून तक किया जाएगा। आइए और देखिए देश भर की सैकड़ों आम किस्मों की आकर्षक प्रदर्शनी, जहां स्वाद, सुगंध और रंगों का अनूठा संगम आपका स्वागत करेगा। इस विशेष आयोजन की थीम है स्वाद, संस्कृति और समृद्धि का संगम। आम समागम में किसानों, वैज्ञानिकों, उद्यमियों और आम प्रेमियों को एक ही मंच पर आने का अवसर मिलेगा। कार्यक्रम के दौरान आयोजित होगी राष्ट्रीय कार्यशाला, जिसका विषय है आधुनिक तकनीक से गुणवत्ता युक्त उत्पादन, भंडारण एवं प्रसंस्करण। देश के प्रतिष्ठित विशेषज्ञ आम उत्पादन, मूल्य संवर्धन और प्रसंस्करण की आधुनिक तकनीकों पर अपने अनुभव साझा करेंगे। इस अवसर पर आयोजित होगा किसान वैज्ञानिक सम्मान समारोह, जिसमें बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश के उत्कृष्ट आम उत्पादकों को बेस्ट मैंगो फार्मर अवार्ड प्रदान किया जाएगा। महिला आम उत्पादकों एवं मूल्य संवर्धन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिला उद्यमियों के लिए भी विशेष सम्मान और नगद पुरस्कार की व्यवस्था की गई है। और अब आपके लिए एक सुनहरा अवसर, यदि आपके बाग में उत्कृष्ट गुणवत्ता के आम हैं या आपके पास किसी विशेष किस्म के आम उपलब्ध हैं, आप भी आम प्रदर्शनी में अपनी आम की किस्मों को प्रदर्शित कर सकते हैं। आपकी प्रविष्टियों का मूल्यांकन विशेषज्ञों द्वारा किया जाएगा और चयनित प्रतिभागियों को आकर्षक पुरस्कार एवं नगद राशि से सम्मानित किया जाएगा। और हाँ, आम प्रेमियों के लिए होगा एक विशेष आकर्षण, मैंगो ईटिंग प्रतियोगिता। इस रोमांचक प्रतियोगिता के विजेताओं को भी आकर्षक नगद पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। तो देर किस बात की, अपने श्रेष्ठ आमों के साथ आइए, प्रदर्शनी में भाग लीजिए, विशेषज्ञों से सीखिए, नई तकनीकों को जानिए और आकर्षक पुरस्कार जीतने का अवसर पाइए। 27 से 28 जून राष्ट्रीय आम समागम 2026 बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है।

0: खांसी एक, खांसी दो, खांसी तीन, बच गई भैया देश की बीन। टीबी के कारण को जानो, खांसी हो तो मुंह ढक कर खांसो। टीबी रोग हवा में फैले, रखो अपना औरों का ध्यान। घर में धूप रोशनी हवा मिले तो कीटाणु सब मर जाएंगे, रोग मुक्त हम हो जाएंगे। खांसी खो खांसी। बलगम में है भरे कीटाणु, रख कागज में इसे जला दो या डाल राख में इसे दबा दो, रहे न टीबी नाम मिटा दो। खांसी खो खांसी। टीबी मुक्त भारत बनाए,
1: खुद भी बचे देश भी बचाए।
2: टीबी हारेगा देश जीतेगा।

0: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
1: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
0: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
1: आपकी सेहत की बातें,
0: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
1: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
0: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
1: वो कहाँ पर?
0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
1: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।

0: तो हो जाए सब दंग।
1: CIET प्रस्तुत करता है
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
1: आप सभी श्रोताओं को आपके साथी अजीत का नमस्कार, जोहार, जय हिंद। श्रोताओ, आइए सुनते हैं सबसे पहले आज का सुंदर विचार जो हमें भेजा है धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल जी ने। लिखते हैं, गांव की मिट्टी में वो ताकत है जो इंसान को अपनी भाषा, संस्कृति और जड़ों से जोड़े रखती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके सुविचार के लिए। तो आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी का, यवतमाल महाराष्ट्र से क्षितिज संदीप कोल्हे, गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरथा बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलाऊ दास, जय दास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतिम बाई मानिकपुरी, और तहसील ठियोग जिला शिमला हिमाचल प्रदेश से सूरज चौहान। बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं आप सबका संदेश भेजने के लिए। आपसे यही निवेदन रहेगा हमारा कि इसी तरह से बने रहिए उमंग कार्यक्रम के साथ। स्वागत है एक बार फिर से और आइए अब चलते हैं हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी में। श्रोताओं, पिछले सप्ताह हमने चर्चा की थी भारत की विभिन्न झीलों के बारे में, याद है ना। हमने बात की थी मणिपुर की अनोखी झील लोकटक, हिमालय की सुरम्य वादियों में बसी मानसरोवर झील, ओडिशा की चिल्का झील और कश्मीर की डल झील की। आशा है आपको जरूर पसंद आई होगी। तो आइए अब चलते हैं आज की चर्चा में। श्रोताओ, इस सप्ताह उमंग कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको ले चलेंगे भारत के विचित्र, रहस्यमयी और अनूठी गुफाओं में। सचमुच बड़ा ज्ञानवर्धक और मनोरंजक होगा उनके बारे में जानना, है ना। लेकिन पहले आपको ये तो बता दें कि हम गुफा को भौगोलिक रूप से परिभाषित कैसे करेंगे। तो आइए सुनते हैं इसकी परिभाषा। श्रोताओ, आम बोलचाल की भाषा में हम झील, पर्वत, लगून, मानसून जैसे शब्दों को तो कह देते हैं, लेकिन सही मायनों में उसकी परिभाषा वैज्ञानिक रूप से नहीं जानते। श्रोताओ, गुफा पृथ्वी की सतह के नीचे या अंदर प्राकृतिक रूप से बनी हुई खोखली जगह को कहते हैं। अगर आप पूछें कि इसे सरल शब्दों में कैसे कहें, तो आपको बता दूं कि धरती या पर्वत या समुद्र के भीतर प्राकृतिक रूप से बनी खोखली जगह को गुफा कहते हैं। हाँ, ये कभी कभी मानव निर्मित भी हो सकती है। तो आइए अब आते हैं आज के विषय पर। आज हम चर्चा करेंगे भारत की एक अद्भुत गुफा की, जिसे हम भीम बैठका गुफा के नाम से जानते हैं। श्रोताओं, इस नाम के पीछे एक बड़ी दिलचस्प पौराणिक कथा है। ऐसा कहते हैं कि यह नाम महाभारत के भीम से जुड़ा है। ऐसी मान्यता है कि भीम इस स्थान पर रुके थे, भीम बैठका यानी भीम के बैठने की जगह। इस गुफा को भीम की आश्रय स्थली भी कहा जाता है। सचमुच ये बड़ी रोचक बात है, इस गुफा को भीम की आश्रय स्थली भी कहा जाता है। तो आइए श्रोताओं, अब जानते हैं कि भीम बैठका की गुफा है कहाँ। तो आपको बता दें, ये जगह मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले में है, जो राजधानी भोपाल से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर है। ये विंध्याचल पर्वत श्रृंखला में पड़ती है। ये अत्यंत प्राचीन गुफाएं हैं। लेकिन अब एक और प्रश्न मेरे मन में आता है, आपके मन में भी आ रहा होगा, और वो प्रश्न ये है कि भीम बैठका की गुफाओं का पता कैसे चला। तो श्रोताओ, इसके पीछे बड़ा मनोरंजक किस्सा है। वहां के स्थानीय लोग तो इन गुफाओं के बारे में जानते थे, लेकिन इसका पता विश्व को तब चला जब डॉक्टर विष्णु वाकणकर ने इसके बारे में प्रामाणिक ढंग से जानकारी दी। तो आइए जानते हैं कैसे पता चला डॉक्टर विष्णु वाकणकर जी को। तो आपको बता दें कि डॉक्टर विष्णु वाकणकर एक जाने माने पुरातत्वविद रहे हैं। वर्ष था 1956। एक बार वे ट्रेन से भोपाल से इटारसी जा रहे थे। ट्रेन विंध्य पर्वतमाला से होकर जा रही थी। श्रोताओं, यदि आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो डॉक्टर विष्णु वाकणकर को जरूर याद रखिएगा। ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। जी, तो मैं आपको बता रहा था कि वे ट्रेन से भोपाल से इटारसी जा रहे थे। तो ऐसा हुआ कि उन्होंने ट्रेन की खिड़की से कुछ ऐसी चट्टानों और पहाड़ियों को देखा जो बड़ी कलात्मक लगी। वे दूसरी चट्टानों से भिन्न थीं। वे उन्हें अपनी फ्रांस और स्पेन की यात्रा के दौरान देखी गई प्रागैतिहासिक शैल चित्रों वाली चट्टानों जैसी लगी। तो फिर क्या था, वे उतर गए अगले स्टेशन पर और उस स्थान पर पहुंचे। बाद में उन्होंने बताया कि पहली गुफा में घुसते ही वे आश्चर्यचकित रह गए जब उन्होंने वहां बहुत सारे शैल चित्र यानी पत्थरों पर बने चित्र देख लिए, जिन्हें हम रॉक पेंटिंग्स कहते हैं। जी हाँ श्रोताओ, इन गुफाओं में 30,000 वर्ष तक पुराने शैल चित्र हैं, जो पूरा पाषाण युग से मध्यकाल तक की झांकी प्रस्तुत करते हैं। इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए डॉक्टर विष्णु वाकणकर को सन 1975 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और वर्ष 2003 जुलाई में यूनेस्को ने भीमबेटका की गुफाओं को विश्व धरोहर घोषित किया। ये खोज पुरातत्व और मानव अध्ययन की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे ये साबित हुआ कि भारत में मानव सभ्यता कितनी प्राचीन और निरंतर है। तो आइए श्रोताओं, आप जानते हैं कि इन गुफाओं में क्या ऐसी बात है जो इसे खास बनाती है। सबसे बड़ी बात यह है कि यह भारत का सबसे पुराना ज्ञात मानव आवास है, जिसमें 600 से भी अधिक शैलाश्रय या रॉक शेल्टर्स हैं। ये प्रकृति द्वारा बने आवास हैं। इन गुफाओं में शिकार, सामूहिक नृत्य, युद्ध, पशु पक्षी और प्रारंभिक मानव की रोजमर्रा की जिंदगी के चित्र हैं। श्रोताओं, इन चित्रों में गेरुआ, लाल, सफेद, पीले और हरे रंगों का इस्तेमाल हुआ है। ये रंग वनस्पति से बने हैं, इसलिए हजारों वर्षों बाद भी ये टिके हुए हैं। अगस्त 1990 में भारत सरकार द्वारा इसे राष्ट्रीय महत्व का स्थान घोषित किया गया। ये वो जगह है श्रोताओं, जहां संभवतः आदि मानव ने पहली बार पत्थरों के दीवारों को कैनवस बनाया। हम भीमबेटका की गुफाओं को भारत के इतिहास की पहली चित्र गैलरी भी कह सकते हैं। तो श्रोताओं, भीमबेटका की गुफाएं सचमुच अद्भुत हैं। अब सुनिए आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से। आज का प्रश्न है, भीमबेटका की गुफाओं की खोज किस पुरातत्वविद ने की? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, भीमबेटका की गुफाओं की खोज किस पुरातत्वविद ने की? 8800440559 है हमारा IVRS नंबर और audio@ciet.nic.in है हमारे ईमेल का पता। आप इन दोनों पतों पर हमारे प्रश्नों के उत्तर और अपने संदेश भेज सकते हैं। अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम संकल्प की धनी वसंती। श्रोताओं, ये कार्यक्रम एक महान पर्यावरण नेत्री वसंती के जीवन और पर्यावरण के संरक्षण में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में एक नाटक के द्वारा मनोरंजक ढंग से जानकारी देता है।
3: दोस्तों, कभी सोचा है तुमने कि हमारी सभ्यताओं को किसने पाला पोसा है, किसने संवारी है हमारी दुनिया, मां की गोद ने और नदियों की घाटियों में। हजारों हजारों साल से मां ने हमें सीने से लगाया, हमें जीवन दिया है। यही तो है नदी, जिसने हमारी सभ्यता को सींचा और हरा भरा किया है।

नदी मनुष्य के साथ रही है, उसकी हर हंसी हर आंसू में। वो हम सफर रही है मनुष्य के हर सफर में। तभी तो हर सभ्यता ने नदी को माँ कहा है।

लेकिन कभी कभी मनुष्य अपनी नासमझी और नादानी में जीवन देने वाली इस माँ के जीवन को ही खतरे में डाल देता है। उत्तराखंड की एक बहुत खास नदी कोसी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ।

0: लेकिन भारत देश की महिलाएं अपनी प्रकृति की रक्षा के लिए हमेशा ही तैनात रही हैं। 1972 में चिपको आंदोलन की शुरुआत कर अपने जंगलों को बचाने वाली गांव की ही एक अनपढ़ 50 वर्षीय बाल विधवा गौरा देवी थी।
1: और इस बार भी कोसी की रक्षा के लिए एक महिला ही आगे आई। हाँ, आज की हमारी नायिका बसंती बहन ने कोसी को बचाया।
0: भला क्यों बचाया बसंती ने कोसी को? क्या नाता है कोसी और बसंती का? आखिर ये बसंती है कौन? ये बसंती भी कुछ खास ही है कोसी की तरह। दोनों ही हिमालय के ऊंचे शिखरों से ही नहीं बल्कि घने जंगलों से निकली हैं। आइए जानते हैं कि उनके बीच कैसे बनता है एक गहरा नाता और कैसे बचाती हैं वे एक दूसरे को।
1: ये कहानी है उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के एक छोटे से गांव की।

0: सन 1980 अप्रैल का एक दिन।
1: क्या करेगी इनका तू है?
2: क्या करूंगी? गमकुआ इतर बनाऊंगी। क्या तुम्हें पता नहीं कि इससे शरबत बनता है?
1: ओह,
2: तो शरबत बनाऊंगी।
1: अरे बस्सी, तू बिल्कुल बावरी है। अरे चार रोज बाद तेरा ब्याह है और आज जंगल में बुरांस के फूल चुन रही है। हा? चल घर चल।
2: नहीं।
1: अरे चल, सब खोज रहे हैं तुझे। अरे चल ना, जल्दी कर।
2: नहीं।

0: शादी के लगभग 2 साल बाद एक रोज शाम के समय सर पर लकड़ियों का गट्ठर उठाए जब बसंती घर पहुंची तो घर का नजारा बिल्कुल बदला हुआ था।
1: सारा गांव उसके घर में इकट्ठा था और बहुत तेज रोना धोना मचा था। बसंती को कुछ समझ में आता, इससे पहले ही मां उसकी ओर तेजी से आई और गले लगाकर रोने लगी।

0: और इस तरह इससे पहले कि बसंती ब्याह के मायने समझती, वो विधवा हो गई। वक्त ने धीरे धीरे उसे विधवा होने का मतलब भी समझा दिया। पिता को अपनी मासूम बच्ची के भविष्य की चिंता सता रही थी, लेकिन नियति ने तो उसके लिए कुछ और ही संयोग रच रखा था। बसंती के पिता को उनके एक मित्र से कौसानी के लक्ष्मी आश्रम के बारे में पता चला।
1: आजादी के पहले गांधी जी की शिष्या सरला बहन ने इस आश्रम की शुरुआत पहाड़ की बच्चियों को शिक्षित करने के लिए की थी। बाद में ये आश्रम उन महिलाओं के लिए जीवन की शाला बना जिन्हें दुनिया विधवा कहकर बेसहारा समझती है। वही महिलाएं दक्ष होकर आज समाज का सहारा बन रही हैं।
0: ये सोचकर कि बसंती का भविष्य सबसे ज्यादा आश्रम में ही सुरक्षित रहेगा, बसंती के पिता ने बसंती को इसी आश्रम में भेज दिया।
1: घर से आश्रम की यात्रा बसंती के लिए एक जीवन से दूसरे जीवन में प्रवेश की यात्रा बन गई। जीवन के 12 बसंतों ने ही उसे एक चहकती बालिका से विधवा और फिर आश्रमवासी बना दिया।
0: ये तो थी कहानी बसंती की, पर बसंती का आखिर क्या नाता है कोसी से? है ना, बहुत गहरा नाता है। उस रोज जब बसंती पहली बार अपने पिता के साथ आश्रम जा रही थी, तो उसे लगा कि ये उसकी जिंदगी की अंतिम यात्रा है। मगर उसी रास्ते में उसकी भेंट कोसी नदी से हुई।

0: हुआ यूं कि कोसानी जाते हुए मन्नान में बस दोपहर के भोजन के लिए कोसी नदी के निकट रुकी तो उदास बसंती भोजन करने के बजाय कोसी के किनारे जाकर बैठ गई।
1: थोड़ी देर बाद उसे कोसी के निर्मल जल से आवाज आई। मानो कह रही हो, बेटी बसंती, बेटी तू बसंती, उदास मत हो।

0: ये यात्रा तुम्हारे जीवन की अद्भुत यात्रा साबित होगी। इस यात्रा से तुम अपने जीवन को मायने दे सको।
1: बसंती घबराकर इधर उधर देखने लगी, पर कहीं कोई नहीं था। फिर ये आवाज किसकी थी? बसंती ने पानी में झांका तो उसे अपनी ही छवि दिखाई दी। अब तक उसकी आंखों से आंसू छलकने बंद हो चुके थे और चेहरे पर संशय की जगह विश्वास अपनी जड़ जमाने लगा था।
0: उसके बाद से बसंती को जब भी बड़े सवाल सालते, वो कोसी के किनारे चुपचाप अकेले जा बैठती और उसे जवाब मिल जाता। दरअसल कोसी उसकी अंतरात्मा की परछाई बन चुकी थी।
1: साल पर साल गुजरते गए। बसंती अपने सामाजिक कार्यों में मगन रही और कोसी भी अपनी जल तरंगों से घाटी को हरा भरा करती।

0: लेकिन लोगों की नादानी से कोसी की रस धाराएं तेजी से सूखने लगी और एक दिन ऐसा भी आया कि उत्तराखंड की सरकार ने कोसी पर पहरा लगा दिया। ये बात सन 2003 की गर्मियों की है।
1: बसंती दीदी, ओ बसी दी, कहाँ हो? गजब हो गया, कुछ सुना तुमने? दीदी,
2: अरे क्या हुआ शांति? क्यों सारा पहाड़ सर पर उठा रखा है? मैं यहाँ गौशाले में हूँ, घास काट रही हूँ।
1: दीदी दीदी, अभी अभी मैं नीचे गांव से आ रही थी, वहाँ सरकार ने कोसी पर जगह जगह पुलिस बैठा दी है।
2: क्या?
1: सरकार का हुक्म है कि खेती के लिए कोई भी कोसी का बूंद भर पानी भी इस्तेमाल न करे।
2: अरे ऐसे कैसे हो जाएगा? कोसी हमारी है या सरकार की?
1: कहते हैं कि कोसी का पानी बहुत तेजी से घट रहा है, इसलिए सारा पानी अल्मोड़ा शहर जाएगा। वहाँ पीने का पानी हमारी कोसी से ही तो मिलता है ना।
2: अच्छा चल, आश्रम चलकर सबको इसकी खबर देते हैं।
1: ठीक है, चल ठीक है दीदी, चलो चलो।
3: उस रोज रात को कोसी नदी के बारे में आश्रम में भोजन के बाद चर्चा हुई।
4: हाँ, बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब इसका तो उपाय क्या है, क्या करें? हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। नहीं, मेरी तो ऐसा है, हम सबको मिलजुल के कुछ करना चाहिए।
3: नदी को बचाने की जिम्मेदारी आश्रम की बड़ी दीदी राधा भट्ट ने बसंती को सौंपी।

0: अब हम लौटते हैं लक्ष्मी आश्रम की ओर, जहां सुबह सवेरे झोला लेकर बसंती बहन गांव का रुख कर रही है। ऐसा करते हुए उन्हें 45 दिन हो चुके हैं। वो रोज सुबह 6 बजे बरासे घाटी के गांव की ओर चल पड़ती हैं। शुरू में कोई उनकी बात को सुनने समझने को तैयार नहीं था। एक दिन बसंती को महिलाओं का एक झुंड मिला। सभी के हाथों में रस्सी और दराती थी। वे सब बहुत तेजी से जंगल की ओर जा रही थी। बसंती दीदी समझ गई कि ये सब लेसाल गांव की महिलाएं हैं और जंगल में लकड़ी काटने जा रही हैं। बसंती दीदी ने उन्हें पुकारा।
1: अरे कहाँ जा रही हो बहनों? क्या तुम सब लेसाल गांव की हो?
2: हाँ, हम सब लेसाल गांव की हैं और जंगल जा रहे हैं लकड़ियाँ काटने।
1: बहन जरूर जाओ, लकड़ी भी लाओ, लेकिन देखो कच्ची लकड़ियाँ मत काटना।
3: वो भला क्यों? तुम क्या कोई यहाँ की कलेक्टर लगी हो जो हमें ये फरमान सुना रही हो? अरे हम क्यों तुम्हारी बातें सुने? हाँ
1: मेरे लिए नहीं, अपने कोसी के प्राण बचाने के लिए आप सबको मेरी बात माननी चाहिए।
2: तुम्हारी बात से कोसी के प्राण का क्या रिश्ता?
3: हाँ।
2: हमें क्यों मूर्ख बना रही हो?
3: और क्या
2: है? आखिर तुम कौन हो, क्या चाहती हो?
3: हाँ।
1: आमा मैं लक्ष्मी आश्रम से आई हूँ। आप सबने तो सुना ही होगा कि इस बार कोसी के पानी पर सरकार ने पहरा लगा दिया है। गांव का कोई आदमी कोसी के पानी का इस्तेमाल सिंचाई के लिए नहीं कर सकता। इसलिए हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम मिलकर कोसी को बचाएं। यही बात समझाने के लिए मैं गांव-गांव घूम रही हूँ।
2: तुम्हारी बात में दम तो है बेटा, पर कोसी को हम कैसे बचा सकते हैं?
1: आमा इसका जवाब तेरे पास है।
2: मेरे पास?
1: हाँ तेरे पास। आमा तुम इन सबको बताओ कि कोसी नदी बनी कैसे है?
2: कोसी बनी कैसे? ये कैसा सवाल है? क्या तुम नहीं जानती कि हमारे पेनाथ जंगल के बांज बुरांज के घने पेड़ प्राकृतिक जल को संचित करते हैं और उसी से कोसी का जन्म हुआ?
3: और क्या?
1: बिल्कुल ठीक। ऐसे में अगर हम जंगल काटेंगे तो कोसी में पानी घटेगा या बढ़ेगा?
3: घटेगा।
2: अब हमें तुम्हारी बात समझ में आ गई। खाली हमारे समझने से क्या होता है, हम अकेले क्या कर सके हैं?
1: हम गांव के बाकी लोगों को ये बात समझा कर अपने जंगल के पेड़ों की जिम्मेदारी स्वयं कर सकते हैं।
2: चलो इसकी शुरुआत हमारे ही गांव से करो।
3: अरे चलो चलो बसंती बहन, हमारे गांव चलो।
4: चलो
3: चलो
4: चलो,
3: हाँ जल्दी चलो, हम सबको बताते हैं।

इन औरतों का काफिला एक बार जो चल पड़ा तो रुका नहीं। इस दिन बसंती बहन लेसाल गांव गई और वहां औरतों ने एक सभा बुलाई और झटपट एक महिला मंडल का गठन हो गया। फिर धीरे धीरे 20 गांव में महिला मंडल का गठन हो गया। बरासे घाटी के कफारी, बिजुरिया, धौलरा, गरुड़ा, सैल, खीराकोटा, कांटली आदि गांव में महिला मंडल का गठन हो गया।

0: शुरू में तो पुरुषों ने महिला मंडल का विरोध किया, लेकिन धीरे धीरे उन्हें भी बात समझ में आ गई और वे भी अपना जंगल बचाने के अभियान में लग गए। अगस्त 2003 से आज तक इन गांव के लोगों ने कच्ची लकड़ी और हरी पत्तियां नहीं काटी।
1: पर रास्ता इतना आसान भी नहीं था। कोसी की जीवन रेखा पिनाथ जंगल केवल बरारो घाटी में नहीं पड़ता था, उसका कुछ हिस्सा लोध घाटी और बागेश्वर में भी पड़ता था, और वहां के लोग अब भी जंगल काट रहे थे। तब बरारो घाटी के महिला मंडलों ने फैसला किया कि पूरे इलाके में कोसी बचाओ जुलूस निकाले जाएं, सभाएं की जाएं।

0: बसंती बहन और गांव की संकल्प की धनी जुझारू महिलाओं ने ये साबित कर दिया है कि अगर आप ठान लें तो सब कुछ संभव है। उत्तराखंड की धरती ऐसी ही साहसी महिलाओं की धरती रही है और उसी परंपरा को आगे बढ़ा रही हैं बसंती बहन।
1: अभी आपने सुना कार्यक्रम संकल्प की धनी बसंती, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

तैयार है आम के अद्भुत संसार से रूबरू होने के लिए। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर लेकर आ रहा है राष्ट्रीय आम समागम 2026, जिसका आयोजन 27 से 28 जून तक किया जाएगा। आइए और देखिए देश भर की सैकड़ों आम किस्मों की आकर्षक प्रदर्शनी, जहां स्वाद, सुगंध और रंगों का अनूठा संगम आपका स्वागत करेगा। इस विशेष आयोजन की थीम है स्वाद, संस्कृति और समृद्धि का संगम। आम समागम में किसानों, वैज्ञानिकों, उद्यमियों और आम प्रेमियों को एक ही मंच पर आने का अवसर मिलेगा। कार्यक्रम के दौरान आयोजित होगी राष्ट्रीय कार्यशाला, जिसका विषय है आधुनिक तकनीक से गुणवत्ता युक्त उत्पादन, भंडारण एवं प्रसंस्करण। देश के प्रतिष्ठित विशेषज्ञ आम उत्पादन, मूल्य संवर्धन और प्रसंस्करण की आधुनिक तकनीकों पर अपने अनुभव साझा करेंगे। इस अवसर पर आयोजित होगा किसान वैज्ञानिक सम्मान समारोह, जिसमें बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश के उत्कृष्ट आम उत्पादकों को बेस्ट मैंगो फार्मर अवार्ड प्रदान किया जाएगा। महिला आम उत्पादकों एवं मूल्य संवर्धन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिला उद्यमियों के लिए भी विशेष सम्मान और नगद पुरस्कार की व्यवस्था की गई है। और अब आपके लिए एक सुनहरा अवसर, यदि आपके बाग में उत्कृष्ट गुणवत्ता के आम हैं या आपके पास किसी विशेष किस्म के आम उपलब्ध हैं, आप भी आम प्रदर्शनी में अपनी आम की किस्मों को प्रदर्शित कर सकते हैं। आपकी प्रविष्टियों का मूल्यांकन विशेषज्ञों द्वारा किया जाएगा और चयनित प्रतिभागियों को आकर्षक पुरस्कार एवं नगद राशि से सम्मानित किया जाएगा। और हाँ, आम प्रेमियों के लिए होगा एक विशेष आकर्षण, मैंगो ईटिंग प्रतियोगिता। इस रोमांचक प्रतियोगिता के विजेताओं को भी आकर्षक नगद पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। तो देर किस बात की, अपने श्रेष्ठ आमों के साथ आइए, प्रदर्शनी में भाग लीजिए, विशेषज्ञों से सीखिए, नई तकनीकों को जानिए और आकर्षक पुरस्कार जीतने का अवसर पाइए। 27 से 28 जून राष्ट्रीय आम समागम 2026 बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है।

0: खांसी एक, खांसी दो, खांसी तीन, बच गई भैया देश की बीन। टीबी के कारण को जानो, खांसी हो तो मुंह ढक कर खांसो। टीबी रोग हवा में फैले, रखो अपना औरों का ध्यान। घर में धूप रोशनी हवा मिले तो कीटाणु सब मर जाएंगे, रोग मुक्त हम हो जाएंगे। खांसी खोखो खांसी। बलगम में है भरे कीटाणु, रख कागज में इसे जला दो या डाल राख में इसे दबा दो, रहे न टीबी नाम मिटा दो। खांसी खोखो खांसी। टीबी मुक्त भारत बनाए,
1: खुद भी बचे देश भी बचाए।
2: टीबी हारेगा देश जीतेगा।

बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 20 से 24 जून के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी आने और साथ ही हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 25 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 60 से 70 प्रतिशत और दोपहर में 25 से 30 प्रतिशत रहने की संभावना है। साथ ही अनुमान है कि 20 से 24 जून के दौरान 8 से 9 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दक्षिण पूर्वी हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए, जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दें, धान की मध्यम अवधि वाली किस्में जैसे संतोष, सीता, सरोज, सहभागी धान और राजेंद्र श्वेता और सुगंधित किस्में जैसे राजेंद्र धान की मध्यम अवधि वाली किस्में हैं संतोष, सीता, सरोज, सहभागी धान और राजेंद्र श्वेता और सुगंधित किस्में जैसे राजेंद्र सुवासिनी, राजेंद्र कस्तूरी और राजेंद्र भगवती। किसान भाई बहनों इन किस्मों की नर्सरी में बुआई जरूर कर लें। जो मक्का की खेती करना चाहते हैं उन्हें बता दें, खरीफ मक्का की बुआई आसमान साफ रहने पर ही करें और खेत की जुताई में 10 से 15 टन गोबर की सड़ी खाद प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें। ध्यान रखें कि बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 30 किलोग्राम नेत्रजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटाश जरूर डालना चाहिए। और आपको बता दें, अनुशंसित मक्का की किस्में हैं सुआन, देवकी, शक्तिमान 1, शक्तिमान 2, राजेंद्र संकर मक्का 3, गंगा 11। जिनके खेत में मूंग लगे हैं उन्हें बता दें, मूंग की तैयार फलियों की तुड़ाई कर ले और हरी खाद के लिए उसके पौधों को मिट्टी पलटने वाले हल से जमीन में गाड़ दे। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दें, भिंडी, कद्दू, खीरा, नेनुआ और लौकी जैसी फसलों की निराई गुड़ाई जरूर करें। साथ ही खर पतवार नियंत्रित करना भी बहुत जरूरी होता है। पत्ती खाने वाले सुंडियों और फल छेदक कीटों की नियमित निगरानी करें और अगर आपकी सब्जियों में पत्ती खाने वाली सुंडियों या फल छेदक कीटों का प्रकोप दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में डाइमिथोएट 30 cc की 1 ml मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। जो खरीफ सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दें, खरीफ प्याज की खेती के लिए नर्सरी यानी कि बीज स्थली की तैयारी तभी करें जब आसमान साफ हो। स्वस्थ पौधों के लिए नर्सरी में गोबर की खाद जरूर डालें और खरीफ प्याज के लिए NO53 एग्रीफाउंड डार्क रेड, अर्का कल्याण, सीमा सुपर, ये किस्में अनुशंसित है। प्याज के बीज की व्यवस्था प्रमाणित स्रोत से ही करें और ध्यान दें कि बीज गिराने के पहले बीजोपचार करना बहुत जरूरी होता है। बीजोपचार करने से आपके पौधे स्वस्थ होते हैं और फसल अच्छी होती है। बीज की दर 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, लीची तोड़ने के बाद खासकर बरसात शुरू होने से पहले बगीचे की जुताई जरूर कर ले और खाद उर्वरकों का प्रयोग तभी करें जब आसमान साफ हो। प्रति प्रौढ़ पेड़ 60 से 80 किलोग्राम सड़ी गोबर की खाद, 2.5 किलोग्राम यूरिया, 1.5 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट और 1 किलो 300 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश और 50 ग्राम सुहागा मिलाकर वृक्ष के चारों ओर समान रूप से मिट्टी में मिला दें। पशुपालक भाई बहन ध्यान दें, गलाघोटू और लंगड़ी रोगों से बचाव के लिए टीकाकरण कराने की जरूरत होती है, इसलिए सभी दुधारू पशुओं में टीकाकरण जरूर कराएं और नए गेहूं के भूसा को खिलाने से पहले ध्यान दें कि करीब 2 घंटा नए गेहूं के भूसा को पानी में फुला लें और 50 ग्राम खनिज मिश्रण और 50 ग्राम नमक चारा दाना मिलाकर दें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

आप हर समय थकान महसूस करते हैं, छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है, ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है, बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर आप सबका स्वागत करता है स्वाद संस्कृति और समृद्धि के संगम राष्ट्रीय आम समागम सह कार्यशाला में। तारीख याद रखें 27 से 28 जून 2026।

0: क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।
1: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
0: उन्नत कृषि। नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो 90.8 FM ग्रीन। आज उन्नत कृषि कार्यक्रम में हमारे साथ हैं डॉक्टर अवनीश कुमार सिंह, वैज्ञानिक, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट, बिहार एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी सबौर से। आज जो जानकारी लेकर आए हैं वो है बहुउपयोगी मसाला हल्दी की खेती के बारे में। आज इसके बारे में जानेंगे हम डॉक्टर साहब से। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
2: धन्यवाद मैम।
0: आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि हल्दी का हमारे जीवन में क्या क्या उपयोग है और इसके फायदे क्या क्या है।
2: जैसा कि हमारे किसान भाइयों को पता है कि हमारे दैनिक जीवन में हल्दी का बहुत ज़्यादा उपयोग है। जैसे मसालों में हल्दी भारत की धरोहर है। प्राचीन काल से ही भारतवासी हल्दी का इस्तेमाल दाल, सब्जी, चटनी, अचार तथा अन्य भोज सामग्रियों को लुभावना तथा सुनहरा रंग प्रदान करने के साथ ही साथ विशेष प्रकार के सुगंध भरने के लिए करते हैं। भारतीय पकवान तो बिना हल्दी के बन नहीं सकती, और यदि बनता भी है तो उसका रंग फीका दिखता है तथा स्वाद में भी फीका पड़ जाता है। राष्ट्रीय आहार संस्थान हैदराबाद के वैज्ञानिकों के अनुसार हल्दी में कैंसर रोधी गुण विद्यमान है। शायद हल्दी के इन्हीं गुणों के कारण भारतीय लोग आदिकाल से हल्दी का इस्तेमाल भोजन में करते आ रहे हैं। प्राचीन काल से ही हल्दी प्राकृतिक सौंदर्य प्रसाधन की वस्तु रही है। शुभ एवं मांगलिक अवसरों पर हल्दी का इस्तेमाल प्रधानता के साथ भारत में किया जाता है। शादी विवाह के अवसर पर हल्दी का उपयोग विभिन्न मांगलिक कार्यों में किया जाता है। घरेलू चिकित्सा पद्धति में हल्दी अनेकों मर्ज की एक अचूक औषधि है। हल्दी का विश्व में कुल उत्पादन का लगभग 86% भारत का हिस्सेदारी है। आंध्र प्रदेश हल्दी उत्पादन में अग्रणी राज्य है। जहाँ तक मैं ये बता दूँ कि बिहार के भी कुछ जिलों में हल्दी की खेती हमारे किसान भाई कर रहे हैं।
0: जी, ऐसे सुना गया है कि हल्दी की खेती में कुछ समस्याएं होती हैं, वो क्या होती हैं, ज़रा उसके बारे में बताएं।
2: हल्दी की खेती में किसान भाई उसको ये ना सोचे कि क्या नुकसान होता है। उसका मतलब ये है कि नुकसान के बारे में हम आपको बता दें कि इसका मतलब ये होता है कि हल्दी की फसल को तैयार होने में 8 से 9 महीने का समय लगता है। इस प्रकार यह दो फसल अवधि ले लेती है। जो हमारे लघु सीमांत किसान हैं, जिनके पास खेत कम है, उनके लिए ये प्रॉब्लम है, क्योंकि ये दो फसल ले लेता है एक हल्दी के क्रॉप। जो हमारे किसान भाइयों उतने टाइम में 2 या 3 फसल ले लेते हैं, इसमें आप एक ही फसल ले सकते हैं। दूसरा ये है कि हल्दी का बीज दर 20 से 25 किग्रा प्रति हेक्टेयर है, जिसे खरीदने पर काफ़ी खर्च पड़ता है। यदि किसी किसान के पास इसका बीज नहीं है तो उसे बीज का अधिक खर्च करना पड़ता है। तीसरा, हल्दी उखाड़ने के बाद बाजार भेजने से पहले उसका प्रसंस्करण करना पड़ता है, जिससे अधिक श्रम एवं खर्च पड़ता है। चौथा, रोग रोधी अधिक उपज एवं उच्च गुणवत्ता वाले किस्मों के बीज किसानों को नहीं मिल पाते हैं। इसके वजह से हमारे किसान भाइयों इसमें प्रॉब्लम होती है और उसके उपज में उनको नुकसान होता है।
0: जी, तो अब आप किसान भाइयों को हल्दी के उन्नत किस्मों के बारे में बताएं ताकि वो इसकी खेती अधिक से अधिक लाभ उठा सकें इसकी खेती में।
2: हमारे यहाँ जो हमारे स्टेट में, हमारे खुद के स्टेट में राजेंद्र सोनिया एक ऐसी वैरायटी है जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय विश्वविद्यालय पूसा ढोली से इसको निकाला गया है। इसकी खेती के लिए हल्दी की उपज क्षमता 8 टन प्रति हेक्टेयर है। यह 210 दिनों में तैयार हो जाती है। इसमें करक्यूमिन, जो उसका पीलापन होता है, रंग रसायन जो उसमें पाया जाता है, उसकी मात्रा 8.5% होती है। उसी प्रकार बहुत सारी वैरायटी हैं, सोना, शोभा, कांथी, NDH-18, NDH-19 जो कि ND यूनिवर्सिटी अयोध्या से निकाली गई है, प्रतिभा, स्वर्णा, इन सभी वैरायटियों को हमारे किसान भाइयों लगा करके अधिक से अधिक उपज ले सकते
0: हैं। हल्दी की खेती के लिए किस प्रकार की जलवायु उपयुक्त होती है और इसकी खेती के लिए किस प्रकार की मिट्टी अच्छी होती है और खेत की तैयारी कैसे करेंगे?
2: हल्दी की फसल खेत के लिए गर्म एवं नम जलवायु सर्वोत्तम होती है। औसत वार्षिक वर्षा 900 से 1000 मिलीमीटर उपयुक्त होती है। बुआई तथा जमाव के समय कम वर्षा तथा पौधों के वृद्धि एवं विकास के समय अधिक वर्षा चाहिए। फसल परिपक्वता अवधि में शुष्क वातावरण की आवश्यकता होती है। और जहाँ तक हम भूमि की बात करें, हल्दी के लिए जीवांश युक्त दोमट या बलुई दोमट मिट्टी जिसमें जल निकास का उचित प्रबंध हो तथा मिट्टी का पीएच मान 6 से 7 हो उपयुक्त होती है। खेत की तैयारी की हम बात करें, पहली जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करने के उपरांत 3 से 4 जुताई कल्टीवेटर या देसी हल से करके पाटा लगाकर मिट्टी को भुरभुरी बना लें। अंतिम जुताई के समय 25 से 30 टन गोबर की सड़ी खाद या कंपोस्ट खेत में बराबर मात्रा में डालकर मिट्टी में भली भांति मिला दें।
0: तो आपने अभी हल्दी के किस्मों के बारे में बताया, साथ ही साथ जलवायु के बारे में भी जानकारी दी। अब आप हल्दी के बीज उपचार, बुआई का समय, बीज दर और बुआई की दूरी और गहराई के बारे में बताएं।
2: जहाँ तक हम बीज उपचार की बात करें किसान भाइयों से, तो बीज उपचार हम हल्दी के केस में बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हल्दी की बुआई के पूर्व प्रकंदों की फफूदीनाशक इंडोफिल M45 का 2.5 ग्राम अथवा कार्बेंडाजीन का 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोलकर बना लें। घोल के में कंदों को 60 मिनट लगभग 1 घंटा तक डुबोकर रखने के बाद छाया में सुखाकर 24 घंटे बाद ही बुआई करनी चाहिए। बुआई का समय, हल्दी की बुआई के समय पर इसकी उपज पर गहरा प्रभाव पड़ता है, इसलिए अच्छी उपज प्राप्त करने के लिए किसान भाइयों को 15 मई से 15 जून तक इसकी बुआई अवश्य कर देनी चाहिए। और बीज उपचार की हम जहाँ तक बात करें, बीज की मात्रा प्रकंदों के आधार पर निर्भर करता है। यह मुख्य रूप से स्वस्थ व रोग मातृ प्रकंद एवं प्राथमिक प्रकंदों को ही बीज के रूप में प्रयोग करना चाहिए। ऐसे प्रकंद जिसका वजन 20 से 25 ग्राम हो तथा प्रत्येक प्रकंद में 3 से 4 आँखें, जिसको हम बांड भी बोलते हैं, के बीज के लिए अच्छा माना जाता है। बुआई की दूरी तथा गहराई, अच्छी उपज के लिए बीज बुआई हेतु कतार से कतार दूरी 30 सेंटीमीटर तथा प्रकंद से प्रकंद की दूरी 20 से 25 सेंटीमीटर रखते हैं। प्रकंदों की बुआई 5 सेंटीमीटर गहराई में की करनी चाहिए।
0: अब इसके लिए खाद एवं उर्वरक प्रयोग की मात्रा, सिंचाई एवं जल निकास और निकाई गुड़ाई एवं खरपतवार नियंत्रण के बारे में बताएं।
2: खाद एवं उर्वरक, हल्दी की फसल अन्य फसलों की अपेक्षा भूमि से अधिक पोषक तत्वों को ग्रहण करती है। खेत की अंतिम जुताई के समय गोबर की सड़ी खाद या कंपोस्ट 25 से 30 टन प्रति हेक्टेयर की दर से मिट्टी में मिला दें। रासायनिक उर्वरक के रूप में नाइट्रोजन 150 किग्रा, फास्फोरस 60 किग्रा तथा पोटास 120 किग्रा प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करना चाहिए। फास्फोरस की पूरी मात्रा, पोटास की आधी मात्रा तथा नाइट्रोजन की 1/3 मात्रा खेत में अंतिम जुताई के समय दें। तथा किसान भाई एक चीज़ और ध्यान दें कि नाइट्रोजन की 1/3 मात्रा बुआई के 35 से 40 दिन बाद तथा नाइट्रोजन की शेष 1/3 मात्रा, पोटास शेष आधी मात्रा बुआई के 75 से 80 दिन के बाद दें। सिंचाई एवं जल निकास की हम बात करें तो हल्दी की फसल को पर्याप्त सिंचाई की आवश्यकता होती है। मिट्टी की सिंचाई, जलवायु, भूमि की संरचना, वर्षा तथा पलवार, जिसको हम मल्चिंग भी कहते हैं, के अनुसार 10 से 20 दिन के अंतराल पर सिंचाई कर की जाती है। प्रकंदों में के जमाव व वृद्धि विकास के लिए समय समय पर सिंचाई करना बहुत ही जरूरी है। और हम निकाई गुड़ाई और खरपतवार के बारे में हम बता दें आपको कि हल्दी के खेत में पत्तियों की पलवार, जैसे मल्चिंग, जिसे हम मल्चिंग कहते हैं, लगाने से काफ़ी हद तक खरपतवार का नियंत्रण हो जाता है। हल्दी की फसल में प्रायः 3 बार गुड़ाई करने से खरपतवार नियंत्रण के साथ साथ प्रकंदों में वृद्धि एवं विकास अच्छे तरीके से होती है, जिससे हमारे किसान भाइयों प्रथम गुड़ाई बुआई के 30 दिन बाद, तृतीय बुआई के 60 दिन बाद तथा तृतीय 90 दिनों के बाद करें।
0: अंत में आप इसमें मुख्य रूप से लगने वाले कीट एवं बीमारियों और इनसे सुरक्षा के बारे में हमारे किसान भाइयों को जानकारी दें, साथ ही हल्दी का प्रोसेसिंग हम कैसे कर सकते हैं उनके बारे में बताएं।
2: हल्दी में मुख्य कीट हम किसान भाइयों को बता दें और इसका नियंत्रण हम बता दें कि हल्दी में जो पहला कीट है दीमक या कजरा पिल्लू, यह दोनों कीट पौधों को नुकसान पहुँचाते हैं। पौधों के प्रारंभिक अवस्था में कजरा पिल्लू जमीन की सतह से पौधे को काट देता है। इससे बचाव हेतु दानेदार फोराडान 3G कीटनाशी दवा का 15 से 20 किग्रा प्रति हेक्टेयर की दर से खेत तैयारी के समय ही मिट्टी में अच्छी तरह मिला दें। दूसरा है तना छेदक। यह कीट छेद करके भीतर घुस जाता है तथा पत्ते को खोखला बना देता है, जिससे पौधा मर जाता है। इसकी रोकथाम के लिए इमेमेक्टाक्लोर बेंजोएट कीटनाशी दवा का 0.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। तीसरा है थ्रिप्स। इसका उपयोग, यह कीट पौधे के हरी पत्तियों को चूसता है तथा पौधे को नुकसान पहुंचाते हैं। इसके नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोरोफीड कीटनाशी दवा का 1 मिलीलीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। हल्दी के कुछ प्रमुख रोग एवं नियंत्रण है। प्रकंद विगलन रोग, फसल के प्रारंभिक बढ़वार के अवस्था में पत्तियां पीली पड़कर सूखने लगती हैं तथा जमीन के ऊपर का तना गल जाता है। भूमि के भीतर का प्रकंद भी सड़कर गोबर की खाद की तरह हो जाता है। यह बीमारी जल भराव वाले क्षेत्रों में अधिक होता है। रोगग्रस्त बीज प्रकंद बोने पर ही यह रोग लग जाता है। इसके नियंत्रण हेतु खेत में पानी नहीं रुकने दें तथा कापर ऑक्सीक्लोराइड फफूंदी नाशक दवा का 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर पौधों के जड़ों के पास भिगोएं तथा पौधों पर भी इसी घोल का छिड़काव करें। स्वस्थ प्रकंद की बुआई करें और इससे आप नियंत्रण कर सकते हैं। और तीसरा ये है पूर्ण धब्बा रोग या पर्ण चत्ती रोग। इसके नियंत्रण के लिए भी मैंकोजेब फफूंदी नाशक दवा का 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर 10 से 15 दिनों के अंतराल पर इसका छिड़काव करें और इससे नियंत्रण पाएं। इसका प्रसंस्करण जो है, हमारे जो किसान भाइयों को मैं बता दूं, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि हल्दी की खेती करने के बाद आप उसे करेंगे क्या, उसका क्या कर सकते हैं आगे, उसमें है प्रकंदों को पहले उबालें। इसमें करते क्या है, सर्वप्रथम लंबी तथा गोली प्रकंदों को अलग अलग काट लिया जाता है। इसके उपरांत लंबी प्रकंदों को अलग तथा गोले प्रकंदों को अलग अलग उबाला जाता है। प्रकंदों को एल्युमिनियम या मिट्टी के बर्तन में उबालना चाहिए। प्रकंदों को बर्तन में सुखाने के बाद ऊपर से पानी भर दिया जाता है ताकि प्रकंद पानी में डूब जाएं तथा बर्तन में मुंह पर धान या का पुआल या हल्दी के सूखी पत्तियों की परत रखकर ढक्कन से ढक दें। इसके बाद उसे धीमी आंच में उबलने दें। लंबे घाट 1 से 2 घंटे में तथा गोले घाट 2 से 2.5 घंटे में पूर्ण रूप से पक जाते हैं। जब बर्तन के मुंह से पीला पीला हल्दी के रंग का झाग निकलने लगे तथा हल्दी का गंध आने लगे तो समझ लेना चाहिए कि हल्दी के प्रकंद पूरी तरह से पक चुके हैं। दूसरा है उबले प्रकंदों को सुखाना। उबले प्रकंदों को सुखाने के लिए प्रकंदों को त्रिपाल या पक्की साफ सुथरा जगह पर धूप में पतली परत में फैला दिया जाता है। इस प्रकंदों को शाम के समय जमा कर त्रिपाल से ढक देते हैं ताकि रात में उस पर ओस न गिरे। हल्दी की उबली प्रकंद लगभग 10 से 15 दिनों में सूखकर तैयार हो जाती है। अच्छी प्रकंद से सूखी प्रकंद बिल्कुल सख्त तथा तोड़ने पर चट की आवाज करनी चाहिए। सूखने के बाद प्रकंदों में नमी 8% से अधिक नहीं होनी चाहिए ताकि उसे लंबी अवधि तक भंडारित किया जा सके। तीसरा है सूखे प्रकंदों का पालसिंग करना। जो उसके चमक को लाता है, जो आप मार्केटिंग में उसको भेजते हैं, जिसका आपको लगता है कि अच्छे हमको वो उपज किए हैं तो अच्छा उसका वो आपको पैदावार मिला है तो उसका अच्छा बेनिफिट मिले, उसके लिए क्या करते हैं कि बाज़ार में हल्दी की अच्छी किस्म लेने के लिए हल्दी को पालसिंग किया जाता है ताकि हल्दी आकर्षक एवं चमकदार दिखे। सूखे प्रकंद को जूट के बोरे या बांस की टोकरी से रख कर रगड़ा जाता है ताकि छिलका, मिट्टी का कण तथा छोटी जड़ें बाहर निकल जाएं। अब इसे हल्दी के पाउडर का गाढ़ा घोल बनाकर उसे रंग देते हैं तथा सूखा देते हैं। बड़े पैमाने पर पालसिंग या का कार्य यांत्रिक विधि से किया जाता है। पालसिंग के बाद प्रकंदों को किसी वायुरोधी बड़े डब्बे में भंडारण कर सकते हैं या बाजार में बेच सकते हैं और हमारे किसान भाइयों इससे अधिक से अधिक आय कर सकते हैं।
0: जी तो श्रोताओं, आज आप सुन रहे थे हल्दी की खेती के बारे में और आज के लिए इतना ही। मिलेंगे आपसे अगले दिन एक नए विषय के साथ। नमस्कार। उन्नत कृषि।

तैयार है आम के अद्भुत संसार से रूबरू होने के लिए। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर लेकर आ रहा है राष्ट्रीय आम समागम 2026, जिसका आयोजन 27 से 28 जून तक किया जाएगा। आइए और देखिए देश भर की सैकड़ों आम किस्मों की आकर्षक प्रदर्शनी, जहां स्वाद, सुगंध और रंगों का अनूठा संगम आपका स्वागत करेगा। इस विशेष आयोजन की थीम है स्वाद, संस्कृति और समृद्धि का संगम। आम समागम में किसानों, वैज्ञानिकों, उद्यमियों और आम प्रेमियों को एक ही मंच पर आने का अवसर मिलेगा। कार्यक्रम के दौरान आयोजित होगी राष्ट्रीय कार्यशाला, जिसका विषय है आधुनिक तकनीक से गुणवत्ता युक्त उत्पादन, भंडारण एवं प्रसंस्करण। देश के प्रतिष्ठित विशेषज्ञ आम उत्पादन, मूल्य संवर्धन और प्रसंस्करण की आधुनिक तकनीकों पर अपने अनुभव साझा करेंगे। इस अवसर पर आयोजित होगा किसान वैज्ञानिक सम्मान समारोह, जिसमें बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश के उत्कृष्ट आम उत्पादकों को बेस्ट मैंगो फार्मर अवार्ड प्रदान किया जाएगा। महिला आम उत्पादकों एवं मूल्य संवर्धन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिला उद्यमियों के लिए भी विशेष सम्मान और नगद पुरस्कार की व्यवस्था की गई है। और अब आपके लिए एक सुनहरा अवसर, यदि आपके बाग में उत्कृष्ट गुणवत्ता के आम हैं या आपके पास किसी विशेष किस्म के आम उपलब्ध हैं, आप भी आम प्रदर्शनी में अपनी आम की किस्मों को प्रदर्शित कर सकते हैं। आपकी प्रविष्टियों का मूल्यांकन विशेषज्ञों द्वारा किया जाएगा और चयनित प्रतिभागियों को आकर्षक पुरस्कार एवं नगद राशि से सम्मानित किया जाएगा। और हाँ, आम प्रेमियों के लिए होगा एक विशेष आकर्षण, मैंगो ईटिंग प्रतियोगिता। इस रोमांचक प्रतियोगिता के विजेताओं को भी आकर्षक नगद पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। देर किस बात की, अपने श्रेष्ठ आमों के साथ आइए, प्रदर्शनी में भाग लीजिए, विशेषज्ञों से सीखिए, नई तकनीकों को जानिए और आकर्षक पुरस्कार जीतने का अवसर पाइए। 27 से 28 जून राष्ट्रीय आम समागम 2026 बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है।

0: सुनो सुनो मेहरबान कदरदान, मम्मी पापा दादा दादी चाचा चाची बहनों भाइयों अड़ोसी पड़ोसी आंटी अंकल, मेरी बात पर भी दो जरा ध्यान।
1: अरे टीकू, स्क्रिप्ट में मेरा डायलॉग है, तुम ढोल बजाओ, मैं बताती हूँ।

0: करना।
1: सभी करो एक जरूरी काम, करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
2: चल टिक्की, अभी हमें और भी गांव जाना है।
3: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
4: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि। नमस्कार किसान भाइयों, आइए एक बार फिर से आप सभी से हम मुलाकात करने आ चुके हैं उन्नत कृषि कार्यक्रम में। जी हाँ, जहाँ आप जानते हैं बहुत ही खास बातें, उपयोगी बातें, और आज फिर से बहुत ही खास आपके फायदे की बातें हम लेकर आए हैं। जी हाँ, जहाँ तक खेती की बात होती है तो खेती में हम बहुत सारे चीज़ आपको बताते हैं, उनसे जुड़ी बातें बताते हैं, जिसे आप अपना कर एक सफल किसान बन सकते हैं, चाहे हमारे किसान बहने हो या भाई हो। फिलहाल यहाँ पर आज का विषय आप सोच रहे होंगे कि क्या होने वाला है, तो आपको बिल्कुल बिना इंतज़ार करवाए मैं बताती हूँ। आज का विषय है आर्सेनिक दूषित मिट्टी में सुरक्षित खेती, और इस विषय पर खास चर्चा के साथ हमारे बीच हैं, जी हाँ बता दें हम, डॉक्टर विष्णुदेव प्रसाद जी, और मैं आपको बता दूं ये हैं सहायक प्राध्यापक बायोलॉजी एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग, और ये हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि केमिकल्स जो हैं वो मानव को तो परेशान कर ही रहे हैं, और साथ ही अगर खेती की बात करें तो यहाँ भी ये अपनी जो कहर हैं वो बरपा रहे हैं। फिलहाल आज का हमारा विषय है आर्सेनिक से रिलेटेड जुड़ा हुआ, तो आज सबसे पहले जानेंगे हम कि आर्सेनिक प्रदूषण क्या है और इसका मानक क्या है।
5: जैसा आपने बताया कि आर्सेनिक का एक भयावह स्थिति में पहुंच गई है, तो आर्सेनिक एक प्रकृति में पाए जाने वाला तत्व है जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक है। पानी में आर्सेनिक की मात्रा, जो परमिसेबल लिमिट भी बोलते हैं उसे, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 10 PPB, मतलब 10 PPB होनी चाहिए, पर बहुत सारे हमारे ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें इसकी मात्रा 10 से बहुत ज़्यादा है, जो हमारे लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकती है।
4: जी, तो ये आपने जाना कि ये कैसे आपको प्रभावित कर सकता है, और इसके बाद डॉक्टर साहब अगर बात करें मानव की और फसलों की, तो इसका क्या क्या कुप्रभाव इस पर पड़ सकता है।
5: जैसा कि आप सभी जानते हैं आर्सेनिक एक बहुत ही खतरनाक तत्व है, जिससे त्वचा में संक्रमण, फेफड़ों का कैंसर तथा अन्य कई बीमारियां उत्पन्न कर सकता है। हाल के दिनों में आर्सेनिक प्रदूषित जल का प्रयोग कृषि कार्यों में काफ़ी बढ़ गया है, जिससे मिट्टी में इसका संचय हो रहा है। फसल आर्सेनिक को खतरनाक स्तर तक अवशोषित कर रहा है, और इन फसलों में आर्सेनिक के कुप्रभाव देखने को मिल रहे हैं, और इसके उपयोग से मनुष्य तथा जो हमारे जानवर हैं वो भी प्रभावित हो गए हैं, और उनके जैसे हम लोग फसल खाते हैं, खाद्य पदार्थ खाते हैं, जानवर के मांस खाते हैं या दूध पीते हैं, उससे भी आर्सेनिक हमारे खाद्य श्रृंखला में शामिल हो गई है।
4: यानी कि यूँ कहें कि अगर हम कोई शाक सब्जी खाते हैं, अगर खेती हो रही है, तो उसमें भी आर्सेनिक के कुछ जो मात्रा है वो चले जाते हैं,
5: बहुत ज्यादा आ सकती है। तो जो भी अगर आर्सेनिक कंटामिनेटेड एरिया में जो भी चीज ग्रो हो गई है, और उस फसल को अगर हम खाते हैं या दूध के थ्रू हमारे शरीर में आता है, तो उससे भी आर्सेनिक का कुप्रभाव हो सकता है।
4: तो इस कुप्रभाव से मतलब जो मानव है उनमें किस तरह की लक्षण या स्थिति दिखाई देती है सर?
5: मानवों में आप देखें, हथेली में आर्सेनिकोसिस एक बीमारी होती है जो त्वचा में काले काले धब्बे नजर आते हैं।
4: अच्छा।
5: और उससे फेफड़ों में कैंसर भी बहुत लोगों ने रिपोर्ट किया है, तो इससे बहुत ही खतरनाक बीमारियां हो सकती है।
4: तो क्या जानवरों को भी ये प्रभावित करता है?
5: हाँ, जानवरों में भी ये प्रभावित करता है, पर उनके लक्षण के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं
4: अभी पता चली है।
5: पर आदमी में, मनुष्यों में ऐसा बहुत ही ज्यादा कुप्रभाव देखने को मिला है।
4: अच्छा, तो सर जब बिहार राज्य की हम बात करते हैं, तो आर्सेनिक प्रदूषण की कितनी भयावह स्थिति हमारे बिहार में है?
5: अगर हम ऐसे देखें तो दुनिया में इससे बहुत सारे देश हैं उसमें आर्सेनिक का इफेक्ट है। भारत देश में, अगर हम भारत की बात करते हैं, तो 7 राज्य ऐसे हैं जिसमें आर्सेनिक का कुप्रभाव देखा गया है। उनमें वेस्ट बंगाल, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, असम और मणिपुर हैं। बिहार, अगर हम बिहार की बात करें, तो इसमें 18 जिले जो है आर्सेनिक से ग्रसित हैं। उन जिलों में भोजपुर, सागर, बेगूसराय, भागलपुर, पटना और बक्सर सबसे ज्यादा प्रभावित है। वैज्ञानिकों के सर्वे के अनुसार भोजपुर जिले में टेकुदरिया गांव में पाया गया है कि सिंचाई जल में 80 ppb तक आर्सेनिक कंटामिनेशन है, जबकि सॉइल में 2.5 मतलब 2.5 ppm तक आर्सेनिक की मात्रा पाई गई है, जो बहुत ही खतरनाक स्थिति में है और इसे बचने के उपाय बहुत ही अत्यंत आवश्यक है।
4: तो सर, अगर हमारे जो किसान भाई हैं, किसान बंधु हैं, अगर उन्हें पता लगाना हो कि जो उनके खेत में ये समस्या है या नहीं, आर्सेनिक की समस्या है या नहीं, तो वो कैसे पता लगा सकते हैं?
5: जैसा सभी किसान भाइयों को पता है कि आर्सेनिक का कोई गंध नहीं होता, स्वाद नहीं होता, महत नहीं होता, तो इसे पता लगाना थोड़ी डिफिकल्ट है। पर आप लोग देखते होंगे कि समय समय पर जल बोर्ड के अधिकारी आते हैं और आर्सेनिक दूषित क्षेत्र में वो सर्वे करते हैं और जो भी ट्यूबवेल होता है या कुआं होता है उसको लाल रंग से या रेड कलर से उसको अंकित करते हैं।
4: अच्छा।
5: अगर आपको जब पता चल गया कि ये रेड कलर से अंकित है तो उसका पानी का उपयोग ना करें, और अगर कृषक बंधु भाई बहन अगर चाहे तो अपने मिट्टी और सिंचाई जल को किसी सर्टिफाइड लेबोरेटरी में ले जाके वो चेक भी करवा सकते हैं।
4: जी, ये इस तरीके से आप पता लगा सकते हैं किसान बंधु कि आर्सेनिक समस्या आपके खेत में है या नहीं, ये आपको प्रभावित कर रही है नहीं। और इसके बाद अगर प्रबंधन की बात करें डॉक्टर साहब, ये बहुत ज़रूरी होता है कि अगर हमें पता लग जाता है कि हमारे खेत में आर्सेनिक की समस्या भी है तो उसका प्रबंधन यानी कि इसका निदान कैसे कैसे कर सकते हैं?
5: ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और सबसे ज़्यादा इसमें ध्यान देने की बात है। सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें यह है कि जिस भूजल में या जिस ट्यूबवेल में आर्सेनिक कंटामिनेशन पता चल गया है उसका सिंचाई में बहुत कम से कम पानी यूज करें और ऐसे फसल को उगाएं जहाँ पे भूजल और जो जमीन से निकलने वाले जल है उसका उपयोग कम से कम हो, क्योंकि भूजल में आर्सेनिक की कंटामिनेशन बहुत ज़्यादा होती है।

0: क्षेत्र खेती कैसे कर सकते हैं, इसमें बहुत सारे पहलुओं पर हमने चर्चा किया, जैसे कि इसका क्या जो है प्रभाव पड़ सकता है मानव पर, साथ ही फसलों पर। इसके बाद आपने जाना कि इसकी समस्या का निदान आप कैसे कर सकते हैं, और तो इस तरीके से अगर आप भी यानी इस समस्या से जूझ रहे हैं, आपके खेतों में भी ये समस्या है, तो आप और भी जानकारी लेना चाहते हैं तो आप बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर आ सकते हैं और यहाँ पर हमारे जो भी एक्सपर्ट्स हैं आप उनसे मुलाकात कर सकते हैं और पूरी जानकारी ले सकते हैं। फिलहाल तो इतना ही, सुनते रहिए 90.8 FM ग्रीन, सुनते रहिए उन्नत कृषि कार्यक्रम।
1: उन्नत कृषि

तैयार है आम के अद्भुत संसार से रूबरू होने के लिए। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर लेकर आ रहा है राष्ट्रीय आम समागम 2026, जिसका आयोजन 27 से 28 जून तक किया जाएगा। आइए और देखिए देश भर की सैकड़ों आम किस्मों की आकर्षक प्रदर्शनी, जहां स्वाद, सुगंध और रंगों का अनूठा संगम आपका स्वागत करेगा। इस विशेष आयोजन की थीम है स्वाद, संस्कृति और समृद्धि का संगम। आम समागम में किसानों, वैज्ञानिकों, उद्यमियों और आम प्रेमियों को एक ही मंच पर आने का अवसर मिलेगा। कार्यक्रम के दौरान आयोजित होगी राष्ट्रीय कार्यशाला, जिसका विषय है आधुनिक तकनीक से गुणवत्ता युक्त उत्पादन, भंडारण एवं प्रसंस्करण। देश के प्रतिष्ठित विशेषज्ञ आम उत्पादन, मूल्य संवर्धन और प्रसंस्करण की आधुनिक तकनीकों पर अपने अनुभव साझा करेंगे। इस अवसर पर आयोजित होगा किसान वैज्ञानिक सम्मान समारोह, जिसमें बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश के उत्कृष्ट आम उत्पादकों को बेस्ट मैंगो फार्मर अवार्ड प्रदान किया जाएगा। महिला आम उत्पादकों एवं मूल्य संवर्धन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिला उद्यमियों के लिए भी विशेष सम्मान और नगद पुरस्कार की व्यवस्था की गई है। और अब आपके लिए एक सुनहरा अवसर, यदि आपके बाग में उत्कृष्ट गुणवत्ता के आम हैं या आपके पास किसी विशेष किस्म के आम उपलब्ध हैं, तो आप भी आम प्रदर्शनी में अपनी आम की किस्मों को प्रदर्शित कर सकते हैं। आपकी प्रविष्टियों का मूल्यांकन विशेषज्ञों द्वारा किया जाएगा और चयनित प्रतिभागियों को आकर्षक पुरस्कार एवं नगद राशि से सम्मानित किया जाएगा। और हाँ, आम प्रेमियों के लिए होगा एक विशेष आकर्षण, मैंगो ईटिंग प्रतियोगिता। इस रोमांचक प्रतियोगिता के विजेताओं को भी आकर्षक नगद पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। तो देर किस बात की, अपने श्रेष्ठ आमों के साथ आइए, प्रदर्शनी में भाग लीजिए, विशेषज्ञों से सीखिए, नई तकनीकों को जानिए और आकर्षक पुरस्कार जीतने का अवसर पाइए। 27 से 28 जून राष्ट्रीय आम समागम 2026 बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है।

0: खसरा कितनी गंभीर बीमारी है। टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर है, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MRT का लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हों, तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
5: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
4: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
5: आपकी सेहत की बातें,
4: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
5: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
4: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
5: वो कहाँ पर?
4: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
5: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
4: उन्नत कृषि,

0: है।
1: क्या आप तैयार हैं आम के अद्भुत संसार से रूबरू होने के लिए? बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर लेकर आ रहा है राष्ट्रीय आम समागम 2026, जिसका आयोजन 27 से 28 जून तक किया जाएगा। आइए और देखिए देश भर की सैकड़ों आम किस्मों की आकर्षक प्रदर्शनी, जहां स्वाद, सुगंध और रंगों का अनूठा संगम आपका स्वागत करेगा। इस विशेष आयोजन की थीम है स्वाद, संस्कृति और समृद्धि का संगम। आम समागम में किसानों, वैज्ञानिकों, उद्यमियों और आम प्रेमियों को एक ही मंच पर आने का अवसर मिलेगा। कार्यक्रम के दौरान आयोजित होगी राष्ट्रीय कार्यशाला, जिसका विषय है आधुनिक तकनीक से गुणवत्ता युक्त उत्पादन, भंडारण एवं प्रसंस्करण। देश के प्रतिष्ठित विशेषज्ञ आम उत्पादन, मूल्य संवर्धन और प्रसंस्करण की आधुनिक तकनीकों पर अपने अनुभव साझा करेंगे। इस अवसर पर आयोजित होगा किसान वैज्ञानिक सम्मान समारोह, जिसमें बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश के उत्कृष्ट आम उत्पादकों को बेस्ट मैंगो फार्मर अवार्ड प्रदान किया जाएगा। महिला आम उत्पादकों एवं मूल्य संवर्धन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिला उद्यमियों के लिए भी विशेष सम्मान और नगद पुरस्कार की व्यवस्था की गई है। और अब आपके लिए एक सुनहरा अवसर, यदि आपके बाग में उत्कृष्ट गुणवत्ता के आम हैं या आपके पास किसी विशेष किस्म के आम उपलब्ध हैं, आप भी आम प्रदर्शनी में अपनी आम की किस्मों को प्रदर्शित कर सकते हैं। आपकी प्रविष्टियों का मूल्यांकन विशेषज्ञों द्वारा किया जाएगा और चयनित प्रतिभागियों को आकर्षक पुरस्कार एवं नगद राशि से सम्मानित किया जाएगा। और हाँ, आम प्रेमियों के लिए होगा एक विशेष आकर्षण, मैंगो ईटिंग प्रतियोगिता। इस रोमांचक प्रतियोगिता के विजेताओं को भी आकर्षक नगद पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। तो देर किस बात की, अपने श्रेष्ठ आमों के साथ आइए, प्रदर्शनी में भाग लीजिए, विशेषज्ञों से सीखिए, नई तकनीकों को जानिए और आकर्षक पुरस्कार जीतने का अवसर पाइए। 27 से 28 जून राष्ट्रीय आम समागम 2026 बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है।

0: खांसी एक, खांसी दो, खांसी तीन, बच गई भैया देश की बीन। टीबी के कारण को जानो, खांसी हो तो मुंह ढककर खांसो। टीबी रोग हवा में फैले, रखो अपना औरों का ध्यान। घर में धूप रोशनी हवा मिले तो कीटाणु सब मर जाएंगे, रोग मुक्त हम हो जाएंगे। खांसी खोखो खांसी। बलगम में है भरे कीटाणु, रख कागज में इसे जला दो या डाल राख में इसे दबा दो, रहे न टीबी नाम मिटा दो। खांसी खोखो खांसी। टीबी मुक्त भारत बनाए,
1: खुद भी बचे देश भी बचाए।
2: टीबी हारेगा देश जीतेगा।
3: सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 20 से 24 जून के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी आने और साथ ही हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 25 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 60 से 70 प्रतिशत और दोपहर में 25 से 30 प्रतिशत रहने की संभावना है। साथ ही अनुमान है कि 20 से 24 जून के दौरान 8 से 9 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दक्षिण पूर्वी हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए। जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दें, धान की मध्यम अवधि वाली किस्में जैसे संतोष, सीता, सरोज, सहभागी धान और राजेंद्र श्वेता और सुगंधित किस्में जैसे राजेंद्र धान की मध्यम अवधि वाली किस्में हैं संतोष, सीता, सरोज, सहभागी धान और राजेंद्र श्वेता और सुगंधित किस्में जैसे राजेंद्र सुवासिनी, राजेंद्र कस्तूरी और राजेंद्र भगवती। किसान भाई बहनों इन किस्मों की नर्सरी में बुआई जरूर कर लें। जो मक्का की खेती करना चाहते हैं उन्हें बता दें, खरीफ मक्का की बुआई आसमान साफ रहने पर ही करें और खेत की जुताई में 10 से 15 टन गोबर की सड़ी खाद प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें। ध्यान रखें कि बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 30 किलोग्राम नेत्रजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटाश जरूर डालना चाहिए। और आपको बता दें अनुशंसित मक्का की किस्में हैं सुवान, देवकी, शक्तिमान 1, शक्तिमान 2, राजेंद्र संकर मक्का 3, गंगा 11। जिनके खेत में मूंग लगे हैं उन्हें बता दें, मूंग की तैयार फलियों की तुड़ाई कर ले और हरी खाद के लिए उसके पौधों को मिट्टी पलटने वाले हल से जमीन में गाड़ दे। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दें, भिंडी, कद्दू, खीरा, नेनुआ और लौकी जैसी फसलों की निराई गुड़ाई जरूर करें। साथ ही खरपतवार नियंत्रित करना भी बहुत जरूरी होता है। पत्ती खाने वाले सुंडियों और फल छेदक कीटों की नियमित निगरानी करें और अगर आपकी सब्जियों में पत्ती खाने वाले सुंडियों या फल छेदक कीटों का प्रकोप दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में डाइमिथोएट 30 सीसी की 1 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। जो खरीफ सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दें, खरीफ प्याज की खेती के लिए नर्सरी यानी कि बीज स्थली की तैयारी तभी करें जब आसमान साफ हो। स्वस्थ पौधों के लिए नर्सरी में गोबर की खाद जरूर डालें और खरीफ प्याज के लिए NO53 एग्रीफाउंड डार्क रेड, अर्का कल्याण, सीमा सुपर ये किस्में अनुशंसित है। प्याज के बीज की व्यवस्था प्रमाणित स्रोत से ही करें और ध्यान दें कि बीज गिराने के पहले बीजोपचार करना बहुत जरूरी होता है। बीजोपचार करने से आपके पौधे स्वस्थ होते हैं और फसल अच्छी होती है। बीज की दर 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, लीची तोड़ने के बाद खासकर बरसात शुरू होने से पहले बगीचे की जुताई जरूर कर ले और खाद उर्वरकों का प्रयोग तभी करें जब आसमान साफ हो। प्रति प्रौढ़ पेड़ 60 से 80 किलोग्राम सड़ी गोबर की खाद, 2.5 किलोग्राम यूरिया, 1.5 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट और 1 किलो 300 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश और 50 ग्राम सुहागा मिलाकर वृक्ष के चारों ओर समान रूप से मिट्टी में मिला दें। पशुपालक भाई बहन ध्यान दें, गलाघोटू और लंगड़ी रोगों से बचाव के लिए टीकाकरण कराने की जरूरत होती है, इसलिए सभी दुधारू पशुओं में टीकाकरण जरूर कराएं और नए गेहूं के भूसा को खिलाने से पहले ध्यान दें कि करीब 2 घंटा नए गेहूं के भूसे भूसा को पानी में फुला ले और 50 ग्राम खनिज मिश्रण और 50 ग्राम नमक चारा दाना मिला कर दे। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

आप हर समय थकान महसूस करते हैं, छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है, ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है, बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर आप सबका स्वागत करता है स्वाद संस्कृति और समृद्धि के संगम राष्ट्रीय आम समागम सह कार्यशाला में। तारीख याद रखें 27 से 28 जून 2026।

0: क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।
1: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
0: उन्नत कृषि।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मुझे बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से और आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। और आज फिर आप सभी के पास, आप सभी के लिए लेकर आ चुकी हूं मैं उन्नत कृषि कार्यक्रम। दोस्तों, अगर बात करें हम खेती की तो उसमें हर फसलों की बात करते हैं, हम साग सब्जियों की बात करते हैं, लेकिन उसमें एक अलग चीज़ उसमें उससे जुड़ता है, यूँ कहें कि खेती और किसानों से जुड़ता है, वो है पंचगव्य। अगर इसकी बात करूँ मैं तो खेती और हमारे जो किसान बंधु हैं वो तो पंचगव्य के बारे में जानते ही होंगे, लेकिन इसके अलावा बहुत कम लोगों को इनके बारे में जानकारी होता है कि ये पंचगव्य क्या है, इससे क्या फ़ायदा है, इसे कैसे बनाया जा सकता है, इसे किस तरीके से रखा जा सकता है, ये खेती में किस तरीके से फ़ायदेमंद है। तो आज यही विषय लेकर हम आए हैं, यानी कि पंचगव्य की पूरी जानकारी देने हम आपको आए हैं। तो आज का हमारा विषय है पंचगव्य बनाने का विधि एवं उपयोग, और इस विषय पर विशेष चर्चा के साथ आए हैं हमारे बीच डॉक्टर शंभू प्रसाद जी। और मैं आपको बता दूं कि ये हैं सहायक प्राध्यापक सस्य विज्ञान विभाग बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
3: धन्यवाद मैडम।
2: तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि ये पंचगव्य है क्या?
3: मैडम, ये पंचगव्य खास करके मैं किसानों को विशेष रूप से ये बताना चाहूँगा, पंचगव्य जैसा कि नाम से ही ये स्पष्ट हो जा रहा है, पंच मीन्स पांच और गव मीन्स गाय।
2: जी।
3: तो गाय से प्राप्त पांच उत्पादों यथा गाय का गोबर, गाय का दूध, घी, दही और मूत्र को मिलाकर तैयार किया जाने वाला एक तरल जैविक खाद है, जिसका प्रयोग मुख्य रूप से जैविक खेती में की जाती है।
2: अच्छा।
3: और इसके प्रयोग से बहुत सारे फायदे हैं, और किसान अगर चाहेंगे कि अपनी खेती को समृद्ध बनाएं तो निश्चित रूप से उन्हें पंचगव्य को अपनी खेती में शामिल करने की जरूरत है।
2: जी, तो यहाँ पर आपने जाना कि पंचगव्य क्या है और इसके प्रयोग से, यानी कि खेती को और समृद्ध अगर बनाना चाहते हैं हमारे किसान भाई तो इसकी बहुत ज़रूरत है, वो ऐसे बना सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, इसकी सामग्री की ओर जाते हैं, अगर इसे बनाना है तो सबसे पहले हम सामग्री को जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है, तो क्या क्या सामग्री इसमें हम इस्तेमाल कर सकते हैं?
3: जैसा कि मैंने पहले भी बताया आपको कि पंचगव्य बनाने के लिए गाय से प्राप्त पांच उत्पादों की आवश्यकता होती है, उसमें मुख्य रूप से गाय का गोबर है, गाय का दूध है, गाय का घी है, गाय का दही है और गौ मूत्र है।
2: अच्छा।
3: इसके अलावे अगर हम पंचगव्य को और समृद्ध करना चाहते हैं तो इन सारे पांच से उत्पादों के अतिरिक्त हमें कच्चे नारियल का पानी भी मिलाने की जरूरत पड़ती है, और उसमें चूंकि ये जीवाणु की सहायता से तैयार किया जाने वाला उत्पाद है पंचगव्य, तो इसके लिए हमें जीवाणुओं के भोजन की भी व्यवस्था करनी पड़ती है, तो उसके लिए लगभग 250 से आधा किलोग्राम शक्कर की आवश्यकता होती है।
2: अच्छा।
3: जिसको आम भाषा में लोग गुड़ भी बोलते हैं, तो इसका भी इस्तेमाल किया जाता है, और फर्मेंटेशन की क्रिया को और बढ़ावा देने के लिए उसमें ईस्ट कल्चर की भी जरूरत पड़ती है।
2: अच्छा।
3: तो ईस्ट कल्चर को भी मिलाना हम लोग उचित समझते हैं और सजेशन भी देते हैं किसानों को कि ईस्ट कल्चर को भी उसमें मिलाया जाए, उससे फर्मेंटेशन और डिकम्पोजिशन की क्रिया थोड़ी फास्ट हो जाती है और पंचगव्य सही मायने में अच्छे तरह से तैयार हो पाते हैं।
2: ठीक। तो डॉक्टर साहब, अभी आपने कहा कि कच्चे नारियल के पानी का इस्तेमाल पंचगव्य बनाने में किया जाता है इसके सामग्री के रूप में, तो हम जानना चाहेंगे कि क्यों किया जाता है कच्चे नारियल के पानी का इस्तेमाल?
3: ये जो कच्चे नारियल का पानी, जिसको देहात में लोग डाब भी बोलते हैं
2: जी जी,
3: और ख़ास करके जिन लोगों को पीलिया या जॉन्डिस की शिकायत होती है
2: जी,
3: उसमें इस नारियल के पानी का प्रयोग भी लोग करते हैं। और इसमें एक खासियत है कि इसमें काइनेटिन नाम का एक पदार्थ पाया जाता है जिसकी काफ़ी उपयोगिता है क्लोरोफिल सिंथेसिस में
2: जी।
3: तो अगर नारियल के पानी का प्रयोग हम पंचगव्य बनाने में करेंगे
2: जी जी,
3: तो इस काइनेटिन पदार्थ के कारण जिस पौधे पर पंचगव्य का स्प्रे होगा उसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अच्छी तरह से होगी और फोटोसिंथेट्स काफ़ी अच्छी मात्रा में बनेंगे। इसके साथ ही साथ पौधों का विकास भी सही होगा और दाने भी पुष्ट होंगे और उपज की अच्छी प्राप्ति होगी।
2: तो ये तो बात हो गई सामग्रियों की, और अब विधि जाना चाहेंगे कि इसे कैसे बनाया जाता है।
3: जी हाँ, इसको बनाने का तो बहुत ही सरल तरीका है, हालांकि इसको बनाने के बहुत सारे मेथड्स हैं, विधियां हैं, लेकिन मैं काफ़ी सुगम विधि को किसानों के बीच लाना चाहूँगा, बताना चाहूँगा उन्हें। और ये कोई जटिल प्रक्रिया नहीं है। सबसे पहले वो जो आवश्यक सामग्री है पंचगव्य बनाने के लिए, किसानों से अनुरोध होगा कि पहले उसको इकट्ठा कर लिया करें, और उसमें खास करके 5 किलोग्राम ताज़ा गोबर है, गाय का गोबर, 2 किलोग्राम गाय का दूध, 2 किलोग्राम दही, 1 किलोग्राम घी और 3 लीटर गौमूत्र। इसके अलावे उन्हें 3 लीटर कच्चे नारियल का पानी भी चाहिए, 250 से 500 ग्राम शक्कर चाहिए और 1 दर्जन पके हुए केले का पल्प या गुदा चाहिए
2: जी।
3: मैं क्रम से इसको बताना चाहूँगा ताकि किसानों को, हमारे किसान बंधुओं को समझने में कोई दिक्कत नहीं हो
2: जी।
3: तो सबसे पहले क्या करें कि एक प्लास्टिक के टब में 5 किलोग्राम गाय का ताज़ा गोबर लें और उसमें 1 किलोग्राम गाय का घी को दोनों हाथों से अच्छी तरह से, जिस तरह से आटा गूंथते हैं उस तरह से मिला दें, और जब वो अच्छे तरह से मिल जाए तो उसको छाया में रख दें और उसको किसी सूती वाले कपड़े से या जूट की बोरी से ढक दें। दूसरी तरफ 20 से 25 लीटर क्षमता वाली एक प्लास्टिक का गैलन लें और उस गैलन में 3 लीटर गौमूत्र, 2 लीटर गाय का ताज़ा दूध, 2 किलोग्राम दही, उसको मिलाएं और उसी में 3 लीटर कच्चे नारियल का पानी भी डाल दें और साथ में 250 से 500 ग्राम शक्कर को भी मिलाएं
2: जी।
3: और ये इन सारे चीज़ों को मिलाने के बाद जो 1 दर्जन केला है उसके पल्प को अच्छी तरह से मसल कर इस मिश्रण में मिला दें और उस मिश्रण को छड़ी से या डंडा से इस तरह से मिलाएं कि सारा मिश्रण अच्छी तरह से मिश्रित हो जाए
2: जी।
3: अब इस गैलन को भी छाया में रखना है अलग 4 दिनों तक, दोनों ये पहले जो हमने पात्र में गोबर और घी का मिश्रण मिलाया है उसका वो टब जो है उसको भी अलग रखेंगे और उसी जगह इसको भी रख देंगे और इसके मुंह को भी सूती के कपड़े से या जूट वाले कपड़े से ढक के रखेंगे
2: जी।
3: 4 दिनों तक दोनों जो मिश्रण है दोनों को अलग अलग रखा जाएगा और प्रत्येक दिन दोनों मिश्रण को दिन में सुबह दोपहर शाम 3 बार अच्छी तरह से मिलाना है। गोबर और घी का जो मिश्रण हमने प्लास्टिक के टब में रखा है उसको भी मसल के मिलाना है और इधर जो तरल पदार्थ का मिश्रण है उसको भी छड़ी या डंडे से दिन में 3 बार घड़ी की दिशा में और घड़ी की विपरीत दिशा में मिलाते हुए मिश्रण को अच्छी तरह से हिलाकर मिला देना है
2: जी।
3: और फिर 5वें दिन ये दोनों जो अलग अलग मिश्रण हैं दोनों को एक साथ कर देना है। गोबर और घी का जो मिश्रण है उसको चौड़े मुंह वाले गैलन, जो प्लास्टिक के गैलन है उसमें डाल देना है और फिर छड़ी या डंडे से उसको अच्छी तरह से मिला देना है। अब ये जो मिश्रण है इसको लगभग 15 दिनों तक छोड़ देना है छाया में ही और फिर इसको प्रत्येक दिन दिन में 3 बार फिर छड़ी से मिलाना है घड़ी की दिशा में और घड़ी की विपरीत दिशा में
2: जी।
3: तो इस प्रकार से 4 और 15 दिन 19 दिन के बाद ये हमारा जो है जो मिश्रण है वो तैयार हो जाएगा अच्छी तरह से और उसके बाद फिर पतले सूती के कपड़े से इसको हमें छान लेना है, और छानने के बाद जो तरल पदार्थ हमें मिलेगा वो पदार्थ हमारा पंचगव्य के रूप में माना जाएगा, और ये तरल पदार्थ हमारे खेती के लिए काफ़ी उपयोगी है। किसान इस तरल पदार्थ को, इस छने हुए तरल पदार्थ को पंचगव्य के रूप में अपने खेतों में इस्तेमाल कर सकते हैं।
2: जी, तो किसान भाइयों आपने जाना कि कैसे इसे बनाया जाता है। अच्छा सर, हम ये जानना चाहेंगे कि हम इसे कितने दिनों तक स्टोर करके रख सकते हैं।
3: एक्चुअली ये सारे जीवाणु के द्वारा ही कार्यान्वित होते हैं और इसमें जीवाणुओं की संख्या पर्याप्त होती है।
2: जी,
3: तो बेहतर इस्तेमाल के लिए इसको इस तरल पदार्थ को जो तैयार पंचगव्य है उसको लगभग 2 महीने तक स्टोर किया जा सकता है।
2: 2 महीने तक?
3: जी, तो उसमें उसकी क्रियाशीलता में कोई ज़्यादा कमी नहीं आती है। फिर ज़्यादा दिनों तक अगर रखेंगे तो उसकी क्रियाशीलता में कमी आती जाती है, इसीलिए बेहतर ये होगा कि उसको 2 महीने के अंदर ही उसका इस्तेमाल अपने खेतों में कर लें।
2: तो सर अब इसमें जो है खेतों की बात करते हैं, तो इनका जो प्रयोग है वो खेतों में कैसे कर सकते हैं हमारे किसान भाई?
3: किसान बंधु इसको विभिन्न रूपों में प्रयोग कर सकते हैं। इसको बीज के साथ उपचारित भी कर सकते हैं।
2: अच्छा,
3: इसको सिंचाई जल के साथ खेतों में डाल भी सकते हैं, और फसल खरी फसल में इसका छिड़काव विधि के द्वारा भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
2: जी,
3: और खास करके मैं तो कहूँगा कि इसकी शुरुआत किसान बंधु अपने बीजों को उपचारित करने में, चाहे वो राइजोम हो या कटिंग हो या सीड्स हो, उसको लगभग 20 मिनट तक पंचगव्य के 3% घोल में डुबा करके रखें, और उसके बाद उसको छाया में थोड़ी देर के लिए सुखा दें। फिर उसका इस्तेमाल खेतों में बोने के रूप में या लगाने के रूप में या कटिंग को प्लांट करने के रूप में करें। तो इस तरह से सीड ट्रीटमेंट, बीज उपचार के रूप में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जो किसान बंधु चाहते हैं कि मैं इसको मिट्टी में इस्तेमाल करूं, तो उसके लिए उन्हें सलाह दी जाती है कि पंचगव्य का 20 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से सिंचाई जल के साथ अपने खेतों में व्यवहार कर सकते हैं। किसी भी फसल में, चाहे वो गेहूं हो, मक्का हो या दलहनी फसल हो, किसी भी फसल में इसका प्रयोग सिंचाई, जिसमें सिंचाई जल का इस्तेमाल करते हैं उसमें करें, जिसमें सिंचाई जल का इस्तेमाल नहीं करते हैं उसमें वो कंपोस्ट के साथ या बर्मी कंपोस्ट के साथ मिलाकर खेत में छींट सकते हैं अंतिम जुताई के समय में। लेकिन खेत में थोड़ी नमी रहनी चाहिए उस समय, ताकि जो जीवाणु हैं उसको जीवित रहने का भी अवसर मिले, मौका मिले, और उतना जो आवश्यक तापमान है उस तापमान पर वो जीवित रह सके। तीसरी बात है कि छिड़काव के रूप में, छिड़काव के रूप में भी किसान बंधु इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और छिड़काव के रूप में इसके 3% घोल का इस्तेमाल किया जाता है। मतलब 1 लीटर पानी में 30 मिलीलीटर पंचगव्य को मिलाकर किसी भी फसल में इसका छिड़काव, किसी भी फसल में पंचगव्य का छिड़काव कर सकते हैं। और ये छिड़काव मुख्य रूप से 2 बार करनी चाहिए। पहला छिड़काव करना चाहिए जब कली वाली अवस्था आती है या कली लगना शुरू होता है पौधे में, उस समय करना चाहिए, और दूसरा छिड़काव करना चाहिए जब उसमें फल आ जाते हैं या पौधे में फल जब पकड़ लेता है तो उस समय उसका छिड़काव करना चाहिए। अगर एक ही छिड़काव करना है उनको तो फल लगने के बाद इसका छिड़काव करें, और इससे उनको काफ़ी फायदा मिलेगा। और हम लोगों ने अपने यहाँ प्रयोग करके भी देखा है, देख भी रहे हैं। तो इसके छिड़काव से एक फायदा ये समझ में आता है कि इसमें कुछ एक विशेष प्रकार का गंध होता है।
2: अच्छा,
3: जिसके वजह से पौधे में कीड़े और रोग का प्रकोप कम हो जाता है।
2: अच्छा,
3: जिस फसल में इसका छिड़काव करते हैं उसके आसपास कीड़े नज़र नहीं आते हैं। तो ये काफ़ी उपयोगी है, और ना सिर्फ ये रिपेलेंट का काम करता है बल्कि पौधों में ग्रोथ प्रमोटर का भी काम करता है, उसके विकास में सहायक होता है। और इसमें बहुत सारे जीवाणु, बहुत सारे फंगस, बहुत सारे एक्टिनोमाइसिटीज लाखों की संख्या में पाए जाते हैं, जो मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाते हैं। मिट्टी में जो पोषक तत्व तो ऐसे रूप में विद्यमान हैं, वर्तमान ये मौजूद हैं जो पौधों को मिल नहीं पा रहे हैं उनको भी घुलाकर पौधों को उपलब्ध कराते हैं और पौधों के जड़ के आसपास एक ऐसा आवरण बनाते हैं, एक ऐसा परिधि बनाते हैं जिसमें हानिकारक रोग का अटैक नहीं हो पाता है, जिसके वजह से पौधे स्वस्थ रह पाते हैं। अगर हम फोलियर स्प्रे कर रहे हैं तो उस कंडीशन में भी पौधों के पत्तियों पर भी एक आवरण बनाता है जिसके वजह से बाहरी कीड़ों का या रोगों का प्रकोप नहीं के बराबर हो पाता है।
2: तो आपने जाना किसान बंधुओं कि क्या क्या फ़ायदे हैं पंचगव्य के, और आपने जाना कि कैसे इसे बना सकते हैं, हम इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं खेतों में, इसकी विधि को जाना आपने, और साथ ही बहुत सारी चीज़ें से जुड़ी जो हैं डॉक्टर साहब ने बताया। तो फिलहाल तो चाहेंगे कि आप भी अगर नहीं जानते हैं इसे बनाना, तो यहाँ पर जो भी आप सभी को बताया गया तो अगर आप उसे अपनाते हैं, उसे फॉलो करते हैं, तो ज़रूर आप इसे सीख जाएंगे बनाना और आपको ये बहुत फ़ायदा देगा। तो आज के लिए इतना ही, सुनते रहिए 90.8 FM ग्रीन, सुनते रहिए उन्नत कृषि कार्यक्रम। उन्नत कृषि

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 20 से 24 जून के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी आने और साथ ही हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 25 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 60 से 70 प्रतिशत और दोपहर में 25 से 30 प्रतिशत रहने की संभावना है। साथ ही अनुमान है कि 20 से 24 जून के दौरान 8 से 9 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दक्षिण पूर्वी हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए। जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दें, धान की मध्यम अवधि वाली किस्में जैसे संतोष, सीता, सरोज, सहभागी धान और राजेंद्र श्वेता और सुगंधित किस्में जैसे राजेंद्र धान की मध्यम अवधि वाली किस्में हैं संतोष, सीता, सरोज, सहभागी धान और राजेंद्र श्वेता और सुगंधित किस्में जैसे राजेंद्र सुवासिनी, राजेंद्र कस्तूरी और राजेंद्र भगवती। किसान भाई बहनों इन किस्मों की नर्सरी में बुआई जरूर कर लें। जो मक्का की खेती करना चाहते हैं उन्हें बता दें, खरीफ मक्का की बुआई आसमान साफ रहने पर ही करें और खेत की जुताई में 10 से 15 टन गोबर की सड़ी खाद प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें। ध्यान रखें कि बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 30 किलोग्राम नेत्रजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटाश जरूर डालना चाहिए। और आपको बता दें, अनुशंसित मक्का की किस्में हैं सुवान, देवकी, शक्तिमान 1, शक्तिमान 2, राजेंद्र संकर मक्का 3, गंगा 11। जिनके खेत में मूंग लगे हैं उन्हें बता दें, मूंग की तैयार फलियों की तुड़ाई कर ले और हरी खाद के लिए उसके पौधों को मिट्टी पलटने वाले हल से जमीन में गाड़ दे। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दें, भिंडी, कद्दू, खीरा, नेनुआ और लौकी जैसी फसलों की निराई गुड़ाई जरूर करें। साथ ही खर पतवार नियंत्रित करना भी बहुत जरूरी होता है। पत्ती खाने वाले सुंडियों और फल छेदक कीटों की नियमित निगरानी करें और अगर आपकी सब्जियों में पत्ती खाने वाले सुंडियों या फल छेदक कीटों का प्रकोप दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में डाइमेथोएट 30 सीसी की 1 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। जो खरीफ सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दें, खरीफ प्याज की खेती के लिए नर्सरी यानी कि बीज स्थली की तैयारी तभी करें जब आसमान साफ हो। स्वस्थ पौधों के लिए नर्सरी में गोबर की खाद जरूर डालें और खरीफ प्याज के लिए NO53, एग्रीफाउंड डार्क रेड, अर्का कल्याण, सीमा सुपर, ये किस्में अनुशंसित है। प्याज के बीज की व्यवस्था प्रमाणित स्रोत से ही करें और ध्यान दें कि बीज गिराने के पहले बीजोपचार करना बहुत जरूरी होता है। बीजोपचार करने से आपके पौधे स्वस्थ होते हैं और फसल अच्छी होती है। बीज की दर 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, लीची तोड़ने के बाद खासकर बरसात शुरू होने से पहले बगीचे की जुताई जरूर कर ले और खाद उर्वरकों का प्रयोग तभी करें जब आसमान साफ हो। प्रति प्रौढ़ पेड़ 60 से 80 किलोग्राम सड़ी गोबर की खाद, 2.5 किलोग्राम यूरिया, 1.5 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट और 1 किलो 300 ग्राम म्यूरेट और पोटाश और 50 ग्राम सुहागा मिलाकर वृक्ष के चारों ओर समान रूप से मिट्टी में मिला दें। पशुपालक भाई बहन ध्यान दें, गलाघोटू और लंगड़ी रोगों से बचाव के लिए टीकाकरण कराने की जरूरत होती है, इसलिए सभी दुधारू पशुओं में टीकाकरण जरूर कराएं और नए गेहूं के भूसा को खिलाने से पहले ध्यान दें कि करीब 2 घंटा नए गेहूं के भूसा को पानी में फुला लें और 50 ग्राम खनिज मिश्रण और 50 ग्राम नमक चारा दाना मिलाकर दें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप हर समय थकान महसूस करते हैं, छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है, ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है, बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।
1: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
0: क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।
1: सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: लेडीज फर्स्ट।
2: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों आपका बहुत बहुत बहुत स्वागत है बहनों को संबोधित हमारे विशेष कार्यक्रम लेडीज फर्स्ट में। वैसे बहनों को संबोधित है लेकिन यहां बातें ऐसी होती है जो सबके लिए फायदेमंद है। अब देखिए आज हम बात करने वाले हैं किताबों के बारे में, भला किताबें किनके लिए फायदेमंद नहीं साबित होती है। और जो किताबें पढ़ना पसंद करते हैं उन्हें पता है कि किताबें ना सबसे अच्छी दोस्त होती है। और जब फोन का जमाना है, सब कुछ फोन पे है, तब भी जो किताबों में सुकून है ना वो कहीं नहीं मिलता। और कई बार कुछ किताबें ऐसी होती हैं जो आपको बहुत अच्छी बातें सिखा देती हैं और इस दुनिया को देखने का, यहाँ तक कि खुद को देखने का एक नया नजरिया देती हैं। और कई बार हमें उन किताबों को बहुत गहराई से पढ़ने की जरूरत होती है। कुछ किताबें ऐसी होती हैं जिन्हें पढ़ने के बाद आप पूरी जिंदगी नहीं भुला सकते, और उन्हीं कुछ किताबों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। और ख़ास तौर से उन किताबों के बारे में बात करने वाले हैं जो लेडीज़ को, जो महिलाएं हैं या फिर लड़कियां हैं, अपने टीन एज में हैं या फिर प्रौढ़ महिला भी हैं, उन्हें ये किताबें ज़रूर पढ़नी चाहिए। आज 10 ऐसी किताबों के बारे में बात होने वाली है जो आपको पढ़नी चाहिए, आपकी लाइब्रेरी में होनी चाहिए। और अगर आप पुरुष हैं, आप सुन रहे हैं, तो आप अपनी दोस्त को, अपनी मम्मी को या फिर आपकी बहन है उन्हें, आप आपके आसपास जो भी महिलाएं हैं उन्हें ये किताबें या इनमें से कुछ किताबें उन्हें आप ज़रूर गिफ्ट करिए। सबसे पहली किताब है मित्रों मरजानी। नाम कितना प्यारा है ना। और मित्रों मरजानी लिखा है कृष्णा सोपती ने। और अगर हम इस उपन्यास की बात करें तो ये उपन्यास मित्रों नाम की एक साहसी और बेबाक महिला की कहानी है जो कि समाज द्वारा महिला पर लगाए गए बंधनों को खुलकर चुनौती देती है। बहुत सारी बंधन है ना, आज के समय में भी आपको बहुत सारे बंधन मिलेंगे जिन्हें खत्म करने की जरूरत है। तो मित्रों यही काम करती है कि समाज जो महिलाओं पर बंधन लगाता है उसे वो चुनौती देती है। इस किताब में आपको स्त्री की इच्छाओं, उनकी स्वतंत्रता और आत्मसम्मान का एक बहुत ही बेहतरीन चित्रण मिलेगा। और अगर हम बात करें ना तो ये किताब भले ही बहुत पहले लिखी गई हो लेकिन ये किताब अपने समय से बहुत आगे की सोच रखता है और ये किताब हर महिला को जरूर पढ़नी चाहिए। हिंदी साहित्य में इसे नारी विमर्श की महत्वपूर्ण कृति माना जाता है। अगली किताब है आपका बंटी। आपका बंटी मन्नू भंडारी के द्वारा लिखा गया है और मन्नू भंडारी की भी जो शख्सियत है ना वो बहुत ही कमाल की है। आप उनके इंटरव्यूज देखेंगे या फिर आप उनकी और भी कहानियां पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ वाकई बहुत ही कमाल की शख्सियत और बहुत ही कमाल की इनकी लेखनी। और उनकी एक लेखनी है आपका बंटी, ये बहुत ही कमाल की किताब है। ये कहानी ना एक बच्चे बंटी की नज़र से आप पढ़ेंगे, समझेंगे। बंटी की नज़र से आप देखते हैं कि किस तरीके से एक परिवार टूटता है तो बच्चे पर असर सबसे ज्यादा पड़ता है। जब माता पिता का तलाक हो जाता है तो बच्चे पर क्या असर पड़ता है, यही इसका मुख्य विषय है। और उपन्यास में आप देखेंगे कि स्त्री के संघर्ष और उसके भावनात्मक जीवन का भी काफी बेहतरीन चित्रण है। और सबसे अच्छी बात है इस किताब की कि भाषा बहुत ही सरल और बहुत ही प्रभावशाली है। कहते हैं ना कि कुछ चीजें सरल रहते हुए भी आपके ऊपर बहुत ही गजब का प्रभाव छोड़ जाती है, तो ये किताब उन्हीं किताबों में से एक है। और ये हिंदी की आपका बंटी हिंदी की सबसे चर्चित पारिवारिक उपन्यासों में से एक है। अगली किताब है अमृता प्रीतम की पिंजर। पिंजर उपन्यास की अगर हम बात करें तो भारत विभाजन की पृष्ठभूमि पर आधारित है ये उपन्यास, जिसमें नायिका का नाम पूरो है, हालांकि नायिका पूरो के जीवन के माध्यम से स्त्री के पीड़ा को दर्शाया गया है। जब भारत विभाजन हुआ था उस दौरान स्त्रियों को भी बहुत कुछ सहना पड़ा था। इस किताब में आप धर्म, पहचान और मानवता के प्रश्न से रूबरू होंगे। जब ये सारे प्रश्न उठते हैं ना तो आपको अंदर से कचोट देते हैं। कहानी बेहद ही मार्मिक और संवेदनशील है। अगर हम विभाजन साहित्य की बात करें तो उनमें से श्रेष्ठ कृतियों में से पिंजर का नाम गिना जाता है, अमृता प्रीतम की लिखी पिंजर। अगली किताब है मन्नू भंडारी की लिखी हुई महाभोज। महाभोज अगर हम इस किताब की बात करें तो ये एक राजनीतिक व्यवस्था और भ्रष्टाचार पर तीखा व्यंग है। कहानी एक गरीब युवक की है और जब उस युवक की मृत्यु हो जाती है ना, उसके बाद इस कहानी की शुरुआत होती है। किस तरीके से सत्ता और राजनीति आम जनता का शोषण करती है ये दिखाया गया है बहुत ही कमाल के तरीके से महाभोज में। और अगर हम इस उपन्यास की बात करें तो ये उपन्यास सामाजिक अन्याय को उजागर करता है और बहुत ही बेहतरीन ढंग से करता है, और आज भी ये उपन्यास उतना ही प्रासंगिक माना जाता है। महाभोज एक बार जरूर पढ़िए, ये आपको समाज को देखने का, आपके आसपास के व्यवस्था को, भ्रष्टाचार को समझने का एक नजरिया देता है। अगली किताब है चाक, मैत्रेयी पुष्पा की लिखी चाक, समाज में महिलाओं के संघर्ष की कहानी है। उपन्यास में आप पढ़ेंगे जाति, पितृसत्ता और सामाजिक भेदभाव को, और किस तरीके से नायिका अपने अधिकारों के लिए लड़ती है। भाषा में ग्रामीण जीवन की एक सजीव झलक आपको दिखती है और ये किताब स्त्री सशक्तिकरण की एक महत्वपूर्ण कृति है, आपको जरूर पढ़नी चाहिए, मैत्रेयी पुष्पा की लिखी चाक। कुछ किताबें ऐसी होती है जिन्हें पढ़कर रोना आता है, कुछ किताबें ऐसी होती है जो आपको हंसाती है, और कुछ किताबें ऐसी होती है जो आपके ऊपर प्रभाव नहीं छोड़ती है, और कुछ किताबें ऐसी होती है जो ना रुलाती है ना हंसाती है बल्कि आपको कचोटती है। आप बहुत असहाय से महसूस करते हैं, आपको समझ नहीं आता कि क्या कर दे, काश उस नायिका के पास हम पहुंच जाएं और उसकी जिंदगी ठीक कर दे, उसे समझा दे, या फिर बहुत ही आपको असहाय महसूस होगा, आप विचलित होंगे पर आपके हाथों में कुछ नहीं होगा। ये किताब है कांता भारती की लिखी रेत की मछली। कांता भारती की बात करें तो कांता भारती ने सिर्फ एक किताब लिखी, रेत की मछली, और इस किताब में आप पढ़ेंगे कि किस तरीके से एक स्त्री संघर्ष करती है, आत्मसम्मान के लिए लड़ती है और अपने अस्तित्व की खोज में निकल पड़ती है। इस किताब में पितृसत्तात्मक समाज में महिलाओं की स्थिति को बहुत ही संवेदनशील तरीके से चित्रित किया गया है। नायिका सामाजिक बंधनों और अन्याय के विरुद्ध अपनी पहचान बनाने का प्रयास करती है, लेकिन उसके पहले जो उसे जीवन में झेलना पड़ता है ना, अपनों से जो उसे धोखा मिलता है, दगा मिलता है, वो आपको कचोट देती है अंदर से। भाषा बहुत ही सरल है लेकिन बहुत ही प्रभावशाली, और भावनात्मक गहराई इतनी है कि किताब पढ़ते हुए मैंने आपसे कहा ना, आप बहुत ही असहाय महसूस करेंगे। ये किताब स्त्री अधिकार, आत्मनिर्भरता और सामाजिक बदलाव के प्रश्नों को उठाती है, और अगर आप 10 प्रभावशाली हिंदी पुस्तकों की लिस्ट बना रहे हैं, सूची बना रहे हैं, तो रेत की मछली को शामिल करना एक बहुत ही अच्छा चयन हो सकता है। अगली किताब है मुझे चांद चाहिए, सुरेंद्र वर्मा की लिखी हुई ये किताब है, एक बहुत ही महत्वाकांक्षी युवती की संघर्ष गाथा है। नायिका अपने सपनों को पूरा करने के लिए बहुत ही कठिन रास्ता चुनती है, और वो कला, रंगमंच, आधुनिक समाज आप इसमें देख पाएंगे, आपको इसमें झलक मिलेगी मुझे चांद चाहिए किताब में। पुस्तक स्त्री के स्वतंत्र पहचान की भी बात करती है, और मुझे चांद चाहिए उपन्यास की कहानी आपको बहुत ही प्रेरणादायक लगेगी और साथ ही यथार्थवादी भी लगेगी। अगली किताब मैत्रेयी पुष्पा की ही लिखी हुई कस्तूरी कुंडल बसे। इस किताब की खास बात यह है कि ये खुद मैत्रेयी पुष्पा की आत्मकथा है, इसमें उनके बचपन, संघर्ष और जीवन यात्रा का आपको बहुत ही सजीव वर्णन मिलता है। ग्रामीण परिवेश में स्त्री जीवन की कठिनाइयों को दर्शाया गया है इस किताब में, साथ ही ये किताब आपको आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता का संदेश देती है जो बहुत जरूरी होता है किसी भी इंसान के लिए और खास तौर से एक महिला के लिए। ये हिंदी की चर्चित आत्मकथाओं में से एक है, कस्तूरी कुंडल बसे, मैत्रेयी पुष्पा के लिखी। अगली किताब भी कृष्णा सोपती की ही लिखी हुई है, जिंदगी नामा। ये उपन्यास पंजाब के ग्रामीण जीवन को अच्छी तरीके से प्रस्तुत करता है, बहुत ही विस्तृत तरीके से प्रस्तुत करता है। इसमें अनेक पात्र आपको मिलेंगे और उनकी जीवन शैली किस तरीके से है उसका बहुत ही सजीव वर्णन है, साथ ही सामाजिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पहलुओं को भी बहुत ही खूबसूरती से उकेरा गया है जिंदगी नामा में। भाषा और शैली इसे विशेष बनाती है, साथ ही इसे हिंदी साहित्य की महान कृतियों में से भी गिना जाता है। अगली किताब है मन्नू भंडारी की ही एक कहानी ये भी ना मन्नू भंडारी की आत्मकथा है। इसमें उनके साहित्यिक जीवन और और उनके जो व्यक्तिगत संघर्ष रहे उसका वर्णन है। लेखिका ने अपने वैवाहिक जीवन के अनुभव भी इस किताब में साझा किए हैं। इस किताब को बहुत ही ईमानदारी और संवेदनशीलता से लिखा गया है, और जब आप इस किताब को पढ़कर खत्म करेंगे ना, तो आपको लगेगा कि आपके अंदर एक अलग ही आत्मविश्वास है और आत्मचिंतन की प्रेरणा मिलती है आपको इस किताब से। हालांकि 10 किताबें हो चुकी है, लेकिन एक और किताब मैं जो अंत में जोड़ना चाहूंगी वो है टेढ़ी लकीर, इस्मत चुगताई की लिखी हुई है। ये उपन्यास ना शम्मन नाम की एक लड़की की है और उसके जीवन और उसके आत्मविकास की कहानी है। इस किताब में आप पाएंगे स्त्री स्वतंत्रता की बातें, शिक्षा, प्रेम, समाज की रूढ़ियों पर एक बहुत ही गहरा विमर्श मिलता है आपको इस किताब में। और इस्मत चुगताई ने महिलाओं की भावनाओं को और उनके संघर्षों को बहुत ही बेबाकी से प्रस्तुत किया है। हालांकि इस्मत चुगताई खुद भी एक बेबाक महिला रही थी और बहुत ही कमाल की इनकी भी शख्सियत रही है। आप अगर पढ़ेंगे ये किताब टेढ़ी लकीर, तो ये उस दौर के मध्यम वर्गीय समाज और उसकी मानसिकता का एक बहुत ही सजीव चित्रण आपको पेश करती है। अगर हम इस किताब की बात करें तो इस किताब को यानी कि टेढ़ी लकीर को भारतीय उपमहाद्वीप के सबसे महत्वपूर्ण नारीवादी उपन्यासों में से गिना जाता है। तो ये किताबें आप जरूर पढ़ें, और लास्ट में जो मैंने ऐड की है टेढ़ी लकीर इस्मत चुगताई की लिखी हुई, इसे भी जरूर अपने लिस्ट में शामिल करें। बहुत ही कमाल की ये किताबें हैं, इनमें से एक दो भी आप पढ़ लेंगे ना तो आपको लगेगा कि हाँ आज मैंने कुछ अलग ही किया है। आपको एक अलग सा सुकून मिलेगा, और उसके साथ जो सबसे अच्छी बात होती है ना वो ये होता है कि आप आत्मचिंतन करेंगे। जब आप उस किताब के किरदार के साथ जुड़ जाएंगे, उनके साथ हंसेंगे, उनके साथ खुश होंगे और उनके साथ रोएंगे, और कभी उनके साथ विचलित होंगे, असहाय महसूस करेंगे, तो फिर वो बात ही अलग होती है। और इन किताबों को पढ़िए, और कहते हैं कि किताबें सबसे अच्छी साथी होती है, तो ज़रूर इनमें से अगर आप सारी किताबें पढ़ सकते हैं तो क्या ही कहने, लेकिन आप एक दो किताबें पढ़ लेते हैं, जो भी आपको किताब अच्छी लगे उसे पढ़िए। और फिलहाल आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। उम्मीद है कि हमारा आज का ये कार्यक्रम लेडीज फर्स्ट कार्यक्रम आपको अच्छा लगा होगा, और आज के कार्यक्रम में जो हमने किताबों के बारे में बातें की उन किताबों से आप बहुत कुछ जानेंगे, समझेंगे, सीखेंगे, और सबसे बेहतर ये होगा कि आप अपने बारे में जानेंगे, समझेंगे, सीखेंगे। फिलहाल के लिए मैं चलती हूँ, लेकिन जाने से पहले खास बात की अपना और अपने अपनों का और अपने सपनों का रखे विशेष ध्यान। खुश रहे, स्वस्थ रहे, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। आपकी अपनी होस्ट और दोस्त उमा को दीजिए इजाजत, और हाँ हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहे। नमस्कार।

तैयार है आम के अद्भुत संसार से रूबरू होने के लिए। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर लेकर आ रहा है राष्ट्रीय आम समागम 2026, जिसका आयोजन 27 से 28 जून तक किया जाएगा। आइए और देखिए देश भर की सैकड़ों आम किस्मों की आकर्षक प्रदर्शनी, जहां स्वाद, सुगंध और रंगों का अनूठा संगम आपका स्वागत करेगा। इस विशेष आयोजन की थीम है स्वाद, संस्कृति और समृद्धि का संगम। आम समागम में किसानों, वैज्ञानिकों, उद्यमियों और आम प्रेमियों को एक ही मंच पर आने का अवसर मिलेगा।

विशेष सम्मान और नगद पुरस्कार की व्यवस्था की गई है। और अब आपके लिए एक सुनहरा अवसर, यदि आपके बाग में उत्कृष्ट गुणवत्ता के आम हैं या आपके पास किसी विशेष किस्म के आम उपलब्ध हैं, आप भी आम प्रदर्शनी में अपनी आम की किस्मों को प्रदर्शित कर सकते हैं। आपकी प्रविष्टियों का मूल्यांकन विशेषज्ञों द्वारा किया जाएगा और चयनित प्रतिभागियों को आकर्षक पुरस्कार एवं नगद राशि से सम्मानित किया जाएगा। और हाँ, आम प्रेमियों के लिए होगा एक विशेष आकर्षण, मैंगो ईटिंग प्रतियोगिता। इस रोमांचक प्रतियोगिता के विजेताओं को भी आकर्षक नगद पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। तो देर किस बात की, अपने श्रेष्ठ आमों के साथ आइए, प्रदर्शनी में भाग लीजिए, विशेषज्ञों से सीखिए, नई तकनीकों को जानिए और आकर्षक पुरस्कार जीतने का अवसर पाइए। 27 से 28 जून राष्ट्रीय आम समागम 2026 बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है।

0: टीनू, मीनू, राजू, पिन्नी
1: और तुम्हारे वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
0: 11 दोस्त
1: टीकू, वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
0: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
1: मगर टीकू, कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
0: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं, या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
0: टीकी, तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा, सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है, तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। UN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्वस्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
2: याद रखो, आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।
3: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
4: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
3: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
4: आपकी सेहत की बातें,
3: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
4: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
3: वो सब कुछ एक ही

0: जगह पर
1: वो कहाँ पर
0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 एफएम ग्रीन पर
1: एफएम ग्रीन यानी हरियाली से खुशहाली तक।
0: उन्नत कृषि बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। आज हमारा कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है उन लोगों के लिए जो उड़द की खेती करते हैं। उड़द यानी कि ब्लैक ग्राम जो एक प्रमुख दलहनी फसल है, लेकिन कई बार इस फसल में कीट आक्रमण कर देते हैं और उत्पादन कम कर देते हैं। तो ये कीट कौन कौन से होते हैं, ये फसल को कैसे नुकसान पहुंचाते हैं और सबसे महत्वपूर्ण हम इसका प्रबंधन कैसे कर सकते हैं, इसी विषय पर आज चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर तारकनाथ गोस्वामी। आप हैं एसोसिएट प्रोफेसर कीट विज्ञान विभाग से बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
2: धन्यवाद, सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार।
0: तो दोस्तों आइए शुरुआत करते हैं बहुत ही मूल बातों के साथ। सर आपसे पहला सवाल यही है कि उड़द के प्रमुख कीट कौन कौन से होते हैं।
2: अच्छा, उड़द के प्रमुख कीट में से चार कीट बहुत इम्पोर्टेंट है, प्रमुख है, जैसे माहू जिसको हम लोग एफिड कहते हैं, सफेद मक्खी व्हाइट फ्लाई कहते हैं, जैसीड उसको वो एक लीफ ऑफर है, होते हैं, और एक है फली छेदक जिसको पॉड बोरर कहते हैं। तो माहू एक बहुत ही छोटे मुलायम शरीर वाले कीट होते हैं जो हरे या काले रंग के होते हैं। सफ़ेद मक्खी भी छोटे होते हैं लेकिन ये सफ़ेद पंख वाले कीट होते हैं जो पत्तियों के नीचे पाए जाते हैं। और जैसीड जो लीफ हॉपर होते हैं इसके हल्के इसका जो रंग होता है वो हल्के हरे रंग के होते हैं और बहुत सक्रिय होता है तथा पत्तियों का रस चूस के वो नुकसान पहुँचाता है। और लास्ट में जो मैंने बोला फली छेदक जो है इसका लार्वा फूलों में और फलियों में छेद करके खाते हैं।
0: जी, तो सर ये कीट फसल को नुकसान कैसे पहुंचाते हैं?
2: अच्छा, तो माहू और सफेद मक्खी ये जो दो छोटे छोटे कीड़े होते हैं वो पत्तियों और कोमल भागों से रस चूसते हैं जिससे पत्तियां मुड़ जाते हैं, पौधा कमजोर हो जाते हैं और प्रकाश संश्लेषण कम हो जाता है। ये दोनों ही कीट शहद जैसे पदार्थ उत्सर्जन करते हैं पत्तियों में या तो जहाँ से वो रस चूसते हैं जिससे सूटी मोल्ड विकसित हो जाता है। और जैसीड जो है वो पत्तियों से रस चूसकर खाता है और इसके वजह से पत्तियों के किनारे से पीला पड़ना शुरू हो जाता है। और फली छेदक फूल और फलियों को नुकसान पहुंचाता है जिससे उत्पादन घटता है।
0: तो सर फसल के किस अवस्था में ये कीट अधिक दिखाई देते हैं?
2: तो माहू या लाही एवं सफेद मक्खी और जैसीड प्रारंभिक वृद्धि अवस्था से लेकर फली बनने तक पाए जाते हैं और फली छेदक फूल आने और फली बनने के समय अधिक दिखाई देते हैं।
0: और इससे बचने का कोई तरीका जिसे हम शुरुआती अवस्था में ही कीट आक्रमण का पता लगा सकें और अपने फसलों को बचा सकें?
2: बिल्कुल, हम लोग वो पता लगा सकते हैं। जैसे किसानों को सबसे पहले जो करना चाहिए वो नियमित रूप से अपने खेत का निरीक्षण करना चाहिए, पत्तियों के निचली भाग को खास करके उसको जांच करना चाहिए ताकि उसको ये दिखाई पड़े कि सफ़ेद मक्खी है या जैसीड है। अगर दिखाई पड़ते हैं तो प्रारंभिक पहचान संभव है और ससमय नियंत्रण संभव है।
0: यानी कि अगर समय पर पहचान कर लेते हैं तो चीज़ें आसान हो जाती है।
2: बिल्कुल।
0: और सर अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न कि इन कीटों का प्रबंधन कैसे करें?
2: अच्छा, तो ये सारे जो चार कीड़ों के बारे में हमने बात किया अभी, उन सारे चार कीड़ों को नियंत्रण करने के लिए हम लोगों को समेकित कीट प्रबंधन अपनाना चाहिए। और समेकित कीट प्रबंधन में हम लोग रासायनिक नियंत्रण को आवश्यक होने पर ही हम लोग रासायनिक नियंत्रण का इस्तेमाल करते हैं। तो और कौन कौन से उपाय है हम लोगों के पास? जैसे हम लोगों के पास स्वस्थ बीज का उपयोग करना संभव है, खेत की स्वच्छता मेंटेन करना संभव है, ससमय बुआई करना संभव है, संतुलित उर्वरक उपयोग करना, प्रतिरोधी किस्में हम लोगों को लगाना चाहिए, प्राकृतिक शत्रु उनका संरक्षण बहुत महत्वपूर्ण है, कुछ यांत्रिक नियंत्रण विधि भी है हम बताएंगे और कुछ जैविक कीटनाशी भी है। लेकिन हम किसान भाइयों को बोलेंगे कि रासायनिक नियंत्रण जब आपको बहुत ज़रूरत है तभी आप रासायनिक नियंत्रण आपका उसका उपयोग करेंगे। तो स्वस्थ बीज का उपयोग कैसे करेंगे? हम लोग प्रमाणित बीज को लें और उस बीज को उपचार करें, और उपचार करने के लिए हम लोग इमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL, उसका 5 ml प्रति किलोग्राम बीज, इसके मतलब इस दर से हम लोग को उसको लेके उपचार करें। खेत की स्वच्छता बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। फसल अवशेष और खरपतवार जो आपका खेत में रहता है उसको आप निकालें और गहरी जुताई करें। समय पर बुआई करें। नाइट्रोजन का अधिक उपयोग ना करें। नाइट्रोजन का अधिक उपयोग करेंगे तो वो जितना भी कीड़े के बारे में हमने बात किया वो सारे उसका पॉपुलेशन बढ़ेगा। अच्छा। आप अनुशंसित मात्रा में नाइट्रोजन का उपयोग करें। कुछ प्रतिरोधी किस्में हैं जैसे पंथ U30, प्रताप उरद 1, ये दो किस्में वो जो रस चूसने वाला कीड़े होता है उसका उससे वो रेजिस्टेंट है। और कुछ यांत्रिक नियंत्रण जैसे आप पीला चिपचिपा ट्रैप, हम लोग येलो स्टिकी ट्रैप बोलते हैं, उसका इस्तेमाल भी आप लोग कर सकते हैं। उसका इस्तेमाल करने के लिए आपको एक प्रति एकड़ में आपको 8 से 10 ट्रैप लगाना होता है। और जैविक कीटनाशी में नीम तेल बहुत महत्वपूर्ण होता है। नीम तेल जो बाजार में मिलता है उसका 1500 ppm 3 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करने से आपका ये जो चारों कीड़े हैं उससे आपको बचाव मिल सकता है। और कुछ रासायनिक नियंत्रण जिसके बारे में हमने पहले ही बताया, जब बहुत ज़रूरत है तब आप उसका इस्तेमाल करेंगे। तो रस चूसने वाला कीड़ों के लिए आप थायामिथोक्साम 25 WG उसका इस्तेमाल करेंगे। उसका इस्तेमाल करने के लिए जो डोज होना चाहिए वो होना चाहिए 0.25 g प्रति लीटर पानी में। जो छेदक कीड़े होते हैं मतलब फल छेदक या फूल में भी छेद करते हैं उसके लिए आप इमामेक्टिन बेंजोएट 5 SG उसका 0.4 g प्रति लीटर के हिसाब से आप छिड़काव करेंगे। और आपके नज़दीक में जो कृषि विज्ञान केंद्र हो या कोई हमारा कोई कॉलेज हो वहाँ पे जो विशेषज्ञ है उनका सलाह फसल बुआई करने से पहले या बीच में भी आप उसका सलाह आप लेंगे
0: जी। तो इन बातों का अगर ध्यान रखेंगे तो उड़द की फसल को बहुत अच्छी तरीके से बचाया जा सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण होता है कि आप समय पर पहचान कर लें, उसके बाद और उससे पहले भी ज़रूरी होता है कि बीजों का उपचार करना बहुत ज़रूरी होता है ना। और तो सर आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, किसानों के लिए आपका कोई अंतिम संदेश?
2: यस, तो उड़द मैं एक लास्ट संदेश यही देना चाहता हूँ कि उड़द हमारे लिए एक बहुत लाभदायक फसल है, लेकिन इससे जैसे मैंने बताया कीड़ों से बचाना बहुत आवश्यक है। तो इसके लिए किसान भाइयों को नियमित रूप से निगरानी करने का ज़रूरत है और पर्यावरण अनुकूल प्रबंधन जो हमने मेंशन किया उसको इस्तेमाल करने से आपका उत्पादन बढ़ेगा। तो आइए किसान भाइयों और बहनों, हम लोग IPM यानी कि समेकित कीट प्रबंधन हम लोग अपनाएं और पर्यावरण को रक्षा करें।
0: सर आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी और उम्मीद है कि हमारे आज के इस कार्यक्रम से जो किसान भाई बहन उड़द की खेती करते हैं उन्हें बहुत सहायता मिली होगी। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: धन्यवाद आपको भी।
0: ऐसी ही उपयोगी जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें, क्योंकि हम हैं हरियाली से खुशहाली तक।
3: उन्नत कृषि

तैयार है आम के अद्भुत संसार से रूबरू होने के लिए। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर लेकर आ रहा है राष्ट्रीय आम समागम 2026, जिसका आयोजन 27 से 28 जून तक किया जाएगा। आइए और देखिए देश भर की सैकड़ों आम किस्मों की आकर्षक प्रदर्शनी, जहां स्वाद, सुगंध और रंगों का अनूठा संगम आपका स्वागत करेगा। इस विशेष आयोजन की थीम है स्वाद, संस्कृति और समृद्धि का संगम। आम समागम में किसानों, वैज्ञानिकों, उद्यमियों और आम प्रेमियों को एक ही मंच पर आने का अवसर मिलेगा। कार्यक्रम के दौरान आयोजित होगी राष्ट्रीय कार्यशाला, जिसका विषय है आधुनिक तकनीक से गुणवत्ता युक्त उत्पादन, भंडारण एवं प्रसंस्करण। देश के प्रतिष्ठित विशेषज्ञ आम उत्पादन, मूल्य संवर्धन और प्रसंस्करण की आधुनिक तकनीकों पर अपने अनुभव साझा करेंगे। इस अवसर पर आयोजित होगा किसान वैज्ञानिक सम्मान समारोह, जिसमें बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश के उत्कृष्ट आम उत्पादकों को बेस्ट मैंगो फार्मर अवार्ड प्रदान किया जाएगा। महिला आम उत्पादकों एवं मूल्य संवर्धन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिला उद्यमियों के लिए भी विशेष सम्मान और नगद पुरस्कार की व्यवस्था की गई है। और अब आपके लिए एक सुनहरा अवसर, यदि आपके बाग में उत्कृष्ट गुणवत्ता के आम हैं या आपके पास किसी विशेष किस्म के आम उपलब्ध हैं, तो आप भी आम प्रदर्शनी में अपनी आम की किस्मों को प्रदर्शित कर सकते हैं। आपकी प्रविष्टियों का मूल्यांकन विशेषज्ञों द्वारा किया जाएगा और चयनित प्रतिभागियों को आकर्षक पुरस्कार एवं नगद राशि से सम्मानित किया जाएगा। और हाँ, आम प्रेमियों के लिए होगा एक विशेष आकर्षण, मैंगो ईटिंग प्रतियोगिता। इस रोमांचक प्रतियोगिता के विजेताओं को भी आकर्षक नगद पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। तो देर किस बात की, अपने श्रेष्ठ आमों के साथ आइए, प्रदर्शनी में भाग लीजिए, विशेषज्ञों से सीखिए, नई तकनीकों को जानिए और आकर्षक पुरस्कार जीतने का अवसर पाइए। 27 से 28 जून राष्ट्रीय आम समागम 2026 बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है।

0: पक्षियों को उड़ता देख साथ मुझे आई एक भूली कहानी याद।
1: कौन सी कहानी टीकी?
0: उस जालिम शिकारी की जो आया था करने पक्षियों का शिकार।
2: हमें भी वो कहानी बताओ ना।
0: एक था शिकारी जिसने चिड़ियों का शिकार करने को चुपके से बिछाया जाल, लेकिन जाल को सब चिड़िया फुर्र से ले उड़ी साथ।
3: माथा पीटता रह गया शिकारी, एक भी चिड़िया लगी ना हाथ।
0: तो दोस्तों, बीमारी का राक्षस भी बिछाए बैठा है एक जाल, अगर बच्चों का टीकाकरण छूटा तो कर देगा सबको बीमारी से बेहाल।
1: तो इस राक्षस से कैसे बचना है?
0: तो 5 साल या उनसे छोटे बच्चों के मम्मी पापा, सभी सुनो एक जरूरी बात, अगर सभी बच्चों का होगा टीकाकरण एक साथ तो बीमारी के राक्षस का भी हो जाएगा खात्मा उसके साथ।
3: टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
4: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
5: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। स्वागत करती हूं हमारे विशेष कार्यक्रम किसान भाई बहनों को संबोधित, हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। उन्नत कृषि में आज हम बात करने वाले हैं जायद में सब्जियों के प्रमुख कीटों के बारे में, उनका प्रबंधन कैसे कर सकते हैं। इस बारे में आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर ऋचा कुमारी, जो हैं कीट विज्ञान विभाग से असिस्टेंट प्रोफेसर कम जूनियर साइंटिस्ट। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
6: धन्यवाद उमा जी।
5: मैम, सबसे पहला सवाल कि जायद में जो उगाने वाली सब्जियां होती है वो कौन कौन सी होती हैं?
6: जी नमस्ते किसान मित्रों, तो ये बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने। इस समय जो किसान मित्र हैं वो भिंडी, खीरा, लौकी, नेनुआ, करेला, तरबूज, खरबूज, ये सारी सब्जियां जो है वो लगाते हैं। हाँ, लेकिन ये है कि गर्मी के साथ साथ कीटों का हमला भी बहुत तेज होता है, तो अगर वो समय पर रह के इसकी पहचान रोकथाम करे तो नुकसान से बचा जा सकता है।
5: और मैम, इन सब्जियों के जो प्रमुख कीट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं?
6: देखिए, अगर हम भिंडी की बात करते हैं तो इसमें जयसिड है, सफ़ेद मक्खी है, उसके बाद फल एवं तना छेदक, ये कीट जो है वो प्रमुख होते हैं। फिर अगर हम बात करें कद्दू वर्ग की सब्जियों की, तो उसमें खीरा है, लौकी, नेनुआ, ये सब जो आता है, करेला, तो इसके जो प्रमुख कीट हैं वो है आपको चेपा, जिसको कि हम लाही या माहू भी कहते हैं। इसके बाद थ्रिप्स है, और एक बहुत अत्यंत मुख्य हम कीट मान सकते हैं फल मक्खी, क्योंकि वो बहुत नुकसान पहुँचाता है, तो एक वो भी आता है। इसके बाद हम खरबूज और तरबूज की बात करें तो उसमें चेपा, सफ़ेद मक्खी और चूसक कीट, ये मुख्य रूप से पाए जाते हैं।
5: और इन कीटों से जो क्षति होते हैं उनके लक्षण कैसे हो सकते हैं, कैसे होते हैं?
6: देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि जो लक्षण होते हैं उन्हीं से हम समझ सकते हैं कि कौन से कीट हैं और फिर उसका रोकथाम कैसे करें। तो मैं सबसे पहले बात करूँगी फल एवं तना छेदक कीट की। इसमें क्या होता है कि जो इसकी पौधे की जो वानस्पतिक वृद्धि होती है उसके दौरान जो ये कीट हैं उनके लार्वा होते हैं वो अंकुरों को क्या करते हैं, खोदते हैं, और उससे क्या होता है कि गांठों पर प्रभाव पड़ता है, और उसमें होता क्या है, अंत में अंकुर गिर जाएंगे। उसके बाद हम संक्रमण की बात करें तो संक्रमण बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप छोटे पौधे झड़ जाते हैं और जो पत्तियां हैं वो पूरी मर जाती हैं, और जो अगर दूसरे युवा पौधे होते हैं वो भी आपको मुरझा जाएंगे। इसके साथ ही साथ केंद्रीय शाखाओं को भी काफ़ी नुकसान पहुंचता है। बाद में यह फल में प्रवेश कर जाएंगे, और अगर ये फल में प्रवेश कर गए तो उससे काफ़ी गंभीर नुकसान होता है। और अब फिर मैं बात करूं चूसने वाले कीट में, जिसमें कि अभी मैंने बताया चेपा आता है, ये थ्रिप्स है, उसके बाद जैसिड है, तो उसमें क्या होता है, उनकी जो प्रारंभिक चरण होती है इनके खाने से, चूसने से, उनमें पत्तियां जो है उसमें विकृति आ जाती है, और उसके बाद वो मुड़ जाएगी और अंततः वो संक्रमित हो जाती है। जो चेपा होता है, चेपा कीट के कारण जो प्रभावित पत्तियां हैं वो काफ़ी पीली पड़ जाती हैं और मुड़ जाती हैं, और अंत में क्या होता है कि जो पत्तियां हैं पूरी तरह से मुरझा गई हैं, तो पौधा क्या हो जाएगा, वो कमज़ोर हो जाता है। ये सारी चीज़ें चूसने वाले कीट के नुकसान के लक्षण हैं। फिर मैं बहुत महत्वपूर्ण एक कीट की बात कर रही हूँ जो फल मक्खी है, तो उसके जो शिशु हैं जिसे हम मैगट भी कहते हैं, वो लगभग पके हुए जो फल होता है उसको वो खाता है और उसके बाद उससे नुकसान होता है, अंत में उससे भी क्या होता है, संक्रमण हो जाते हैं और जो फल हैं वो खाने लायक नहीं बचते हैं। कुछ छोटे जो फल होते हैं उसमें वो फिर अचानक पीले होकर गिरने लग जाते हैं। इसके बाद उससे ये भी होता है कि जो फल में सड़न होती है वो हो जाती है, छेद हो जाते हैं और अंत में उसमें छोटे छोटे कीड़े लग जाते हैं। अगर मैं फिर बात कर रही हूँ आपको जैसिड की, तो जैसिड में भी जो पत्तियाँ हैं वो बिल्कुल पीली पड़ जाती है और वो नीचे की तरफ मुड़ जाती है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण लक्षण है इसका, इससे इसकी पहचान भी हो सकती है। और इसमें जो पत्तियाँ हैं उसमें चिपचिपा पदार्थ आपको दिखाई देगा कि चिपचिपा सा पदार्थ है, और इसमें भी आपको जो फल होंगे उसके बाद वो बहुत ही छोटे से हो जाएंगे, थोड़े टेढ़े मेढ़े हो जाएंगे और बिल्कुल खोखले पड़ जाते हैं। ये सारे जो प्रमुख कीट हैं उनके ये नुकसान के लक्षण आपको दिखाई देंगे।
5: और मैम, इन कीटों का प्रबंधन कैसे कर सकते हैं किसान भाई बहन?
6: सबसे जरूरी यही है कि इनका समेकित प्रबंधन करना चाहिए, मतलब कि आपको सारी जितने भी कारक हैं, जितने भी विधियां हैं नियंत्रण के जो भी हैं, उन सब को आपको साथ में लेकर के इसका नियंत्रण करना चाहिए। तो मैं सबसे पहले बात करना चाहूंगी व्यवहारिक के विधि की। व्यवहारिक जो विधि है उसमें होता क्या है कि सबसे पहले किसान मित्रों को ध्यान रखना है कि प्रतिरोधी किस्मों का चयन करना चाहिए उनको। हाँ, उसके बाद एक और बात है, अधिक नाइट्रोजन खाद से उनको बचना चाहिए, वो ज्यादा ना दें। फिर जो खेत होते हैं उसको साफ रखा करें। इसके अलावा संतुलित सिंचाई भी बहुत जरूरी होता है। उसके बाद मैं कहूंगी कि जो खरपतवार का जो नियंत्रण है वो समय समय पर किसान मित्रों को करना चाहिए। और इसके अलावा जो ठहराव होता है, जो जल का ठहराव, उसको नहीं करना चाहिए खेतों में, उस चीज़ से बचना चाहिए। ये सारी जो चीज़ें मैं बता रही हूँ वो है व्यवहारिक विधि। उसके बाद मैं बात करना चाहूँगी यांत्रिक रोकथाम की या फिर यांत्रिक नियंत्रण की। तो यांत्रिक नियंत्रण में क्या होता है, आप सबसे पहले तो पीला चिपचिपा फंदे का इसमें प्रयोग करना चाहिए। पीला चिपचिपा फंदा लाहू को, लाही जो लाहू या फिर माहू जो भी कहते हैं, चेपा भी इसको हम कहते हैं, तो उस सब को क्या करता है, आकर्षित करता है और उससे ये नष्ट हो जाते हैं। इसके अलावा नीला चिपचिपा फंदे का प्रयोग भी थ्रिप्स के लिए बहुत ही आवश्यक माना जाता है। हाँ, इसके अलावा प्रकाश प्रपंच जो है वो खेतों में जरूर से जरूर लगाएं। प्रकाश प्रपंच से जो छेदक होते हैं वो आकर्षित होते हैं। इसके बाद मैं फल मक्खी ट्रैप की बात कहना चाहूंगी, इसका उपयोग भी करना चाहिए। हाँ, एक और जरूरी आवश्यक बात कि इसमें जो ल्यूड होता है उसको 15 से 20 दिनों में बदल देना चाहिए। ये सारी के अलावा जो है, अगर शिशु जो होते हैं किसी छेदक के, तो उनको हाथों से पकड़ कर भी नष्ट किया जा सकता है। ये सारी विधियां यांत्रिक में आती है। उसके बाद एक है जैविक विधि, जो बहुत ही जरूरी विधि है। इसमें किसान मित्रों को क्या करना है, तो किसान मित्रों को इसमें जो भी मित्र कीट हैं उनका संरक्षण करना है, उनका संवर्धन करना है। जैसे आपको लेडी बर्ड विंग हो गया, उसके बाद ग्रीन लेस विंग है, ये सब जो है ना कीट, जैसे कि चेपा हो गया, सफ़ेद मक्खी हो गया, इन सबको ये सब खाते हैं, इसलिए ये हमारे मित्र कीट हैं। इसके अलावा परभक्षी हुए, परजीवी हुए, इन सब का संरक्षण बहुत ही जरूरी होता है। सबसे अंत में रासायनिक नियंत्रण की मैं बात करूंगी। जो रासायनिक नियंत्रण होता है वो सबसे अंत में ही इसका हम उपयोग करते हैं, लेकिन इसमें भी अगर हम जैविक कीटनाशक का प्रयोग करें तो वो बहुत ही अच्छा माना जाता है। जैविक कीटनाशक में जैसे कि निबोली सत हो गया 5%, या फिर नीम अर्क हो गया, इस सब का प्रयोग बहुत ही जरूरी होता है और ये बहुत ही अच्छा भी माना जाता है। इसके अलावा बीटी की जो कर्स्त की प्रजाति होती है वो 1 किलोग्राम 500 से 600 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर छिड़काव किया जा सकता है। फिर हम अगर बात करें इसके अलावा कुछ कीटनाशक की, तो इसमें सबसे पहले मैं इंडोक्सा कार्ब की बात करूंगी। इंडोक्सा कार्ब जो है 14.5% SC 0.5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में ये घोल कर दिया जा सकता है, या फिर स्पाइनोसैड होता है 45% SC, ये आपको 0.2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में ये भी आपको घोल कर छिड़काव किया जा सकता है। फिर अगर हम रस चूसक, ये भी जो मैंने बताया वो बताया छेदक के लिए, फिर अगर रस चूसक की बात करें तो उसमें ब्यूप्रोफेजिन एक नया है, वो बहुत ही अच्छा काम करता है। ब्यूप्रोफेजिन 25% EC 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में, या फिर एसिटामिप्रिड है। एसिटामिप्रिड जो है वो सफ़ेद मक्खी के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। तो एसिटामिप्रिड 20% SP ये आपको 0.2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोलकर इनका छिड़काव करने से भी रस चूसक कीट जो है वो आपको कम मिलेंगे, मर जाएंगे, तो इससे आप अपने नुकसान से बच सकते हैं इस तरह से। और ये रासायनिक विधि का प्रयोग बिल्कुल अंत में ही करना चाहिए। इसके अलावा मैं 3 बातों का ध्यान रखने के लिए बोलना चाहूँगी अपने किसान बंधुओं को। पहला तो ये कि सुबह या शाम वो छिड़काव करें, और उसके बाद खेतों की नियमित रूप से निगरानी करें, और तीसरी जो सबसे अंतिम बात है वो ये है कि तीसरी बात में आप सबसे अंत में आप जितने भी रासायनिक मैंने आपको विधि बताई है उनका प्रयोग करें, मतलब कीटनाशी सबसे अंत में, इसके अलावा जो भी विधि है वो आपको पहले करनी चाहिए।
5: तो किसान भाई बहन, उम्मीद है कि मैम के द्वारा बताए गए तरीकों को अपनाकर आप जायद सब्जियों के फसलों को सुरक्षित रख सकते हैं और अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं। मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
6: बहुत बहुत धन्यवाद उमा जी।
5: अभी के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, लेकिन जाने से पहले कुछ खास बात की, अपना और अपनी फसलों का रखे विशेष ख्याल और अपनी मिट्टी से करे ढेर सारा प्यार। नमस्कार।
7: उन्नत कृषि

0: है।
1: क्या आप तैयार हैं आम के अद्भुत संसार से रूबरू होने के लिए? बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर लेकर आ रहा है राष्ट्रीय आम समागम 2026, जिसका आयोजन 27 से 28 जून तक किया जाएगा। आइए और देखिए देश भर की सैकड़ों आम किस्मों की आकर्षक प्रदर्शनी, जहां स्वाद, सुगंध और रंगों का अनूठा संगम आपका स्वागत करेगा। इस विशेष आयोजन की थीम है स्वाद, संस्कृति और समृद्धि का संगम। आम समागम में किसानों, वैज्ञानिकों, उद्यमियों और आम प्रेमियों को एक ही मंच पर आने का अवसर मिलेगा। कार्यक्रम के दौरान आयोजित होगी राष्ट्रीय कार्यशाला, जिसका विषय है आधुनिक तकनीक से गुणवत्ता युक्त उत्पादन, भंडारण एवं प्रसंस्करण। देश के प्रतिष्ठित विशेषज्ञ आम उत्पादन, मूल्य संवर्धन और प्रसंस्करण की आधुनिक तकनीकों पर अपने अनुभव साझा करेंगे। इस अवसर पर आयोजित होगा किसान वैज्ञानिक सम्मान समारोह, जिसमें बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश के उत्कृष्ट आम उत्पादकों को बेस्ट मैंगो फार्मर अवार्ड प्रदान किया जाएगा। महिला आम उत्पादकों एवं मूल्य संवर्धन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिला उद्यमियों के लिए भी विशेष सम्मान और नगद पुरस्कार की व्यवस्था की गई है। और अब आपके लिए एक सुनहरा अवसर, यदि आपके बाग में उत्कृष्ट गुणवत्ता के आम हैं या आपके पास किसी विशेष किस्म के आम उपलब्ध हैं, तो आप भी आम प्रदर्शनी में अपनी आम की किस्मों को प्रदर्शित कर सकते हैं। आपकी प्रविष्टियों का मूल्यांकन विशेषज्ञों द्वारा किया जाएगा और चयनित प्रतिभागियों को आकर्षक पुरस्कार एवं नगद राशि से सम्मानित किया जाएगा। और हाँ, आम प्रेमियों के लिए होगा एक विशेष आकर्षण, मैंगो ईटिंग प्रतियोगिता। इस रोमांचक प्रतियोगिता के विजेताओं को भी आकर्षक नगद पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। तो देर किस बात की, अपने श्रेष्ठ आमों के साथ आइए, प्रदर्शनी में भाग लीजिए, विशेषज्ञों से सीखिए, नई तकनीकों को जानिए और आकर्षक पुरस्कार जीतने का अवसर पाइए। 27 से 28 जून राष्ट्रीय आम समागम 2026 बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है।

0: पैर पिट गया। बिल देना। इसको आउटसाइड द ऑफ टाइम डालना चाहिए था, इसकी यही प्रॉब्लम है।
1: कब से?
0: जब से क्रिकेट खेल रहा है तभी से।
1: अरे भाई साहब, क्रिकेट की नहीं हो, आपकी खांसी की बात कर रहे हैं बुड़बक।
0: खांसी?
1: हाँ।
0: इसको तो एक आध महीना हो गया।
1: खुद की खांसी को एक आध महीने हो गए हैं और यहाँ क्रिकेट पर अपनी ही गुगली फेंक रहे हैं आप। चलिए चलिए चलिए।
0: डॉक्टर, खांसी तो है।
1: देखिए भाई साहब, इसे हल्का मत लीजिए। 2 हफ्ते से ज्यादा अगर आपको खांसी रहे तो टीबी हो सकता है।
0: टीबी?
1: हाँ। तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए।
0: ठीक है।
1: टीबी किसी को भी हो सकता है, अगर हो गया तो बिना भूले पूरा कोर्स करिए और फिट हो जाइए। नहीं किया तो इसका इलाज बहुत मुश्किल है, समझ गए भाई साहब आप? आइए। 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए। टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
2: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
3: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
2: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
3: आपकी सेहत की बातें,
2: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
3: युवाओं के रोजगार करियर की बातें,
2: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
3: वो कहाँ पर?
2: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
3: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
2: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 20 से 24 जून के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी आने और साथ ही हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 25 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 60 से 70 प्रतिशत और दोपहर में 25 से 30 प्रतिशत रहने की संभावना है। साथ ही अनुमान है कि 20 से 24 जून के दौरान 8 से 9 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दक्षिण पूर्वी हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए, जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दें, धान की मध्यम अवधि वाली किस्में जैसे संतोष, सीता, सरोज, सहभागी धान और राजेंद्र श्वेता और सुगंधित किस्में जैसे राजेंद्र धान की मध्यम अवधि वाली किस्में हैं संतोष, सीता, सरोज, सहभागी धान और राजेंद्र श्वेता और सुगंधित किस्में जैसे राजेंद्र सुवासिनी, राजेंद्र कस्तूरी और राजेंद्र भगवती। किसान भाई बहनों, इन किस्मों की नर्सरी में बुआई जरूर कर लें। जो मक्का की खेती करना चाहते हैं उन्हें बता दें, खरीफ मक्का की बुआई आसमान साफ रहने पर ही करें और खेत की जुताई में 10 से 15 टन गोबर की सड़ी खाद प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें। ध्यान रखें कि बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 30 किलोग्राम नेत्रजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटाश जरूर डालना चाहिए। और आपको बता दें, अनुशंसित मक्का की किस्में हैं सुआन, देवकी, शक्तिमान 1, शक्तिमान 2, राजेंद्र संकर मक्का 3, गंगा 11। जिनके खेत में मूंग लगे हैं उन्हें बता दें, मूंग की तैयार फलियों की तुड़ाई कर ले और हरी खाद के लिए उसके पौधों को मिट्टी पलटने वाले हल से जमीन में गाड़ दे। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दें, भिंडी, कद्दू, खीरा, नेनुआ और लौकी जैसी फसलों की निराई गुड़ाई जरूर करें। साथ ही खर पतवार नियंत्रित करना भी बहुत जरूरी होता है। पत्ती खाने वाले सुंडियों और फल छेदक कीटों की नियमित निगरानी करें और अगर आपकी सब्जियों में पत्ती खाने वाली सुंडियों या फल छेदक कीटों का प्रकोप दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में डाई मिथो 8 30cc की 1 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। जो खरीफ सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दें, खरीफ प्याज की खेती के लिए नर्सरी यानी कि बीज स्थली की तैयारी तभी करें जब आसमान साफ हो। स्वस्थ पौधों के लिए नर्सरी में गोबर की खाद जरूर डालें और खरीफ प्याज के लिए NO53, एग्रीफाउंड डार्क रेड, अर्का कल्याण, सीमा सुपर, ये किस्में अनुशंसित है। प्याज के बीज की व्यवस्था प्रमाणित स्रोत से ही करें और ध्यान दें कि बीज गिराने के पहले बीजोपचार करना बहुत जरूरी होता है। बीजोपचार करने से आपके पौधे स्वस्थ होते हैं और फसल अच्छी होती है। बीज की दर 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, लीची तोड़ने के बाद खासकर बरसात शुरू होने से पहले बगीचे की जुताई जरूर कर ले और खाद उर्वरकों का प्रयोग तभी करें जब आसमान साफ हो। प्रति प्रौढ़ पेड़ 60 से 80 किलोग्राम सड़ी गोबर की खाद, 2.5 किलोग्राम यूरिया, 1.5 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट और 1 किलो 300 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश और 50 ग्राम सुहागा मिलाकर वृक्ष के चारों ओर समान रूप से मिट्टी में मिला दे। पशुपालक भाई बहन ध्यान दें, गला घोटू और लंगड़ी रोगों से बचाव के लिए टीकाकरण कराने की जरूरत होती है, इसलिए सभी दुधारू पशुओं में टीकाकरण जरूर कराएं और नए गेहूं के भूसा को खिलाने से पहले ध्यान दें कि करीब 2 घंटा नए गेहूं के भूसा को पानी में फुला लें और 50 ग्राम खनिज मिश्रण और 50 ग्राम नमक चारा दाना मिलाकर दें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर आप सबका स्वागत करता है स्वाद, संस्कृति और समृद्धि के संगम राष्ट्रीय आम समागम सह कार्यशाला में। तारीख याद रखें, 27 से 28 जून 2026।

0: क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।
1: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
0: आप सभी श्रोताओं को आपके साथी अजीत का नमस्कार, जय जोहार, जय हिंद। श्रोताओं, आइए सबसे पहले सुनते हैं आज का सुविचार जो हमें भेजा है जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जयदास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतीम बाई मानिकपुरी जी ने। लिखते हैं, शांत रहना कमजोरी नहीं, ये समझदारी की निशानी है, क्योंकि हर जवाब शब्दों से ही नहीं लेकिन व्यवहार से भी दिया जाता है। इतने सुंदर विचार के लिए आप सबको उमंग कार्यक्रम की ओर से हमारा आभार। और आइए सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है मगरपारा बिलासपुर से वसीम जाटव, अकरम जाटव, आफताब जाटव, महताब जाटव, मिराज जाटव और अल्ताफ जाटव। भटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, पंकज, आयुषी और मीहू। जेल रोड कानपुर से सरफुद्दीन फातिमा थापा, वसीम अकरम बेलदार और डब्ल्यू सोनम कुटरिया। भदोही उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार विद्यार्थी और उनकी छोटी बहन कोमल। तो श्रोताओं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। जैसा कि हम हर बार कहते हैं, इस बार भी कहेंगे कि जुड़े रहिए आपके प्रिय कार्यक्रम उमंग से। और आइए अब चलते हैं आज की श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी में। श्रोताओं, जहां तक गुफाओं की बात है, लगभग सभी अजंता और एलोरा की गुफाओं से परिचित हैं, लेकिन उमंग कार्यक्रम में हमारा उद्देश्य है उन जानकारियों को उपलब्ध कराना जो लोक संज्ञान में कम है लेकिन पुरातत्व और इतिहास की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। जी तो श्रोताओं, कल हमने बात की थी भीम बैठका की गुफाओं के बारे में। आज हम बात करेंगे कुटुम्बसर की गुफाओं के बारे में। कुटुम्बसर की गुफाओं को भारत की सबसे लंबी प्राकृतिक गुफाओं में गिना जाता है। तो आइए जानते हैं कि ये गुफाएं कहाँ स्थित हैं। श्रोताओं, ये गुफाएं स्थित हैं छत्तीसगढ़ राज्य के कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में, जगदलपुर से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर। ये गुफाएं भूमि से लगभग 35 से 40 मीटर नीचे हैं। ये अत्यंत प्राचीन गुफाएं हैं, लेकिन श्रोताओं, जब भी हम ऐसे स्थानों की बात करते हैं तो ये जिज्ञासा जरूर मन में आती है कि इनकी खोज कैसे हुई। तो आपको बता दें कि कुटुम्बसर गुफा का जनजातीय नाम गोपनसर था। सन 1951 की बात है, कुछ स्थानीय चरवाहे एक साही का पीछा कर रहे थे। पीछा करते करते वे एक ऐसी जगह पर पहुंचे जहां ढेर सारी झाड़ियां थीं, पत्थर भी थे। जब उन्होंने झाड़ियों को थोड़ा हटाया तो क्या देखते हैं कि वहां एक बहुत बड़ी गुफा का प्रवेश द्वार है। जी, चरवाहे उस गुफा की बनावट देखकर हैरान रह गए, क्योंकि वहां चट्टानों के आकार विचित्र थे। वे अद्भुत आकार के थे, जैसे किसी ने उन्हें तराश कर बनाया हो। तो आइए जानते हैं कि उन पत्थरों को तराशने वाला कौन था। श्रोताओं, यही तो खास और बड़ी अनोखी बात है कुटुम्बसर की गुफाओं के बारे में। जब विशेषज्ञ यहाँ पर आए तो उन्होंने पता लगाया कि चट्टानों को तराशने वाली प्रकृति ही थी। यहाँ पानी हमेशा टपकता रहता है। पानी के लाखों वर्षों से टपकते रहने के कारण इन चट्टानों को आकार मिला। यहाँ की चट्टाने चूना पत्थर से बनी है। श्रोताओं, इन गुफाओं में कुछ आकृतियां तो ऐसी हैं जो किसी पशु, मुख्य रूप से हाथी, बाघ, विशाल मानव आकृति और शिवलिंग की तरह भी दिखाई देती हैं। जरा सोचिए श्रोताओं, कैसे इन आकृतियों को प्रकृति ने लाखों वर्षों से पानी की बूंदे टपकाकर बनाया। अद्भुत है ना। जी, किसी ने लिखा है कि यदि प्रकृति को शिल्पकार के रूप में देखना है तो कुटुम्बसर की गुफाओं में जरूर जाइए। इन गुफाओं के ऊपर भूमि में कई भूमिगत जल के झरने हैं जहां से निरंतर पानी की बूंदे गिरती रहती है। वैज्ञानिकों ने इन गुफाओं में अनेक दुर्लभ जीवों के जीवाश्म भी ढूंढे हैं। एक बात और आपको बता दें श्रोताओं, कि इन गुफाओं के अंदर हमेशा घुप अंधेरा रहता है। वहां जाने के लिए पर्यटक गाइड्स और शक्तिशाली बैटरियों वाले लैंप्स लेकर ही जाते हैं। अंदर पानी बहता रहता है, लेकिन एक बड़ी रोचक बात है इन गुफाओं की। आपको बताएं क्या है वो? वो ये कि यहाँ के पानी में जो मछलियां पाई जाती हैं वे अंधी होती हैं, देख नहीं पाती। यहाँ के अन्य जलज प्राणी भी देख नहीं सकते। लेकिन एक सवाल है श्रोताओं कि भला ऐसा क्यों है, ना ये बड़ी अजीब बात। जी हाँ श्रोताओं, वैज्ञानिकों के अनुसार यहाँ हमेशा अंधकार रहता है। इससे संभवतः मछलियों और जलज जीवों की आंखें तो हैं, लेकिन उनमें देखने की क्षमता का विकास नहीं हुआ, या फिर धीरे धीरे देखने की क्षमता समाप्त हो गई। एक सिद्धांत ये भी है कि पीढ़ी दर पीढ़ी अंधकार में रहने के कारण उनकी आंखें पूर्ण विकसित नहीं हुई, लेकिन दूसरी इंद्रियां अधिक विकसित हो गईं। मछलियाँ पानी में कंपन, स्पर्श और रासायनिक संकेतों जैसे गंध इत्यादि के माध्यम से रास्ता और भोजन तुरंत पहचान लेती हैं। इसलिए श्रोताओं, कुटुंब सर की मछलियों को दुनिया भर में ब्लाइंड केव फिशेस के नाम से भी जाना जाता है। और हाँ, इन गुफाओं की एक और बड़ी खास बात है, यहाँ के कुछ भागों में यदि फुसफुसा करके भी कुछ कहा जाए तो बड़ी दूर तक ये आवाज सुनाई पड़ती है। श्रोताओं, यहाँ पर कार्यकर्ता इको या गूंज का सिद्धांत। श्रोताओं, ये कहा जा सकता है कि ये गुफाएं वैज्ञानिकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ के जंतु विकासवाद और भूविज्ञान के अध्ययन में महत्वपूर्ण है। तो श्रोताओं, ये थी जानकारी भारत की एक और रहस्यपूर्ण और अनोखी गुफा कुटुंब सर के बारे में। अब सुनिए आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से। हमारा आज का प्रश्न है, कुटुंब सर की गुफाओं में फुसफुसाकर बोलने पर भी आवाजें साफ साफ क्यों सुनाई देती हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, कुटुंब सर की गुफाओं में फुसफुसाकर बोलने पर भी आवाजें साफ साफ क्यों सुनाई देती हैं? आप हमें हमारे IVRS नंबर 8804405559 पर या ईमेल पर यानी audio@ciet.nic.in पर इस प्रश्न का उत्तर भेज सकते हैं। और हाँ, एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं। और आइए अब सुनते हैं आज के हमारे ज्ञान और मनोरंजन से भरपूर शैक्षिक कार्यक्रम। तो सबसे पहले सुनते हैं कार्यक्रम लीव्स ऑन द ट्री आर फॉलिंग। श्रोताओं, अंग्रेजी का ये सुंदर गीत पतझड़ और वसंत के मौसमों के बीच की प्रकृति की सुंदरता का वर्णन करता है और विशेषकर संदेश देता है कि हमें प्रकृति का अवलोकन करके उनके सौंदर्य की प्रशंसा करनी चाहिए। ऐसा करके हम प्रकृति से बहुत कुछ सीख सकते हैं। द लीव्स ऑन द ट्रीज।
2: Children, have you ever seen the leaves growing in the tree? The new tender leaves spurting out from the branches? Like the flowers blossoming? Yes, we want to see them as the flowers blossom and leaves grow. But we never see them growing closely. Is a song which makes you feel that you notice the growing of leaves and blossoming of flowers. Come on, let's sing the song to know and notice. But before we sing it, let's recite the song. Repeat after me, all right?
3: Yes!
2: The leaves on the trees are turning green. Turning green, turning green.
3: The leaves on the trees are turning green. Turning green, turning green.
2: The leaves on the trees are turning green. Grow, grow, grow.
3: The leaves on the trees are turning green. Grow, grow, grow.
2: Very nice. The flowers on the trees are beautiful, beautiful, beautiful.
3: The flowers on the trees are beautiful, beautiful, beautiful.
2: The flowers on the trees are beautiful, busy, busy bees.
3: The flowers on the trees are beautiful, busy, busy bees.
2: The leaves on the trees are falling down, falling down, falling down.
3: The leaves on the trees are falling down, falling down, falling down.
2: The leaves on the trees are falling down, yellow, red and brown.
3: The leaves on the trees are falling down, yellow, red and brown.
2: Yes, and now the leaves on the trees have fallen down, fallen down, fallen down.

0: इस खूबसूरत गीत के बाद आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। हमारा अगला कार्यक्रम है फादर डॉक्टर कामिल बुल्के। ये कार्यक्रम हिंदी साहित्य के प्रकांड विद्वान डॉक्टर कामिल बुल्के के जीवन और उनके द्वारा हिंदी साहित्य को दिए गए योगदान के बारे में, विशेषकर तुलसी साहित्य में उनके द्वारा लिखे गए शोध की विस्तार से जानकारी देता है।
1: यूरोप के पश्चिमी भाग में एक छोटा लेकिन खूबसूरत देश है बेल्जियम। बेल्जियम में एक प्रांत है फ्लैंडर्स। इस प्रांत में एक छोटा सा शांत और सुंदर शहर है रम्स कपेला। 1 सितंबर 1909 को अडोल्फ और मारिया बुल्के के घर में एक बालक का जन्म हुआ। माता पिता ने बड़े प्रेम से उसका नाम रखा कामिल बुल्के।
2: कामिल का अर्थ होता है पूजा की वेदी और बुल्के का अर्थ है सुगंधित पुष्प। और सच में जैसा कि नाम था, उन्होंने अपने नाम को 100% चरितार्थ किया। बचपन से ही उनकी गहरी रुचि अध्यात्म और साहित्य में दिखाई देने लगी थी। माता पिता अक्सर उनके बारे में बातचीत किया करते।
3: मारिया, क्या तुम्हें नहीं लगता कि कामिल का अध्यात्म की ओर कुछ ज्यादा ही झुकाव है?
2: मुझे तो अब ये लगने लगा है कि यदि ऐसा ही रहा तो एक दिन वो चर्च में सन्यासी बन जाएगा।
3: मुझे भी ऐसा ही लगता है।
2: स्कूली शिक्षा के बाद उन्होंने ल्यूवेन विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरिंग में बीएससी डिग्री प्राप्त की और 1930 में स्पष्ट दिव्य अनुभूति प्राप्त होने पर शिक्षक और

0: बेल्जियम में ही उन्होंने तुलसीदास जी की कई चौपाइयों का जर्मन अनुवाद पढ़ा था।
1: उनमें से एक चौपाई से वो बहुत प्रभावित हुए। चौपाई थी, धन्य जन्मु जग तीतल तासु, पितहि प्रमोद चरित सुनि जासु।
0: अर्थात उस बेटे का जीवन धन्य है जिसका यश और कीर्ति सुनकर पिता आनंदित होता है। इन पंक्तियों से वे इतने प्रभावित हुए कि कवि तुलसीदास जी के अनन्य भक्त बन गए। उन्होंने लिखा था,
2: विश्व साहित्य में माता और पुत्र के संबंधों की बहुत सारी चर्चा मिल जाएगी, लेकिन पिता पुत्र के संबंधों की ऐसी व्याख्या और ऐसा ऊंचा आदर्श मुझे सिर्फ भक्त कवि तुलसीदास जी की रामायण में ही मिला।
0: भारत आने पर उन्होंने जो देखा उसने उनके संपूर्ण जीवन के चिंतन और दर्शन को एक नया आयाम दे दिया। उन्होंने अपने भारत आगमन के समय को याद करते हुए अपनी एक पुस्तक एक ईसाई की आस्था राम कथा और हिंदी में लिखा है,
2: 1935 में मैं जब भारत पहुंचा मुझे ये देखकर आश्चर्य बड़ा आश्चर्य हुआ कि रास्ते में सभी संकेत पट्टों पर सूचनाएं और स्थानों के नाम अंग्रेजी में थे। मैंने ये जाना कि अनेक शिक्षित लोग अपनी सांस्कृतिक परंपराओं से अनजान थे और इंग्लिश में बोलना गर्व की बात समझते थे। मैंने विचार किया कि मैं हिंदी भाषा में सिद्धता को प्राप्त करने का पूरा प्रयास करूंगा। हिंदी स्थानीय और जनजातीय भाषाओं में जो ज्ञान प्रणाली और सीखने की सामग्री अंतर्निहित है उनके संरक्षण और पुनरुत्थान से ही हमारा विकास संभव है।
0: से वे दार्जिलिंग गए और अल्प प्रवास के बाद अंततः गुमला आ गए जो आज के झारखंड राज्य में है। उन्होंने गुमला के सेंट इग्नेसियस विद्यालय में 3 साल तक गणित और भौतिकी पढ़ाया और हिंदी की कक्षा में अपने ही विद्यार्थियों को सहपाठी बनाकर हिंदी सीखने लगे। गणित पढ़ाने के बाद वे हिंदी की कक्षा में सबसे पीछे बैठ जाते थे और पूरी तन्मयता से हिंदी सीखते थे।
1: हिंदी के मूल रूप को समझने के लिए धीरे धीरे उन्होंने ब्रजभाषा और अवधी भी सीखी।
0: रांची आकर वे कुछ समय के लिए सन 1938 में झारखंड के ही एक शहर हजारीबाग गए और सेंट कोलंबस कॉलेज में पंडित बद्रीदत्त शास्त्री के निर्देशन में संस्कृत और स्वामी तुलसीदास की 2 प्रमुख रचनाओं रामचरितमानस और विनय पत्रिका का गहन अध्ययन करने लगे।
1: फिर उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्वतंत्र परीक्षार्थी के रूप में स्नातक की उपाधि प्राप्त की और उच्च अध्ययन के अभिप्राय से वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय पहुंचे और वहां के हिंदी विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर धीरेंद्र वर्मा से मिले।
3: आइए आइए फादर बुलके, आपका स्वागत है।
2: जी डॉक्टर धीरेंद्र, आपके स्वागत से मैं अनुग्रहित और कृतार्थ हुआ। मेरी हार्दिक अभिलाषा है कि मैं हिंदी में अपना स्नातकोत्तर अध्ययन इलाहाबाद विश्वविद्यालय से करूं।
3: ठीक है, लेकिन उम्मीदवार की कुछ परीक्षा तो लेनी ही होगी।
2: जी मैं प्रस्तुत हूं।
3: तो फादर, मैं चाहता हूं कि आप तुलसीदास जी की विनय पत्रिका के 2 पदों की इसी समय सब प्रसंग व्याख्या करें। ये लीजिए।
2: जी अवश्य।
0: फादर कामिल बुलके ने कुछ ही देर में उन पदों की लिखित व्याख्या कर दी। इस यूरोपीय श्वेत वर्णीय ईसाई पुरोहित को

0: डॉक्टर वर्मा ने प्रारंभ में नौसिखिया समझा था, लेकिन जब उन्होंने व्याख्या पढ़ी तो
1: ओह अद्भुत। तो फादर अब विलंब कैसा? आप इसी समय से विश्वविद्यालय के हिंदी संकाय में अध्ययन के लिए आमंत्रित हैं।
2: धन्यवाद डॉक्टर धीरेन्द्र, ये मेरा सौभाग्य होगा।
1: जी।
0: स्नातकोत्तर अध्ययन के बाद फादर कामिल बुल्के ने फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा की प्रेरणा से डॉक्टर माता प्रसाद के निरीक्षण में शोध कार्य किया।
3: इससे जुड़ी एक बड़ी रोचक घटना है। फादर कामिल बुल्के चाहते थे कि उनका शोध हिंदी में प्रकाशित हो, लेकिन उन दिनों सभी शोध अंग्रेजी में ही हुआ करते थे।
0: उन दिनों इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर अमरनाथ झा थे। फादर कामिल बुल्के ने इसके लिए विश्वविद्यालय के कुलपति से मिलने का समय मांगा।
2: क्या मैं अंदर आ सकता हूँ कुलपति महोदय?
4: आइए आइए फादर बुल्के। मुझे बताया गया है कि रामकथा पर आपका शोध बहुत अच्छा बन पड़ा है। आपने इसमें बहुत से नए आयाम भी जोड़े हैं।
2: जी कुलपति महोदय, मैं अपने शोध पत्र को प्रकाशित करने के बारे में ही आपसे विमर्श करने आया हूँ।
4: जी जी,
2: मैं चाहता हूँ कि मुझे अपने शोध पत्र को देवनागरी में प्रकाशित करने की अनुमति दी जाए।
4: मगर फादर, आप जानते हैं कि विश्वविद्यालय के नियमानुसार शोध पत्र सिर्फ अंग्रेजी में ही प्रकाशित किए जा सकते हैं।
2: कुलपति महोदय, जैसा कि आपको ज्ञात है, मेरा शोध का विषय ही राम कथा की उत्पत्ति और विकास है।
4: जी,
2: मैं दृढ़ता से विश्वास करता हूं राम कथा और तुलसी की आत्मा के विराट सौंदर्य के दर्शन केवल और केवल उनकी मातृभाषा में ही हो सकते हैं।
4: जी, मैं आपकी भावनाओं का सम्मान करता हूं फादर बुल्के।
2: तो मैं आपकी इस प्रतिक्रिया को एक सकारात्मक उत्तर के रूप में देखने की अपेक्षा करता हूं।
4: जी,
0: तो फिर क्या था? विश्वविद्यालय की अकादमिक परिषद की सभा बुलाई गई और लंबे विचार विमर्श के बाद नियमावली में विधिवत परिवर्तन किया गया। फादर का ये अनुरोध मान लिया गया। भारत के शोध परिदृश्य में ये एक महत्वपूर्ण घटना थी, क्योंकि इसके द्वारा देवनागरी में शोध प्रबंध लिखने का रास्ता सबके लिए साफ हो गया और आदिवासी भाषाओं में भी पीएचडी स्तर तक पढ़ाई होनी शुरू हो गई।
3: उन्होंने राम और राम कथा के बारे में अपने शोध ग्रंथ में लिखा है।
2: देखिए, राम वाल्मीकि कथा के मिथकीय पात्र नहीं है, बल्कि वे तो इतिहास पुरुष हैं, जिनकी व्याप्ति सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में है। रामायण सिर्फ धार्मिक साहित्य ही नहीं है, बल्कि जीवन जीने के तरीके का दस्तावेज है।
0: उनके शोध की विशेषता ये है कि उन्होंने रामायण से संबंधित किसी भी विषय को छोड़ा नहीं है। हिंदी के अतिरिक्त उन्होंने तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, बांग्ला, कश्मीरी, सिंहली आदि भाषाओं के साहित्य में भी उपलब्ध राम कथा की गहन छानबीन की है।
3: उन्होंने तेलुगु में रचित श्री रंगनाथ रामायण और महर्षि कम्बन द्वारा तमिल में रचित कम्ब रामायण को भी संदर्भित किया। चार भागों में विभक्त 600 पृष्ठों में छपी उनकी ये थीसिस एक प्रतिनिधि शोध ग्रंथ साबित हुई और भारत सहित पूरे विश्व में विभिन्न भाषाओं में प्रकाशित हुई। इसके बाद सारी दुनिया फादर बुल्के को जानने लगी।
0: अब जहां भी राम कथा होती, फादर कामिल बुल्के का नाम वक्ताओं की सूची में सबसे ऊपर होता। उन्होंने देश भर में राम कथा पर व्याख्यान दिए। वे कहा करते थे,
2: सबहें नचावत राम गोसाई, मोहे नचावत तुलसी गोसाई।
0: सन 1950 में उन्हें बहुत सम्मान पूर्वक भारत की नागरिकता प्रदान की गई। इसी वर्ष वे रांची के सेंट जेवियर कॉलेज के हिंदी और संस्कृत विभाग के अध्यक्ष बना दिए गए और आजीवन उसी पद पर रहे। वे हमेशा अपने विद्यार्थियों को उनकी अपनी भाषा में ही बातचीत करने हेतु प्रोत्साहित करते थे।
3: सबसे मशहूर अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश लिखने वाले फादर कामिल बुल्के ही हैं। 30 वर्षों की उनकी हिंदी साधना का जीवंत दस्तावेज उनका शब्दकोश माना जाता है।
0: उन्होंने इसमें 40,000 शब्द जोड़े और उसे प्रशासनिक, वैज्ञानिक और तकनीकी दृष्टि से अद्यतन करते रहे। फादर कामिल बुल्के बहुभाषाविद थे। वो अपनी मातृभाषा फ्लेमिश के अतिरिक्त अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, लैटिन, ग्रीक, संस्कृत और हिंदी पर भी संपूर्ण अधिकार रखते थे। इन भाषाओं के ज्ञान के कारण ही उन्हें शब्दकोश बनाने में बहुत सहायता मिली। उन्होंने लिखा था,
2: जब मैं अपने जीवन पर विचार करता हूं तो मुझे लगता है ईसा मसीह, हिंदी और तुलसीदास ये वास्तव में मेरी आध्यात्मिक साधना के 3 प्रमुख घटक हैं और मेरे लिए इन 3 तत्वों में कोई विरोध नहीं है बल्कि गहरा संबंध है। मैं ईसा मसीह का परम भक्त हूं, हिंदी मेरा अनुराग है और गोस्वामी तुलसीदास मेरी प्रेरणा।
0: कामिल बुल्के की हिंदी सेवाओं के लिए 1974 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया। जब लोग उन्हें फादर कहते तो वे किंचित संकोच से बोल उठते,
2: फादर अंग्रेजी शब्द है, यदि मुझे कामिल बाबा कहो तो सचमुच मुझे बहुत अच्छा लगेगा।
0: 17 अगस्त 1982 को दिल्ली में इस अद्भुत शोध शिल्पी, राम कथा अनुरागी, बहुभाषाविद और हिंदी भाषा के अनन्य सेवक का निधन हो गया। उनकी मृत्यु शैया पर मात्र 2 पुस्तकें थीं, बाइबल और गोस्वामी तुलसीदास जी की विनय पत्रिका। उन्हें दिल्ली में ही दफनाया गया।
3: 36 साल बाद वर्ष 2018 में पद्म भूषण फादर कामिल बुल्के का पार्थिव अवशेष दिल्ली से उनकी कर्मभूमि रांची लाया गया। उनके अवशेष को पूरे सम्मान के साथ रांची सेंट जेवियर कॉलेज में दफनाया गया।
0: महान शब्द शिल्पी और हिंदी साहित्य के इस पुरोधा फादर कामिल बुल्के बाबा को हमारा आभार सहित शत शत नमन।
5: डॉक्टर कामिल बुल्के, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने साथी अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

तैयार है आम के अद्भुत संसार से रूबरू होने के लिए। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर लेकर आ रहा है राष्ट्रीय आम समागम 2026, जिसका आयोजन 27 से 28 जून तक किया जाएगा। आइए और देखिए देश भर की सैकड़ों आम किस्मों की आकर्षक प्रदर्शनी, जहां स्वाद, सुगंध और रंगों का अनूठा संगम आपका स्वागत करेगा। इस विशेष आयोजन की थीम है स्वाद, संस्कृति और समृद्धि का संगम। आम समागम में किसानों, वैज्ञानिकों, उद्यमियों और आम प्रेमियों को एक ही मंच पर आने का अवसर मिलेगा। कार्यक्रम के दौरान आयोजित होगी राष्ट्रीय कार्यशाला, जिसका विषय है आधुनिक तकनीक से गुणवत्ता युक्त उत्पादन, भंडारण एवं प्रसंस्करण। देश के प्रतिष्ठित विशेषज्ञ आम उत्पादन, मूल्य संवर्धन और प्रसंस्करण की आधुनिक तकनीकों पर अपने अनुभव साझा करेंगे। इस अवसर पर आयोजित होगा किसान वैज्ञानिक सम्मान समारोह, जिसमें बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश के उत्कृष्ट आम उत्पादकों को बेस्ट मैंगो फार्मर अवार्ड प्रदान किया जाएगा। महिला आम उत्पादकों एवं मूल्य संवर्धन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिला उद्यमियों के लिए भी विशेष सम्मान और नगद पुरस्कार की व्यवस्था की गई है। और अब आपके लिए एक सुनहरा अवसर, यदि आपके बाग में उत्कृष्ट गुणवत्ता के आम हैं या आपके पास किसी विशेष किस्म के आम उपलब्ध हैं, आप भी आम प्रदर्शनी में अपनी आम की किस्मों को प्रदर्शित कर सकते हैं। आपकी प्रविष्टियों का मूल्यांकन विशेषज्ञों द्वारा किया जाएगा और चयनित प्रतिभागियों को आकर्षक पुरस्कार एवं नगद राशि से सम्मानित किया जाएगा। और हाँ, आम प्रेमियों के लिए होगा एक विशेष आकर्षण, मैंगो ईटिंग प्रतियोगिता। इस रोमांचक प्रतियोगिता के विजेताओं को भी आकर्षक नगद पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। तो देर किस बात की, अपने श्रेष्ठ आमों के साथ आइए, प्रदर्शनी में भाग लीजिए, विशेषज्ञों से सीखिए, नई तकनीकों को जानिए और आकर्षक पुरस्कार जीतने का अवसर पाइए। 27 से 28 जून राष्ट्रीय आम समागम 2026 बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है।

0: उड़ता देख साथ मुझे आई एक भूली कहानी याद।
1: कौन सी कहानी टीकी?
0: उस जालिम शिकारी की जो आया था करने पंछियों का शिकार।
2: हमें भी वो कहानी बताओ ना।
0: एक था शिकारी जिसने चिड़ियों का शिकार करने को चुपके से बिछाया जाल, लेकिन जाल को सब चिड़िया फुर्र से ले उड़ी साथ।
2: माथा पीटता रह गया शिकारी, एक भी चिड़िया लगी ना हाथ।
0: तो दोस्तों, बीमारी का राक्षस भी बिछाए बैठा है एक जाल, अगर बच्चों का टीकाकरण छूटा तो कर देगा सबको बीमारी से बेहाल।
1: तो इस राक्षस से कैसे बचना है?
0: तो 5 साल या उनसे छोटे बच्चों के मम्मी पापा सभी सुनो एक जरूरी बात, अगर सभी बच्चों का होगा टीकाकरण एक साथ तो बीमारी के राक्षस का भी हो जाएगा खात्मा उसके साथ।
2: टीका सुरक्षित है, टीका जाने व बीमारियों से बचाता है।
3: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
4: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 ग्रीन FM। उन्नत कृषि।
5: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। तो आज हम भिंडी की खेती के बारे में बात करने वाले हैं। बहुत सी जानकारी हमें मिलने वाली है डॉक्टर शिरीन अख्तर से, जो है सब्जी विज्ञान विभाग से। आप हैं एसोसिएट प्रोफेसर कम सीनियर साइंटिस्ट। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
6: धन्यवाद उमा। भिंडी एक अत्यंत लोकप्रिय सब्जी है। भिंडी जो है टमाटर, बैंगन, मिर्च आदि के जैसे वर्ष भर हो सकती है। वर्ष में हम लोग इसको 2 बार तो आसानी से उगा सकते हैं, कभी कभार 3 बार भी उगा सकते हैं। और भिंडी हम लोग देखते हैं ये मुख्य रूप से प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवण, इसका भरपूर मात्रा में ये सब पाया जाता है। साथ साथ में जो है कैल्शियम, फॉस्फोरस, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, ये भी बहुत सारा पाया जाता है। और हमारा देश भारतवर्ष जो है भिंडी के जो है इसका फलन के लिए बहुत इस हमारा जो जलवायु है इसके अनुकूल है, और इसीलिए जो है हमारा देश अभी पूरे विश्व में जो है भिंडी का सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र है। और भिंडी जो है पूरे साल में 2 बार से लेके 3 बार भी हम उगा सकते हैं, गर्मियों में भी उगा सकते हैं, तथा जो मुख्य फसल भिंडी का है वो खरीफ मौसम का है, यानी कि बरसाती जो फसल है वही भिंडी का मुख्य फसल है। और इसमें जो है भिंडी को उगाने के लिए हमारे देश में बहुत सारे उन्नत किस्म हैं, जैसे IIVR वाराणसी से डेवलप किया गया जो किस्म है काशी प्रगति, काशी विभूति, काशी क्रांति, इसके साथ साथ में काशी सहिष्णु, काशी वर्धन, काशी सातधारी, काशी पराक्रम, काशी उत्कर्ष, काशी चमन, काशी लीला, ये जो है ये सारे जो है हरे रंग में, जो हमारा भिंडी है वो यूजुअली हम लोग देखते हैं कि हरे रंग में मिलता है, तो ये सारे किस्म हरे रंग की है। साथ साथ में एक नई किस्म काशी लालिमा भी जो है वो लाल रंग में उन्नत किस्म तैयार किया गया है IIVR द्वारा। ये इसके अलावा भी जो है काफ़ी सारे संकर किस्म हैं, जो कि काशी वैरव है, काशी सृष्टि, शीतला ज्योति, शीतला उपहार, सोनाक्षी, शक्ति, ये सारे महत्वपूर्ण संकर किस्म हैं।
5: मैम, बुआई से पहले खेत की तैयारी कैसे करें?
6: खेत की तैयारी बहुत ही महत्वपूर्ण है किसी भी सब्जी के फलन के लिए। तो सर्वप्रथम भिंडी के लिए खेत की प्रारंभिक जुताई जो है मिट्टी पलटने वाले हल से करते हैं, और उसके बाद में 2 से 3 जुताई कल्टीवेटर से कर लेते हैं, और दूसरी जुताई जिस समय किया जाता है उस समय पर जो है 150 से 200 क्विंटल अच्छे से सड़े हुए गोबर की खाद या फिर कंपोस्ट जो है खेत में अच्छे से मिलाया जाता है, और अंतिम जुताई के बाद में जो है पाटा चलाकर खेत को अच्छे से समतल बनाया जाता है।
5: बुआई का तरीका क्या है और बीज की मात्रा क्या होनी चाहिए?
6: जो गर्मा भिंडी है जिसको कि हम लोग फरवरी के महीने में सामान्यतः लगाते हैं, उसके लिए बीज का दर लगभग 12 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के लिए ज़रूरी होता है। और अभी जो बरसाती मौसम के जो भिंडी है, जो खरीफ भिंडी अभी लगने वाली है, उसके लिए जो है 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर आवश्यक होता है। और यहीं पर अगर भिंडी का संकर किस्म हम लोग लगाते हैं तो लगभग 3 से 4 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के बीज से ही वो काफ़ी होता है एक हेक्टेयर लगाने के लिए। और साथ साथ में जो है खरीफ जो फसल है जो अभी हम लोग लगाने वाले हैं, तो ये मई के लास्ट जो है, मई महीने के अंत से लेके जुलाई महीना भर हम लगा सकते हैं। और जो गर्मा भिंडी है उस भिंडी को जो है हम लोग लगभग फरवरी महीना भर लगाते हैं। और जो हम लोग बीज जब लगाएंगे तो बीज से लगाने के पहले जो है बीज को उपचार कर लेना चाहिए और 2 से 3 ग्राम का कैप्टान या फिर 1 ग्राम बविस्टिन दवा जो है प्रति किलोग्राम बीज के दर से हम लोग अगर इसका उपचार कर लेते हैं तो वो अच्छा रहता है। साथ साथ में जो भिंडी जो हमारा फसल है ये सीधी बुवाई करते हैं हम खेत में, तो बुवाई के पहले बीज को 24 घंटा के लिए हम पानी में भिगो कर रखते हैं और बीज जो है फूल जाते हैं, तो उस फूले हुए बीज को हम खेतों में लगाते हैं। खेतों में लगाने से पहले भी हमको देखना पड़ेगा कि खेत में हल्की हम सिंचाई देके जब नमी रहेगा उसी खेत में हम लोग भिंडी को लगाते हैं, तो इसको कतारों में लगाते हैं। जो खरीफ की भिंडी फसल है इसको कतार से कतार के बीच में 60 सेंटीमीटर की दूरी बना के हम लोग कतार बनाते हैं और कतारों में जो है 45 सेंटीमीटर पौध से पौध की दूरी रखते हैं और वैसे करके भिंडी लगाते हैं। और अगर यही गर्मा भिंडी का फसल होता है तो उस समय पे हम लोग लगभग 45 सेंटीमीटर कतार से कतार की दूरी रखते हैं और भिंडी के जो दोनों पौधा है उस पौध के बीच का दूरी उस समय पे गर्मा के समय पे 30 सेंटीमीटर रखते हैं। खास करके गर्मा के समय पे हम देखते हैं अंकुरण थोड़ा सा कम होता है, इसीलिए एक स्थान पर जो है 2 से 3 बीज की बुवाई करते हैं। परंतु संकर किस्मों का बीज क्योंकि महंगा होता है इसीलिए एक स्थान पे एक ही बीज की बुवाई किया जाता है।
5: मैम, खाद और उर्वरक की क्या मात्रा होनी चाहिए?
6: भिंडी के फसल के लिए खाद और उर्वरक की मात्रा जो है अच्छे से मिट्टी जांच करने के उपरांत ही करना चाहिए। सामान्यतः जो हम देखते हैं अच्छी फसल लेने के लिए 150 से 200 क्विंटल सड़े हुए गोबर की खाद या फिर कंपोस्ट या फिर 60 से 80 क्विंटल वर्मी कंपोस्ट प्रति हेक्टेयर में हम लोग उसको उपयोग करते हैं। साथ साथ में 100 से 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 से 80 किलोग्राम फॉस्फेट एवं 80 से 100 किलोग्राम पोटाश की आवश्यकता होती है। तो ये जो नाइट्रोजन है इसकी आधी मात्रा तथा फॉस्फेट एवं पोटाश की पूरी मात्रा जो है अंतिम जुताई के समय पे खेत पे मिला देना चाहिए। और जो नाइट्रोजन है उसका जो आधा शेष रहता है वो पौध जमने के बाद में 25 से 30 दिन पे और दूसरी बार जो है बाकी आधा शेष जो है 50 से 55 दिनों के बाद में पौध में जड़ के पास में टॉप ड्रेसिंग के तहत से हम लोग उसको डालते हैं। इसके अलावा में जो है भिंडी में सूक्ष्म पोषक तत्व का भी महत्व है और इसमें जो है कैल्शियम और बोरोन का अगर हम लोग पर्णीय छिड़काव करते हैं तो इससे उपज का क्षमता बढ़ता है। और पादप वृद्धि नियामक का भी हम लोग इसमें प्रयोग करते हैं और इसमें जो है जिबरेलिक एसिड और ट्राई कैंटनॉल का हम लोग प्रयोग करते हैं, इससे जो है अधिक उपज प्राप्त हो सकता है। और खास करके ट्राई कैंटनॉल का उपयोग गर्मा भिंडी में अगर हम लोग करते हैं तो इसमें उपज काफ़ी बढ़ता है।
5: मैम, निकाई गुड़ाई और सिंचाई का क्या ध्यान रखना चाहिए?
6: सामान्यतः जो है हम लोग भिंडी को जब लगाते हैं तो थोड़ा बहुत नमी जब रहेगा खेत में, एक हल्का सिंचाई देके जब जिस खेत में नमी रहेगा उसी में हम लोग भिंडी को लगाते हैं, बुआई करेंगे। और उसके बाद में जो है भिंडी का जो सिंचाई है वो लगभग हम लोगों को अगर बरसाती मौसम है तो देखना पड़ेगा कि बारिश हो रही है कि नहीं हो रही है, उसके हिसाब से पानी देना पड़ेगा। लगभग 10 से 12 दिन में एक बार पानी देना चाहिए, लेकिन बारिश को देखते हुए। और अगर गर्मा भिंडी है तो उसमें जो है हफ्ते में एक बार तो पानी देना बहुत आवश्यक हो जाता है। और सामान्यतः हम देखते हैं सिंचाई करने के 3 से चार दिनों बाद में जब नमी अच्छा रहता है उस समय पे निराई गुड़ाई करने से सारा खरपतवार नष्ट हो जाती है। और शुरुआती फेज में जैसे जो फसल जब 40 से 45 दिन तक रहता है उस समय तक अगर हम लोग खरपतवार से अच्छे से फसल को बचा लेते हैं तब जो है उपज इसमें अच्छा मिलता है।
5: मैम अब बात करते हैं फल की तुड़ाई की, तो तुड़ाई कैसे करनी चाहिए और उपज कितनी होती है?
6: जब भिंडी का फल लगभग 6 से 7 सेंटीमीटर लंबे हो जाते हैं और फल जो है कोमल रहता है और हल्के हरे रंग से या फिर गहरे हरे रंग जैसे उसका कलर जो रंग है वैरायटी वाइज जैसे रंग है उस रंग का होता है उस समय पे फल की तुड़ाई किया जाता है। और ज़्यादा दिन अगर हम फसल को खेत में छोड़ देते हैं तो उसमें फाइबर ज़्यादा हो जाता है तो उसको खाने लायक नहीं रहता है। और ऐसे देखा जाता है जब फूल खिलता है तो उसके 3 से 4 दिन के भीतर ही भिंडी तोड़ने लायक हो जाता है। और जब फसल में तुड़ाई शुरू होता है एक बार तो हर दूसरे से तीसरे दिन में भिंडी तोड़ने के लिए रेडी हो जाता है। तो हम लोग जो है हर दूसरे से तीसरे दिन हम भिंडी तोड़ते रहेंगे ताकि इसमें जो है ज़्यादा जो है इसमें फाइबर ना डेवलप करे और खाने लायक योग्य रहे और बहुत अच्छा सा रहे। और अगर हम लोग उचित देखभाल करते हैं और अच्छा किस्म का उपयोग करते हैं सही से खाद और उर्वरक का प्रयोग करते हैं तो प्रति हेक्टेयर से 120 से 150 क्विंटल हरे फल की उपज हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। यही अगर संकर किस्म है तो उसमें 170 से 180 क्विंटल प्रति हेक्टेयर से भी उपज का हम लोग लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
5: मैम बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने भिंडी की खेती के बारे में बहुत सी उपयोगी बातें बताई।
6: धन्यवाद उमा।
5: दोस्तों आज के लिए इतना ही, उम्मीद है आप अपना और अपनी फसलों का रख रहे होंगे खूब ख्याल और अपनी मिट्टी से करेंगे ढेर सारा प्यार। नमस्कार।
4: उन्नत कृषि

तैयार है आम के अद्भुत संसार से रूबरू होने के लिए। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर लेकर आ रहा है राष्ट्रीय आम समागम 2026, जिसका आयोजन 27 से 28 जून तक किया जाएगा। आइए और देखिए देश भर की सैकड़ों आम किस्मों की आकर्षक प्रदर्शनी, जहां स्वाद, सुगंध और रंगों का अनूठा संगम आपका स्वागत करेगा। इस विशेष आयोजन की थीम है स्वाद, संस्कृति और समृद्धि का संगम। आम समागम में किसानों, वैज्ञानिकों, उद्यमियों और आम प्रेमियों को एक ही मंच पर आने का अवसर मिलेगा। कार्यक्रम के दौरान आयोजित होगी राष्ट्रीय कार्यशाला, जिसका विषय है आधुनिक तकनीक से गुणवत्ता युक्त उत्पादन, भंडारण एवं प्रसंस्करण। देश के प्रतिष्ठित विशेषज्ञ आम उत्पादन, मूल्य संवर्धन और प्रसंस्करण की आधुनिक तकनीकों पर अपने अनुभव साझा करेंगे। इस अवसर पर आयोजित होगा किसान वैज्ञानिक सम्मान समारोह, जिसमें बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश के उत्कृष्ट आम उत्पादकों को बेस्ट मैंगो फार्मर अवार्ड प्रदान किया जाएगा। महिला आम उत्पादकों एवं मूल्य संवर्धन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिला उद्यमियों के लिए भी विशेष सम्मान और नगद पुरस्कार की व्यवस्था की गई है। और अब आपके लिए एक सुनहरा अवसर, यदि आपके बाग में उत्कृष्ट गुणवत्ता के आम हैं या आपके पास किसी विशेष किस्म के आम उपलब्ध हैं, आप भी आम प्रदर्शनी में अपनी आम की किस्मों को प्रदर्शित कर सकते हैं। आपकी प्रविष्टियों का मूल्यांकन विशेषज्ञों द्वारा किया जाएगा और चयनित प्रतिभागियों को आकर्षक पुरस्कार एवं नगद राशि से सम्मानित किया जाएगा। और हाँ, आम प्रेमियों के लिए होगा एक विशेष आकर्षण, मैंगो ईटिंग प्रतियोगिता। इस रोमांचक प्रतियोगिता के विजेताओं को भी आकर्षक नगद पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। तो देर किस बात की, अपने श्रेष्ठ आमों के साथ आइए, प्रदर्शनी में भाग लीजिए, विशेषज्ञों से सीखिए, नई तकनीकों को जानिए और आकर्षक पुरस्कार जीतने का अवसर पाइए। 27 से 28 जून राष्ट्रीय आम समागम 2026 बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है।

0: प्यारा दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
1: 11 दोस्त
0: टीकू, वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
1: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
0: मगर टीकू, कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
1: लेकिन ऐसा क्यों?
0: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूरदराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं, या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
1: टीकी, तो इसका हल क्या है?
0: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा, सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है, तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। UN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
2: याद रखो, आपके बच्चों के टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।
3: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 20 से 24 जून के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी आने और साथ ही हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 25 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 60 से 70 प्रतिशत और दोपहर में 25 से 30 प्रतिशत रहने की संभावना है। साथ ही अनुमान है कि 20 से 24 जून के दौरान 8 से 9 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दक्षिण पूर्वी हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए, जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दें, धान की मध्यम अवधि वाली किस्में जैसे संतोष, सीता, सरोज, सहभागी धान और राजेंद्र श्वेता और सुगंधित किस्में जैसे राजेंद्र धान की मध्यम अवधि वाली किस्में हैं संतोष, सीता, सरोज, सहभागी धान और राजेंद्र श्वेता, और सुगंधित किस्में जैसे राजेंद्र सुवासिनी, राजेंद्र कस्तूरी और राजेंद्र भगवती। किसान भाई बहनों, इन किस्मों की नर्सरी में बुआई जरूर कर लें। जो मक्का की खेती करना चाहते हैं उन्हें बता दें, खरीफ मक्का की बुआई आसमान साफ रहने पर ही करें और खेत की जुताई में 10 से 15 टन गोबर की सड़ी खाद प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें। ध्यान रखें कि बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 30 किलोग्राम नेत्रजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटाश जरूर डालना चाहिए। और आपको बता दें, अनुशंसित मक्का की किस्में हैं सुआन, देवकी, शक्तिमान 1, शक्तिमान 2, राजेंद्र संकर मक्का 3, गंगा 11। जिनके खेत में मूंग लगे हैं उन्हें बता दें, मूंग की तैयार फलियों की तुड़ाई कर ले और हरी खाद के लिए उसके पौधों को मिट्टी पलटने वाले हल से जमीन में गाड़ दे। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दें, भिंडी, कद्दू, खीरा, नेनुआ और लौकी जैसी फसलों की निराई गुड़ाई जरूर करें। साथ ही खर पतवार नियंत्रित करना भी बहुत जरूरी होता है। पत्ती खाने वाले सुंडियों और फल छेदक कीटों की नियमित निगरानी करें, और अगर आपकी सब्जियों में पत्ती खाने वाले सुंडियों या फल छेदक कीटों का प्रकोप दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में डाइमिथो 8 30cc की 1 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। जो खरीफ सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दें, खरीफ प्याज की खेती के लिए नर्सरी यानी कि बीज स्थली की तैयारी तभी करें जब आसमान साफ हो। स्वस्थ पौधों के लिए नर्सरी में गोबर की खाद जरूर डालें और खरीफ प्याज के लिए NO53, एग्रीफाउंड डार्क रेड, अर्का कल्याण, सीमा सुपर, ये किस्में अनुशंसित है। प्याज के बीज की व्यवस्था प्रमाणित स्रोत से ही करें और ध्यान दें कि बीज गिराने के पहले बीजोपचार करना बहुत जरूरी होता है। बीजोपचार करने से आपके पौधे स्वस्थ होते हैं और फसल अच्छी होती है। बीज की दर 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, लीची तोड़ने के बाद खासकर बरसात शुरू होने से पहले बगीचे की जुताई जरूर कर ले और खाद उर्वरकों का प्रयोग तभी करें जब आसमान साफ हो। प्रति प्रौढ़ पेड़ 60 से 80 किलोग्राम सड़ी गोबर की खाद, 2.5 किलोग्राम यूरिया, 1.5 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट और 1 किलो 300 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश और 50 ग्राम सुहागा मिलाकर वृक्ष के चारों ओर समान रूप से मिट्टी में मिला दें। पशुपालक भाई बहन ध्यान दें, गलाघोटू और लंगड़ी रोगों से बचाव के लिए टीकाकरण कराने की जरूरत होती है, इसलिए सभी दुधारू पशुओं में टीकाकरण जरूर कराएं और नए गेहूं के भूसा को खिलाने से पहले ध्यान दें कि करीब 2 घंटा नए गेहूं के भूसा को पानी में फुला लें और 50 ग्राम खनिज मिश्रण और 50 ग्राम नमक चारा दाना मिलाकर दें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

आप हर समय थकान महसूस करते हैं, छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है, ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है, बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर आप सबका स्वागत करता है स्वाद संस्कृति और समृद्धि के संगम राष्ट्रीय आम समागम सह कार्यशाला में। तारीख याद रखें 27 से 28 जून 2026।

0: क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।
1: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
0: उन्नत कृषि। नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज पर मुझे यानी आरजे अनु को, और ये है आपका रेडियो स्टेशन, जी हाँ, FM ग्रीन, और बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप इस फ्रीक्वेंसी को सुन रहे हैं। साथ ही मैं आप सभी को बता दूं, आज उन्नत कृषि कार्यक्रम में हम मृदा कार्ड के महत्व के बारे में जानेंगे। मृदा कार्ड क्या है, इसकी शुरुआत कैसे हुई और ये कैसे काम करता है, किसान भाइयों के लिए कैसे लाभप्रद है, ये सारी जानकारी आज देने के लिए हमारे बीच स्टूडियो में है डॉक्टर सोनल कुमारी, जो कि मृदा वैज्ञानिक है, सॉइल साइंस डिपार्टमेंट, बिहार एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी सबौर से। तो मैडम, ये मृदा कार्ड क्या है, सबसे पहले तो इसके बारे में बताएं।
2: नमस्कार श्रोतागण, मेरे किसान बहनों भाइयों, मैं सोनल, और आज का हमारा टॉपिक है मृदा कार्ड का क्या महत्व है हमारा, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, क्या क्या इसके फायदे हो सकते हैं किसान के परिप्रेक्ष्य में। तो पहले हम जानते हैं ये मृदा कार्ड है क्या। ये जो आपको मृदा कार्ड, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सॉइल हेल्थ कार्ड बोलते हैं, एक सरकारी योजना है जो भारत सरकार द्वारा ये योजना चलाई गई थी। इस कार्ड का उद्देश्य ही था कि जिससे किसानों को उनकी मिट्टी की, जो उनकर भूमि है, भूमि की मिट्टी का गुणवत्ता का और उसके पोषक तत्व की जानकारी प्राप्त हो सके। और ये जो कार्ड है ना, मिट्टी के विभिन्न गुणों पे काम करता है, स्पेशली जो हमारा पूर्णतः मतलब 12 गुण पे ये आपको उसका विश्लेषण करके, जांच करके उस कार्ड पर इसका विवरण दिया रहता है। और ये कार्ड जो आया था, इसको भारत सरकार चलाया था, भारत सरकार की शुरुआत थी ये जो पहल थी भारत सरकार की थी, ये जो मृदा कार्ड हमारा है कि हर किसान के पास अपनी भूमि का, उनकी मिट्टी का एक मृदा स्वास्थ्य कार्ड हो। और इस भारत सरकार ने इस योजना का शुरुआत अगर बोला जाए तो कब स्टार्ट किया था, तो ये जो योजना है ना 19 फरवरी 2015 को आपको शुरू की गई थी। राजस्थान का एक सूरतगढ़ जगह है, वहाँ पर इसकी शुरुआत की गई थी 19 फरवरी 2015 को। और इस कार्ड का मैंने पहले बताया कि इस कार्ड का क्यों आखिर किया गया, ये कार्ड की किसी किसान को अपनी मिट्टी, भूमि जो है उनकी मिट्टी है, उसकी मृदा स्वास्थ्य क्यों, मृदा स्वास्थ्य जानना क्यों जरूरी है। मृदा स्वास्थ्य जानेंगे तभी तो उन्हें पता चलेगा ना उनकी जो मिट्टी है उसकी गुणवत्ता क्या है, उसमें पोषक तत्व अगर उपलब्ध है तो कितना उपलब्ध है, और कमी है तो किस लेवल पर कमी है, तभी तो वो अपने कौन सा फसल के लिए लगा सकते हैं, कौन सा फसल लगाना वहाँ सही रहेगा। अगर फसल लगा भी रहे हैं तो उसमें कितना हमें, और जो हम बाहरी जो हम खाद पदार्थ डालते हैं कितना डालना पड़ेगा, तभी तो हम उसका उसका स्वास्थ्य जान पाएंगे, तभी तो उसमें उसका हम निवारण कर पाएंगे ना। तो ये सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए एक हमारा जो सॉइल हेल्थ कार्ड है, जो हिंदी में बोलते हैं मृदा स्वास्थ्य कार्ड, ये भारत सरकार द्वारा ये योजना चलाई गई थी।
0: इसके बाद इसकी शुरुआत कैसे हुई, क्यों हुई, इसके बारे में भी थोड़ा बता दें।
2: क्यों हुई, कैसे हुई, मैंने अभी जस्ट इसके डिटेल में ही बता दिया था क्यों किया गया था, जिससे जो हमारे किसान भाई हैं उनकी जो मिट्टी है उसका मिट्टी का गुणवत्ता, उसमें पोषक तत्व की जानकारी प्राप्त कर सकें, उसमें कितने हमारे पोषक तत्व, कितनी पोषक तत्व प्रेजेंट है कि नहीं है, अगर है तो कितना है, अगर नहीं है तो किस लेवल पर नहीं है, तो कितना हमें बाह्य खाद जो हम ऊपरी लेवल से जो बाहर से डालते हैं खाद पदार्थ कितना हमें डालना पड़ेगा, और डालना पड़े उसके अलावा कौन सा हमें फसल लगाना सही रहेगा, कौन सा फसल चक्र अपनाना सही रहेगा, कौन सा मिश्रित खेती के लिए वो हमारा भूमि सही है, ये सब की जानकारी प्राप्त हमें वहीं से होती है, ये इसके लिए जगह हुआ। और कब हुआ, तो मैंने बताया कि सबसे पहले भारत सरकार का योजना था जो 15 फरवरी 2015 को, सॉरी 19 फरवरी 2015 को स्टार्ट की गई थी, कहाँ पर, राजस्थान के सूरतगढ़ में। यही उद्देश्य लेके इनका ऑब्जेक्टिव इस कार्ड का, हेल्थ कार्ड का यही उद्देश्य था, इसी उद्देश्य को मद्देनजर रखते हुए पूरे भारत में योजना को लागू किया गया था।
0: जी, मृदा कार्ड कैसे काम करता है और इसके क्या फायदे हैं, इसके बारे में बताएं।
2: अब हम आते हैं मृदा कार्ड का फायदा क्या है, ये कैसे काम करता, क्या है ये मृदा स्वास्थ्य कार्ड, अब इसका फायदा क्या है, कैसे काम करता है, उसके जाने। ये मृदा जो कार्ड योजना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड का है ना, योजना के अंतर्गत जो सरकार है क्या करती है, मिट्टी के नमूने का विश्लेषण करती है। अब जो मिट्टी के नमूने का विश्लेषण करना होता है तो जाहिर सी बात इसको सरकार नहीं करेगी। जो हमारा सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरी होता है, जो हमारा मृदा प्रयोगशाला होता है, उसकी मिट्टी के नमूने को वहाँ पर भेजा जाता है जहाँ पर मिट्टी की गुणवत्ता और उसके पोषक तत्व में की विश्लेषण किया जाता है। आज इसे ये पता चलता है कि मिट्टी में गुणवत्ता कितनी है, पोषक तत्व है, अगर है तो कितनी उसमें कमी है तो उस कमी का रिपोर्ट तैयार किया जाता है। और इस रिपोर्ट के आधार पर ही किसानों को ना मृदा कार्ड दिया जाता है जिसमें उनको उनकी भूमि की जो मिट्टी है उसके उपयुक्त उर्वरक अन्य आवश्यकता के विवरण दी रहती है। मतलब आपने ये समझना है उसमें कि अगर हमने अपनी मिट्टी का नमूने भेजा तो उसकी गुणवत्ता चेक की जाएगी, पोषक तत्व चेक की जाएगी। इसमें बेसिकली मैं बता रही हूँ बहुत सारे चीज़ें हमें जब हम मिट्टी की गुणवत्ता जांच करते हैं तो बहुत सारे चीज़ें होते हैं, बट इसमें मुख्यतः 12 पैरामीटर्स जो हम बोलते हैं इंग्लिश में 12 पैरामीटर्स में ही 12 मतलब स्पेशली हमें जो 12 होते हैं ना 12 चीज़ों का ही जानकारी प्राप्त की जाती है। वो क्या क्या है, मिट्टी का पीएच क्या है, मतलब वो आपको अम्लीय है कि क्षारीय है कि वो दोनों के बीच का है जिसको हम बोलते हैं न्यूट्रल बोलते हैं। मिट्टी का जैविक कार्बन की मात्रा कितना है, मिट्टी में नेत्रजन कितना है, मिट्टी में फॉस्फोरस कितना है, मिट्टी में पोटास कितना है। और जो नेत्रजन, फॉस्फोरस और पोटास है ये तीनों क्या हमारा है जिसको मिट्टी का हम बोलते हैं इसको प्राइमरी न्यूट्रिएंट कहने का मतलब हुआ प्रथम, जो हमारा प्रथम बोलते हैं प्रथम पोषक तत्व, उसकी जानकारी मिलती है। और द्वितीय जो पोषक तत्व जिसमें होता है उसमें होता है सल्फर की जानकारी दी जाती है। इसके अलावा हमारे सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं उसकी भी जानकारी दी जाती है। उस सूक्ष्म पोषक तत्व क्या है, वो 5 है, जिंक होता है, आयरन तत्व का है, कॉपर होता है, मैग्नीज होता है, बोरोन होता है। और इसके अलावा जो हमारे सॉइल सैलिनिटी जिसको हम क्षारता, हमारी मिट्टी में क्षारता कितनी है जिसको हम ईसी बोलते हैं अपने एक साइंस के टर्म में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, उसकी क्षारता की भी जानकारी दी जाती है। तो टोटल जो पैरामीटर्स में 12 पैरामीटर्स पे काम कर गया है और इस 12 पैरामीटर्स का मिट्टी के प्रयोगशाला में जांच की जाती है, उसका एक रिपोर्ट तैयार किया जाता है, उसके बेसिस पे ही किसानों को उस कौन सा उर्वरक का प्रयोग करना है, कितनी मात्रा में प्रयोग करना है, कौन सा आपको फसल के लिए सही रहेगा, कौन सा फसल चक्र अपनाना है, कौन सा आपको मिश्रित खेती में जाना है, उसका विवरण दिया जाता है और किसान को उसको समझाया जाता है। अब इसके फायदे क्या कर सकते हैं, ये तो फायदे ही मैंने बताया है, क्या क्या हो सकते हैं। फायदे का यही हो सकता है कि आपको सही समझ में, अगर आपको ने कार्ड पर्याप्त प्राप्त कर लिया है तो जिससे आपको जानकारी मिलेगी कि उर्वरक हम सही प्रयोग कैसे करें। किसान अपनी मिट्टी की जांच के बाद अगर उनको पता चल गया कि हमारी ये है तो उर्वरक का प्रयोग कितना करना है, कैसे करना है, जिससे उनका फसल उत्पादन में या उत्पादकता में सुधार ला सके, ये पहला हमारा फायदा हो गया। दूसरा फायदा ये हो सकता है लागत की कमी। बहुत सारे किसान हमारे क्या करते हैं, अपनी मिट्टी की जांच नहीं कराते हैं, जितना मन करता है, सपोज उन्होंने धान की खेती करा तो जितना मन करता है वो जो हमारा एक बोलते हैं ना साइंटिफिक टर्म्स में वैज्ञानिक तरीके से खेती में एक रिकमेंडेड डोज ऑफ फर्टिलाइजर जिसको हम बोलते हैं, जिसको हर फसल के लिए अलग अलग होता है, वो दिया जाता है। तो किसान अपने सूझबूझ से जो मन करता है जितना मन करता डाल देते हैं, उनको लगता है कि हम ज़्यादा खाद डालेंगे तो ज़्यादा हमारी उपज आएगी, हमारी उत्पादन या उत्पादकता बढ़ेगी, बट ऐसा नहीं है। किसी को जैसे हम मनुष्य हैं, हम भोजन उतना ही ग्रहण करते हैं जितनी हमारी सक्षम है जितना ग्रहण करने में, वैसे भी पौधे हैं वो भी हमारे सजीव हैं वो भी उतना ही ग्रहण करेंगे जितनी उनको आवश्यकता है। तो ज़्यादा डालने से भी क्या हो जाता है, आपको क्या है, आपके ही आपकी जो लागत लग रही है वो आपके बढ़ रहे हैं, मतलब कॉस्ट जो बोलते हैं खेती करने में, खेती बाड़ी करने में। लोग आज क्यों खेती बाड़ी में पीछे आ रहे हैं, अरे लागत बहुत ज़्यादा लग जाती है, उत्पादन उतना होता नहीं, घाटे का सौदा करना पड़ता है। तो ये नहीं होती है, जानकारी के अभाव में हम वैज्ञानिक तरीके से खेती नहीं कर रहे हैं, हम चीज़ों को जानने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। लेकिन अभी क्या हम ना 21st सेंचुरी में हम डिजिटल भारत में जी रहे हैं जहाँ हर चीज़ डिजिटाइज हो गई, हर चीज़ें लोगों तक पहुँच रही है, तब हमें वैज्ञानिक तरीके से खेती करने की अति आवश्यक है। तो आपको लागत में कमी आएगी अगर आपने जान गया कि हमारे मिट्टी का स्वास्थ्य कैसा है, उसी के अनुसार आपने उर्वरक का प्रयोग करेंगे, जितनी जरूरत उतना ही प्रयोग करोगे, ज़्यादा नहीं करोगे तो लागत में कमी आपकी आएगी, लागत आपका बचेगा। देन पर्यावरण संरक्षण होगा, मृदा कार्ड का आप मृदा कार्ड में सही उर्वरकों का चयन करेंगे तो पर्यावरण पर जो सकारात्मक प्रभाव पड़ता है वो पड़ेगी। मिट्टी पानी का संरक्षण होगा, मिट्टी पानी में हमें ज़्यादा जितने पौधे को चाहिए उतने ही डाल रहे हैं तो जाहिर सी बात वहाँ से जो हमारे उर्वरक है वो बहकर पानी में नहीं जाएंगे, तो मिट्टी भी स्वस्थ रहेगा हमारा, मिट्टी का भी स्वास्थ्य बना रहेगा हमारा और हमारा पानी भी संरक्षित रहेगा। फसल की उत्पादन में बढ़ोतरी होगी, जितना मात्रा में हमको उर्वरक डालना है उतना पौधे ने हमारे जो फसल हैं पोषक तत्व वहाँ से प्रदान किए, अच्छी उपज आ गई, अच्छी हमारी उत्पादकता बढ़ी, तो वृद्धि भी इससे फायदा होगी हमारी, फसल के उत्पादन उत्पादकता भी बढ़ेगी हमारी।
0: मृदा कार्ड किसानों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है?
2: अब बात आती है मृदा कार्ड जो हमारे है किसानों के लिए कैसे महत्वपूर्ण है, अभी जो मैंने बताया कैसे महत्वपूर्ण हो सकता है, कैसे किसान के लिए उपयोगी हो सकता है, तो जो मृदा कार्ड है सभी प्रकार का फसलों के लिए उपयोगी है। पहली बात ये हमें जानना पड़ेगा कि जैसे मृदा कार्ड हम कर रहे हैं, मृदा कार्ड का प्रयोग कैसे करेंगे हमारे जो किसान हैं, इसका तो उपयोग करने के लिए पहले तो क्या करने का, अगर जिनको किसान को अपने नहीं पता है कि उनको अपने मिट्टी का स्वास्थ्य क्या है कैसे नहीं है, तो उनको पहले तो अपने एरिया में उनको पता करना पड़ेगा वहाँ किसी सेवा केंद्र है या है कि नहीं है, या मिट्टी का जांच घर है कि नहीं है, उस मिट्टी जांच घर में क्या करेंगे, अपनी मिट्टी का जो उनको भूमि है, भूमि का मिट्टी है, उस नमूने भेजना पड़ेगा। और वहाँ पर जो भी मैंने पैरामीटर्स का पहले ही अपने प्रश्नों में उत्तर में दिया है वो अंकित है, उस चीज़ का जाँच की जाती है, उस जाँच के सुझाव दिए जाते हैं, सुझाव में लिखे रहते हैं कि आपको क्या क्या आपके भूमि में किसी चीज़ की कमी है, अगर है तो किस मात्रा में अवेलेबल है। जैसे हम कोई चीज़ हमारा जो पैरामीटर हम स्टडी करते हैं ना, हम लैब में जब उसका विश्लेषण करते हैं, हम प्रयोगशाला में उसको तीन कैटेगरी में बांटते हैं, लो, मीडियम और हाई। जैसे मैंने बोला हमारा जो मृदा प्रथम हमारा प्राथमिक हमारा पोषक तत्व है जिसका हम बोलते हैं नेत्रजन बोलते हैं, फॉस्फोरस बोलते हैं, पोटास होते हैं, इस सब का एक हमारे साइंटिफिक टर्म से एक लेवल दिया रहता है जिसको बोलते हैं लो है कि मीडियम है कि हाई है, सारे का ऐसे ही रहता है। ऐसे ही सूक्ष्म पोषक तत्व होता है, ऐसे ही हमारे द्वितीय पोषक तत्व होता है, पीएच है तो पीएच का भी एक लेवल होता है जो 0 से 14 तक होता है कि अम्लीय है कि क्षारीय है कि न्यूट्रल है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो हमको मिट्टी का हमको सैलिनिटी टेस्ट करना होता है उसका हम टेस्ट के लिए रहता है, सब एक ऑर्गेनिक जो हम जैविक कार्बन बोलते हैं उसका भी एक लेवल होता है, लो मीडियम हाई के रेंज में है, उस सारे वहाँ पर क्या होते हैं मेंशन किए रहते हैं, उस मेंशन करने के आधार पर ही कि आपको किस कैटेगरी में आपका मिट्टी का गुणवत्ता और उसमें पोषक तत्व की जो है प्रेजेंट है उपलब्ध है किस कौन सा कैटेगरी में फॉल करता है, उसके बेसिस पे आपको किसानों को उनको सलाह दी जाती है कि आपके लिए कौन सा वो फसल वहाँ का चयन करना सही रहेगा, फसल चुन रहे हैं और फसल चक्र में तो कौन सा फसल चक्र को अपनाना सही रहेगा, कौन सा आपको मिश्रित खेती के लिए सही रहेगा, या इंटरक्रॉपिंग कर रहे हैं तो कौन सा इस सब चीज़ के लिए जानकारी सब चीज़ दी जाती है, और किसानों को सलाह दिया जाता है कि आप टाइम टू टाइम आके जो भी आपका जहाँ से आपने कार्ड को प्राप्त किया है वहाँ आप उससे उसके टच में रहे, जो भी आपको सेवा केंद्र दिख रहा है वहाँ पर, अब स्वास्थ्य सेवा केंद्र नहीं जो मिट्टी का जांच केंद्र होता है जो हमको बोलते हैं जो हम किसी के वी के बोलते हैं किसी विज्ञान केंद्र जो हमारा है, वहाँ से अपनी मिट्टी के नमूना का जांच कराइए, वहाँ से अपने देखिए क्या क्या है और टाइम टू टाइम से उनसे सलाह लेते रहिए, अब वैज्ञानिक तरीके से खेत कीजिए और अपने जो भी फसल को जितना चाहिए उतना ही उर्वरक का प्रयोग कीजिए, जिससे कोई चीज़ बह गई पानी वानी में ना जाए, जितने आपको पौधे को जरूरत उतनी पौधा वहाँ से प्रयोग करें, पोषक तत्व उपज अपनी उपज को उत्पादन को उत्पादकता को बढ़ाइए और पर्यावरण भी हमारा प्रदूषित नहीं हो, हम भी प्रदूषित नहीं होंगे क्योंकि अल्टीमेटली उसका कंज्यूमर कौन है, हम लोग हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, एनिमल्स हैं, तो उसके ये हमारे फायदे हैं। और बहुत सारे उर्वरक ज़्यादा प्रयोग करने से हमें लागत में भी कमी आएगी, ये सब फायदे मैंने पहले ही लिस्ट आउट किया है, ये सारे हमारे इसके फायदे हो सकते हैं
0: जी। अब आगे बढ़ते हैं, जानना चाहिए कि मृदा कार्ड से जो जुड़ी जानकारी प्राप्त करते हैं किसान, तो ये जानकारी प्राप्त करने में किसानों को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है?
2: हाँ देखिए, बहुत सारे हमारे किसान बंधु हैं, बहनें हैं, उनको बहुत चीज़ों से अवगत हो चुके हैं, अब इस बात में कोई दो राय नहीं कि वो अवगत नहीं है, लेकिन बहुत सारे हमारे ऐसा जगह भी है ना जहाँ हमारे जिसको हम फॉरेस्ट ड्वेलर्स बोलते हैं, जो हमारे अभी भी जंगल में रहते हैं, अपने हमारे प्राकृतिक चीज़ों पर उपलब्ध है, बहुत चीज़ें उनको जानकारी वहाँ पर नहीं पहुँच पा रही है उस पर तो मैं नहीं कहूँगी उनको, अगर जिसको जहाँ जहाँ अभाव है, अगर उन्होंने मृदा कार्ड का पर्याप्त कहीं से प्राप्त हो गया है, मृदा कार्ड उनको मृदा स्वास्थ्य कार्ड दे दिए है, फिर भी बहुत सारी चीज़ों को उनको समझ नहीं होती है, सूझबूझ नहीं है, चाहे सही से नहीं उनको बातों को बताया पहुँचाया गया है, तो बहुत चीज़ों को दिक्कत आ जाती है, वो जैसे हमारे क्या क्या चुनौतियाँ उनको सामना करना पड़ सकता है, जैसे कुछ हैं कि जैसे जानकारी की पहुँच है, कई बार ग्रामीण क्षेत्रों में हम देखते हैं ना जो हमारे किसान हैं उनका मृदा कार्ड की जानकारी प्राप्त करने की बहुत कठिनाई आती है, वो जैसे विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जहाँ कृषि सेवा की पहुँच बहुत सीमित है, जहाँ हमारा कृषि सेवा है, जहाँ हमारा कृषि विज्ञान केंद्र है, वो बेचारे हमारे जो भी हमारे साइंटिस्ट हैं, जो हमारे बहुत टेक्निकल स्टाफ से इस पर काम करें, वो वहाँ तक पहुँचने में असक्षम है, वो चाह रहे हैं पूरी अपनी तरह कोशिश है बट अपनी बातों को अपनी चीज़ों को किसान तक नहीं पहुँचा रहे हैं, किसान भी इतने रिमोट एरिया पर रह रहे हैं कि जहाँ तक वो अपने जो हमारे टेक्निकल स्टाफ्स हैं, टेक्निशियन काम करते हैं इसके लिए, जो वैज्ञानिक काम करते हैं।

0: और कितना उर्वरक हमको प्रयोग करना है, कितना नहीं करना है, अब प्रयोग कर लिया था कितने हमारे खाद अवशेष मिट्टी में ऑलरेडी बचे होंगे, जिस खाद का प्रयोग करके हम दूसरी फसल ले सकते हैं। ये सब चीज़ें तकनीकी चीज़ें होती हैं जिसका अभाव में रहता है, जो हमारे किसान तक नहीं पहुँच सकता है। जैसे कुछ किसान हमें जैसे मृदा कार्ड की उनको दी गई है, तकनीकी जानकारी सब कठिनाई हो सकती है क्योंकि उससे उसके पूरा लाभ नहीं उठा पाएंगे। जैसे मैंने ये सब चीज़ें, ये दिक्कत आते हैं तकनीकी समझ की। तीसरी आपकी होती है सूचना का अनुपालन हो सकता है। कुछ किसान को मृदा कार्ड की सिफारिश के अनुसार कृषि तकनीकों को अपनाने में दिक्कत हो सकती है, इसलिए होती है। खासकर अगर ये देखा है कि उन्होंने पारंपरिक तरीके से उन्होंने खेती करना को ही उन्होंने मान रखा है कि नहीं मुझे पारंपरिक तरीके से खेती करना है, उन्होंने किसान जो हमारा मृदा स्वास्थ्य कार्ड है उसको भी ले लिया है, बट वो चीज़ें बहुत रिजिड हो जाते हैं कि नहीं हम ऐसे करते हैं ऐसे ही करेंगे। हम जैसे जलवायु में इतना हमारा देख रहे हैं परिवर्तन हो रही है, जलवायु में परिवर्तन होता है, हमारी मिट्टी बदल रहा है, हमारा पानी बदल रहा है, हमारे में चेंजिंग आ रहा है, बहुत चीज़ों में चेंजिंग आ रही है, बदलाव हो रही है, जो सारे चीज़ जलवायु पर डिपेंडेंट है। तो हमें भी अब पारंपरिक तरीके को अपनाते हुए कुछ नए तरीकों को भी अपनाना पड़ेगा। तो जहाँ पर जो लोग रिजिड हो जाते हैं कि नहीं हम ऐसे ही करते हैं हम ऐसे ही करेंगे, नहीं, जहाँ आपको जिससे फायदे हो रहे हैं ना, जहाँ आपकी फसल के उत्पादन उत्पादकता में वृद्धि हो रही है, तो आपको नई तकनीकों भी अपनाने में कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। तो ये जो हमारे होते हैं सूचना का अनुपालन जरूर करना चाहिए, जो भी हमें जहाँ से यही सही चीज़ें सीखने को मिले उसको हमको सीखना है। यहाँ पर आपको फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी पड़ेगी, ये चीज़ें का हमें चुनौतियों का सामना करते हैं।
1: तो किसान भाइयों, अभी आप जान रहे थे मृदा कार्ड के बारे में और इसमें पूरी जानकारी आपने प्राप्त की कि किस प्रकार ये आपके लिए उपयोगी है और क्यों महत्वपूर्ण है और किन चुनौतियों का सामना भी आपको करना पड़ सकता है, ये सारी जानकारी आपको मिली। आशा करते हैं आज का ये वार्ता आपके लिए बिल्कुल लाभप्रद होगा। मिलेंगे आपसे अगले दिन इसी फ्रिक्वेंसी 90.8 MHz पर। नमस्कार। उन्नत कृषि

तैयार है आम के अद्भुत संसार से रूबरू होने के लिए। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर लेकर आ रहा है राष्ट्रीय आम समागम 2026, जिसका आयोजन 27 से 28 जून तक किया जाएगा। आइए और देखिए देश भर की सैकड़ों आम किस्मों की आकर्षक प्रदर्शनी, जहां स्वाद, सुगंध और रंगों का अनूठा संगम आपका स्वागत करेगा। इस विशेष आयोजन की थीम है स्वाद, संस्कृति और समृद्धि का संगम। आम समागम में किसानों, वैज्ञानिकों, उद्यमियों और आम प्रेमियों को एक ही मंच पर आने का अवसर मिलेगा। कार्यक्रम के दौरान आयोजित होगी राष्ट्रीय कार्यशाला।

होगा जिसका विषय है आधुनिक तकनीक से गुणवत्ता युक्त उत्पादन भंडारण एवं प्रसंस्करण। देश के प्रतिष्ठित विशेषज्ञ आम उत्पादन मूल्य संवर्धन और प्रसंस्करण की आधुनिक तकनीकों पर अपने अनुभव साझा करेंगे। इस अवसर पर आयोजित होगा किसान वैज्ञानिक सम्मान समारोह जिसमें बिहार झारखंड पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश के उत्कृष्ट आम उत्पादकों को बेस्ट मैंगो फार्मर अवार्ड प्रदान किया जाएगा। महिला आम उत्पादकों एवं मूल्य संवर्धन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिला उद्यमियों के लिए भी विशेष सम्मान और नगद पुरस्कार की व्यवस्था की गई है। और अब आपके लिए एक सुनहरा अवसर, यदि आपके बाग में उत्कृष्ट गुणवत्ता के आम हैं या आपके पास किसी विशेष किस्म के आम उपलब्ध हैं, तो आप भी आम प्रदर्शनी में अपनी आम की किस्मों को प्रदर्शित कर सकते हैं। आपकी प्रविष्टियों का मूल्यांकन विशेषज्ञों द्वारा किया जाएगा और चयनित प्रतिभागियों को आकर्षक पुरस्कार एवं नगद राशि से सम्मानित किया जाएगा। और हाँ, आम प्रेमियों के लिए होगा एक विशेष आकर्षण, मैंगो ईटिंग प्रतियोगिता। इस रोमांचक प्रतियोगिता के विजेताओं को भी आकर्षक नगद पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। तो देर किस बात की, अपने श्रेष्ठ आमों के साथ आइए, प्रदर्शनी में भाग लीजिए, विशेषज्ञों से सीखिए, नई तकनीकों को जानिए और आकर्षक पुरस्कार जीतने का अवसर पाइए। 27 से 28 जून राष्ट्रीय आम समागम 2026 बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है।

0: फिर पिट गया। बिल देना। इसको आउटसाइड द ऑफ टाइम डालना चाहिए था, इसकी यही प्रॉब्लम है।
1: कब से?
0: जब से क्रिकेट खेल रहा है तभी से।
1: अरे भाई साहब, क्रिकेट की नहीं, हम आपकी खांसी की बात कर रहे हैं। बुढ़बा
0: खांसी?
1: हाँ।
0: इसको तो एक आध महीना हो गया।
1: खुद की खांसी को एक आध महीने हो गए हैं और यहाँ क्रिकेट पर अपनी ही गुगली फेंक रहे हैं आप। चलिए चलिए चलिए।
0: डॉक्टर, खांसी तो है।
1: देखिए भाई साहब, इसे हल्का मत लीजिए। 2 हफ्ते से ज्यादा अगर आपको खांसी रहा है तो टीबी हो सकता है।
0: टीबी?
1: हाँ। तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए।
0: ठीक है।
1: टीबी किसी को भी हो सकता है, अगर हो गया तो बिना भूले पूरा कोर्स करिए और फिट हो जाइए। नहीं किया तो इसका इलाज बहुत मुश्किल है। समझ गए भाई साहब आप? आइए। 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए। टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
2: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 ग्रीन एफएम। उन्नत कृषि। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से 90.8 एफएम ग्रीन और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, आपका बहुत बहुत बहुत स्वागत है किसान भाई बहनों को संबोधित हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम में हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने वाले हैं जो बिहार के युवाओं, विद्यार्थियों, शोधार्थियों, किसानों और उद्यमिता में रुचि रखने वाले हर व्यक्ति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हमारा आज का विषय है स्टार्टअप बिहार पॉलिसी, नए सपनों की उड़ान। दोस्तों, बिहार आज केवल रोजगार खोजने वाला राज्य नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा राज्य बनता जा रहा है जो रोजगार सृजित करता है और खास तौर से जो युवा है वो इस ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो इसी सोच को साकार करने के लिए बिहार सरकार ने बिहार स्टार्टअप पॉलिसी 2022 लागू की है और जिसका उद्देश्य है युवाओं को जॉब सीकर से जॉब क्रिएटर बनाना। तो इस महत्वपूर्ण विषय पर हमारे साथ आज चर्चा करने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर कृति। डॉक्टर कृति हैं कृषि प्रसार विभाग से और साथ ही मैम हैं असिस्टेंट प्रोफेसर कम जूनियर साइंटिस्ट और मैम स्टार्टअप जागरूकता के कार्यक्रमों से भी जुड़ी हुई हैं। तो मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
3: धन्यवाद उमा।
2: मैम, सबसे पहले तो आप हमें ये समझाइए कि बिहार स्टार्टअप पॉलिसी क्या है, इसके बारे में बताइए।
3: बिल्कुल, अगर हम बिहार स्टार्टअप पॉलिसी की बात करें तो बिहार स्टार्टअप पॉलिसी 2022 राज्य सरकार की एक दूरदर्शी पहल है जिसका उद्देश्य बिहार में नवाचार, उद्यमता और स्टार्टअप संस्कृति को बढ़ावा देना है। इस नीति के माध्यम से युवाओं को वित्तीय सहायता, मार्गदर्शन, प्रशिक्षण और इंक्यूबेशन सुविधा एवं निवेशकों से जुड़ने का अवसर प्रदान किए जाते हैं तथा इसके माध्यम से सरकार चाहती है कि बिहार का जो युवा है, युवा वर्ग है, वो केवल नौकरी की प्रतीक्षा ना करें बल्कि अपने विचारों को व्यवसाय में बदलकर दूसरों को भी रोजगार प्रदान करें ताकि वो जॉब सीकर से जॉब क्रिएटर बन सके।
2: यस मैम। मैम, अगर हम स्टार्टअप को आसान भाषा में समझना चाहें तो आप इसे कैसे समझाएंगे?
3: अगर इसको सरल भाषा में कहें तो कोई ऐसा नया व्यवसाय जो किसी समस्या का नवीन समाधान प्रस्तुत करता हो वो स्टार्टअप कहलाता है। लेकिन यदि कोई युवा किसान के लिए मोबाइल, जैसे कि मैं बता रही हूँ कि जैसे कोई युवा किसान है जो या कोई यदि कोई युवा किसान के लिए मोबाइल ऐप विकसित करता है जो कि महिला स्थानीय उत्पादकों को ऑनलाइन बेचने में का प्लेटफॉर्म बनाती है या कोई शोधार्थी नई कृषि तकनीक विकसित करता है तो ये सभी स्टार्टअप की श्रेणी में आ सकते हैं अगर ये उनके इस तकनीक से, जो नवीन तकनीक है, इनसे ना केवल वो जीविकोपार्जन अपना इनकम बढ़ा सकते हैं बल्कि इससे वो समाज को भी फायदा पहुंचा सकते हैं और कई और भी लोगों को वो जॉब दे सकते हैं।
2: मैम, बिहार स्टार्टअप पॉलिसी के बारे में जैसे आपने बताया, कुछ उद्देश्य अभी आपने बताए, लेकिन अगर हम विस्तार से इसके मुख्य उद्देश्य के बारे में समझना चाहें तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है?
3: इसका अगर प्रमुख उद्देश्य देखा जाए तो सबसे पहला तो उद्यमता को बढ़ावा देना होगा, उसके बाद युवाओं में नवाचार और व्यवसायिक सोच विकसित करना, इसका ये प्रमुख उद्देश्य अगर माना जाए तो सबसे पहले कि जो हमारे युवा वर्ग हैं उनके अंदर एक इनोवेशन, नवाचार और व्यवसायिक सोच जो होता है, जो उसको फाइनेंशियली कैसे कन्वर्ट कर सके, वो लोगों को कैसे उससे व्यवसाय के रूप में उसको डेवलप कर सके, ये प्रमुख हैं। इसके साथ साथ स्टार्टअप को वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाना भी है, साथ ही इनक्यूबेशन और को वर्किंग स्पेस उपलब्ध करवाना है, प्रशिक्षण और मेंटरशिप एवं विशेषज्ञों का मार्गदर्शन देना, इसके साथ ही साथ जितने भी सरकारी प्रक्रिया है उसको और भी सरल बनाना, और स्कूल और विश्वविद्यालय में उद्यमता शिक्षा को बढ़ावा देना। मैं हम आगे बात करेंगे कि इनक्यूबेशन और को वर्किंग स्पेस जो है ये सब क्या होता है,
2: लेकिन मैम अभी मन में ये सवाल आ रहा होगा कि क्या स्टार्टअप शुरू करने के लिए सरकार कोई सहायता देती है और कितनी सहायता देती है?
3: बिल्कुल, यह जो है इस नीति का सबसे आकर्षक पहलू माना जाता है जो कि वित्तीय सहायता है। तो अगर हम स्टार्टअप में वित्तीय सहायता की बात करें तो जो योग्य स्टार्टअप होते हैं, जो एलिजिबल स्टार्टअप होते हैं, उनको सरकार 10 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त सीड फंड प्रदान करती है। यह राशि स्टार्टअप के विकास, प्रोटोटाइप निर्माण, मार्केटिंग, उत्पाद विकास एवं प्रारंभिक संचालन के लिए उपयोग की जा सकती है। इस राशि पर कोई ब्याज नहीं लगता तथा पुनर्भुगतान के लिए लगभग 10 वर्ष तक का समय सीमा दिया जाता है।
2: हम सीड फंड, जैसे कि आपने बताया, बहुत सारे लोग इसे बैंक लोन समझ लेते हैं, क्या ये एक ही है या इसमें कोई अंतर है?
3: बिल्कुल, आपने सही पूछा। इसमें कई लोग कंफ्यूज रहते हैं कि सीड फंड और बैंक लोन में क्या अंतर होता है। जैसे कि अभी हमने बोला कि 10 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त सीड फंड प्रदान करती है, मैंने बैंक लोन नहीं बोला। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर हम बैंक लोन की बात करें तो बैंक लोन में ब्याज देना पड़ता है, नियमित ईएमआई चुकानी होती है, और कई बार तो हमारी हमें गारंटी भी देनी पड़ती है। लेकिन अगर हम बिहार स्टार्टअप पॉलिसी के अंतर्गत मिलने वाला सीड फंड, ब्याज मुक्त एक फंड होता है, इसकी बात करें तो इसका उद्देश्य जो होता है वो स्टार्टअप को प्रारंभिक सहयोग देना होता है। यह समान बैंक ऋण से अधिक उद्यमी अनुकूल व्यवस्था है।
2: और इसमें क्या महिलाओं को और जो सामाजिक रूप से वंचित वर्ग हैं उनके लिए कोई विशेष सुविधा है?
3: बिल्कुल, महिला उद्यमों को तो बिल्कुल अतिरिक्त प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है तथा उनको प्रशिक्षण एवं मेंटरशिप में भी विशेष सहायता दी जाती है। और इसी प्रकार से जैसे टीएससी उद्यमी जो होते हैं उनके लिए भी अतिरिक्त लाभ, विशेष सहायता तथा स्टार्टअप फंड में आरक्षित प्रावधान भी रखे गए हैं जिससे अधिक से अधिक युवाओं को अवसर मिल सके।
2: मैम, अगर कोई युवा स्टार्टअप शुरू करना चाहता है तो उसे सबसे पहले क्या करना चाहिए, अगर आप प्रोसेस इसका पूरा बता दे तो?
3: बिल्कुल, मैं इसे एक चरणबद्ध तरीके से समझाना चाहूंगी। इसका सबसे पहला चरण जो है वो समस्या की पहचान यानी प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन है। सबसे पहले तो हम ये तय करें कि हम जो समस्या का समाधान करना चाहते हैं, जैसे कि किस समस्या का समाधान करना चाहते हैं, जैसे किसानों की फसल का रोग पहचान, खाद्य प्रसंस्करण, जैविक उत्पादन विपणन, ग्रामीण ई कॉमर्स या कृषि मशीनरी साझा सेवा, इस टाइप के जो भी समस्याएं हैं हमारे समाज के रूप में, पहले हम उसको आइडेंटिफाई करें। अगर हम दूसरे, ये तो पहला चरण हो गया, इसके बाद हम दूसरे चरण की तरफ बढ़ेंगे जहां हम बिजनेस आइडिया तैयार करें। तो इसके लिए कुछ प्रश्नों के उत्तर तैयार करें, जैसे समस्या क्या है, उसका समाधान क्या हो सकता है, इसमें नया क्या होगा, और इसके जो ग्राहक होंगे, सबसे पहले जो मार्केटिंग, जो हमारे कंज्यूमर होंगे उनके बारे में हम सोचेंगे, और आय का स्रोत क्या होगा, हम जो बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो हमें उसमें कहां से फंडिंग आएगा, और कितना पैसा जो हमारे जो कंज्यूमर होंगे उनसे किस रूप में हमें आय मिल पाएगा। तो ये हो गया दूसरा चरण। अब हम आगे बढ़ते हुए तीसरे चरण पे जाएंगे जिसमें हम बिजनेस प्लान बनाएंगे। तो ये एक मजबूत, इसमें एक हम बहुत मजबूत बिजनेस प्लान तैयार कर सकते हैं जिसमें कि जैसे उद्देश्य होना चाहिए, हमारा उत्पाद होगा या सेवा होगा, प्रोडक्ट होगा या सर्विस होगा, इस पे भी हम सोचेंगे। फिर हमारे संभावित ग्राहक कौन होंगे, है ना। फिर हम बाजार को भी देखेंगे कि हमारा जो बाजार है वो लोकल मार्केट है, कितनी दूरी पे है, और इसके लिए जो हमारे जो स्टार्टअप जो स्टार्ट करेंगे उसके लिए वित्तीय सहायता कहाँ कहाँ से हमें मिल सकता है, और इससे रिलेटेड राजस्व मॉडल क्या हो सकता है। तो ये हो गई हमारे पहले चरण, दूसरे चरण और तीसरे चरण। इसके आगे है चौथा चरण जिसमें हम आवश्यक दस्तावेज तैयार करेंगे। तो अगर हम समानता देखा जाए तो दस्तावेज जैसे कि आधार कार्ड हो गया, बिजनेस प्लान हो गया, पिच डेक हो गया, जैसे कि पीपीटी, पीडीएफ, ये सब हम कहीं प्रेजेंट करते हैं तो हमें पावर पॉइंट के रूप में उन दिखाना पड़ता है, और फिर DPIIT मान्यता जो होता है इसमें हमें एक लेना पड़ता है उपलब्ध अगर है हमारे पास, तो ये भी दस्तावेज हम अपने साथ रख सकते हैं। तो समस्या की पहचान करते हुए, बिजनेस आइडिया तैयार करते हुए, बिजनेस प्लान बनाते हुए और अपने पास आवश्यक दस्तावेज को संग्रहित करने के बाद हम पांचवें चरण पे जाएंगे जो कि है स्टार्टअप बिहार पोर्टल पे आवेदन करना। तो आवेदक को स्टार्टअप बिहार पोर्टल पर पंजीकरण करना होता है और वहां उनको अपनी प्रोफाइल बनानी होती है, उसके बाद अपने सारे दस्तावेज अपलोड करने होते हैं और अपना बिजनेस आइडिया प्रस्तुत करना होता है। अब एक बार जब उन्होंने स्टार्टअप बिहार पोर्टल पर आवेदन कर दिया, ये पांचवा चरण है, और इसके बाद हम छठे चरण की तरफ जाएंगे जहां पे मूल्यांकन और प्रस्तुतिकरण होता है। तो इसमें जो विशेषज्ञ समिति है जो स्टार्टअप बिहार के, उनके द्वारा हम जो हमारे युवा वर्ग हैं जिन्होंने अप्लाई किया है उनका, उनके विचार का मूल्यांकन होता है। तो वो देखते हैं, अब वो क्या क्या देखेंगे कि जो आइडिया आपने दिया है उसमें नवाचार है या नहीं है, इनोवेशन है या नहीं है, नयापन है या नहीं है। तो उसके बाद सबसे पहला जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है नवाचार, न्यूनेस। उसके बाद उसमें व्यवहार्यता है या नहीं है, बाजार जो है उसका संभावना है या नहीं है, उसके बाद रोजगार सृजन की क्षमता है कि नहीं है, कि हम खुद ही नहीं हम औरों को भी रोजगार इससे दे सकते हैं कि नहीं है, फिर इससे सोशल इम्पैक्ट क्या होगा, सामाजिक प्रभाव क्या हो सकता है। तो ये सब जो है कुछ पॉइंट हैं जिसके आधार पे मूल्यांकन करती है जो विशेषज्ञ समिति है स्टार्टअप बिहार के। मूल्यांकन और प्रस्तुतिकरण के बाद सातवें चरण पे हम पहुंचेंगे जहां पे हम इंक्यूबेशन और मेंटरशिप की बात करते हैं। इन सब को देखते हुए जो हमने छठे चरण की बात की, जो जहां पे हमारा मूल्यांकन हुआ, प्रस्तुतिकरण हुआ, उसमें से अब जो आइडिया है उसमें स्वीकृत हो गया, मान लीजिए आपका आइडिया सेलेक्ट हो गया, तो सेलेक्ट होने के बाद जितने भी सेलेक्टेड स्टार्टअप होते हैं उनको इंक्यूबेशन सेंटर अलॉट किए जाते हैं। तो उसमें स्वीकृति मिलने के बाद जैसे स्टार्टअप को मेंटरशिप सेशन, मतलब उनको समय समय पे आपको गाइडेंस मिलता है, उनको जो सहायता की जरूरत होती है, कार्यालय सुविधा अगर उनको चाहिए तो वो भी दिया जाता है, प्रशिक्षण दिया जाता है, उनकी नेटवर्किंग कैसे बढ़ाई जाए इसके रूप में भी उनको सहायता की जाती है, और उनको हेल्प किया जाता है, मदद किया जाता है कि वो निवेशकों से कैसे संपर्क में आए। जैसे बहुत बड़े बड़े बड़े मेगा फेस्ट होते हैं जहां पे ऐसे स्टार्टअप्स को इनवाइट किया जाता है ताकि वो दूसरे से मिल सके, उनको एंजल इन्वेस्टर मिल सके जो उनके आइडिया को में इन्वेस्ट करना पसंद कर सके। तो ऐसे प्लेटफॉर्म भी उनको प्रोवाइड करवाए जाते हैं, ऐसी सुविधाएं प्रदान की जाती। उसके बाद सबसे जो लास्ट है वो है सीड फंड हेतु आवेदन। जब विचार व्यवहारिक साबित हो जाता है तब स्टार्टअप सीड फंड के लिए आवेदन कर सकता है, और जो यह राशि जो है वो चरणबद्ध तरीके से उपलब्ध कराई जाती है और इसके उपयोग की निगरानी भी की जाती है। ऐसा नहीं कि आपको पैसे दे दिए गए और फिर उसका कोई हिसाब नहीं रखा जाता है, आपको ये पैसे, ये सीड फंड जो होता है ये दिया तो जाता है पर इसकी निगरानी भी रखी जाती है। तो इस तरह आठ चरण में जो है स्टार्टअप पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी की जा सकती है।
2: मैम आपने आठों चरणों को बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया, लेकिन अब ये सवाल है कि क्या हर स्टार्टअप जो कोई शुरू करना चाहता है वो इसी प्रक्रिया से आगे बढ़ेगा, एक जैसे प्रक्रिया से आगे बढ़ेगा?
3: समानता जो होते हैं कोई भी स्टार्टअप वो छह चरण से गुजरते हैं, यानी कि सबसे पहला अगर हम बात करें एक सफल कंपनी बनाने का जो पूरा सफर तय किया जाता है उसको हम छह स्टेज के रूप में देख सकते हैं। सबसे पहला जो स्टेज होता है उसको हम कहते हैं आइडिएशन स्टेज, और आइडिएशन स्टेज में हम क्या करते हैं तो हम अपने नए विचारों को जन्म देते हैं, हमारे माइंड में, हमारे जो मस्तिष्क में नए नए विचार आते हैं, जो नवाचार आते हैं उसका जन्म होता है। सो विचारों का जन्म होना आइडिएशन स्टेज कहलाता है। दूसरी जो स्टेज है, दूसरा स्टेज, उसको हम वैलिडेशन या प्रोटोटाइप स्टेज कहते हैं। तो ये वैलिडेशन या प्रोटोटाइप स्टेज का मतलब होता है प्रारंभिक मॉडल विकसित करना, जो दिमाग में आपका आइडिया आपने उसको मॉडल के रूप में विकसित किया। तीसरा स्टेज की जब बात कर ले तो इसको हम कहते हैं अर्ली ट्रैक्शन स्टेज। अर्ली ट्रैक्शन स्टेज में क्या करते हैं हम, प्रारंभिक ग्राहक प्राप्त होना इसमें हम ट्रैक करते हैं, अर्ली ट्रैक्शन स्टेज कहते हैं। इसके बाद ग्रोथ स्टेज आता है जिसमें हम अपने व्यवसाय को विस्तार करते हैं, एक्सटेंड करते हैं। ग्रोथ स्टेज के बाद नेक्स्ट स्टेज जो आता है वो होता है स्केलिंग स्टेज। इसमें हम अपने जो व्यवसाय है उसको राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार करेंगे, तो इसको स्केलिंग स्टेज कहते हैं। और सबसे लास्ट स्टेज जो होता है एक अगर हम स्टार्टअप की बात करें तो उसमें होता है मैच्योर स्टार्टअप स्टेज, मतलब अब आपका जो स्टार्टअप है वो मैच्योर हो चुका है। इसमें इसका मतलब है कि अब आपका स्टार्टअप स्थापित हो चुका है और एक सफल कंपनी के रूप में उभर चुका है। तो ये समानता छह स्टेज होते हैं, छह चरण होते हैं किसी भी स्टार्टअप के।
2: यस मैम, मैम जब हम बिहार की बात करते हैं तो हम सभी जानते हैं कि बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है, तो ऐसे में क्या कृषि के क्षेत्र में भी स्टार्टअप की कोई संभावनाएं हैं?
3: बिल्कुल, ये अगर हम कहें तो सबसे ज़्यादा जो संभावनाएं हैं, आप जितने भी स्टार्टअप देखेंगे मैक्सिमम सबसे ज़्यादा जो की जाती है ना वो एग्रीकल्चर के ही क्षेत्र में की जाती है, क्योंकि इसमें बहुत मतलब व्यापक संभावनाएं हैं, अत्यंत व्यापक। अगर इसकी बात करें तो जैसे कि एग्रीटेक हो गया, ड्रोन की सेवाएं हो गई, मिट्टी परीक्षण की बात करते हैं, सॉइल टेस्टिंग, फसल रोग पहचान करने की, और खाद्य प्रसंस्करण, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी जो कहते हैं, मतलब फूड टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, उसमें हम ये बहुत ही उभरता हुआ एक व्यापक संभावनाएं लिए हुए एक विषय है। इसके बाद जैसे जैविक खेती हो गई, ई मार्केटिंग हो गई, डेयरी और पशुपालन हो गया, FPO आजकल जो होता है संगठन के रूप में विकास होना, इस पे मुख्य बल सरकार भी दे रही है, तो FPO का हो गया। ऐसे क्षेत्रों में हजारों अवसर उपलब्ध हैं कृषि के क्षेत्र में।
2: और मैम बिहार कृषि विश्वविद्यालय जैसे संस्थाओं का इसमें कुछ अहम इनकी भूमिका होती है?
3: बिल्कुल, अगर हम बिहार कृषि विश्वविद्यालय की बात करें उमा, तो बिहार कृषि विश्वविद्यालय जो हमारा है वो बिहार राज्य का एकमात्र इकलौता कृषि विश्वविद्यालय है। तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि हमारा जो कृषि विश्वविद्यालय है इसका कोई भूमिका ना हो, और इसकी बहुत ही अहम भूमिका है। तो युवाओं को ये जानना जरूरी है कि जो हमारी बिहार कृषि विश्वविद्यालय है ये बिहार सरकार के उद्योग विभाग के अंतर्गत हमारे यहाँ स्टार्टअप सेल भी हैं और इनक्यूबेशन सेंटर भी हैं, जो कि राज्य के सर्वश्रेष्ठ केंद्रों में से शीर्ष स्थान पर आते हैं। तो अगर हम BAU की बात करें तो ये एक स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। जो हमारा स्टार्टअप सेल है, इनक्यूबेशन सेंटर है, ये युवाओं को बहुत ही मदद करता है, जैसे कि वैज्ञानिक प्रमाणीकरण में, अनुसंधान सहायता में, प्रोटोटाइप परीक्षण में, किसान परीक्षण में, मेंटरशिप में, और इनक्यूबेशन जैसी सुविधाएं, जैसा कि मैंने पहले भी बताया इनक्यूबेशन में हम मेंटरशिप सेशन देते हैं उनको समय समय पर, उनको कहाँ से फंड उपलब्ध, इवन हम जैसे स्टार्टअप सेल है तो उनको जब स्टार्टअप बिहार पॉलिसी के लिए अप्लाई करना होता है तो हम उसमें भी उनको मदद करते हैं। और जैसा मैंने बताया कि जो हमारे जो ये दोनों सेंटर हैं ये बिहार सरकार के उद्योग विभाग के अंतर्गत आते हैं, तो हमें वहाँ से ही जो जो सेलेक्टेड स्टार्टअप्स होते हैं उनको अटैच किया जाता है। तो हमारे कई सारे स्टार्टअप्स जो हैं बिहार सरकार के द्वारा यहाँ पे अटैच्ड हैं, जो कि बहुत ही अच्छा ग्रो कर रहे हैं ऑलरेडी। तो अगर BAU की भूमिका की बात है तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण अंग प्रदेश, इस अंग की धरती पर और इस इधर के क्षेत्रों के लिए इसकी जो भूमिका है वो बहुत ही अहम है। और स्टार्टअप में रोजगार देने में इसमें ना सिर्फ केवल सिर्फ स्टार्टअप सेल और इनक्यूबेशन सेंटर, बल्कि अगर बात करें तो नेशनल लेवल पे भी यहाँ पे सब एग्री है जो कि फंडिंग करती है, और जो जो भी उद्यमिता की ओर बढ़ना चाहते हैं ऐसे युवाओं को हम बहुत ही आगे बढ़ने में मदद करते हैं।
2: जी मैम, मैम अगर आप कार्यक्रम के अंत में युवाओं को कुछ संदेश देना चाहेंगे तो क्या आप संदेश देंगे?
3: मैं बिहार के सभी युवाओं से यही कहना चाहूंगी कि आज अवसरों की कोई कमी नहीं है, अगर आपके पास कोई नया विचार है, कोई नई समस्या जो है हमारे पास उसका समाधान है, या समाज में बदलाव लाने की इच्छा है, प्रबल इच्छा है, तो उसे केवल सपना बनाकर ना रखें। स्टार्टअप बिहार पॉलिसी जो है वो आपके सपनों को उड़ान देने के लिए तैयार है। आवश्यकता है तो केवल आत्मविश्वास का, नवाचार का और निरंतर प्रयास का। तो मैं इन लोगों से, जो हमारे युवा वर्ग हैं, उनसे यही मैं कहना चाहूंगी कि याद रखिए, एक अच्छा विचार केवल आपके जीवन को ही नहीं बदल सकता, बल्कि पूरे समाज को नई दिशा दे सकता है।
2: जी मैम, आपने बहुत अच्छी बात कही मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
3: धन्यवाद उमा।
2: दोस्तों, जैसे कि मैम ने कहा कि अगर आपके पास कोई नया विचार है और उसमें समाज को भी बदलने की एक नई दिशा देने की क्षमता है, तो आप बिल्कुल अपने विचार को आगे बढ़ाइए, और इसमें आपका पूरा पूरा साथ देता है स्टार्टअप बिहार पॉलिसी, आपके सपनों को उड़ान देता है। दोस्तों, इन्हीं कुछ बातों के साथ हमें दीजिए अभी इजाजत। आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहिए। नमस्कार।
4: उन्नत कृषि,

0: है।
1: क्या आप तैयार हैं आम के अद्भुत संसार से रूबरू होने के लिए? बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर लेकर आ रहा है राष्ट्रीय आम समागम 2026, जिसका आयोजन 27 से 28 जून तक किया जाएगा। आइए और देखिए देश भर की सैकड़ों आम किस्मों की आकर्षक प्रदर्शनी, जहां स्वाद, सुगंध और रंगों का अनूठा संगम आपका स्वागत करेगा। इस विशेष आयोजन की थीम है स्वाद, संस्कृति और समृद्धि का संगम। आम समागम में किसानों, वैज्ञानिकों, उद्यमियों और आम प्रेमियों को एक ही मंच पर आने का अवसर मिलेगा। कार्यक्रम के दौरान आयोजित होगी राष्ट्रीय कार्यशाला, जिसका विषय है आधुनिक तकनीक से गुणवत्ता युक्त उत्पादन, भंडारण एवं प्रसंस्करण। देश के प्रतिष्ठित विशेषज्ञ आम उत्पादन, मूल्य संवर्धन और प्रसंस्करण की आधुनिक तकनीकों पर अपने अनुभव साझा करेंगे। इस अवसर पर आयोजित होगा किसान वैज्ञानिक सम्मान समारोह, जिसमें बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश के उत्कृष्ट आम उत्पादकों को बेस्ट मैंगो फार्मर अवार्ड प्रदान किया जाएगा। महिला आम उत्पादकों एवं मूल्य संवर्धन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिला उद्यमियों के लिए भी विशेष सम्मान और नगद पुरस्कार की व्यवस्था की गई है। और अब आपके लिए एक सुनहरा अवसर, यदि आपके बाग में उत्कृष्ट गुणवत्ता के आम हैं या आपके पास किसी विशेष किस्म के आम उपलब्ध हैं, आप भी आम प्रदर्शनी में अपनी आम की किस्मों को प्रदर्शित कर सकते हैं। आपकी प्रविष्टियों का मूल्यांकन विशेषज्ञों द्वारा किया जाएगा और चयनित प्रतिभागियों को आकर्षक पुरस्कार एवं नगद राशि से सम्मानित किया जाएगा। और हाँ, आम प्रेमियों के लिए होगा एक विशेष आकर्षण, मैंगो ईटिंग प्रतियोगिता। इस रोमांचक प्रतियोगिता के विजेताओं को भी आकर्षक नगद पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। तो देर किस बात की, अपने श्रेष्ठ आमों के साथ आइए, प्रदर्शनी में भाग लीजिए, विशेषज्ञों से सीखिए, नई तकनीकों को जानिए और आकर्षक पुरस्कार जीतने का अवसर पाइए। 27 से 28 जून राष्ट्रीय आम समागम 2026 बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है।

0: मीनू, राजू, पिन्नी और
1: तुम्हारे वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
0: 11 दोस्त?
1: टीकू, वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
0: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
1: मगर टीकू, कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
0: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं, या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
0: टीकी, तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा, सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है, तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। UN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
2: याद रखो,
0: आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।
3: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
4: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
3: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
4: आपकी सेहत की बातें,
3: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
4: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
3: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
4: वो कहाँ पर?
3: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
4: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
3: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 20 से 24 जून के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी आने और साथ ही हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 25 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 60 से 70 प्रतिशत और दोपहर में 25 से 30 प्रतिशत रहने की संभावना है। साथ ही अनुमान है कि 20 से 24 जून के दौरान 8 से 9 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दक्षिण पूर्वी हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए। जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं, उन्हें बता दें, धान की मध्यम अवधि वाली किस्में जैसे संतोष, सीता, सरोज, सहभागी धान और राजेंद्र श्वेता और सुगंधित किस्में जैसे राजेंद्र धान की मध्यम अवधि वाली किस्में हैं संतोष, सीता, सरोज, सहभागी धान और राजेंद्र श्वेता, और सुगंधित किस्में जैसे राजेंद्र सुवासिनी, राजेंद्र कस्तूरी और राजेंद्र भगवती। किसान भाई बहनों, इन किस्मों की नर्सरी में बुआई जरूर कर लें। जो मक्का की खेती करना चाहते हैं उन्हें बता दें, खरीफ मक्का की बुआई आसमान साफ रहने पर ही करें और खेत की जुताई में 10 से 15 टन गोबर की सड़ी खाद प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें। ध्यान रखें कि बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 30 किलोग्राम नेत्रजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटाश जरूर डालना चाहिए। और आपको बता दें, अनुशंसित मक्का की किस्में हैं सुवान, देवकी, शक्तिमान 1, शक्तिमान 2, राजेंद्र संकर मक्का 3, गंगा 11। जिनके खेत में मूंग लगे हैं, उन्हें बता दें, मूंग की तैयार फलियों की तुड़ाई कर ले और हरी खाद के लिए उसके पौधों को मिट्टी पलटने वाले हल से जमीन में गाड़ दे। जो सब्जियों की खेती करते हैं, उन्हें बता दें, भिंडी, कद्दू, खीरा, नेनुआ और लौकी जैसी फसलों की निराई गुड़ाई जरूर करें। साथ ही खर पतवार नियंत्रित करना भी बहुत जरूरी होता है। पत्ती खाने वाले सुंडियों और फल छेदक कीटों की नियमित निगरानी करें, और अगर आपकी सब्जियों में पत्ती खाने वाले सुंडियों या फल छेदक कीटों का प्रकोप दिखाई दे, तो ऐसी स्थिति में डाइमिथो 8 30 सीसी की 1 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। जो खरीफ सब्जियों की खेती करते हैं, उन्हें बता दें, खरीफ प्याज की खेती के लिए नर्सरी यानी कि बीज स्थली की तैयारी तभी करें जब आसमान साफ हो। स्वस्थ पौधों के लिए नर्सरी में गोबर की खाद जरूर डालें और खरीफ प्याज के लिए NO53, एग्री फाउंड डार्क रेड, अर्का कल्याण, सीमा सुपर, ये किस्में अनुशंसित है। प्याज के बीज की व्यवस्था प्रमाणित स्रोत से ही करें और ध्यान दें कि बीज गिराने के पहले बीजोपचार करना बहुत जरूरी होता है। बीजोपचार करने से आपके पौधे स्वस्थ होते हैं और फसल अच्छी होती है। बीज की दर 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, लीची तोड़ने के बाद खासकर बरसात शुरू होने से पहले बगीचे की जुताई जरूर कर ले और खाद उर्वरकों का प्रयोग तभी करें जब आसमान साफ हो। प्रति प्रौढ़ पेड़ 60 से 80 किलोग्राम सड़ी गोबर की खाद, 2.5 किलोग्राम यूरिया, 1.5 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट और 1 किलो 300 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश और 50 ग्राम सुहागा मिलाकर वृक्ष के चारों ओर समान रूप से मिट्टी में मिला दें। पशुपालक भाई बहन ध्यान दें, गलाघोटू और लंगड़ी रोगों से बचाव के लिए टीकाकरण कराने की जरूरत होती है, इसलिए सभी दुधारू पशुओं में टीकाकरण जरूर कराएं और नए गेहूं के भूसा को खिलाने से पहले ध्यान दें कि करीब 2 घंटा नए गेहूं के भूसा को पानी में फुला ले और 50 ग्राम खनिज मिश्रण और 50 ग्राम नमक चारा दाना मिलाकर दें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

आप हर समय थकान महसूस करते हैं, छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है, ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है, बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर आप सबका स्वागत करता है स्वाद संस्कृति और समृद्धि के संगम राष्ट्रीय आम समागम सह कार्यशाला में। तारीख याद रखें 27 से 28 जून 2026।

क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।

तैयार है आम के अद्भुत संसार से रूबरू होने के लिए। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर लेकर आ रहा है राष्ट्रीय आम समागम 2026, जिसका आयोजन 27 से 28 जून तक किया जाएगा। आइए और देखिए देश भर की सैकड़ों आम किस्मों की आकर्षक प्रदर्शनी, जहां स्वाद, सुगंध और रंगों का अनूठा संगम आपका स्वागत करेगा। इस विशेष आयोजन की थीम है स्वाद, संस्कृति और समृद्धि का संगम। आम समागम में किसानों, वैज्ञानिकों, उद्यमियों और आम प्रेमियों को एक ही मंच पर आने का अवसर मिलेगा। कार्यक्रम के दौरान आयोजित होगी राष्ट्रीय कार्यशाला, जिसका विषय है आधुनिक तकनीक से गुणवत्ता युक्त उत्पादन, भंडारण एवं प्रसंस्करण। देश के प्रतिष्ठित विशेषज्ञ आम उत्पादन, मूल्य संवर्धन और प्रसंस्करण की आधुनिक तकनीकों पर अपने अनुभव साझा करेंगे। इस अवसर पर आयोजित होगा किसान वैज्ञानिक सम्मान समारोह, जिसमें बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश के उत्कृष्ट आम उत्पादकों को बेस्ट मैंगो फार्मर अवार्ड प्रदान किया जाएगा। महिला आम उत्पादकों एवं मूल्य संवर्धन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिला उद्यमियों के लिए भी विशेष सम्मान और नगद पुरस्कार की व्यवस्था की गई है। और अब आपके लिए एक सुनहरा अवसर, यदि आपके बाग में उत्कृष्ट गुणवत्ता के आम हैं या आपके पास किसी विशेष किस्म के आम उपलब्ध हैं, आप भी आम प्रदर्शनी में अपनी आम की किस्मों को प्रदर्शित कर सकते हैं। आपकी प्रविष्टियों का मूल्यांकन विशेषज्ञों द्वारा किया जाएगा और चयनित प्रतिभागियों को आकर्षक पुरस्कार एवं नगद राशि से सम्मानित किया जाएगा। और हाँ, आम प्रेमियों के लिए होगा एक विशेष आकर्षण, मैंगो ईटिंग प्रतियोगिता। इस रोमांचक प्रतियोगिता के विजेताओं को भी आकर्षक नगद पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। तो देर किस बात की, अपने श्रेष्ठ आमों के साथ आइए, प्रदर्शनी में भाग लीजिए, विशेषज्ञों से सीखिए, नई तकनीकों को जानिए और आकर्षक पुरस्कार जीतने का अवसर पाइए। 27 से 28 जून राष्ट्रीय आम समागम 2026 बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है।

0: पक्षियों को उड़ता देख साथ मुझे आई एक भूली कहानी याद।
1: कौन सी कहानी टीकी?
0: उस जालिम शिकारी की जो आया था करने पंछियों का शिकार।
2: हमें भी वो कहानी बताओ ना।
0: एक था शिकारी जिसने चिड़ियों का शिकार करने को चुपके से बिछाया जाल, लेकिन जाल को सब चिड़िया फुर्र से ले उड़ी साथ।
3: माथा पीटता रह गया शिकारी, एक भी चिड़िया लगी ना हाथ।
0: तो दोस्तों, बीमारी का राक्षस भी बिछाए बैठा है एक जाल, अगर बच्चों का टीकाकरण छूटा तो कर देगा सबको बीमारी से बेहाल।
1: तो इस राक्षस से कैसे बचना है?
0: तो 5 साल या उनसे छोटे बच्चों के मम्मी पापा, सभी सुनो एक जरूरी बात, अगर सभी बच्चों का होगा टीकाकरण एक साथ तो बीमारी के राक्षस का भी हो जाएगा खात्मा उसके साथ।
3: टीका सुरक्षित है, टीका जाने व बीमारियों से बचाता है।
4: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
5: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 ग्रीन FM।

बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 20 से 24 जून के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी आने और साथ ही हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 25 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 60 से 70% और दोपहर में 25 से 30% रहने की संभावना है। साथ ही अनुमान है कि 20 से 24 जून के दौरान 8 से 9 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दक्षिण पूर्वी हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए, जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दें, धान की मध्यम अवधि वाली किस्में जैसे संतोष, सीता, सरोज, सहभागी धान और राजेंद्र श्वेता और सुगंधित किस्में जैसे राजेंद्र धान की मध्यम अवधि वाली किस्में हैं संतोष, सीता, सरोज, सहभागी धान और राजेंद्र श्वेता और सुगंधित किस्में जैसे राजेंद्र सुवासिनी, राजेंद्र कस्तूरी और राजेंद्र भगवती। किसान भाई बहनों इन किस्मों की नर्सरी में बुआई जरूर कर लें। जो मक्का की खेती करना चाहते हैं उन्हें बता दें, खरीफ मक्का की बुआई आसमान साफ रहने पर ही करें और खेत की जुताई में 10 से 15 टन गोबर की सड़ी खाद प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें। ध्यान रखें कि बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 30 किलोग्राम नेत्रजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटाश जरूर डालना चाहिए। और आपको बता दें अनुशंसित मक्का की किस्में हैं सुआन, देवकी, शक्तिमान 1, शक्तिमान 2, राजेंद्र संकर मक्का 3, गंगा 11। जिनके खेत में मूंग लगे हैं उन्हें बता दें, मूंग की तैयार फलियों की तुड़ाई कर ले और हरी खाद के लिए उसके पौधों को मिट्टी पलटने वाले हल से जमीन में गाड़ दें। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दें, भिंडी, कद्दू, खीरा, नेनुआ और लौकी जैसी फसलों की निराई गुड़ाई जरूर करें। साथ ही खर पतवार नियंत्रित करना भी बहुत जरूरी होता है। पत्ती खाने वाले सुंडियों और फल छेदक कीटों की नियमित निगरानी करें और अगर आपकी सब्जियों में पत्ती खाने वाले सुंडियों या फल छेदक कीटों का प्रकोप दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में डाइमिथोएट 30 cc की 1 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। जो खरीफ सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दें, खरीफ प्याज की खेती के लिए नर्सरी

उर्वरकों का प्रयोग तभी करें जब आसमान साफ हो। प्रति प्रौढ़ पेड़ 60 से 80 किलोग्राम सड़ी गोबर की खाद, 2.5 किलोग्राम यूरिया, 1.5 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट और 1 किलो 300 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश और 50 ग्राम सुहागा मिलाकर वृक्ष के चारों ओर समान रूप से मिट्टी में मिला दें। पशुपालक भाई बहन ध्यान दें, गला घोटू और लंगड़ी रोगों से बचाव के लिए टीकाकरण कराने की जरूरत होती है, इसलिए सभी दुधारू पशुओं में टीकाकरण जरूर कराएं और नए गेहूं के भूसा को खिलाने से पहले ध्यान दें कि करीब 2 घंटा नए गेहूं के भूसा को पानी में फुला लें और 50 ग्राम खनिज मिश्रण और 50 ग्राम नमक चारा दाना मिलाकर दें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

आप हर समय थकान महसूस करते हैं, छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है, ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है, बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर आप सबका स्वागत करता है स्वाद संस्कृति और समृद्धि के संगम राष्ट्रीय आम समागम सह कार्यशाला में। तारीख याद रखें 27 से 28 जून 2026।

क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं।

0: കൃഷി. बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन. मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा. दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है हम किसान भाई बहनों को संबोधित हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में. दोस्तों आज उन्नत कृषि में हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने वाले हैं जो केवल हमारी आमदनी ही नहीं बढ़ाता बल्कि आने वाली पीढ़ी की सेहत से जुड़ा है, यानी कि बहुत महत्वपूर्ण है. और आज हम बात करने वाले हैं पोषण सुरक्षा के बारे में. और इस बारे में बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर नेहा पांडे. मैम आप हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से, आप हैं कृषि प्रसार शिक्षा विभाग से, आप हैं सहायक प्राध्यापक. मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में.
1: नमस्कार उमा जी और मेरे सभी श्रोता किसान भाइयों को मेरा प्रणाम.
0: मैम हम अक्सर खेती में पैदावार की बात करते हैं लेकिन आज हम पोषण की बात करने वाले हैं. और मैम सबसे पहले मैं चाहूंगी कि आप हमारे किसान भाई बहनों को बताएं कि आखिर पोषण सुरक्षा क्या है और एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन जिसे कि हम कृषि प्रसार भी कहते हैं उसकी क्यों ज़रूरत है.
1: जी देखिए बहुत ही ज़रूरी सवाल है. आम तौर पर हमें लगता है कि अगर पेट भर गया है तो काम हो गया, लेकिन पोषण सुरक्षा का मतलब केवल पेट भरना नहीं बल्कि शरीर को वो सभी ज़रूरी तत्व देना है, जैसे कि प्रोटीन, विटामिन्स, खनिज पदार्थ जो बीमारियों से लड़ने की हमें ताकत देता है. धान और गेहूं जैसे इनसे तो ऊर्जा मिल जाती है लेकिन शरीर को दालों और जो सब्जियां हैं इनसे जो प्रोटीन और खनिज पदार्थ है वो भी चाहिए. बिहार में हमारी मिट्टी बहुत उपजाऊ है लेकिन अगर हम केवल दो ही फसल उगाएंगे तो हमारे भोजन की थाली में विविधता खत्म हो जाएगी. इसी को बदलने के लिए कृषि विस्तार यानी एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन की ज़रूरत है.
0: जी मैम, और मैं आपसे अब मैं जानना चाहूँगी और चाहूँगी कि आप थोड़ा और अच्छे से बताएं, विस्तार से बताएं कृषि विस्तार के बारे में और किसान भाई बहन इसे कैसे जोड़ सकते हैं.
1: जी कृषि विस्तार का मतलब है प्रयोगशाला से जानकारी को खेत तक पहुँचाना. हमारे कृषि समन्वयक और कृषि विज्ञान केंद्र हर जिले में हैं. वे किसानों को बताते हैं कि कौन सी नई बीज की किस्में आई हैं, कहाँ बाढ़ ग्रसित क्षेत्र है और कहाँ सुखाड़ क्षेत्र है, इन क्षेत्रों के लिए कौन सी बीज विकसित हुई है और जो भी ज़्यादा पोषक तत्व वाले किस्में हैं वो कहाँ कहाँ लगाएं और कहाँ पर ये अच्छी उपज देगी.
0: मैम एक और बात कि किसान भाई बहन पोषण सुरक्षा में और क्या क्या कर सकते हैं.
1: पोषण सुरक्षा के मुख्यतः तीन मुख्य मंत्र हैं. पहला फसल विविधीकरण, जिसमें कि न केवल धान गेहूँ बल्कि दालें, तिलहन और मोटे अनाज उगाए जा सकते हैं जैसे कि मक्का, बाजरा, मड़ुआ. और दूसरा मुख्य मंत्र है पोषण वाटिका, जिसे हम किचन गार्डन भी आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं, जिसे हम घर के पीछे अपनी जो खाली ज़मीन है उस पर सहजन, पालक, टमाटर और फलदार पेड़ लगा सकते हैं. और तीसरा मूल मंत्र है एकीकृत खेती. खेती के साथ साथ पशुपालन और मछली पालन को भी हम इसमें जोड़ सकते हैं.
0: मैम कई बार ऐसा होता है ना कि किसान भाई बहन पैसों की कमी की वजह से ये सब नहीं कर पाते हैं, तो क्या ऐसे में सरकार इनकी कोई मदद कर रही है या करती है.
1: जी ज़रूर, कई बार सरकार इसमें बहुत ही बेहतरीन योजनाओं के द्वारा मदद कर रही है. जैसे कि पहला है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, इसके तहत दालों और मोटे अनाज के उत्पादन के लिए मुफ्त बीज और ट्रेनिंग मिलती है. दूसरा है पोषण अभियान, इसका मकसद महिलाएं और बच्चों में कुपोषण को ख़त्म करना. आंगनबाड़ी और कृषि विभाग इसमें मिलकर काम कर रहे हैं. तीसरा परंपरागत कृषि विकास योजना, इसके ज़रिए आप जैविक खेती कर सकते हैं, बिना रासायनिक खाद के उगे अनाज ज़्यादा पोषक और बाज़ार में महंगे ज़रूर बिकते हैं. और चौथा है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, इससे आप टपक सिंचाई अपनाकर कम पानी में भी सब्जी और फल उगा सकते हैं.
0: तो मैम इन योजनाओं का लाभ उठाने के लिए हमें क्या करना होगा, क्या हमें ब्लॉक जाना होगा.
1: जी आप अपने क्षेत्र के कृषि समन्वयक से मिल सकते हैं और सीधे कृषि विज्ञान केंद्र भी आ सकते हैं. अब तो कोई योजनाओं का लाभ आप सीधे ऑनलाइन पंजीकरण से भी कर सकते हैं.
0: मैम मैं चाहती हूँ कि आप इस बारे में और भी विस्तृत जानकारी दें, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के बारे में जिसे कि हम NFSM कहते हैं, और क्या इससे हमारे किसान भाई बहनों को क्या फ़ायदा मिलता है और किस तरीके से वो इसका लाभ उठा सकते हैं, इसके लाभ के लिए पात्रता क्या होनी चाहिए और आवेदन कैसे कर सकते हैं?
1: जी ज़रूर। तो तीन सवाल आपने किया है कि इसके लाभ क्या है, पात्रता क्या है और आवेदन कैसे कर सकते हैं। तो मैं पहले इसके लाभ के बारे में बताना चाहूँगी कि इसके द्वारा हम नई और उन्नत किस्म के बीजों पर सब्सिडी मिलती है। दालों के लिए लगभग 25 रुपये प्रति केजी और धान गेहूं के लिए लगभग 10 किलो प्रति केजी तक की छूट मिल सकती है, ये बीज वितरण पर। दूसरा हम कर सकते हैं कि कृषि वैज्ञानिक आपके खेत पर आकर नई तकनीकों का प्रदर्शन करते हैं। इसके लिए किसानों को प्रति हेक्टेयर 6,000 से 15,000 तक की सहायता राशि दी जाती है। तीसरा मुख्य लाभ है कि आप जो भी कृषि उपकरण है जैसे कि पंप सेट, स्प्रेयर, सीड ड्रिल, कल्टीवेटर जैसे औजारों पर 50% तक की सब्सिडी मिलती है। और चौथा मुख्य लाभ ये है कि सूक्ष्म पोषक तत्व जो कि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है और जैव उर्वरक जो बायोफर्टिलाइजर्स है इसके इस्तेमाल के लिए भी आर्थिक मदद दी जाती है। दूसरा सवाल आपने किया कि इसकी पात्रता क्या है। तो सभी श्रेणी के किसान, छोटे, सीमांत, बड़े, इस योजना का लाभ ले सकते हैं। योजना में 33% आवंटन छोटे और सीमांत किसानों के लिए, 30% आवंटन महिला किसानों के लिए आरक्षित है। एक किसान एक सीजन में अधिकतम 5 हेक्टेयर तक की सहायता ले सकता है। और रही बात इसको आवेदन करने के लिए, तो इसके आवेदन के लिए आप स्थानीय कृषि कार्यालय, अपने ब्लॉक में किसी भी कृषि विस्तार अधिकारी जो ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर हैं या ग्राम कृषि समन्वयक से मिल सकते हैं। पंजीकरण के लिए अधिकांश राज्यों में इसके लिए ऑनलाइन पोर्टल, जैसे कि अपने बिहार में DBT पोर्टल है, उस पर आप पंजीकरण करा सकते हैं। और दस्तावेज के लिए, आवेदन के लिए आमतौर पर आधार कार्ड, बैंक का पासबुक, फोटोकॉपी, जमीन की कागजात, LPC रसीद और जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है।
0: मैम, अगर इन सारी चीज़ों से जुड़ी हुई और भी जानकारी चाहिए तो उसके लिए हमारे किसान भाई बहन किन से संपर्क कर सकते हैं?
1: जी, अधिक जानकारी के लिए आप अपने जिला के अपने नज़दीकी कृषि विभाग के कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं और कृषि विज्ञान केंद्र और आत्मा के कार्यालय में भी आप संपर्क कर सकते हैं।
0: मैम, अंत में आप किसान भाई बहनों को कोई संदेश देना चाहेंगे?
1: बस इतना कहना चाहूँगी कि स्वस्थ परिवार की शुरुआत खेत से होती है और आप किसान हैं, आप अन्नदाता हैं, आप अगर अपनी थाली में रंग बिरंगी चीज़ें रखेंगे, दालें, सब्जियां, फल, तो देश का भविष्य यानी कि हमारे जो बच्चे हैं वो शुरुआती तौर से बहुत ही मजबूत बनेंगे। धन्यवाद।
0: धन्यवाद मैम, आपने बहुत सारी अच्छी बातें बताई। उम्मीद है कि आज हमारे किसान भाई बहन को समझ आया होगा, उन्होंने ये समझा होगा कि पोषण सुरक्षा के लिए हमें अपनी खेती के जो तरीके हैं उन्हें बदलने की ज़रूरत है और सरकारी योजनाएं हैं उनका लाभ उठाइए। और जैसे कि मैम ने बताया, आप अधिक जानकारी के लिए नज़दीकी कृषि विभाग में जा सकते हैं, वहाँ संपर्क कर सकते हैं। और हम फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।
0: अभी के लिए हमें दीजिए इजाजत, लेकिन जाने से पहले कुछ खास बात कि अपना और अपने फसलों का रखे खूब ख्याल और अपनी मिट्टी से करे ढेर सारा प्यार। नमस्कार।
2: उन्नत कृषि,

0: है।
1: क्या आप तैयार हैं आम के अद्भुत संसार से रूबरू होने के लिए? बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर लेकर आ रहा है राष्ट्रीय आम समागम 2026, जिसका आयोजन 27 से 28 जून तक किया जाएगा। आइए और देखिए देश भर की सैकड़ों आम किस्मों की आकर्षक प्रदर्शनी, जहां स्वाद, सुगंध और रंगों का अनूठा संगम आपका स्वागत करेगा। इस विशेष आयोजन की थीम है स्वाद, संस्कृति और समृद्धि का संगम। आम समागम में किसानों, वैज्ञानिकों, उद्यमियों और आम प्रेमियों को एक ही मंच पर आने का अवसर मिलेगा। कार्यक्रम के दौरान आयोजित होगी राष्ट्रीय कार्यशाला, जिसका विषय है आधुनिक तकनीक से गुणवत्ता युक्त उत्पादन, भंडारण एवं प्रसंस्करण। देश के प्रतिष्ठित विशेषज्ञ आम उत्पादन, मूल्य संवर्धन और प्रसंस्करण की आधुनिक तकनीकों पर अपने अनुभव साझा करेंगे। इस अवसर पर आयोजित होगा किसान वैज्ञानिक सम्मान समारोह, जिसमें बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश के उत्कृष्ट आम उत्पादकों को बेस्ट मैंगो फार्मर अवार्ड प्रदान किया जाएगा। महिला आम उत्पादकों एवं मूल्य संवर्धन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिला उद्यमियों के लिए भी विशेष सम्मान और नगद पुरस्कार की व्यवस्था की गई है। और अब आपके लिए एक सुनहरा अवसर, यदि आपके बाग में उत्कृष्ट गुणवत्ता के आम हैं या आपके पास किसी विशेष किस्म के आम उपलब्ध हैं, आप भी आम प्रदर्शनी में अपनी आम की किस्मों को प्रदर्शित कर सकते हैं। आपकी प्रविष्टियों का मूल्यांकन विशेषज्ञों द्वारा किया जाएगा और चयनित प्रतिभागियों को आकर्षक पुरस्कार एवं नगद राशि से सम्मानित किया जाएगा। और हाँ, आम प्रेमियों के लिए होगा एक विशेष आकर्षण, मैंगो ईटिंग प्रतियोगिता। इस रोमांचक प्रतियोगिता के विजेताओं को भी आकर्षक नगद पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। तो देर किस बात की, अपने श्रेष्ठ आमों के साथ आइए, प्रदर्शनी में भाग लीजिए, विशेषज्ञों से सीखिए, नई तकनीकों को जानिए और आकर्षक पुरस्कार जीतने का अवसर पाइए। 27 से 28 जून राष्ट्रीय आम समागम 2026 बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है।

0: Coco, Kasi.
1: Kasi. Coco, Kasi.
2: खांसी एक, खांसी दो, खांसी तीन, बज गई भैया देश की बीन। टीबी के कारण को जानो, खांसी हो तो मुंह ढक कर खांसो। टीबी रोग हवा में फैले, रखो अपना औरों का ध्यान। घर में धूप रोशनी हवा मिले तो कीटाणु सब मर जाएंगे, रोग मुक्त हम हो जाएंगे। खांसी खोखो खांसी। बलगम में है भरे कीटाणु, रख कागज में इसे जला दो या डाल राख में इसे दबा दो, रहे न टीबी नाम मिटा दो। खांसी खोखो खांसी। टीबी मुक्त भारत बनाए,
3: खुद भी बचे देश भी बचाए।
4: टीबी हारेगा देश जीतेगा।
5: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है किसान भाई बहनों को संबोधित हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। उन्नत कृषि में आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों जब बाजार हम जाते हैं तो वहां पर हर तरह के फल मौजूद होते हैं और वो ज्यादातर फल ऐसे मौजूद होते हैं जो कृत्रिम रूप से पकाए गए होते हैं। लेकिन अक्सर आपने सुना होगा कि जो कृत्रिम रूप से पकाए गए फल होते हैं वो हमारे सेहत के लिए अच्छे नहीं होते। ऐसा क्यों होता है, आपने कभी सोचा है? और इसके पीछे क्या वजह है? और अगर हम कृत्रिम रूप से पकाते हैं तो क्या ये सही है? और अगर सही है तो इसे कृत्रिम रूप से पकाने का सही तरीका क्या है? इसके बारे में आज हम जानेंगे विस्तार से डॉक्टर कुमारी करुणा से। मैम है यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर फ्रूट साइंस से। मैम है BSc सबौर से। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
6: धन्यवाद उमा।
5: मैम सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जब पेड़ पे फल पक रहे हैं तो फिर उसे कृत्रिम रूप से पकाने की क्या जरूरत है?
6: फलों को कृत्रिम रूप से पकाने का मुख्य उद्देश्य परिवहन के दौरान उन्हें खराब होने से बचाना और बाजार की मांग को समय पर पूरा करना होता है। यदि फलों को पेड़ पर ही पूरी तरह पकने दिया जाए तो वे बहुत मुलायम हो जाते हैं और दूर दराज के बाजारों तक पहुँचाने से पहले ही सड़ जाते हैं। इसलिए फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के और भी कई कारण हैं। सर्वप्रथम सुरक्षित परिवहन एवं कम नुकसान का होना। पके फलों की तुलना में कच्चे फलों को तोड़कर आसानी से पैक और ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। इसके अलावा फलों को देश या विदेश के दूरस्थ बाजारों का तक पहुंचाने के लिए कच्चा फल ही तोड़ा जाता है और बाजार पहुँचने के बाद उसे पकाया जाता है। इसका सेल्फ लाइफ भी अच्छा होता है कच्चे फलों का। इसलिए कच्चे फलों को यदि तोड़कर कोल्ड स्टोर में जिसका तापमान 10 से 13 डिग्री सेल्सियस और सापेक्षित आर्द्रता 85 से 90% पर लंबे समय तक बिना सड़े रखा जा सकता है। व्यापारी स्टोर किया हुआ फल को आवश्यकता अनुसार गोदामों से निकाल कर पकाते हैं और बाजार भेजते हैं। कृत्रिम रूप से पकाने पर फल एक समान रंग और रूप का होता है, इसलिए इससे उनका रंग एक समान और चमकदार हो जाता है जो ग्राहकों को आकर्षित करता है। बाजार की मांग, जैसे कि शादी के समय में बाजार में अधिक फलों की आवश्यकता होती है, त्योहारों और शादियों के सीजन में अचानक बढ़ी मांग को पूरा करने के लिए फलों को तेजी से पकाया जाता है। फसल के शुरुआती सीजन में भी फलों को बाजार में पहले लाकर व्यापार अधिक मुनाफा कमाते हैं। इससे किसान भाई को भी फायदा होता है। पहले अगर बाजार में कोई फल आ जाता है तो उसका जो मूल्य है अधिक मिलता है।
5: जी मैम, लेकिन जो बाजार में किसान भाई बहन फलों को पका रहे हैं वो बहुत ही गलत तरीके से पकाया जा रहा है, तो गलत तरीके से अगर हम पकाते हैं, कृत्रिम रूप से पकाते हैं, गलत तरीका इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसे फलों को खाने पर मानव के स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ता है?
6: जैसे कि असुरक्षित तरीका, जैसे भारत में जो भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण बना है 2008 में, द्वारा कैल्शियम कार्बाइड के उपयोग पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया गया है। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि इसमें एसिटिलीन गैस निकलता है और आर्सेनिक और फास्फोरस जैसे जहरीले तत्व भी होते हैं

0: जो कि कैंसर, चक्कर आना और पेट की अन्य बीमारियां पैदा कर सकता है, इसीलिए इस पर बैन लगाया गया है कैल्शियम कार्बाइड पे।
1: लेकिन मैम अभी भी किसान भाई बहन कैल्शियम कार्बाइड का इस्तेमाल करते हैं, और अगर कैल्शियम कार्बाइड का इस्तेमाल करना इतना खतरनाक है तो फिर वो क्या तरीका अपना सकते हैं जो सुरक्षित तरीका हो?
0: सुरक्षित तरीका में वैज्ञानिक रूप से अनुशंसित इथिलीन गैस है, जिससे फल को पकाने पर किसी तरह का हेल्थ प्रॉब्लम नहीं आता है। इथिलीन गैस 100 PPM को ही सुरक्षित एवं वैध माना गया है, क्योंकि यह फलों का एक प्राकृतिक हार्मोन भी है।
1: और अगर हम बात करें कि कृत्रिम रूप से फलों को कैसे पकाएंगे तो वो क्या होगा, उसका प्रोसेस क्या होगा?
0: फलों को कृत्रिम रूप से सुरक्षित तरीके से पकाने के लिए भारत सरकार की संस्था जो है भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण केवल इथिलीन गैस के उपयोग की अनुमति देती है। यह फलों का एक प्राकृतिक हार्मोन है जो स्वास्थ्य को नुकसान नहीं पहुंचाता है। व्यापारिक और घरेलू स्तर पर सुरक्षित रूप से फल पकाने का तरीका है, पहला इथिलीन चैम्बर, इथिलीन रैपेनिंग चैम्बर होता है। इसमें फलों को एक एयर टाइट हवा बंद कमरे में रखा जाता है, वहाँ इथिलीन गैस जनरेटर या सिलेंडर की मदद से 100 PPM की नियंत्रित मात्रा में गैस छोड़ी जाती है। इसके साथ ही कमरे का तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस और नमी 90 से 95% रखी जाती है, जिससे फल 24 से 48 घंटे में प्राकृतिक रूप से पक जाता है। दूसरा है इथिलीन पाउच, पाउच भी इसका आता है। जिन व्यापारियों के पास बड़े चैम्बर नहीं होते हैं वे इथिलीन बनाने वाले छोटे पाउच का उपयोग करते हैं। इस पाउच को फलों की क्रेट या बक्से के बीच में रखा जाता है, नमी मिलने पर इनमें से धीरे धीरे इथिलीन गैस निकलती है जो फलों को पकाती है।
1: मैम अगर बड़े पैमाने पर फलों को ना पकाना हो या फिर हम चाहें कि हम घरेलू स्तर पर फल को पकाएं तो इसकी विधि क्या है?
0: यदि आप घर पर कच्चे फल को सुरक्षित पकाना चाहते हैं तो बताए गए तरीके को अपनाकर आप पका सकते हैं। पहला है कागज के लिफाफे या अखबार में लपेटना। कच्चे फलों को लिफाफे या अखबार में लपेट कर रख दें, इससे फल जो प्राकृतिक रूप से इथिलीन गैस निकालेगा, फल जब पकने लगता है तो उससे इथिलीन गैस अधिक मात्रा में निकलता है, तो जब हम पेपर में लपेटेंगे या लिफाफा में रखेंगे तो वो जमा होते रहेगा इथिलीन गैस, जिससे कि फल पकने की प्रक्रिया में तेजी आएगी। तो इस तरह से हम पका सकते हैं। दूसरा है केले या सेब के साथ रखना। कच्चे फलों को पके हुए केले या सेब के साथ एक डिब्बे में बंद करके रख देने से भी कच्चा फल तेजी से पकने लगता है, क्योंकि पका केला या सेब अधिक मात्रा में इथिलीन गैस छोड़ता है। इसको बंद इसलिए रखते हैं क्योंकि इथिलीन गैस बाहर निकले नहीं, वो गैस है, उसको अंदर में ही रखना है, जिससे कि पकने की प्रक्रिया को तेज किया जा सके।
1: तो इन तरीकों का इस्तेमाल करके हम फलों को सुरक्षित रूप से कृत्रिम रूप से पका सकते हैं, और जिस तरीके से आपने बताया कि अलग अलग केमिकल का या फिर अलग अलग तरीकों से भी पका सकते हैं, घर साथ ही घर पर भी घरेलू स्तर पर हम फलों को पका सकते हैं कृत्रिम रूप से। तो मैम आपने जो बातें बताई वो बहुत ही उपयोगी साबित होगी हमारे किसान भाई बहनों के लिए, और साथ ही जो उन फलों को खाते हैं, जो उन्हें कंज्यूम करते हैं, उनके लिए भी ये काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।
2: उन्नत कृषि

तैयार है आम के अद्भुत संसार से रूबरू होने के लिए। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर लेकर आ रहा है राष्ट्रीय आम समागम 2026, जिसका आयोजन 27 से 28 जून तक किया जाएगा। आइए और देखिए देश भर की सैकड़ों आम किस्मों की आकर्षक प्रदर्शनी, जहां स्वाद, सुगंध और रंगों का अनूठा

संगम आपका स्वागत करेगा। इस विशेष आयोजन की थीम है स्वाद, संस्कृति और समृद्धि का संगम। आम समागम में किसानों, वैज्ञानिकों, उद्यमियों और आम प्रेमियों को एक ही मंच पर आने का अवसर मिलेगा। कार्यक्रम के दौरान आयोजित होगी राष्ट्रीय कार्यशाला, जिसका विषय है आधुनिक तकनीक से गुणवत्ता युक्त उत्पादन, भंडारण एवं प्रसंस्करण। देश के प्रतिष्ठित विशेषज्ञ आम उत्पादन, मूल्य संवर्धन और प्रसंस्करण की आधुनिक तकनीकों पर अपने अनुभव साझा करेंगे। इस अवसर पर आयोजित होगा किसान वैज्ञानिक सम्मान समारोह, जिसमें बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश के उत्कृष्ट आम उत्पादकों को बेस्ट मैंगो फार्मर अवार्ड प्रदान किया जाएगा। महिला आम उत्पादकों एवं मूल्य संवर्धन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिला उद्यमियों के लिए भी विशेष सम्मान और नगद पुरस्कार की व्यवस्था की गई है। और अब आपके लिए एक सुनहरा अवसर, यदि आपके बाग में उत्कृष्ट गुणवत्ता के आम हैं या आपके पास किसी विशेष किस्म के आम उपलब्ध हैं, आप भी आम प्रदर्शनी में अपनी आम की किस्मों को प्रदर्शित कर सकते हैं। आपकी प्रविष्टियों का मूल्यांकन विशेषज्ञों द्वारा किया जाएगा और चयनित प्रतिभागियों को आकर्षक पुरस्कार एवं नगद राशि से सम्मानित किया जाएगा। और हाँ, आम प्रेमियों के लिए होगा एक विशेष आकर्षण, मैंगो ईटिंग प्रतियोगिता। इस रोमांचक प्रतियोगिता के विजेताओं को भी आकर्षक नगद पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। तो देर किस बात की, अपने श्रेष्ठ आमों के साथ आइए, प्रदर्शनी में भाग लीजिए, विशेषज्ञों से सीखिए, नई तकनीकों को जानिए और आकर्षक पुरस्कार जीतने का अवसर पाइए। 27 से 28 जून राष्ट्रीय आम समागम 2026 बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है।

0: टीनू, नीनू, राजू, पिन्नी और
1: तुम्हारे वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
0: 11 दोस्त
1: टीकू, वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
0: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
1: मगर टीकू, कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
0: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं, या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
0: टीकी, तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा, सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है, तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। UN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
2: याद रखो,
0: आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।
3: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
4: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
3: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
4: आपकी सेहत की बातें,
3: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
4: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
3: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
4: वो कहाँ पर?
3: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
4: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
3: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 20 से 24 जून के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी आने और साथ ही हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 25 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 60 से 70 प्रतिशत और दोपहर में 25 से 30 प्रतिशत रहने की संभावना है। साथ ही अनुमान है कि 20 से 24 जून के दौरान 8 से 9 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दक्षिण पूर्वी हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए, जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं, उन्हें बता दें, धान की मध्यम अवधि वाली किस्में जैसे संतोष, सीता, सरोज, सहभागी धान और राजेंद्र श्वेता, और सुगंधित किस्में जैसे राजेंद्र धान की मध्यम अवधि वाली किस्में हैं संतोष, सीता, सरोज, सहभागी धान और राजेंद्र श्वेता, और सुगंधित किस्में जैसे राजेंद्र सुवासिनी, राजेंद्र कस्तूरी और राजेंद्र भगवती। किसान भाई बहनों, इन किस्मों की नर्सरी में बुआई जरूर कर लें। जो मक्का की खेती करना चाहते हैं, उन्हें बता दें, खरीफ मक्का की बुआई आसमान साफ रहने पर ही करें और खेत की जुताई में 10 से 15 टन गोबर की सड़ी खाद प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें। ध्यान रखें कि बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 30 किलोग्राम नेत्रजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटाश जरूर डालना चाहिए। और आपको बता दें, अनुशंसित मक्का की किस्में हैं सुआन, देवकी, शक्तिमान 1, शक्तिमान 2, राजेंद्र संकर मक्का 3, गंगा 11। जिनके खेत में मूंग लगे हैं, उन्हें बता दें, मूंग की तैयार फलियों की तुड़ाई कर ले और हरी खाद के लिए उसके पौधों को मिट्टी पलटने वाले हल से जमीन में गाड़ दे। जो सब्जियों की खेती करते हैं, उन्हें बता दें, भिंडी, कद्दू, खीरा, नेनुआ और लौकी जैसी फसलों की निराई गुड़ाई जरूर करें। साथ ही खर पतवार नियंत्रित करना भी बहुत जरूरी होता है। पत्ती खाने वाले सुंडियों और फल छेदक कीटों की नियमित निगरानी करें, और अगर आपकी सब्जियों में पत्ती खाने वाली सुंडियों या फल छेदक कीटों का प्रकोप दिखाई दे, तो ऐसी स्थिति में डाइमेथोएट 30 cc की 1 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। जो खरीफ सब्जियों की खेती करते हैं, उन्हें बता दें, खरीफ प्याज की खेती के लिए नर्सरी यानी कि बीज स्थली की तैयारी तभी करें जब आसमान साफ हो। स्वस्थ पौधों के लिए नर्सरी में गोबर की खाद जरूर डालें और खरीफ प्याज के लिए NO53, एग्री फाउंड डार्क रेड, अर्का कल्याण, सीमा सुपर, ये किस्में अनुशंसित है। प्याज के बीज की व्यवस्था प्रमाणित स्रोत से ही करें और ध्यान दें कि बीज गिराने के पहले बीजोपचार करना बहुत जरूरी होता है। बीजोपचार करने से आपके पौधे स्वस्थ होते हैं और फसल अच्छी होती है। बीज की दर 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, लीची तोड़ने के बाद खासकर बरसात शुरू होने से पहले बगीचे की जुताई जरूर कर ले और खाद उर्वरकों का प्रयोग तभी करें जब आसमान साफ हो। प्रति प्रौढ़ पेड़ 60 से 80 किलोग्राम सड़ी गोबर की खाद, 2.5 किलोग्राम यूरिया, 1.5 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट और 1 किलो 300 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश और 50 ग्राम सुहागा मिलाकर वृक्ष के चारों ओर समान रूप से मिट्टी में मिला दें। पशुपालक भाई बहन ध्यान दें, गलाघोटू और लंगड़ी रोगों से बचाव के लिए टीकाकरण कराने की जरूरत होती है, इसलिए सभी दुधारू पशुओं में टीकाकरण जरूर कराएं और नए गेहूं के भूसा को खिलाने से पहले ध्यान दें कि करीब

दो घंटा नए गेहूं के भूसा को पानी में फुला ले और 50 ग्राम खनिज मिश्रण और 50 ग्राम नमक चारा दाना मिलाकर दें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

आप हर समय थकान महसूस करते हैं, छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है, ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है, बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर आप सबका स्वागत करता है स्वाद संस्कृति और समृद्धि के संगम राष्ट्रीय आम समागम सह कार्यशाला में। तारीख याद रखें 27 से 28 जून 2026।

क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।

0: ഉന്നത് കൃഷി. नमस्कार, आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो 90.8 FM ग्रीन. और साथ ही हम आपको बता दें कि उन्नत कृषि कार्यक्रम में आज एक विषय लेकर फिर से हाजिर हैं हम एक नए विषय के साथ, और विषय है गोभी वर्गीय फसलों में समेकित कीट प्रबंधन. जी हाँ श्रोताओं, आज गोभी वर्गीय फसलों के बारे में हम जानेंगे और इसमें कीट प्रबंधन कैसे किया जाए उसके बारे में जानेंगे. तो इस विषय को लेकर आज हमारे बीच हैं डॉक्टर रंजीत कुमार. मैं आपको बता दूं ये सहायक प्राध्यापक हैं सहकनीय वैज्ञानिक कीट विज्ञान विभाग वीर कुंवर सिंह कृषि महाविद्यालय डुमराव से, बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से हैं. डॉक्टर साहब, आपका सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में.
1: धन्यवाद मैडम.
0: डॉक्टर साहब, गोभी वर्गीय फसलों के मुख्य कीट कौन कौन से होते हैं सबसे पहले तो ये बता दें हमारे सभी श्रोताओं को.
1: सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार. गोभी वर्गीय फसलों में मुख्य रूप से जो कीट लगते हैं इस समय, उसमें से सबसे प्रमुख कीट है हीरक पृष्ठ पतंगा, दूसरी कीट है माहू, तीसरा कीट तंबाकू की सूढ़ी जिसको टोबैको कैटरपिलर कहते हैं, और चौथे कीट है जिसे हम चना के फली छेदक कीट कहते हैं. इन चारों कीटों का मुख्य रूप से गोभी वर्गीय फसल जैसे पत्ता गोभी, फूल गोभी, मूली, उसके बाद जो सलजम होती है, इन सारी फसलों पर इन कीटों का प्रकोप बहुतायत हमारे प्रदेश में देखने को मिलता है.
0: डॉक्टर साहब, गोभी वर्गीय फसलों की हम बात कर रहे हैं तो ये सबसे ज्यादा नुकसान किन किन कीटों से होता है इसे?
1: जी किसान भाई, आप सभी गोभी वर्गीय फसलों की खेती करते हैं और हमारे प्रदेश में बहुतायत तौर पर गोभी वर्गीय फसल उपजाई जाती है, और इसमें जो सर्वाधिक नुकसान पहुंचाने वाले कीट हैं उसमें तंबाकू की सूढ़ी, हीरक पृष्ठ पतंगा और चने का फली छेदक कीट. सामान्य तौर पर आप सभी किसान भाई देखे होंगे कि कभी कभी पूरी पत्तियां काट करके कीट पूरा उसको पेपर जैसा बना देता है, पूरा छलनी जैसे जाली नुमा संरचना बन जाती है. ये शुरुआत की अवस्था होती है. उसके बाद की जो अवस्था होती है, पत्ता गोभी की अगर बात करें तो पत्ता गोभी में पूरे छेद छेद से बन जाते हैं और वो मानवीय उपयोग के लायक नहीं बच पाता है. फूल गोभी की अगर बात करें तो फूल गोभी के ऊपर इन्हीं सारे पिल्लू के द्वारा इस तरह से खान लिए जाते हैं कि वो खाने के अब प्रयोग में नहीं लाया जा सकता है, और साथ ही साथ उसे हमें आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ता है. इसकी जो मादा होती है पत्तियों के ऊपर, और गोभी की जो निचली भाग होती है, जो जमीन से थोड़ा जड़ से ऊपर की भाग होती है, उन पर ये मादा अंडा देती है. अंडा देने के 4 से 5 दिन के बाद ये पिल्लू बन जाते हैं, और पिल्लू की जो अवस्था होती है वो सबसे ज्यादा क्षतिकारक होती है और वो सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है, जिससे हमारे किसानों को आर्थिक क्षति का सामना करना पड़ता है. साथ ही साथ उनकी सारी मेहनत पर पानी फिर जाती है और उनको मूल्य प्राप्त नहीं हो पाता है, और इनकी पिल्लू उस इस तरह से नुकसान करने लगती है, और साथ ही साथ उनके जो एक्सक्रीटा होते हैं, जो मल मूत्र वो पिल्लू त्यागते हैं, उस गोभी के ऊपर आ जाते हैं, जिससे देखने में भी खराब दिखने लगता है और आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ता है. जैसे ही ये पिल्लू कोसा की अवस्था में आते हैं तो मिट्टी के अंदर कोसा की अवस्था में या सुसुप्ता अवस्था में पड़े रहते हैं और बाद में फिर तितली बन करके निकलती है. इस तरह से उनके जीवन चक्र चलते रहते हैं. अगर हम बात कर लें कि हीरक पृष्ठ पतंगा का, तो किसान भाई सबसे बढ़िया पहचान इसकी ये है कि हीरक पृष्ठ पतंगा के जो व्यस्क कीट होता है नर और मादा, इसके पीठ पर चमकती हुई धारी बनी रहती है. आप उसे गौर से अपने खेतों में देखेंगे तो ये लंबी लंबी सी जो व्यस्क है इसके पीठ के ऊपर चमकता हुआ पीले रंग का धारी बनी रहती है. भूरे रंग के कीट के ऊपर पीले रंग की धारी बनी रहती है, जिससे हम आसानी से पहचान सकते हैं. और तंबाकू की सूढ़ी की बात करें तो इसके जो व्यस्क कीट होते हैं, इसके पंखों के ऊपर गोल गोल संरचना बनी रहती है, जो धूसर काले रंग के होते हैं और उस पर पीले चमकीले रंग की गोल संरचना बनी रहती है, तो इससे इन कीट की पहचान कर सकते हैं।
0: तो डॉक्टर साहब, ये तो बातें हो गई हैं कि कौन कौन से कीट जो हैं नुकसान पहुंचाते हैं ज्यादा, हम उनकी पहचान कैसे कर सकते हैं। अब बात करते हैं इनके प्रबंधन की, तो गोभी वर्गीय फसलों में समेकित कीट प्रबंधन कैसे करें हम?
1: गोभी वर्गीय फसलों में समेकित कीट प्रबंधन करने से हम किसानों को ये बताना चाहते हैं कि शुरुआती दौर में जब वो बिचड़ा गोभी के गिराएं, उसी समय सर्वप्रथम बीज का शोधन करें। बीज का सामान्य तौर पर हमारे किसान कवकनाशी फफूंदनाशी दवाइयों के द्वारा बीज का उपचार कर लेते हैं, बीज का शोधन कर लेते हैं। हम किसानों को आज इस माध्यम से बताना चाहेंगे कि गोभी के बीज को कीटनाशी रसायन के द्वारा भी शोधित किया जाता है। इसमें सबसे बढ़िया जो प्रयोग करने के लिए आता है, गाउचो नाम की एक दवाई होती है, 1 मिलीलीटर मात्रा प्रति केजी बीज के हिसाब से मिला करके उससे हम बीज का उपचार करके अगर लगाएं तो स्वस्थ हमें पौधा तैयार मिलेगा और फिर उसे हम खेतों में लगा सकते हैं। किसान भाई इन बात का ध्यान रखें, और उसके बाद जब पौधे को खेतों में लगा देते हैं तो लगाने के बाद आप एक फेरोमोन ट्रैप होती है जिसको गंध प्रफास कहते हैं, इन कीटों को जो मैंने नाम आपके समक्ष बताया, इन कीटों के गंध प्रफास बाजार में उपलब्ध है, इसको आप खेतों में प्रयोग करेंगे तो इससे आपको पता चलेगी कि किस समय में कौन से कीट का प्रकोप होने वाला है और उसके हिसाब से आप कीटनाशक रसायनों का प्रयोग कर सकते हैं।
0: तो ये कुछ बातें हैं इनके समेकित कीट प्रबंधन की। डॉक्टर साहब, अगर मैं इनमें प्रयुक्त होने वाली कीटनाशी रसायन और पेस्टिसाइड के बारे में पूछूं तो कौन कौन से हैं वो भी बता दें।
1: जी, सामान्य तौर पर देखने को मिलता है कि किसान कोई भी कीटनाशी रसायन ले आकर के छिड़काव कर देते हैं। हम किसान भाई आप सबको ये सुझाव देना चाहेंगे कि उन्हीं कीटनाशी रसायनों का प्रयोग करें जिसको वैज्ञानिक के द्वारा अनुमोदन किया जाता है, और जितनी मात्रा में अनुमोदन की जाती है उतनी ही मात्रा में प्रयोग करें, क्योंकि कीटनाशी रसायन की कम मात्रा और ज्यादा मात्रा दोनों ही घातक होती है। अगर कुछ आपके समक्ष हम बात करें कि कौन कौन से कीटनाशी रसायन है जिसका अत्यधिक प्रयोग किया जा सकता है जो हमारे वातावरण के लिए सुरक्षित हो, हमारी फसल के लिए सुरक्षित हो, हमारी मृदा के लिए, हमारी वायु के लिए पूरी तरह से सुरक्षित हो, तो इनमें सबसे पहले हम नाम लेंगे फ्लूबेंडिया माइट 39.5 SC के नाम से एक कीटनाशक रसायन आती है जो बाजार में फेम के नाम से मिलेगी। 1 मिलीलीटर मात्रा प्रति 3 लीटर पानी में मिला करके इसका छिड़काव कर सकते हैं। दूसरी दवाई नोवा ल्यूरान के नाम से बाजार में मिलती है, इसको आप 1 मिलीलीटर मात्रा प्रति 3 लीटर पानी में मिला करके छिड़काव कर सकते हैं। तीसरी दवाई क्लोरांट्रा नीली प्रोले जो कोरोजन के नाम से बाजार में मिल जाएगी, इसकी भी 1 मिलीलीटर मात्रा प्रति 3 लीटर पानी में मिला करके छिड़काव किया जा सकता है। उपयुक्त कीटनाशक रसायनों के जो बाजारू नाम हम आपके समक्ष बताए हैं आपके उदाहरण के तौर पर, ताकि आपको खोजने में आसानी हो। साथ ही साथ आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि आप अपने घर पर बायो पेस्टिसाइड का निर्माण करके उसको आप अपने खेतों में छिड़काव कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले नीम की पत्ती है, नीम का तेल है, जिसको आप पीस करके, नीम के पत्ती को पीस करके उसको पानी में मिला करके छिड़काव करेंगे तो जो भी कीट है उन कीट का प्रकोप आपकी फसल में नहीं आएगा। दूसरा है नीम का तेल, नीम का तेल 1 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से मिला करके 1 सप्ताह के अंतराल पर छिड़काव करने से ऐसा देखा गया है कि कीटों का जो प्रकोप है वो बहुत ही कम होता है, और ये आप अपने खेतों में घरों में तैयार कर सकते हैं।
0: तो ये कुछ बातें हैं गोभी वर्गीय फसलों में समेकित कीट प्रबंधन को लेकर, जो कि आपको ध्यान रखना है इन बातों पर किसान भाइयों। तो आशा करते हैं कि बहुत कुछ आपको जानने को मिला होगा आज के इस वार्ता से, और इसके साथ ही अगले विषय के साथ फिर से हम हाजिर होंगे इसी फ्रिक्वेंसी 90.8 MHz पर उन्नत कृषि कार्यक्रम में। तब तक के लिए नमस्कार। उन्नत कृषि

तैयार है आम के अद्भुत संसार से रूबरू होने के लिए। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर लेकर आ रहा है राष्ट्रीय आम समागम 2026, जिसका आयोजन 27 से 28 जून तक किया जाएगा। आइए और देखिए देश भर की सैकड़ों आम किस्मों की आकर्षक प्रदर्शनी, जहां स्वाद, सुगंध और रंगों का अनूठा संगम आपका स्वागत करेगा। इस विशेष आयोजन की थीम है स्वाद, संस्कृति और समृद्धि का संगम। आम समागम में किसानों, वैज्ञानिकों, उद्यमियों और आम प्रेमियों को एक ही मंच पर आने का अवसर मिलेगा। कार्यक्रम के दौरान आयोजित होगी राष्ट्रीय कार्यशाला, जिसका विषय है आधुनिक तकनीक से गुणवत्ता युक्त उत्पादन, भंडारण एवं प्रसंस्करण। देश के प्रतिष्ठित विशेषज्ञ आम उत्पादन, मूल्य संवर्धन और प्रसंस्करण की आधुनिक तकनीकों पर अपने अनुभव साझा करेंगे। इस अवसर पर आयोजित होगा किसान वैज्ञानिक सम्मान समारोह, जिसमें बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश के उत्कृष्ट आम उत्पादकों को बेस्ट मैंगो फार्मर अवार्ड प्रदान किया जाएगा। महिला आम उत्पादकों एवं मूल्य संवर्धन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिला उद्यमियों के लिए भी विशेष सम्मान और नगद पुरस्कार की व्यवस्था की गई है। और अब आपके लिए एक सुनहरा अवसर, यदि आपके बाग में उत्कृष्ट गुणवत्ता के आम हैं या आपके पास किसी विशेष किस्म के आम उपलब्ध हैं, तो आप भी आम प्रदर्शनी में अपनी आम की किस्मों को प्रदर्शित कर सकते हैं। आपकी प्रविष्टियों का मूल्यांकन विशेषज्ञों द्वारा किया जाएगा और चयनित प्रतिभागियों को आकर्षक पुरस्कार एवं नगद राशि से सम्मानित किया जाएगा। और हाँ, आम प्रेमियों के लिए होगा एक विशेष आकर्षण, मैंगो ईटिंग प्रतियोगिता। इस रोमांचक प्रतियोगिता के विजेताओं को भी आकर्षक नगद पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। तो देर किस बात की, अपने श्रेष्ठ आमों के साथ आइए, प्रदर्शनी में भाग लीजिए, विशेषज्ञों से सीखिए, नई तकनीकों को जानिए और आकर्षक पुरस्कार जीतने का अवसर पाइए। 27 से 28 जून राष्ट्रीय आम समागम 2026 बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है।

0: चिड़ियों का शिकार करने को चुपके से बिछाया जाल, लेकिन जाल को सब चिड़िया फुर्र से ले उड़ी साथ।
1: माथा पीटता रह गया शिकारी, एक भी चिड़िया लगी ना हाथ।
0: तो दोस्तों, बीमारी का राक्षस भी बिछाए बैठा है एक जाल, अगर बच्चों का टीकाकरण छूटा तो कर देगा सबको बीमारी से बेहाल।
2: तो इस राक्षस से कैसे बचना है?
0: तो 5 साल या उनसे छोटे बच्चों के मम्मी पापा, सभी सुनो एक जरूरी बात, अगर सभी बच्चों का होगा टीकाकरण एक साथ, तो बीमारी के राक्षस का भी हो जाएगा खात्मा उसके साथ। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
3: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
4: चीन का हांजो शहर जानते हैं आप? वहीं पर हमने रचा था इतिहास, जब 2022 के एशियन गेम्स में हमने 107 मेडल्स जीते थे, क्योंकि पीछे थी हमारे 1045 खेलो इंडिया सेंटर्स की ट्रेनिंग, कंडीशनिंग कोचेस, डाइटिशियंस और फिजियोस की पूरी फौज। तभी तो पैरालंपिक में भी हमने रिकॉर्ड 29 पदक जीते, और हॉकी, बैडमिंटन, एथलेटिक्स, वुमेन क्रिकेट, बॉक्सिंग, चेस, सभी मैदानों में तिरंगा फहराया।
5: एक खिलाड़ी दुनिया के किसी कोने में हाथ में तिरंगा लेकर के दौड़ता है, सारे हिंदुस्तान में ऊर्जा भर देता है, सारे हिंदुस्तान में चेतना भर देता है।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
6: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 ग्रीन FM। उन्नत कृषि।
7: नमस्कार श्रोताओं, एक बार फिर हम आपसे जुड़ चुके हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। मैं हूँ आरजे अनु और आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे हर रोज़ के इस कार्यक्रम जिसका नाम है उन्नत कृषि कार्यक्रम। किसान भाइयों के लिए बहुत ही उपयोगी हमारा यह कार्यक्रम, जिसमें उन्हें बहुत कुछ जानने को मिलता है, खेती से जुड़ी जो समस्याएं हैं उनके बारे में जानने को मिलता है, और साथ ही हम हर रोज़ एक अलग विषय आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। तो आज एक खास विषय फिर से हम लेकर आए हैं, जिसे सुनकर आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। खासतौर पर बिहार के जो हमारे किसान भाई और बहन हैं, उन्हें बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि बिहार में इसकी जो खेती है बहुत अधिक स्तर पर की जाती है। तो आज हम बात करने वाले हैं परवल की वैज्ञानिक खेती के बारे में। हमारे बहुत सारे किसान भाई हैं जो परवल की वैज्ञानिक खेती के बारे में जानना चाहते हैं, इससे जुड़ी जो समस्याएं हैं उनके हल को पाना चाहते हैं। तो इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए आज हम आप सभी के लिए एक जो विषय है वो परवल से जुड़ा लेकर आए हैं, और इस विषय के बारे में सारी जानकारी आपको देने के लिए हमारे बीच हैं डॉक्टर RB वर्मा सर। और मैं आपको बता दूं, ये हैं हॉर्टिकल्चर वेजिटेबल एंड फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर एसोसिएट प्रोफेसर हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
8: धन्यवाद
7: सर। सबसे पहले हम बिहार के क्षेत्र की बात करते हैं, हमारे जो किसान हैं बिहार में, उनके लिए अगर वो परवल की खेती करना चाहते हैं तो क्या स्थिति है बिहार में, खासतौर पर उनकी जानकारी दें।
8: देखिए, ये बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। इसमें जो है परवल एक ऐसी फसल है जो कम से कम इसको 8 से 9 महीने तक इससे हम आमदनी लेते हैं। इसको हम फरवरी में लगाते हैं और सीधे अक्टूबर तक इससे हम फल की हार्वेस्टिंग करते हैं, जिससे किसान भाइयों को आमदनी होती रहती है। तो ये 8 से 9 महीने भरपूर मतलब पैदावार देती है और किसानों भाई की आमदनी बढ़ाती है। इसका क्षेत्रफल जो है, हम देखिए, अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो पॉइंटेड गार्ड का या परवल का क्षेत्रफल जो है लगभग 75,000 हेक्टेयर एरिया में पूरे बिहार में इसकी खेती की जाती है, जिससे 757,000 टन का प्रोडक्शन इसका होता है जो है। और अगर प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता अगर देखी जाए तो इसका जो है 13.68 टन प्रति हेक्टेयर इसकी पैदावार है। तो इतनी अधिक पैदावार लेकर के किसान भाई देखते हैं मार्केट में रेट भी इसका कितना अच्छा खासा मिलता है, तो कभी भी 40 रुपए 30 रुपए से कम नहीं होता है। तो इससे बहुत अच्छी पैदावार मिलती है और बहुत अच्छा इसे किसान भाई फायदा ले सकते हैं।
7: तो डॉक्टर साहब, अभी तो आपने ये बताया कि अगर खेती करना चाहते हैं बिहार में तो इसकी क्या स्थिति है, मतलब कि कैसे पैदावार बढ़ा करके आप जो आय है उस अच्छी आय प्राप्त कर सकते हैं। अब विशेषता की ओर बढ़ते हैं डॉक्टर साहब, तो क्या कुछ विशेषताएं हैं परवल को लेकर, उसके बारे में थोड़ा बताएं।
8: देखिए, परवल एक ऐसी फसल है जिसको अगर बिहार की दृष्टि से देखिए या वैसे भी न्यूट्रिशन की दृष्टि से देखिए, पोषण तत्व की दृष्टि से देखिए, बीमारियों की दृष्टि से देखिए, तो हर एक दृष्टि से देखिए, तो उसकी अच्छाई को देखते हैं,

0: के फायदे को देखते हुए इसको हम जो है ग्रीन गोल्ड ऑफ दियारा भी बोलते हैं। ये दियारा लैंड का हरा सोना भी इसको बोलते हैं, किंग ऑफ वेजिटेबल भी, सब्जियों का राजा भी इसको बोलते हैं।
1: अच्छा,
0: और ये ग्रीन पोटैटो भी बोलते हैं इसको, इसको हरा पोटैटो भी बोलते हैं। इसकी इतनी अहमियत है, खासियत, आप देखिए ये अगर न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए तो इसमें एनर्जी कैलोरी बहुत कम होती है। तो जब एनर्जी बहुत कम होती है तो इसके शुगर के पेशेंट भी, ये आप देखते हैं किसी को फीवर आ जाता है, बुखार आ जाता है, तो उसमें भी परवल की सब्जी को जनरली रिकमेंड किया था कि आप परवल का चोखा बनाइए, भरता बना के खाइए, या परवल की आप सब्जी बना के खाइए, इसलिए उसमें कैलोरी कम है। दूसरी चीज़ अगर देखिए, आजकल जो हेल्थ कॉन्शियस आदमी होता है फैट की बात करता है, आलू जैसे खा लिया कहते नहीं बड़ा फैटी है आलू, जबकि फैट उसमें नहीं होता है, मिसकंसेप्शन है, उसको हम रोस्टेड करते हैं तब होता है। तो ऐसे पोटैटो इसमें पॉइंटेड गार्ड में परवल में भी देखिए 0.3% फैट बिल्कुल नहीं है। तो इसलिए जो जिनका भी मोटापा अगर बढ़ रहा है उस आदमी को भी कहते हैं कि हम आप परवल की सब्जी खाइए, आपके मोटापा को कम करेगा। वेट लूज़र है, ये इम्यूनिटी क्रिएट करता है। अभी आज के समय जो COVID-19 के समय आप देख रहे हैं, लोग इम्यूनिटी बूस्टर हर चीज़ें लिया करते हैं, तो ये ऐसी एक फसल है जो इम्यूनिटी बूस्टर है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में होता है, जैसे विटामिन ए की बात करें, विटामिन सी की बात करें, इसमें आयरन की बात करें, प्रोटीन देखिए इसमें 2 ग्राम होता है, इसमें फाइबर जो ऐसी चीज़ है जो कि आपको मार्केट से नहीं मिलती है, ये सब्जी और फलों से ही फाइबर मिलती है, तो इसमें 3 ग्राम लगभग फाइबर होता है, जो कि अगर न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ देखा जाए, पोषक तत्व की तरफ से देखा जाए, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है फाइबर का होना उसमें
1: जी।
0: इसके अतिरिक्त हमारे पास विटामिन सी जो देखते हैं, जो स्कर्वी रोग से लड़ने की या ठंड से कोल्ड से लड़ने की क्षमता रखता है, वो भी इसमें भरपूर मात्रा में पाई जाती है। तो ये सारे पोषक तत्व है जो कि जो है
1: परवल में, हाँ
0: परवल में पाए जाते हैं, जो हमारे इम्यूनिटी बूस्टर हैं, हमको सर्दी जुकाम खांसी ये सब से बचाते भी जाते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, प्रोटीन हमको देते हैं, कम एनर्जी देते हैं, इसलिए इसको जो है वेट लूजर भी कहा जाता है। तो ये सब सारे इसके गुण है जिसके आधार पे इसको हम प्रयोग में लाते हैं
1: जी। और बिहार में बहुत सारे लोग पसंद करते हैं इसे, ख़ास तौर पर अगर मैं बात करूं परवल की, तो परवल के बहुत सारे व्यंजन भी बनाए जाते हैं, जैसा कि डॉक्टर साहब ने अभी आपको बताए हैं। और पोषक तत्व की बात की डॉक्टर साहब ने कि इसमें बहुत सारे गुण हैं, इम्यूनिटी बूस्टर है, विटामिन सी पाया जाता है, और अभी सबसे ज़रूरी है हमारे लिए कि हम अपनी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसे बरकरार रखें इस सिचुएशन में। तो इसलिए परवल की जो विशेषताएँ हैं वो तो आप समझ ही गए होंगे। डॉक्टर साहब, खेती की ओर बढ़ते हैं, तो किस समय में परवल की खेती की जाती है, और साथ ही क्या प्रक्रियाएं इसमें शामिल होती हैं इसकी खेती में, वो भी बता दें हमारे श्रोताओं।
0: देखिए, परवल की खेती, बहुत बढ़िया प्रश्न आपने कहा, परवल की खेती का देखिए अब ये बहुत उपयुक्त समय आ गया है। हाँ देखिए, परवल लगाने का सबसे उपयुक्त समय जो होता है वो जुलाई अगस्त सितंबर, ये 3 माह जो बहुत ही महत्वपूर्ण है लगाने के लिए। लेकिन दिक्कत क्या होती है, इस समय में इसमें फलत भी बहुत तगड़ी होती है, बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए इसमें कोई भी किसान अपने लतेर को काट करके नहीं देता है लगाने के लिए। और इसमें प्रोपोगेशन जो होता है वो लतेर से होता है, इसकी कटिंग काट करके ही हम लगाते हैं, तो कटिंग काटेंगे तो हमारी फसल नष्ट हो जाएगी। तो जुलाई अगस्त सितंबर ये 3 महीना बहुत ही फलन देता है, इसलिए किसान भाई इसमें काटता नहीं है। तो इसके लगान में अगर कहिए, जहाँ पानी जुलाई अगस्त सितंबर तक जो पूरा पानी भर रहता है, अक्टूबर में रिसीट होता है पानी जो है, तो अक्टूबर नवंबर में हम लगाते हैं इसे दियारा लैंड में। तो इसके लगाने का सबसे अच्छा समय अगर उस दृष्टि से देखा जाए, हमारी फलत भी कम ख़त्म हो जाती है, हमारे पास लतेर भी बच जाती है, तो ये अक्टूबर नवंबर का महीना ये सबसे बेस्ट है। अक्टूबर सबसे बेस्ट है, नवंबर के महीना में जाने में आपकी ठंडी बढ़ जाएगी, जैसे ठंडी बढ़ेगी उसमें स्प्राउटिंग नहीं हो पाएगी। तो ये माह जो है आपका अक्टूबर का, इसको लगाने के लिए अभी ये बहुत उपयुक्त समय है। आप इस समय से आप कटिंग ले जाइए, और कटिंग ले जा करके आप अपने खेत पे लगा दीजिए। इसमें लगाने के लिए, इसमें लगाने के तमाम तरीके हैं, इसमें आप मचान विधि भी लगाते हैं, टेलिस विधि भी लगाते हैं, फ्लैट में भी लगाते हैं। तो जो किसान भाई जो है इस समय ले जा रहे हैं, पहले आप उसके लिए आप जो है पिट तैयार कर लीजिए। तो आप 2x2 मीटर पर तैयार करिए, या 2x1 मीटर पर तैयार करिए। 2x2 होगा 2 मीटर से लेकर के 2 मीटर तक जो है कतार से कतार की दूरी, 1 सेंटीमीटर 1 मीटर, 1 मीटर पौधे से पौधे की दूरी, और कतार से कतार की दूरी 2 मीटर। तो इस रेशियो में आप लगाएंगे तो लगभग आपका जो है 2500 पौधे प्रति हेक्टेयर आपको पड़ेंगे। यानी 5000 पौधे जो है प्रति हेक्टेयर पड़ेंगे। अगर 2x2 पे लगाएंगे तो 2500 पौधे आपके प्रति हेक्टेयर पड़ेंगे। तो आपको जहाँ भी लगाना है, चाहे 2x2 मीटर पे लगाना है या 2x1 मीटर पे लगाना है, जहाँ भी आपको लगाना है, आप जो है वहाँ 1x1x1 × 1 × 1 × 1 क्यूबिक सेंटीमीटर का आप गड्ढा खोद लीजिए। उस गड्ढे में आप जो है गोबर की खाद लीजिए, 2 से 3 किलो आप गोबर की खाद लीजिए, थोड़ा सा उसमें बालू मिलाइए, थोड़ी सी आप नॉर्मल मिट्टी ले लीजिए, और मिट्टी ले करके आप उसमें थोड़ा सा आप जो है फ्यूरा डन डालिए, 2 ग्राम एटलीस्ट 2 ग्राम जो है पर पिट जो है, 200 ग्राम अगर संभव है तो आप जो है नीम की खली डालिए। तो ये सब डाल करके उस पिट को आप जो है भर दीजिए, पिट को भर दीजिए, और जिससे उसमें पिट को भर देने के बाद से उसमें आप जो है लतेर लीजिए कम से कम 80 सेंटीमीटर का, 80 सेंटीमीटर लंबी आप लतेर ले लीजिए और उसको अंग्रेजी के 8 के आकार का बना लीजिए। और अंग्रेजी के 8 के आकार का बनाने के बाद जो है उसी पिट में जो है उसको 6 इंच गहराई पे जो है आप जो है बीच वाला पोर्शन अच्छी तरह से उसको दबा दीजिए। साइड से आप चाहे तो हल्का हल्का जो थोड़ा बहुत दिखाई पड़े उतना आप उसको छोड़ सकते हैं, लेकिन बीच से उसको खूब अच्छी तरह से दबाइए। इतना उसके साथ कोई मरोवत मत करिए, इतना ज़बरदस्त दबाइए उसको ताकि कहीं से एयर उसमें पास न करने पाए। जब एयर पास कर जाए, पता चला कि आपने लगाया और उसमें सिंचाई किया, तो सिंचाई करने के बाद जैसे उसमें एयर पास हो जाएगा तो हवा पास होने के बाद उस जड़ को सुखा देगा। तो कोशिश ये करना है कि उसका संबंध मिट्टी से बहुत अच्छा हो जाए। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है कि दबाने में कोई कंजूसी नहीं करनी है, उसको खूब अच्छी तरह से दबाइए जिससे सॉइल का और उस लतेर का कंटेक्ट बहुत बढ़िया हो सके
1: जी।
0: अब उसको दबाने के बाद आप उसको जो है आप जो है ढक दीजिए, पुआल से या किसी चीज़ से ढक दीजिए और हल्का सा उसमें फवारे से इरिगेशन कर दीजिए। और ये इरिगेशन जो है 2-3 दिन तक आप करते रहिए सुबह शाम जो है, जिससे आपको हल्का हल्का ज़्यादा पानी नहीं देना इसमें जो है, जिससे उसके स्प्राउटिंग होने में सुविधा हो। इसको थोड़ी सी गर्मी मिलती है, जैसे पुआल आप डाल देते हैं थोड़ी सी गर्मी मिलती है, स्प्राउटिंग नमी मिलती है, प्रॉपर मॉइस्चर मिलता है, तो ये जो है अभी ये निकल जाएगा बड़ी आसानी से, इसमें स्फुटन हो जाएगा। अब ये है कि जब ये अक्टूबर में आप इसका स्फुटन हो जाएगा, इसमें से कले निकल जाएंगे, स्प्राउटिंग जब हो जाएगी, तो इसके लिए सबसे क्रिटिकल मंथ जो होता है वो नवंबर दिसंबर जनवरी। नवंबर में थोड़ा सा गर्मी रहती है, लेकिन दिसंबर जनवरी में बिल्कुल गर्मी नहीं रहती, एकदम ठंडी रहती है। और ठंडी इसके लिए ये बर्दाश्त नहीं करता है, ठंडी फ्रास्ट तो बिल्कुल नहीं बर्दाश्त करता। तो इस 2 महीने में आप उसको बचाना होगा आपको। तो बचाने के लिए काम क्या करना होगा, आपको जो है बर्मी कंपोस्ट हो या गोबर की सड़ी खाद हो तो उसके थाले के आसपास थोड़ा सा डाल दीजिए, जिससे वहाँ का टेम्परेचर हमेशा बनाए रहेगा। और ऊपर से हल्का सा पुआल का भी आप चाहे तो डाल सकते हैं, जिससे उसके ऊपर जब फ्रास्ट का मौसम देखिए तो या ठंडा बहुत लगने वाला हो तो उस समय थोड़ा सा उसको जो है पुआल या किसी से ढक दीजिए, या हल्की सी उस पर सिंचाई कर दीजिए जिससे उस पर ठंडी का असर ना पड़े। हल्का हल्का सिंचाई कर दीजिए जिससे ठंडी का असर ना पड़े। तो ये 2 महीना बचा के ले चले जाइए। जैसे ही गर्मी का महीना आएगा आपका फरवरी आएगा, थोड़ा बहुत टेम्परेचर जब जैसे निकलना शुरू हो जाएगा, तो इससे जितनी भी नोड्स है उसमें 7-8 नोड, आपने बताया हमने कि 80 सेंटीमीटर आपने लंबा ले लिया था और उसमें कम से कम 8 से 10 नोड उसमें थे, तो जितने नोड्स है सबसे आपकी जो है बहुत बढ़िया उसमें से कल्ले निकलने शुरू हो जाएंगे, या कल्ले पहले से निकल गए हैं तो उसकी ग्रोथ होनी शुरू हो जाएगी। और ये आपकी फरवरी शुरू से ही निकलना शुरू हो जाएगा और मार्च तक आपकी फ्रूटिंग में फसल आ जाएगी बहुत अच्छी। और मार्च के बाद आप हार्वेस्टिंग शुरू करिए और 1 सप्ताह के अंतराल पे इसमें हम हार्वेस्टिंग करते हैं। जैसे जैसे अगर ज़्यादा छोड़ देंगे तो उसमें पकने की संभावना रहती है, तो 1 सप्ताह के अंतराल पे आप इसकी हार्वेस्टिंग करते जाइए। जो मेच्योर है, खाने लायक है, टेंडर है, आप उसको हार्वेस्ट करिए, और बाकी जो छोटे हैं उसको आप छोड़ दीजिए, फिर बढ़ने दीजिए, 1 सप्ताह बाद उसमें फिर आप हार्वेस्टिंग कर लीजिए
1: जी। तो ये कुछ प्रक्रियाएं थी यहाँ पर डॉक्टर साहब ने आपको बताई हैं कि कैसे आपको परवल की खेती करनी चाहिए। और हमारे बहुत सारे किसान भाई जो हैं परवल की खेती करने में रुचि भी रखते हैं, क्योंकि जो बिहार में अगर सब्जियों की बात करें तो परवल हर लोग जो है इसे पसंद करते हैं और इसकी डिमांड भी बहुत ज़्यादा होती है मांग बाज़ार में। डॉक्टर साहब, ये तो बातें हो गई खेती की, लेकिन प्रजातियाँ किस प्रकार की हमें चुननी चाहिए, कौन कौन सी प्रजातियाँ हैं, उनके बारे में थोड़ी जानकारी दे।
0: देखिए, परवल की बहुत ज़्यादा प्रजातियाँ तो नहीं, बहुत लिमिटेड प्रजातियाँ हैं इसकी जो है। अक्सर किसान भाई क्या करते हैं, जाते हैं वेस्ट बंगाल से ही इसको ले आते हैं। जैसे कि हमारे जो है लेकिन उस समय तब उनको परवल की लतेर मिलती है जब उसकी क्राप ओवर हो जाती है, जब फलत नहीं रहती है। तो ऐसे में उस फसल में फलत है या नहीं है वो लेके चले आते हैं, अपने यहाँ लगाते हैं, पता चला उनकी फसल फ्लॉप हो जाती है। तो ऐसे में प्रजातियों का चयन जो है बड़े सोच समझ के करना है, कम से कम एक फलन अवस्था में जब पौधा हो तो किसान भाई को चाहिए कि वो जा करके एक बार जो है खेत पे विजिट करें, देख लें कि उनके पसंद की कौन सी प्रजाति अच्छी है और उसी प्रजाति का चयन करें। तो जैसे कुछ प्रजातियां जो इम्पोर्टेंट, जैसे राजेंद्र परवल वन है, राजेंद्र परवल दो है, स्वर्ण रेखा है, स्वर्ण अलौकिक है, नरेंद्र परवल 260 है, नरेंद्र परवल 390 है। तो इस तरह की ये प्रजातियाँ हैं, नीमिया भी एक प्रजाति इसमें आती है। तो ये सब प्रजातियां हैं जिसको आप, जिसका आप चयन कर सकते हैं, अच्छी प्रजातियां हैं। लेकिन बिहार किसी विश्वविद्यालय के द्वारा कुछ प्रजातियों का चयन किया गया है, जैसे इसमें BRPG 12-1 है जो सफ़ेद रंग की होती है और बड़े आकार की, बड़े लंबे आकार की होती है, कम से 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है, जिसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है इस समय जो है। तो आप ऐसे प्रजातियों को देकर के, 12-9 है जो हम लोग अभी सिलेक्शन में लिए हैं, बहुत से किसान के यहाँ फील्ड पे भी लगा हुआ है, तो आप इन प्रजातियों को देख करके आप इनमें से सिलेक्शन कर सकते हैं और आप अपने खेत के लिए आप चुनाव कर सकते हैं, जो आपके क्षेत्र के लिए विकसित की जा रही है और इसी क्षेत्र के लिए वो ज़्यादा उपयुक्त है
1: जी।
0: तो इन प्रजातियों का सिलेक्शन करके आप अपनी पैदावार बढ़ा सकते हैं
1: जी। तो ये तो बात हो गई कि किस प्रकार की प्रजातियां आपको चुननी है, कैसी चुननी है। अब खाद और उर्वरक की बात करते हैं डॉक्टर साहब, की किस प्रकार के खाद और उर्वरक और कैसे देने चाहिए, किस समय देने चाहिए कि जो बढ़वार है वो अच्छी हो।
0: देखिए, अभी हमने बताया था कि जब इसको आप लगा रहे हैं तो पिट में ही इसको आप लगाएंगे, गड्ढा खोद करके, एक क्यूबिक फिट का आपने गड्ढा खोद लिया है, तो एक क्यूबिक फिट गड्ढे में जो है हमने बताया था कि आप जो 1-2 किलो आप जो है गोबर की खाद ले लेंगे और उसके बाद से थोड़ा सा ये आपका जो है नत्रजन इसमें जो देते हैं 90-60-60 के रेट से देते हैं किलो केजी पर हेक्टेयर के हिसाब से
1: जी।
0: तो उसमें जो है 9 ग्राम का ये पर पिट जो है आप जो 9-10 ग्राम पर पिट आप जो नाइट्रोजन जो है 6-7 ग्राम आपका जो है फास्फोरस एंड पोटास इस तरह से उसको मिला करके जो है, और उसमें नीम की खली 200 ग्राम जो है, फ्यूराडान ये सब मिला करके आप गड्ढे को भरते हैं। तो ये उसका फर्टिलाइजर रिक्वायरमेंट है और ये आप देंगे इसका आधा नाइट्रोजन का मात्रा जो आप इसी समय जब बुआई जब करते हैं उसी समय दे देंगे, लेकिन फास्फोरस और पोटास की पूरी मात्रा दे देंगे। लेकिन जैसे जनवरी का महीना आता है, जनवरी के लास्ट में यानी फरवरी के फर्स्ट वीक में, उस समय जब कल्ले निकलने लगते हैं तो उस समय थोड़ा सा ज़रूरी हो जाता है कि थोड़ा सा फर्टिलाइजर रिक्वायरमेंट चाहिए जाकि उससे ग्रोथ भी फास्ट हो। तो जो आपका बचा हुआ नत्रजन है तो उसको उस समय आप जो बचे हुए नत्रजन को उस पिट के चारों तरफ जो है हल्का सा गोबर की खाद में मिला करके पिट के चारों तरफ उसको दे दीजिए, तो उससे आपकी ग्रोथ बहुत फास्ट हो जाएगी और आपकी फसल बहुत तेज चलेगी
1: जी। यहाँ पर खाद और उर्वरक आपने जाना कि आपको किस प्रकार देने हैं, और कई बार समस्याएं भी आती है परवल की खेती के दौरान डॉक्टर साहब, तो जो मुख्य समस्याएं हैं उनके बारे में हम जानना चाहेंगे और कैसे हमारे किसान भाई उनका निदान करें।
0: देखिए किसान भाई, बहुत बढ़िया प्रश्न आपने किया। किसान भाई अक्सर जो पूछते हैं कि हमारे खेत में जो फूल तो बहुत आ रहे हैं लेकिन फल नहीं आते हैं, एक फलन की समस्या इस क्रॉप में होती है और वह क्यों होती है। किसान भाई इसको बहुत अच्छी तरह से जान लें। जनरली होता क्या है कि इसमें दो तरह का फूल आता है, एक नर फूल अलग पौधे पर आता है और मादा फूल अलग पौधे पर आता है। तो नर फूल जो आता है उसमें फल नहीं लगता है, केवल फूल फूल ही रहता है, और मादा फूल पौधा जो होता है, जो मादा फूल आती है उसी पे केवल फल लगता है। तो किसान भाई समझते क्या है जनरली जो है कि जिस पे फल नहीं लगता है केवल फूल आया है, वो समझते हैं कि ये बेकार पौधा है और उस पौधे को उस खेत से उखाड़ करके बाहर फेंक देते हैं। तो इस बात का किसान भाई ध्यान रखें कि ये ऐसा पौधा है जिसमें नर और मादा पौधा दोनों अलग अलग होता है। तो जब तक नर और मादा पौधे का अनुपात सही सही उस खेत में नहीं होगा तो आपके फसल में फूल तो आएगा लेकिन फल नहीं आएगा। वो हल्का छोटा सा जो फूल रहेगा फल के रूप में जो रहता है, मादा फूल की पहचान होती है कि आप जब भी फूल को देखिएगा तो नीचे फल लिए हुए निकलता है, जैसे आप लौकी में देखते हैं, कद्दू में देखते हैं, कदीमा में
1: जी,
0: तो वो नीचे फल लिए हुए निकला रहता है। लेकिन जो नर फूल होता है वो फल लिए हुए नहीं निकलता है, वैसे सीधे निकलता है। तो ये पहचान लीजिए, तो ये पहचान करके उसका अनुपात आप जो है 1:10 जरूर रखिए। जब तक आप 1:10 मतलब एक पौधा अगर नर का रखते हैं तो 10 पौधा मादा का जरूर रखिए। जब नर और मादा का अनुपात संतुलित रहेगा ऐसे स्थिति में वहाँ निषेचन क्रिया सही तरीके संपन्न होगी और उसमें फलन की जो प्रक्रिया है वो तेज होगी। दूसरा किसान भाई एक और कर सकते हैं, उस खेत में आप मधुमक्खी पालन भी कर सकते हैं। मधुमक्खियाँ जो थी परागण का काम भी करती हैं, तो मधुमक्खी भी आपको मिलेगी और परागण का परागण भी होगा, उससे कोई नुकसान नहीं होगा। तो ये मेजर समस्या है कि सेक्स रेशियो जो है, जो अनुपात है उसका, नर और मादा का अनुपात है, उसके संतुलन को बनाए रखना जो है बहुत जरूरी है इस चीज़ का विषय। दूसरी चीज़ ये होती है कि इसमें एक जो है फल मक्खी भी आती है, तो फल मक्खी आती है तो उसके लिए किसान भाई ये कर सकते हैं, आप जैसे फेरोमोन ट्रैप आता है, आप फेरोमोन ट्रैप जो है 1 एकड़ में 8-10 जगह आप लगा दीजिए। वो फेरोमोन ट्रैप में जितने मेल उसके जो है होते हैं फ्रूट फ्लाई के, वो सब जाके फल मक्खी के जितने नर होते हैं उसमें जा करके जो है मर जाएंगे। जो ट्रैप होता है उसमें नीचे पॉइजन भरा होता है, तो वो और मेल अट्रैक्टेंट होता है, वो तो वो अट्रैक्ट होकर के जाता है वहाँ पे जो है।
1: अच्छा।
0: और अट्रैक्ट होकर जैसे जाता है उसके अंदर पॉइजन भरता, वहीं वो मर जाता है। तो जब मेल की पॉपुलेशन खत्म हो जाती है तो उसका फिर प्रसारण आगे जो है नहीं हो पाता है, आपकी फसल सुरक्षित रह जाती है।
1: जी।
0: तो इस चीज़ का ध्यान रखें, एक तो फल मक्खी की व्यवस्था आप जो ट्रैप का कर लें और दूसरा नर और मादा का अनुपात जो है बराबर मात्रा में बनाए रखें।
1: तो ये कुछ समस्याएं होती हैं जिनका हल डॉक्टर साहब ने आपको बताया, और इसके साथ ही परवल की जो वैज्ञानिक खेती है यहाँ पर पूरी तरीके से आपने जाना कि आप कब खेती कर सकते हैं, प्रजातियाँ क्या क्या होती हैं, खाद और उर्वरक आपको किस तरीके से देने चाहिए, विशेषताओं के बारे में भी आपने जाना। तो आज के लिए इतना ही, अगले दिन और एक खास विषय के साथ हम हाजिर होंगे इसी फ्रिक्वेंसी 90.8 MHz पर। सुनते रहें उन्नत कृषि कार्यक्रम। नमस्कार। उन्नत कृषि।

तैयार है आम के अद्भुत संसार से रूबरू होने के लिए। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर लेकर आ रहा है राष्ट्रीय आम समागम 2026, जिसका आयोजन 27 से 28 जून तक किया जाएगा। आइए और देखिए देश भर की सैकड़ों आम किस्मों की आकर्षक प्रदर्शनी, जहां स्वाद, सुगंध और रंगों का अनूठा संगम आपका स्वागत करेगा। इस विशेष आयोजन की थीम है स्वाद, संस्कृति और समृद्धि का संगम। आम समागम में किसानों, वैज्ञानिकों, उद्यमियों और आम प्रेमियों को एक ही मंच पर आने का अवसर मिलेगा। कार्यक्रम के दौरान आयोजित होगी राष्ट्रीय कार्यशाला, जिसका विषय है आधुनिक तकनीक से गुणवत्ता युक्त उत्पादन, भंडारण एवं प्रसंस्करण। देश के प्रतिष्ठित विशेषज्ञ आम उत्पादन, मूल्य संवर्धन और प्रसंस्करण की आधुनिक तकनीकों पर अपने अनुभव साझा करेंगे। इस अवसर पर आयोजित होगा किसान वैज्ञानिक सम्मान समारोह, जिसमें बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश के उत्कृष्ट आम उत्पादकों को बेस्ट मैंगो फार्मर अवार्ड प्रदान किया जाएगा। महिला आम उत्पादकों एवं मूल्य संवर्धन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिला उद्यमियों के लिए भी विशेष सम्मान और नगद पुरस्कार की व्यवस्था की गई है। और अब आपके लिए एक सुनहरा अवसर, यदि आपके बाग में उत्कृष्ट गुणवत्ता के आम हैं या आपके पास किसी विशेष किस्म के आम उपलब्ध हैं, आप भी आम प्रदर्शनी में अपनी आम की किस्मों को प्रदर्शित कर सकते हैं। आपकी प्रविष्टियों का मूल्यांकन विशेषज्ञों द्वारा किया जाएगा और चयनित प्रतिभागियों को आकर्षक पुरस्कार एवं नगद राशि से सम्मानित किया जाएगा। और हाँ, आम प्रेमियों के लिए होगा एक विशेष आकर्षण, मैंगो ईटिंग प्रतियोगिता। इस रोमांचक प्रतियोगिता के विजेताओं को भी आकर्षक नगद पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। तो देर किस बात की, अपने श्रेष्ठ आमों के साथ आइए, प्रदर्शनी में भाग लीजिए, विशेषज्ञों से सीखिए, नई तकनीकों को जानिए और आकर्षक पुरस्कार जीतने का अवसर पाइए। 27 से 28 जून राष्ट्रीय आम समागम 2026 बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 24 से 28 जून के दौरान भागलपुर, बांका, मुंगेर, जमुई इन जिलों में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ हल्की वर्षा होने की संभावना है। दक्षिण बिहार के अन्य जिलों में 24 से 25 जून के दौरान लू चलने की संभावना है। इसके बाद इन जिलों के एक दो स्थानों पर बादल गरजने के साथ हल्की वर्षा की संभावना है। अधिकतम तापमान 37 से 39 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 26 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 60 से 70% और दोपहर में 25 से 30% रहने की संभावना है। अनुमान है कि 24 से 28 जून के दौरान 5 से 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दक्षिण पूर्वी हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए, जो किसान भाई बहन धान की खेती करना चाहते हैं उन्हें बता दे, वर्तमान में मानसून की कमजोर स्थिति को देखते हुए किसान भाई बहनों को ये सलाह दी जाती है कि ऊंची भूमि में धान की खेती ना करें। जिन किसानों के पास सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है वे मध्यम अवधि वाले धान की किस्मों का बिचड़ा गिराएं और बीज स्थली में नमी बनाए रखें। इस बात का विशेष ध्यान रखें, बीज स्थली यानी कि नर्सरी में नमी बनाए रखने के लिए जरूरत के हिसाब से जीवन रक्षक सिंचाई जरूर करें और खास तौर से ऊंची भूमि में धान के स्थान पर वैकल्पिक फसलों की खेती पर विचार करना अधिक उपयुक्त होगा। जो मक्का की खेती करना चाहते हैं उन्हें बता दे, खरीफ मक्का की बुआई तभी करें जब आसमान साफ हो और खेत की जुताई में 10 से 15 टन गोबर की सड़ी खाद प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें और ध्यान दें कि बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 30 किलोग्राम नेत्रजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटाश डालना जरूरी होता है। किसान भाई बहनों आपको बता दें, अनुशंसित मक्का की किस्में हैं सुवान, देवकी, शक्तिमान 1, शक्तिमान 2, राजेंद्र शंकर, मक्का 3, गंगा 11। जो मूंग की खेती करते हैं उन्हें बता दें, मूंग की तैयार फलियों की तुड़ाई कर ले और हरी खाद के लिए उसके पौधों को मिट्टी पलटने वाले हल से जमीन में गाड़ दे। यह आपके खेत और आपके खेत की मिट्टी के लिए फायदेमंद होता है। जिनके खेत में सब्जियां लगी हैं उन्हें बता दें, भिंडी, कद्दू, खीरा, नेनुआ और लौकी की फसलों में निराई गुड़ाई जरूर करें। साथ ही खरपतवार नियंत्रित करना भी जरूरी होता है। आपको बता दें कि पत्ती खाने वाली सुंडियों और फल छेदक कीटों की नियमित निगरानी करते रहें और अगर इन कीटों का प्रकोप दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में डाइमेथोएट 30 इसी दवा की 1 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान दें, किसी भी प्रकार का छिड़काव तभी करें जब आसमान साफ हो। किसान भाई बहन आपको बता दें कि खरीफ प्याज की खेती के लिए नर्सरी यानी कि बीज स्थली की तैयारी तभी करें जब आसमान साफ हो और स्वस्थ पौध के लिए नर्सरी में गोबर की खाद जरूर डालें। अच्छे और स्वस्थ फसल के लिए प्याज की बीज की व्यवस्था प्रमाणित स्रोत से ही करें और बीज गिराने के पहले बीजोपचार करना बहुत जरूरी होता है। बीजोपचार करने से पौधे स्वस्थ और फसल अच्छी होती है। खरीफ प्याज के लिए बीज की दर 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दे, लीची की फल तुड़ाई के बाद बगीचों में आवश्यक छटाई जरूर कर ले जिससे पेड़ों के भीतर पर्याप्त धूप और हवा का संचार हो सके। साथ ही आपको बता दे कि बगीचे में गिरे हुए पत्तों, सूखी शाखाओं और अन्य पौध अवशेषों को इकट्ठा कर हटा दे, इससे कीट और रोगों का प्रकोप कम होता है और पेड़ों की स्वस्थ वृद्धि और विकास को बढ़ावा मिलता है। तो ध्यान दे कि बगीचे में गिरे हुए पत्तों, सूखी शाखाओं और ऐसी कोई भी अन्य जो पेड़ के अवशेष हो उन्हें इकट्ठा करके हटा दे। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दे, दुधारू पशुओं को गर्मी के प्रभाव से बचाने के लिए छायादार और हवादार स्थानों में रखें और उन्हें पर्याप्त मात्रा में साफ और ताजा पीने का पानी उपलब्ध कराएं। पशुपालक भाई बहन ध्यान दे, गला घोटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए टीकाकरण कराना बहुत जरूरी होता है, इसलिए सभी दुधारू पशुओं में टीकाकरण जरूर कराएं। सूचना समाप्त हुई। ऐसे ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 एफएम ग्रीन के साथ बने रहें।

आप हर समय थकान महसूस करते हैं, छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है, ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है, बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर आप सबका स्वागत करता है स्वाद संस्कृति और समृद्धि के संगम राष्ट्रीय आम समागम सह कार्यशाला में। तारीख याद रखें 27 से 28 जून 2026।

क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।

बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार और आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई में। दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि सरकार ने HPV का टीका सभी 14 साल से ऊपर के बच्चों के लिए मुफ्त कर दिया है। HPV का टीका लगाना शुरू तो हो गया है, लेकिन अभी भी बहुत सारे हमारे श्रोताओं के मन में बहुत सारे सवाल हैं। तो आज हम बात करेंगे HPV टीके की और कोशिश रहेगी कि आपके मन में जो भी सवाल हैं उनके जवाब भी हम दे सके। जब भी कोई पहल होती है, खास तौर पर सेहत के मामले में, तो हमारे परिवारजनों के मन में डर रहता है और कई सारे सवाल भी रहते हैं। खासकर जब सोशल मीडिया हमारे पास है और सोशल मीडिया और मोबाइल पर चल रही बहुत सी बातें होती है, बहुत सी अफवाहें होती है, तो उन अफवाहों से लोगों के मन में उलझन और सवाल दोनों ही पैदा होते हैं। इसलिए आज हम कुछ आम सवाल उठाएंगे और आसान भाषा में उनके जवाब देंगे। तो बस आप हमारे साथ अंत तक बने रहिए, आपको आज HPV टीकाकरण से जुड़े ढेर सारे सवाल मिलने वाले हैं। इसलिए, क्योंकि हमने बहुत से सवाल इकट्ठे किए हैं और एक के बाद एक हम उन सवालों को पढ़ेंगे और जवाब भी देंगे। तो पहला सवाल है, HPV टीका किस लिए लगाया जाता है? दोस्तों, HPV टीका सर्वाइकल कैंसर यानी बच्चेदानी के मुंह के कैंसर से बचाव में मदद करता है। ये कैंसर महिलाओं में होने वाली गंभीर बीमारियों में से एक है। अगर समय पर बचाव हो जाए तो बीमारी का खतरा काफी कम किया जा सकता है। इसलिए बहुत जरूरी होता है कि महिलाएं HPV टीका जरूर लगाएं। और दूसरा सवाल है कि क्या HPV टीका सुरक्षित है? जी हाँ, बिल्कुल सुरक्षित है। HPV टीका सुरक्षित माना जाता है और ये दुनिया के कई देशों में लगाया जा रहा है। ये कोई नई बात नहीं है। टीका लगने के बाद हाथ में हल्का दर्द, सूजन, हल्का बुखार, सिर दर्द या चक्कर आ सकते हैं और ये सामान्य बातें हैं। आमतौर पर जल्दी ठीक हो जाती है और कोई भी टीका आप लेते हैं तो ऐसी परेशानी थोड़ी बहुत होती है जो कि कुछ दिनों में ठीक भी हो जाती है। अब तीसरा सवाल, क्या इसका कोई बड़ा दुष्प्रभाव होता है? गंभीर दुष्प्रभाव बहुत दुर्लभ है, यानी कि गंभीर दुष्प्रभाव ना के बराबर होते हैं। इसलिए आप अफवाहों पर भरोसा ना करें कि अगर आप HPV टीका अपनी बच्ची को लगवाएंगे तो उन्हें कोई परेशानी हो जाएगी। और अगर आपके मन में फिर भी कोई सवाल बचते हैं, कोई चिंता होती है, तो आप आशा दीदी, ANM, CHO या फिर नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में भी आप बात कर सकते हैं। वो आपको और भी अच्छी तरीके से समझाएंगे कि इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं होता है और बहुत रेयर होता है। चौथा सवाल कि ये टीका बच्चियों को ही क्यों लगाया जा रहा है? देखिए, क्योंकि HPV संक्रमण आगे चलकर सर्वाइकल कैंसर का कारण बन सकता है और ये बीमारी महिलाओं में होती है, इसलिए किशोरियों को, बच्चियों को बीमारी आने से पहले ही सुरक्षा देने के लिए टीका लगाया जाता है। कहते हैं ना कि बाद में इलाज से बेहतर है कि आप पहले ही बचाव कर ले, तो ये टीका बचाव के लिए है। पांचवा सवाल जो बहुत सारे लोगों के मन में उठ रहे हैं और बहुत सारी लड़कियां इस सवाल से चिंतित है कि क्या इससे भविष्य में मां बनने पर असर पड़ेगा? बिल्कुल नहीं पड़ेगा, ये बिल्कुल कोरी अफवाह है। HPV टीका मां बनने की क्षमता पर कोई असर नहीं डालता। ये कैंसर से बचाव के लिए है। बांझपन या कमजोरी से इसका कोई संबंध नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ आपको कैंसर से बचाता है, सर्वाइकल कैंसर से बचाता है। छठा सवाल ये है कि क्या मोबाइल और सोशल मीडिया पर चल रही बातें सही है? बस यही बात तो आपको हम बताने आए हैं कि हर बात जो मोबाइल और सोशल मीडिया पर चल रही है वो सही नहीं होती। कई बार बिना जांचे परखे डर फैलाया जाता है और कई बार कुछ बातें ऐसी होती है जो किन्हीं तक एक पहुंची और उसने अपने पास वाले को दो बातें पहुंचाई, फिर तीन बातें, चार बातें, इस तरीके से बहुत बड़ी चढ़ी बात हम तक पहुंचती है। इसलिए कोई भी बात आप तक सोशल मीडिया या मोबाइल के जरिए पहुंचे तो उसे बिना जांचे परखे उस पर भरोसा ना करें। स्वास्थ्य से जुड़ी जो भी जानकारी होती है वो हमेशा आपको चाहिए कि प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मी या सरकारी स्वास्थ्य केंद्र से ही ले। आपको इन्हीं जगहों से सबसे भरोसेमंद जानकारी मिल सकती है। अब सातवां सवाल कि टीका कब और कहां लगेगा? जी हां, अगर आपके मन के जो भी सवाल हैं और जो उलझन है वो दूर हो गए हैं तो सबसे जरूरी सवाल कि टीका कब और कहां लगेगा, इसके लिए आप अपनी आशा, ANM या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। वहीं आपको सही तारीख, जगह और पात्र उम्र की जानकारी देंगे। तो साथियों, याद रखिए, अफवाह से नहीं,
सही जानकारी से फैसला ले। HPV टीका बेटियों को सर्वाइकल कैंसर से बचाने की दिशा में एक बहुत जरूरी कदम है। सेहत सही लाभ कई की ओर से ये संदेश जनहित में जारी है। आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें। फिलहाल मुझे यानी कि आपकी होस्ट और दोस्त उमा को दीजिए इजाजत, लेकिन जाने से पहले खास बात की, स्वस्थ रहें, खुश रहें और अफवाहों से बचें। नमस्कार।

सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है करियर वॉच कार्यक्रम में। आज हम बातें करने वाले हैं किसी एग्जाम के बारे में नहीं, मैं आपको ये नहीं बताने वाली हूं कि फलाना एग्जाम आने वाला है, उसकी तैयारी कैसे करनी है या कुछ भी। आज हम पूरी तरीके से स्टूडेंट लाइफ के बारे में बात करने वाले हैं, छात्र जीवन के बारे में बात करने वाले हैं, खास तौर से उन स्टूडेंट्स के बारे में बात करने वाले हैं जो अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, अपने सपनों को हकीकत में बदलना चाहते हैं। दोस्तों, ये जो हमारी लाइफ होती है ना, स्टूडेंट लाइफ, खास तौर से छात्र का जो जीवन होता है वो सबसे महत्वपूर्ण समय होता है। यही वो समय होता है जब हम अपने भविष्य की नींव रखते हैं। इस दौरान जो आदतें हम अपनाते हैं वही आगे चलकर हमारी सफलता या असफलता तय करती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लक्ष्य की, यानी कि गोल सेटिंग की। दोस्तों, अगर आपके पास कोई लक्ष्य नहीं है तो आप कभी भी सही दिशा में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जाहिर सी बात है ना कि आपने तय ही नहीं किया है कि आपको क्या करना है, तो कल आप किसी और चीज के लिए तैयारी करेंगे, कल आप किसी और चीज के बारे में सोच रहे होंगे। लेकिन जब हमें पता होता है कि हमें किस तरफ जाना है तो हम उसी तरफ अपने कदम बढ़ाते हैं ना। इसलिए सबसे पहले तो ये तय करना जरूरी होता है कि आपको अपने जीवन में क्या बनना है, डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक या फिर कुछ और भी। जब आपका लक्ष्य साफ हो जाता है तब आपकी मेहनत भी सही दिशा में जाती है। इसलिए सबसे पहले तो ज़रूरी होता है कि आप अपने स्टूडेंट लाइफ में ही ये तय कर लें कि आपको बनना क्या है, अपने जीवन से आप क्या चाहते हैं। और अब हम बात करते हैं समय प्रबंधन की। समय जो होता है ना, बहुत कीमती होता है। पैसा खो देंगे, कुछ भी खो देंगे तो आपको वो मिल जाएगा, पर समय अगर एक बार चला गया ना तो वो नहीं मिलता। इसलिए हर स्टूडेंट को चाहिए कि वो अपने दिन की एक योजना बना ले, पढ़ाई के लिए समय तय करें, खेलने के लिए समय तय करें और आराम के लिए भी समय निकालें, क्योंकि आराम भी जरूरी है ना, सेहत भी तो जरूरी होती है ना। और अगर आप अपने समय का सही तरीके से उपयोग करना सीख जाते हैं तो सफलता आपके कदम चूमती है। और तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, कंसिस्टेंसी की। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो बहुत स्मार्ट होते हैं, मतलब पढ़ाई में बहुत स्मार्ट होते हैं, लेकिन वो कंसिस्टेंट नहीं रह पाते। आज पढ़ाई की, 3 दिन पढ़ाई नहीं करेंगे, फिर चौथे दिन, पांचवें दिन पढ़ाई की, उसके बाद फिर 3 दिन गायब। तो ऐसा उनके साथ होता है। लेकिन और ये क्या करते हैं कि जब भी पढ़ाई करते हैं बहुत जोश से पढ़ाई करते हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद उनका उत्साह कम हो जाता है और पढ़ाई खत्म। लेकिन आपको पता है ना कछुआ और खरगोश वाली कहानी। खरगोश बहुत तेज था दौड़ने में और कछुआ बहुत स्लो, लेकिन वो धीरे धीरे चलता रहा और खरगोश ने क्या किया, वो रुक गया। चलता रुक जाता, चलता रुक जाता। और ये कहानी हमने बचपन में पढ़ी थी, बचपन में ही हमें सिखा दिया गया था कि कंसिस्टेंसी कितना महत्वपूर्ण है। इसलिए याद रखिए, रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ना एक दिन में बहुत ज्यादा पढ़ने से बहुत बेहतर होता है। रोज पढ़िए, पर लगातार पढ़िए, हर रोज पढ़िए। ये नहीं कि एक दिन पढ़ा, 2 दिन बंद हो गया, फिर 2 दिन पढ़ा, फिर 4 दिन बंद हो गया। ध्यान रखना है कि नियमित अभ्यास ही आपको मजबूत बनाता है। और अब बात करते हैं एकाग्रता की, ध्यान और एकाग्रता की। आज के समय में जब हमारे पास मोबाइल फोन है, अलग अलग तरह के सोशल मीडिया एप्स हैं, गेम्स हैं, तो ये सारी चीजें हमारा ध्यान बहुत आसानी से भटकाते हैं। इसलिए पढ़ाई करते समय इन सारी चीजों से आप दूरी बनाकर रखें, एक शांत जगह पर बैठकर पूरी एकाग्रता के साथ पढ़ाई करें। शुरुआत में ये बहुत मुश्किल होने वाला है, क्योंकि आपको फोन की आदत है या फिर सोशल मीडिया की आदत है, तो आपको लगेगा अगर उसने मैसेज कर दिया तो शायद मैं जवाब नहीं दे पाऊंगी, फिर आगे क्या होगा, अरे किसी का फोन तो नहीं बज रहा होगा, गेम्स में मैं पीछे रह जाऊंगा या फिर गेम्स में मैं पीछे रह जाऊंगी, अरे ये मेरे रेपुटेशन का सवाल है। बहुत सारी बातें आती है, बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस आएंगे, कोई नया गेम आएगा या फिर सोशल मीडिया पे कोई नया पोस्ट, नई कॉन्ट्रोवर्सी या फिर फोन पर किसी दोस्त से गपशप, बहुत सारी चीजें होती है। लेकिन आपको इन सारी चीजों से दूरी बनानी है, धीरे धीरे दूरी बनानी है। पहले दिन आप 5 मिनट फोकस कर पाएंगे, अगर आपका फोकस बहुत खराब हो चुका है तो आप पहले दिन 5 मिनट फोकस करेंगे, अगले दिन 10 मिनट। इस तरीके से धीरे धीरे चीजें बढ़ती जाएंगी, धीरे धीरे आपकी आदत और आपका फोकस बेहतर होता जाएगा और एक दिन आप देखेंगे कि लगातार आपने 40-45 मिनट पढ़ाई कर ली है। लगातार 40 मिनट 45 मिनट से ज़्यादा पढ़ाई करनी होती भी नहीं है, फिर 5-10 मिनट का ब्रेक लिया और फिर 45 मिनट या 40 मिनट पढ़ाई की। ये होता है एक हेल्दी तरीका पढ़ाई करने का। लेकिन आज के टाइम पे फोकस बहुत मुश्किल से होता है, तो ध्यान रखें मोबाइल फ़ोन, सोशल मीडिया, गेम्स, इन सारी चीज़ों से एक
टाइम बना ले कि 2 से 3, या फिर आपका अपने हिसाब से कोई भी टाइम आप फिक्स कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको एग्जांपल के लिए बता रही हूँ कि 2 से 3 मुझे इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना है, आपको कुछ भी करना है लेकिन इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना है, तो धीरे धीरे आपका दिमाग इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेगा कि हाँ इस दौरान मुझे पढ़ाई ही करनी है। और जब आप कंसिस्टेंट रहकर पढ़ाई करते हैं, फोकस के साथ पढ़ाई करते हैं, तो धीरे धीरे आत्मविश्वास भी खुद ही आने लगता है। लेकिन अगर इसके बावजूद आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है, आत्मविश्वास की कमी है, तो फिर आपकी कोई मदद नहीं कर सकता है। इसके लिए आपको खुद की मदद करनी होगी, आपको कहना होगा खुद से, खुद को समझाना होगा कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, ये मैं कर सकती हूँ। और ये छोटा सा जो सेंटेंस होता है ना, ये आपके अंदर बहुत ताकत पैदा कर सकता है, ये आपके अंदर बहुत बड़ी ताकत पैदा कर सकता है। हर रोज जगने के साथ ही आईने में देखकर कहिए कि मैं ये कर सकती हूँ, मुझसे ये होगा और मैं ये करके दिखाऊंगी, मुझे खुद पर भरोसा है। ऐसी कुछ बातें बस 5 मिनट हर रोज सुबह, अगर आपके अंदर आत्मविश्वास की कमी है। और इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण विषय है असफलता। ज़रूरी नहीं है कि आपके अंदर आत्मविश्वास है, आपने कंसिस्टेंट होकर पढ़ाई की, फोकस्ड रहे आप, टाइम मैनेजमेंट आपने बहुत अच्छे से की और उसके बावजूद आप सफल ही होंगे, ज़रूरी नहीं है। हो सकता है कि आप असफल हो और फिर क्या होता है, हम घबरा जाते हैं और सोचते हैं कि शायद मैं ही किसी काबिल नहीं हूँ। ऐसा नहीं होता है, जीवन में हर किसी को कभी ना कभी असफलता का सामना करना ही पड़ता है, लेकिन असफलता से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि असफलता से सीख लेनी चाहिए कि कहीं कुछ तो छूट गया होगा ना, या फिर कहीं हमसे कोई कमी नहीं रही है, तो फिर शायद हम इसके लिए नहीं बने हैं, हमारे लिए कोई और रास्ता चुना गया है जिस पर हमें चलना होगा। तो थोड़ा ठहरिए और अपने नए रास्ते की तलाश कीजिए, या फिर अगर आप एक बार और कोशिश करना चाहते हैं तो कोशिश कीजिए, पर घबराइए मत, हारिए मत। असफलता हमें सिखाती है कि हमें कहाँ सुधार करने की ज़रूरत है, और हर असफलता कहते हैं कि आपको सफलता के और करीब और बेहतर तरीके से करीब लेके जाती है। और अभी थोड़ी देर पहले हम स्वास्थ्य के बारे में भी बातें कर रहे थे, तो स्वास्थ्य बहुत ज़रूरी होता है। कहते हैं कि एक स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। अगर आप शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं है तो फिर पढ़ाई पर आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, आप ध्यान नहीं दे पाएंगे। इसलिए हर रोज थोड़ा सा एक्सरसाइज और सही खानपान और पूरी नींद, जी हाँ, सोशल मीडिया और मोबाइल्स ने और गेम ने भी हमारे नींद को भी बहुत बुरे ढंग से प्रभावित किया है। हम रात रात भर जाग कर इन सारी चीज़ों के पीछे अपना वक्त जाया करते हैं और फिर हमारी नींद पूरी नहीं होती है, फिर हमारे अंदर बहुत सारी परेशानियां शुरू हो जाती है। अभी फ़िलहाल उन सारी परेशानियों के बारे में बातें नहीं करेंगे, लेकिन एक बात कि अपनी नींद पूरी ज़रूर करें, 7 से 9 घंटे की नींद बहुत ज़रूरी होती है। इसलिए एक्सरसाइज करें, सही खान पान लें और पूरी नींद लें, ताकि आप स्वस्थ रह सकें और आपके स्वस्थ शरीर के अंदर एक स्वस्थ मस्तिष्क का वास हो सके। और इसके साथ ही बहुत ज़रूरी होता है कि आप गुड कंपनी में रहें, अच्छी संगति में रहें, क्योंकि कहते हैं ना कि संगत से गुण आत है और संगत से गुण जात है। इसलिए आप कैसे लोगों के बीच रह रहे हैं, ये भी बहुत प्रभाव डालता है आपके जीवन के ऊपर, आपके सोच के ऊपर। अगर आप फोकस्ड लोगों के साथ रह रहे हैं, पढ़ाई करने वाले लोगों के साथ रह रहे हैं, तो अगर आप रास्ता भटकेंगे भी ना, तो वो आपको रास्ते पर ले आएंगे, वो बातें करेंगे पढ़ाई की, तो आपको भी लगेगा कहीं कुछ तो छूट रहा है ना, मेरी पढ़ाई में तो छूट रही है ना, वो अच्छी बातें करेंगे तो आपके ऊपर भी असर अच्छा होगा। इसलिए हमेशा ऐसे दोस्तों का चुनाव करें जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करे, ना कि वो अपने साथ आपको पीछे खींच कर लेकर जाए। और अब हम बात करते हैं मोटिवेशन की। जी हाँ, हर किसी के जीवन में ऐसा समय आता है जब हम निराश हो जाते हैं, ऐसे समय में खुद को मोटिवेट करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप खुद को मोटिवेट कर पाने में नहीं सक्षम हो पा रहे हैं, तो डायरी लिखना शुरू कीजिए और उसमें एक एक पॉइंट को नोट कीजिए। देखिएगा धीरे धीरे आपको खुद के अंदर विश्वास आने लगेगा, एक दिन में नहीं, 2 दिन में नहीं, पर हफ्ते भर में तो पक्का आएगा। और आप जब डायरी में लिखेंगे कि ये चीज़ें हुई और मैं अभी बहुत लो फील कर रही हूँ, मैं क्या करूँ इस वजह से मैं लो फील कर रही हूँ, तो लिखते लिखते आपको आधे जवाब मिल जाएंगे। और इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट है आत्म अनुशासन, यानी कि सेल्फ डिसिप्लिन। हमेशा आपको कोई कहने के लिए नहीं होगा कि टाइम हो चुका है, पढ़ाई करने बैठो टाइम हो चुका है, खाना खाने जाओ टाइम हो चुका है, फ़ोन नीचे रख दो सो जाओ, नहीं होगा। या आपको खुद के अंदर खुद ही ये चीज़ लानी होगी, यानी कि आत्म अनुशासन लाना होगा। अनुशासन ही सफलता की कुंजी होती है, और अगर आप खुद को नियंत्रित करना सीख गए तो कोई भी लक्ष्य आपके लिए मुश्किल नहीं होता है। इसलिए आप सेल्फ डिसिप्लिन
को अपना लें, आत्म अनुशासित रहें और अपने लक्ष्य की ओर बिल्कुल अच्छी तरीके से बढ़ें। सभी को बेस्ट ऑफ लक। और अगर आपके जीवन का वो फेज़ चल रहा है जब आपको लग रहा है कि मुझसे नहीं होगा ये, मैं हार चुकी हूँ, थोड़ा रुकिए, डायरी लिखिए, आईने में देखकर खुद से बातें कीजिए और थोड़ा सा वक्त खुद को दीजिए, थोड़ा शांत होकर सोचिए और फिर आगे बढ़ते रहिए। क्योंकि आप आगे बढ़ते रहेंगे तो आपका जीवन किसी ना किसी सही दिशा में पहुंच ही जाएगा। और अब मैं अंत की ओर आगे बढ़ती हूँ और आपसे बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि अपने सपनों को कभी भी छोटा मत समझिए, मेहनत कीजिए, धैर्य रखिए और कभी हार मत मानिए। याद रखिए, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। तो दोस्तों, इसी प्रेरणादायक विचार के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। फिर मिलेंगे एक नए विषय और नई ऊर्जा के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहे। नमस्कार।

तैयार है आम के अद्भुत संसार से रूबरू होने के लिए। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर लेकर आ रहा है राष्ट्रीय आम समागम 2026, जिसका आयोजन 27 से 28 जून तक किया जाएगा। आइए और देखिए देश भर की सैकड़ों आम किस्मों की आकर्षक प्रदर्शनी, जहां स्वाद, सुगंध और रंगों का अनूठा संगम आपका स्वागत करेगा। इस विशेष आयोजन की थीम है स्वाद, संस्कृति और समृद्धि का संगम। आम समागम में किसानों, वैज्ञानिकों, उद्यमियों और आम प्रेमियों को एक ही मंच पर आने का अवसर मिलेगा। कार्यक्रम के दौरान आयोजित होगी राष्ट्रीय कार्यशाला, जिसका विषय है आधुनिक तकनीक से गुणवत्ता युक्त उत्पादन, भंडारण एवं प्रसंस्करण। देश के प्रतिष्ठित विशेषज्ञ आम उत्पादन, मूल्य संवर्धन और प्रसंस्करण की आधुनिक तकनीकों पर अपने अनुभव साझा करेंगे। इस अवसर पर आयोजित होगा किसान वैज्ञानिक सम्मान समारोह, जिसमें बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश के उत्कृष्ट आम उत्पादकों को बेस्ट मैंगो फार्मर अवार्ड प्रदान किया जाएगा। महिला आम उत्पादकों एवं मूल्य संवर्धन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिला उद्यमियों के लिए भी विशेष सम्मान और नगद पुरस्कार की व्यवस्था की गई है। और अब आपके लिए एक सुनहरा अवसर, यदि आपके बाग में उत्कृष्ट गुणवत्ता के आम हैं या आपके पास किसी विशेष किस्म के आम उपलब्ध हैं, तो आप भी आम प्रदर्शनी में अपनी आम की किस्मों को प्रदर्शित कर सकते हैं। आपकी प्रविष्टियों का मूल्यांकन विशेषज्ञों द्वारा किया जाएगा और चयनित प्रतिभागियों को आकर्षक पुरस्कार एवं नगद राशि से सम्मानित किया जाएगा। और हाँ, आम प्रेमियों के लिए होगा एक विशेष आकर्षण, मैंगो ईटिंग प्रतियोगिता। इस रोमांचक प्रतियोगिता के विजेताओं को भी आकर्षक नगद पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। तो देर किस बात की, अपने श्रेष्ठ आमों के साथ आइए, प्रदर्शनी में भाग लीजिए, विशेषज्ञों से सीखिए, नई तकनीकों को जानिए और आकर्षक पुरस्कार जीतने का अवसर पाइए। 27 से 28 जून राष्ट्रीय आम समागम 2026 बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है।

0: सिर पिट गया। बिल देना। इसको आउटसाइड द ऑफ टाइम डालना चाहिए था, इसकी यही प्रॉब्लम है।
1: कब से?
0: जब से क्रिकेट खेल रहा है तभी से।
1: अरे भाई साहब, क्रिकेट की नहीं हो, आपकी खांसी की बात कर रहे हैं। बुड़बक
0: खांसी?
1: हाँ।
0: इसको तो एक आध महीना हो गया।
1: खुद की खांसी को एक आध महीने हो गए हैं और यहाँ क्रिकेट पर अपनी ही गुगली फेंक रहे हैं आप। चलिए चलिए चलिए।
0: डॉक्टर, खांसी तो है।
1: देखिए भाई साहब, इसे हल्का मत लीजिए। 2 हफ्ते से ज्यादा अगर आपको खांसी रहे तो टीबी हो सकता है।
0: टीबी?
1: हाँ। तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए।
0: ठीक है।
1: टीबी किसी को भी हो सकता है, अगर हो गया तो बिना भूले पूरा कोर्स करिए और फिट हो जाइए। नहीं किया तो इसका इलाज बहुत मुश्किल है। समझ गए भाई साहब आप? आइए। 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए। टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
2: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 ग्रीन एफएम। उन्नत कृषि,

0: और इस विषय को लेकर हमारे बीच हैं आज डॉक्टर नरेंद्र कुमार वर्मा, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं कॉलेज ऑफ फिशरीज किशनगंज में। तो सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद मैडम।
0: डॉक्टर साहब, आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले जो बात आती है, जैसा कि हमारा विषय है, तो बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि वायुश्वासी मछली क्या होता है, तो इसके बारे में थोड़ा बताइए।
1: जी, जैसा कि हम जानते हैं कि मछली एक जलीय जीव है और पानी में मौजूद ऑक्सीजन को अपने गलफड़ों से सांस के रूप में लेती है, और अगर हम मछली को पानी से बाहर निकाल दें तो सांस ना ले पाने के कारण यह कुछ ही पलों में मर जाती है।
0: जी।
1: परंतु जल में मछली की एक ऐसी प्रजाति भी पाई जाती है जो कि पानी के बाहर भी सांस ले सकती है। इन मछलियों को वायुश्वासी मछलियाँ कहते हैं।
0: अच्छा, मतलब जो पानी के बाहर भी जिंदा रह सकती है मछली, तो वैसी मछलियों को वायुश्वासी मछलियाँ कहते हैं।
1: जी बिल्कुल। इन मछलियों में पानी से बाहर सांस लेने के लिए गलफड़ों के अतिरिक्त अलग से अंग विकसित होते हैं, और इस प्रकार की मछलियां कम पानी वाले जगहों में भी आसानी से जिंदा रह सकती हैं। जैसा कि हमारे किसान भाई जानते हैं कि मछली पालन के लिए जल एक महत्वपूर्ण कारक है, और बिना जल के हम मछली पालन नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो वायुश्वासी मछलियाँ होती हैं उनका पालन हम कम पानी में भी कर सकते हैं।
0: तो अभी के दौर की बात करें, जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि सुखाड़ आता है, इस वजह से पानी का लेवल जो है वो भी कम हो रहा है, तो अगर मछली पालन करना चाह रहे हैं तो वायुश्वासी मछली का पालन आप कर सकते हैं। इसमें पानी कम ही पानी में, मतलब कि ये रह सकते हैं, इसका पालन कर सकते हैं।
1: जी मैडम।
0: और आगे बढ़ते हैं, इसका पालन भारत में कहाँ कहाँ पर अभी हो रहा है?
1: जी, भारत के विभिन्न राज्यों, जैसे कि जो बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश आदि जगहों पर वायुश्वासी मछलियों का पालन बहुत ही लोकप्रिय है। भारत में वायुश्वासी मछलियों की अनेक प्रजातियां पाली जाती हैं, जैसे कि देसी मांगुर, सिंघी आदि। यहां ध्यान देने योग्य बात यह है कि भारत में दो प्रकार की मांगुर की मछलियां प्रजाति की उपलब्ध हैं। एक है देसी मांगुर, जो कि भारत की अपनी प्रजाति है, और एक है थाई मांगुर, जो कि दूसरे देश से भारत में लाई गई है।
0: अच्छा।
1: हम अपने किसान भाइयों को यह बताना चाहेंगे कि वो थाई मांगुर का पालन बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि भारत सरकार ने इसके पालन पर प्रतिबंध लगा रखा है, और यदि कोई किसान थाई मांगुर का पालन करते हुए पाए जाते हैं तो आवश्यकता अनुसार कार्यवाही उनके विरुद्ध की जाती है।
0: जी, अब मांगुर के प्रजनन और अंडों के बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए।
1: जी, मांगुर प्रथम वर्ष में ही प्रजनन करने योग्य हो जाती है, तथा वर्षा काल में मई से अगस्त महीने के बीच ठहरे हुए जल क्षेत्रों में प्राकृतिक प्रजनन करती है। हालांकि इस मछली के कृत्रिम तरीके से प्रजनन में सफलता हासिल की जा चुकी है, किंतु कृत्रिम तरीके से प्रजनन में नर मांगुर को मारना पड़ता है। मांगुर मछली के अंडे गोल और आकार में 1.2 से 2 मिलीमीटर व्यास के होते हैं। मांगुर के अंडे देने की क्षमता उसके शरीर के आकार पर निर्भर करती है। साधारणतः 160 से 350 मिलीमीटर आकार की मांगुर लगभग 20,000 अंडे तक देती है।
0: तो अगर किसान भाई मांगुर का पालन कर रहे हैं तो इस दौरान कुछ ध्यान देने योग्य बातें भी होंगी, वो कौन कौन सी हैं?
1: जी, सबसे पहले ध्यान रखना चाहिए कि मांगुर मांसाहारी स्वभाव की मछली है।
0: अच्छा।
1: इसलिए तालाब में इसे अकेले ही पालना चाहिए, दूसरी मछलियों के साथ इसका पालन बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि हमारे किसान भाई मांगुर के साथ और किसी मछली को पालते हैं तो यह मछली दूसरी मछलियों को नुकसान पहुंचाती है और कई बार उनको खाने लगती है। साथ ही उथले तालाब जिनकी गहराई 1.5 मीटर से कम होती है, मांगुर पालन के लिए ऐसे तालाब उत्तम माने जाते हैं। मांगुर मछली के एकल पालन के लिए 40,000 से 60,000 अंगुलिकाएं प्रति हेक्टेयर की दर से संचय किया जाता है। संचय से पहले बीजों को बीमारियों से बचाने के लिए फार्मलिन से उपचारित किया जाता है। साथ ही हमारे किसान भाई अगर देखते हैं कि मांगुर के पालन के समय मछली पर कोई घाव दिखाई दे रहा है तो मछली को एक्रोफ्लेविन के घोल से उपचारित कर सकते हैं।
0: अच्छा
1: जी, साथ में ही हमारे किसान भाइयों को ध्यान देना चाहिए कि तालाब को मछली पालन के लिए प्रयोग में लाने से पहले उसे अच्छे से सुखा लेना चाहिए, या फिर 1600 से 2500 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से महुआ की खली, या 250 से 300 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग करना चाहिए, जिससे कि तालाब में उपस्थित कीड़े और परभक्षी मछलियाँ मर जाती हैं। इन मछलियों और कीड़ों को मारना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि अगर हमारे किसान भाई इन कीड़ों और मछलियों को तालाब से नहीं

0: नहीं हटाते हैं तो आगे चलकर यह जो मांगुर का पालन है उसमें नुकसानदायक उनके लिए होता है।
1: अभी आपने कहा कि ये मछलियाँ जो होती हैं वो मांसाहारी स्वभाव की होती हैं, तो अगर आहार प्रबंधन की बात की जाए तो किस प्रकार का आहार उन्हें दिया जाए?
0: तो यह मछली मांसाहारी होती है और मांस आधारित पूरक आहार पर ही निर्भर करती है।
1: अच्छा।
0: मछलियों के बच्चे प्रारंभ में सूक्ष्म जंतु प्लवक खाते हैं और बाद में मांस आधारित पूरक आहार अधिक खाते हैं। मांस आधारित आहार में कीड़े, वर्म, लार्वा, छोटी मछलियां और बूचड़ खानों के अपशिष्ट आदि का प्रयोग किया जाता है। आहार देते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आहार की मात्रा मछली के शारीरिक वजन का 10% हो, जिससे कि हम आहार की बर्बादी को कम कर सकते हैं। आवश्यकता से अधिक पूरक आहार का प्रयोग करने से तालाब का पानी गंदा होने लगता है और तालाब में हानिकारक गैसें जैसे अमोनिया आदि की मात्रा बढ़ने लगती हैं। ऐसी स्थिति में मछलियों में बीमारियों के होने की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं। तो यदि हमारे किसान भाई देखते हैं कि तालाब का पानी गंदा हो रहा है तो समय समय पर उन्हें तालाब के पानी को बदलते रहना चाहिए, या फिर यदि तालाब का पानी बहुत ही गंदा हो गया है तो पूरे पानी को जो है बदल देना चाहिए।
1: अच्छा, और जब हम मांगुर इस मछली का पालन कर रहे हैं और उस दौरान उनकी बढ़वार सही हो रही है या नहीं, उनकी जो वृद्धि है वो सही हो रही है, ये कैसे सुनिश्चित करेंगे हम?
0: जी मैडम, तो जैसे कि जब भी हमारे किसान भाई मछली पालन करते हैं तो मछली पालन के समय किसान भाइयों को समय समय पर जो है जाल चलाकर देखते रहना चाहिए कि मछली की बढ़वार ठीक हो रही है या नहीं हो रही है, या फिर मछली में कोई रोग है कि नहीं है। तो मांगुर मछली 6 माह में बिक्री योग्य हो जाती है और इतने समय में 35 से 45 सेंटीमीटर लंबी और 200 से 400 ग्राम तक वजन की हो जाती हैं। यदि तालाब के पानी का तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और ऑक्सीजन लेवल 6 ppm से अधिक हो तो मछलियों की वृद्धि अच्छी होती है, परंतु हमारे किसान भाइयों को इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि यदि पानी का तापमान 35 डिग्री या उससे ज़्यादा होता है तो यह मछलियों के बढ़वार के लिए हानिकारक होता है।
1: और अगर अब बात करते हैं उत्पादन की, तो 1 साल में कितना उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं किसान भाई?
0: जी, हमारे किसान भाई मांगुर की 1 वर्ष में 2 फसल ले सकते हैं, क्योंकि सामान्यतः 1 फसल की अवधि 6 महीने तक की होती है। तो इसका पालन करके हमारे किसान भाई 3,000 से 5,000 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर प्रति 6 माह की दर से उत्पादन कर सकते हैं। और क्योंकि जो हमारी देसी मांगुर मछली है उसका जो बाज़ार भाव है वो अन्य मछलियों की तुलना में ज़्यादा होता है, तो इस व्यवसाय को अपना करके किसान भाई अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं।
1: जी, तो किसान भाइयों, अगर आप भी मछली पालन को अपना व्यवसाय बना चुके हैं तो वायुश्वासी मछली के बारे में आपने जाना, आप उनको एज अ बिजनेस आप ले सकते हैं, व्यवसाय ले सकते हैं। और इसमें बहुत सारी बातें जो इन्होंने बताई हैं कि आपको कैसे पालन करना है, इनका कौन कौन सी बातें आपको ध्यान रखनी है, वो सारी चीज़ें आप अपने दिमाग में लाकर और इसका पालन कर सकते हैं, तो आपको ज़रूर मुनाफा होगा। और इसके साथ ही आपसे फिर मुलाकात होगी अगले दिन, तब तक के लिए नमस्कार और सुनते रहिए 90.8 FM ग्रीन। उन्नत कृषि,

तैयार है आम के अद्भुत संसार से रूबरू होने के लिए। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर लेकर आ रहा है राष्ट्रीय आम समागम 2026, जिसका आयोजन 27 से 28 जून तक किया जाएगा। आइए और देखिए देश भर की सैकड़ों आम किस्मों की आकर्षक प्रदर्शनी, जहां स्वाद, सुगंध और रंगों का अनूठा संगम आपका स्वागत करेगा। इस विशेष आयोजन की थीम है स्वाद, संस्कृति और समृद्धि का संगम। आम समागम में किसानों, वैज्ञानिकों, उद्यमियों और आम प्रेमियों को एक ही मंच पर आने का अवसर मिलेगा। कार्यक्रम के दौरान आयोजित होगी राष्ट्रीय कार्यशाला, जिसका विषय है आधुनिक तकनीक से गुणवत्ता युक्त उत्पादन, भंडारण एवं प्रसंस्करण। देश के प्रतिष्ठित विशेषज्ञ आम उत्पादन, मूल्य संवर्धन और प्रसंस्करण की आधुनिक तकनीकों पर अपने अनुभव साझा करेंगे। इस अवसर पर आयोजित होगा किसान वैज्ञानिक सम्मान समारोह, जिसमें बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश के उत्कृष्ट आम उत्पादकों को बेस्ट मैंगो फार्मर अवार्ड प्रदान किया जाएगा। महिला आम उत्पादकों एवं मूल्य संवर्धन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिला उद्यमियों के लिए भी विशेष सम्मान और नगद पुरस्कार की व्यवस्था की गई है। और अब आपके लिए एक सुनहरा अवसर, यदि आपके बाग में उत्कृष्ट गुणवत्ता के आम हैं या आपके पास किसी विशेष किस्म के आम उपलब्ध हैं, आप भी आम प्रदर्शनी में अपनी आम की किस्मों को प्रदर्शित कर सकते हैं। आपकी प्रविष्टियों का मूल्यांकन विशेषज्ञों द्वारा किया जाएगा और चयनित प्रतिभागियों को आकर्षक पुरस्कार एवं नगद राशि से सम्मानित किया जाएगा। और हाँ, आम प्रेमियों के लिए होगा एक विशेष आकर्षण, मैंगो ईटिंग प्रतियोगिता। इस रोमांचक प्रतियोगिता के विजेताओं को भी आकर्षक नगद पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। तो देर किस बात की, अपने श्रेष्ठ आमों के साथ आइए, प्रदर्शनी में भाग लीजिए, विशेषज्ञों से सीखिए, नई तकनीकों को जानिए और आकर्षक पुरस्कार जीतने का अवसर पाइए। 27 से 28 जून राष्ट्रीय आम समागम 2026 बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है।

0: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
1: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
0: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
1: आपकी सेहत की बातें,
0: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
1: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
0: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
1: वो कहाँ पर?
0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
1: FM ग्रीन यानी हरियाली से खुशहाली तक।
0: उन्नत कृषि बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है किसान भाई बहनों को संबोधित हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। किसान भाई बहनों, आज उन्नत कृषि में हम बात करने वाले हैं धान के बारे में। धान बिहार की प्रमुख खाद्यान्न फसल है और साथ ही राज्य की खाद्य सुरक्षा और कृषि अर्थव्यवस्था में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। साल 2024-25 में बिहार में लगभग 99,34,000 टन धान का उत्पादन हुआ, जो राज्य के कुल अनाज उत्पादन में 40% से भी अधिक है। अगर हम इन सारी बातों को समझें तो धान हमारे अर्थव्यवस्था के लिए, हमारे किसानों के लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ऐसे में धान की उच्च उपज भी काफी महत्वपूर्ण होती है। उच्च उपज प्राप्त करने के लिए जरूरी होता है कि हमारे किसान भाई बहन उन्नत किस्मों का चयन करें। साथ ही स्वस्थ और मजबूत फसलों के लिए पौधशाला प्रबंधन भी बहुत जरूरी है। तो इन सारी बातों की जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर श्रुति सुमन। मैम, आप हैं सहायक प्राध्यापिका सस्य विज्ञान विभाग से। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
2: धन्यवाद उमा, सबसे पहले मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि धान की खेती में पौधशाला प्रबंधन एक आवश्यक अंग है, और ऐसा कहा जाता है कि अच्छी फसल की शुरुआत ही अच्छी पौधशाला से होती है। यदि पौधशाला में वैज्ञानिक तरीके से बीज का चयन, पोषक तत्वों का प्रबंधन, सिंचाई तथा कीट रोग नियंत्रण किया जाए तो स्वस्थ एवं सशक्त पौध तैयार होते हैं, और ऐसी पौध मुख्य खेत में रोपाई के बाद अच्छी तरह से स्थापित होती है, अधिक कल्ले भी बनाती है तथा अंततः अधिक उपज भी प्रदान करती है। इसलिए किसान भाइयों, हमारे लिए पौधशाला का प्रबंधन बहुत ही आवश्यक है।
0: मैम, अभी तो आपने बताया कि पौधशाला का प्रबंधन जरूरी क्यों है, लेकिन हम बात करते हैं अब पौधशाला के लिए खेत का कैसे चयन करना चाहिए। तो किस तरीके से हमारे किसान भाई बहन पौधशाला के लिए खेत का चयन कर सकते हैं?
2: पौधशाला के लिए समतल, उपजाऊ और सिंचाई की सुविधा वाले खेत को चुनना चाहिए। अगर जो है हमारे पौधशाला का खेत मुख्य खेत के पास हो तो रोपाई में सुविधा होती है। साथ ही साथ धान में जल निकास की व्यवस्था उचित होनी चाहिए। धान की खेती के लिए जल निकास की व्यवस्था उचित होनी चाहिए, तो हमें वैसे खेत का चयन करना चाहिए जहाँ पे कि वाटर लॉगिंग भी ना हो।
0: अगर मैम एक हेक्टेयर में रोपाई की बात करें तो एक हेक्टेयर में रोपाई के लिए कितने नर्सरी क्षेत्र की जरूरत होती है?
2: एक हेक्टेयर में हमें रोपाई के लिए 800 से 1000 वर्ग मीटर नर्सरी क्षेत्र जो है वो पर्याप्त होती है।
0: और बीज की मात्रा कितनी होनी चाहिए?
2: सामान्यतः सामान्य किस्मों के लिए 20 से 30 केजी बीज पर हेक्टेयर बीज दर होना चाहिए, और संकर धान यानी कि जो हमारी हाइब्रिड धान है उनके लिए 15 केजी पर हेक्टेयर का बीज दर पौधशाला के लिए पर्याप्त होता है।
0: जी मैम, और बीज उपचार बहुत जरूरी होता है, तो किस तरीके से बुआई से पहले बीज उपचार करना चाहिए?
2: उमा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है आपने। बुआई से पूर्व बीजोपचार करना जरूरी है, क्योंकि बीज उपचार से बीज जनित रोगों से सुरक्षा मिलती है और साथ ही साथ अंकुरण अच्छा होता है। इससे पौध गलन, झुलसा और अन्य रोगों का प्रकोप भी कम होता है। तो बीजोपचार करने के दो तरीके हैं। पहला तो हम नमक के घोल से बीज का उपचार कर सकते हैं। इसे लवणीय जल उपचार भी कहते हैं। लवणीय जल उपचार के लिए हमें 1.65 केजी सादे नमक को 10 लीटर पानी में उसका घोल बना लेना चाहिए, और इस घोल में बीज को डालकर अच्छी तरह से हिला देना चाहिए। इससे क्या होता है कि स्वस्थ एवं भारी बीज जो हैं वो नीचे बैठ जाते हैं और हल्के खराब और हल्के बीज ऊपर तैरने लगते हैं, और फिर ऊपर तैरने वाले हल्के एवं खराब बीज को हम
3: बर्तन से हटा सकते हैं और शेष डूबे हुए बीज को हमें फिर से शेष डूबे हुए बीज जो वो बीज जो डूब जाते हैं वो स्वस्थ होते हैं और उन्हें हमें फिर से 2 से 3 बार पानी में धोकर सुखा ले छाया में सुखा लेना चाहिए ताकि इस बीज में नमक का कोई अंश ना रहे। तो इस तरह से हम लवणीय घोल बनाकर बीज का उपचार करते हैं। इसके अलावा हम रासायनिक बीजोपचार भी कर सकते हैं। रासायनिक बीजोपचार के लिए हमें सबसे पहले फफूंदीनाशी से उपचार करना चाहिए। फफूंदीनाशी यानी कि फंगीसाइड जो है वो हमें बेवेस्टीन 1 ग्राम या फिर कैप्टन या थीरम ये 2.5 ग्राम पर केजी बीज की दर से उपचारित करना चाहिए। जीवाणुनाशी दवा से उपचार हेतु स्ट्रेप्टोसाइक्लिन या फिर एग्रीमाइसिन हमें 2.5 ग्राम दवा जो है उसका 10 लीटर पानी में घोल बनाकर 10 केजी बीज हेतु प्रयोग करना चाहिए और इन उपचारित बीजों को हमें भींगे बोरी में रखकर 36 से 48 घंटों तक अंकुरित कराना चाहिए। और इस दौरान ये जो जिस समय हम उपचारित बीज को भींगे बोरी में रखते हैं इस दौरान हमें बीच बीच में बीज पर पानी का छिड़काव करते रहना चाहिए।
0: जी मैम, और अगर हम पौधशाला की तैयारी की बात करें तो किसान भाई बहन धान की खेती के लिए पौधशाला की तैयारी कैसे कर सकते हैं?
3: पौधशाला की तैयारी यानी कि जो है हमारा नर्सरी जो है धान के लिए 3 प्रकार से इसकी नर्सरी बनाई जाती है। वेट बेड मेथड, ड्राई बेड मेथड और डेपोग मेथड। वेट बेड मेथड यानी कि जो है वहाँ पे जनरली वहाँ पे प्रेफर किया जाता है जहाँ इरिगेटेड कंडीशन हो यानी कि जहाँ पे जल सिंचाई की सुविधा हो, और ड्राई बेड मेथड जहाँ पे पानी की कमी हो वहाँ पे ड्राई बेड मेथड, और डेपोग मेथड एक ऐसा मेथड है ऑफ रेजिंग सीडलिंग्स है जो कि हमारे देश में फिलीपींस से ये इंट्रोड्यूस किया गया है और इसकी खासियत ये है कि ये 1 हेक्टेयर के लिए इसमें कम एरिया में ही नर्सरी देना होता है, जैसे कि बस 25 से 30 मीटर स्क्वायर एरिया में ही हम 1 हेक्टेयर के लिए इसकी नर्सरी तैयार कर सकते हैं। पर हमारे बिहार राज्य में ज़्यादा हमारे गीली नम विधि यानी कि वेट बेड मेथड का प्रचलन ज़्यादा है, तो इस विधि से जब हम करेंगे तो इसके लिए हमें पौधशाला को तैयार करने के लिए बिचड़ा तैयार करने की प्रक्रिया जो है हमें इसमें ऐसे करने चाहिए कि हमें पौधशाला की तैयारी अच्छी तरह कदवा करके तथा खेत को समतल करके करना चाहिए। इसके लिए खेत में पानी भरकर 2 से 3 बार जुताई करें यानी कि 2-3 प्लॉइंग्स करना चाहिए और ताकि मिट्टी जो है हमारी कादोयुक्त हो जाए और उससे खरपतवार जो है वो भी नष्ट हो जाते हैं। आखिरी जुताई के बाद जब हम 3rd प्लॉइंग करते हैं तो आखिरी जुताई के बाद हमें उसके बाद पाटा लगाकर खेत को समतल करना चाहिए। जब मिट्टी की सतह पर पानी ना रहे तो फिर हमें जो है 1.5 मीटर चौड़ी लंबी क्यारी बनानी चाहिए ताकि बुआई निराई और सिंचाई की विभिन्न शस्त्र क्रियाएं आसानी से की जा सके, और इन 2 क्यारियों के बीच में हमें 30 सेंटीमीटर चौड़ी नाली बनानी चाहिए ताकि उस नाली से हम वहां पर खड़े होकर आसानी से हम खरपतवार नाशी आदि का उपयोग कर सके और सिंचाई की क्रिया भी वहां पे कर सके। इसके बाद पौधशाला में हमें बीजोपचारित एवं अर्ध अंकुरित बीज को कदवा के ऊपर समान रूप से छींट देना चाहिए और शुरू में मिट्टी को केवल गीला रखें। जब हम उसको बीज को छींट देते हैं तो उसके बाद खेत में सिंचाई कर पहले जो है हमें पानी का 1 से 2 सेंटीमीटर तक पानी का लेवल रखना चाहिए और बाद में 4 से 5 सेंटीमीटर तक खेत में पानी को बनाए रखना चाहिए। और इस बात का हमें हमेशा किसान भाइयों आप लोगों को हमेशा ध्यान देना चाहिए कि बिचड़े पानी में डूबे नहीं।
0: और मैम, अगर हम पोषक तत्व प्रबंधन की बात करें तो पोषक तत्व प्रबंधन कैसे करना चाहिए?
3: 1000 मीटर स्क्वायर की नर्सरी में हमें सबसे पहले पोषक तत्व प्रबंधन के लिए 1.5 टन गोबर खाद या 200 से 300 केजी केचुआ खाद को बुआई के 10 से 15 दिन पहले डालना चाहिए ताकि मिट्टी में जल धारण क्षमता बढ़े तथा बिचड़े उखाड़ते समय दिक्कत ना हो। फिर 1000 मीटर स्क्वायर में बीज की बुआई के पूर्व 5 केजी नाइट्रोजन, 5 केजी फॉस्फोरस और 5 केजी पोटास को समान रूप से छिड़क देना चाहिए, को क्यारी में समान रूप से छिड़क देना चाहिए। और फिर हमें बीजों को बहुत ज़्यादा अधिक गहराई में नहीं बोना चाहिए और बीज को अधिक घना भी ना गिराएं। 20 से 30 ग्राम पर मीटर स्क्वायर बीज की मात्रा इसके लिए उपयुक्त होती है, और अगर हम ज़्यादा घना बीज गिराते हैं तो इससे बिचड़े जो हैं वो पतले और कमजोर होंगे। और इसके साथ साथ ही पौधशाला को खरपतवार से मुक्त रखना चाहिए ताकि जड़ों का समुचित विकास हो एवं बिचड़े स्वस्थ और मजबूत हों। इसके अलावा जो हमारी नर्सरी है उसमें कीट व्याधि का भी नियंत्रण पर ध्यान देना चाहिए। और साथ ही साथ वैसे खेत जिसमें जिंक की कमी हो उसमें हम तीसरे सप्ताह में जिंक सल्फेट का छिड़काव कर सकते हैं। इस हेतु प्रति हेक्टेयर 5 kg जिंक सल्फेट को घोल को 2.5 kg चूना के घोल के साथ मिलाकर 700 से 800 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। छिड़काव अगर नहीं कर पा रहे हैं ऐसे जगह पे जहां पे ये छिड़काव नहीं कर पा रहे वहां पे बिचड़ों को उखाड़ने के बाद भी रोपाई के पहले 2% जिंक के घोल में डुबाकर उपचारित कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम नर्सरी में पोषक तत्व का प्रबंधन कर सकते हैं।
0: मैम अब अगर रोपनी की बात करें तो बिचड़े रोपनी के लिए किस समय पर तैयार हो जाते हैं?
3: रोपनी के लिए सामान्यतः 3 सप्ताह के बिचड़े जिसमें कि 4 से 6 पत्तियां आ जाती हैं वो अच्छे माने जाते हैं, लेकिन जो है अलग प्रभेद के अनुसार बिचड़ों का जो है समय अलग अलग होता है। तो जहां पर हम बात करेंगे जो शीघ्र पकने वाली प्रभेद होती है जो कि हम ऊपरी जमीन यानी कि अपलैंड में लेते हैं, वो जैसे कि इस प्रभेद में एग्जाम्पल में आप जानते होंगे सौबर, दीप, सहभागी, शुष्क, सम्राट, इन प्रभेदों का बिचड़ा जो है जब वो 20 से 22 दिन का हो जाता है तब तैयार होता है। जबकि मध्यम जमीन हेतु और जो यानी कि मीडियम लैंड और जो मध्यम अवधि में पकने वाले ऐसे प्रभेद होते हैं वो जैसे कि राजेंद्र, श्वेता, सबौर अर्धजल इनका बिचड़ा जो है 25 से 30 दिन का समय लेता है। फिर निचली जमीन हेतु देर से पकने वाली प्रभेद जो होते हैं उनमें सबौर श्री, राजेंद्र मैसूरी वन, स्वर्णा सब वन, इनके लिए जो है 25 से 30 दिन का बिचड़ा लेना चाहिए।
0: तो किसान भाई बहन मैम के द्वारा बताई बातों का ध्यान रखें और धान की अच्छी पौधशाला तैयार करें ताकि आपके धान की फसल भी निरोगी और स्वस्थ हो। तो मैम आपने जो जानकारी दी उम्मीद है कि हमारे किसान भाई बहनों के लिए काफी महत्वपूर्ण और काफी उपयोगी साबित होगी। मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: धन्यवाद उमा।
0: किसान भाई बहनों आज के लिए इतना ही। मुझे यानी कि आपकी होस्ट और दोस्त उमा को दीजिए इजाजत, लेकिन जाने से पहले खास बात की अपना और अपनी फसलों का रखें विशेष ध्यान और अपनी मिट्टी से करें ढेर सारा प्यार। नमस्कार।
4: उन्नत कृषि।

तैयार है आम के अद्भुत संसार से रूबरू होने के लिए। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर लेकर आ रहा है राष्ट्रीय आम समागम 2026, जिसका आयोजन 27 से 28 जून तक किया जाएगा। आइए और देखिए देश भर की सैकड़ों आम किस्मों की आकर्षक प्रदर्शनी, जहां स्वाद, सुगंध और रंगों का अनूठा संगम आपका स्वागत करेगा। इस विशेष आयोजन की थीम है स्वाद, संस्कृति और समृद्धि का संगम। आम समागम में किसानों, वैज्ञानिकों, उद्यमियों और आम प्रेमियों को एक ही मंच पर आने का अवसर मिलेगा। कार्यक्रम के दौरान आयोजित होगी राष्ट्रीय कार्यशाला, जिसका विषय है आधुनिक तकनीक से गुणवत्ता युक्त उत्पादन, भंडारण एवं प्रसंस्करण। देश के प्रतिष्ठित विशेषज्ञ आम उत्पादन, मूल्य संवर्धन और प्रसंस्करण की आधुनिक तकनीकों पर अपने अनुभव साझा करेंगे। इस अवसर पर आयोजित होगा किसान वैज्ञानिक सम्मान समारोह, जिसमें बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश के उत्कृष्ट आम उत्पादकों को बेस्ट मैंगो फार्मर अवार्ड प्रदान किया जाएगा। महिला आम उत्पादकों एवं मूल्य संवर्धन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिला उद्यमियों के लिए भी विशेष सम्मान और नगद पुरस्कार की व्यवस्था की गई है। और अब आपके लिए एक सुनहरा अवसर, यदि आपके बाग में उत्कृष्ट गुणवत्ता के आम हैं या आपके पास किसी विशेष किस्म के आम उपलब्ध हैं, आप भी आम प्रदर्शनी में अपनी आम की किस्मों को प्रदर्शित कर सकते हैं। आपकी प्रविष्टियों का मूल्यांकन विशेषज्ञों द्वारा किया जाएगा और चयनित प्रतिभागियों को आकर्षक पुरस्कार एवं नगद राशि से सम्मानित किया जाएगा। और हाँ, आम प्रेमियों के लिए होगा एक विशेष आकर्षण, मैंगो ईटिंग प्रतियोगिता। इस रोमांचक प्रतियोगिता के विजेताओं को भी आकर्षक नगद पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। तो देर किस बात की, अपने श्रेष्ठ आमों के साथ आइए, प्रदर्शनी में भाग लीजिए, विशेषज्ञों से सीखिए, नई तकनीकों को जानिए और आकर्षक पुरस्कार जीतने का अवसर पाइए। 27 से 28 जून राष्ट्रीय आम समागम 2026 बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है।

बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 24 से 28 जून के दौरान भागलपुर, बांका, मुंगेर, जमुई इन जिलों में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ हल्की वर्षा होने की संभावना है। दक्षिण बिहार के अन्य जिलों में 24 से 25 जून के दौरान लू चलने की संभावना है। इसके बाद इन जिलों के एक दो स्थानों पर बादल गरजने के साथ हल्की वर्षा की संभावना है। अधिकतम तापमान 37 से 39 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 26 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 60 से 70 प्रतिशत और दोपहर में 25 से 30 प्रतिशत रहने की संभावना है। अनुमान है कि 24 से 28 जून के दौरान 5 से 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दक्षिण पूर्वी हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए, जो किसान भाई बहन धान की खेती करना चाहते हैं उन्हें बता दे, वर्तमान में मानसून की कमजोर स्थिति को देखते हुए किसान भाई बहनों को ये सलाह दी जाती है कि ऊंची भूमि में धान की खेती ना करें। जिन किसानों के पास सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है वे मध्यम अवधि वाले धान की किस्मों का बिचड़ा गिराएं और बीज स्थली में नमी बनाए रखें, इस बात का विशेष ध्यान रखें। बीज स्थली यानी कि नर्सरी में नमी बनाए रखने के लिए जरूरत के हिसाब से जीवन रक्षक सिंचाई जरूर करें और खास तौर से ऊंची भूमि में धान के स्थान पर वैकल्पिक फसलों की खेती पर विचार करना अधिक उपयुक्त होगा। जो मक्का की खेती करना चाहते हैं उन्हें बता दे, खरीफ मक्का की बुआई तभी करें जब आसमान साफ हो और खेत की जुताई में 10 से 15 टन गोबर की सड़ी खाद प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें और ध्यान दें कि बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 30 किलोग्राम नेत्रजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटाश डालना जरूरी होता है। किसान भाई बहनों आपको बता दें, अनुशंसित मक्का की किस्में हैं सुवान, देवकी, शक्तिमान 1, शक्तिमान 2, राजेंद्र शंकर, मक्का 3, गंगा 11। जो मूंग की खेती करते हैं उन्हें बता दे, मूंग की तैयार फलियों की तुड़ाई कर ले और हरी खाद के लिए उसके पौधों को मिट्टी पलटने वाले हल से जमीन में गाड़ दे। यह आपके खेत और आपके खेत की मिट्टी के लिए फायदेमंद होता है। जिनके खेत में सब्जियां लगी हैं उन्हें बता दे, भिंडी, कद्दू, खीरा, नेनुआ और लौकी की फसलों में निराई गुड़ाई जरूर करें, साथ ही खरपतवार नियंत्रित करना भी जरूरी होता है। आपको बता दें कि पत्ती खाने वाली सुंडियों और फल छेदक कीटों की नियमित निगरानी करते रहें और अगर इन कीटों का प्रकोप दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में डाइमेथोएट 30 इसी दवा की 1 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान दें, किसी भी प्रकार का छिड़काव तभी करें जब आसमान साफ हो। किसान भाई बहन आपको बता दें कि खरीफ प्याज की खेती के लिए नर्सरी यानी कि बीज स्थली की तैयारी तभी करें जब आसमान साफ हो और स्वस्थ पौधे के लिए नर्सरी में गोबर की खाद जरूर डालें। अच्छे और स्वस्थ फसल के लिए प्याज की बीज की व्यवस्था प्रमाणित स्रोत से ही करें और बीज गिराने के पहले बीजोपचार करना बहुत जरूरी होता है। बीजोपचार करने से पौधे स्वस्थ और फसल अच्छी होती है। खरीफ प्याज के लिए बीज की दर 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दे, लीची की फल तुड़ाई के बाद बगीचों में आवश्यक छटाई जरूर कर ले जिससे पेड़ों के भीतर पर्याप्त धूप और हवा का संचार हो सके। साथ ही आपको बता दे कि बगीचे में गिरे हुए पत्तों, सूखी शाखाओं और अन्य पौध अवशेषों को इकट्ठा कर हटा दे, इससे कीट और रोगों का प्रकोप कम होता है और पेड़ों की स्वस्थ वृद्धि और विकास को बढ़ावा मिलता है। तो ध्यान दे कि बगीचे में गिरे हुए पत्तों, सूखी शाखाओं और ऐसी कोई भी अन्य जो पेड़ के अवशेष हो उन्हें इकट्ठा करके हटा दे। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दे, दुधारू पशुओं को गर्मी के प्रभाव से बचाने के लिए छायादार और हवादार स्थानों में रखें और उन्हें पर्याप्त मात्रा में साफ और ताजा पीने का पानी उपलब्ध कराएं। पशुपालक भाई बहन ध्यान दे, गला घोटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए टीकाकरण कराना बहुत जरूरी होता है, इसलिए सभी दुधारू पशुओं में टीकाकरण जरूर कराएं। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

आप हर समय थकान महसूस करते हैं, छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है, ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है, बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर आप सबका स्वागत करता है स्वाद संस्कृति और समृद्धि के संगम राष्ट्रीय आम समागम सह कार्यशाला में। तारीख याद रखें 27 से 28 जून 2026।

क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।

0: കൃഷി. नमस्कार, आपने ट्यून किया है 90.8 मेगाहर्ट्ज़. आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो 90.8 एफएम ग्रीन. मैं हूं अनु और उन्नत कृषि कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करती हूं. दोस्तों, आज हम बात करेंगे पके आम के बारे में, खास तौर पर इसके उत्पाद और संरक्षण तकनीक के बारे में जानेंगे. तो इस विषय को लेकर आज हमारे बीच हैं विशेषज्ञ डॉक्टर एम ए आफ्ताब. मैं आपको बता दूँ, ये अध्यक्ष खाद्य विज्ञान एवं तुड़ाई उपरांत प्रौद्योगिकी विभाग बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से हैं. डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में.
1: धन्यवाद
0: डॉक्टर साहब. सबसे पहले तो पके आम के क्या कुछ उत्पाद बनाए जा सकते हैं, उनके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए.
1: देखिए, अभी पके आम की जहाँ तक बात है, ये पके आम का सीजन अभी चल रहा है
0: जी.
1: और इसमें जो अर्ली वराइटीज हैं उसमें जरदालू आ चुके हैं, बम्बई आ चुका है, और उसके बाद फिर मालदे जिसको कि लेंगड़ा भी बोलते हैं वो है, फिर फजली है और भी मल्लिका है. ये सब सारे आम का आप सिलसिला शुरू हो गया है. तो ये आम हम लोग, हमारे किसान भाई जानते हैं कि आम का क्या इम्पोर्टेंस है. इसे फलों का राजा कहा जाता है
0: जी, जी.
1: और इसमें प्रचुर मात्रा में विटामिन ए वो पाए जाते हैं, जो कि विटामिन ए का जो रोल है वो सब लोग जानते हैं कि ये आँख के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है
0: जी, जी.
1: और ऐसे तो और भी सारे विटामिन्स की ज़रूरत पड़ती है इंसान को अपनी ज़िंदगी में. तो विटामिन ए का ये प्रचुर मात्रा आम में पाई जाती है, और आम अभी आ चुका है. अब बात ये है कि आम हाईली सीजनल क्रॉप है. हालांकि ये बहुत सी वराइटीज़ है जो कि अलग अलग टाइम में अलग अलग होते हवाते ये जुलाई अगस्त तक चला जाता है ये आम का सिलसिला. लेकिन ऐसा लीची के साथ नहीं है. आम के साथ ये हमारा सौभाग्य है कि आम की बहुत सी वराइटीज़ यहाँ हमारे क्लाइमेट में ग्रो होती है. और आम अभी शुरू हो गया है, अब ये अगस्त तक चलता रहेगा. अब है कि आम जो है तो चूंकि इतने हाईली प्राइज्ड फ्रूट है, इतना उसका महत्वपूर्ण उसका रोल है हमारे बॉडी पर, विटामिन ए है और भी बहुत से फाइटोकेमिकल्स हैं उसमें, विटामिन्स है, मिनरल्स है, तो ये सारा जो है वो सीज़न भर ही हम इस्तेमाल कर पाते हैं. अगर आउट ऑफ सीज़न, और ये खाने में इतना स्वादिष्ट होता है कि बच्चे जवान और बूढ़े सभी इसको लाइक करते हैं. तो आम का जो है तो हम कुछ जो सीज़न भर है तभी हम इसको यूज़ कर पाएंगे. बाद में इसको यूज़ करने के लिए अगर किसी की ख्वाहिश होती है, किसी की इच्छा होती है कि आम का पेय पदार्थ हम पिएं, तो ऐसे तो बाज़ार में बहुत सी सिंथेटिक मिनरल्स, ये सिंथेटिक बिवरेजेस वगैरह भी उपलब्ध हैं. लेकिन वो कहाँ तक सही है ये कहा नहीं जा सकता है. लेकिन हम आपको आज ये बताएंगे कि आम से प्रसंस्कृत करके कैसे उसके उत्पाद बनाए जा सकते हैं और कम से कम साल भर तो रखा ही जा सकता है. तो ये जो है तो हम आज इसमें बताना चाहेंगे कि आम से क्या क्या बन पाता है. इसमें आम से जो है प्रिजर्व मैंगो पल्प, जैसे कि आम का जो गुठली होता है उसको निकाल के छिलका सा छील करके हम उसका पल्प को भी प्रिजर्व कर सकते हैं, जो कि बाद में हम यूज़ कर सकते हैं. दूसरी बात यह है कि स्क्वैश उसी पल्प से, जब पल्प को हमने प्रिजर्व कर लिया है और भंडार में रख के भंडारण कर लिया है, उसके बाद उसका हम स्क्वैश बना सकते हैं. स्क्वैश एक पेय पदार्थ होता है जो कि चीनी के शीरे के साथ मिला के बनाया जाता है, और उसी को जब 3 गुना पानी में मिला दिया जाता है तो ये RTS बन जाता है हमारा, जो कि डायरेक्ट नुक्कड़ पर जो आप पीते हैं, फ्रूटी पीते हैं, या और भी जैसे कि माजा है, ये सब RTS है, रेडी टू सर्व. तो ये माजा वगैरह को जो है तो हम लोग उसमें कुछ गम मिलाया जाता है इसलिए वो गाढ़ा होता है, लेकिन नॉर्मली इसमें 10% ही जूस रहता है, 10-15% मैंगो जूस रहता है. गाढ़ा पीने में इसलिए लगता है कि उसमें गम्स मिलाए जाते हैं और गम्स मिला के उसको पैकिंग किया जाता है. तो ये स्क्वैश और RTS बन गया मैंगो पल्प से. और अब आता है बहुत ही महत्वपूर्ण है कि मैंगो जैम. आजकल बच्चे TV वगैरह में एड देखते हैं, तो अब टिफ़िन में कोई जो है रोटी भुजिया ले जाना नहीं चाहता है, अब चाहता है कि वो जैम हम ले जाएं. तो मैंगो से हमारे उद्यमी भाई भी इसका व्यवसाय कर सकते हैं जैम बना करके, और घर की महिलाएं भी इसको बना करके रख सकती हैं घर में, ताकि बच्चों को भी दिया जा सके. और ये बहुत ही स्वादिष्ट रोटी में खाने के लिए बहुत अच्छा होता है, इसके बारे में भी अब ये बताएंगे. अगला प्रोडक्ट है, जो 5वां प्रोडक्ट हमने अभी बताने जा रहे हैं, वो है डिहाइड्रेटेड मैंगो स्लाइसेस. आप देखते होंगे कि गाँव में मैंगो या दूसरे सब्ज़ी वगैरह को भी सुखौता बनाया जाता है धूप में रख के, लेकिन धूप में रखने से इसका बहुत ही पौष्टिक ह्रास होता है, जिसमें जो विटामिन्स मिनरल्स जो होते हैं उसमें बहुत ही कमी आ जाती है। उसका इनहाइजीनिक कंडीशन में वो चूँकि सुखाया जाता है बाहर धूप में, उसमें डस्ट पड़ जाता है, उसमें बहुत सा इन्फेक्शन लगने का डर होता है। तो इस तरह से अभी जो है विकसित की गई है एक कैबिनेट ड्रायर, वो बिल्कुल बंद डब्बा रहता है, उसमें अंदर में हीटर लगा रहता है और फैन रहता है, तो फैन से जल्द जो है उसको मैंगो स्लाइसेस को काट के और उसको डाल दिया जाता है, और डालने के बाद वो ड्राई करके हम लोग ड्राइड मैंगो स्लाइसेस भी पैक करके रख सकते हैं, और वो काफ़ी दिनों तक रह सकता है। और वो हम लोग ट्रेवल में जा रहे हैं तो आप एक पैकेट रख लिया, उसमें मैंगो स्लाइसेस है, तो इस तरह से मैंगो स्लाइसेस को सुखौता बना करके, लेकिन हाँ कैबिनेट ड्रायर में ही हो, तब उसका रंग और उसका जो पौष्टिक तत्व है वो सब इंटैक्ट रहता है। और अगला है कि कैंड मैंगो स्लाइसेस। कैंड मैंगो स्लाइसेस क्या है कि जैसे कि आप देखते होंगे कि डब्बा में, टीन के डब्बा में वो जो है, तो बहुत सी चीज़ आने लगे हैं अब, तो हर जगह मिलने लगा है, ये टमाटर का प्यूरी मिल रहा है, मटर मिल रहा है, आप हल्दीराम का रसगुल्ला देखते होंगे, इसको कैनिंग बोलते हैं, कैनिंग डब्बा बंदी। तो डब्बा बंदी करके भी हम लोग मैंगो स्लाइसेस को रख सकते हैं, वो साल भर रह जाता है, और वो सबसे अच्छा और बिना प्रिजर्वेटिव का ये मेथड है। और इसके लिए लेकिन कुछ उपकरण वगैरह लगते हैं जिसके में लागत आती है, एक बार उपकरण में की लागत में आप पैसा खर्च कर दीजिए, फिर अपना काम करते रहिए। तो ये सब उत्पाद हैं, उसके 6 उत्पाद का वर्णन हमने किया है, इसको अब हम बना सकते हैं। और
0: जी तो कैसे बना सकते हैं डॉक्टर साहब, ये भी थोड़ा जानना।
1: उत्पाद बनाने के लिए देखिए एक एक करके मुझे बताना होगा कि प्रिजर्वेशन ऑफ मैंगो पल्प, कैसे हम उसको संरक्षित कर सकते हैं मैंगो के पल्प को। तो मैंगो के पल्प को संरक्षित करने के लिए क्या होता है कि पहले उसको आम को बढ़िया से धो लिया जाता है, वॉशिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए कि एक्स्ट्रा डर्ट है वो है उसमें जो रस निकल जाता है ऊपर से, जो एसिड बोलते हैं उसको, वो निकल जाता है, वो भी धुल जाना चाहिए। और उसके बाद जो है तो उसको बढ़िया से धो करके उसको पीलिंग नाइफ से, स्टेनलेस स्टील का हो, लोहे का बिल्कुल नहीं हो, उससे हम लोग छील लेते हैं। और छीलने के बाद उसको जो है इसमें थोड़ा सा स्लाइसेस काट लीजिए, अगर आपके पास फ्रूट मिल है तो, फ्रूट मिल कुछ नहीं है बल्कि ये मिक्सी जो घर में है ना उसी तरह का होता है फ्रूट मिल, ज़्यादा क्वांटिटी में अगर किसी को पल्प निकालना है तो वो स्लाइसेस काट करके वो फ्रूट मिल में डाल देते हैं, और उसके बाद उसमें वो होमोजेनाइज होकर के बिल्कुल पिसा जाता है, जैसे हम लोग घर में किचन में मिक्सी वगैरह में अगर छोटे पैमाने पर करके देखना चाहते हैं कोई, तो वो जो है तो घर में मिक्सी में उसको स्लाइसेस को काट करके और उसको बिल्कुल होमोजेनाइज करके बना लेते हैं पल्प। अब पल्प निकालने के बाद क्या किया जाता है कि पल्प निकालने के बाद अगर उसमें रेशा है तो थोड़ा मोटे कपड़े से, मोटे जाल वाले कपड़े से उसको छान लेते हैं, इसलिए कि महीन कपड़े वाले जाल से अगर छानेंगे तो वो उसमें आएगा ही नहीं, बहुत कम आएगा। उसके बाद ताकि उसमें इसलिए छानना ज़रूरी है कि अगर कुछ आम में रेशा वगैरह होता है तो रेशा वाले आम को एक तो लेना ही नहीं है, और जो रेशा वाला आम नहीं है जैसे जरदालू है, उसके बाद मालदा है, जो है ये क्या नाम है, फजली है, मल्लिका है, ये सब को हम आप यूज़ कर सकते हैं इसमें। मल्लिका और फजली तो काफ़ी बड़े बड़े आम होते हैं, इसको काटने में भी स्लाइसेस उसमें ज़्यादा स्लाइस निकलता है, पल्प पार्ट ज़्यादा रहता है और गुठली की पार्ट कम होता है, इसलिए वो ज़्यादा सूटेबल है। वो करके उसको जो है हम लोग मिक्सी में ग्राइंड कर लेते हैं, छान लेते हैं, और छानने के बाद उसको जो है उसमें थोड़ा देर उसको चूल्हा पे चढ़ाते हैं, यानी वो फॉर ए फ्यू मिनट्स, ताकि उसमें से अंदर से मैंने 65 to 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म किया जाता है उसको 2-3 मिनट, जबकि और लेमैन लैंग्वेज में ऐसा बताएंगे कि आम के जो ये है पल्प है उससे भाप जब निकलने लगे, बिल्कुल हल्का भाप निकलने लगे, मैंने 100 डिग्री तक नहीं टेम्परेचर पहुंचना चाहिए, भाप जब निकलने लगे तो उसको उतार लीजिए, तो इसको पास्तुरीकरण कहते हैं, पास्तुरीकरण हुआ, ये पास्तुराइज कर लिया उसको, उसके बाद उतार लिया, और उतारने के बाद इसमें परिरक्षक डालते हैं, रासायनिक परिरक्षक, इसमें हम लोग नॉर्मली पोटाशियम मेटाबाइसल्फाइड या सोडियम बेंजोएट डालते हैं, सोडियम बेंजोएट अगर डालना है क्योंकि पल्पी है इसलिए सोडियम बेंजोएट ज़्यादा सूटेबल होगा, तो सोडियम बेंजोएट में बेंजोइक एसिड जो होता है वही होता है इसमें, तो वो उसमें 0.02% 200 मिलीग्राम प्रति लीटर, यानी एक एक ग्राम जो है पाँच लीटर अगर पल्प है तो आप उसमें सिर्फ एक ग्राम डालेंगे, आप 1000 मिलीग्राम एक ग्राम डाल करके उसको स्वच्छ जल में, यानी पानी है उसको बॉयल कर लीजिए, आप बॉयल करके उसमें डाल दीजिए और डालने के बाद उसमें उसको पूरे पल्प में उसको मिक्स कर दीजिए। अब मिक्स करने के बाद जो है उसको फिर हम लोग अगर अगर हेड स्पेस छोड़ा है तो थोड़ा सा पोटेशियम मेटाबाई सल्फाइड भी ऊपर में थोड़ा दे सकते हैं, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और उसके बाद बंद करके उसको सील कर देते हैं और इस पल्प को हमने प्रिजर्व कर लिया। अब ये पल्प अगले साल तक के लिए प्रिजर्व हो गया, और जब इसकी ज़रूरत पड़ी, मान लिया आपको स्क्वैश बनाना है या आरटीएस बनाना है या जैम बनाना है या कुछ भी बनाना है, तो ये आप इससे निकाल के व्यवहार कर सकते हैं। जब आम का सीज़न ख़त्म भी हो जाए फिर भी आप इसको निकाल करके आप व्यवहार कर, नॉर्मली तो वही करेंगे लोग कि जब प्रिजर्व करेंगे तो उसको जब जब तक आम चल रहा है उसी से हम अपना बना सकते हैं जो भी बनाना हो उत्पाद, तो उस तरह से वो हम लोग सील करके रख देते हैं। और अब स्क्वैश देखिए, अब स्क्वैश पर आते हैं, नेक्स्ट प्रोडक्ट है स्क्वैश। ये बीवरेजेस में आता है, पेय पदार्थ, नॉन फर्मेंटेड बीवरेजेस।
0: अच्छा।
1: तो अनफर्मेंटेड बीवरेजेस में दो आते हैं, स्क्वैश एंड आरटीएस। तो स्क्वैश बनाने के लिए क्या है कि ये पल्प को हम लोग, मान लिया अगर हम एक लीटर पल्प को हमने लिया और लेने के बाद उसको जो है उसका डेढ़ गुना चीनी का शीरा बना लेते हैं, डेढ़ गुना चीना, दुगुना इसलिए नहीं देते हैं कि ऑलरेडी इसमें चीनी है। ये आम मीठा आम है, पका हुआ आम, ये कच्चा आम अगर हम लेंगे तो कच्चे आम में फिर हमको चीनी दुगुना मिलाना पड़ेगा। तो 1.5 kg चीनी इसमें हम डालते हैं, और इसमें नहीं डालेंगे, मतलब अलग से शीरा में डालेंगे। शीरा बनाने के लिए उसका हाफ पानी डालेंगे, यानी अगर 1.5 kg चीनी लिया है तो उसमें 750 मिलीलीटर पानी मिला करके उसको गर्म करके शीरा हम लोग तैयार कर लेंगे। अब है कि अगर हम जब शीरा मिला रहे हैं तो हल्का सा उसमें सिट्रिक एसिड मिलाते हैं, 1 kg चीनी अगर है तो उसमें 4 g सिट्रिक एसिड, चूँकि हमने 1.5 kg चीनी दिया है तो इसलिए हमको 6 g सिट्रिक एसिड को पानी में घोल के उस उबलते हुए नहीं, मैंने गर्म जो हम चढ़ाए हैं गर्म करने के लिए ताकि चीनी उसका घुल जाए पानी में, तो उसको हम लोग डाल देते हैं सिट्रिक एसिड को। और सिट्रिक एसिड से क्या होता है कि वो चीनी की जो गंदगी है अगर, तो वो भी निकल जाती है, उसमें जो कीड़ा मकोड़ा मान लिया अगर आ गया है तो वो भी निकल जाता है। उसके बाद जब शीरा ये बन जाता है हमारा, चीनी घुल जाता है, सिर्फ चीनी घुलाना है, शीरा को बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है। और उसके बाद जब इसको जो है हम लोग छान लेते हैं, और छानने के बाद धीरे धीरे उसमें वो जो हमारा पल्प है 1 kg पल्प है, पल्प को किसी बर्तन में डाल देते हैं, बोतल से निकाल के पल्प में डाल देते हैं या डब्बे से, और उसके बाद 1 लीटर उसमें धीरे धीरे हम लोगों को ये शीरा जो है चीनी का जो सिरप है उसको धीरे धीरे मिलाते हैं और चलाते जाते हैं ताकि वो उसमें विलीन हो जाए, सारा शीरा जो है धीरे धीरे उसमें घुल जाए। और घुलने के बाद ये जो क्वांटिटी मेरा 1 kg से बढ़ के 2.5 kg हो गया, तो इसको हम लोग क्या करते हैं कि अब ये शीरा मेरा, ये स्क्वैश तैयार हो गया। चूँकि परिरक्षक हमने पहले से दे रखा है उसमें, इसलिए दोबारा परिरक्षक देने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम डायरेक्ट बना रहे हैं आम का तो उसमें हम इस समय परिरक्षक दे सकते हैं, तो उसमें 0.06% डालते हैं पोटाशियम मेटाबाई सल्फाइड, इसमें लिख लीजिए, चूँकि इसमें पानी मिल गया है, इसमें चीनी मिल गया है, हालांकि चीनी भी प्रिजर्वेटिव है लेकिन उस क्वांटिटी में हम नहीं दे रहे हैं जितना उसमें प्रिजर्व हो सके, तो उसमें एक थोड़ा बहुत जो है प्रिजर्वेटिव भी डालते हैं। तो 0.06% यानी 600 मिलीग्राम 1 लीटर में डालना। तो अगर ये 2 लीटर हमारा बना है पूरा चीनी का सिरप और ये गुदा मिलाने के बाद, तो उसमें हम लोगों को 1200 मिलीग्राम यानी 1 g से थोड़ा ज़्यादा, सवा ग्राम के करीब उसको हम लोग पोटाशियम मेटाबाई सल्फाइड, इस चीज़ को जान लीजिए। उस समय हम लोग पल्प को प्रिजर्व करने के लिए सोडियम बेंजोएट डाले थे, अभी हमें पोटाशियम मेटाबाई सल्फाइड डालना है, और डाल के उसमें अच्छी तरह से मिक्स करके स्टरलाइज बॉटल में, अगर प्लास्टिक का बॉटल है तो पानी से धो के उसको धूप में अच्छा से सुखा के, और उसको जैसे पानी का जो बॉटल मिलता है हम लोग RO वाटर वगैरह पीते हैं उसमें भी प्रिजर्व कर सकते हैं, उसको करके उसमें जो है बढ़िया से स्वच्छ जल से धो के धूप में सुखाने के बाद हम लोग जो है उसको उसमें भर देते हैं, भरने के बाद कैप को जो है सील कर देते हैं। तो ये हमारा स्क्वैश बन गया। अब स्क्वैश में अगर मुझे व्यवसाय करनी है तो मुझे लाइसेंस लेना होगा, FSSAI का लाइसेंस लेना होगा। लाइसेंस की भी प्रक्रिया अब गवर्नमेंट ने बहुत आसान कर दिया है, वो ऑनलाइन अप्लाई होता है। इंडस्ट्रीज़ डिपार्टमेंट हर शहर में होता है, तो इंडस्ट्रीज़ डिपार्टमेंट में ये इसका पता लगाना होगा कि भाई हमने ट्रेनिंग लिया है या सीखा है। हमारे यहाँ किसी विश्वविद्यालय सब और में ट्रेनिंग भी हम लोग करवाते हैं, तो ट्रेनिंग आप ले लीजिए, सर्टिफिकेट हो जाएगा, तो उससे आपको बैंक का लोन भी मिलने में आसानी होगी और आपको लाइसेंस भी मिलने में आसानी होगा। तो ये आप करके व्यवसाय भी कर सकते हैं और कर सकते हैं। अब अगर मान लिया RTS बनाना है आपको, नुक्कड़ पर छोटे छोटे 100-150 ml में आपको बाहर भेज करके, जैसे लोग फेंटा कोका कोला जो कोल्ड ड्रिंक जो कार्बोनेटेड बेवरेजेस पीते हैं लोग, तो अब ये लोग जान रहे हैं कि इसमें कुछ भी नहीं है सिवाय गैस के और कुछ भी नहीं है। तो उसमें क्या है कि आप लोग बेवरेज बना, इसी स्क्वैश को अगर 3 times आप मिला देते हैं पानी इसमें, तो ये बन गया RTS। और RTS बनाने के बाद उसको बॉटलिंग कर दीजिए, क्रॉन कॉर्क सीलिंग कर दीजिए, और उसके बाद एक बड़े से पतीली में डाल करके उसको फिर से स्टरलाइज करना पड़ता है बोतल के समेत, और इसको जो है तो 70-80 degrees centigrade पर कम से कम 15 मिनट तक उसको बॉयल करते हैं। तो उसमें ये सावधानी बरतनी पड़ती है कि इसमें जो बॉटल है वो हीट रेसिस्टेंट होना चाहिए, नहीं तो इसमें जाने के बाद बॉयलिंग वाटर में जो पानी में जाएगा ये उबलते पानी में, गर्म पानी में, तो वो फट सकता है। तो हीट रेसिस्टेंट बॉटल लेना होगा। दूसरा ये प्रॉब्लम है कि इसमें जहाँ पर आप मान लिया सेल के लिए डाल रहे हैं किसी नुक्कड़ पर, तो उसको फिर से बॉटल को वापस लेना होगा, ये एक है प्रॉब्लम। और ये बहुत आसान है, लेकिन बहुत आसान है शीशे के बोतल में करना, इसलिए कि उसको आप फिर से स्टरलाइज कर रहे हैं। और इस तरह से हम लोग RTS भी बना सकते हैं। घर में अगर आपके पास स्क्वैश का बोतल रखा हुआ है, तो आप कोई आपके यहाँ कोई आया गेस्ट आया है, तो आप उसमें 1/4 जो है आप ले लीजिए स्क्वैश, ढाल लीजिए ग्लास में, और 3/4 जो है 3 हिस्सा पानी उसमें मिला के आप उसमें पानी से चम्मच से चला के आप सर्व कर सकते हैं। तो ये हाईली न्यूट्रिशस हुआ। ये वही चीज़ फ्रूटी में भी है। फ्रूटी जो पैक करते हैं उसका जो पैकिंग इक्विपमेंट्स है, उसका जो पैकिंग ये है, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो बहुत कॉस्टली है। 25-30 lakh रुपए का आता है वो सिर्फ पैकिंग के लिए। चीज़ उसमें वही है जो आपको हमने बताया बनाने के लिए, वैसे ही कर सकते हैं आप। तो ये हो गया है ना। अब एक चीज़ और बताते चले हम कि ग्रीन मैंगो के बारे में हमने नहीं बताया।
0: जी जी।
1: अभी हरा आम का देखिए सीजन है, और हरा आम बहुत टूट रहा है, गिर रहा है, आंधी तूफान आना नेचुरल है, वो आता ही है इस समय में। तो उसको हरा आम के लिए भी इसी तरह से हम लोग प्रिजर्व कर सकते हैं पल्प को, लेकिन इसमें क्या है कि आम को छीलने के बाद उसको हम लोग बॉयल कर लेते हैं। अच्छा। और बॉयल करने के बाद उसको जो है फिर उसको निकाल करके हाथ से बिल्कुल उसका पल्प निकाल कर उसको छान लेते हैं, और बॉयल जब हमने कर लिया है तो उसको पास्टोरीकरण करने की ज़रूरत नहीं है। बॉयलिंग से वो निकला है पल्प, चूँकि कड़ा पल्प रहता है कच्चे आम में, और बॉयलिंग के बाद उसको निकाल दिया, और निकालने के बाद उसको उसी तरह से प्रिजर्वेटिव हम लोग डाल देते हैं उसमें, जैसे हमने पके आम के लिए बताया, और क्वांटिटी वही रहेगी उसकी भी, सोडियम बेंजोएट और पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड। स्क्वैश बनाने के लिए भी सीख वही विधि अपनाई जाएगी, लेकिन उसमें यह है कि स्क्वैश बनाने के लिए उसमें हमने 1.5 kilo चीनी लिया था, क्योंकि आम मीठा होता है पका हुआ आम, तो कच्चे

0: पर कि दिस इज़ नॉट फॉर फूड पर्पस, तो उसके लिए अलग से बुश कंपनी का या और भी बहुत सी कंपनी है, तो उसका जो है तो वो रंग होता है अलग से आता है, वो खाने वाला रंग बड़े बड़े शॉपिंग मॉल में आप देखिएगा कि वो अलग से आता है, 2 ग्राम 3 ग्राम का ही पैकेट आता है, ज़्यादा नहीं आता है, इसलिए कि बहुत कम पड़ता है वो, तो घर में किचन में रखने के लिए उतना ही बहुत है। तो ये रंग भी और एसेंस भी आपको अब देखिएगा कि एसेंस जो है FFB कंपनी का हम लोग यूज़ करते हैं, वो कार्ड का भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये एसेंस भी 0.001% कलर डालना अगर है तो 0.001% एप्पल ग्रीन कलर डालना होगा, एप्पल ग्रीन कलर डालना है ग्रीन मैंगो के लिए, और कलर तो राइप मैंगो में तो कलर रहता ही है, इसलिए उसमें देने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये तो हो गया RTS स्क्वैश और मैंगो पल्प को कैसे हम पके आम का और कच्चे आम का दोनों का प्रिजर्व कैसे करेंगे, इसके बारे में हमने बता दिया
1: जी। डॉक्टर साहब आपको बहुत बहुत धन्यवाद इस अच्छी और विशेष जानकारी के लिए, और आशा करते हैं आम को लेकर बहुत सारे लोग उत्सुक होते हैं, सभी लोगों को ये आम फल का राजा है इसलिए काफ़ी पसंद होता है, स्वादिष्ट भी है और पौष्टिकता भी इसमें बहुत ज़्यादा रहती है। तो इसे लेकर इसके उत्पाद को लेकर क्या कुछ हम बना सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा लोगों के मन में उत्सुकता रहती है जो आपने जानकारी दी। तो आशा करते हैं हमारे सभी श्रोताओं को इस वार्ता को सुनकर लाभ मिलेगा।
0: विशेष जानकारी के लिए आप हमारे विभाग बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर में, हमारा डिपार्टमेंट है फूड साइंस एंड पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी, खाद्य विज्ञान एवं तुलाई उपरांत प्रौद्योगिकी विभाग, इसमें आप संपर्क कर सकते हैं और हमसे आके भी पर्सनली मिल सकते हैं। हम लोग कंसल्टेंसी भी देते हैं किसानों को, और उद्यमी हमारे यहाँ से बहुत से उद्यमी बने हैं, काफी लोग काम भी कर रहे हैं इस पे।
1: तो श्रोताओं अगले दिन एक अलग विषय के साथ फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।
2: उन्नत कृषि

तैयार है आम के अद्भुत संसार से रूबरू होने के लिए। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर लेकर आ रहा है राष्ट्रीय आम समागम 2026, जिसका आयोजन 27 से 28 जून तक किया जाएगा। आइए और देखिए देश भर की सैकड़ों आम किस्मों की आकर्षक प्रदर्शनी, जहां स्वाद, सुगंध और रंगों का अनूठा संगम आपका स्वागत करेगा। इस विशेष आयोजन की थीम है स्वाद, संस्कृति और समृद्धि का संगम। आम समागम में किसानों, वैज्ञानिकों, उद्यमियों और आम प्रेमियों को एक ही मंच पर आने का अवसर मिलेगा। कार्यक्रम के दौरान आयोजित होगी राष्ट्रीय कार्यशाला, जिसका विषय है आधुनिक तकनीक से गुणवत्ता युक्त उत्पादन, भंडारण एवं प्रसंस्करण। देश के प्रतिष्ठित विशेषज्ञ आम उत्पादन, मूल्य संवर्धन और प्रसंस्करण की आधुनिक तकनीकों पर अपने अनुभव साझा करेंगे। इस अवसर पर आयोजित होगा किसान वैज्ञानिक सम्मान समारोह, जिसमें बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश के उत्कृष्ट आम उत्पादकों को बेस्ट मैंगो फार्मर अवार्ड प्रदान किया जाएगा। महिला आम उत्पादकों एवं मूल्य संवर्धन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिला उद्यमियों के लिए भी विशेष सम्मान और नगद पुरस्कार की व्यवस्था की गई है। और अब आपके लिए एक सुनहरा अवसर, यदि आपके बाग में उत्कृष्ट गुणवत्ता के आम हैं या आपके पास किसी विशेष किस्म के आम उपलब्ध हैं, आप भी आम प्रदर्शनी में अपनी आम की किस्मों को प्रदर्शित कर सकते हैं। आपकी प्रविष्टियों का मूल्यांकन विशेषज्ञों द्वारा किया जाएगा और चयनित प्रतिभागियों को आकर्षक पुरस्कार एवं नगद राशि से सम्मानित किया जाएगा। और हाँ, आम प्रेमियों के लिए होगा एक विशेष आकर्षण, मैंगो ईटिंग प्रतियोगिता। इस रोमांचक प्रतियोगिता के विजेताओं को भी आकर्षक नगद पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। तो देर किस बात की, अपने श्रेष्ठ आमों के साथ आइए, प्रदर्शनी में भाग लीजिए, विशेषज्ञों से सीखिए, नई तकनीकों को जानिए और आकर्षक पुरस्कार जीतने का अवसर पाइए। 27 से 28 जून राष्ट्रीय आम समागम

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि। नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो 90.8 एफएम ग्रीन और हमारे खास कार्यक्रम उन्नत कृषि कार्यक्रम में हम आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, अगर बात करें हम पिछले ज़माने की, तो लोग काफ़ी ज़्यादा शरीर से बलिष्ठ हुआ करते थे। क्यों? क्योंकि उनके खान पान का एक हिस्सा मड़ुआ यानी कि रागी भी हुआ करता था, जो हमारे शरीर को पोषण युक्त जो तत्व हैं वो तो देते ही थे और शरीर को बीमारियों से भी दूर रखते थे। तो आज डॉक्टर साहब हमारे बीच हैं, डॉक्टर आनंद। मैं आपको बता दूं, ये असिस्टेंट प्रोफेसर हैं प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स डिपार्टमेंट बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सबौर से, और आज रागी की वैज्ञानिक खेती के बारे में आज आपको बहुत सारी जानकारी देंगे। तो चलिए आज डॉक्टर साहब से सबसे पहले जानते हैं कि रागी की पौष्टिक और आर्थिक उपयोगिता के बारे में।
1: किसान भाई को नमस्कार। आज हम लोग विशेष रूप से चर्चा करेंगे मोटे अनाज, जो हमारे पूर्वज पहले बहुत अच्छी तरह से खेती करते थे, लेकिन जैसे जैसे हमारा कृषि विकास की ओर दौड़ा, विकास के पथ पर आगे बढ़ता जा रहा है, तो हम लोग मोटे अनाज को छोड़ते चले गए। लेकिन अब आवश्यकता है कि मोटे अनाज की खेती विशेष रूप से की जाए। तो किसान भाई, इसके लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मोटे अनाज में रागी का एक विशिष्ट स्थान है, क्योंकि रागी ऐसा फसल है जिसमें कैल्शियम की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। जैसे 100 ग्राम दाने में 344 मिलीग्राम इसमें कैल्शियम मिलता है, जिसका उपयोग करके हमारी जो हड्डियां हैं वो मजबूत होती ही हैं। रागी बच्चों और बड़ों के लिए सबसे उत्तम आहार है। जैसा कि हम जानते हैं कि मोटे अनाज में प्रोटीन, वसा, रेसा और कार्बोहाइड्रेट प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, उसी तरह रागी में 65-70% कार्बोहाइड्रेट, 8% प्रोटीन और 15-20% जो रेसा है, डायट्री फाइबर इसको बोलते हैं, तथा 2.5-3.5% खनिज लवण पाए जाते हैं, जो हमारे शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण विटामिन्स में थायमिन, राइबोफ्लेविन, नाइसिन एवं आवश्यक अमीनो एसिड की प्रचुर मात्रा पाई जाती है, जो कि विभिन्न शारीरिक क्रियाओं के लिए हमारे लिए बहुत आवश्यक होते हैं। जैसे रागी युक्त आहार में कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है, तो जो आजकल शुगर की बीमारी है उसमें भी यह बहुत अच्छा फायदा करता है। कैल्शियम व अन्य खनिज तत्वों के प्रचुर मात्रा होने के कारण जो हम लोग को आजकल बुढ़ापा में ऑस्टियोफोरोसिस बीमारी से हम लोग ग्रसित रहते हैं, से संबंधित बीमारियों तथा बच्चों में आहार हेतु विशेष रूप से यह बहुत ही लाभदायक है। इसके दानों का इस्तेमाल खाने में कई तरह के से किया जाता है। इसके दानों को पीसकर आटा बनाया जा सकता है, जिसे मोटी डबल रोटी, साधारण रोटी और डोसा बनाया जा सकता है। अनाज भंडारण कीड़े के प्रतिरोधी होने के कारण इसको हम लोग बहुत 50 साल तक अच्छी स्थिति में रख सकते हैं। और जैसा कि आजकल खाद असुरक्षित जो हमारे गरीब किसान हैं, ये उन लोगों के लिए एक वरदान फसल है।
0: डॉक्टर साहब, अब बात करते हैं इसके उत्पादन की और उन्नत शस्य क्रियाओं की।
1: जैसे रागी की खेती शुष्क और आंध्र शुष्क जलवायु इसके लिए सबसे उपयुक्त होती है। जैसा कि हमारे बिहार में इसकी खेती गर्मियों के मौसम में खरीफ की फसल के साथ की जाती है। इसकी खेती के लिए गर्मी का मौसम सबसे उपयुक्त होता है। खरीफ की फसल होने के कारण सर्दियां शुरू होने के पहले इसे काट लिया जाता है, इस कारण सर्दी का प्रभाव इस पर नहीं देखने को मिलता है। इसकी खेती के लिए सामान्य बारिश की जरूरत होती है, अधिक बारिश होना इसके लिए उपयुक्त नहीं है। रागी के पौधे गर्मियों के मौसम में अधिकतम 35 डिग्री तापमान पर आसानी से विकास कर लेते हैं, लेकिन शुरुआत में बीजों को अंकुरित होने के लिए 20 से 22 डिग्री तापमान की ज़रूरत होती है। उसके बाद पौधों के विकास करने के लिए 30 डिग्री के आसपास तापमान का होना उपयुक्त माना गया है। तो किसान भाई, जैसा कि हम लोग रागी का यदि हम लोग खेती करते हैं, तो भूमि का चुनाव हम लोग कैसे करना चाहिए, इसके बारे में हम जरा चर्चा करेंगे। रागी की खेती उपजाऊ और कार्बनिक पदार्थों से भरपूर मिट्टी में की जा सकती है, लेकिन अच्छा उत्पादन बलुई दोमट को सबसे उपयुक्त माना जाता है। इसकी खेती के लिए भूमि में जल भराव नहीं होना चाहिए, पानी नहीं लगना चाहिए, क्योंकि जल भराव होने की वजह से इसके पौधे खराब हो जाते हैं। इसकी खेती के लिए जो हमारी भूमि है उसका पीएच मान 5.5 से 8 के बीच होनी चाहिए और भूमि की तैयारी में हम लोग को कुछ बातों पर ध्यान देना है, जैसे पूर्व फसल में कटाई के पश्चात आवश्यकता अनुसार ग्रीष्म ऋतु में 1 या 2 गहरी जुताई कर देना चाहिए किसान भाइयों को, जिससे खेत से फसलों एवं खरपतवार के अवशेष एकत्रित हो उसे नष्ट कर दें। मानसून प्रारंभ होते ही खेत में 1 या 2 जुताई करके पाटा लगा के एकदम खेत को समतल कर दें। और अच्छी उपज लेने के लिए किसान भाई को चाहिए कि बुआई के पूर्व बीज को अच्छी तरह से साफ कर लें और उसके बाद जो फफूंदी नाशक दवा होती है कार्मेंडाजिम उससे उपचारित करके वहीं बोएं। रागी की बुआई 2 तरह से की जाती है, एक होती है सीधी बुआई और दूसरा होता है रोपा पद्धति, इसको ट्रांसप्लांटेड हम लोग कहते हैं। सीधी बुआई जून के अंतिम सप्ताह से जुलाई के मध्य तक मानसून वर्षा होने पर की जाती है और छिटकवा विधि या कतारों में बोई जाती है। पंक्ति में बुआई करने हेतु जो हमारा बीज लगता है वो 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, यदि हम छिटकवा विधि से बुआई करते हैं तो उसमें बीज की मात्रा बढ़ जाती है जो 12 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखते हैं। कतार से कतार की दूरी हम लोग को हर समय 22.5 से 30 सेंटीमीटर रखनी चाहिए और पौधे से पौधे की दूरी 8 से 10 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। रोपाई के लिए नर्सरी में बीज के मध्य से जुलाई के प्रथम सप्ताह तक डाल देनी चाहिए, नर्सरी में लगा देनी चाहिए। 1 हेक्टेयर में रोपाई के लिए बीज की मात्रा 5 किलोग्राम लगती है एवं 20 से 25 दिनों का पौध जो सीडलिंग है होने पर रोपाई करनी चाहिए। रोपाई के समय कतार से कतार की दूरी 22.5 सेंटीमीटर और पौधा से पौधा की 10 सेंटीमीटर रहनी चाहिए, जिससे कि हमारा अच्छा उत्पादन मिल सके। रागी के बीजों में दोनों विधि से रोपाई के दौरान इसके बीजों को भूमि में 3 से 4 सेंटीमीटर के गहराई पर बीज को बोना चाहिए ताकि बीज का अंकुरण अच्छा हो सके। दूसरे सबसे बड़ी बात है कि खेत की तैयारी हम लोग कैसे करें। तो रागी की रोपाई के लिए भुरभुरी मिट्टी का होना बहुत आवश्यक माना जाता है, क्योंकि भुरभुरी मिट्टी होने से बीजों का अंकुरण अच्छे से होता है। और रागी की खेती के लिए शुरुआत में खेतों की तैयारी के दौरान खेत में मौजूद पुरानी फसलों को अवशेषों को नष्ट कर खेत को मिट्टी पलटने वाले हल से अच्छी तरह जुताई कर दें। उसके बाद कुछ दिन के लिए खेत को खुला छोड़ दें ताकि सूरज की धूप को मिट्टी में मौजूद हानिकारक जो कीट रहते हैं उसे नष्ट हो जाए। और खेत को खुला छोड़ने के बाद खेत में जैविक खाद हम लोग को, जैसे आजकल सरकार भी बहुत ज़्यादा इस पर जोर दे रही है कि जैविक खाद को हम लोग अपनाना चाहिए, तो जैविक खाद के रूप में पुरानी गोबर की खाद को डालकर उन्हें अच्छी तरह से मिला दें। और खाद को मिट्टी में मिलाने के लिए खेत को कल्टीवेटर के माध्यम से 2 से 3 तिरछी जुताई कर दें। खाद को मिट्टी में मिलाने के बाद पानी चलाकर खेत का पलेवा कर दें। पलेवा करने से एक फायदा है कि 3-4 दिन बाद जब जमीन की ऊपरी सतह हल्की सूखी हुई दिखाई देने लगे तो फिर खेत की जुताई कर दें। उसके बाद खेत में रोटावेटर चलाकर मिट्टी को भुरभुरा बना लें और मिट्टी को भुरभुरा बनाने के बाद खेत में पाटा लगाकर भूमि को समतल कर दें ताकि बारिश के मौसम में जल भराव जैसी समस्या का सामना न करना पड़े, जो एक बहुत बड़ा रागी के फसल में एक है कि यदि पानी में जल भराव होता है तो हमारा फसल नहीं अच्छा होगा। जैसे उर्वरक की मात्रा के बारे में किसान भाइयों को जरा बता दें, रागी के पौधों में उर्वरक की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। इसकी खेती के लिए शुरुआत में खेत की तैयारी के वक्त लगभग 12 से 15 गाड़ी जो होता है पुरानी गोबर की खाद को खेत में डालकर अच्छे से मिट्टी में मिला देना चाहिए। इसके अलावा यदि हम रासायनिक खाद के रूप में 1.5 से 2 बोरे NPK की मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से, यानी यदि हम रेनफेड कल्टीवेशन वर्षा आधारित खेती करते हैं तो उसमें 40-20-20 यानी 40 kg नेत्रजन, 20 kg फॉस्फोरस और 20 kg पोटास। यदि हम इरिगेटेड कंडीशन यानी सिंचित अवस्था में रागी की खेती कर रहे हैं तो आखिरी जुताई तो उसमें जो उर्वरक की मात्रा होती है वो 60-30-30 यानी 60 kg नेत्रजन, 30 kg फॉस्फोरस P2O5 और 30 kg पोटास प्रति हेक्टेयर की दर से देना चाहिए। तो नेत्रजन की जो आधी मात्रा होती है और फॉस्फोरस और पोटास की पूरी मात्रा खेत की आखिरी जुताई के वक्त खेत में छिड़क कर मिट्टी में मिला देना चाहिए। और दूसरी जो आधी मात्रा जो शेष आधी मात्रा जो नेत्रजन की होती है और प्रथम सिंचाई के बाद उसमें दे देना चाहिए। तो एक और सबसे बड़ी चीज़ है वो खरपतवार नियंत्रण। तो रागी के खेत में खरपतवार नियंत्रण रासायनिक और प्राकृतिक दोनों तरीकों से किया जाता है। यदि हम रासायनिक तरीके से खरपतवार के लिए नियंत्रण के लिए बीज रोपाई के पहले एक खरपतवार नाशी होता है आइसोपट्रोन, उसका डोज जो है 0.5 केजी एक्टिव इंग्रेडिएंट पर हेक्टेयर, ये रेनफेड कंडीशन में जो रेनफेड जो वर्षा आश्रित क्षेत्र है उसमें हम लोग यूज करते हैं, और सिंचित क्षेत्र में ऑक्सीफ्लोरोफेन 0.1 लीटर एक्टिव इंग्रेडिएंट पर हेक्टेयर की उचित मात्रा का छिड़काव खेत में कर देना चाहिए। यदि हम प्राकृतिक तरीके से खरपतवार नियंत्रण पौधे को की गुड़ाई कर लिया जाता है तो इसके लिए शुरुआत में पौधे की रोपाई के लगभग 20 से 22 दिन बाद उसकी पहली निकाई गुड़ाई कर दें, और आगे की खेती में प्राकृतिक तरीके से खरपतवार नियंत्रण के लिए दो बार निकाई गुड़ाई काफ़ी आवश्यक है। इसके पहले निकाई गुड़ाई के लगभग 15 दिन बाद पौधों को एक बार और गुड़ाई कर दें, यानी 45 दिनों तक जो हमारा रागी का खेत हो वो खरपतवार से मुक्त हो।
0: जी, और अब बात करते हैं अधिक उपजशील और अनुशंसित किस्मों के बारे में।
1: तो किसान भाई, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अच्छी उपज लेने के लिए किसान भाइयों को चाहिए कि अनुशंसित किस्में तथा जो अधिक उपजशील हो तथा गुणवत्तापूर्ण बीज का ही चयन करना चाहिए। तो एक जो किस्म है वो है VL मांडू 379, जो हमारे विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान से शाला जो अल्मोड़ा में है वहाँ से विकसित की गई है। ये अभी 2018 में CBRC से भी नोटिफाइड वैरायटी है। इसकी परिपक्वता अवधि 103 से 111 दिन में ये मैच्योर कर जाती है, परिपक्व हो जाती है। इसकी औसत उपज बहुत अच्छी है, 31.3 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है, और इसका बुआई का समय 2 मई से जून के प्रथम सप्ताह तक इसके बुआई कर सकते हैं। दूसरी जो अच्छी प्रभेद है वो OEB 526, ये OEB 526 ओडिशा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो भुवनेश्वर में अवस्थित है वहाँ की से विकसित की गई है। इसकी परिपक्वता अवधि 110 से 115 दिनों की ये प्रभेद है। इसकी औसत उपज 25 से 26 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है, और यह जो झुलसा रोग इसमें लगता है उसके प्रति मध्यम प्रतिरोधी है। दूसरा जो अधिक उपजशील किस्म है वो OEB 532, ये भी ओडिशा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भुवनेश्वर से विकसित की गई है, 2012 में रिलीज हुई, जिसकी इसकी भी परिपक्वता इसे पकने की अवधि है 110 से 115 दिन। इसकी औसत उपज 22 से 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है, ये भी झुलसन रोग के प्रति मध्यम प्रतिरोधी है। इसके अलावा दो और प्रभेद जो हमारे बिहार के लिए अनुशंसित है, जोन के लिए अनुशंसित है, वो उसमें है VL 352, जो विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान शाला अल्मोड़ा से विकसित की गई। इसकी परिपक्वता अवधि ये सौ ड्यूरेशन की वैरायटी है, ये 95 से 100 दिनों में तैयार हो जाती है। इसकी औसत उपज 33 से 35 क्विंटल पर हेक्टेयर है, ये भी झुलसा रोग के प्रति मध्यम प्रतिरोधी है। एक और किस्म है VL 376, इसकी परिपक्वता अवधि 103 से 109 दिनों की है, औसत उपज 29 से 31 क्विंटल की प्रति हेक्टेयर है, और झुलसा रोग के प्रति मध्यम प्रतिरोधी है। इसके अलावा दो पुरानी प्रभेद भी है, जैसे A404, ये BAU रांची से विकसित की गई, और RAU8, ये RAU ढोली से विकसित की गई। दो किस्में हैं जो 110 से 115 दिन में तैयार हो जाती है, और इसकी औसत उपज भी 22 से 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। और किसान भाई इसकी इस अनुशंसित किस्मों का यदि चयन कर खेती करते हैं तो रागी से उन्हें अच्छी मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं।
0: जी, और रागी में लगने वाले कौन कौन से रोग एवं कीट हैं उनके बारे में थोड़ा बताएं, और रोकथाम कैसे करें हम?
1: रागी में जैसे जो फफूंद जनित दो रोग इसमें मुख्यतः लगते हैं, एक है झुलसन एवं दूसरा है भूरा धब्बा। रागी प्रमुख रोग व्याधियां हैं जिनका समय पर निदान नहीं होने से उपज में हानि होता है। जो झुलसन रोग लगता है वो रागी की फसल पर पौध अवस्था से लेकर बालियों के दाने बनने तक किसी भी अवस्था में फफूंद जनित झुलसन रोग का प्रकोप देखा गया है। संक्रमित पौधे की पत्तियों में भिन्न भिन्न माप के आँख के समान धब्बे बन जाते हैं, जो मध्य के धूसर और किनारों पर पीले पीले रंग के होते हैं। अनुकूल वातावरण में ये धब्बे आपस में मिल जाते हैं और पत्तियाँ को झुलसा देते हैं। बालियों की ग्रिया और उंगलियों पर भी फफूंद का संक्रमण होता है, और ग्रीवा का पूरा या आंशिक भाग काला पड़ जाता है। इससे बालियां संक्रमित भाग टूट के लटक जाती है या फिर गिर जाती है, और किसान भाइयों को इससे घाटा हो जाता है। उंगलियां पर भी आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से संक्रमित होने पर सूख जाती है, जिसके कारण उपज में गुणवत्ता जो हम लोग को गुणवत्तापूर्ण जो उपज होना चाहिए उसकी मात्रा प्रभावित होती है। इसकी रोकथाम के लिए बुआई के पूर्व बीज को जो जैसा हम जानते हैं फफूंदीनाशक दवा जैसे मेनकोजेब कार्बेंडाजिम या कार्बोक्सिन या उनके मिश्रण को 2 ग्राम प्रति किलो की दर बीज दर से उपचारित करना चाहिए। यदि खरीफ फसल में जोशन रोग का दिखाई पड़े तो कार्बेंडाजिम कीटाजिन या ईडीफेनफॉस 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में मिलाकर या मेनकोजेब 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से मिलाकर की दर से छिड़काव करें और 10 से 12 दिन के बाद एक फिर से हमको एक छिड़काव रिपीट कर देना चाहिए, दोबारा कर दें। और जैव रसायन जैसे सीडोमोनास फ्लोरेसेंस का पर्ण छिड़काव 0.2% जो झुलसन के संक्रमण को रोकता है और रोग प्रतिरोधी किस्में भी यदि हम लगाएं तो इससे हम लोग बचाव हो सकता है। जैसे रोग रोधी किस्म है VL 379, VL 356, VL 352, OEB 536, 532 का चुनाव करें। इससे इस रोग से हम लोग उसमें ये जो रेसिस्टेंट है उसमें उस वैरायटी में मॉडरेटरी रेसिस्टेंट है तो उससे मध्यम प्रतिरोधी किस्म होने के कारण ये रोग नहीं लगेगा। दूसरा महत्वपूर्ण रोग उसमें लगता है वो भूरा धब्बा रोग, यह भी फफूंद जनित रोग जो संक्रमण पौधों के सभी अवस्थाओं पर हो सकता है चाहे वेजिटेटिव स्टेज हो या रिप्रोडक्टिव। प्रारंभ में पत्तियों पर छोटे छोटे हल्के हल्के भूरे अंडाकार धब्बे बन जाते हैं, बाद में इनका रंग गहरा हो जाता है। अनुकूल अवस्था में ये धब्बे आपस में मिलकर पत्तियों को समय से पूर्व सुखा देते हैं। बालियों एवं दानों पर संक्रमण होने पर दानों का उचित विकास नहीं हो पाता और दाने सिकुड़ जाते हैं जिसकी उपज में भी काफ़ी कमी होती है। इसकी रोकथाम जैसा कि मैंने पहले बताया झुलसा रोग में है वही रोकथाम इसमें भी किया जाता है। और जो कीट में तना छेदक एवं बालियों में सुनी रागी का प्रमुख कीट है तो तना छेदक कीट जो होता है उसका व्यस्त कीट एक पतंगा होता है जबकि लार्वा तने को भेद कर छेद करके अंदर प्रवेश कर जाता है एवं फसल को नुकसान पहुंचाता है। कीट के प्रकोप से डेढ़ हट लक्षण पौधे पर दिखाई देते हैं। इसकी रोकथाम के लिए कीटनाशक दवा डाइमिथोएट या फॉस्मामिडोन या न्यूअक्रोन 1 से 1.5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से छिड़काव करें और कीट प्रतिरोधक किस्म की बुआई करें जिससे कि रोग से बचाया जा सके कीट से बचाया जा सके। और दूसरा प्रमुख कीट है और बालियों की सुंडी। इस कीट का प्रकोप बालियों में दाना बनने के समय होता है, जैसे ही दाना बनने लगता है तो बाली में ये पकड़ने का इसका प्रकोप ज़्यादा हो जाता है। भूरे रंग में रोएदार इलियाँ रागी की बालियों को नुकसान पहुँचाती हैं जिसके फलस्वरूप दाने कम एवं छोटे बनते हैं। इसकी रोकथाम के लिए जो क्यूनोलफॉस दवा आती है 1.5% थायोडाउन डस्ट 4% का प्रयोग 24 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से करें। और सबसे महत्वपूर्ण है कि कीट जो नई प्रभेद के बारे में हम बताए हैं वो कीट प्रतिरोधी किस्मों का चयन कर बुवाई करें तो ये कीट उसमें लगने की संभावना कम हो जाती है। इस प्रकार यदि हम रागी जैसे फसल की कटाई और मड़ाई कैसे करें तो रागी के पौधे रोपाई के लगभग 110 से 115 दिन बाद कटाई के लिए तैयार हो जाते हैं। तो जिसके बाद इसके सिरों पर पौधों को काटकर अलग कर लेना चाहिए। सिरों की कटाई करने के बाद उन्हें खेत में एकत्रित कर कुछ दिन के लिए सुखा लेना चाहिए। उसके बाद जब दाना अच्छी तरह से सूख जाए तथा मशीन की सहायता से दानों को अलग कर एकत्रित कर बोरा में भर लेना चाहिए। रागी की विभिन्न किस्मों की प्रति हेक्टेयर औसत उपज 30 से 35 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है तथा इसे 60 से 70 क्विंटल भूसा भी हम किसान भाई को प्राप्त हो जाएगा जिसका बाजार भाव 2700 रुपये प्रति क्विंटल के आसपास पाया जाता है। इस हिसाब से किसान भाई एक बार में 1 हेक्टेयर में 60 से 70 हज़ार रुपये की कमाई आसानी से कर सकते हैं। इसलिए एक बहुत ही मोटे अनाज में ये बहुत ही महत्वपूर्ण फसल है और किसान या आवश्यकता भी है, सरकार इसके प्रति बहुत गंभीर भी है और इसीलिए 2018 में इंटरनेशनल ईयर मनाया गया कि मिलेट्स इंटरनेशनल ईयर और सरकार इसके प्रति किसानों को भी प्रेरित कर रही है।
0: जी तो किसान भाइयों इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, अगले दिन आपसे एक अलग विषय के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।

तैयार है आम के अद्भुत संसार से रूबरू होने के लिए। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर लेकर आ रहा है राष्ट्रीय आम समागम 2026, जिसका आयोजन 27 से 28 जून तक किया जाएगा। आइए और देखिए देश भर की सैकड़ों आम किस्मों की आकर्षक प्रदर्शनी, जहां स्वाद, सुगंध और रंगों का अनूठा संगम आपका स्वागत करेगा। इस विशेष आयोजन की थीम है स्वाद, संस्कृति और समृद्धि का संगम। आम समागम में किसानों, वैज्ञानिकों, उद्यमियों और आम प्रेमियों को एक ही मंच पर आने का अवसर मिलेगा। कार्यक्रम के दौरान आयोजित होगी राष्ट्रीय कार्यशाला, जिसका विषय है आधुनिक तकनीक से गुणवत्ता युक्त उत्पादन, भंडारण एवं प्रसंस्करण। देश के प्रतिष्ठित विशेषज्ञ आम उत्पादन, मूल्य संवर्धन और प्रसंस्करण की आधुनिक तकनीकों पर अपने अनुभव साझा करेंगे। इस अवसर पर आयोजित होगा किसान वैज्ञानिक सम्मान समारोह, जिसमें बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश के उत्कृष्ट आम उत्पादकों को बेस्ट मैंगो फार्मर अवार्ड प्रदान किया जाएगा। महिला आम उत्पादकों एवं मूल्य संवर्धन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिला उद्यमियों के लिए भी विशेष सम्मान और नगद पुरस्कार की व्यवस्था की गई है। और अब आपके लिए एक सुनहरा अवसर, यदि आपके बाग में उत्कृष्ट गुणवत्ता के आम हैं या आपके पास किसी विशेष किस्म के आम उपलब्ध हैं, आप भी आम प्रदर्शनी में अपनी आम की किस्मों को प्रदर्शित कर सकते हैं। आपकी प्रविष्टियों का मूल्यांकन विशेषज्ञों द्वारा किया जाएगा और चयनित प्रतिभागियों को आकर्षक पुरस्कार एवं नगद राशि से सम्मानित किया जाएगा। और हाँ, आम प्रेमियों के लिए होगा एक विशेष आकर्षण, मैंगो ईटिंग प्रतियोगिता। इस रोमांचक प्रतियोगिता के विजेताओं को भी आकर्षक नगद पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। तो देर किस बात की, अपने श्रेष्ठ आमों के साथ आइए, प्रदर्शनी में भाग लीजिए, विशेषज्ञों से सीखिए, नई तकनीकों को जानिए और आकर्षक पुरस्कार जीतने का अवसर पाइए। 27 से 28 जून राष्ट्रीय आम समागम 2026 बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 24 से 28 जून के दौरान भागलपुर, बांका, मुंगेर, जमुई इन जिलों में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ हल्की वर्षा होने की संभावना है। दक्षिण बिहार के अन्य जिलों में 24 से 25 जून के दौरान लू चलने की संभावना है। इसके बाद इन जिलों के एक दो स्थानों पर बादल गरजने के साथ हल्की वर्षा की संभावना है। अधिकतम तापमान 37 से 39 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 26 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 60 से 70 प्रतिशत और दोपहर में 25 से 30 प्रतिशत रहने की संभावना है। अनुमान है कि 24 से 28 जून के दौरान 5 से 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दक्षिण पूर्वी हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए, जो किसान भाई बहन धान की खेती करना चाहते हैं उन्हें बता दे, वर्तमान में मानसून की कमजोर स्थिति को देखते हुए किसान भाई बहनों को ये सलाह दी जाती है कि ऊंची भूमि में धान की खेती ना करें। जिन किसानों के पास सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है वे मध्यम अवधि वाले धान की किस्मों का बिचड़ा गिराएं और बीज स्थली में नमी बनाए रखें, इस बात का विशेष ध्यान रखें। बीज स्थली यानी कि नर्सरी में नमी बनाए रखने के लिए जरूरत के हिसाब से जीवन रक्षक सिंचाई जरूर करें और खास तौर से ऊंची भूमि में धान के स्थान पर वैकल्पिक फसलों की खेती पर विचार करना अधिक उपयुक्त होगा। जो मक्का की खेती करना चाहते हैं उन्हें बता दे, खरीफ मक्का की बुआई तभी करें जब आसमान साफ हो और खेत की जुताई में 10 से 15 टन गोबर की सड़ी खाद प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें और ध्यान दें कि बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 30 किलोग्राम नेत्रजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटाश डालना जरूरी होता है। किसान भाई बहनों आपको बता दें, अनुशंसित मक्का की किस्में हैं सुवान, देवकी, शक्तिमान 1, शक्तिमान 2, राजेंद्र शंकर, मक्का 3, गंगा 11। जो मूंग की खेती करते हैं उन्हें बता दें, मूंग की तैयार फलियों की तुड़ाई कर ले और हरी खाद के लिए उसके पौधों को मिट्टी पलटने वाले हल से जमीन में गाड़ दे। यह आपके खेत और आपके खेत की मिट्टी के लिए फायदेमंद होता है। जिनके खेत में सब्जियां लगी हैं उन्हें बता दें, भिंडी, कद्दू, खीरा, नेनुआ और लौकी की फसलों में निराई गुड़ाई जरूर करें। साथ ही खरपतवार नियंत्रित करना भी जरूरी होता है। आपको बता दें कि पत्ती खाने वाली सुंडियों और फल छेदक कीटों की नियमित निगरानी करते रहें और अगर इन कीटों का प्रकोप दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में डाइमेथोएट 30 इसी दवा की 1 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान दें, किसी भी प्रकार का छिड़काव तभी करें जब आसमान साफ हो। किसान भाई बहन आपको बता दें कि खरीफ प्याज की खेती के लिए नर्सरी यानी कि बीज स्थली की तैयारी तभी करें जब आसमान साफ हो और स्वस्थ पौधे के लिए नर्सरी में गोबर की खाद जरूर डालें। अच्छे और स्वस्थ फसल के लिए प्याज की बीज की व्यवस्था प्रमाणित स्रोत से ही करें और बीज गिराने के पहले बीजोपचार करना बहुत जरूरी होता है। बीजोपचार करने से पौधे स्वस्थ और फसल अच्छी होती है। खरीफ प्याज के लिए बीज की दर 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दे, लीची की फल तुड़ाई के बाद बगीचों में आवश्यक छटाई जरूर कर ले जिससे पेड़ों के भीतर पर्याप्त धूप और हवा का संचार हो सके। साथ ही आपको बता दे कि बगीचे में गिरे हुए पत्तों, सूखी शाखाओं और अन्य पौध अवशेषों को इकट्ठा कर हटा दे, इससे कीट और रोगों का प्रकोप कम होता है और पेड़ों की स्वस्थ वृद्धि और विकास को बढ़ावा मिलता है। तो ध्यान दे कि बगीचे में गिरे हुए पत्तों, सूखी शाखाओं और ऐसी कोई भी अन्य जो पेड़ के अवशेष हो उन्हें इकट्ठा करके हटा दे। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दे, दुधारू पशुओं को गर्मी के प्रभाव से बचाने के लिए छायादार और हवादार स्थानों में रखें और उन्हें पर्याप्त मात्रा में साफ और ताजा पीने का पानी उपलब्ध कराएं। पशुपालक भाई बहन ध्यान दे, गला घोटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए टीकाकरण कराना बहुत जरूरी होता है, इसलिए सभी दुधारू पशुओं में टीकाकरण जरूर कराएं। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

आप हर समय थकान महसूस करते हैं, छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है, ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है, बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर आप सबका स्वागत करता है स्वाद संस्कृति और समृद्धि के संगम राष्ट्रीय आम समागम सह कार्यशाला में। तारीख याद रखें 27 से 28 जून 2026।

0: क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।
1: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
0: लेडीज फर्स्ट।
2: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, आपका बहुत बहुत बहुत स्वागत है बहनों को संबोधित हमारे विशेष कार्यक्रम लेडीज फर्स्ट में। वैसे बहनों को संबोधित है, लेकिन यहां बातें ऐसी होती है जो सबके लिए फायदेमंद है। अब देखिए, आज हम बात करने वाले हैं किताबों के बारे में। भला किताबें किनके लिए फायदेमंद नहीं साबित होती है, और जो किताबें पढ़ना पसंद करते हैं उन्हें पता है कि किताबें ना सबसे अच्छी दोस्त होती है। और जब फोन का जमाना है, सब कुछ फोन पे है, तब भी जो किताबों में सुकून है ना, वो कहीं नहीं मिलता। और कई बार कुछ किताबें ऐसी होती हैं जो आपको बहुत अच्छी बातें सिखा देती हैं और इस दुनिया को देखने का, यहाँ तक कि खुद को देखने का एक नया नजरिया देती हैं। और कई बार हमें उन किताबों को बहुत गहराई से पढ़ने की जरूरत होती है। कुछ किताबें ऐसी होती हैं जिन्हें पढ़ने के बाद आप पूरी जिंदगी नहीं भुला सकते, और उन्हीं कुछ किताबों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। और खास तौर से उन किताबों के बारे में बात करने वाले हैं जो लेडीज को, जो महिलाएं हैं या फिर लड़कियां हैं, अपने टीन एज में हैं या फिर प्रौढ़ महिला भी हैं, उन्हें ये किताबें जरूर पढ़नी चाहिए। आज 10 ऐसी किताबों के बारे में बात होने वाली है जो आपको पढ़नी चाहिए, आपकी लाइब्रेरी में होनी चाहिए। और अगर आप पुरुष हैं, आप सुन रहे हैं, तो आप अपनी दोस्त को, अपनी मम्मी को या फिर आपकी बहन है, उन्हें, आप आपके आसपास जो भी महिलाएं हैं, उन्हें ये किताबें या इनमें से कुछ किताबें उन्हें आप जरूर गिफ्ट करिए। सबसे पहली किताब है मित्रों मरजानी। नाम कितना प्यारा है ना, और मित्रों मरजानी लिखा है कृष्णा सोपती ने। और अगर हम इस उपन्यास की बात करें तो ये उपन्यास मित्रों नाम की एक साहसी और बेबाक महिला की कहानी है जो कि समाज द्वारा महिला पर लगाए गए बंधनों को खुलकर चुनौती देती है। बहुत सारी बंधन है ना, आज के समय में भी आपको बहुत सारे बंधन मिलेंगे जिन्हें खत्म करने की जरूरत है। तो मित्रों यही काम करती है कि समाज जो महिलाओं पर बंधन लगाता है उसे वो चुनौती देती है। इस किताब में आपको स्त्री की इच्छाओं, उनकी स्वतंत्रता और आत्मसम्मान का एक बहुत ही बेहतरीन चित्रण मिलेगा। और अगर हम बात करें ना, तो ये किताब भले ही बहुत पहले लिखी गई हो, लेकिन ये किताब अपने समय से बहुत आगे की सोच रखता है, और ये किताब हर महिला को जरूर पढ़नी चाहिए। हिंदी साहित्य में इसे नारी विमर्श की महत्वपूर्ण कृति माना जाता है। अगली किताब है आपका बंटी। आपका बंटी मन्नू भंडारी के द्वारा लिखा गया है, और मन्नू भंडारी की भी जो शख्सियत है ना, वो बहुत ही कमाल की है। आप उनके इंटरव्यूज देखेंगे या फिर आप उनकी और भी कहानियां पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, वाकई बहुत ही कमाल की शख्सियत और बहुत ही कमाल की इनकी लेखनी। और उनकी एक लेखनी है आपका बंटी, ये बहुत ही कमाल की किताब है। ये कहानी ना एक बच्चे बंटी की नज़र से आप पढ़ेंगे, समझेंगे। बंटी की नज़र से आप देखते हैं कि किस तरीके से एक परिवार टूटता है, तो बच्चे पर असर सबसे ज्यादा पड़ता है। जब माता पिता का तलाक हो जाता है तो बच्चे पर क्या असर पड़ता है, यही इसका मुख्य विषय है। और उपन्यास में आप देखेंगे कि स्त्री के संघर्ष और उसके भावनात्मक जीवन का भी काफी बेहतरीन चित्रण है। और सबसे अच्छी बात है इस किताब की कि भाषा बहुत ही सरल और बहुत ही प्रभावशाली है। कहते हैं ना कि कुछ चीजें सरल रहते हुए भी आपके ऊपर बहुत ही गजब का प्रभाव छोड़ जाती है, तो ये किताब उन्हीं किताबों में से एक है। और ये हिंदी की, आपका बंटी हिंदी की सबसे चर्चित पारिवारिक उपन्यासों में से एक है। अगली किताब है अमृता प्रीतम की पिंजर। पिंजर उपन्यास की अगर हम बात करें तो भारत विभाजन की पृष्ठभूमि पर आधारित है ये उपन्यास, जिसमें नायिका ना, नायिका का नाम पूरो है, हालांकि नायिका पूरो के जीवन के माध्यम से स्त्री की पीड़ा को दर्शाया गया है। जब भारत विभाजन हुआ था उस दौरान स्त्रियों को भी बहुत कुछ सहना पड़ा था। इस किताब में आप धर्म, पहचान और मानवता के प्रश्न से रूबरू होंगे। जब ये सारे प्रश्न उठते हैं ना, तो आपको अंदर से कचोट देते हैं। कहानी बेहद ही मार्मिक और संवेदनशील है। अगर हम विभाजन साहित्य की बात करें तो उनमें से श्रेष्ठ कृतियों में से पिंजर का नाम गिना जाता है, अमृता प्रीतम की लिखी पिंजर। अगली किताब है मन्नू भंडारी की लिखी हुई महाभोज। महाभोज अगर हम इस किताब की बात करें तो ये एक राजनीतिक व्यवस्था और भ्रष्टाचार पर तीखा व्यंग है। कहानी एक गरीब युवक की है और जब उस युवक की मृत्यु हो जाती है ना, उसके बाद इस कहानी की शुरुआत होती है। किस तरीके से सत्ता और राजनीति आम जनता का शोषण करती है ये दिखाया गया है बहुत ही कमाल के तरीके से महाभोज में। और अगर हम इस उपन्यास की बात करें तो ये उपन्यास सामाजिक अन्याय को उजागर करता है और बहुत ही बेहतरीन ढंग से करता है, और आज भी ये उपन्यास उतना ही प्रासंगिक माना जाता है। महाभोज एक बार जरूर पढ़िए, ये आपको समाज को देखने का, आपके आसपास के व्यवस्था को, भ्रष्टाचार को समझने का एक नजरिया देता है। अगली किताब है चाक, मैत्रेयी पुष्पा की लिखी चाक। समाज में महिलाओं के संघर्ष की कहानी है। उपन्यास में आप पढ़ेंगे जाति, पितृसत्ता और सामाजिक भेदभाव को, और किस तरीके से नायिका अपने अधिकारों के लिए लड़ती है। भाषा में ग्रामीण जीवन की एक सजीव झलक आपको दिखती है, और ये किताब स्त्री सशक्तिकरण की एक महत्वपूर्ण कृति है, आपको जरूर पढ़नी चाहिए, मैत्रेयी पुष्पा की लिखी चाक। कुछ किताबें ऐसी होती है जिन्हें पढ़कर रोना आता है, कुछ किताबें ऐसी होती है जो आपको हंसाती है, और कुछ किताबें ऐसी होती है जो आपके ऊपर प्रभाव नहीं छोड़ती है, और कुछ किताबें ऐसी होती है जो ना रुलाती है ना हंसाती है बल्कि आपको कचोटती है। आप बहुत असहाय से महसूस करते हैं, आपको समझ नहीं आता कि क्या कर दे, काश उस नायिका के पास हम पहुंच जाएं और उसकी जिंदगी ठीक कर दे, उसे समझा दे, या फिर बहुत ही आपको असहाय महसूस होगा, आप विचलित होंगे पर आपके हाथों में कुछ नहीं होगा। ये किताब है कांता भारती की लिखी रेत की मछली। कांता भारती की बात करें तो कांता भारती ने सिर्फ एक किताब लिखी, रेत की मछली, और इस किताब में आप पढ़ेंगे कि किस तरीके से एक स्त्री संघर्ष करती है, आत्मसम्मान के लिए लड़ती है और अपने अस्तित्व की खोज में निकल पड़ती है। इस किताब में प्रतिसत्तात्मक समाज में महिलाओं की स्थिति को बहुत ही संवेदनशील तरीके से चित्रित किया गया है। नायिका सामाजिक बंधनों और अन्याय के विरुद्ध अपनी पहचान बनाने का प्रयास करती है, लेकिन उसके पहले जो उसे जीवन में झेलना पड़ता है ना, अपनों से जो उसे धोखा मिलता है, दगा मिलता है, वो आपको कचोट देती है अंदर से। भाषा बहुत ही सरल है लेकिन बहुत ही प्रभावशाली, और भावनात्मक गहराई इतनी है कि किताब पढ़ते हुए मैंने आपसे कहा ना, आप बहुत ही असहाय महसूस करेंगे। ये किताब स्त्री अधिकार, आत्मनिर्भरता और सामाजिक बदलाव के प्रश्नों को उठाती है, और अगर आप 10 प्रभावशाली हिंदी पुस्तकों की लिस्ट बना रहे हैं, सूची बना रहे हैं, तो रेत की मछली को शामिल करना एक बहुत ही अच्छा चयन हो सकता है। अगली किताब है मुझे चांद चाहिए, सुरेंद्र वर्मा की लिखी हुई ये किताब है। एक बहुत ही महत्वाकांक्षी युवती की संघर्ष गाथा है। नायिका अपने सपनों को पूरा करने के लिए बहुत ही कठिन रास्ता चुनती है, और वो कला, रंगमंच, आधुनिक समाज आप इसमें देख पाएंगे, आपको इसमें झलक मिलेगी मुझे चांद चाहिए किताब में। पुस्तक स्त्री के स्वतंत्र पहचान की भी बात करती है, और मुझे चांद चाहिए उपन्यास की कहानी आपको बहुत ही प्रेरणादायक लगेगी और साथ ही यथार्थवादी भी लगेगी। अगली किताब मैत्रेयी पुष्पा की ही लिखी हुई कस्तूरी कुंडल बसे। इस किताब की खास बात यह है कि ये खुद मैत्रेयी पुष्पा की आत्मकथा है। इसमें उनके बचपन, संघर्ष और जीवन यात्रा का आपको बहुत ही सजीव वर्णन मिलता है। ग्रामीण परिवेश में स्त्री जीवन की कठिनाइयों को दर्शाया गया है इस किताब में। साथ ही ये किताब आपको आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता का संदेश देती है, जो बहुत जरूरी होता है किसी भी इंसान के लिए और खास तौर से एक महिला के लिए। ये हिंदी की चर्चित आत्मकथाओं में से एक है, कस्तूरी कुंडल बसे मैत्रेयी पुष्पा के लिखी। अगली किताब भी कृष्णा सोपती की ही लिखी हुई है, जिंदगी नामा। ये उपन्यास पंजाब के ग्रामीण जीवन को अच्छी तरीके से प्रस्तुत करता है, बहुत ही विस्तृत तरीके से प्रस्तुत करता है। इसमें अनेक पात्र आपको मिलेंगे और उनकी जीवन शैली किस तरीके से है उसका बहुत ही सजीव वर्णन है, साथ ही सामाजिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पहलुओं को भी बहुत ही खूबसूरती से उकेरा गया है जिंदगी नामा में। भाषा और शैली इसे विशेष बनाती है, साथ ही इसे हिंदी साहित्य की महान कृतियों में से भी गिना जाता है। अगली किताब है मन्नू भंडारी की ही एक कहानी ये भी। एक कहानी ये भी ना मन्नू भंडारी की आत्मकथा है। इसमें उनके साहित्यिक जीवन और उनके जो व्यक्तिगत संघर्ष रहे उसका वर्णन है। लेखिका ने अपने वैवाहिक जीवन के अनुभव भी इस किताब में साझा किए हैं। इस किताब को बहुत ही ईमानदारी और संवेदनशीलता से लिखा गया है और जब आप इस किताब को पढ़कर खत्म करेंगे ना तो आपको लगेगा कि आपके अंदर एक अलग ही आत्मविश्वास है और आत्मचिंतन की प्रेरणा मिलती है आपको इस किताब से। हालांकि 10 किताबें हो चुकी है लेकिन एक और किताब मैं जो अंत में जोड़ना चाहूंगी वो है टेढ़ी लकीर, इस्मत चुगताई की लिखी हुई है। ये उपन्यास ना शम्मन नाम की एक लड़की की है और उसके जीवन और उसके आत्मविकास की कहानी है। इस किताब में आप पाएंगे स्त्री स्वतंत्रता की बातें, शिक्षा, प्रेम, समाज की रूढ़ियों पर एक बहुत ही गहरा विमर्श मिलता है आपको इस किताब में। और इस्मत चुगताई ने महिलाओं की भावनाओं को और उनके संघर्षों को बहुत ही बेबाकी से प्रस्तुत किया है। हालांकि इस्मत चुगताई खुद भी एक बेबाक महिला रही थी और बहुत ही कमाल की इनकी भी शख्सियत रही है। आप अगर पढ़ेंगे ये किताब टेढ़ी लकीर तो ये उस दौर के मध्यम वर्गीय समाज और उसकी मानसिकता का एक बहुत ही सजीव चित्रण आपको पेश करती है। अगर हम इस किताब की बात करें तो इस किताब को यानी कि टेढ़ी लकीर को भारतीय उपमहाद्वीप के सबसे महत्वपूर्ण नारीवादी उपन्यासों में से गिना जाता है। तो ये किताबें आप जरूर पढ़ें और लास्ट में जो मैंने ऐड की है टेढ़ी लकीर इस्मत चुगताई की लिखी हुई इसे भी जरूर अपने लिस्ट में शामिल करें। बहुत ही कमाल की ये किताबें हैं, इनमें से एक दो भी आप पढ़ लेंगे ना तो आपको लगेगा कि हाँ आज मैंने कुछ अलग ही किया है, आपको एक अलग सा सुकून मिलेगा। और उसके साथ जो सबसे अच्छी बात होती है ना वो ये होता है कि आप आत्मचिंतन करेंगे। जब आप उस किताब के किरदार के साथ जुड़ जाएंगे, उनके साथ हंसेंगे, उनके साथ खुश होंगे और उनके साथ रोएंगे और कभी उनके साथ विचलित होंगे, असहाय महसूस करेंगे, तो फिर वो बात ही अलग होती है। और इन किताबों को पढ़िए और कहते हैं कि किताबें सबसे अच्छी साथी होती है तो ज़रूर इनमें से अगर आप सारी किताबें पढ़ सकते हैं तो क्या ही कहने, लेकिन आप एक दो किताबें पढ़ लेते हैं, जो भी आपको किताब अच्छी लगे उसे पढ़िए। और फिलहाल आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। उम्मीद है कि हमारा आज का ये कार्यक्रम लेडीज फर्स्ट कार्यक्रम आपको अच्छा लगा होगा और आज के कार्यक्रम में जो हमने किताबों के बारे में बातें की उन किताबों से आप बहुत कुछ जानेंगे, समझेंगे, सीखेंगे और सबसे बेहतर ये होगा कि आप अपने बारे में जानेंगे, समझेंगे, सीखेंगे। फिलहाल के लिए मैं चलती हूँ लेकिन जाने से पहले खास बात की अपना और अपने अपनों का और अपने सपनों का रखे विशेष ध्यान। खुश रहे, स्वस्थ रहे, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। आपकी अपनी होस्ट और दोस्त उमा को दीजिए इजाजत और हाँ हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहे। नमस्कार। लेडीज फर्स्ट।

उत्पादन, मूल्य संवर्धन और प्रसंस्करण की आधुनिक तकनीकों पर अपने अनुभव साझा करेंगे। इस अवसर पर आयोजित होगा किसान वैज्ञानिक सम्मान समारोह, जिसमें बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश के उत्कृष्ट आम उत्पादकों को बेस्ट मैंगो फार्मर अवार्ड प्रदान किया जाएगा। महिला आम उत्पादकों एवं मूल्य संवर्धन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिला उद्यमियों के लिए भी विशेष सम्मान और नगद पुरस्कार की व्यवस्था की गई है। और अब आपके लिए एक सुनहरा अवसर, यदि आपके बाग में उत्कृष्ट गुणवत्ता के आम हैं या आपके पास किसी विशेष किस्म के आम उपलब्ध हैं, आप भी आम प्रदर्शनी में अपनी आम की किस्मों को प्रदर्शित कर सकते हैं। आपकी प्रविष्टियों का मूल्यांकन विशेषज्ञों द्वारा किया जाएगा और चयनित प्रतिभागियों को आकर्षक पुरस्कार एवं नगद राशि से सम्मानित किया जाएगा। और हाँ, आम प्रेमियों के लिए होगा एक विशेष आकर्षण, मैंगो ईटिंग प्रतियोगिता। इस रोमांचक प्रतियोगिता के विजेताओं को भी आकर्षक नगद पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। तो देर किस बात की, अपने श्रेष्ठ आमों के साथ आइए, प्रदर्शनी में भाग लीजिए, विशेषज्ञों से सीखिए, नई तकनीकों को जानिए और आकर्षक पुरस्कार जीतने का अवसर पाइए। 27 से 28 जून राष्ट्रीय आम समागम 2026 बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है।

0: राजू, पिन्नी और
1: तुम्हारे वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
0: 11 दोस्त?
1: टीकू, वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
0: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
1: मगर टीकू, कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
0: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं, या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
0: टीकी, तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा, सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है, तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर A&M दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। UN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व

0: के बच्चों की पीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
1: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
2: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
1: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
2: आपकी सेहत की बातें,
1: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
2: युवाओं के रोजगार करियर की बातें,
1: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
2: वो कहाँ पर?
1: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
2: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
1: उन्नत कृषि। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। आज हमारा कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है उन लोगों के लिए जो उड़द की खेती करते हैं। उड़द यानी कि ब्लैक ग्राम, जो एक प्रमुख दलहनी फसल है, लेकिन कई बार इस फसल में कीट आक्रमण कर देते हैं और उत्पादन कम कर देते हैं। तो ये कीट कौन कौन से होते हैं, ये फसल को कैसे नुकसान पहुंचाते हैं और सबसे महत्वपूर्ण, हम इसका प्रबंधन कैसे कर सकते हैं, इसी विषय पर आज चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर तारकनाथ गोस्वामी। आप हैं एसोसिएट प्रोफेसर कीट विज्ञान विभाग से बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
3: धन्यवाद। सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार।
1: तो दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं बहुत ही मूल बातों के साथ। सर, आपसे पहला सवाल यही है कि उड़द के प्रमुख कीट कौन कौन से होते हैं?
3: अच्छा, उड़द के प्रमुख कीट में से चार कीट बहुत इम्पोर्टेंट है, प्रमुख है, जैसे माहू, जिसको हम लोग एफिड कहते हैं, सफेद मक्खी व्हाइट फ्लाई कहते हैं, जैसीड, उसको वो एक लीफ ऑफर है, होते हैं, और एक है फली छेदक, जिसको पॉड बोरर कहते हैं। तो माहू एक बहुत ही छोटे मुलायम शरीर वाले कीट होते हैं जो हरे या काले रंग के होते हैं। सफ़ेद मक्खी भी छोटे होते हैं, लेकिन ये सफ़ेद पंख वाले कीट होते हैं जो पत्तियों के नीचे पाए जाते हैं। और जैसीड, जो लीफ हॉपर होते हैं, इसके हल्के इसका जो रंग होता है वो हल्के हरे रंग के होते हैं और बहुत सक्रिय होता है, तथा पत्तियों का रस चूस के वो नुकसान पहुँचाता है। और लास्ट में जो मैंने बोला फली छेदक, जो है इसका लार्वा फूलों में और फलियों में छेद करके खाते हैं।
1: जी, तो सर, ये कीट फसल को नुकसान कैसे पहुंचाते हैं?
3: अच्छा, तो माहू और सफ़ेद मक्खी, ये जो दो छोटे छोटे कीड़े होते हैं, वो पत्तियों और कोमल भागों से रस चूसते हैं, जिससे पत्तियां मुड़ जाते हैं, पौधा कमज़ोर हो जाते हैं और प्रकाश संश्लेषण कम हो जाता है। ये दोनों ही कीट शहद जैसे पदार्थ उत्सर्जन करते हैं पत्तियों में, या तो जहाँ से वो रस चूसते हैं, जिससे सूटी मोल्ड विकसित हो जाता है। और जैसीड जो है वो पत्तियों से रस चूसकर खाता है और इसके वजह से पत्तियों के किनारे से पीला पड़ना शुरू हो जाता है। और फली छेदक फूल और फलियों को नुकसान पहुंचाता है, जिससे उत्पादन घटता है।
1: तो सर, फसल के किस अवस्था में ये कीट अधिक दिखाई देते हैं?
3: तो माहू या लाही एवं सफेद मक्खी और जैसीड प्रारंभिक वृद्धि अवस्था से लेकर फली बनने तक पाए जाते हैं, और फली छेदक फूल आने और फली बनने के समय अधिक दिखाई देते हैं।
1: और इससे बचने का कोई तरीका, जिसे हम शुरुआती अवस्था में ही कीट आक्रमण का पता लगा सकें और अपने फसलों को बचा सकें?
3: बिल्कुल, हम लोग वो पता लगा सकते हैं। जैसे किसानों को सबसे पहले जो करना चाहिए, वो नियमित रूप से अपने खेत का निरीक्षण करना चाहिए, पत्तियों के निचली भाग को खास करके उसको जांच करना चाहिए, ताकि उसको ये दिखाई पड़े कि सफ़ेद मक्खी है या जैसीड है। अगर दिखाई पड़ते हैं तो प्रारंभिक पहचान संभव है और ससमय नियंत्रण संभव है।
1: यानी कि अगर समय पर पहचान कर लेते हैं तो चीज़ें आसान हो जाती है।
3: बिल्कुल।
1: और सर, अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न कि इन कीटों का प्रबंधन कैसे करें?
3: अच्छा, तो ये सारे जो चार कीड़ों के बारे में हमने बात किया अभी, उन सारे चार कीड़ों को नियंत्रण करने के लिए हम लोगों को समेकित कीट प्रबंधन अपनाना चाहिए। और समेकित कीट प्रबंधन में हम लोग रासायनिक नियंत्रण को आवश्यक होने पर ही हम लोग रासायनिक नियंत्रण का इस्तेमाल करते हैं। तो और कौन कौन से उपाय है हम लोगों के पास? जैसे हम लोगों के पास स्वस्थ बीज का उपयोग करना संभव है, खेत की स्वच्छता मेंटेन करना संभव है, ससमय बुआई करना संभव है, संतुलित उर्वरक उपयोग करना, प्रतिरोधी किस्में हम लोगों को लगाना चाहिए, प्राकृतिक शत्रु उनका संरक्षण बहुत महत्वपूर्ण है, कुछ यांत्रिक नियंत्रण विधि भी है हम बताएंगे, और कुछ जैविक कीटनाशी भी है। लेकिन हम किसान भाइयों को बोलेंगे कि रासायनिक नियंत्रण जब आपको बहुत जरूरत है तभी आप रासायनिक नियंत्रण आपका उसका उपयोग करेंगे। तो स्वस्थ बीज का उपयोग कैसे करेंगे, हम लोग प्रमाणित बीज को ले और उस बीज को उपचार करें, और उपचार करने के लिए हम लोग इमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL उसका 5 ml प्रति किलोग्राम बीज इसके मतलब इस दर से हम लोग को उसको लेके उपचार करें। खेत की स्वच्छता बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। फसल अवशेष और खरपतवार जो आपका खेत में रहता है उसको आप निकालें और गहरी जुताई करें, समय पर बुआई करें। नाइट्रोजन का अधिक उपयोग ना करें, नाइट्रोजन का अधिक उपयोग करेंगे तो वो जितना भी कीड़े के बारे में हमने बात किया वो सारे उसका पॉपुलेशन बढ़ेगा। अच्छा। आप अनुशंसित मात्रा में नाइट्रोजन का उपयोग करें। कुछ प्रतिरोधी किस्में हैं जैसे पंत U30 प्रताप उरद 1, ये दो किस्में वो जो रस चूसने वाला कीड़ा होता है उसका उससे वो रेजिस्टेंट है। और कुछ यांत्रिक नियंत्रण जैसे आप पीला चिपचिपा ट्रैप, हम लोग येलो स्टिकी ट्रैप बोलते हैं, उसका इस्तेमाल भी आप लोग कर सकते हैं। उसके इस्तेमाल करने के लिए आपको एक प्रति एकड़ में आपको 8 से 10 ट्रैप लगाना होता है। और जैविक कीटनाशी में नीम तेल बहुत महत्वपूर्ण होता है। नीम तेल जो बाजार में मिलता है उसका 1500 ppm 3 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करने से आपका ये जो चारों कीड़े हैं उससे आपको बचाव मिल सकता है। और कुछ रासायनिक नियंत्रण जिसके बारे में हमने पहले ही बताया, जब बहुत ज़रूरत है तब आप उसका इस्तेमाल करेंगे। तो रस चूसने वाला कीड़ों के लिए आप थायामिथोक्साम 25 WG उसका इस्तेमाल करेंगे। उसका इस्तेमाल करने के लिए जो डोज होना चाहिए वो होना चाहिए 0.25 g प्रति लीटर पानी में। जो छेदक कीड़े होते हैं मतलब फल छेदक या फूल में भी छेद करते हैं उसके लिए आप इमामेक्टिन बेंजोएट 5 SG उसका 0.4 g प्रति लीटर के हिसाब से आप छिड़काव करेंगे। और आपके नज़दीक में जो कृषि विज्ञान केंद्र हो या कोई हमारा कोई कॉलेज हो वहाँ पे जो विशेषज्ञ है उनका सलाह फसल बुआई करने से पहले या बीच में भी आप उसका सलाह आप लेंगे।
1: जी, तो इन बातों का अगर ध्यान रखेंगे तो उड़द की फसल को बहुत अच्छी तरीके से बचाया जा सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण होता है कि आप समय पर पहचान कर लें, उसके बाद और उससे पहले भी ज़रूरी होता है कि बीजों का उपचार करना बहुत ज़रूरी होता है ना। और तो सर आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, किसानों के लिए आपका कोई अंतिम संदेश?
3: यस, तो उड़द मैं एक लास्ट संदेश यही देना चाहता हूँ कि उड़द हमारे लिए एक बहुत लाभदायक फसल है, लेकिन इससे जैसे मैंने बताया कीड़ों से बचाना बहुत आवश्यक है। तो इसके लिए किसान भाइयों को नियमित रूप से निगरानी करने का ज़रूरत है, और पर्यावरण अनुकूल प्रबंधन जो हमने मेंशन किया उसको इस्तेमाल करने से आपका उत्पादन बढ़ेगा। तो आइए किसान भाइयों और बहनों, हम लोग IPM यानी कि समेकित कीट प्रबंधन हम लोग अपनाएं और पर्यावरण को रक्षा करें।
1: जी सर, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी और उम्मीद है कि हमारे आज के इस कार्यक्रम से जो किसान भाई बहन उड़द की खेती करते हैं उन्हें बहुत सहायता मिली होगी। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
3: धन्यवाद आपको भी।
1: ऐसी ही उपयोगी जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें, क्योंकि हम हैं हरियाली से खुशहाली तक।
4: उन्नत कृषि

तैयार है आम के अद्भुत संसार से रूबरू होने के लिए। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर लेकर आ रहा है राष्ट्रीय आम समागम 2026, जिसका आयोजन 27 से 28 जून तक किया जाएगा। आइए और देखिए देश भर की सैकड़ों आम किस्मों की आकर्षक प्रदर्शनी, जहां स्वाद, सुगंध और रंगों का अनूठा संगम आपका स्वागत करेगा। इस विशेष आयोजन की थीम है स्वाद, संस्कृति और समृद्धि का संगम। आम समागम में किसानों, वैज्ञानिकों, उद्यमियों और आम प्रेमियों को एक ही मंच पर आने का अवसर मिलेगा। कार्यक्रम के दौरान आयोजित होगी राष्ट्रीय कार्यशाला, जिसका विषय है आधुनिक तकनीक से गुणवत्ता युक्त उत्पादन, भंडारण एवं प्रसंस्करण। देश के प्रतिष्ठित विशेषज्ञ आम उत्पादन, मूल्य संवर्धन और प्रसंस्करण की आधुनिक तकनीकों पर अपने अनुभव साझा करेंगे। इस अवसर पर आयोजित होगा किसान वैज्ञानिक सम्मान समारोह, जिसमें बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश के उत्कृष्ट आम उत्पादकों को बेस्ट मैंगो फार्मर अवार्ड प्रदान किया जाएगा। महिला आम उत्पादकों एवं मूल्य संवर्धन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिला उद्यमियों के लिए भी विशेष सम्मान और नगद पुरस्कार की व्यवस्था की गई है। और अब आपके लिए एक सुनहरा अवसर, यदि आपके बाग में उत्कृष्ट गुणवत्ता के आम हैं या आपके पास किसी विशेष किस्म के आम उपलब्ध हैं, तो आप भी आम प्रदर्शनी में अपनी आम की किस्मों को प्रदर्शित कर सकते हैं। आपकी प्रविष्टियों का मूल्यांकन विशेषज्ञों द्वारा किया जाएगा और चयनित प्रतिभागियों को आकर्षक पुरस्कार एवं नगद राशि से सम्मानित किया जाएगा। और हाँ, आम प्रेमियों के लिए होगा एक विशेष आकर्षण, मैंगो ईटिंग प्रतियोगिता। इस रोमांचक प्रतियोगिता के विजेताओं को भी आकर्षक नगद पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। तो देर किस बात की, अपने श्रेष्ठ आमों के साथ आइए, प्रदर्शनी में भाग लीजिए, विशेषज्ञों से सीखिए, नई तकनीकों को जानिए और आकर्षक पुरस्कार जीतने का अवसर पाइए। 27 से 28 जून राष्ट्रीय आम समागम 2026 बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है।

0: उड़ता देख साथ मुझे आई एक भूली कहानी याद।
1: कौन सी कहानी टीकी?
0: उस जालिम शिकारी की जो आया था करने पंछियों का शिकार।
2: हमें भी वो कहानी बताओ ना।
0: एक था शिकारी जिसने चिड़ियों का शिकार करने को चुपके से बिछाया जाल, लेकिन जाल को सब चिड़िया फुर्र से ले उड़ी साथ।
2: माथा पीटता रह गया शिकारी, एक भी चिड़िया लगी ना हाथ।
0: तो दोस्तों, बीमारी का राक्षस भी बिछाए बैठा है एक जाल, अगर बच्चों का टीकाकरण छूटा तो कर देगा सबको बीमारी से बेहाल।
1: तो इस राक्षस से कैसे बचना है?
0: तो 5 साल या उनसे छोटे बच्चों के मम्मी पापा, सभी सुनो एक जरूरी बात, अगर सभी बच्चों का होगा टीकाकरण एक साथ तो बीमारी के राक्षस का भी हो जाएगा खात्मा उसके साथ।
2: टीका सुरक्षित है,
0: टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
3: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
4: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। स्वागत करती हूं हमारे विशेष कार्यक्रम किसान भाई बहनों को संबोधित, हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। उन्नत कृषि में आज हम बात करने वाले हैं जायद में सब्जियों के प्रमुख कीटों के बारे में, उनका प्रबंधन कैसे कर सकते हैं, इस बारे में आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर ऋचा कुमारी, जो हैं कीट विज्ञान विभाग से असिस्टेंट प्रोफेसर कम जूनियर साइंटिस्ट। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
5: धन्यवाद उमा जी।
4: मैम, सबसे पहला सवाल कि जायद में जो उगाने वाली सब्जियां होती है वो कौन कौन से होती हैं?
5: जी नमस्ते किसान मित्रों, तो ये बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने। इस समय जो किसान मित्र हैं वो भिंडी, खीरा, लौकी, नेनुआ, करेला, तरबूज, खरबूज, ये सारी सब्जियां जो है वो लगाते हैं। हाँ, लेकिन ये है कि गर्मी के साथ साथ कीटों का हमला भी बहुत तेज होता है, तो अगर वो समय पर रह के इसकी पहचान रोकथाम करे तो नुकसान से बचा जा सकता है।
4: और मैम, इन सब्जियों के जो प्रमुख कीट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं?
5: देखिए, अगर हम भिंडी की बात करते हैं तो इसमें जयसिड है, सफ़ेद मक्खी है, उसके बाद फल एवं तना छेदक, ये कीट जो है वो प्रमुख होते हैं। फिर अगर हम बात करें कद्दूवर की सब्जियों की, तो उसमें खीरा है, लौकी, नेनुआ, ये सब जो आता है, करेला, तो इसके जो प्रमुख कीट हैं वो है आपको चेपा, जिसको कि हम लाही या माहू भी कहते हैं, इसके बाद थ्रिप्स है, और एक बहुत अत्यंत मुख्य हम कीट मान सकते हैं फल मक्खी, क्योंकि वो बहुत नुकसान पहुँचाता है, तो एक वो भी आता है। इसके बाद हम खरबूज और तरबूज की बात करें तो उसमें चेपा, सफ़ेद मक्खी और चूसक कीट, ये मुख्य रूप से पाए जाते हैं।
4: और इन कीटों से जो क्षति होते हैं उनके लक्षण कैसे हो सकते हैं, कैसे होते हैं?
5: देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि जो लक्षण होते हैं उन्हीं से हम समझ सकते हैं कि कौन से कीट हैं और फिर उसका रोकथाम कैसे करें। तो मैं सबसे पहले बात करूँगी फल एवं तना छेदक कीट की। इसमें क्या होता है कि जो इसकी पौधे की जो वानस्पतिक वृद्धि होती है उसके दौरान जो ये कीट हैं उनके लार्वा होते हैं वो अंकुरों को क्या करते हैं, खोदते हैं, और उससे क्या होता है कि गांठों पर प्रभाव पड़ता है, और उसमें होता क्या है, अंत में अंकुर गिर जाएंगे। उसके बाद हम संक्रमण की बात करें तो संक्रमण बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप छोटे पौधे झड़ जाते हैं और जो पत्तियां हैं वो पूरी मर जाती हैं, और जो अगर दूसरे युवा पौधे होते हैं वो भी आपको मुरझा जाएंगे। हाँ, इसके साथ ही साथ केंद्रीय शाखाओं को भी काफ़ी नुकसान पहुंचता है, बाद में यह फल में प्रवेश कर जाएंगे, और अगर ये फल में प्रवेश कर गए तो उससे काफ़ी गंभीर नुकसान होता है। और अब फिर मैं बात करूं चूसने वाले कीट में, जिसमें कि अभी मैंने बताया चेपा आता है, ये थ्रिप्स है, उसके बाद जैसिड है, तो उसमें क्या होता है, उनकी जो प्रारंभिक चरण होती है इनके खाने से, चूसने से, उनमें पत्तियां जो है उसमें विकृति आ जाती है और उसके बाद वो मुड़ जाएगी और अंततः वो संक्रमित हो जाती है। जो चेपा होता है, चेपा कीट के कारण जो प्रभावित पत्तियां हैं वो काफ़ी पीली पड़ जाती हैं और मुड़ जाती हैं, और अंत में क्या होता है कि जो पत्तियां हैं पूरी तरह से मुरझा गई हैं तो पौधा क्या हो जाएगा, वो कमज़ोर हो जाता है। ये सारी चीज़ें चूसने वाले कीट के नुकसान के लक्षण हैं। फिर मैं बहुत महत्वपूर्ण एक कीट की बात कर रही हूँ जो फल मक्खी है। तो उसके जो शिशु हैं जिसे हम मैगट भी कहते हैं, वो लगभग पके हुए जो फल होता है उसको वो खाता है और उसके बाद उससे नुकसान होता है। अंत में उससे भी क्या होता है, संक्रमण हो जाते हैं और जो फल हैं वो खाने लायक नहीं बचते हैं। कुछ छोटे जो फल होते हैं उसमें वो फिर अचानक पीले होकर गिरने लग जाते हैं। इसके बाद उससे ये भी होता है कि जो फल में सड़न होती है वो हो जाती है, छेद हो जाते हैं और अंत में उसमें छोटे छोटे कीड़े लग जाते हैं। अगर मैं फिर बात कर रही हूँ आपको जैसिड की, तो जैसिड में भी जो पत्तियाँ हैं वो बिल्कुल पीली पड़ जाती है और वो नीचे की तरफ मुड़ जाती है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण लक्षण है इसका, इससे इसकी पहचान भी हो सकती है। और इसमें जो पत्तियाँ हैं उसमें चिपचिपा पदार्थ आपको दिखाई देगा कि चिपचिपा सा पदार्थ है। और इसमें भी आपको जो फल होंगे उसके बाद वो बहुत ही छोटे से हो जाएंगे, थोड़े टेढ़े मेढ़े हो जाएंगे और बिल्कुल खोखले पड़ जाते हैं। ये सारे जो प्रमुख कीट हैं उनके ये नुकसान के लक्षण आपको दिखाई देंगे।
4: और मैम, इन कीटों का प्रबंधन कैसे कर सकते हैं किसान भाई बहन?
5: सबसे जरूरी यही है कि इनका समेकित प्रबंधन करना चाहिए। मतलब कि आपको सारी जितने भी कारक हैं, जितने भी विधियां हैं नियंत्रण के जो भी हैं, उन सबको आपको साथ में लेकर के इसका नियंत्रण करना चाहिए। तो मैं सबसे पहले बात करना चाहूँगी व्यवहारिक विधि की। व्यवहारिक जो विधि है उसमें होता क्या है कि सबसे पहले किसान मित्रों को ध्यान रखना है कि प्रतिरोधी किस्मों का चयन करना चाहिए उनको। हाँ, उसके बाद एक और बात है, अधिक नाइट्रोजन खाद से उनको बचना चाहिए, वो ज़्यादा ना दें। फिर जो खेत होते हैं उसको साफ रखा करें। इसके अलावा संतुलित सिंचाई भी बहुत जरूरी होता है। उसके बाद मैं कहूँगी कि जो खरपतवार का जो नियंत्रण है वो समय समय पर किसान मित्रों को करना चाहिए। और इसके अलावा जो ठहराव होता है, जो जल का ठहराव, उसको नहीं करना चाहिए खेतों में, उस चीज़ से बचना चाहिए। ये सारी जो चीज़ें मैं बता रही हूँ वो है व्यवहारिक विधि। उसके बाद मैं बात करना चाहूँगी यांत्रिक रोकथाम की या फिर यांत्रिक नियंत्रण की। तो यांत्रिक नियंत्रण में क्या होता है, आप सबसे पहले तो पीला चिपचिपा फंदे का इसमें प्रयोग करना चाहिए। पीला चिपचिपा फंदा लाहू को, लाही जो लाहू या फिर माहू जो भी कहते हैं, चेपा भी इसको हम कहते हैं, तो उस सबको क्या करता है, आकर्षित करता है और उससे ये नष्ट हो जाते हैं। इसके अलावा नीला चिपचिपा फंदे का प्रयोग भी थ्रिप्स के लिए बहुत ही आवश्यक माना जाता है। हाँ, इसके अलावा प्रकाश प्रपंच जो है वो खेतों में जरूर से जरूर लगाएं। प्रकाश प्रपंच से जो छेदक होते हैं वो आकर्षित होते हैं। इसके बाद मैं फल मक्खी ट्रैप की बात कहना चाहूंगी, इसका उपयोग भी करना चाहिए। हाँ, एक और जरूरी आवश्यक बात कि इसमें जो ल्यूड होता है उसको 15 से 20 दिनों में बदल देना चाहिए। ये सारी के अलावा जो है, अगर शिशु जो होते हैं किसी छेदक के, तो उनको हाथों से पकड़ कर भी नष्ट किया जा सकता है। ये सारी विधियां यांत्रिक में आती है। उसके बाद एक है जैविक विधि, जो बहुत ही जरूरी विधि है। इसमें किसान मित्रों को क्या करना है, तो किसान मित्रों को इसमें जो भी मित्र कीट हैं उनका संरक्षण करना है, उनका संवर्धन करना है। जैसे आपको लेडी बर्ड विंग हो गया, उसके बाद ग्रीन लेस विंग है, ये सब जो है ना कीट, जैसे कि चेपा हो गया, सफ़ेद मक्खी हो गया, इन सबको ये सब खाते हैं, इसलिए ये हमारे मित्र कीट हैं। इसके अलावा परभक्षी हुए, परजीवी हुए, इन सब का संरक्षण बहुत ही जरूरी होता है। सबसे अंत में रासायनिक नियंत्रण की मैं बात करूंगी। जो रासायनिक नियंत्रण होता है वो सबसे अंत में ही इसका हम उपयोग करते हैं, लेकिन इसमें भी अगर हम जैविक कीटनाशक का प्रयोग करें तो वो बहुत ही अच्छा माना जाता है। जैविक कीटनाशक में जैसे कि निबोली सत हो गया 5% या फिर नीम अर्क हो गया, इस सब का प्रयोग बहुत ही जरूरी होता है और ये बहुत ही अच्छा भी माना जाता है। इसके अलावा बीटी की जो कर्स्त की प्रजाति होती है वो 1 किलोग्राम 500 से 600 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर छिड़काव किया जा सकता है। फिर हम अगर बात करें इसके अलावा कुछ कीटनाशक की, तो इसमें सबसे पहले मैं इंडोक्सा कार्ब की बात करूंगी। इंडोक्सा कार्ब जो है 14.5% SC 0.5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में ये घोल कर दिया जा सकता है, या फिर स्पाइनोसैड होता है 45% SC, ये आपको 0.2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में ये भी आपको घोल कर छिड़काव किया जा सकता है। फिर अगर हम रस चूसक, ये भी जो मैंने बताया वो बताया छेदक के लिए। फिर अगर रस चूसक की बात करें तो उसमें ब्यूप्रोफेजिन एक नया है, वो बहुत ही अच्छा काम करता है। ब्यूप्रोफेजिन 25% EC 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में, या फिर एसिटामिप्रिड है। एसिटामिप्रिड जो है वो सफ़ेद मक्खी के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। तो एसिटामिप्रिड 20% SP ये आपको 0.2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोलकर इनका छिड़काव करने से भी रस चूसक कीट जो है वो आपको कम मिलेंगे, मर जाएंगे, तो इससे आप अपने नुकसान से बच सकते हैं इस तरह से। और ये रासायनिक विधि का प्रयोग बिल्कुल अंत में ही करना चाहिए। इसके अलावा मैं 3 बातों का ध्यान रखने के लिए बोलना चाहूँगी अपने किसान बंधुओं को। पहला तो ये कि सुबह या शाम वो छिड़काव करें और उसके बाद खेतों की नियमित रूप से निगरानी करें। और तीसरी जो सबसे अंतिम बात है वो ये है कि तीसरी बात में आप सबसे अंत में आप जितने भी रासायनिक मैंने आपको विधि बताई है उनका प्रयोग करें, मतलब कीटनाशी सबसे अंत में, इसके अलावा जो भी विधि है वो आपको पहले करनी चाहिए।
4: तो किसान भाई बहन, उम्मीद है कि मैम के द्वारा बताए गए तरीकों को अपनाकर आप जायद सब्जियों की फसलों को सुरक्षित रख सकते हैं और अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं। मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
5: बहुत बहुत धन्यवाद उमा जी।
4: अभी के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, लेकिन जाने से पहले कुछ खास बात की, अपना और अपनी फसलों का रखे विशेष ख्याल और अपनी मिट्टी से करे ढेर सारा प्यार। नमस्कार।
0: उन्नत कृषि।

तैयार है आम के अद्भुत संसार से रूबरू होने के लिए। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर लेकर आ रहा है राष्ट्रीय आम समागम 2026, जिसका आयोजन 27 से 28 जून तक किया जाएगा। आइए और देखिए देश भर की सैकड़ों आम किस्मों की आकर्षक प्रदर्शनी, जहां स्वाद, सुगंध और रंगों का अनूठा संगम आपका स्वागत करेगा। इस विशेष आयोजन की थीम है स्वाद, संस्कृति और समृद्धि का संगम। आम समागम में किसानों, वैज्ञानिकों, उद्यमियों और आम प्रेमियों को एक ही मंच पर आने का अवसर मिलेगा। कार्यक्रम के दौरान आयोजित होगी राष्ट्रीय कार्यशाला, जिसका विषय है आधुनिक तकनीक से गुणवत्ता युक्त उत्पादन, भंडारण एवं प्रसंस्करण। देश के प्रतिष्ठित विशेषज्ञ आम उत्पादन, मूल्य संवर्धन और प्रसंस्करण की आधुनिक तकनीकों पर अपने अनुभव साझा करेंगे। इस अवसर पर आयोजित होगा किसान वैज्ञानिक सम्मान समारोह, जिसमें बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश के उत्कृष्ट आम उत्पादकों को बेस्ट मैंगो फार्मर अवार्ड प्रदान किया जाएगा। महिला आम उत्पादकों एवं मूल्य संवर्धन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिला उद्यमियों के लिए भी विशेष सम्मान और नगद पुरस्कार की व्यवस्था की गई है। और अब आपके लिए एक सुनहरा अवसर, यदि आपके बाग में उत्कृष्ट गुणवत्ता के आम हैं या आपके पास किसी विशेष किस्म के आम उपलब्ध हैं, आप भी आम प्रदर्शनी में अपनी आम की किस्मों को प्रदर्शित कर सकते हैं। आपकी प्रविष्टियों का मूल्यांकन विशेषज्ञों द्वारा किया जाएगा और चयनित प्रतिभागियों को आकर्षक पुरस्कार एवं नगद राशि से सम्मानित किया जाएगा। और हाँ, आम प्रेमियों के लिए होगा एक विशेष आकर्षण, मैंगो ईटिंग प्रतियोगिता। इस रोमांचक प्रतियोगिता के विजेताओं को भी आकर्षक नगद पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। तो देर किस बात की, अपने श्रेष्ठ आमों के साथ आइए, प्रदर्शनी में भाग लीजिए, विशेषज्ञों से सीखिए, नई तकनीकों को जानिए और आकर्षक पुरस्कार जीतने का अवसर पाइए। 27 से 28 जून राष्ट्रीय आम समागम 2026 बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है।

0: पैर पिट गया। बिल देना। इसको आउटसाइड द ऑफ टाइम डालना चाहिए था, इसकी यही प्रॉब्लम है।
1: कब से?
0: अरे जब से क्रिकेट खेल रहा है तभी से।
1: अरे भाई साहब क्रिकेट की नहीं, हम आपकी खांसी की बात कर रहे हैं। बुढ़बा
0: खांसी?
1: हाँ।
0: इसको तो एक आध महीना हो गया।
1: खुद की खांसी को एक आध महीने हो गए हैं और यहाँ क्रिकेट पर अपनी ही गुगली फेंक रहे हैं आप। चलिए चलिए चलिए।
0: डॉक्टर खांसी तो है।
1: देखिए भाई साहब इसे हल्का मत लीजिए, 2 हफ्ते से ज्यादा अगर आपको खांसी रहे तो टीबी हो सकता है।
0: टीबी?
1: हाँ। तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए।
0: ठीक है।
1: टीबी किसी को भी हो सकता है, अगर हो गया तो बिना भूले पूरा कोर्स करिए और फिट हो जाइए, नहीं किया तो इसका इलाज बहुत मुश्किल है। समझ गए भाई साहब आप? आइए। 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए। टीबी हारेगा देश जीतेगा।
2: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
3: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
2: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
3: आपकी सेहत की बातें,
2: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
3: युवाओं के रोजगार करियर की बातें,
2: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
3: वो कहाँ पर?
2: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
3: FM ग्रीन यानी हरियाली से खुशहाली तक।
2: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 24 से 28 जून के दौरान भागलपुर, बांका, मुंगेर, जमुई इन जिलों में 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ हल्की वर्षा होने की संभावना है। दक्षिण बिहार के अन्य जिलों में 24 से 25 जून के दौरान लू चलने की संभावना है। इसके बाद इन जिलों के 1-2 स्थानों पर बादल गरजने के साथ हल्की वर्षा की संभावना है। अधिकतम तापमान 37 से 39 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 26 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 60 से 70 प्रतिशत और दोपहर में 25 से 30 प्रतिशत रहने की संभावना है। अनुमान है कि 24 से 28 जून के दौरान 5 से 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दक्षिण पूर्वी हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए, जो किसान भाई बहन धान की खेती करना चाहते हैं उन्हें बता दे, वर्तमान में मानसून की कमजोर स्थिति को देखते हुए किसान भाई बहनों को ये सलाह दी जाती है कि ऊंची भूमि में धान की खेती ना करें। जिन किसानों के पास सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है वे मध्यम अवधि वाले धान की किस्मों का बिचड़ा गिराएं और बीज स्थली में नमी बनाए रखें, इस बात का विशेष ध्यान रखें। बीज स्थली यानी कि नर्सरी में नमी बनाए रखने के लिए जरूरत के हिसाब से जीवन रक्षक सिंचाई जरूर करें और खास तौर से ऊंची भूमि में धान के स्थान पर वैकल्पिक फसलों की खेती पर विचार करना अधिक उपयुक्त होगा। जो मक्का की खेती करना चाहते हैं उन्हें बता दे, खरीफ मक्का की बुआई तभी करें जब आसमान साफ हो और खेत की जुताई में 10 से 15 टन गोबर की सड़ी खाद प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें और ध्यान दें कि बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 30 किलोग्राम नेत्रजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटाश डालना जरूरी होता है। किसान भाई बहनों आपको बता दें, अनुशंसित मक्का की किस्में हैं सुवान, देवकी, शक्तिमान 1, शक्तिमान 2, राजेंद्र शंकर, मक्का 3, गंगा 11। जो मूंग की खेती करते हैं उन्हें बता दें, मूंग की तैयार फलियों की तुड़ाई कर ले और हरी खाद के लिए उसके पौधों को मिट्टी पलटने वाले हल से जमीन में गाड़ दे, यह आपके खेत और आपके खेत की मिट्टी के लिए फायदेमंद होता है। जिनके खेत में सब्जियां लगी हैं उन्हें बता दें, भिंडी, कद्दू, खीरा, नेनुआ और लौकी की फसलों में निराई गुड़ाई जरूर करें, साथ ही खरपतवार नियंत्रित करना भी जरूरी होता है। आपको बता दें कि पत्ती खाने वाली सुंडियों और फल छेदक कीटों की नियमित निगरानी करते रहें और अगर इन कीटों का प्रकोप दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में डाइमेथोएट 30 इसी दवा की 1 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान दें किसी भी प्रकार का छिड़काव तभी करें जब आसमान साफ हो। किसान भाई बहन आपको बता दें कि खरीफ प्याज की खेती के लिए नर्सरी यानी कि बीज स्थली की तैयारी तभी करें जब आसमान साफ हो और स्वस्थ पौधे के लिए नर्सरी में गोबर की खाद जरूर डालें। अच्छे और स्वस्थ फसल के लिए प्याज की बीज की व्यवस्था प्रमाणित स्रोत से ही करें और बीज गिराने के पहले बीजोपचार करना बहुत जरूरी होता है। बीजोपचार करने से पौधे स्वस्थ और फसल अच्छी होती है। खरीफ प्याज के लिए बीज की दर 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दे, लीची की फल तुड़ाई के बाद बगीचों में आवश्यक छटाई जरूर कर ले, जिससे पेड़ों के भीतर पर्याप्त धूप और हवा का संचार हो सके। साथ ही आपको बता दे कि बगीचे में गिरे हुए पत्तों, सूखी शाखाओं और अन्य पौध अवशेषों को इकट्ठा कर हटा दे, इससे कीट और रोगों का प्रकोप कम होता है और पेड़ों की स्वस्थ वृद्धि और विकास को बढ़ावा मिलता है। तो ध्यान दे कि बगीचे में गिरे हुए पत्तों, सूखी शाखाओं और ऐसी कोई भी अन्य जो पेड़ के अवशेष हो उन्हें इकट्ठा करके हटा दे। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दे, दुधारू पशुओं को गर्मी के प्रभाव से बचाने के लिए छायादार और हवादार स्थानों में रखें और उन्हें पर्याप्त मात्रा में साफ और ताजा पीने का पानी उपलब्ध कराएं। पशुपालक भाई बहन ध्यान दे, गला घोटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए टीकाकरण कराना बहुत जरूरी होता है, इसलिए सभी दुधारू पशुओं में टीकाकरण जरूर कराएं। सूचना समाप्त हुई। ऐसे ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

आप हर समय थकान महसूस करते हैं, छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है, ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है, बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर आप सबका स्वागत करता है स्वाद संस्कृति और समृद्धि के संगम राष्ट्रीय आम समागम सह कार्यशाला में। तारीख याद रखें 27 से 28 जून 2026।

0: क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खान पान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।
1: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM।

0: उमंग CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
0: आप सभी श्रोताओं को आपके साथी अजीत का नमस्कार, जय जोहार, जय हिंद। श्रोताओं, आइए सबसे पहले सुनते हैं आज का सुविचार जो हमें भेजा है जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जय दास, देवेश दास, धनवंतीन भाई और मोतीम भाई मानिकपुरी जी ने। लिखते हैं, शांत रहना कमजोरी नहीं, ये समझदारी की निशानी है, क्योंकि हर जवाब शब्दों से ही नहीं लेकिन व्यवहार से भी दिया जाता है। इतने सुंदर विचार के लिए आप सबको उमंग कार्यक्रम की ओर से हमारा आभार। और आइए सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है मगरपारा बिलासपुर से वसीम जाटव, अकरम जाटव, आफताब जाटव, महताब जाटव, मिराज जाटव और अल्ताफ जाटव। भटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, पंकज, आयुषी और मीहू। जेल रोड कानपुर से सरफुद्दीन फातिमा थापा, वसीम अकरम बेलदार और डब्ल्यू सोनम कुटरिया। भदोही उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार विद्यार्थी और उनकी छोटी बहन कोमल। तो श्रोताओ, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। जैसा कि हम हर बार कहते हैं, इस बार भी कहेंगे कि जुड़े रहिए आपके प्रिय कार्यक्रम उमंग से। और आइए अब चलते हैं आज की श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी में। श्रोताओ, जहां तक गुफाओं की बात है, लगभग सभी अजंता और एलोरा की गुफाओं से परिचित हैं, लेकिन उमंग कार्यक्रम में हमारा उद्देश्य है उन जानकारियों को उपलब्ध कराना जो लोक संज्ञान में कम है लेकिन पुरातत्व और इतिहास की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। जी तो श्रोताओं, कल हमने बात की थी भीम बैठका की गुफाओं के बारे में, आज हम बात करेंगे कुटुम्बसर की गुफाओं के बारे में। कुटुम्बसर की गुफाओं को भारत की सबसे लंबी प्राकृतिक गुफाओं में गिना जाता है। तो आइए जानते हैं कि ये गुफाएं कहाँ स्थित हैं। श्रोताओं, ये गुफाएं स्थित हैं छत्तीसगढ़ राज्य के कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में, जगदलपुर से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर। ये गुफाएं भूमि से लगभग 35 से 40 मीटर नीचे हैं। ये अत्यंत प्राचीन गुफाएं हैं, लेकिन श्रोताओं, जब भी हम ऐसे स्थानों की बात करते हैं तो ये जिज्ञासा जरूर मन में आती है कि इनकी खोज कैसे हुई। तो आपको बता दें कि कुटुम्बसर गुफा का जनजातीय नाम गोपनसर था। सन 1951 की बात है, कुछ स्थानीय चरवाहे एक साही का पीछा कर रहे थे। पीछा करते करते वे एक ऐसी जगह पर पहुंचे जहां ढेर सारी झाड़ियां थीं, पत्थर भी थे। जब उन्होंने झाड़ियों को थोड़ा हटाया तो क्या देखते हैं कि वहां एक बहुत बड़ी गुफा का प्रवेश द्वार है। जी, चरवाहे उस गुफा की बनावट देखकर हैरान रह गए, क्योंकि वहां चट्टानों के आकार विचित्र थे। वे अद्भुत आकार के थे, जैसे किसी ने उन्हें तराश कर बनाया हो। तो आइए जानते हैं कि उन पत्थरों को तराशने वाला कौन था। श्रोताओं, यही तो खास और बड़ी अनोखी बात है कुटुम्बसर की गुफाओं के बारे में। जब विशेषज्ञ यहाँ पर आए तो उन्होंने पता लगाया कि चट्टानों को तराशने वाली प्रकृति ही थी। यहाँ पानी हमेशा टपकता रहता है। पानी के लाखों वर्षों से टपकते रहने के कारण इन चट्टानों को आकार मिला। यहाँ की चट्टाने चूना पत्थर से बनी है। श्रोताओं, इन गुफाओं में कुछ आकृतियां तो ऐसी हैं जो किसी पशु, मुख्य रूप से हाथी, बाघ, विशाल मानव आकृति और शिवलिंग की तरह भी दिखाई देती हैं। जरा सोचिए श्रोताओं, कैसे इन आकृतियों को प्रकृति ने लाखों वर्षों से पानी की बूंदें टपकाकर बनाया, अद्भुत है ना। जी, किसी ने लिखा है कि यदि प्रकृति को शिल्पकार के रूप में देखना है तो कुटुम्बसर की गुफाओं में जरूर जाइए। इन गुफाओं के ऊपर भूमि में कई भूमिगत जल के झरने हैं जहां से निरंतर पानी की बूंदें गिरती रहती हैं। वैज्ञानिकों ने इन गुफाओं में अनेक दुर्लभ जीवों के जीवाश्म भी ढूंढे हैं। एक बात और आपको बता दें श्रोताओं कि इन गुफाओं के अंदर हमेशा घुप अंधेरा रहता है। वहां जाने के लिए पर्यटक गाइड्स और शक्तिशाली बैटरियों वाले लैंप्स लेकर ही जाते हैं। अंदर पानी बहता रहता है, लेकिन एक बड़ी रोचक बात है इन गुफाओं की। आपको बताएं क्या है वो? वो ये कि यहाँ के पानी में जो मछलियां पाई जाती हैं वे अंधी होती हैं, देख नहीं पाती। यहाँ के अन्य जलज प्राणी भी देख नहीं सकते। लेकिन एक सवाल है श्रोताओं कि भला ऐसा क्यों है, ना ये बड़ी अजीब बात। जी हाँ श्रोताओं, वैज्ञानिकों के अनुसार यहाँ हमेशा अंधकार रहता है। इससे संभवतः मछलियों और जलज जीवों की आंखें तो हैं लेकिन उनमें देखने की क्षमता का विकास नहीं हुआ, या फिर धीरे धीरे देखने की क्षमता समाप्त हो गई। एक सिद्धांत ये भी है कि पीढ़ी दर पीढ़ी अंधकार में रहने के कारण उनकी आंखें पूर्ण विकसित नहीं हुई, लेकिन दूसरी इंद्रियां अधिक विकसित हो गईं। मछलियाँ पानी में कंपन, स्पर्श और रासायनिक संकेतों जैसे गंध इत्यादि के माध्यम से रास्ता और भोजन तुरंत पहचान लेती हैं। इसलिए श्रोताओं, कुटुंब सर की मछलियों को दुनिया भर में ब्लाइंड केव फिशेस के नाम से भी जाना जाता है। और हाँ, इन गुफाओं की एक और बड़ी खास बात है, यहाँ के कुछ भागों में यदि फुसफुसा करके भी कुछ कहा जाए तो बड़ी दूर तक ये आवाज सुनाई पड़ती है। श्रोताओं, यहाँ पर कार्यकर्ता इको या गूंज का सिद्धांत। श्रोताओं, ये कहा जा सकता है कि ये गुफाएं वैज्ञानिकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ के जंतु विकासवाद और भूविज्ञान के अध्ययन में महत्वपूर्ण है। तो श्रोताओं, ये थी जानकारी भारत की एक और रहस्यपूर्ण और अनोखी गुफा कुटुंब सर के बारे में। अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। हमारा आज का प्रश्न है, कुटुंब सर की गुफाओं में फुसफुसाकर बोलने पर भी आवाजें साफ साफ क्यों सुनाई देती हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए। कुटुंब सर की गुफाओं में फुसफुसाकर बोलने पर भी आवाजें साफ साफ क्यों सुनाई देती हैं? आप हमें हमारे IVRS नंबर 8804405559 पर या ईमेल पर यानी audio@ceiet.nic.in पर इस प्रश्न का उत्तर भेज सकते हैं। और हाँ, एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं। और आइए अब सुनते हैं आज के हमारे ज्ञान और मनोरंजन से भरपूर शैक्षिक कार्यक्रम। तो सबसे पहले सुनते हैं कार्यक्रम लीव्स ऑन द ट्री आर फॉलिंग। श्रोताओं, अंग्रेजी का ये सुंदर गीत पतझड़ और वसंत के मौसमों के बीच की प्रकृति की सुंदरता का वर्णन करता है और विशेषकर संदेश देता है कि हमें प्रकृति का अवलोकन करके उनके सौंदर्य की प्रशंसा करनी चाहिए। ऐसा करके हम प्रकृति से बहुत कुछ सीख सकते हैं। द लीव्स ऑन द ट्रीज।
2: Children, have you ever seen the leaves growing in the tree? The new tender leaves spurting out from the branches? Like the flowers blossoming? Yes, we want to see them as the flowers blossom and leaves grow. But we never see them growing closely. Is a song which makes you feel that you notice the growing of leaves and blossoming of flowers. Come on, let's sing the song to know and notice. But before we sing it, let's recite the song. Repeat after me, all right?
3: Yes!
2: The leaves on the trees are turning green. Turning green, turning green.
3: The leaves on the trees are turning green, turning green, turning green.
2: The leaves on the trees are turning green, grow, grow, grow.
3: The leaves on the trees are turning green, grow, grow, grow.
2: Very nice. The flowers on the trees are beautiful, beautiful, beautiful.
3: The flowers on the trees are beautiful, beautiful, beautiful.
2: The flowers on the trees are beautiful, busy, busy bees.
3: The flowers on the trees are beautiful, busy, busy bees.
2: The leaves on the trees are falling down, falling down, falling down.
3: The leaves on the trees are falling down, falling down, falling down.
2: The leaves on the trees are falling down, yellow, red and brown.
3: The leaves on the trees are falling down, yellow, red and brown.
2: Yes, and now the leaves on the trees have fallen down, fallen down, fallen down.

0: इस खूबसूरत गीत के बाद आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। हमारा अगला कार्यक्रम है फादर डॉक्टर कामिल बुल्के। ये कार्यक्रम हिंदी साहित्य के प्रकांड विद्वान डॉक्टर कामिल बुल्के के जीवन और उनके द्वारा हिंदी साहित्य को दिए गए योगदान के बारे में, विशेषकर तुलसी साहित्य में उनके द्वारा लिखे गए शोध की विस्तार से जानकारी देता है।
1: यूरोप के पश्चिमी भाग में एक छोटा लेकिन खूबसूरत देश है बेल्जियम। बेल्जियम में एक प्रांत है फ्लैंडर्स। इस प्रांत में एक छोटा सा शांत और सुंदर शहर है रम्स कपेला। 1 सितंबर 1909 को अडोल्फ और मारिया बुल्के के घर में एक बालक का जन्म हुआ। माता पिता ने बड़े प्रेम से उसका नाम रखा कामिल बुल्के।
2: कामिल का अर्थ होता है पूजा की वेदी और बुल्के का अर्थ है सुगंधित पुष्प। और सच में जैसा कि नाम था, उन्होंने अपने नाम को 100% चरितार्थ किया। बचपन से ही उनकी गहरी रुचि अध्यात्म और साहित्य में दिखाई दे

0: विद्यालय से सिविल इंजीनियरिंग में बीएससी डिग्री प्राप्त की और 1930 में स्पष्ट दिव्य अनुभूति प्राप्त होने पर शिक्षक और पुरोहित बनाने वाले जेसुइट समाज में शामिल हो गए।
1: 6 नवंबर 1935 को 17 दिनों की समुद्री यात्रा के बाद वो बंबई आ गए, जो अब मुंबई है। उन्होंने भारत को अपनी कर्मस्थली के रूप में चुना।
0: उन्होंने भारत भूमि को नमन किया। ये गोस्वामी तुलसीदास जी की भूमि है। दरअसल अपनी पढ़ने की आदत के कारण बेल्जियम में ही उन्होंने तुलसीदास जी की कई चौपाइयों का जर्मन अनुवाद पढ़ा था।
1: उनमें से एक चौपाई से वो बहुत प्रभावित हुए। चौपाई थी, धन्य जन्मु जग तीतल तासु, पितहि प्रमोद चरित सुनि जासु।
0: अर्थात उस बेटे का जीवन धन्य है जिसका यश और कीर्ति सुनकर पिता आनंदित होता है। इन पंक्तियों से वे इतने प्रभावित हुए कि कवि तुलसीदास जी के अनन्य भक्त बन गए। उन्होंने लिखा था,
2: विश्व साहित्य में माता और पुत्र के संबंधों की बहुत सारी चर्चा मिल जाएगी, लेकिन पिता पुत्र के संबंधों की ऐसी व्याख्या और ऐसा ऊंचा आदर्श मुझे सिर्फ भक्त कवि तुलसीदास जी की रामायण में ही मिला।
0: भारत आने पर उन्होंने जो देखा उसने उनके संपूर्ण जीवन के चिंतन और दर्शन को एक नया आयाम दे दिया। उन्होंने अपने भारत आगमन के समय को याद करते हुए अपनी एक पुस्तक एक ईसाई की आस्था राम कथा और हिंदी में लिखा है,
2: 1935 में मैं जब भारत पहुंचा मुझे ये देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि रास्ते में सभी संकेत पट्टों पर सूचनाएं और स्थानों के नाम अंग्रेजी में थे। मैंने ये जाना कि अनेक शिक्षित लोग अपनी सांस्कृतिक परंपराओं से अनजान थे और इंग्लिश में बोलना गर्व की बात समझते थे। मैंने विचार किया कि मैं हिंदी भाषा में सिद्धता को प्राप्त करने का पूरा प्रयास करूंगा। हिंदी स्थानीय और जनजातीय भाषाओं में जो ज्ञान प्रणाली और सीखने की सामग्री अंतर्निहित है, उनके संरक्षण और पुनरुत्थान से ही हमारा विकास संभव है।
0: वे दार्जिलिंग गए और अल्प प्रवास के बाद अंततः गुमला आ गए, जो आज के झारखंड राज्य में है। उन्होंने गुमला के सेंट इग्नेसियस विद्यालय में 3 साल तक गणित और भौतिकी पढ़ाया और हिंदी की कक्षा में अपने ही विद्यार्थियों को सहपाठी बनाकर हिंदी सीखने लगे। गणित पढ़ाने के बाद वे हिंदी की कक्षा में सबसे पीछे बैठ जाते थे और पूरी तन्मयता से हिंदी सीखते थे।
1: हिंदी के मूल रूप को समझने के लिए धीरे धीरे उन्होंने ब्रजभाषा और अवधी भी सीखी।
0: रांची आकर वे कुछ समय के लिए सन 1938 में झारखंड के ही एक शहर हजारीबाग गए और सेंट कोलंबस कॉलेज में पंडित बद्रीदत्त शास्त्री के निर्देशन में संस्कृत और स्वामी तुलसीदास की 2 प्रमुख रचनाओं रामचरितमानस और विनय पत्रिका का गहन अध्ययन करने लगे।
1: फिर उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्वतंत्र परीक्षार्थी के रूप में स्नातक की उपाधि प्राप्त की और उच्च अध्ययन के अभिप्राय से वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय पहुंचे और वहां के हिंदी विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर धीरेंद्र वर्मा से मिले।
3: आइए आइए फादर बुलके, आपका स्वागत है।
2: जी डॉक्टर धीरेंद्र, आपके स्वागत से मैं अनुग्रहित

0: कृतार्थ हुआ। मेरी हार्दिक अभिलाषा है कि मैं हिंदी में अपना स्नातकोत्तर अध्ययन इलाहाबाद विश्वविद्यालय से करूं।
1: ठीक है, लेकिन उम्मीदवार की कुछ परीक्षा तो लेनी ही होगी।
0: जी, मैं प्रस्तुत हूं।
1: तो फादर, मैं चाहता हूं कि आप तुलसीदास जी की विनय पत्रिका के दो पदों की इसी समय सब प्रसंग व्याख्या करें। ये लीजिए।
0: जी, अवश्य।
2: फादर कामिल बुल्के ने कुछ ही देर में उन पदों की लिखित व्याख्या कर दी। इस यूरोपीय श्वेत वर्णीय ईसाई पुरोहित को डॉक्टर वर्मा ने प्रारंभ में नौसिखिया समझा था, लेकिन जब उन्होंने व्याख्या पढ़ी तो
3: ओह, अद्भुत। तो फादर, अब विलंब कैसा? आप इसी समय से विश्वविद्यालय के हिंदी संकाय में अध्ययन के लिए आमंत्रित हैं।
0: धन्यवाद डॉक्टर धीरेन्द्र, ये मेरा सौभाग्य होगा।
3: जी।
2: स्नातकोत्तर अध्ययन के बाद फादर कामिल बुल्के ने फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा की प्रेरणा से डॉक्टर माता प्रसाद के निरीक्षण में शोध कार्य किया।
4: इससे जुड़ी एक बड़ी रोचक घटना है। फादर कामिल बुल्के चाहते थे कि उनका शोध हिंदी में प्रकाशित हो, लेकिन उन दिनों सभी शोध अंग्रेजी में ही हुआ करते थे।
2: उन दिनों इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर अमरनाथ झा थे। फादर कामिल बुल्के ने इसके लिए विश्वविद्यालय के कुलपति से मिलने का समय मांगा।
0: क्या मैं अंदर आ सकता हूँ कुलपति महोदय?
5: आइए आइए फादर बुल्के। मुझे बताया गया है कि रामकथा पर आपका शोध बहुत अच्छा बन पड़ा है। आपने इसमें बहुत से नए आयाम भी जोड़े हैं।
0: जी कुलपति महोदय, मैं अपने शोध पत्र को प्रकाशित करने के बारे में ही आपसे विमर्श करने आया हूँ।
5: जी जी,
0: मैं चाहता हूँ कि मुझे अपने शोध पत्र को देवनागरी में प्रकाशित करने की अनुमति दी जाए।
5: मगर फादर, आप जानते हैं कि विश्वविद्यालय के नियमानुसार शोध पत्र सिर्फ अंग्रेजी में ही प्रकाशित किए जा सकते हैं।
0: कुलपति महोदय, जैसा कि आपको ज्ञात है, मेरा शोध का विषय ही राम कथा की उत्पत्ति और विकास है।
5: जी,
0: मैं दृढ़ता से विश्वास करता हूं राम कथा और तुलसी की आत्मा के विराट सौंदर्य के दर्शन केवल और केवल उनकी मातृभाषा में ही हो सकते हैं।
5: जी, मैं आपकी भावनाओं का सम्मान करता हूं फादर बुल्के।
0: तो मैं आपकी इस प्रतिक्रिया को एक सकारात्मक उत्तर के रूप में देखने की अपेक्षा करता हूं।
5: जी।
2: तो फिर क्या था, विश्वविद्यालय की अकादमिक परिषद की सभा बुलाई गई और लंबे विचार विमर्श के बाद नियमावली में विधिवत परिवर्तन किया गया। फादर का ये अनुरोध मान लिया गया। भारत के शोध परिदृश्य में ये एक महत्वपूर्ण घटना थी, क्योंकि इसके द्वारा देवनागरी में शोध प्रबंध लिखने का रास्ता सबके लिए साफ हो गया और आदिवासी भाषाओं में भी पीएचडी स्तर तक पढ़ाई होनी शुरू हो गई।
4: उन्होंने राम और राम कथा के बारे में अपने शोध ग्रंथ में लिखा है।
0: देखिए, राम वाल्मीकि कथा के मिथकीय पात्र नहीं हैं, बल्कि वे तो इतिहास पुरुष हैं, जिनकी व्याप्ति सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में है। रामायण सिर्फ धार्मिक साहित्य ही नहीं है, बल्कि जीवन जीने के तरीके का दस्तावेज है।
2: उनके शोध की विशेषता ये है कि उन्होंने रामायण से संबंधित किसी भी विषय को छोड़ा नहीं है। हिंदी के अतिरिक्त उन्होंने तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, बांग्ला, कश्मीरी, सिहली आदि भाषाओं के साहित्य में भी उपलब्ध राम कथा की गहन छानबीन की है।
4: उन्होंने तेलुगु में रचित श्री रंगनाथ रामायण और महर्षि कम्बन द्वारा तमिल में रचित कम्ब रामायण को भी संदर्भित किया। चार भागों में विभक्त 600 पृष्ठों में छपी उनकी ये थीसिस एक प्रतिनिधि शोध ग्रंथ साबित हुई और भारत सहित पूरे विश्व में विभिन्न भाषाओं में प्रकाशित हुई। इसके बाद सारी दुनिया फादर बुल्के को जानने लगी।
2: अब जहां भी राम कथा होती, फादर कामिल बुल्के का नाम वक्ताओं की सूची में सबसे ऊपर होता। उन्होंने देश भर में राम कथा पर व्याख्यान दिए। वे कहा करते थे,
0: सब हैं नचावत राम गोसाई, मोहे नचावत तुलसी गोसाई।
2: सन 1950 में उन्हें बहुत सम्मान पूर्वक भारत की नागरिकता प्रदान की गई। इसी वर्ष वे रांची के सेंट जेवियर कॉलेज के हिंदी और संस्कृत विभाग के अध्यक्ष बना दिए गए और आजीवन उसी पद पर रहे। वे हमेशा अपने विद्यार्थियों को उनकी अपनी भाषा में ही बातचीत करने हेतु प्रोत्साहित करते थे।
4: सबसे मशहूर अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश लिखने वाले फादर कामिल बुल्के ही हैं। 30 वर्षों की उनकी हिंदी साधना का जीवंत दस्तावेज उनका शब्दकोश माना जाता है।
2: उन्होंने इसमें 40,000 शब्द जोड़े और उसे प्रशासनिक, वैज्ञानिक और तकनीकी दृष्टि से अद्यतन करते रहे। फादर कामिल बुल्के बहुभाषाविद थे। वो अपनी मातृभाषा फ्लेमिश के अतिरिक्त अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, लैटिन, ग्रीक, संस्कृत और हिंदी पर भी संपूर्ण अधिकार रखते थे। इन भाषाओं के ज्ञान के कारण ही उन्हें शब्दकोश बनाने में बहुत सहायता मिली। उन्होंने लिखा था,
0: जब मैं अपने जीवन पर विचार करता हूं तो मुझे लगता है ईसा मसीह, हिंदी और तुलसीदास ये वास्तव में मेरी आध्यात्मिक साधना के 3 प्रमुख घटक हैं और मेरे लिए इन 3 तत्वों में कोई विरोध नहीं है बल्कि गहरा संबंध है। मैं ईसा मसीह का परम भक्त हूं, हिंदी मेरा अनुराग है और गोस्वामी तुलसीदास मेरी प्रेरणा।
2: कामिल बुल्के की हिंदी सेवाओं के लिए 1974 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया। जब लोग उन्हें फादर कहते तो वे किंचित संकोच से बोल उठते,
0: फादर अंग्रेजी शब्द है, यदि मुझे कामिल बाबा कहो तो सचमुच मुझे बहुत अच्छा लगेगा।
2: 17 अगस्त 1982 को दिल्ली में इस अद्भुत शोध शिल्पी, राम कथा अनुरागी, बहुभाषाविद और हिंदी भाषा के अनन्य सेवक का निधन हो गया। उनकी मृत्यु शैया पर मात्र 2 पुस्तकें थीं, बाइबल और गोस्वामी तुलसीदास जी की विनय पत्रिका। उन्हें दिल्ली में ही दफनाया गया।
4: 36 साल बाद वर्ष 2018 में पद्म भूषण फादर कामिल बुल्के का पार्थिव अवशेष दिल्ली से उनकी कर्मभूमि रांची लाया गया। उनके अवशेष को पूरे सम्मान के साथ रांची सेंट जेवियर कॉलेज में दफनाया गया।
2: महान शब्द शिल्पी और हिंदी साहित्य के इस पुरोधा फादर कामिल बुल्के बाबा को हमारा आभार सहित शत शत नमन।
6: डॉक्टर कामिल बुल्के, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने साथी अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

तैयार है आम के अद्भुत संसार से रूबरू होने के लिए। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर लेकर आ रहा है राष्ट्रीय आम समागम 2026, जिसका आयोजन 27 से 28 जून तक किया जाएगा। आइए और देखिए देश भर की सैकड़ों आम किस्मों की आकर्षक प्रदर्शनी, जहां स्वाद, सुगंध और रंगों का अनूठा संगम आपका स्वागत करेगा। इस विशेष आयोजन की थीम है स्वाद, संस्कृति और समृद्धि का संगम। आम समागम में किसानों, वैज्ञानिकों, उद्यमियों और आम प्रेमियों को एक ही मंच पर आने का अवसर मिलेगा। कार्यक्रम के दौरान आयोजित होगी राष्ट्रीय कार्यशाला, जिसका विषय है आधुनिक तकनीक से गुणवत्ता युक्त उत्पादन, भंडारण एवं प्रसंस्करण। देश के प्रतिष्ठित विशेषज्ञ आम उत्पादन, मूल्य संवर्धन और प्रसंस्करण की आधुनिक तकनीकों पर अपने अनुभव साझा करेंगे। इस अवसर पर आयोजित होगा किसान वैज्ञानिक सम्मान समारोह, जिसमें बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश के उत्कृष्ट आम उत्पादकों को बेस्ट मैंगो फार्मर अवार्ड प्रदान किया जाएगा। महिला आम उत्पादकों एवं मूल्य संवर्धन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिला उद्यमियों के लिए भी विशेष सम्मान और नगद पुरस्कार की व्यवस्था की गई है। और अब आपके लिए एक सुनहरा अवसर, यदि आपके बाग में उत्कृष्ट गुणवत्ता के आम हैं या आपके पास किसी विशेष किस्म के आम उपलब्ध हैं, आप भी आम प्रदर्शनी में अपनी आम की किस्मों को प्रदर्शित कर सकते हैं। आपकी प्रविष्टियों का मूल्यांकन विशेषज्ञों द्वारा किया जाएगा और चयनित प्रतिभागियों को आकर्षक पुरस्कार एवं नगद राशि से सम्मानित किया जाएगा। और हाँ, आम प्रेमियों के लिए होगा एक विशेष आकर्षण, मैंगो ईटिंग प्रतियोगिता। इस रोमांचक प्रतियोगिता के विजेताओं को भी आकर्षक नगद पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। तो देर किस बात की, अपने श्रेष्ठ आमों के साथ आइए, प्रदर्शनी में भाग लीजिए, विशेषज्ञों से सीखिए, नई तकनीकों को जानिए और आकर्षक पुरस्कार जीतने का अवसर पाइए। 27 से 28 जून राष्ट्रीय आम समागम 2026 बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है।

0: पक्षियों को उड़ता देख साथ मुझे आई एक भूली कहानी याद।
1: कौन सी कहानी टीकी?
0: उस जालिम शिकारी की जो आया था करने पंछियों का शिकार।
2: हमें भी वो कहानी बताओ ना।
0: एक था शिकारी जिसने चिड़ियों का शिकार करने को चुपके से बिछाया जाल, लेकिन जाल को सब चिड़िया फुर्र से ले उड़ी साथ।
2: माथा पीटता रह गया शिकारी, एक भी चिड़िया लगी ना हाथ।
0: तो दोस्तों, बीमारी का राक्षस भी बिछाए बैठा है एक जाल। अगर बच्चों का टीकाकरण छूटा तो कर देगा सबको बीमारी से बेहाल।
1: तो इस राक्षस से कैसे बचना है?
2: तो 5 साल या उनसे छोटे बच्चों के मम्मी पापा, सभी सुनो एक जरूरी बात। अगर सभी बच्चों का होगा टीकाकरण एक साथ, तो बीमारी के राक्षस का भी हो जाएगा खात्मा उसके साथ।
0: टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
3: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
4: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 ग्रीन FM। उन्नत कृषि।
5: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। तो आज हम भिंडी की खेती के बारे में बात करने वाले हैं। बहुत सी जानकारी हमें मिलने वाली है डॉक्टर शिरीन अख्तर से, जो है सब्जी विज्ञान विभाग से। आप हैं एसोसिएट प्रोफेसर कम सीनियर साइंटिस्ट। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
6: धन्यवाद उमा। भिंडी एक अत्यंत लोकप्रिय सब्जी है। भिंडी जो है टमाटर, बैंगन, मिर्च आदि के जैसे वर्ष भर हो सकती है। वर्ष में हम लोग इसको 2 बार तो आसानी से उगा सकते हैं, कभी कभार 3 बार भी उगा सकते हैं। और भिंडी हम लोग देखते हैं ये मुख्य रूप से प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवण, इसका भरपूर मात्रा में ये सब पाया जाता है। साथ साथ में जो है कैल्शियम, फॉस्फोरस, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, ये भी बहुत सारा पाया जाता है। और हमारा देश भारतवर्ष जो है भिंडी के जो है इसका फलन के लिए बहुत इस हमारा जो जलवायु है इसके अनुकूल है, और इसीलिए जो है हमारा देश अभी पूरे विश्व में जो है भिंडी का सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र है। और भिंडी जो है पूरे साल में 2 बार से लेके 3 बार भी हम उगा सकते हैं, गर्मियों में भी उगा सकते हैं, तथा जो मुख्य फसल भिंडी का है वो खरीफ मौसम का है, यानी कि बरसाती जो फसल है वही भिंडी का मुख्य फसल है। और इसमें जो है भिंडी को उगाने के लिए हमारे देश में बहुत सारे उन्नत किस्म हैं, जैसे IIVR वाराणसी से डेवलप किया गया जो किस्म है काशी प्रगति, काशी विभूति, काशी क्रांति, इसके साथ साथ में काशी सहिष्णु, काशी वर्धन, काशी सातधारी, काशी पराक्रम, काशी उत्कर्ष, काशी चमन, काशी लीला, ये जो है ये सारे जो है हरे रंग में, जो हमारा भिंडी है वो यूजुअली हम लोग देखते हैं कि हरे रंग में मिलता है, तो ये सारे किस्म हरे रंग की है। साथ साथ में एक नई किस्म काशी लालिमा भी जो है वो लाल रंग में उन्नत किस्म तैयार किया गया है IIVR द्वारा। ये इसके अलावा भी जो है काफ़ी सारे संकर किस्म है, जो कि काशी वैरव है, काशी सृष्टि, शीतला ज्योति, शीतला उपहार, सोनाक्षी, शक्ति, ये सारे महत्वपूर्ण संकर किस्म है।
5: मैम, बुआई से पहले खेत की तैयारी कैसे करें?
6: खेत की तैयारी बहुत ही महत्वपूर्ण है किसी भी सब्जी के फलन के लिए। तो सर्वप्रथम भिंडी के लिए खेत की प्रारंभिक जुताई जो है मिट्टी पलटने वाले हल से करते हैं, और उसके बाद में 2 से 3 जुताई कल्टीवेटर से कर लेते हैं, और दूसरी जुताई जिस समय किया जाता है उस समय पर जो है 150 से 200 क्विंटल अच्छे से सड़े हुए गोबर की खाद या फिर कंपोस्ट जो है खेत में अच्छे से मिलाया जाता है, और अंतिम जुताई के बाद में जो है पाटा चलाकर खेत को अच्छे से समतल बनाया जाता है।
5: बुआई का तरीका क्या है और बीज की मात्रा क्या होनी चाहिए?
6: जो गर्मा भिंडी है जिसको कि हम लोग फरवरी के महीने में सामान्यतः लगाते हैं, उसके लिए बीज का दर लगभग 12 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के लिए ज़रूरी होता है। और अभी जो बरसाती मौसम के जो भिंडी है, जो खरीफ भिंडी अभी लगने वाली है, उसके लिए जो है 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर आवश्यक होता है। और यहीं पर अगर भिंडी का संकर किस्म हम लोग लगाते हैं तो लगभग 3 से 4 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के बीज से ही वो काफ़ी होता है एक हेक्टेयर लगाने के लिए। और साथ साथ में जो है खरीफ जो फसल है जो अभी हम लोग लगाने वाले हैं, तो ये मई के लास्ट जो है, मई महीने के अंत से लेके जुलाई महीना भर हम लगा सकते हैं। और जो गर्मा भिंडी है उस भिंडी को जो है हम लोग लगभग फरवरी महीना भर लगाते हैं। और जो हम लोग बीज जब लगाएंगे तो बीज से लगाने के पहले जो है बीज को उपचार कर लेना चाहिए और 2 से 3 ग्राम का कैप्टान या फिर 1 ग्राम बविस्टिन दवा जो है प्रति किलोग्राम बीज के दर से हम लोग अगर उसका उपचार कर लेते हैं तो वो अच्छा रहता है। साथ साथ में जो भिंडी जो हमारा फसल है ये सीधी बुवाई करते हैं हम खेत में, तो बुवाई के पहले बीज को 24 घंटा के लिए हम पानी में भिगो कर रखते हैं और बीज जो है फूल जाते हैं, तो उस फूले हुए बीज को हम खेतों में लगाते हैं। खेतों में लगाने से पहले भी हमको देखना पड़ेगा कि खेत में हल्की हम सिंचाई देके जब नमी रहेगा उसी खेत में हम लोग भिंडी को लगाते हैं, तो इसको कतारों में लगाते हैं। जो खरीफ की भिंडी फसल है इसको कतार से कतार के बीच में 60 सेंटीमीटर की दूरी बना के हम लोग कतार बनाते हैं और कतारों में जो है 45 सेंटीमीटर पौध से पौध की दूरी रखते हैं और वैसे करके भिंडी लगाते हैं। और अगर यही गर्मा भिंडी का फसल होता है तो उस समय पे हम लोग लगभग 45 सेंटीमीटर कतार से कतार की दूरी रखते हैं और भिंडी के जो दोनों पौधा है उस पौध के बीच का दूरी उस समय पे गर्मा के समय पे 30 सेंटीमीटर रखते हैं। खास करके गर्मा के समय पे हम देखते हैं अंकुरण थोड़ा सा कम होता है, इसीलिए एक स्थान पर जो है 2 से 3 बीज की बुवाई करते हैं। परंतु संकर किस्मों का बीज क्योंकि महंगा होता है इसीलिए एक स्थान पे एक ही बीज की बुवाई किया जाता है।
5: मैम, खाद और उर्वरक की क्या मात्रा होनी चाहिए
6: भिंडी के फसल के लिए? खाद और उर्वरक की मात्रा जो है अच्छे से मिट्टी जांच करने के उपरांत ही करना चाहिए। सामान्यतः जो हम देखते हैं अच्छी फसल लेने के लिए 150 से 200 क्विंटल सड़े हुए गोबर की खाद या फिर कंपोस्ट या फिर 60 से 80 क्विंटल वर्मी कंपोस्ट प्रति हेक्टेयर में हम लोग उसको उपयोग करते हैं। साथ साथ में 100 से 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 से 80 किलोग्राम फॉस्फेट एवं 80 से 100 किलोग्राम पोटाश की आवश्यकता हो होती है। तो ये जो नाइट्रोजन है इसकी आधी मात्रा तथा फॉस्फेट एवं पोटाश की पूरी मात्रा जो है अंतिम जुताई के समय पे खेत पे मिला देना चाहिए। और जो नाइट्रोजन है उसका जो आधा शेष रहता है वो पौध जमने के बाद में 25 से 30 दिन पे और दूसरी बार जो है बाकी आधा शेष जो है 50 से 55 दिनों के बाद में पौध में जड़ के पास में टॉप ड्रेसिंग के तहत से हम लोग उसको डालते हैं। इसके अलावा में जो है भिंडी में सूक्ष्म पोषक तत्व का भी महत्व है और इसमें जो है कैल्शियम और बोरोन का अगर हम लोग पर्णीय छिड़काव करते हैं तो इससे उपज का क्षमता बढ़ता है। और पादप वृद्धि नियामक का भी हम लोग इसमें प्रयोग करते हैं और इसमें जो है जिबरेलिक एसिड और ट्राई कैंटेनॉल का हम लोग प्रयोग करते हैं, इससे जो है अधिक उपज प्राप्त हो सकता है। और खास करके ट्राई कैंटेनॉल का उपयोग गर्मा भिंडी में अगर हम लोग करते हैं तो इसमें उपज काफ़ी बढ़ता है।
5: मैम, निकाई गुड़ाई और सिंचाई का क्या ध्यान रखना चाहिए?
6: सामान्यतः जो है हम लोग भिंडी को जब लगाते हैं तो थोड़ा बहुत नमी जब रहेगा खेत में, एक हल्का सिंचाई देके जब जिस खेत में नमी रहेगा उसी में हम लोग भिंडी को लगाते हैं, बुआई करेंगे। और उसके बाद में जो है भिंडी का जो सिंचाई है वो लगभग हम लोगों को अगर बरसाती मौसम है तो देखना पड़ेगा कि बारिश हो रही है कि नहीं हो रही है, उसके हिसाब से पानी देना पड़ेगा। लगभग 10 से 12 दिन में एक बार पानी देना चाहिए, लेकिन बारिश को देखते हुए। और अगर गर्मा भिंडी है तो उसमें जो है हफ्ते में एक बार तो पानी देना बहुत आवश्यक हो जाता है। और सामान्यतः हम देखते हैं सिंचाई करने के 3 से चार दिनों बाद में जब नमी अच्छा रहता है उस समय पे निराई गुड़ाई करने से सारा खरपतवार नष्ट हो जाती है। और शुरुआती फेज में जैसे जो फसल जब 40 से 45 दिन तक रहता है उस समय तक अगर हम लोग खरपतवार से अच्छे से फसल को बचा लेते हैं तब जो है उपज इसमें अच्छा मिलता है।
5: मैम अब बात करते हैं फल की तुड़ाई की, तो तुड़ाई कैसे करनी चाहिए और उपज कितनी होती है?
6: जब भिंडी का फल लगभग 6 से 7 सेंटीमीटर लंबे हो जाते हैं और फल जो है कोमल रहता है और हल्के हरे रंग से या फिर गहरे हरे रंग जैसे उसका कलर जो रंग है वैरायटी वाइज जैसे रंग है उस रंग का होता है उस समय पे फल की तुड़ाई किया जाता है। और ज़्यादा दिन अगर हम फसल को खेत में छोड़ देते हैं तो उसमें फाइबर ज़्यादा हो जाता है तो उसको खाने लायक नहीं रहता है। और ऐसे देखा जाता है जब फूल खिलता है तो उसके 3 से 4 दिन के भीतर ही भिंडी तोड़ने लायक हो जाता है। और जब फसल में तुड़ाई शुरू होता है एक बार तो हर दूसरे से तीसरे दिन में भिंडी तोड़ने के लिए रेडी हो जाता है। तो हम लोग जो है हर दूसरे से तीसरे दिन हम भिंडी तोड़ते रहेंगे ताकि इसमें जो है ज़्यादा जो है इसमें फाइबर ना डेवलप करे और खाने लायक योग्य रहे और बहुत अच्छा सा रहे। और अगर हम लोग उचित देखभाल करते हैं और अच्छा किस्म का उपयोग करते हैं सही से खाद और उर्वरक का प्रयोग करते हैं तो प्रति हेक्टेयर से 120 से 150 क्विंटल हरे फल की उपज हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। यहीं अगर संकर किस्म है तो उसमें 170 से 180 क्विंटल प्रति हेक्टेयर से भी उपज का हम लोग लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
5: मैम बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने भिंडी की खेती के बारे में बहुत सी उपयोगी बातें बताई।
6: धन्यवाद उमा।
5: दोस्तों आज के लिए इतना ही, उम्मीद है आप अपना और अपनी फसलों का रख रहे होंगे खूब ख्याल और अपनी मिट्टी से करेंगे ढेर सारा प्यार। नमस्कार।
4: उन्नत कृषि

तैयार है आम के अद्भुत संसार से रूबरू होने के लिए। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर लेकर आ रहा है राष्ट्रीय आम समागम 2026, जिसका आयोजन 27 से 28 जून तक किया जाएगा। आइए और देखिए देश भर की सैकड़ों आम किस्मों की आकर्षक प्रदर्शनी, जहां स्वाद, सुगंध और रंगों का अनूठा संगम आपका स्वागत करेगा। इस विशेष आयोजन की थीम है स्वाद, संस्कृति और समृद्धि का संगम। आम समागम में किसानों, वैज्ञानिकों, उद्यमियों और आम प्रेमियों को एक ही मंच पर आने का अवसर मिलेगा। कार्यक्रम के दौरान आयोजित होगी राष्ट्रीय कार्यशाला, जिसका विषय है आधुनिक तकनीक से गुणवत्ता युक्त उत्पादन, भंडारण एवं प्रसंस्करण। देश के प्रतिष्ठित विशेषज्ञ आम उत्पादन, मूल्य संवर्धन और प्रसंस्करण की आधुनिक तकनीकों पर अपने अनुभव साझा करेंगे। इस अवसर पर आयोजित होगा किसान वैज्ञानिक सम्मान समारोह, जिसमें बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश के उत्कृष्ट आम उत्पादकों को बेस्ट मैंगो फार्मर अवार्ड प्रदान किया जाएगा। महिला आम उत्पादकों एवं मूल्य संवर्धन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिला उद्यमियों के लिए भी विशेष सम्मान और नगद पुरस्कार की व्यवस्था की गई है। और अब आपके लिए एक सुनहरा अवसर, यदि आपके बाग में उत्कृष्ट गुणवत्ता के आम हैं या आपके पास किसी विशेष किस्म के आम उपलब्ध हैं, आप भी आम प्रदर्शनी में अपनी आम की किस्मों को प्रदर्शित कर सकते हैं। आपकी प्रविष्टियों का मूल्यांकन विशेषज्ञों द्वारा किया जाएगा और चयनित प्रतिभागियों को आकर्षक पुरस्कार एवं नगद राशि से सम्मानित किया जाएगा। और हाँ, आम प्रेमियों के लिए होगा एक विशेष आकर्षण, मैंगो ईटिंग प्रतियोगिता। इस रोमांचक प्रतियोगिता के विजेताओं को भी आकर्षक नगद पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। तो देर किस बात की, अपने श्रेष्ठ आमों के साथ आइए, प्रदर्शनी में भाग लीजिए, विशेषज्ञों से सीखिए, नई तकनीकों को जानिए और आकर्षक पुरस्कार जीतने का अवसर पाइए। 27 से 28 जून राष्ट्रीय आम समागम 2026 बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है।

0: कितने दोस्त हैं?
1: तीनू, मीनू, राजू, पिन्नी और...
0: और तुम्हारे वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
1: 11 दोस्त?
0: टीकू, वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
1: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
0: मगर टीकू, कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
1: लेकिन ऐसा क्यों?
0: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं, या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
1: टीकी, तो इसका हल क्या है?
0: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा, सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है, तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। UN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
2: याद रखो,
1: आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।
3: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 24 से 28 जून के दौरान भागलपुर, बांका, मुंगेर, जमुई, इन जिलों में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ हल्की वर्षा होने की संभावना है। दक्षिण बिहार के अन्य जिलों में 24 से 25 जून के दौरान लू चलने की संभावना है। इसके बाद इन जिलों के एक दो स्थानों पर बादल गरजने के साथ हल्की वर्षा की संभावना है। अधिकतम तापमान 37 से 39 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 26 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 60 से 70 प्रतिशत और दोपहर में 25 से 30 प्रतिशत रहने की संभावना है। अनुमान है कि 24 से 28 जून के दौरान 5 से 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दक्षिण पूर्वी हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए, जो किसान भाई बहन धान की खेती करना चाहते हैं, उन्हें बता दे, वर्तमान में मानसून की कमजोर स्थिति को देखते हुए किसान भाई बहनों को ये सलाह दी जाती है कि ऊंची भूमि में धान की खेती ना करें। जिन किसानों के पास सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है, वे मध्यम अवधि वाले धान की किस्मों का बिचड़ा गिराएं और बीज स्थली में नमी बनाए रखें, इस बात का विशेष ध्यान रखें। बीज स्थली यानी कि नर्सरी में नमी बनाए रखने के लिए जरूरत के हिसाब से जीवन रक्षक सिंचाई जरूर करें, और खास तौर से ऊंची भूमि में धान के स्थान पर वैकल्पिक फसलों की खेती पर विचार करना अधिक उपयुक्त होगा। जो मक्का की खेती करना चाहते हैं, उन्हें बता दे, खरीफ मक्का की बुआई तभी करें जब आसमान साफ हो और खेत की जुताई में 10 से 15 टन गोबर की सड़ी खाद प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें, और ध्यान दें कि बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 30 किलोग्राम नेत्रजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटाश डालना जरूरी होता है। किसान भाई बहनों, आपको बता दें, अनुशंसित मक्का की किस्में हैं सुवान, देवकी, शक्तिमान 1, शक्तिमान 2, राजेंद्र शंकर, मक्का 3, गंगा 11। जो मूंग की खेती करते हैं, उन्हें बता दें, मूंग की तैयार फलियों की तुड़ाई कर ले और हरी खाद के लिए उसके पौधों को मिट्टी पलटने वाले हल से जमीन में गाड़ दे। यह आपके खेत और आपके खेत की मिट्टी के लिए फायदेमंद होता है। जिनके खेत में सब्जियां लगी हैं, उन्हें बता दें, भिंडी, कद्दू, खीरा, नेनुआ और लौकी की फसलों में निराई गुड़ाई जरूर करें, साथ ही खरपतवार नियंत्रित करना भी जरूरी होता है। आपको बता दें कि पत्ती खाने वाली सुंडियों और फल छेदक कीटों की नियमित निगरानी करते रहें, और अगर इन कीटों का प्रकोप दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में डाइमेथोएट 30 इसी दवा की 1 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान दें, किसी भी प्रकार का छिड़काव तभी करें जब आसमान साफ हो। किसान भाई बहन, आपको बता दें कि खरीफ प्याज की खेती के लिए नर्सरी यानी कि बीज स्थली की तैयारी तभी करें जब आसमान साफ हो, और स्वस्थ पौधे के लिए नर्सरी में गोबर की खाद जरूर डालें। अच्छे और स्वस्थ फसल के लिए प्याज की बीज की व्यवस्था प्रमाणित स्रोत से ही करें, और बीज गिराने के पहले बीजोपचार करना बहुत जरूरी होता है। बीजोपचार करने से पौधे स्वस्थ और फसल अच्छी होती है। खरीफ प्याज के लिए बीज की दर 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें। जो बागवानी करते हैं, उन्हें बता दे, लीची की फल तोड़ाई के बाद बगीचों में आवश्यक छटाई जरूर कर ले, जिससे पेड़ों के भीतर पर्याप्त धूप और हवा का संचार हो सके। साथ ही आपको बता दे कि बगीचे में गिरे हुए पत्तों, सूखी शाखाओं और अन्य पौध अवशेषों को इकट्ठा कर हटा दे, इससे कीट और रोगों का प्रकोप कम होता है और पेड़ों की स्वस्थ वृद्धि और विकास को बढ़ावा मिलता है। तो ध्यान दे कि बगीचे में गिरे हुए पत्तों, सूखी शाखाओं और ऐसी कोई भी अन्य जो पेड़ के अवशेष हो, उन्हें इकट्ठा करके हटा दे। जो पशु पालन करते हैं उन्हें बता दे, दुधारू पशुओं को गर्मी के प्रभाव से बचाने के लिए छायादार और हवादार स्थानों में रखें और उन्हें पर्याप्त मात्रा में साफ और ताजा पीने का पानी उपलब्ध कराएं। पशुपालक भाई बहन ध्यान दे, गला घोटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए टीकाकरण कराना बहुत जरूरी होता है, इसलिए सभी दुधारू पशुओं में टीकाकरण जरूर कराएं। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

आप हर समय थकान महसूस करते हैं, छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है, ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है, बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर आप सबका स्वागत करता है स्वाद संस्कृति और समृद्धि के संगम राष्ट्रीय आम समागम सह कार्यशाला में। तारीख याद रखें 27 से 28 जून 2026।

0: क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खान पान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।
1: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
0: उन्नत कृषि। नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर मुझे यानी आरजे अनु को, और ये है आपका रेडियो स्टेशन, जी हाँ, एफएम ग्रीन। और बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप इस फ्रीक्वेंसी को सुन रहे हैं। साथ ही मैं आप सभी को बता दूं, आज उन्नत कृषि कार्यक्रम में हम मृदा कार्ड के महत्व के बारे में जानेंगे। मृदा कार्ड क्या है, इसकी शुरुआत कैसे हुई और ये कैसे काम करता है, किसान भाइयों के लिए कैसे लाभप्रद है, ये सारी जानकारी आज देने के लिए हमारे बीच स्टूडियो में है डॉक्टर सोनल कुमारी, जो कि मृदा वैज्ञानिक हैं, सॉइल साइंस डिपार्टमेंट बिहार एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी सबौर से। तो मैडम, ये मृदा कार्ड क्या है, सबसे पहले तो इसके बारे में बताएं।
2: नमस्कार श्रोतागण, मेरे किसान बहनों भाइयों, मैं सोनल, और आज का हमारा टॉपिक है मृदा कार्ड का क्या महत्व है हमारा, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, क्या क्या इसके फायदे हो सकते हैं किसान के परिप्रेक्ष्य में। तो पहले हम जानते हैं ये मृदा कार्ड है क्या। ये जो आपको मृदा कार्ड, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सॉइल हेल्थ कार्ड बोलते हैं, एक सरकारी योजना है जो भारत सरकार द्वारा ये योजना चलाई गई थी। इस कार्ड का उद्देश्य ही था जिससे किसानों को उनकी मिट्टी की, जो उनकर भूमि है, भूमि की मिट्टी का गुणवत्ता का और उसके पोषक तत्व की जानकारी प्राप्त हो सके। और ये जो कार्ड है ना, मिट्टी के विभिन्न गुणों पे काम करता है, स्पेशली जो हमारा पूर्णतः मतलब 12 गुण पे ये आपको उसका विश्लेषण करके, जांच करके उस कार्ड पर इसका विवरण दिया रहता है। और ये कार्ड जो आया था, इसको भारत सरकार चलाया था, भारत सरकार की शुरुआत थी ये जो पहल थी भारत सरकार की थी, ये जो मृदा कार्ड हमारा है कि हर किसान के पास अपनी भूमि का, उनकी मिट्टी का एक मृदा स्वास्थ्य कार्ड हो। और इस भारत सरकार ने इस योजना का शुरुआत अगर बोला जाए तो कब स्टार्ट किया था, तो ये जो योजना है ना 19 फरवरी 2015 को आपको शुरू की गई थी। राजस्थान का एक सूरतगढ़ जगह है, वहाँ पर इसकी शुरुआत की गई थी 19 फरवरी 2015 को। और इस कार्ड का मैंने पहले बताया कि इस कार्ड का क्यों आखिर किया गया, ये कार्ड की किसी किसान को अपनी मिट्टी, भूमि जो है उनकी मिट्टी है, उसकी मृदा स्वास्थ्य क्यों, मृदा स्वास्थ्य जानना क्यों जरूरी है। मृदा स्वास्थ्य जानेंगे तभी तो उन्हें पता चलेगा ना उनकी जो मिट्टी है उसकी गुणवत्ता क्या है, उसमें पोषक तत्व अगर उपलब्ध है तो कितना उपलब्ध है, और कमी है तो किस लेवल पर कमी है, तभी तो वो अपने कौन सा फसल के लिए लगा सकते हैं, कौन सा फसल लगाना वहाँ सही रहेगा। अगर फसल लगा भी रहे हैं तो उसमें कितना हमें, और जो हम बाहरी जो हम खाद पदार्थ डालते हैं कितना डालना पड़ेगा, तभी तो हम उसका स्वास्थ्य जान पाएंगे, तभी तो उसमें उसका निवारण कर पाएंगे ना। तो ये सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए एक हमारा जो सॉइल हेल्थ कार्ड है, जो हिंदी में बोलते हैं मृदा स्वास्थ्य कार्ड, ये भारत सरकार द्वारा ये योजना चलाई गई थी।
0: इसके बाद इसकी शुरुआत कैसे हुई, क्यों हुई, इसके बारे में भी थोड़ा बता दें।
2: क्यों हुई, कैसे हुई, मैंने अभी जस्ट इसके डिटेल में ही बता दिया था क्यों किया गया था, जिससे जो हमारे किसान भाई हैं उनकी जो मिट्टी है उसका मिट्टी का गुणवत्ता, उसमें पोषक तत्व की जानकारी प्राप्त कर सकें, उसमें कितने हमारे पोषक तत्व, कितनी पोषक तत्व प्रेजेंट है कि नहीं है, अगर है तो कितना है, अगर नहीं है तो किस लेवल पर नहीं है, तो कितना हमें बाह्य खाद जो हम ऊपरी लेवल से जो बाहर से डालते हैं खाद पदार्थ कितना हमें डालना पड़ेगा, और डालना पड़े उसके अलावा कौन सा हमें फसल लगाना सही रहेगा, कौन सा फसल चक्र अपनाना सही रहेगा, कौन सा मिश्रित खेती के लिए वो हमारा भूमि सही है, ये सब की जानकारी प्राप्त हमें वहीं से होती है, ये इसके लिए जगह हुआ। और कब हुआ, तो मैंने बताया कि सबसे पहले भारत सरकार का योजना था जो 19 फरवरी 2015 को स्टार्ट की गई थी, कहाँ पर, राजस्थान के सूरतगढ़ में। यही उद्देश्य लेके इनका ऑब्जेक्टिव इस कार्ड का, हेल्थ कार्ड का यही उद्देश्य था, इसी उद्देश्य को मद्देनजर रखते हुए पूरे भारत में योजना को लागू किया गया था।
0: जी, मृदा कार्ड कैसे काम करता है और इसके क्या फायदे हैं, इसके बारे में बताएं।
2: अब हम आते हैं मृदा कार्ड का फायदा क्या है, ये कैसे काम कर, क्या है ये मृदा स्वास्थ्य कार्ड, अब इसका फायदा क्या है, कैसे काम करते उसके जा रहे हैं। ये मृदा जो कार्ड योजना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड है ना, योजना के अंतर्गत जो सरकार है क्या करती है, मिट्टी के नमूने का विश्लेषण करती है। अब जो मिट्टी के नमूने का विश्लेषण करना होता है तो जाहिर सी बात इसको सरकार नहीं करेगी। जो हमारा सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरी होता है, जो हमारा मृदा प्रयोगशाला होता है, उसकी मिट्टी के नमूने को वहाँ पर भेजा जाता है जहाँ पर मिट्टी की गुणवत्ता और उसके पोषक तत्वों में की विश्लेषण किया जाता है। आज इसे ये पता चलता है कि मिट्टी में गुणवत्ता कितनी है, पोषक तत्व तो है, अगर है तो कितनी उसमें कमी है तो उस कमी का रिपोर्ट तैयार किया जाता है। और इस रिपोर्ट के आधार पर ही किसानों को ना मृदा कार्ड दिया जाता है, जिसमें उनको उनकी भूमि की जो मिट्टी है उसके उपयुक्त उर्वरक अन्य आवश्यकता के विवरण दी रहती है। मतलब आपने ये समझना है उसमें कि अगर हमने अपनी मिट्टी का नमूने भेजा तो उसकी गुणवत्ता चेक की जाएगी, पोषक तत्व चेक की जाएगी। इसमें बेसिकली मैं बता रही हूँ, बहुत सारे चीज़ें हमें जब हम मिट्टी की गुणवत्ता जांच करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें होते हैं, बट इसमें मुख्यतः 12 पैरामीटर्स जो हम बोलते हैं इंग्लिश में, 12 पैरामीटर्स में ही 12 मतलब स्पेशली हमें जो 12 होते हैं ना, 12 चीज़ों का ही जानकारी प्राप्त की जाती है। वो क्या क्या है, मिट्टी का पीएच क्या है, मतलब वो आपको अम्लीय है कि क्षारीय है कि वो दोनों के बीच का है, जिसको हम बोलते हैं न्यूट्रल बोलते हैं। मिट्टी का जैविक कार्बन की मात्रा कितना है, मिट्टी में नेत्रजन कितना है, मिट्टी में फॉस्फोरस कितना है, मिट्टी में पोटास कितना है। और जो नेत्रजन, फॉस्फोरस और पोटास है, ये तीनों क्या हमारा है, जिसको मिट्टी का हम बोलते हैं इसको प्राइमरी न्यूट्रिएंट कहने का मतलब हुआ प्रथम, जो हमारा प्रथम बोलते हैं प्रथम पोषक तत्व, उसकी जानकारी मिलती है। और द्वितीय जो पोषक तत्व है जिसमें होता है, उसमें होता है सल्फर की जानकारी दी जाती है। इसके अलावा हमारे सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं उसकी भी जानकारी दी जाती है। उस सूक्ष्म पोषक तत्व क्या है, वो 5 है, जिंक होता है, आयरन तत्व का है, कॉपर होता है, मैग्नीज होता है, बोरोन होता है। और इसके अलावा जो हमारे सॉइल सैलिनिटी, जिसको जो हम क्षारता, हमारी मिट्टी में क्षारता कितनी है, जिसको हम ईसी बोलते हैं अपने एक साइंस के टर्म में, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, उसकी क्षारता की भी जानकारी दी जाती है। तो टोटल जो पैरामीटर्स में 12 पैरामीटर्स पे काम कर गया है, और इस 12 पैरामीटर्स का मिट्टी के प्रयोगशाला में जांच की जाती है, उसका एक रिपोर्ट तैयार किया जाता है, उसके बेसिस पे ही किसानों को उस कौन सा उर्वरक का प्रयोग करना है, कितनी मात्रा में प्रयोग करना है, कौन सा आपको फसल के लिए सही रहेगा, कौन सा फसल चक्र अपनाना है, कौन सा आपको मिश्रित खेती में जाना है, उसका विवरण दिया जाता है और किसान को उसको समझाया जाता है। अब इसके फायदे क्या कर सकते हैं, ये तो फायदे ही मैंने बताया है, क्या क्या हो सकते हैं। फायदे का यही हो सकता है कि आपको सही समझ में, एक अगर आपने कार्ड पर्याप्त प्राप्त कर लिया है तो जिससे आपको जानकारी मिलेगी कि उर्वरक हम सही प्रयोग कैसे करें। किसान अपनी मिट्टी की जांच के बाद अगर उनको पता चल गया कि हमारी ये है तो उर्वरक का प्रयोग कितना करना है, कैसे करना है, जिससे उनका फसल उत्पादन में या उत्पादकता में सुधार ला सके, ये पहला हमारा फायदा हो गया। दूसरा फायदा ये हो सकता है लागत की कमी। बहुत सारे किसान हमारे क्या करते हैं, अपनी मिट्टी की जांच नहीं कराते हैं, जितना मन करता है, सपोज उन्होंने धान की खेती करा था, जितना मन करता है वो जो हमारा एक बोलते हैं ना साइंटिफिक टर्म्स में, वैज्ञानिक तरीके से खेती में एक रिकमेंडेड डोज ऑफ फर्टिलाइजर जिसको हम बोलते हैं, जिसको हर फसल के लिए अलग अलग होता है, वो दिया जाता है। तो किसान अपने सूझबूझ से जो मन करता है जितना मन करता डाल देते हैं, उनको लगता है कि हम ज़्यादा खाद डालेंगे तो ज़्यादा हमारी उपज आएगी, हमारी उत्पादन या उत्पादकता बढ़ेगी, बट ऐसा नहीं है। किसी को, जैसे हम मनुष्य हैं, हम भोजन उतना ही ग्रहण करते हैं जितनी हमारी सक्षम है जितना ग्रहण करने में, वैसे भी पौधे हैं वो भी हमारे सजीव हैं, वो भी उतना ही ग्रहण करेंगे जितनी उनको आवश्यकता है। तो ज़्यादा डालने से भी क्या हो जाता है, आपको क्या है, आपके ही आपकी जो लागत लग रही है वो आपके बढ़ रहे हैं, मतलब कॉस्ट जो बोलते हैं खेती करने में, खेती बाड़ी करने में। लोग आज क्यों खेती बाड़ी में पीछे आ रहे हैं, अरे लागत बहुत ज़्यादा लग जाती है, उत्पादन उतना होता नहीं, घाटे का सौदा करना पड़ता है। तो ये नहीं होती है, जानकारी के अभाव में हम वैज्ञानिक तरीके से खेती नहीं कर रहे हैं, हम चीज़ों को जानने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। लेकिन अभी क्या, हम ना 21st सेंचुरी में हम डिजिटल भारत में जी रहे हैं, जहाँ हर चीज़ डिजिटाइज हो गई, हर चीज़ें लोगों तक पहुँच रही है, तब हमें वैज्ञानिक तरीके से खेती करने की अति आवश्यक है। तो आपको लागत में कमी आएगी अगर आपने जान गया कि हमारे मिट्टी का स्वास्थ्य कैसा है, उसी के अनुसार आपने उर्वरक का प्रयोग करेंगे, जितनी जरूरत उतना ही प्रयोग करोगे, ज़्यादा नहीं करोगे तो लागत में कमी आपकी आएगी, लागत आपका बचेगा। देन पर्यावरण संरक्षण होगा, मृदा कार्ड का आप मृदा कार्ड में सही उर्वरकों का चयन करेंगे तो पर्यावरण पर जो सकारात्मक प्रभाव पड़ता है वो पड़ेगी। मिट्टी पानी का संरक्षण होगा, मिट्टी पानी में हमें ज़्यादा जितने पौधे को चाहिए उतने ही डाल रहे हैं, तो जाहिर सी बात वहाँ से जो हमारे उर्वरक है वो बहकर पानी में नहीं जाएंगे, तो मिट्टी भी स्वस्थ रहेगा हमारा, मिट्टी का भी स्वास्थ्य बना रहेगा हमारा, और हमारा पानी भी संरक्षित रहेगा, फसल के उत्पादन में बढ़ोतरी होगी, जितना मात्रा में हमको उर्वरक डालना है उतना पौधे हमारे जो फसल हैं पोषक तत्व वहाँ से प्रदान किए, अच्छी उपज आ गई, अच्छी हमारी उत्पादकता बढ़ी, वृद्धि भी इससे फायदा होगी, हमारी फसल के उत्पादन उत्पादकता भी बढ़ेगी हमारी।
0: मृदा कार्ड किसानों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है?
2: अब बात आती है मृदा कार्ड जो हमारे है किसानों के लिए कैसे महत्वपूर्ण है। अभी जो मैंने बताया कैसे महत्वपूर्ण हो सकता है, कैसे किसान के लिए उपयोगी हो सकता है, तो जो मृदा कार्ड है सभी प्रकार का फसलों के लिए उपयोगी है। पहली बात ये हमें जानना पड़ेगा कि जैसे मृदा कार्ड हम कर रहे हैं, मृदा कार्ड का प्रयोग कैसे करेंगे हमारे जो किसान हैं, इसका तो उपयोग करने के लिए पहले तो क्या करने का, अगर जिनको किसान को अपने नहीं पता है कि उनको अपने मिट्टी का स्वास्थ्य क्या है कैसे नहीं है, तो उनको पहले तो अपने एरिया में उनको पता करना पड़ेगा वहाँ किसी सेवा केंद्र है कि नहीं है, या मिट्टी का जांच घर है कि नहीं, उस मिट्टी जांच घर में क्या करेंगे, अपनी मिट्टी का जो उनको भूमि है, भूमि का मिट्टी है, उस नमूने भेजना पड़ेगा। और वहाँ पर जो भी मैंने पैरामीटर्स का पहले ही अपने प्रश्नों में उत्तर में दिया है वो अंकित है, उस चीज़ पर जाँच की जाती है, उस जाँच के सुझाव दिए जाते हैं, सुझाव में लिखे रहते हैं कि आपको क्या क्या आपके भूमि में किस चीज़ की कमी है, अगर है तो किस मात्रा में अवेलेबल है। जैसे हम कोई चीज़ हमारा जो पैरामीटर्स हम स्टडी करते हैं ना, हम लैब में जब उसका विश्लेषण करते हैं हम प्रयोगशाला में, उसको तीन कैटेगरी में बांटते हैं, लो, मीडियम और हाई। जैसे मैंने बोला हमारा जो मृदा प्रथम हमारा प्राथमिक हमारा पोषक तत्व है जिसका हम बोलते हैं नेत्रजन बोलते हैं, फॉस्फोरस बोलते हैं, पोटास होते हैं, इस सबका एक हमारे साइंटिफिक टर्म से एक लेवल दिया रहता है जिसको बोलते हैं लो है कि मीडियम है कि हाई है, सारे का ऐसे ही रहता है। ऐसे ही सूक्ष्म पोषक तत्व होता है, ऐसे ही हमारे द्वितीय पोषक तत्व होता है, पीएच है तो पीएच का भी एक लेवल होता है जो 0 से 14 तक होता है कि अम्लीय है कि क्षारीय है कि न्यूट्रल है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो हमको मिट्टी का हमको सैलिनिटी टेस्ट करना होता है उसका हम टेस्ट के लिए रहता है, सबका एक ऑर्गेनिक जो हम जैविक कार्बन बोलते हैं उसका भी एक लेवल होता है, लो मीडियम हाई के रेंज में है, वो सारे वहाँ पर क्या होते हैं मेंशन किए रहते हैं। उस मेंशन करने के आधार पर ही कि आपको किस कैटेगरी में आपका मिट्टी का गुणवत्ता और उसमें पोषक तत्व की जो है प्रेजेंट है उपलब्ध है किस कौन सा कैटेगरी में फॉल करता है, उसके बेसिस पे आपको किसानों को उनको सलाह दी जाती है कि आपके लिए कौन सा वो फसल वहाँ का चयन करना सही रहेगा, फसल चुन रहे हैं और फसल चक्र में तो कौन सा फसल चक्र को अपनाना सही रहेगा, कौन सा आपको मिश्रित खेती के लिए सही रहेगा, या इंटरक्रॉपिंग कर रहे हैं तो कौन सा इस सब चीज़ के लिए जानकारी सब चीज़ दी जाती है, और किसानों को सलाह दिया जाता है कि आप टाइम टू टाइम आके जो अभी आपका जहाँ से आपने कार्ड को प्राप्त किया है वहाँ आप उससे उसके टच में रहे, जो भी आपको सेवा केंद्र दिख रहा है वहाँ पर, अब स्वास्थ्य सेवा केंद्र नहीं जो मिट्टी का जांच केंद्र होता है जो हमको बोलते हैं जो हम किसी KVK बोलते हैं किसी विज्ञान केंद्र जो हमारा है, वहाँ से अपनी मिट्टी के नमूना का जांच कराइए, वहाँ से अपने देखिए क्या क्या है और टाइम टू टाइम से उनसे सलाह लेते रहिए, अब वैज्ञानिक तरीके से खेत कीजिए और अपने जो भी फसल को जितना चाहिए उतना ही उर्वरक का प्रयोग कीजिए, जिससे कोई चीज़ बह गई पानी वानी में ना जाए, जितने आपको पौधे को जरूरत उतने पौधा वहाँ से प्रयोग करे, पोषक तत्व उपज अपनी उपज को उत्पादन को उत्पादकता को बढ़ाइए और पर्यावरण भी हमारा प्रदूषित नहीं हो, हम भी प्रदूषित नहीं होंगे क्योंकि अल्टीमेटली उसका कंज्यूमर कौन है, हम लोग हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, एनिमल्स हैं, तो उसके ये हमारे फायदे हैं। और बहुत सारे उर्वरक ज़्यादा प्रयोग करने से हमें लागत में भी कमी आएगी, ये सब फायदे मैंने पहले ही लिस्ट आउट किया है, ये सारे हमारे इसके फायदे हो सकते हैं।
0: जी अब आगे बढ़ते हैं, जानना चाहिए कि मृदा कार्ड से जो जुड़ी जानकारी प्राप्त करते हैं किसान, तो ये जानकारी प्राप्त करने में किसानों को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है?
2: हाँ देखिए बहुत सारे हमारे किसान बंधु हैं बहनें हैं उनको बहुत चीज़ों से अवगत हो चुके हैं, अब इस बात में कोई दो राय नहीं कि वो अवगत नहीं है, लेकिन बहुत सारे हमारे ऐसा जगह भी है ना जहाँ हमारे

0: साइंटिस्ट हैं जो हमारे बहुत टेक्निकल स्टाफ से इस पर काम करें, वो वहाँ तक पहुँचने में असक्षम हैं। वो चाह रहे हैं पूरी अपनी तरह कोशिश हैं, बट अपनी बातों को अपनी चीज़ों को किसान तक नहीं पहुँचा रहे हैं। किसान भी इतने रिमोट एरिया पर रह रहे हैं कि जहाँ तक वो अपने जो हमारे टेक्निकल स्टाफ्स हैं, टेक्नीशियन काम करते हैं इसके लिए, जो वैज्ञानिक काम करते हैं, वो उन तक नहीं पहुंच पा रहे ना उन तक पहुंच पा रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे एक दूसरे को बोलते हैं ना रीच, कम्युनिकेशन गैप जिसको बोलते हैं, वो आ जाती है, सबसे बड़ी गैप हो जाती है जिसमें जानकारी की पहुँच नहीं, हमारी आदान प्रदान नहीं हो पा रहा है। जहाँ लोग अपने जो उनके अंदर जानकारी चाहिए, जो प्रश्न उनको रखना है वो प्रश्न नहीं रख पा रहे हैं, जिनको उत्तर देना है वो उत्तर नहीं दे पा रहे हैं। तो इसको जिसको बोल रहे हैं कम्युनिकेशन गैप आ जा रही है। दूसरी हमारी क्या तकनीकी जो समझ का होता है अभाव पड़ जाता है। जहाँ पर कम्युनिकेशन गैप आएगी, जही से जो तकनीकी हमें समझ लेनी है, जैसे हमको उर्वरक का प्रयोग करना, अगर धान की खेती हम कर रहे हैं, धान की भी वैरायटी होती है, आपने लो लैंड में करा है, मिड लैंड में किया है या हाई लैंड में करा है, कौन से धान की वैरायटी प्रयोग करा है, वो आपने कौन से मौसम में किया है, और तो उसी की उर्वरक की बात करें तो उस उर्वरक कितना उर्वरक हमको प्रयोग करना है, कितना नहीं करना है, और प्रयोग कर लिया था कितने हमारे खाद अवशेष मिट्टी में ऑलरेडी बचे होंगे, जिस खाद का प्रयोग करके हम दूसरी फसल ले सकते हैं। ये सब चीज़ें तकनीकी चीज़ें होती हैं जिसका अभाव में रहता है, जो हमारे किसान तक नहीं पहुँच सकता है। जैसे कुछ किसान हमें जैसे मृदा कार्ड की उनको दी गई है, तकनीकी जानकारी सबने कठिनाई हो सकती है क्योंकि उससे उसके पूरा लाभ नहीं उठा पाएंगे। जैसे मैंने ये सब चीज़ें, ये दिक्कत आते हैं तकनीकी समझ की। तीसरी आपकी होती है सूचना का अनुपालन हो सकता है। कुछ किसान को मृदा कार्ड की सिफारिश के अनुसार कृषि तकनीकों को अपने अपनाने में दिक्कत हो सकती है, इसलिए होती है। खासकर अगर ये देखा है कि उन्होंने पारंपरिक तरीके से उन्होंने खेती करना को ही उन्होंने मान रखा है कि नहीं मुझे पारंपरिक तरीके से खेती करना है, उन्होंने किसान जो हमारा मृदा स्वास्थ्य कार्ड है उसको भी ले लिया है, बट वो चीज़ें बहुत रिजिड हो जाते हैं कि नहीं हम ऐसे करते हैं ऐसे ही करेंगे। हम जैसे जलवायु में इतना हमारा देख रहे हैं परिवर्तन हो रही है, जलवायु में परिवर्तन होता है, हमारी मिट्टी बदल रहा है, हमारा पानी बदल रहा है, हमारे में चेंजिंग आ रहा है, बहुत चीज़ों में चेंजिंग आ रही है, बदलाव हो रही है, जो सारे चीज़ जलवायु पर डिपेंडेंट है। तो हमें भी अब पारंपरिक तरीकों को अपनाते हुए कुछ नए तरीकों को भी अपनाना पड़ेगा। तो जहाँ पर जो लोग रिजिड हो जाते हैं कि नहीं हम ऐसे ही करते हैं हम ऐसे ही करेंगे, नहीं, जहाँ आपको जिससे फायदे हो रहे हैं ना, जहाँ आपकी फसल के उत्पादन उत्पादकता में वृद्धि हो रही है, तो आपको नई तकनीकों भी अपनाने में कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। तो ये जो हमारे बताते हैं सूचना का अनुपालन जरूर करना चाहिए, जो भी हमें जहाँ से सही चीज़ सीखने को मिल रही है उसको हमको सीखना है। यहाँ पर आपको फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी पड़ेगी, ये चीज़ें का हमें चुनौतियों का सामना करते हैं।
1: तो किसान भाइयों, अभी आप जान रहे थे मृदा कार्ड के बारे में और इसमें पूरी जानकारी आपने प्राप्त की कि किस प्रकार ये आपके लिए उपयोगी है और क्यों महत्वपूर्ण है और किन चुनौतियों का सामना भी आपको करना पड़ सकता है, ये सारी जानकारी आपको मिली। आशा करते हैं आज का ये वार्ता आपके लिए बिल्कुल लाभप्रद होगा। मिलेंगे आपसे अगले दिन इसी फ्रिक्वेंसी 90.8 MHz पर। नमस्कार।
2: उन्नत कृषि

तैयार है आम के अद्भुत संसार से रूबरू होने के लिए। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर लेकर आ रहा है राष्ट्रीय आम समागम 2026, जिसका आयोजन 27 से 28 जून तक किया जाएगा। आइए और देखिए देश भर की सैकड़ों आम किस्मों की आकर्षक प्रदर्शनी, जहां स्वाद, सुगंध और रंगों का अनूठा संगम आपका स्वागत करेगा। इस विशेष आयोजन की थीम है स्वाद, संस्कृति और समृद्धि का संगम। आम समागम में किसानों, वैज्ञानिकों, उद्यमियों और आम प्रेमियों को एक ही मंच पर आने का अवसर मिलेगा। कार्यक्रम के दौरान आयोजित होगी राष्ट्रीय कार्यशाला, जिसका विषय है आधुनिक तकनीक से गुणवत्ता युक्त उत्पादन, भंडारण एवं प्रसंस्करण। देश के प्रतिष्ठित विशेषज्ञ आम उत्पादन, मूल्य संवर्धन और प्रसंस्करण की आधुनिक तकनीकों पर अपने अनुभव साझा करेंगे। इस अवसर पर आयोजित होगा किसान वैज्ञानिक सम्मान समारोह, जिसमें बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश के उत्कृष्ट आम उत्पादकों को बेस्ट मैंगो फार्मर अवार्ड प्रदान किया जाएगा। महिला आम उत्पादकों एवं मूल्य संवर्धन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिला उद्यमियों के लिए भी विशेष सम्मान और नगद पुरस्कार की व्यवस्था की गई है। और अब आपके लिए एक सुनहरा अवसर, यदि आपके बाग में उत्कृष्ट गुणवत्ता के आम हैं या आपके पास किसी विशेष किस्म के आम उपलब्ध हैं, आप भी आम प्रदर्शनी में अपनी आम की किस्मों को प्रदर्शित कर सकते हैं। आपकी प्रविष्टियों का मूल्यांकन विशेषज्ञों द्वारा किया जाएगा और चयनित प्रतिभागियों को आकर्षक पुरस्कार एवं नगद राशि से सम्मानित किया जाएगा। और हाँ, आम प्रेमियों के लिए होगा एक विशेष आकर्षण, मैंगो ईटिंग प्रतियोगिता। इस रोमांचक प्रतियोगिता के विजेताओं को भी आकर्षक नगद पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। तो देर किस बात की, अपने श्रेष्ठ आमों के साथ आइए, प्रदर्शनी में भाग लीजिए, विशेषज्ञों से सीखिए, नई तकनीकों को जानिए और आकर्षक पुरस्कार जीतने का अवसर पाइए। 27 से 28 जून राष्ट्रीय आम समागम 2026 बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है।

0: फिर पिट गया। बिल देना। इसको आउटसाइड द ऑफ टाइम डालना चाहिए था, इसकी यही प्रॉब्लम है।
1: कब से?
0: जब से क्रिकेट खेल रहा है तभी से।
1: अरे भाई साहब, क्रिकेट की नहीं, हम आपकी खांसी की बात कर रहे हैं। बुड़बक
0: खांसी?
1: हाँ।
0: इसको तो एक आध महीना हो गया।
1: खुद की खांसी को एक आध महीने हो गए हैं और यहाँ क्रिकेट पर अपनी ही कुगली फेंक रहे हैं आप। चलिए चलिए चलिए।
0: डॉक्टर, खांसी तो है।
1: देखिए भाई साहब, इसे हल्का मत लीजिए। 2 हफ्ते से ज्यादा अगर आपको खांसी रहे तो टीबी हो सकता है।
0: टीबी?
1: हाँ। तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए।
0: ठीक है।
1: टीबी किसी को भी हो सकता है, अगर हो गया तो बिना भूले पूरा कोर्स करिए और फिट हो जाइए। नहीं किया तो इसका इलाज बहुत मुश्किल है, समझ गए भाई साहब आप? आइए। 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए। टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
2: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 ग्रीन एफएम। उन्नत कृषि 90.8 FM। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से 90.8 FM ग्रीन, और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, आपका बहुत बहुत बहुत स्वागत है किसान भाई बहनों को संबोधित हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम में हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने वाले हैं जो बिहार के युवाओं, विद्यार्थियों, शोधार्थियों, किसानों और उद्यमिता में रुचि रखने वाले हर व्यक्ति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हमारा आज का विषय है स्टार्टअप बिहार पॉलिसी, नए सपनों की उड़ान। दोस्तों, बिहार आज केवल रोजगार खोजने वाला राज्य नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा राज्य बनता जा रहा है जो रोजगार सृजित करता है, और खास तौर से जो युवा है वो इस ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो इसी सोच को साकार करने के लिए बिहार सरकार ने बिहार स्टार्टअप पॉलिसी 2022 लागू की है, और जिसका उद्देश्य है युवाओं को जॉब सीकर से जॉब क्रिएटर बनाना। तो इस महत्वपूर्ण विषय पर हमारे साथ आज चर्चा करने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर कृति। डॉक्टर कृति हैं कृषि प्रसार विभाग से, और साथ ही मैम हैं असिस्टेंट प्रोफेसर कम जूनियर साइंटिस्ट, और मैम स्टार्टअप जागरूकता के कार्यक्रमों से भी जुड़ी हुई हैं। तो मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
3: धन्यवाद उमा।
2: मैम, सबसे पहले तो आप हमें ये समझाइए कि बिहार स्टार्टअप पॉलिसी क्या है, इसके बारे में बताइए।
3: बिल्कुल, अगर हम बिहार स्टार्टअप पॉलिसी की बात करें तो बिहार स्टार्टअप पॉलिसी 2022 राज्य सरकार की एक दूरदर्शी पहल है, जिसका उद्देश्य बिहार में नवाचार, उद्यमता और स्टार्टअप संस्कृति को बढ़ावा देना है। इस नीति के माध्यम से युवाओं को वित्तीय सहायता, मार्गदर्शन, प्रशिक्षण और इंक्यूबेशन सुविधा एवं निवेशकों से जुड़ने का अवसर प्रदान किए जाते हैं, तथा इसके माध्यम से सरकार चाहती है कि बिहार का जो युवा है, युवा वर्ग है, वो केवल नौकरी की प्रतीक्षा ना करें बल्कि अपने विचारों को व्यवसाय में बदलकर दूसरों को भी रोजगार प्रदान करें, ताकि वो जॉब सीकर से जॉब क्रिएटर बन सके।
2: यस मैम। मैम, अगर हम स्टार्टअप को आसान भाषा में समझना चाहें तो आप इसे कैसे समझाएंगे?
3: अगर इसको सरल भाषा में कहें तो कोई ऐसा नया व्यवसाय जो किसी समस्या का नवीन समाधान प्रस्तुत करता हो वो स्टार्टअप कहलाता है। लेकिन यदि कोई युवा किसान के लिए मोबाइल, जैसे कि मैं बता रही हूँ कि जैसे कोई युवा किसान है जो या कोई यदि कोई युवा किसान के लिए मोबाइल ऐप विकसित करता है जो कि महिला स्थानीय उत्पादकों को ऑनलाइन बेचने में का प्लेटफॉर्म बनाती है, या कोई शोधार्थी नई कृषि तकनीक विकसित करता है, तो ये सभी स्टार्टअप की श्रेणी में आ सकते हैं। अगर ये उनके इस तकनीक से, जो नवीन तकनीक है, इनसे ना केवल वो जीविकोपार्जन, अपना इनकम बढ़ा सकते हैं, बल्कि इससे वो समाज को भी फायदा पहुंचा सकते हैं और कई और भी लोगों को वो जॉब दे सकते हैं।
2: मैम, बिहार स्टार्टअप पॉलिसी के बारे में जैसे आपने बताया, कुछ उद्देश्य अभी आपने बताए, लेकिन अगर हम विस्तार से इसके मुख्य उद्देश्य के बारे में समझना चाहें तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है?
3: इसका अगर प्रमुख उद्देश्य देखा जाए तो सबसे पहला तो उद्यमता को बढ़ावा देना होगा, उसके बाद युवाओं में नवाचार और व्यवसायिक सोच विकसित करना, इसका ये प्रमुख उद्देश्य अगर माना जाए तो सबसे पहले कि जो हमारे युवा वर्ग हैं उनके अंदर एक इनोवेशन, नवाचार और व्यवसायिक सोच जो होता है, जो उसको फाइनेंशियली कैसे कन्वर्ट कर सके, वो लोगों को कैसे उससे व्यवसाय के रूप में उसको डेवलप कर सके, ये प्रमुख हैं। इसके साथ साथ स्टार्टअप को वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाना भी है, साथ ही इनक्यूबेशन और को वर्किंग स्पेस उपलब्ध करवाना है, प्रशिक्षण और मेंटरशिप एवं विशेषज्ञों का मार्गदर्शन देना, इसके साथ ही साथ जितने भी सरकारी प्रक्रिया है उसको और भी सरल बनाना, और स्कूल और विश्वविद्यालय में उद्यमता शिक्षा को बढ़ावा देना। मैं हम आगे बात करेंगे कि इनक्यूबेशन और को वर्किंग स्पेस जो है ये सब क्या होता है,
2: लेकिन मैम अभी मन में ये सवाल आ रहा होगा कि क्या स्टार्टअप शुरू करने के लिए सरकार कोई सहायता देती है और कितनी सहायता देती है?
3: बिल्कुल, यह जो है इस नीति का सबसे आकर्षक पहलू माना जाता है जो कि वित्तीय सहायता है। तो अगर हम स्टार्टअप में वित्तीय सहायता की बात करें तो जो योग्य स्टार्टअप होते हैं, जो एलिजिबल स्टार्टअप होते हैं, उनको सरकार 10 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त सीड फंड प्रदान करती है। यह राशि स्टार्टअप के विकास, प्रोटोटाइप निर्माण, मार्केटिंग, उत्पाद विकास एवं प्रारंभिक संचालन के लिए उपयोग की जा सकती है। इस राशि पर कोई ब्याज नहीं लगता तथा पुनर्भुगतान के लिए लगभग 10 वर्ष तक का समय सीमा दिया जाता है।
2: हम सीड फंड, जैसे कि आपने बताया, बहुत सारे लोग इसे बैंक लोन समझ लेते हैं, क्या ये एक ही है या इसमें कोई अंतर है?
3: बिल्कुल, आपने सही पूछा। इसमें कई लोग कंफ्यूज रहते हैं कि सीड फंड और बैंक लोन में क्या अंतर होता है। जैसे कि अभी हमने बोला कि 10 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त सीड फंड प्रदान करती है, मैंने बैंक लोन नहीं बोला। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर हम बैंक लोन की बात करें तो बैंक लोन में ब्याज देना पड़ता है, नियमित ईएमआई चुकानी होती है, और कई बार तो हमारी हमें गारंटी भी देनी पड़ती है। लेकिन अगर हम बिहार स्टार्टअप पॉलिसी के अंतर्गत मिलने वाला सीड फंड, ब्याज मुक्त एक फंड होता है, इसकी बात करें तो इसका उद्देश्य जो होता है वो स्टार्टअप को प्रारंभिक सहयोग देना होता है। यह समान बैंक ऋण से अधिक उद्यमी अनुकूल व्यवस्था है।
2: और इसमें क्या महिलाओं को और जो सामाजिक रूप से वंचित वर्ग हैं उनके लिए कोई विशेष सुविधा है?
3: बिल्कुल, महिला उद्यमों को तो बिल्कुल अतिरिक्त प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है तथा उनको प्रशिक्षण एवं मेंटरशिप में भी विशेष सहायता दी जाती है। और इसी प्रकार से जैसे एसटीएससी उद्यमी जो होते हैं उनके लिए भी अतिरिक्त लाभ, विशेष सहायता तथा स्टार्टअप फंड में आरक्षित प्रावधान भी रखे गए हैं जिससे अधिक से अधिक युवाओं को अवसर मिल सके।
2: मैम, अगर कोई युवा स्टार्टअप शुरू करना चाहता है तो उसे सबसे पहले क्या करना चाहिए, अगर आप प्रोसेस इसका पूरा बता दे तो?
3: बिल्कुल, मैं इसे एक चरणबद्ध तरीके से समझाना चाहूंगी। इसका सबसे पहला चरण जो है वो समस्या की पहचान यानी प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन है। सबसे पहले तो हम ये तय करें कि हम जो समस्या का समाधान करना चाहते हैं, जैसे कि किस समस्या का समाधान करना चाहते हैं, जैसे किसानों की फसल का रोग पहचान, खाद्य प्रसंस्करण, जैविक उत्पादन विपणन, ग्रामीण ई कॉमर्स या कृषि मशीनरी साझा सेवा, इस टाइप के जो भी समस्याएं हैं हमारे समाज के रूप में, पहले हम उसको आइडेंटिफाई करें। अगर हम दूसरे, ये तो पहला चरण हो गया, इसके बाद हम दूसरे चरण की तरफ बढ़ेंगे जहां हम बिजनेस आइडिया तैयार करें। तो इसके लिए कुछ प्रश्नों के उत्तर तैयार करें, जैसे समस्या क्या है, उसका समाधान क्या हो सकता है, इसमें नया क्या होगा, और इसके जो ग्राहक होंगे, सबसे पहले जो मार्केटिंग, जो हमारे कंज्यूमर होंगे, उनके बारे में हम सोचेंगे, और आय का स्रोत क्या होगा, हम जो बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो हमें उसमें कहाँ से फंडिंग आएगा, और कितना पैसा जो हमारे जो कंज्यूमर होंगे उनसे किस रूप में हमें आय मिल पाएगा। तो ये हो गया दूसरा चरण। अब हम आगे बढ़ते हुए तीसरे चरण पे जाएंगे जिसमें हम बिजनेस प्लान बनाएंगे। तो ये एक मजबूत, इसमें एक हम बहुत मजबूत बिजनेस प्लान तैयार कर सकते हैं जिसमें कि जैसे उद्देश्य होना चाहिए, हमारा उत्पाद होगा या सेवा होगा, प्रोडक्ट होगा या सर्विस होगा, इस पे भी हम सोचेंगे। फिर हमारे संभावित ग्राहक कौन होंगे, है ना, फिर हम बाजार को भी देखेंगे कि हमारा जो बाजार है वो लोकल मार्केट है, कितनी दूरी पे है, और इसके लिए जो हमारे जो स्टार्टअप जो स्टार्ट करेंगे उसके लिए वित्तीय सहायता कहाँ कहाँ से हमें मिल सकता है, और इस इससे रिलेटेड राजस्व मॉडल क्या हो सकता है। तो ये हो गई हमारे पहले चरण, दूसरे चरण और तीसरे चरण। इसके आगे है चौथा चरण जिसमें हम आवश्यक दस्तावेज तैयार करेंगे। तो अगर हम समानता देखा जाए तो दस्तावेज जैसे कि आधार कार्ड हो गया, बिजनेस प्लान हो गया, पिच डेक हो गया जैसे कि पीपीटी, पीडीएफ, ये सब हम कहीं प्रेजेंट करते हैं तो हमें पावर पॉइंट के रूप में उन दिखाना पड़ता है, और फिर DPIIT मान्यता जो होता है इसमें हमें एक लेना पड़ता है उपलब्ध अगर है हमारे पास, तो ये भी दस्तावेज हम अपने साथ रख सकते हैं। तो समस्या की पहचान करते हुए, बिजनेस आइडिया तैयार करते हुए, बिजनेस प्लान बनाते हुए और अपने पास आवश्यक दस्तावेज को संग्रहित करने के बाद हम पांचवें चरण पे जाएंगे जो कि है स्टार्टअप बिहार पोर्टल पे आवेदन करना। तो आवेदक को स्टार्टअप बिहार पोर्टल पर पंजीकरण करना होता है और वहां उनको अपनी प्रोफाइल बनानी होती है, उसके बाद अपने सारे दस्तावेज अपलोड करने होते हैं और अपना बिजनेस आइडिया प्रस्तुत करना होता है। अब एक बार जब उन्होंने स्टार्टअप बिहार पोर्टल पर आवेदन कर दिया, ये पांचवा चरण है, और इसके बाद हम छठे चरण की तरफ जाएंगे जब जहां पे मूल्यांकन और प्रस्तुतिकरण होता है। तो इसमें जो विशेषज्ञ समिति है जो स्टार्टअप बिहार के, उनके द्वारा हम जो हमारे युवा वर्ग हैं जिन्होंने अप्लाई किया है उनका, उनके विचार का मूल्यांकन होता है। तो वो देखते हैं, अब वो क्या क्या देखेंगे कि जो आइडिया आपने दिया है उसमें नवाचार है या नहीं है, इनोवेशन है या नहीं है, नयापन है या नहीं है। तो उसके बाद सबसे पहला जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ही है नवाचार, न्यूनेस। उसके बाद उसमें व्यवहार्यता है या नहीं है, बाजार जो है उसका संभावना है या नहीं है, उसके बाद रोजगार सृजन की क्षमता है कि नहीं है, कि हम खुद ही नहीं हम औरों को भी रोजगार इससे दे सकते हैं कि नहीं है, फिर इससे सोशल इम्पैक्ट क्या होगा, सामाजिक प्रभाव क्या हो सकता है। तो ये सब जो है कुछ पॉइंट हैं जिसके आधार पे मूल्यांकन करती है जो विशेषज्ञ समिति है स्टार्टअप बिहार के। मूल्यांकन और प्रस्तुतिकरण के बाद सातवें चरण पे हम पहुंचेंगे जहां पे हम इंक्यूबेशन और मेंटरशिप की बात करते हैं। इन सब को देखते हुए जो हमने छठे चरण की बात की, जो जहां पे हमारा मूल्यांकन हुआ, प्रस्तुतिकरण हुआ, उसमें से अब जो आइडिया है उसमें स्वीकृत हो गया, मान लीजिए आपका आइडिया सेलेक्ट हो गया, तो सेलेक्ट होने के बाद जितने भी सेलेक्टेड स्टार्टअप होते हैं उनको इंक्यूबेशन सेंटर अलॉट किए जाते हैं। तो उसमें स्वीकृति मिलने के बाद जैसे स्टार्टअप को मेंटरशिप सेशन, मतलब उनको समय समय पे आपको गाइडेंस मिलता है, उनको जो सहायता की जरूरत होती है, कार्यालय सुविधा अगर उनको चाहिए तो वो भी दिया जाता है, प्रशिक्षण दिया जाता है, उनकी नेटवर्किंग कैसे बढ़ाई जाए इसके रूप में भी उनको सहायता की जाती है, और उनको हेल्प किया जाता है, मदद किया जाता है कि वो निवेशकों से कैसे संपर्क में आए। जैसे बहुत बड़े बड़े बड़े मेगा फेस्ट होते हैं जहां पे ऐसे स्टार्टअप्स को इनवाइट किया जाता है ताकि वो दूसरे से मिल सके, उनको एंजल इन्वेस्टर मिल सके जो उनके आइडिया को में इन्वेस्ट करना पसंद कर सके। तो ऐसे प्लेटफॉर्म भी उनको प्रोवाइड करवाए जाते हैं, ऐसी सुविधाएं प्रदान की जाती। उसके बाद सबसे जो लास्ट है वो है सीड फंड हेतु आवेदन। जब विचार व्यवहारिक साबित हो जाता है तब स्टार्टअप सीड फंड के लिए आवेदन कर सकता है, और जो यह राशि जो है वो चरणबद्ध तरीके से उपलब्ध कराई जाती है और इसके उपयोग की निगरानी भी की जाती है। ऐसा नहीं कि आपको पैसे दे दिए गए और फिर उसका कोई हिसाब नहीं रखा जाता है, आपको ये पैसे, ये सीड फंड जो होता है ये दिया तो जाता है पर इसकी निगरानी भी रखी जाती है। तो इस तरह आठ चरण में जो है स्टार्टअप पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी की जा सकती है।
2: मैम आपने आठों चरणों को बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया, लेकिन अब ये सवाल है कि क्या हर स्टार्टअप जो कोई शुरू करना चाहता है वो इसी प्रक्रिया से आगे बढ़ेगा, एक जैसे प्रक्रिया से आगे बढ़ेगा?
3: समानता जो होते हैं कोई भी स्टार्टअप वो छह चरण से गुजरते हैं, यानी कि सबसे पहला अगर हम बात करें एक सफल कंपनी बनाने का जो पूरा सफर तय किया जाता है उसको हम छह स्टेज के रूप में देख सकते हैं। सबसे पहला जो स्टेज होता है उसको हम कहते हैं आइडिएशन स्टेज, और आइडिएशन स्टेज में हम क्या करते हैं तो हम अपने नए विचारों को जन्म देते हैं, हमारे माइंड में, हमारे जो मस्तिष्क में नए नए विचार आते हैं, जो नवाचार आते हैं उसका जन्म होता है। सो विचारों का जन्म होना आइडिएशन स्टेज कहलाता है। दूसरी जो स्टेज है, दूसरा स्टेज, उसको हम वैलिडेशन या प्रोटोटाइप स्टेज कहते हैं। तो ये वैलिडेशन या प्रोटोटाइप स्टेज का मतलब होता है प्रारंभिक मॉडल विकसित करना, जो दिमाग में आपका आइडिया आपने उसको मॉडल के रूप में विकसित किया। तीसरा स्टेज की जब बात कर ले तो इसको हम कहते हैं अर्ली ट्रैक्शन स्टेज। अर्ली ट्रैक्शन स्टेज में क्या करते हैं हम, प्रारंभिक ग्राहक प्राप्त होना इसमें हम ट्रैक करते हैं, अर्ली ट्रैक्शन स्टेज कहते हैं। इसके बाद ग्रोथ स्टेज आता है जिसमें हम अपने व्यवसाय को विस्तार करते हैं, एक्सटेंड करते हैं। ग्रोथ स्टेज के बाद नेक्स्ट स्टेज जो आता है वो होता है स्केलिंग स्टेज। इसमें हम अपने जो व्यवसाय है उसको राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार करेंगे, तो इसको स्केलिंग स्टेज कहते हैं। और सबसे लास्ट स्टेज जो होता है एक अगर हम स्टार्टअप की बात करें तो उसमें होता है मैच्योर स्टार्टअप स्टेज, मतलब अब आपका जो स्टार्टअप है वो मैच्योर हो चुका है। इसमें इसका मतलब है कि अब आपका स्टार्टअप स्थापित हो चुका है और एक सफल कंपनी के रूप में उभर चुका है। तो ये समानता छह स्टेज होते हैं, छह चरण होते हैं किसी भी स्टार्टअप के।
2: यस मैम, मैम जब हम बिहार की बात करते हैं तो हम सभी जानते हैं कि बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है, तो ऐसे में क्या कृषि के क्षेत्र में भी स्टार्टअप की कोई संभावनाएं हैं?
3: बिल्कुल, ये अगर हम कहें तो सबसे ज्यादा जो संभावनाएं हैं, आप जितने भी स्टार्टअप देखेंगे मैक्सिमम सबसे ज्यादा जो की जाती है ना वो एग्रीकल्चर के ही क्षेत्र में की जाती है, क्योंकि इसमें बहुत मतलब व्यापक संभावनाएं हैं, अत्यंत व्यापक। अगर इसकी बात करें तो जैसे कि एग्रीटेक हो गया, ड्रोन की सेवाएं हो गई, मिट्टी परीक्षण की बात करते हैं, सॉइल टेस्टिंग, फसल रोग पहचान करने की, और खाद्य प्रसंस्करण, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी जो कहते हैं, मतलब फूड टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, उसमें हम ये बहुत ही उभरता हुआ एक व्यापक संभावनाएं लिए हुए एक विषय है। इसके बाद जैसे जैविक खेती हो गई, ई मार्केटिंग हो गई, डेयरी और पशुपालन हो गया, FPO आजकल जो होता है संगठन के रूप में विकास होना, इस पे मुख्य बल सरकार भी दे रही है, तो FPO का हो गया। ऐसे क्षेत्रों में हजारों अवसर उपलब्ध हैं कृषि के क्षेत्र में।
2: और मैम बिहार कृषि विश्वविद्यालय जैसे संस्थाओं का इसमें कुछ अहम इनकी भूमिका होती है?
3: बिल्कुल, अगर हम बिहार कृषि विश्वविद्यालय की बात करें उमा, तो बिहार कृषि विश्वविद्यालय जो हमारा है वो बिहार राज्य का एकमात्र इकलौता कृषि विश्वविद्यालय है। तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि हमारा जो कृषि विश्वविद्यालय है इसका कोई भूमिका ना हो, और इसकी बहुत ही अहम भूमिका है। तो युवाओं को ये जानना जरूरी है कि जो हमारी बिहार कृषि विश्वविद्यालय है ये बिहार सरकार के उद्योग विभाग के अंतर्गत हमारे यहाँ स्टार्टअप सेल भी हैं और इंक्यूबेशन सेंटर भी हैं, जो कि राज्य के सर्वश्रेष्ठ केंद्रों में से शीर्ष स्थान पर आते हैं। तो अगर हम BAU की बात करें तो ये एक स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। जो हमारा स्टार्टअप सेल है, इंक्यूबेशन सेंटर है, ये युवाओं को बहुत ही मदद करता है, जैसे कि वैज्ञानिक प्रमाणीकरण में, अनुसंधान सहायता में, प्रोटोटाइप परीक्षण में, किसान परीक्षण में, मेंटरशिप में, और इंक्यूबेशन जैसी सुविधाएं, जैसा कि मैंने पहले भी बताया इंक्यूबेशन में हम मेंटरशिप सेशन देते हैं उनको समय समय पर, उनको कहाँ से फंड उपलब्ध, इवन हम जैसे स्टार्टअप सेल है तो उनको जब स्टार्टअप बिहार पॉलिसी के लिए अप्लाई करना होता है तो हम उसमें भी उनको मदद करते हैं। और जैसा मैंने बताया कि जो हमारे जो ये दोनों सेंटर हैं ये बिहार सरकार के उद्योग विभाग के अंतर्गत आते हैं, तो हमें वहां से ही जो जो सेलेक्टेड स्टार्टअप्स होते हैं उनको अटैच किया जाता है। तो हमारे कई सारे स्टार्टअप्स जो हैं बिहार सरकार के द्वारा यहाँ पे अटैच्ड हैं, जो कि बहुत ही अच्छा ग्रो कर रहे हैं ऑलरेडी। तो अगर BAU की भूमिका की बात है तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण अंग प्रदेश, इस अंग की धरती पर और इस इधर के क्षेत्रों के लिए इसकी जो भूमिका है वो बहुत ही अहम है। और स्टार्टअप में रोजगार देने में इसमें ना सिर्फ केवल सिर्फ स्टार्टअप सेल और इंक्यूबेशन सेंटर पर की अगर बात करें तो नेशनल लेवल पे भी यहाँ पे सब एग्री है जो कि फंडिंग करती है, और जो जो भी उद्यमिता की ओर बढ़ना चाहते हैं ऐसे युवाओं को हम बहुत ही आगे बढ़ने में मदद करते हैं।
2: जी मैम, मैम अगर आप कार्यक्रम के अंत में युवाओं को कुछ संदेश देना चाहेंगे तो क्या आप संदेश देंगी?
3: मैं बिहार के सभी युवाओं से यही कहना चाहूंगी कि आज अवसरों की कोई कमी नहीं है, अगर आपके पास कोई नया विचार है, कोई नई समस्या जो है हमारे पास उसका समाधान है, या समाज में बदलाव लाने की इच्छा है, प्रबल इच्छा है, तो उसे केवल सपना बनाकर ना रखें। स्टार्टअप बिहार पॉलिसी जो है वो आपके सपनों को उड़ान देने के लिए तैयार है। आवश्यकता है तो केवल आत्मविश्वास का, नवाचार का और निरंतर प्रयास का। तो मैं इन लोगों से, जो हमारे युवा वर्ग हैं, उनसे यही मैं कहना चाहूंगी कि याद रखिए, एक अच्छा विचार केवल आपके जीवन को ही नहीं बदल सकता, बल्कि पूरे समाज को नई दिशा दे सकता है।
2: जी मैम, आपने बहुत अच्छी बात कही मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
3: धन्यवाद उमा।
2: दोस्तों, जैसे कि मैम ने कहा कि अगर आपके पास कोई नया विचार है और उसमें समाज को भी बदलने की, एक नई दिशा देने की क्षमता है, तो आप बिल्कुल अपने विचार को आगे बढ़ाइए, और इसमें आपका पूरा पूरा साथ देता है स्टार्टअप बिहार पॉलिसी, आपके सपनों को उड़ान देता है। दोस्तों, इन्हीं कुछ बातों के साथ हमें दीजिए अभी इजाजत। आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहिए। नमस्कार।
4: उन्नत कृषि।

तैयार है आम के अद्भुत संसार से रूबरू होने के लिए। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर लेकर आ रहा है राष्ट्रीय आम समागम 2026, जिसका आयोजन 27 से 28 जून तक किया जाएगा। आइए और देखिए देश भर की सैकड़ों आम किस्मों की आकर्षक प्रदर्शनी, जहां स्वाद, सुगंध और रंगों का अनूठा संगम आपका स्वागत करेगा। इस विशेष आयोजन की थीम है स्वाद, संस्कृति और समृद्धि का संगम। आम समागम में किसानों, वैज्ञानिकों, उद्यमियों और आम प्रेमियों को एक ही मंच पर आने का अवसर मिलेगा। कार्यक्रम के दौरान आयोजित होगी राष्ट्रीय कार्यशाला, जिसका विषय है आधुनिक तकनीक से गुणवत्ता युक्त उत्पादन, भंडारण एवं प्रसंस्करण। देश के प्रतिष्ठित विशेषज्ञ आम उत्पादन, मूल्य संवर्धन और प्रसंस्करण की आधुनिक तकनीकों पर अपने अनुभव साझा करेंगे। इस अवसर पर आयोजित होगा किसान वैज्ञानिक सम्मान समारोह, जिसमें बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश के उत्कृष्ट आम उत्पादकों को बेस्ट मैंगो फार्मर अवार्ड प्रदान किया जाएगा। महिला आम उत्पादकों एवं मूल्य संवर्धन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिला उद्यमियों के लिए भी विशेष सम्मान और नगद पुरस्कार की व्यवस्था की गई है। और अब आपके लिए एक सुनहरा अवसर, यदि आपके बाग में उत्कृष्ट गुणवत्ता के आम हैं या आपके पास किसी विशेष किस्म के आम उपलब्ध हैं, तो आप भी आम प्रदर्शनी में अपनी आम की किस्मों को प्रदर्शित कर सकते हैं। आपकी प्रविष्टियों का मूल्यांकन विशेषज्ञों द्वारा किया जाएगा और चयनित प्रतिभागियों को आकर्षक पुरस्कार एवं नगद राशि से सम्मानित किया जाएगा। और हाँ, आम प्रेमियों के लिए होगा एक विशेष आकर्षण, मैंगो ईटिंग प्रतियोगिता। इस रोमांचक प्रतियोगिता के विजेताओं को भी आकर्षक नगद पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। तो देर किस बात की, अपने श्रेष्ठ आमों के साथ आइए, प्रदर्शनी में भाग लीजिए, विशेषज्ञों से सीखिए, नई तकनीकों को जानिए और आकर्षक पुरस्कार जीतने का अवसर पाइए। 27 से 28 जून राष्ट्रीय आम समागम 2026 बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है।

0: टीनू, मीनू, राजू, पिन्नी
1: और तुम्हारे वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
0: 11 दोस्त?
1: टीकू, वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
0: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
1: मगर टीकू, कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
0: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं, या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
0: टीकी, तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा, सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है, तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। UN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
0: याद रखो, आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।
2: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
3: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
2: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
3: आपकी सेहत की बातें,
2: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
3: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
2: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
3: वो कहाँ पर?
2: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
3: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
2: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 24 से 28 जून के दौरान भागलपुर, बांका, मुंगेर, जमुई, इन जिलों में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ हल्की वर्षा होने की संभावना है। दक्षिण बिहार के अन्य जिलों में 24 से 25 जून के दौरान लू चलने की संभावना है। इसके बाद इन जिलों के एक दो स्थानों पर बादल गरजने के साथ हल्की वर्षा की संभावना है। अधिकतम तापमान 37 से 39 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 26 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 60 से 70 प्रतिशत और दोपहर में 25 से 30 प्रतिशत रहने की संभावना है। अनुमान है कि 24 से 28 जून के दौरान 5 से 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दक्षिण पूर्वी हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए, जो किसान भाई बहन धान की खेती करना चाहते हैं, उन्हें बता दे, वर्तमान में मानसून की कमजोर स्थिति को देखते हुए किसान भाई बहनों को ये सलाह दी जाती है कि ऊंची भूमि में धान की खेती ना करें। जिन किसानों के पास सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है, वे मध्यम अवधि वाले धान की किस्मों का बिचड़ा गिराएं और बीज स्थली में नमी बनाए रखें, इस बात का विशेष ध्यान रखें। बीज स्थली यानी कि नर्सरी में नमी बनाए रखने के लिए जरूरत के हिसाब से जीवन रक्षक सिंचाई जरूर करें, और खास तौर से ऊंची भूमि में धान के स्थान पर वैकल्पिक फसलों की खेती पर विचार करना अधिक उपयुक्त होगा। जो मक्का की खेती करना चाहते हैं, उन्हें बता दे, खरीफ मक्का की बुआई तभी करें जब आसमान साफ हो और खेत की जुताई में 10 से 15 टन गोबर की सड़ी खाद प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें, और ध्यान दें कि बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 30 किलोग्राम नेत्रजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटाश डालना जरूरी होता है। किसान भाई बहनों, आपको बता दें, अनुशंसित मक्का की किस्में हैं सुवान, देवकी, शक्तिमान 1, शक्तिमान 2, राजेंद्र शंकर, मक्का 3, गंगा 11। जो मूंग की खेती करते हैं, उन्हें बता दे, मूंग की तैयार फलियों की तुड़ाई कर ले और हरी खाद के लिए उसके पौधों को मिट्टी पलटने वाले हल से जमीन में गाड़ दे। यह आपके खेत और आपके खेत की मिट्टी के लिए फायदेमंद होता है। जिनके खेत में सब्जियां लगी हैं, उन्हें बता दे, भिंडी, कद्दू, खीरा, नेनुआ और लौकी की फसलों में निराई गुड़ाई जरूर करें, साथ ही खरपतवार नियंत्रित करना भी जरूरी होता है। आपको बता दें कि पत्ती खाने वाली सुंडियों और फल छेदक कीटों की नियमित निगरानी करते रहें, और अगर इन कीटों का प्रकोप दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में डाइमेथोएट 30 इसी दवा की 1 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान दें, किसी भी प्रकार का छिड़काव तभी करें जब आसमान साफ हो। किसान भाई बहन आपको बता दे कि खरीफ प्याज की खेती के लिए नर्सरी यानी कि बीज स्थली की तैयारी तभी करें जब आसमान साफ हो और स्वस्थ पौधे के लिए नर्सरी में गोबर की खाद जरूर डालें। अच्छे और स्वस्थ फसल के लिए प्याज की बीज की व्यवस्था प्रमाणित स्रोत से ही करें और बीज गिराने के पहले बीजोपचार करना बहुत जरूरी होता है। बीजोपचार करने से पौधे स्वस्थ और फसल अच्छी होती है। खरीफ प्याज के लिए बीज की दर 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दे लीची की फल तोड़ाई के बाद बगीचों में आवश्यक छटाई जरूर कर ले जिससे पेड़ों के भीतर पर्याप्त धूप और हवा का संचार हो सके। साथ ही आपको बता दे कि बगीचे में गिरे हुए पत्तों सूखी शाखाओं और अन्य पौध अवशेषों को इकट्ठा कर हटा दे इससे कीट और रोगों का प्रकोप कम होता है और पेड़ों की स्वस्थ वृद्धि और विकास को बढ़ावा मिलता है। तो ध्यान दे कि बगीचे में गिरे हुए पत्तों सूखी शाखाओं और ऐसी कोई भी अन्य जो पेड़ के अवशेष हो उन्हें इकट्ठा करके हटा दे। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दे दुधारू पशुओं को गर्मी के प्रभाव से बचाने के लिए छायादार और हवादार स्थानों में रखें और उन्हें पर्याप्त मात्रा में साफ और ताजा पीने का पानी उपलब्ध कराएं। पशुपालक भाई बहन ध्यान दे गला घोटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए टीकाकरण कराना बहुत जरूरी होता है, इसलिए सभी दुधारू पशुओं में टीकाकरण जरूर कराएं। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

आप हर समय थकान महसूस करते हैं, छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है, ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है, बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर आप सबका स्वागत करता है स्वाद संस्कृति और समृद्धि के संगम राष्ट्रीय आम समागम सह कार्यशाला में। तारीख याद रखें 27 से 28 जून 2026।

क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खान पान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।

0: है।
1: क्या आप तैयार हैं आम के अद्भुत संसार से रूबरू होने के लिए? बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर लेकर आ रहा है राष्ट्रीय आम समागम 2026, जिसका आयोजन 27 से 28 जून तक किया जाएगा। आइए और देखिए देश भर की सैकड़ों आम किस्मों की आकर्षक प्रदर्शनी, जहां स्वाद, सुगंध और रंगों का अनूठा संगम आपका स्वागत करेगा। इस विशेष आयोजन की थीम है स्वाद, संस्कृति और समृद्धि का संगम। आम समागम में किसानों, वैज्ञानिकों, उद्यमियों और आम प्रेमियों को एक ही मंच पर आने का अवसर मिलेगा। कार्यक्रम के दौरान आयोजित होगी राष्ट्रीय कार्यशाला, जिसका विषय है आधुनिक तकनीक से गुणवत्ता युक्त उत्पादन, भंडारण एवं प्रसंस्करण। देश के प्रतिष्ठित विशेषज्ञ आम उत्पादन, मूल्य संवर्धन और प्रसंस्करण की आधुनिक तकनीकों पर अपने अनुभव साझा करेंगे। इस अवसर पर आयोजित होगा किसान वैज्ञानिक सम्मान समारोह, जिसमें बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश के उत्कृष्ट आम उत्पादकों को बेस्ट मैंगो फार्मर अवार्ड प्रदान किया जाएगा। महिला आम उत्पादकों एवं मूल्य संवर्धन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिला उद्यमियों के लिए भी विशेष सम्मान और नगद पुरस्कार की व्यवस्था की गई है। और अब आपके लिए एक सुनहरा अवसर, यदि आपके बाग में उत्कृष्ट गुणवत्ता के आम हैं या आपके पास किसी विशेष किस्म के आम उपलब्ध हैं, आप भी आम प्रदर्शनी में अपनी आम की किस्मों को प्रदर्शित कर सकते हैं। आपकी प्रविष्टियों का मूल्यांकन विशेषज्ञों द्वारा किया जाएगा और चयनित प्रतिभागियों को आकर्षक पुरस्कार एवं नगद राशि से सम्मानित किया जाएगा। और हाँ, आम प्रेमियों के लिए होगा एक विशेष आकर्षण, मैंगो ईटिंग प्रतियोगिता। इस रोमांचक प्रतियोगिता के विजेताओं को भी आकर्षक नगद पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। तो देर किस बात की, अपने श्रेष्ठ आमों के साथ आइए, प्रदर्शनी में भाग लीजिए, विशेषज्ञों से सीखिए, नई तकनीकों को जानिए और आकर्षक पुरस्कार जीतने का अवसर पाइए। 27 से 28 जून राष्ट्रीय आम समागम 2026 बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है।

0: पक्षियों को उड़ता देख साथ मुझे आई एक भूली कहानी याद।
1: कौन सी कहानी टीकी?
0: उस जालिम शिकारी की जो आया था करने पक्षियों का शिकार।
2: हमें भी वो कहानी बताओ ना।
0: एक था शिकारी जिसने चिड़ियों का शिकार करने को चुपके से बिछाया जाल, लेकिन जाल को सब चिड़िया फुर्र से ले उड़ी साथ।
2: माथा पीटता रह गया शिकारी, एक भी चिड़िया लगी ना हाथ।
0: तो दोस्तों, बीमारी का राक्षस भी बिछाए बैठा है एक जाल। अगर बच्चों का टीकाकरण छूटा तो कर देगा सबको बीमारी से बेहाल।
1: तो इस राक्षस से कैसे बचना है?
2: तो 5 साल या उनसे छोटे बच्चों के मम्मी पापा, सभी सुनो एक जरूरी बात। अगर सभी बच्चों का होगा टीकाकरण एक साथ, तो बीमारी के राक्षस का भी हो जाएगा खात्मा उसके साथ।
0: टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
3: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
4: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 ग्रीन FM।

बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 24 से 28 जून के दौरान भागलपुर, बांका, मुंगेर, जमुई इन जिलों में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ हल्की वर्षा होने की संभावना है। दक्षिण बिहार के अन्य जिलों में 24 से 25 जून के दौरान लू चलने की संभावना है। इसके बाद इन जिलों के एक दो स्थानों पर बादल गरजने के साथ हल्की वर्षा की संभावना है। अधिकतम तापमान 37 से 39 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 26 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 60 से 70 प्रतिशत और दोपहर में 25 से 30 प्रतिशत रहने की संभावना है। अनुमान है कि 24 से 28 जून के दौरान 5 से 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दक्षिण पूर्वी हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए, जो किसान भाई बहन धान की खेती करना चाहते हैं उन्हें बता दे, वर्तमान में मानसून की कमजोर स्थिति को देखते हुए किसान भाई बहनों को ये सलाह दी जाती है कि ऊंची भूमि में धान की खेती ना करें। जिन किसानों के पास सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है वे मध्यम अवधि वाले धान की किस्मों का बिचड़ा गिराएं और बीज स्थली में नमी बनाए रखें, इस बात का विशेष ध्यान रखें।

मान देव की शक्तिमान एक शक्तिमान दो राजेंद्र शंकर मक्का तीन गंगा ग्यारह। जो मूंग की खेती करते हैं उन्हें बता दे मूंग की तैयार फलियों की तुड़ाई कर ले और हरी खाद के लिए उसके पौधों को मिट्टी पलटने वाले हल से जमीन में गाड़ दे। यह आपके खेत और आपके खेत की मिट्टी के लिए फायदेमंद होता है। जिनके खेत में सब्जियां लगी हैं उन्हें बता दे भिंडी कद्दू खीरा नेनुआ और लौकी की फसलों में निराई गुड़ाई जरूर करे, साथ ही खरपतवार नियंत्रित करना भी जरूरी होता है। आपको बता दे कि पत्ती खाने वाली सुंडियों और फल छेदक कीटों की नियमित निगरानी करते रहें और अगर इन कीटों का प्रकोप दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में डाइमेथोएट 30 इसी दवा की 1 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान दे किसी भी प्रकार का छिड़काव तभी करें जब आसमान साफ हो। किसान भाई बहन आपको बता दे कि खरीफ प्याज की खेती के लिए नर्सरी यानी कि बीज स्थली की तैयारी तभी करें जब आसमान साफ हो और स्वस्थ पौध के लिए नर्सरी में गोबर की खाद जरूर डालें। अच्छे और स्वस्थ फसल के लिए प्याज की बीज की व्यवस्था प्रमाणित स्रोत से ही करें और बीज गिराने के पहले बीजोपचार करना बहुत जरूरी होता है। बीजोपचार करने से पौधे स्वस्थ और फसल अच्छी होती है। खरीफ प्याज के लिए बीज की दर 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दे लीची की फल तुड़ाई के बाद बगीचों में आवश्यक छटाई जरूर कर ले जिससे पेड़ों के भीतर पर्याप्त धूप और हवा का संचार हो सके। साथ ही आपको बता दे कि बगीचे में गिरे हुए पत्तों सूखी शाखाओं और अन्य पौध अवशेषों को इकट्ठा कर हटा दे, इससे कीट और रोगों का प्रकोप कम होता है और पेड़ों की स्वस्थ वृद्धि और विकास को बढ़ावा मिलता है। तो ध्यान दे कि बगीचे में गिरे हुए पत्तों सूखी शाखाओं और ऐसी कोई भी अन्य जो पेड़ के अवशेष हो उन्हें इकट्ठा करके हटा दे। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दे दुधारू पशुओं को गर्मी के प्रभाव से बचाने के लिए छायादार और हवादार स्थानों में रखें और उन्हें पर्याप्त मात्रा में साफ और ताजा पीने का पानी उपलब्ध कराएं। पशुपालक भाई बहन ध्यान दे गला घोटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए टीकाकरण कराना बहुत जरूरी होता है, इसलिए सभी दुधारू पशुओं में टीकाकरण जरूर कराएं। सूचना समाप्त हुई। ऐसे ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

आप हर समय थकान महसूस करते हैं, छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है, ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है, बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर आप सबका स्वागत करता है स्वाद संस्कृति और समृद्धि के संगम राष्ट्रीय आम समागम सह कार्यशाला में। तारीख याद रखें 27 से 28 जून 2026।

क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।

0: കൃഷി. बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन. मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा. दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है हम किसान भाई बहनों को संबोधित हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में. दोस्तों आज उन्नत कृषि में हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने वाले हैं जो केवल हमारी आमदनी ही नहीं बढ़ाता बल्कि आने वाली पीढ़ी की सेहत से जुड़ा है, यानी कि बहुत महत्वपूर्ण है. और आज हम बात करने वाले हैं पोषण सुरक्षा के बारे में. और इस बारे में बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर नेहा पांडे. मैम आप हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से, आप हैं कृषि प्रसार शिक्षा विभाग से, आप हैं सहायक प्राध्यापक. मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में.
1: नमस्कार उमा जी और मेरे सभी श्रोता किसान भाइयों को मेरा प्रणाम.
0: मैम हम अक्सर खेती में पैदावार की बात करते हैं लेकिन आज हम पोषण की बात करने वाले हैं. और मैम सबसे पहले मैं चाहूंगी कि आप हमारे किसान भाई बहनों को बताएं कि आखिर पोषण सुरक्षा क्या है और एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन जिसे कि हम कृषि प्रसार भी कहते हैं उसकी क्यों ज़रूरत है.
1: जी देखिए बहुत ही ज़रूरी सवाल है. आम तौर पर हमें लगता है कि अगर पेट भर गया है तो काम हो गया, लेकिन पोषण सुरक्षा का मतलब केवल पेट भरना नहीं बल्कि शरीर को वो सभी ज़रूरी तत्व देना है, जैसे कि प्रोटीन, विटामिन्स, खनिज पदार्थ जो बीमारियों से लड़ने की हमें ताकत देता है. धान और गेहूं जैसे इनसे तो ऊर्जा मिल जाती है लेकिन शरीर को दालों और जो सब्जियां हैं इनसे जो प्रोटीन और खनिज पदार्थ है वो भी चाहिए. बिहार में हमारी मिट्टी बहुत उपजाऊ है लेकिन अगर हम केवल दो ही फसल उगाएंगे तो हमारे भोजन की थाली में विविधता खत्म हो जाएगी. इसी को बदलने के लिए कृषि विस्तार यानी एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन की ज़रूरत है.
0: जी मैम, और मैं आपसे अब मैं जानना चाहूँगी और चाहूँगी कि आप थोड़ा और अच्छे से बताएं, विस्तार से बताएं कृषि विस्तार के बारे में और किसान भाई बहन इसे कैसे जोड़ सकते हैं.
1: जी कृषि विस्तार का मतलब है प्रयोगशाला से जानकारी को खेत तक पहुँचाना. हमारे कृषि समन्वयक और कृषि विज्ञान केंद्र हर जिले में हैं. वे किसानों को बताते हैं कि कौन सी नई बीज की किस्में आई हैं, कहाँ बाढ़ ग्रसित क्षेत्र है और कहाँ सुखाड़ क्षेत्र है, इन क्षेत्रों के लिए कौन सी बीज विकसित हुई है और जो भी ज़्यादा पोषक तत्व वाले किस्में हैं वो कहाँ कहाँ लगाएं और कहाँ पर ये अच्छी उपज देगी.
0: मैम एक और बात कि किसान भाई बहन पोषण सुरक्षा में और क्या क्या कर सकते हैं.
1: पोषण सुरक्षा के मुख्यतः तीन मुख्य मंत्र हैं. पहला फसल विविधीकरण, जिसमें कि न केवल धान गेहूँ बल्कि दालें, तिलहन और मोटे अनाज उगाए जा सकते हैं जैसे कि मक्का, बाजरा, मड़ुआ. और दूसरा मुख्य मंत्र है पोषण वाटिका, जिसे हम किचन गार्डन भी आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं, जिसे हम घर के पीछे अपनी जो खाली ज़मीन है उस पर सहजन, पालक, टमाटर और फलदार पेड़ लगा सकते हैं. और तीसरा मूल मंत्र है एकीकृत खेती. खेती के साथ साथ पशुपालन और मछली पालन को भी हम इसमें जोड़ सकते हैं.
0: मैम कई बार ऐसा होता है ना कि किसान भाई बहन पैसों की कमी की वजह से ये सब नहीं कर पाते हैं, तो क्या ऐसे में सरकार इनकी कोई मदद कर रही है या करती है.
1: जी ज़रूर, कई बार सरकार इसमें बहुत ही बेहतरीन योजनाओं के द्वारा मदद कर रही है. जैसे कि पहला है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, इसके तहत दालों और मोटे अनाज के उत्पादन के लिए मुफ्त बीज और ट्रेनिंग मिलती है. दूसरा है पोषण अभियान, इसका मकसद महिलाएं और बच्चों में कुपोषण को ख़त्म करना. आंगनबाड़ी और कृषि विभाग इसमें मिलकर काम कर रहे हैं. तीसरा परंपरागत कृषि विकास योजना, इसके ज़रिए आप जैविक खेती कर सकते हैं, बिना रासायनिक खाद के उगे अनाज ज़्यादा पोषक और बाज़ार में महंगे ज़रूर बिकते हैं. और चौथा है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, इससे आप टपक सिंचाई अपनाकर कम पानी में भी सब्जी और फल उगा सकते हैं.
0: तो मैम इन योजनाओं का लाभ उठाने के लिए हमें क्या करना होगा, क्या हमें ब्लॉक जाना होगा.
1: जी आप अपने क्षेत्र के कृषि समन्वयक से मिल सकते हैं और सीधे कृषि विज्ञान केंद्र भी आ सकते हैं. अब तो कोई योजनाओं का लाभ आप सीधे ऑनलाइन पंजीकरण से भी कर सकते हैं.
0: मैम मैं चाहती हूँ कि आप इस बारे में और भी विस्तृत जानकारी दें, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के बारे में जिसे कि हम NFSM कहते हैं, और क्या इससे हमारे किसान भाई बहनों को क्या फ़ायदा मिलता है और किस तरीके से वो इसका लाभ उठा सकते हैं, इसके लाभ के लिए पात्रता क्या होनी चाहिए और आवेदन कैसे कर सकते हैं?
1: जी ज़रूर। तो तीन सवाल आपने किया है कि इसके लाभ क्या है, पात्रता क्या है और आवेदन कैसे कर सकते हैं। तो मैं पहले इसके लाभ के बारे में बताना चाहूँगी कि इसके द्वारा हम नई और उन्नत किस्म के बीजों पर सब्सिडी मिलती है। दालों के लिए लगभग 25 रुपये प्रति केजी और धान गेहूं के लिए लगभग 10 किलो प्रति केजी तक की छूट मिल सकती है, ये बीज वितरण पर। दूसरा हम कर सकते हैं कि कृषि वैज्ञानिक आपके खेत पर आकर नई तकनीकों का प्रदर्शन करते हैं। इसके लिए किसानों को प्रति हेक्टेयर 6,000 से 15,000 तक की सहायता राशि दी जाती है। तीसरा मुख्य लाभ है कि आप जो भी कृषि उपकरण है जैसे कि पंप सेट, स्प्रेयर, सीड ड्रिल, कल्टीवेटर जैसे औजारों पर 50% तक की सब्सिडी मिलती है। और चौथा मुख्य लाभ ये है कि सूक्ष्म पोषक तत्व जो कि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है और जैव उर्वरक जो बायोफर्टिलाइजर्स है इसके इस्तेमाल के लिए भी आर्थिक मदद दी जाती है। दूसरा सवाल आपने किया कि इसकी पात्रता क्या है। तो सभी श्रेणी के किसान, छोटे, सीमांत, बड़े, इस योजना का लाभ ले सकते हैं। योजना में 33% आवंटन छोटे और सीमांत किसानों के लिए, 30% आवंटन महिला किसानों के लिए आरक्षित है। एक किसान एक सीजन में अधिकतम 5 हेक्टेयर तक की सहायता ले सकता है। और रही बात इसको आवेदन करने के लिए, तो इसके आवेदन के लिए आप स्थानीय कृषि कार्यालय, अपने ब्लॉक में किसी भी कृषि विस्तार अधिकारी जो ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर हैं या ग्राम कृषि समन्वयक से मिल सकते हैं। पंजीकरण के लिए अधिकांश राज्यों में इसके लिए ऑनलाइन पोर्टल, जैसे कि अपने बिहार में DBT पोर्टल है, उस पर आप पंजीकरण करा सकते हैं। और दस्तावेज के लिए, आवेदन के लिए आमतौर पर आधार कार्ड, बैंक का पासबुक, फोटोकॉपी, जमीन की कागजात, LPC रसीद और जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है।
0: मैम, अगर इन सारी चीज़ों से जुड़ी हुई और भी जानकारी चाहिए तो उसके लिए हमारे किसान भाई बहन किन से संपर्क कर सकते हैं?
1: जी, अधिक जानकारी के लिए आप अपने जिला के अपने नज़दीकी कृषि विभाग के कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं और कृषि विज्ञान केंद्र और आत्मा के कार्यालय में भी आप संपर्क कर सकते हैं।
0: मैम, अंत में आप किसान भाई बहनों को कोई संदेश देना चाहेंगे?
1: बस इतना कहना चाहूँगी कि स्वस्थ परिवार की शुरुआत खेत से होती है और आप किसान हैं, आप अन्नदाता हैं। आप अगर अपनी थाली में रंग बिरंगी चीज़ें रखेंगे, दालें, सब्जियां, फल, तो देश का भविष्य यानी कि हमारे जो बच्चे हैं वो शुरुआती तौर से बहुत ही मजबूत बनेंगे। धन्यवाद।
0: धन्यवाद मैम, आपने बहुत सारी अच्छी बातें बताई। उम्मीद है कि आज हमारे किसान भाई बहन को समझ आया होगा, उन्होंने ये समझा होगा कि पोषण सुरक्षा के लिए हमें अपनी खेती के जो तरीके हैं उन्हें बदलने की ज़रूरत है और सरकारी योजनाएं हैं उनका लाभ उठाइए। और जैसे कि मैम ने बताया, आप अधिक जानकारी के लिए नज़दीकी कृषि विभाग में जा सकते हैं, वहाँ संपर्क कर सकते हैं। और हम फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।
0: अभी के लिए हमें दीजिए इजाजत, लेकिन जाने से पहले कुछ खास बात कि अपना और अपने फसलों का रखें खूब ख्याल और अपनी मिट्टी से करें ढेर सारा प्यार। नमस्कार।
2: उन्नत कृषि,

तैयार है आम के अद्भुत संसार से रूबरू होने के लिए। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर लेकर आ रहा है राष्ट्रीय आम समागम 2026, जिसका आयोजन 27 से 28 जून तक किया जाएगा। आइए और देखिए देश भर की सैकड़ों आम किस्मों की आकर्षक प्रदर्शनी, जहां स्वाद, सुगंध और रंगों का अनूठा संगम आपका स्वागत करेगा। इस विशेष आयोजन की थीम है स्वाद, संस्कृति और समृद्धि का संगम। आम समागम में किसानों, वैज्ञानिकों, उद्यमियों और आम प्रेमियों को एक ही मंच पर आने का अवसर मिलेगा। कार्यक्रम के दौरान आयोजित होगी राष्ट्रीय कार्यशाला, जिसका विषय है आधुनिक तकनीक से गुणवत्ता युक्त उत्पादन, भंडारण एवं प्रसंस्करण। देश के प्रतिष्ठित विशेषज्ञ आम उत्पादन, मूल्य संवर्धन और प्रसंस्करण की आधुनिक तकनीकों पर अपने अनुभव साझा करेंगे। इस अवसर पर आयोजित होगा किसान वैज्ञानिक सम्मान समारोह, जिसमें बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश के उत्कृष्ट आम उत्पादकों को बेस्ट मैंगो फार्मर अवार्ड प्रदान किया जाएगा। महिला आम उत्पादकों एवं मूल्य संवर्धन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिला उद्यमियों के लिए भी विशेष सम्मान और नगद पुरस्कार की व्यवस्था की गई है। और अब आपके लिए एक सुनहरा अवसर, यदि आपके बाग में उत्कृष्ट गुणवत्ता के आम हैं या आपके पास किसी विशेष किस्म के आम उपलब्ध हैं, आप भी आम प्रदर्शनी में अपनी आम की किस्मों को प्रदर्शित कर सकते हैं। आपकी प्रविष्टियों का मूल्यांकन विशेषज्ञों द्वारा किया जाएगा और चयनित प्रतिभागियों को आकर्षक पुरस्कार एवं नगद राशि से सम्मानित किया जाएगा। और हाँ, आम प्रेमियों के लिए होगा एक विशेष आकर्षण, मैंगो ईटिंग प्रतियोगिता। इस रोमांचक प्रतियोगिता के विजेताओं को भी आकर्षक नगद पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। तो देर किस बात की, अपने श्रेष्ठ आमों के साथ आइए, प्रदर्शनी में भाग लीजिए, विशेषज्ञों से सीखिए, नई तकनीकों को जानिए और आकर्षक पुरस्कार जीतने का अवसर पाइए। 27 से 28 जून राष्ट्रीय आम समागम 2026 बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है।

0: खांसी एक, खांसी दो, खांसी तीन, बच गई भैया देश की बीन। टीबी के कारण को जानो, खांसी हो तो मुंह ढक कर खांसो। टीबी रोग हवा में फैले, रखो अपना औरों का ध्यान। घर में धूप रोशनी हवा मिले तो कीटाणु सब मर जाएंगे, रोग मुक्त हम हो जाएंगे। खांसी खोखो खांसी। बलगम में है भरे कीटाणु, रख कागज में इसे जला दो या डाल राख में इसे दबा दो, रहे न टीबी नाम मिटा दो। खांसी खोखो खांसी। टीबी मुक्त भारत बनाए,
1: खुद भी बचे देश भी बचाए।
2: टीबी हारेगा देश जीतेगा।
3: सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है किसान भाई बहनों को संबोधित हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। उन्नत कृषि में आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों जब बाजार हम जाते हैं तो वहां पर हर तरह के फल मौजूद होते हैं और वो ज्यादातर फल ऐसे मौजूद होते हैं जो कृत्रिम रूप से पकाए गए होते हैं। लेकिन अक्सर आपने सुना होगा कि जो कृत्रिम रूप से पकाए गए फल होते हैं वो हमारे सेहत के लिए अच्छे नहीं होते हैं। ऐसा क्यों होता है, आपने कभी सोचा है? और इसके पीछे क्या वजह है? और अगर हम कृत्रिम रूप से पकाते हैं तो क्या ये सही है? और अगर सही है तो इसे कृत्रिम रूप से पकाने का सही तरीका क्या है? इसके बारे में आज हम जानेंगे विस्तार से डॉक्टर कुमारी करुणा से। मैम है यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर फ्रूट साइंस से। मैम है बीएससी सबौर से। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
4: धन्यवाद।
3: मैम सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जब पेड़ पे फल पक रहे हैं तो फिर उसे कृत्रिम रूप से पकाने की क्या जरूरत है?
4: फलों को कृत्रिम रूप से पकाने का मुख्य उद्देश्य परिवहन के दौरान उन्हें खराब होने से बचाना और बाजार की मांग को समय पर पूरा करना होता है। यदि फलों को पेड़ पर ही पूरी तरह पकने दिया जाए तो वे बहुत मुलायम हो जाते हैं और दूर दराज के बाजारों तक पहुँचाने से पहले ही सड़ जाते हैं। इसलिए फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के और भी कई कारण हैं। सर्वप्रथम सुरक्षित परिवहन एवं कम नुकसान का होना। पके फलों की तुलना में कच्चे फलों को तोड़कर आसानी से पैक और ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। इसके अलावा फलों को देश या विदेश के दूरस्थ बाजारों का तक पहुंचाने के लिए कच्चा फल ही तोड़ा जाता है और बाजार पहुँचने के बाद उसे पकाया जाता है। इसका सेल्फ लाइफ भी अच्छा होता है कच्चे फलों का। इसलिए कच्चे फलों को यदि तोड़कर कोल्ड स्टोर में जिसका तापमान 10 से 13 डिग्री सेल्सियस और सापेक्षित आर्द्रता 85 से 90% पर लंबे समय तक बिना सड़े रखा जा सकता है। व्यापारी स्टोर किया हुआ फल को आवश्यकता अनुसार गोदामों से निकाल कर पकाते हैं और बाजार भेजते हैं। कृत्रिम रूप से पकाने पर फल एक समान रंग और रूप का होता है, इसलिए इससे उनका रंग एक समान और चमकदार हो जाता है जो ग्राहकों को आकर्षित करता है। बाजार की मांग, जैसे कि शादी के समय में बाजार में अधिक फलों की आवश्यकता होती है, त्योहारों और शादियों के सीजन में अचानक बढ़ी मांग को पूरा करने के लिए फलों को तेजी से पकाया जाता है। फसल के शुरुआती सीजन में भी फलों को बाजार में पहले लाकर व्यापार अधिक मुनाफा कमाते हैं। इससे किसान भाई को भी फायदा होता है। पहले अगर बाजार में कोई फल आ जाता है तो उसका जो मूल्य है अधिक मिलता है।
3: जी मैम, लेकिन जो बाजार में किसान भाई बहन फलों को पका रहे हैं वो बहुत ही गलत तरीके से पकाया जा रहा है, तो गलत तरीके से अगर हम पकाते हैं, कृत्रिम रूप से पकाते हैं, गलत तरीका इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसे फलों को खाने पर मानव के स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ता है?
4: जैसे कि असुरक्षित तरीका, जैसे भारत में जो भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण बना है 2008 में, द्वारा कैल्शियम कार्बाइड के उपयोग पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया गया है। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि इसमें एसिटिलीन गैस निकलता है और आर्सेनिक और फास्फोरस जैसे जहरीले तत्व भी होते हैं जो कि कैंसर, चक्कर आना और पेट की अन्य बीमारियां पैदा कर सकता है, इसलिए इस पर बैन लगाया गया है कैल्शियम कार्बाइड पे।
3: लेकिन मैम अभी भी किसान भाई बहन कैल्शियम कार्बाइड का इस्तेमाल करते हैं, और अगर कैल्शियम कार्बाइड का इस्तेमाल करना इतना खतरनाक है तो फिर वो क्या तरीका अपना सकते हैं जो सुरक्षित तरीका हो?
4: सुरक्षित तरीका में वैज्ञानिक रूप से अनुशंसित इथिलीन गैस है जिससे फल को पकाने पर किसी तरह का हेल्थ प्रॉब्लम नहीं आता है। इथिलीन गैस 100 ppm को ही सुरक्षित एवं वैध माना गया है क्योंकि यह फलों का एक प्राकृतिक हार्मोन भी है।
3: और अगर हम बात करें कि कृत्रिम रूप से फलों को कैसे पकाएंगे तो वो क्या होगा, उसका प्रोसेस क्या होगा?
4: फलों को कृत्रिम रूप से सुरक्षित तरीके से पकाने के लिए भारत सरकार की संस्था जो है भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण केवल इथिलीन गैस के उपयोग की अनुमति देती है। यह फलों का एक प्राकृतिक हार्मोन है जो स्वास्थ्य को नुकसान नहीं पहुंचाता है। व्यापारिक और घरेलू स्तर पर सुरक्षित रूप से फल पकाने का तरीका है, पहला इथिलीन चैम्बर, इथिलीन रैपेनिंग चैम्बर होता है। इसमें फलों को एक एयर टाइट हवा बंद कमरे में रखा जाता है, वहाँ इथिलीन गैस जनरेटर या सिलेंडर की मदद से 100 ppm की नियंत्रित मात्रा में गैस छोड़ी जाती है। इसके साथ ही कमरे का तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस और नमी 90-95% रखी जाती है जिससे फल 24-48 घंटे में प्राकृतिक रूप से पक जाता है। दूसरा है इथिलीन पाउच, पाउच भी इसका आता है। जिन व्यापारियों के पास बड़े चैम्बर नहीं होते हैं वे इथिलीन बनाने वाले छोटे पाउच का उपयोग करते हैं। इस पाउच को फलों की क्रेट या बक्से के बीच में रखा जाता है, नमी मिलने पर इनमें से धीरे धीरे इथिलीन गैस निकलती है जो फलों को पकाती है।
3: मैम अगर बड़े पैमाने पर फलों को ना पकाना हो या फिर हम चाहें कि हम घरेलू स्तर पर फल को पकाएं तो इसकी विधि क्या है?
4: यदि आप घर पर कच्चे फल को सुरक्षित पकाना चाहते हैं तो बताए गए तरीके को अपनाकर आप पका सकते हैं। पहला है कागज के लिफाफे या अखबार में लपेटना। कच्चे फलों को लिफाफे या अखबार में लपेट कर रख दें, इससे फल जो प्राकृतिक रूप से इथिलीन गैस निकालेगा, फल जब पकने लगता है तो उससे इथिलीन गैस अधिक मात्रा में निकलता है, तो जब हम पेपर में लपेटेंगे या लिफाफा में रखेंगे तो वो जमा होते रहेगा इथिलीन गैस, जिससे कि फल पकने की प्रक्रिया में तेजी आएगी। तो इस तरह से हम पका सकते हैं। दूसरा है केले या सेब के साथ रखना। कच्चे फलों को पके हुए केले या सेब के साथ एक डिब्बे में बंद करके रख देने से भी कच्चा फल तेजी से पकने लगता है क्योंकि पका केला या सेब अधिक मात्रा में इथिलीन गैस छोड़ता है। इसको बंद इसलिए रखते हैं क्योंकि इथिलीन गैस बाहर निकले नहीं, वो गैस है, उसको अंदर में ही रखना है जिससे कि पकने की प्रक्रिया को तेज किया जा सके।
3: तो इन तरीकों का इस्तेमाल करके हम फलों को सुरक्षित रूप से कृत्रिम रूप से पका सकते हैं, और जिस तरीके से आपने बताया कि अलग अलग केमिकल का या फिर अलग अलग तरीकों से भी पका सकते हैं, घर साथ ही घर पर भी घरेलू स्तर पर हम फलों को पका सकते हैं कृत्रिम रूप से। तो मैम आपने जो बातें बताई वो बहुत ही उपयोगी साबित होगी हमारे किसान भाई बहनों के लिए, और साथ ही जो उन फलों को खाते हैं जो उन्हें कंज्यूम करते हैं उनके लिए भी ये काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।
5: उन्नत कृषि

तैयार है आम के अद्भुत संसार से रूबरू होने के लिए। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर लेकर आ रहा है राष्ट्रीय आम समागम 2026, जिसका आयोजन 27 से 28 जून तक किया जाएगा। आइए और देखिए देश भर की सैकड़ों आम किस्मों की आकर्षक प्रदर्शनी, जहां स्वाद, सुगंध और रंगों का अनूठा संगम आपका स्वागत करेगा। इस विशेष आयोजन की थीम है स्वाद, संस्कृति और समृद्धि का संगम। आम समागम में किसानों, वैज्ञानिकों, उद्यमियों और आम प्रेमियों को एक ही मंच पर आने का अवसर मिलेगा। कार्यक्रम के दौरान आयोजित होगी राष्ट्रीय कार्यशाला, जिसका विषय है आधुनिक तकनीक से गुणवत्ता युक्त उत्पादन, भंडारण एवं प्रसंस्करण। देश के प्रतिष्ठित विशेषज्ञ आम उत्पादन, मूल्य संवर्धन और प्रसंस्करण की आधुनिक तकनीकों पर अपने अनुभव साझा करेंगे। इस अवसर पर आयोजित होगा किसान वैज्ञानिक सम्मान समारोह, जिसमें बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश के उत्कृष्ट आम उत्पादकों को बेस्ट मैंगो फार्मर अवार्ड प्रदान किया जाएगा। महिला आम उत्पादकों एवं मूल्य संवर्धन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिला उद्यमियों के लिए भी विशेष सम्मान और नगद पुरस्कार की व्यवस्था की गई है। और अब आपके लिए एक सुनहरा अवसर, यदि आपके बाग में उत्कृष्ट गुणवत्ता के आम हैं या आपके पास किसी विशेष किस्म के आम उपलब्ध हैं, आप भी आम प्रदर्शनी में अपनी आम की किस्मों को प्रदर्शित कर सकते हैं। आपकी प्रविष्टियों का मूल्यांकन विशेषज्ञों द्वारा किया जाएगा और चयनित प्रतिभागियों को आकर्षक पुरस्कार एवं नगद राशि से सम्मानित किया जाएगा। और हाँ, आम प्रेमियों के लिए होगा एक विशेष आकर्षण, मैंगो ईटिंग प्रतियोगिता। इस रोमांचक प्रतियोगिता के विजेताओं को भी आकर्षक नगद पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। तो देर किस बात की, अपने श्रेष्ठ आमों के साथ आइए, प्रदर्शनी में भाग लीजिए, विशेषज्ञों से सीखिए, नई तकनीकों को जानिए और आकर्षक पुरस्कार जीतने का अवसर पाइए। 27 से 28 जून राष्ट्रीय आम समागम 2026 बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है।

0: टीनू, नीनू, राजू, पिन्नी
1: और तुम्हारे वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
0: 11 दोस्त
1: टीकू, वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
0: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
1: मगर टीकू, कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
0: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं, या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
0: टीकी, तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा, सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है, तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। UN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
2: याद रखो,
0: आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।
3: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
4: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
3: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
4: आपकी सेहत की बातें,
3: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
4: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
3: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
4: वो कहाँ पर?
3: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
4: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
3: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 24 से 28 जून के दौरान भागलपुर, बांका, मुंगेर, जमुई, इन जिलों में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ हल्की वर्षा होने की संभावना है। दक्षिण बिहार के अन्य जिलों में 24 से 25 जून के दौरान लू चलने की संभावना है। इसके बाद इन जिलों के एक दो स्थानों पर बादल गरजने के साथ हल्की वर्षा की संभावना है। अधिकतम तापमान 37 से 39 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 26 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 60 से 70% और दोपहर में 25 से 30% रहने की संभावना है। अनुमान है कि 24 से 28 जून के दौरान 5 से 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दक्षिण पूर्वी हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए, जो किसान भाई बहन धान की खेती करना चाहते हैं, उन्हें बता दे, वर्तमान में मानसून की कमजोर स्थिति को देखते हुए किसान भाई बहनों को ये सलाह दी जाती है कि ऊंची भूमि में धान की खेती ना करें। जिन किसानों के पास सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है, वे मध्यम अवधि वाले धान की किस्मों का बिचड़ा गिराएं और बीज स्थली में नमी बनाए रखें, इस बात का विशेष ध्यान रखें। बीज स्थली यानी कि नर्सरी में नमी बनाए रखने के लिए जरूरत के हिसाब से जीवन रक्षक सिंचाई जरूर करें, और खास तौर से ऊंची भूमि में धान के स्थान पर वैकल्पिक फसलों की खेती पर विचार करना अधिक उपयुक्त होगा। जो मक्का की खेती करना चाहते हैं, उन्हें बता दे, खरीफ मक्का की बुआई तभी करें जब आसमान साफ हो और खेत की जुताई में 10 से 15 टन गोबर की सड़ी खाद प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें, और ध्यान दें कि बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 30 किलोग्राम नेत्रजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटाश डालना जरूरी होता है। किसान भाई बहनों, आपको बता दें, अनुशंसित मक्का की किस्में हैं सुवान, देवकी, शक्तिमान 1, शक्तिमान 2, राजेंद्र शंकर, मक्का 3, गंगा 11। जो मूंग की खेती करते हैं, उन्हें बता दें, मूंग की तैयार फलियों की तुड़ाई कर ले और हरी खाद के लिए उसके पौधों को मिट्टी पलटने वाले हल से जमीन में गाड़ दे। यह आपके खेत और आपके खेत की मिट्टी के लिए फायदेमंद होता है। जिनके खेत में सब्जियां लगी हैं, उन्हें बता दें, भिंडी, कद्दू, खीरा, नेनुआ और लौकी की फसलों में निराई गुड़ाई जरूर करें, साथ ही खरपतवार नियंत्रित करना भी जरूरी होता है। आपको बता दें कि पत्ती खाने वाली सुंडियों और फल छेदक कीटों की नियमित निगरानी करते रहें, और अगर इन कीटों का प्रकोप दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में डाइमेथोएट 30 इसी दवा की 1 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान दें, किसी भी प्रकार का छिड़काव तभी करें जब आसमान साफ हो। किसान भाई बहन, आपको बता दें कि खरीफ प्याज की खेती के लिए नर्सरी यानी कि बीज स्थली की तैयारी तभी करें जब आसमान साफ हो, और स्वस्थ पौध के लिए नर्सरी में गोबर की खाद जरूर डालें। अच्छे और स्वस्थ फसल के लिए प्याज की बीज की व्यवस्था प्रमाणित स्रोत से ही नहीं करें और बीज गिराने के पहले बीजोपचार करना बहुत जरूरी होता है। बीजोपचार करने से पौधे स्वस्थ और फसल अच्छी होती है। खरीफ प्याज के लिए बीज की दर 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, लीची की फल तोड़ाई के बाद बगीचों में आवश्यक छटाई जरूर कर ले, जिससे पेड़ों के भीतर पर्याप्त धूप और हवा का संचार हो सके। साथ ही आपको बता दें कि बगीचे में गिरे हुए पत्तों, सूखी शाखाओं और अन्य पौध अवशेषों को इकट्ठा कर हटा दें। इससे कीट और रोगों का प्रकोप कम होता है और पेड़ों की स्वस्थ वृद्धि और विकास को बढ़ावा मिलता है। तो ध्यान दें कि बगीचे में गिरे हुए पत्तों, सूखी शाखाओं और ऐसी कोई भी अन्य जो पेड़ के अवशेष हो उन्हें इकट्ठा करके हटा दें। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें, दुधारू पशुओं को गर्मी के प्रभाव से बचाने के लिए छायादार और हवादार स्थानों में रखें और उन्हें पर्याप्त मात्रा में साफ और ताजा पीने का पानी उपलब्ध कराएं। पशुपालक भाई बहन ध्यान दें, गला घोटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए टीकाकरण कराना बहुत जरूरी होता है, इसलिए सभी दुधारू पशुओं में टीकाकरण जरूर कराएं। सूचना समाप्त हुई। ऐसे ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

हर समय थकान महसूस करते हैं। छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है। ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर आप सबका स्वागत करता है स्वाद संस्कृति और समृद्धि के संगम राष्ट्रीय आम समागम सह कार्यशाला में। तारीख याद रखें 27 से 28 जून 2026।

क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।

0: കൃഷി. नमस्कार, आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो 90.8 FM ग्रीन. और साथ ही हम आपको बता दें कि उन्नत कृषि कार्यक्रम में आज एक विषय लेकर फिर से हाजिर हैं हम एक नए विषय के साथ, और विषय है गोभी वर्गीय फसलों में समेकित कीट प्रबंधन. जी हाँ श्रोताओं, आज गोभी वर्गीय फसलों के बारे में हम जानेंगे और इसमें कीट प्रबंधन कैसे किया जाए उसके बारे में जानेंगे. तो इस विषय को लेकर आज हमारे बीच हैं डॉक्टर रंजीत कुमार. मैं आपको बता दूं ये सहायक प्राध्यापक हैं सहकनीय वैज्ञानिक कीट विज्ञान विभाग वीर कुंवर सिंह कृषि महाविद्यालय डुमराव से, बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से हैं. डॉक्टर साहब, आपका सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में.
1: धन्यवाद मैडम.
0: डॉक्टर साहब, गोभी वर्गीय फसलों के मुख्य कीट कौन कौन से होते हैं सबसे पहले तो ये बता दें हमारे सभी श्रोताओं को.
1: सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार. गोभी वर्गीय फसलों में मुख्य रूप से जो कीट लगते हैं इस समय, उसमें से सबसे प्रमुख कीट है हीरक पृष्ठ पतंगा, दूसरी कीट है माहू, तीसरा कीट तंबाकू की सूढ़ी जिसको टोबैको कैटर पिलर कहते हैं, और चौथे कीट है जिसे हम चना के फली छेदक कीट कहते हैं. इन चारों कीटों का मुख्य रूप से गोभी वर्गीय फसल जैसे पत्ता गोभी, फूल गोभी, मूली, उसके बाद जो सलजम होती है, इन सारी फसलों पर इन कीटों का प्रकोप बहुतायत हमारे प्रदेश में देखने को मिलता है.
0: डॉक्टर साहब, गोभी वर्गीय फसलों की हम बात कर रहे हैं तो ये सबसे ज्यादा नुकसान किन किन कीटों से होता है इसे?
1: जी किसान भाई, आप सभी गोभी वर्गीय फसलों की खेती करते हैं और हमारे प्रदेश में बहुतायत तौर पर गोभी वर्गीय फसल उपजाई जाती है, और इसमें जो सर्वाधिक नुकसान पहुंचाने वाले कीट हैं उसमें तंबाकू की सूढ़ी, हीरक पृष्ठ पतंगा और चने का फली छेदक कीट. सामान्य तौर पर आप सभी किसान भाई देखे होंगे कि कभी कभी पूरी पत्तियां काट करके कीट पूरा उसको पेपर जैसा बना देता है, पूरा छलनी जैसे जाली नुमा संरचना बन जाती है. ये शुरुआत की अवस्था होती है. उसके बाद की जो अवस्था होती है, पत्ता गोभी की अगर बात करें तो पत्ता गोभी में पूरे छेद छेद से बन जाते हैं और वो मानवीय उपयोग के लायक नहीं बच पाता है. फूल गोभी की अगर बात करें तो फूल गोभी के ऊपर इन्हीं सारे पिल्लू के द्वारा इस तरह से खान लिए जाते हैं कि वो खाने के अब प्रयोग में नहीं लाया जा सकता है, और साथ ही साथ उसे हमें आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ता है. इसकी जो मादा होती है पत्तियों के ऊपर, और गोभी की जो निचली भाग होती है जो जमीन से थोड़ा जड़ से ऊपर की भाग होती है, उन पर ये मादा अंडा देती है. अंडा देने के 4 से 5 दिन के बाद ये पिल्लू बन जाते हैं, और पिल्लू की जो अवस्था होती है वो सबसे ज्यादा क्षतिकारक होती है और वो सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है, जिससे हमारे किसानों को आर्थिक क्षति का सामना करना पड़ता है. साथ ही साथ उनकी सारी मेहनत पर पानी फिर जाती है और उनको मूल्य प्राप्त नहीं हो पाता है, और इनकी पिल्लू उस इस तरह से नुकसान करने लगती है, और साथ ही साथ उनके जो एक्सक्रीटा होते हैं जो मल मूत्र वो पिल्लू त्यागते हैं उस गोभी के ऊपर आ जाते हैं, जिससे देखने में भी खराब दिखने लगता है और आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ता है. जैसे ही ये पिल्लू कोसा की अवस्था में आते हैं तो मिट्टी के अंदर कोसा की अवस्था में या सुसुप्ता अवस्था में पड़े रहते हैं और बाद में फिर तितली बन करके निकलती है. इस तरह से उनके जीवन चक्र चलते रहते हैं. अगर हम बात कर लें कि हीरक पृष्ठ पतंगा का, तो किसान भाई सबसे बढ़िया पहचान इसकी ये है कि हीरक पृष्ठ पतंगा के जो व्यस्क कीट होता है नर और मादा, इसके पीठ पर चमकती हुई धारी बनी रहती है. आप उसे गौर से अपने खेतों में देखेंगे तो ये लंबी लंबी सी जो व्यस्क है इसके पीठ के ऊपर चमकता हुआ पीले रंग का धारी बनी रहती है. भूरे रंग के कीट के ऊपर पीले रंग की धारी बनी रहती है जिससे हम आसानी से पहचान सकते हैं. और तंबाकू की सूढ़ी की बात करें तो इसके जो व्यस्क कीट होते हैं इसके पंखों के ऊपर गोल गोल संरचना बनी रहती है जो धूसर काले रंग के होते हैं और उस पर पीले चमकीले रंग की गोल संरचना बनी रहती है, तो इससे इन कीट की पहचान कर सकते हैं।
0: तो डॉक्टर साहब, ये तो बातें हो गई हैं कि कौन कौन से कीट जो हैं नुकसान पहुंचाते हैं ज्यादा, हम उनकी पहचान कैसे कर सकते हैं। अब बात करते हैं इनके प्रबंधन की, तो गोभी वर्गीय फसलों में समेकित कीट प्रबंधन कैसे करें हम?
1: गोभी वर्गीय फसलों में समेकित कीट प्रबंधन करने से हम किसानों को ये बताना चाहते हैं कि शुरुआती दौर में जब वो बिचड़ा गोभी के गिराएं, उसी समय सर्वप्रथम बीज का शोधन करें। बीज का सामान्य तौर पर हमारे किसान कवकनाशी फफूंदनाशी दवाइयों के द्वारा बीज का उपचार कर लेते हैं, बीज का शोधन कर लेते हैं। हम किसानों को आज इस माध्यम से बताना चाहेंगे कि गोभी के बीज को कीटनाशी रसायन के द्वारा भी शोधित किया जाता है। इसमें सबसे बढ़िया जो प्रयोग करने के लिए आता है, गाउचो नाम की एक दवाई होती है, 1 मिलीलीटर मात्रा प्रति केजी बीज के हिसाब से मिला करके उसे हम बीज का उपचार करके अगर लगाएं तो स्वस्थ हमें पौधा तैयार मिलेगा और फिर उसे हम खेतों में लगा सकते हैं। किसान भाई इन बात का ध्यान रखें, और उसके बाद जब पौधे को खेतों में लगा देते हैं तो लगाने के बाद आप एक फेरोमोन ट्रैप होती है जिसको गंध प्रफास कहते हैं, इन कीटों को जो मैंने नाम आपके समक्ष बताया, इन कीटों के गंध प्रफास बाजार में उपलब्ध है, इसको आप खेतों में प्रयोग करेंगे तो इससे आपको पता चलेगी कि किस समय में कौन से कीट का प्रकोप होने वाला है और उसके हिसाब से आप कीटनाशक रसायनों का प्रयोग कर सकते हैं।
0: तो ये कुछ बातें हैं इनके समेकित कीट प्रबंधन की। डॉक्टर साहब, अगर मैं इनमें प्रयुक्त होने वाली कीटनाशी रसायन और पेस्टिसाइड के बारे में पूछूं तो कौन कौन से हैं वो भी बता दें।
1: जी, सामान्य तौर पर देखने को मिलता है कि किसान कोई भी कीटनाशी रसायन ले आकर के छिड़काव कर देते हैं। हम किसान भाई आप सबको ये सुझाव देना चाहेंगे कि उन्हीं कीटनाशी रसायनों का प्रयोग करें जिसको वैज्ञानिक के द्वारा अनुमोदन किया जाता है, और जितनी मात्रा में अनुमोदन की जाती है उतनी ही मात्रा में प्रयोग करें, क्योंकि कीटनाशी रसायन की कम मात्रा और ज्यादा मात्रा दोनों ही घातक होती है। अगर कुछ आपके समक्ष हम बात करें कि कौन कौन से कीटनाशी रसायन है जिसका अत्यधिक प्रयोग किया जा सकता है जो हमारे वातावरण के लिए सुरक्षित हो, हमारी फसल के लिए सुरक्षित हो, हमारी मृदा के लिए, हमारी वायु के लिए पूरी तरह से सुरक्षित हो, तो इनमें सबसे पहले हम नाम लेंगे फ्लूबेंडिया माइट 39.5 SC के नाम से एक कीटनाशक रसायन आती है जो बाजार में फेम के नाम से मिलेगी। 1 मिलीलीटर मात्रा प्रति 3 लीटर पानी में मिला करके इसका छिड़काव कर सकते हैं। दूसरी दवाई नोवा ल्यूरान के नाम से बाजार में मिलती है, इसको आप 1 मिलीलीटर मात्रा प्रति 3 लीटर पानी में मिला करके छिड़काव कर सकते हैं। तीसरी दवाई क्लोरांट्रा नीली प्रोले जो कोरोजन के नाम से बाजार में मिल जाएगी, इसकी भी 1 मिलीलीटर मात्रा प्रति 3 लीटर पानी में मिला करके छिड़काव किया जा सकता है। उपर्युक्त कीटनाशक रसायनों के जो बाजारू नाम हम आपके समक्ष बताए हैं आपके उदाहरण के तौर पर, ताकि आपको खोजने में आसानी हो। साथ ही साथ आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि आप अपने घर पर बायो पेस्टिसाइड का निर्माण करके उसको आप अपने खेतों में छिड़काव कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले नीम की पत्ती है, नीम का तेल है, जिसको आप पीस करके, नीम के पत्ती को पीस करके उसको पानी में मिला करके छिड़काव करेंगे तो जो भी कीट है उन कीट का प्रकोप आपकी फसल में नहीं आएगा। दूसरा है नीम का तेल, नीम का तेल 1 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से मिला करके 1 सप्ताह के अंतराल पर छिड़काव करने से ऐसा देखा गया है कि कीटों का जो प्रकोप है वो बहुत ही कम होता है, और ये आप अपने खेतों में घरों में तैयार कर सकते हैं।
0: तो ये कुछ बातें हैं गोभी वर्गीय फसलों में समेकित कीट प्रबंधन को लेकर, जो कि आपको ध्यान रखना है इन बातों पर किसान भाइयों। तो आशा करते हैं कि बहुत कुछ आपको जानने को मिला होगा आज के इस वार्ता से, और इसके साथ ही अगले विषय के साथ फिर से हम हाजिर होंगे इसी फ्रिक्वेंसी 90.8 MHz पर उन्नत कृषि कार्यक्रम में। तब तक के लिए नमस्कार।
2: उन्नत कृषि

तैयार है आम के अद्भुत संसार से रूबरू होने के लिए। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर लेकर आ रहा है राष्ट्रीय आम समागम 2026, जिसका आयोजन 27 से 28 जून तक किया जाएगा। आइए और देखिए देश भर की सैकड़ों आम किस्मों की आकर्षक प्रदर्शनी, जहां स्वाद, सुगंध और रंगों का अनूठा संगम आपका स्वागत करेगा। इस विशेष आयोजन की थीम है स्वाद, संस्कृति और समृद्धि का संगम। आम समागम में किसानों, वैज्ञानिकों, उद्यमियों और आम प्रेमियों को एक ही मंच पर आने का अवसर मिलेगा। कार्यक्रम के दौरान आयोजित होगी राष्ट्रीय कार्यशाला, जिसका विषय है आधुनिक तकनीक से गुणवत्ता युक्त उत्पादन, भंडारण एवं प्रसंस्करण। देश के प्रतिष्ठित विशेषज्ञ आम उत्पादन, मूल्य संवर्धन और प्रसंस्करण की आधुनिक तकनीकों पर अपने अनुभव साझा करेंगे। इस अवसर पर आयोजित होगा किसान वैज्ञानिक सम्मान समारोह, जिसमें बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश के उत्कृष्ट आम उत्पादकों को बेस्ट मैंगो फार्मर अवार्ड प्रदान किया जाएगा। महिला आम उत्पादकों एवं मूल्य संवर्धन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिला उद्यमियों के लिए भी विशेष सम्मान और नगद पुरस्कार की व्यवस्था की गई है। और अब आपके लिए एक सुनहरा अवसर, यदि आपके बाग में उत्कृष्ट गुणवत्ता के आम हैं या आपके पास किसी विशेष किस्म के आम उपलब्ध हैं, तो आप भी आम प्रदर्शनी में अपनी आम की किस्मों को प्रदर्शित कर सकते हैं। आपकी प्रविष्टियों का मूल्यांकन विशेषज्ञों द्वारा किया जाएगा और चयनित प्रतिभागियों को आकर्षक पुरस्कार एवं नगद राशि से सम्मानित किया जाएगा। और हाँ, आम प्रेमियों के लिए होगा एक विशेष आकर्षण, मैंगो ईटिंग प्रतियोगिता। इस रोमांचक प्रतियोगिता के विजेताओं को भी आकर्षक नगद पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। देर किस बात की, अपने श्रेष्ठ आमों के साथ आइए, प्रदर्शनी में भाग लीजिए, विशेषज्ञों से सीखिए, नई तकनीकों को जानिए और आकर्षक पुरस्कार जीतने का अवसर पाइए। 27 से 28 जून राष्ट्रीय आम समागम 2026 बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है।

0: पक्षियों को उड़ता देख साथ मुझे आई एक भूली कहानी याद।
1: कौन सी कहानी टीकी?
0: उस जालिम शिकारी की जो आया था करने पंछियों का शिकार।
2: हमें भी वो कहानी बताओ ना।
0: एक था शिकारी जिसने चिड़ियों का शिकार करने को चुपके से बिछाया जाल, लेकिन जाल को सब चिड़िया फुर्र से ले उड़ी साथ।
3: माथा पीटता रह गया शिकारी, एक भी चिड़िया लगी ना हाथ।
0: तो दोस्तों, बीमारी का राक्षस भी बिछाए बैठा है एक जाल। अगर बच्चों का टीकाकरण छूटा तो कर देगा सबको बीमारी से बेहाल।
1: तो इस राक्षस से कैसे बचना है?
0: तो 5 साल या उनसे छोटे बच्चों के मम्मी पापा, सभी सुनो एक जरूरी बात। अगर सभी बच्चों का होगा टीकाकरण एक साथ, तो बीमारी के राक्षस का भी हो जाएगा खात्मा उसके साथ।
3: टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
4: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
5: चीन का हांजोउ शहर जानते हैं आप? वहीं पर हमने रचा था इतिहास जब 2022 के एशियन गेम्स में हमने 107 मेडल्स जीते थे, क्योंकि पीछे थी हमारे 1045 खेलो इंडिया सेंटर्स की ट्रेनिंग, कंडीशनिंग कोचेस, डाइटिशियंस और फिजियोस की पूरी फौज। तभी तो पैरालंपिक में भी हमने रिकॉर्ड 29 पदक जीते, और हॉकी, बैडमिंटन, एथलेटिक्स, वुमेन क्रिकेट, बॉक्सिंग, चेस सभी मैदानों में तिरंगा फहराया।
6: दुनिया के किसी कोने में हाथ में तिरंगा लेकर के दौड़ता है, सारे हिंदुस्तान में ऊर्जा भर देता है, सारे हिंदुस्तान में चेतना भर देता है।
5: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
7: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 ग्रीन FM। उन्नत कृषि।
8: नमस्कार श्रोताओं, एक बार फिर हम आपसे जुड़ चुके हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज पर। मैं हूँ आरजे अनु और आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे हर रोज़ के इस कार्यक्रम जिसका नाम है उन्नत कृषि कार्यक्रम। किसान भाइयों के लिए बहुत ही उपयोगी हमारा यह कार्यक्रम, जिसमें उन्हें बहुत कुछ जानने को मिलता है, खेती से जुड़ी जो समस्याएँ हैं उनके बारे में जानने को मिलता है, और साथ ही हम हर रोज़ एक अलग विषय आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। तो आज एक खास विषय फिर से हम लेकर आए हैं जिसे सुनकर आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। तौर पर बिहार के जो हमारे किसान भाई और बहन हैं उन्हें बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि बिहार में इसकी जो खेती है बहुत अधिक स्तर पर की जाती है। तो आज हम बात करने वाले हैं परवल की वैज्ञानिक खेती के बारे में। हमारे बहुत सारे किसान भाई हैं जो परवल की वैज्ञानिक खेती के बारे में जानना चाहते हैं, इससे जुड़ी जो समस्याएँ हैं उनके हल को पाना चाहते हैं। तो इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए आज हम आप सभी के लिए एक जो विषय है वो परवल से जुड़ा लेकर आए हैं, और इस विषय के बारे में सारी जानकारी आपको देने के लिए हमारे बीच हैं डॉक्टर RB वर्मा सर। और मैं आपको बता दूं, ये हैं हॉर्टिकल्चर वेजिटेबल एंड फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर एसोसिएट प्रोफेसर हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपका बहुत बहुत

0: स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद
0: सर। सबसे पहले हम बिहार के क्षेत्र की बात करते हैं, हमारे जो किसान हैं बिहार में उनके लिए अगर वो परवल की खेती करना चाहते हैं तो क्या स्थिति है बिहार में, खासतौर पर उनकी जानकारी दें।
1: देखिए, ये बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। इसमें जो है परवल एक ऐसी फसल है जो कम से कम इसको 8 से 9 महीने तक इससे हम आमदनी लेते हैं। इसको हम फरवरी में लगाते हैं और सीधे अक्टूबर तक इससे हम फल की हार्वेस्टिंग करते हैं, जिससे किसान भाइयों को आमदनी होती रहती है। तो ये 8 से 9 महीने भरपूर मतलब पैदावार देती है और किसानों भाई की आमदनी बढ़ाती है। इसका क्षेत्रफल जो हम देखिए, अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो पॉइंटेड गार्ड का या परवल का क्षेत्रफल जो है लगभग 75,000 हेक्टेयर एरिया में पूरे बिहार में इसकी खेती की जाती है, जिससे 757,000 टन का प्रोडक्शन इसका होता है जो है। और अगर प्रोडक्टिविटी उत्पादकता अगर देखी जाए तो इसका जो है 13.68 टन प्रति हेक्टेयर इसकी पैदावार है। तो इतनी अधिक पैदावार लेकर के किसान भाई देखते हैं मार्केट में रेट भी इसका कितना अच्छा खासा मिलता है, तो कभी भी 40-30 रुपए से कम नहीं होता है। तो इससे बहुत अच्छी पैदावार मिलती है और बहुत अच्छा इसे किसान भाई फायदा ले सकते हैं।
0: तो डॉक्टर साहब, अभी तो आपने ये बताया कि अगर खेती करना चाहते हैं बिहार में तो इसकी क्या स्थिति है, मतलब कि कैसे पैदावार बढ़ा करके आप जो आय है उस अच्छी आय प्राप्त कर सकते हैं। अब विशेषता की ओर बढ़ते हैं डॉक्टर साहब, तो क्या कुछ विशेषताएं हैं परवल को लेकर, उसके बारे में थोड़ा बताएं।
1: देखिए, परवल एक ऐसी फसल है जिसको अगर बिहार की दृष्टि से देखिए या वैसे भी न्यूट्रिशन की दृष्टि से देखिए, पोषण तत्व की दृष्टि से देखिए, बीमारियों की दृष्टि से देखिए, तो हर एक दृष्टि से देखिए, तो उसकी अच्छाई को देखते हुए, उसके फायदे को देखते हुए इसको हम जो है ग्रीन गोल्ड ऑफ दियारा भी बोलते हैं। ये दियारा लैंड का हरा सोना भी इसको बोलते हैं, किंग ऑफ वेजिटेबल भी, सब्जियों का राजा भी इसको बोलते हैं।
0: अच्छा।
1: और ये ग्रीन पोटैटो भी बोलते हैं इसको, इसको हरा पोटैटो भी बोलते हैं। इसकी इतनी अहमियत है, खासियत आप देखिए, ये अगर न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए तो इसमें एनर्जी कैलोरी बहुत कम होती है। तो जब एनर्जी बहुत कम होती है तो इसके शुगर के पेशेंट भी, ये आप देखते हैं किसी को फीवर आ जाता है, बुखार आ जाता है, तो उसमें भी परवल की सब्जी को जनरली रिकमेंड किया जाता है कि आप परवल का चोखा बनाइए, भरता बना के खाइए, या परवल की आप सब्जी बना के खाइए, इसलिए उसमें कैलोरी कम है। दूसरी चीज़ अगर देखिए, आजकल जो हेल्थ कॉन्शियस आदमी होता है फैट की बात करता है, आलू जैसे खा लिया कहते नहीं बड़ा फैटी है आलू, जबकि फैट उसमें नहीं होता है, मिसकंसेप्शन है। उसको हम रोस्टेड करते हैं तब होता है। तो ऐसे पोटैट इसमें पॉइंटेड गार्ड में परवल में भी देखिए 0.3% फैट बिल्कुल नहीं है। तो इसलिए जो जिनका भी मोटापा अगर बढ़ रहा है उस आदमी को भी कहते हैं कि हम आप परवल की सब्जी खाइए, आपके मोटापा को कम करेगा। वेट लूजर है, ये इम्यूनिटी क्रिएट करता है। अभी आज के समय जो COVID-19 के समय आप देख रहे हैं, लोग इम्यूनिटी बूस्टर हर चीज़ें लिया करते हैं, तो ये ऐसी एक फसल है जो इम्यूनिटी बूस्टर है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में होता है, जैसे विटामिन ए की बात करें, विटामिन सी की बात करें, इसमें आयरन की बात करें, प्रोटीन देखिए इसमें 2 ग्राम होता है, इसमें फाइबर जो ऐसी चीज़ है जो कि आपको मार्केट से नहीं मिलती है, ये सब्जियों और फलों से ही फाइबर मिलती है। तो इसमें 3 ग्राम लगभग फाइबर होता है, जो कि अगर न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ देखा जाए, पोषक तत्व की तरफ से देखा जाए, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है फाइबर का होना उसमें
0: जी।
1: इसके अतिरिक्त हमारे पास विटामिन सी जो देखते हैं, जो स्कर्वी रोग से लड़ने की या ठंड से कोल्ड से लड़ने की क्षमता रखता है, वो भी इसमें भरपूर मात्रा में पाई जाती है। तो ये सारे पोषक तत्व है जो कि जो है
0: परवल में, हाँ
1: परवल में पाए जाते हैं, जो हमारे इम्यूनिटी बूस्टर हैं, हमको सर्दी जुकाम खांसी ये सब से बचाते भी जाते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, प्रोटीन हमको देते हैं, कम एनर्जी देते हैं, इसलिए इसको जो है वेट लूजर भी कहा जाता है। तो ये सब सारे इसके गुण है जिसके आधार पे इसको हम प्रयोग में लाते हैं
0: जी। और बिहार में बहुत सारे लोग पसंद करते हैं इसे, खास तौर पर अगर मैं बात करूं परवल की, तो परवल के बहुत सारे व्यंजन भी बनाए जाते हैं, जैसा कि डॉक्टर साहब ने अभी आपको बताए हैं। और पोषक तत्वों की बात की डॉक्टर साहब ने कि इसमें बहुत सारे गुण हैं, इम्यूनिटी बूस्टर है, विटामिन सी पाया जाता है, और अभी सबसे ज़रूरी है हमारे लिए कि हम अपनी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसे बरकरार रखें इस सिचुएशन में। तो इसलिए परवल की जो विशेषताएँ हैं वो तो आप समझ ही गए होंगे। डॉक्टर साहब, खेती की ओर बढ़ते हैं, तो किस समय में परवल की खेती की जाती है और साथ ही क्या प्रक्रियाएं इसमें शामिल होती हैं इसकी खेती में, वो भी बता दें हमारे श्रोताओं।
1: देखिए, परवल की खेती, बहुत बढ़िया प्रश्न आपने कहा, परवल की खेती का देखिए अब ये बहुत उपयुक्त समय आ गया है। हाँ देखिए, परवल लगाने का सबसे उपयुक्त समय जो होता है वो जुलाई अगस्त सितंबर, ये 3 माह जो बहुत ही महत्वपूर्ण है लगाने के लिए। लेकिन दिक्कत क्या होती है, इस समय में इसमें फलत भी बहुत तगड़ी होती है, बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए इसमें कोई भी किसान अपने लतेर को काट करके नहीं देता है लगाने के लिए। और इसमें प्रोपोगेशन जो होता है वो लतेर से होता है, इसकी कटिंग काट करके ही हम लगाते हैं, तो कटिंग काटेंगे तो हमारी फसल नष्ट हो जाएगी। तो जुलाई अगस्त सितंबर ये 3 महीना बहुत ही फलन देता है, इसलिए किसान भाई इसमें काटता नहीं है। तो इसके लगाने में अगर कहिए जहाँ पानी जुलाई अगस्त सितंबर तक जो पूरा पानी भर रहता है, अक्टूबर में रिसीट होता है पानी जो है, तो अक्टूबर नवंबर में हम लगाते हैं इसे दियारा लैंड में। तो इसके लगाने का सबसे अच्छा समय अगर उस दृष्टि से देखा जाए, हमारी फलत भी कम ख़त्म हो जाती है, हमारे पास लतेर भी बच जाती है, तो ये अक्टूबर नवंबर का महीना ये सबसे बेस्ट है। अक्टूबर सबसे बेस्ट है, नवंबर के महीने में जाने में आपकी ठंडी बढ़ जाएगी, जैसे ठंडी बढ़ेगी उसमें स्प्राउटिंग नहीं हो पाएगी। तो ये माह जो है आपका अक्टूबर का, इसको लगाने के लिए अभी ये बहुत उपयुक्त समय है। आप इस समय से आप कटिंग ले जाइए और कटिंग ले जा करके आप अपने खेत पे लगा दीजिए। इसमें लगाने के लिए, इसमें लगाने के तमाम तरीके हैं, इसमें आप मचान विधि भी लगाते हैं, टेलिस विधि भी लगाते हैं, फ्लैट में भी लगाते हैं। तो जो किसान भाई जो है इस समय ले जा रहे हैं, पहले आप उसके लिए आप जो है पिट तैयार कर लीजिए। तो आप 2x2 मीटर पे तैयार करिए या 2x1 मीटर पे तैयार करिए। 2x2 होगा 2 मीटर से लेकर के 2 मीटर तक जो है कतार से कतार की दूरी, 1 सेंटीमीटर 1 मीटर, 1 मीटर पौधे से पौधे की दूरी और कतार से कतार की दूरी 2 मीटर। तो इस रेशियो में आप लगाएंगे तो लगभग आपका जो है 2500 पौधे प्रति हेक्टेयर आपको पड़ेंगे, यानी 5000 पौधे जो है प्रति हेक्टेयर पड़ेंगे। अगर 2x2 पे लगाएंगे तो 2500 पौधे आपके प्रति हेक्टेयर पड़ेंगे। तो आपको जहाँ भी लगाना है, चाहे 2x2 मीटर पे लगाना है या 2x1 मीटर पे लगाना है, जहाँ भी आपको लगाना है आप जो है वहाँ 1x1x1 1x1x1 क्यूबिक सेंटीमीटर का आप गड्ढा खोद लीजिए। उस गड्ढे में आप जो है गोबर की खाद लीजिए, 2 से 3 किलो आप गोबर की खाद लीजिए, थोड़ा सा उसमें बालू मिलाइए, थोड़ी सी आप नॉर्मल मिट्टी ले लीजिए और मिट्टी ले करके आप उसमें थोड़ा सा आप जो है फ्यूरा डाल डालिए, 2 ग्राम एटलीस्ट 2 ग्राम जो है पर पिट जो है, 200 ग्राम अगर संभव है तो आप जो है नीम की खली डालिए। तो ये सब डाल करके उस पिट को आप जो है भर दीजिए, पिट को भर दीजिए, और जिससे उस पिट को भर देने के बाद से उसमें आप जो है लतेर लीजिए कम से कम 80 सेंटीमीटर का, 80 सेंटीमीटर लंबी आप लतेर ले लीजिए और उसको अंग्रेजी के 8 के आकार का बना लीजिए। और अंग्रेजी के 8 के आकार का बनाने के बाद जो है उसी पिट में जो है उसको 6 इंच गहराई पे जो है आप जो है बीच वाला पोर्शन अच्छी तरह से उसको दबा दीजिए। साइड से आप चाहे तो हल्का हल्का जो थोड़ा बहुत दिखाई पड़े उतना आप उसको छोड़ सकते हैं, लेकिन बीच से उसको खूब अच्छी तरह से दबाइए। इतना उसके साथ कोई मरोवत मत करिए, इतना ज़बरदस्त दबाइए उसको ताकि कहीं से एयर उसमें पास न करने पाए। जब एयर पास कर जाए, पता चला कि आपने लगाया और उसमें सिंचाई किया, तो सिंचाई करने के बाद जैसे उसमें एयर पास हो जाएगा तो हवा पास होने के बाद उस जड़ को सुखा देगा। तो कोशिश ये करना है कि उसका संबंध मिट्टी से बहुत अच्छा हो जाए। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है कि दबाने में कोई कंजूसी नहीं करनी है, उसको खूब अच्छी तरह से दबाइए जिससे सॉइल का और उस लतेर का कंटेक्ट बहुत बढ़िया हो सके
0: जी।
1: अब उसको दबाने के बाद आप उसको जो है आप जो है ढक दीजिए, पुआल से या किसी से ढक दीजिए और हल्का सा उसमें फवारे से इरिगेशन कर दीजिए। और ये इरिगेशन जो है 2-3 दिन तक आप करते रहिए सुबह शाम जो है, जिससे आपको हल्का हल्का ज़्यादा पानी नहीं देना है इसमें जो है, जिससे उसके स्प्राउटिंग होने में सुविधा हो। इसको थोड़ी सी गर्मी मिलती है, जैसे पुआल आप डाल देते हैं थोड़ी सी गर्मी मिलती है, स्प्राउटिंग नमी मिलती है, प्रॉपर मॉइस्चर मिलता है। तो ये जो है अभी ये निकल जाएगा बड़ी आसानी से, इसमें स्फुटन हो जाएगा। अब ये है कि जब ये अक्टूबर में आप इसका स्फुटन हो जाएगा, इसमें से कल्ले निकल जाएंगे, स्प्राउटिंग जब हो जाएगी, तो इसके लिए सबसे क्रिटिकल मंथ जो होता है वो दिसंबर जनवरी, नवंबर दिसंबर जनवरी। नवंबर में थोड़ा सा गर्मी रहती है लेकिन दिसंबर जनवरी में बिल्कुल गर्मी नहीं रहती, एकदम ठंडी रहती है। और ठंडी इसके लिए ये बर्दाश्त नहीं करता है, ठंडी फ्रास्ट तो बिल्कुल नहीं बर्दाश्त करता। तो इस 2 महीने में आप उसको बचाना होगा आपको। तो बचाने के लिए काम क्या करना होगा आपको जो है, वर्मी कंपोस्ट हो या गोबर की सड़ी खाद हो तो उसके थाले के आसपास थोड़ा सा डाल दीजिए, जिससे वहाँ का टेम्परेचर हमेशा बनाए रहेगा। और ऊपर से हल्का सा पुआल का भी आप चाहें तो डाल सकते हैं, जिससे उसके ऊपर जब फ्रास्ट का मौसम देखिए तो या ठंडा बहुत लगने वाला हो तो उस समय थोड़ा सा उसको जो है पुआल या किसी से ढक दीजिए या हल्की सी उस पर सिंचाई कर दीजिए जिससे उस पर ठंडी का असर ना पड़े, हल्का हल्का सिंचाई कर दीजिए जिससे उस पर ठंडी का असर ना पड़े। तो ये दो महीना बचा के ले चले जाइए, जैसे ही गर्मी का महीना आएगा आपका फरवरी आनवर्ड, जैसे ही फरवरी आएगा थोड़ा बहुत टेम्परेचर जब जैसे निकलना शुरू हो जाएगा तो इससे जितनी भी नोट्स है उसमें 7-8 नोट आपने बताया हमने कि 80 सेंटीमीटर आपने लंबा ले लिया था और उसमें कम से कम 8 से 10 नोट उसमें थे, तो जितने नोट से सबसे आपकी जो है बहुत बढ़िया उसमें से कल्ले निकलने शुरू हो जाएंगे या कल्ले पहले से निकल गए हैं तो उसकी ग्रोथ होनी शुरू हो जाएगी और ये आपकी फरवरी शुरू से ही निकलना शुरू हो जाएगा और मार्च तक आपकी फ्रूटिंग में फसल आ जाएगी बहुत अच्छी। और मार्च के बाद आप हार्वेस्टिंग शुरू करिए और 1 सप्ताह के अंतराल पे इसमें हम हार्वेस्टिंग करते हैं, जैसे जैसे अगर ज़्यादा छोड़ देंगे तो उसमें पकने की संभावना रहती है, तो 1 सप्ताह के अंतराल पे आप इसकी हार्वेस्टिंग करते जाइए, जो मेच्योर है खाने लायक है टेंडर है आप उसको हार्वेस्ट करिए और बाकी जो छोटे हैं उसको आप छोड़ दीजिए फिर बढ़ने दीजिए 1 सप्ताह बाद उसमें फिर आप हार्वेस्टिंग कर लीजिए।
0: जी, तो ये कुछ प्रक्रियाएं थीं यहाँ पर डॉक्टर साहब ने आपको बताई हैं कि कैसे आपको परवल की खेती करनी चाहिए। और हमारे बहुत सारे किसान भाई जो हैं परवल की खेती करने में रुचि भी रखते हैं क्योंकि जो बिहार में अगर सब्जियों की बात करें तो परवल हर लोग जो हैं इसे पसंद करते हैं और इसकी डिमांड भी बहुत ज़्यादा होती है मांग बाज़ार में। डॉक्टर साहब ये तो बातें हो गई खेती की, लेकिन प्रजातियाँ किस प्रकार की हमें चुननी चाहिए, कौन कौन सी प्रजातियाँ हैं उनके बारे में थोड़ी जानकारी दे।
1: देखिए परवल की बहुत ज़्यादा प्रजातियां तो नहीं, बहुत लिमिटेड प्रजातियां हैं इसकी जो है। अक्सर किसान भाई क्या करते हैं, जाते हैं वेस्ट बंगाल, बंगाल से ही इसको ले आते हैं, जैसे कि हमारे जो है लेकिन उस समय तब उनको परवल की लतेर मिलती है जब उसकी क्राप ओवर हो जाती है, जब फलत नहीं रहती है, तो ऐसे में उस फसल में फलत है या नहीं है वो लेके चले आते हैं अपने यहाँ लगाते हैं, पता चला उनकी फसल फ्लॉप हो जाती है। तो ऐसे में प्रजातियों का चयन जो है बड़े सोच समझ के करना है, कम से कम एक फलन अवस्था में जब पौधा हो तो किसान भाई को चाहिए कि वो जा करके एक बार जो है खेत पे विजिट करें, देख लें कि उनके पसंद की कौन सी प्रजाति अच्छी है और उसी प्रजाति का चयन करें। तो जैसे कुछ प्रजातियाँ जो इम्पोर्टेंट, जैसे राजेंद्र परवल 1 है, राजेंद्र परवल 2 है, स्वर्ण रेखा है, स्वर्ण अलौकिक है, नरेंद्र परवल 260 है, नरेंद्र परवल 390 है, तो इस तरह की ये प्रजातियाँ हैं। नीमिया भी एक प्रजाति इसमें आती है, तो ये सब प्रजातियाँ हैं जिसको आप जिसका आप चयन कर सकते हैं, अच्छी प्रजातियाँ हैं। लेकिन बिहार किसी विश्वविद्यालय के द्वारा कुछ प्रजातियों का चयन किया गया है, जैसे इसमें BRPG 12-1 है जो सफ़ेद रंग की होती है और बड़े आकार की, बड़े लंबे आकार की होती है, कम से 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है, जिसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है इस समय जो है। तो आप ऐसे प्रजातियों को देकर के 12-9 है जो हम लोग अभी सिलेक्शन में लिए हैं, बहुत से किसान के यहाँ फील्ड पे भी लगा हुआ है, तो आप इन प्रजातियों को देख करके आप इनमें से सिलेक्शन कर सकते हैं और आप अपने खेत के लिए आप चुनाव कर सकते हैं जो आपके क्षेत्र के लिए विकसित की जा रही है और इसी क्षेत्र के लिए वो ज़्यादा उपयुक्त है।
0: जी,
1: तो इन प्रजातियों का सिलेक्शन करके आप अपनी पैदावार बढ़ा सकते हैं।
0: जी, तो ये तो बात हो गई कि किस प्रकार की प्रजातियां आपको चुननी है, कैसी चुननी है। अब खाद और उर्वरक की बात करते हैं डॉक्टर साहब की, किस प्रकार की खाद और उर्वरक और कैसे देने चाहिए, किस समय देने चाहिए कि जो बढ़वार है वो अच्छी हो।
1: देखिए अभी हमने बताया था कि जब इसको आप लगा रहे हैं तो पिट में ही इसको आप लगाएंगे, गड्ढा खोद करके 1 क्यूबिक फीट का आपने गड्ढा खोद लिया है, तो 1 क्यूबिक फीट गड्ढे में जो है हमने बताया था कि आप जो 1 से 2 किलो आप जो है गोबर की खाद ले लेंगे और उसके बाद से थोड़ा सा ये आपका जो है नत्रजन इसमें जो देते हैं 90-60-60 के रेट्स देते हैं किलो केजी पर हेक्टेयर के हिसाब से
0: जी।
1: तो उसमें जो है 9 ग्राम का ये पर पिट जो है आप जो 9 से 10 ग्राम पर पिट आप जो नाइट्रोजन जो है 6 से 7 ग्राम आपका जो है फास्फोरस एंड पोटास इस तरह से उसको मिला करके जो है और उसमें नीम की खली 200 ग्राम जो है फ्यूराडान ये सब मिला करके आप गड्ढे को भरते हैं तो ये उसका फर्टिलाइजर रिक्वायरमेंट है और ये आप देंगे इसका आधा नाइट्रोजन का मात्रा जो आप इसी समय जब बुआई जब करते हैं उसी समय दे देंगे लेकिन फास्फोरस और पोटास की पूरी मात्रा दे देंगे। लेकिन जैसे जनवरी का महीना आता है जनवरी के लास्ट में यानी फरवरी के फर्स्ट वीक में उस समय जब कल्ले निकलने लगते हैं तो उस समय थोड़ा सा ज़रूरी हो जाता है कि थोड़ा सा फर्टिलाइजर रिक्वायरमेंट चाहिए जाके उससे ग्रोथ भी फास्ट हो तो जो आपका बचा हुआ नत्रजन है तो उसको उस समय आप जो बचे हुए नत्रजन को उस पिट के चारों तरफ जो है हल्का सा गोबर की खाद में मिला करके पिट के चारों तरफ उसको दे दीजिए, तो उससे आपकी ग्रोथ बहुत फास्ट हो जाएगी और आपकी फसल बहुत तेज चलेगी
0: जी। यहाँ पर खाद और उर्वरक आपने जाना कि आपको किस प्रकार देने हैं, और कई बार समस्याएं भी आती है परवल की खेती के दौरान, डॉक्टर साहब तो जो मुख्य समस्याएं हैं उनके बारे में हम जानना चाहेंगे और कैसे हमारे किसान भाई उनका निदान करें।
1: देखिए किसान भाई, बहुत बढ़िया प्रश्न आपने किया। किसान भाई अक्सर जो पूछते हैं कि हमारे खेत में जो फूल तो बहुत आ रहे हैं लेकिन फल नहीं आते हैं, एक फलन की समस्या इस क्रॉप में होती है, और वह क्यों होती है? किसान भाई इसको बहुत अच्छी तरह से जान लें। जनरली होता क्या है कि इसमें दो तरह का फूल आता है, एक नर फूल अलग पौधे पर आता है और मादा फूल अलग पौधे पर आता है। तो नर फूल जो आता है उसमें फल नहीं लगता है, केवल फूल फूल ही रहता है, और मादा फूल पौधा जो होता है, जो मादा फूल आती है उसी पे केवल फल लगता है। तो किसान भाई समझते क्या है जनरली जो है कि जिस पे फल नहीं लगता है केवल फूल आया है वो समझते हैं कि ये बेकार पौधा है और उस पौधे को उस खेत से उखाड़ करके बाहर फेंक देते हैं। तो इस बात का किसान भाई ध्यान रखें कि ये ऐसा पौधा है जिसमें नर और मादा पौधा दोनों अलग अलग होता है। तो जब तक नर और मादा पौधे का अनुपात सही सही उस खेत में नहीं होगा तो आपके फसल में फूल तो आएगा लेकिन फल नहीं आएगा। वो हल्का छोटा सा जो फूल रहेगा फल के रूप में जो रहता है, मादा फूल की पहचान होती है कि आप जब भी फूल को देखिएगा तो नीचे फल लिए हुए निकलता है, जैसे आप लौकी में देखते हैं, कद्दू में देखते हैं, कदीमा में
0: जी,
1: तो वो नीचे फल लिए हुए निकला रहता है। लेकिन जो नर फूल होता है वो फल लिए हुए नहीं निकलता है, वैसे सीधे निकलता है। तो ये पहचान लीजिए, तो ये पहचान करके उसका अनुपात आप जो है 1:10 जरूर रखिए। जब तक आप 1:10 मतलब एक पौधा अगर नर का रखते हैं तो 10 पौधा मादा का जरूर रखिए। जब नर और मादा का अनुपात संतुलित रहेगा ऐसे स्थिति में वहाँ निषेचन क्रिया सही तरीके संपन्न होगी और उसमें फलन की जो प्रक्रिया है वो तेज होगी। दूसरा किसान भाई एक और कर सकते हैं, उस खेत में आप मधुमक्खी पालन भी कर सकते हैं। मधुमक्खियाँ जो थी परागण का काम भी करती हैं, तो मधुमक्खी भी आपको मिलेगी और परागण का परागण भी होगा, उससे कोई नुकसान नहीं होगा। तो ये मेजर समस्या है कि सेक्स रेशियो जो है, जो अनुपात है उसका नर और मादा का अनुपात है, उसके संतुलन को बनाए रखना जो है बहुत जरूरी है इस चीज़ का विषय। दूसरी चीज़ ये होती है कि इसमें एक जो है फल मक्खी भी आती है, तो फल मक्खी आती है तो उसके लिए किसान भाई ये कर सकते हैं, आप जैसे फेरोमोन ट्रैप आता है, आप फेरोमोन ट्रैप जो है 1 एकड़ में 8-10 जगह आप लगा दीजिए। वो फेरोमोन ट्रैप में जितने मेल उसके जो है होते हैं फ्रूट फ्लाई के, वो सब जाके फल मक्खी के जितने नर होते हैं उसमें जा करके जो है मर जाएंगे। जो ट्रैप होता है उसमें नीचे पॉइजन भरा होता है, तो वो और मेल अट्रैक्टेंट होता है वो, तो वो अट्रैक्ट होकर के जाता है वहाँ पे जो है।
0: अच्छा,
1: और अट्रैक्ट होकर जैसे जाता है उसके अंदर पॉइजन भरता वहीं वो मर जाता है। तो जब मेल की पॉपुलेशन खत्म हो जाती है तो उसका फिर प्रसारण आगे जो है नहीं हो पाता है, आपकी फसल सुरक्षित रह जाती है
0: जी।
1: तो इस चीज़ का ध्यान रखें, एक तो फल मक्खी की व्यवस्था आप जो ट्रैप का कर लें और दूसरा नर और मादा का अनुपात जो है बराबर मात्रा में बनाए रखें।
0: तो ये कुछ समस्याएं होती हैं जिनका हल डॉक्टर साहब ने आपको बताया, और इसके साथ ही परवल की जो वैज्ञानिक खेती है यहाँ पर पूरी तरीके से आपने जाना कि आप कब खेती कर सकते हैं, प्रजातियाँ क्या क्या होती हैं, खाद और उर्वरक आपको किस तरीके से देने चाहिए, विशेषताओं के बारे में भी आपने जाना। तो आज के लिए इतना ही, अगले दिन और एक खास विषय के साथ हम हाजिर होंगे इसी फ्रिक्वेंसी 90.8 MHz पर। सुनते रहें उन्नत कृषि कार्यक्रम। नमस्कार। उन्नत कृषि।

तैयार है आम के अद्भुत संसार से रूबरू होने के लिए। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर लेकर आ रहा है राष्ट्रीय आम समागम 2026, जिसका आयोजन 27 से 28 जून तक किया जाएगा। आइए और देखिए देश भर की सैकड़ों आम किस्मों की आकर्षक प्रदर्शनी, जहां स्वाद, सुगंध और रंगों का अनूठा संगम आपका स्वागत करेगा। इस विशेष आयोजन की थीम है स्वाद, संस्कृति और समृद्धि का संगम। आम समागम में किसानों, वैज्ञानिकों, उद्यमियों और आम प्रेमियों को एक ही मंच पर आने का अवसर मिलेगा। कार्यक्रम के दौरान आयोजित होगी राष्ट्रीय कार्यशाला, जिसका विषय है आधुनिक तकनीक से गुणवत्ता युक्त उत्पादन, भंडारण एवं प्रसंस्करण। देश के प्रतिष्ठित विशेषज्ञ आम उत्पादन, मूल्य संवर्धन और प्रसंस्करण की आधुनिक तकनीकों पर अपने अनुभव साझा करेंगे। इस अवसर पर आयोजित होगा किसान वैज्ञानिक सम्मान समारोह, जिसमें बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश के उत्कृष्ट आम उत्पादकों को बेस्ट मैंगो फार्मर अवार्ड प्रदान किया जाएगा। महिला आम उत्पादकों एवं मूल्य संवर्धन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिला उद्यमियों के लिए भी विशेष सम्मान और नगद पुरस्कार की व्यवस्था की गई है। और अब आपके लिए एक सुनहरा अवसर, यदि आपके बाग में उत्कृष्ट गुणवत्ता के आम हैं या आपके पास किसी विशेष किस्म के आम उपलब्ध हैं, आप भी आम प्रदर्शनी में अपनी आम की किस्मों को प्रदर्शित कर सकते हैं। आपकी प्रविष्टियों का मूल्यांकन विशेषज्ञों द्वारा किया जाएगा और चयनित प्रतिभागियों को आकर्षक पुरस्कार एवं नगद राशि से सम्मानित किया जाएगा। और हाँ, आम प्रेमियों के लिए होगा एक विशेष आकर्षण, मैंगो ईटिंग प्रतियोगिता। इस रोमांचक प्रतियोगिता के विजेताओं को भी आकर्षक नगद पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। तो देर किस बात की, अपने श्रेष्ठ आमों के साथ आइए, प्रदर्शनी में भाग लीजिए, विशेषज्ञों से सीखिए, नई तकनीकों को जानिए और आकर्षक पुरस्कार जीतने का अवसर पाइए। 27 से 28 जून राष्ट्रीय आम समागम 2026 बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है।

सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 24 से 28 जून के दौरान भागलपुर, बांका, मुंगेर, जमुई इन जिलों में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ हल्की वर्षा होने की संभावना है। दक्षिण बिहार के अन्य जिलों में 24 से 25 जून के दौरान लू चलने की संभावना है। इसके बाद इन जिलों के एक दो स्थानों पर बादल गरजने के साथ हल्की वर्षा की संभावना है। अधिकतम तापमान 37 से 39 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 26 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 60 से 70 प्रतिशत और दोपहर में 25 से 30 प्रतिशत रहने की संभावना है। अनुमान है कि 24 से 28 जून के दौरान 5 से 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दक्षिण पूर्वी हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए, जो किसान भाई बहन धान की खेती करना चाहते हैं उन्हें बता दे, वर्तमान में मानसून की कमजोर स्थिति को देखते हुए किसान भाई बहनों को ये सलाह दी जाती है कि ऊंची भूमि में धान की खेती ना करें। जिन किसानों के पास सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है वे मध्यम अवधि वाले धान की किस्मों का बिचड़ा गिराएं और बीज स्थली में नमी बनाए रखें, इस बात का विशेष ध्यान रखें। बीज स्थली यानी कि नर्सरी में नमी बनाए रखने के लिए जरूरत के हिसाब से जीवन रक्षक सिंचाई जरूर करें और खास तौर से ऊंची भूमि में धान के स्थान पर वैकल्पिक फसलों की खेती पर विचार करना अधिक उपयुक्त होगा। जो मक्का की खेती करना चाहते हैं उन्हें बता दे, खरीफ मक्का की बुआई तभी करें जब आसमान साफ हो और खेत की जुताई में 10 से 15 टन गोबर की सड़ी खाद प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें और ध्यान दें कि बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 30 किलोग्राम नेत्रजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटाश डालना जरूरी होता है। किसान भाई बहनों आपको बता दें, अनुशंसित मक्का की किस्में हैं सुवान, देवकी, शक्तिमान 1, शक्तिमान 2, राजेंद्र शंकर, मक्का 3, गंगा 11। जो मूंग की खेती करते हैं उन्हें बता दे, मूंग की तैयार फलियों की तुड़ाई कर ले और हरी खाद के लिए उसके पौधों को मिट्टी पलटने वाले हल से जमीन में गाड़ दे। यह आपके खेत और आपके खेत की मिट्टी के लिए फायदेमंद होता है। जिनके खेत में सब्जियां लगी हैं उन्हें बता दे, भिंडी, कद्दू, खीरा, नेनुआ और लौकी की फसलों में निराई गुड़ाई जरूर करे, साथ ही खरपतवार नियंत्रित करना भी जरूरी होता है। आपको बता दे कि पत्ती खाने वाली सुंडियों और फल छेदक कीटों की नियमित निगरानी करते रहे और अगर इन का प्रकोप दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में डाइमेथो 830 इसी दवा की 1 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान दे, किसी भी प्रकार का छिड़काव तभी करें जब आसमान साफ हो। किसान भाई बहन आपको बता दे कि खरीफ प्याज की खेती के लिए नर्सरी यानी कि बीज स्थली की तैयारी तभी करें जब आसमान साफ हो और स्वस्थ पौध के लिए नर्सरी में गोबर की खाद जरूर डालें। अच्छे और स्वस्थ फसल के लिए प्याज की बीज की व्यवस्था प्रमाणित स्रोत से ही करें और बीज गिराने के पहले बीजोपचार करना बहुत जरूरी होता है। बीजोपचार करने से पौधे स्वस्थ और फसल अच्छी होती है। खरीफ प्याज के लिए बीज की दर 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दे, लीची की फल तुड़ाई के बाद बगीचों में आवश्यक छटाई जरूर कर ले जिससे पेड़ों के भीतर पर्याप्त धूप और हवा का संचार हो सके। साथ ही आपको बता दे कि बगीचे में गिरे हुए पत्तों, सूखी शाखाओं और अन्य पौध अवशेषों को इकट्ठा कर हटा दे, इससे कीट और रोगों का प्रकोप कम होता है और पेड़ों की स्वस्थ वृद्धि और विकास को बढ़ावा मिलता है। तो ध्यान दे कि बगीचे में गिरे हुए पत्तों, सूखी शाखाओं और ऐसी कोई भी अन्य जो पेड़ के अवशेष हो उन्हें इकट्ठा करके हटा दे। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दे, दुधारू पशुओं को गर्मी के प्रभाव से बचाने के लिए छायादार और हवादार स्थानों में रखें और उन्हें पर्याप्त मात्रा में साफ और ताजा पीने का पानी उपलब्ध कराएं। पशुपालक भाई बहन ध्यान दे, गला घोटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए टीकाकरण कराना बहुत जरूरी होता है, इसलिए सभी दुधारू पशुओं में टीकाकरण जरूर कराएं। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 एफएम ग्रीन के साथ बने रहें।

आप हर समय थकान महसूस करते हैं, छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है, ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है, बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर आप सबका स्वागत करता है स्वाद संस्कृति और समृद्धि के संगम राष्ट्रीय आम समागम सह कार्यशाला में। तारीख याद रखें 27 से 28 जून 2026।

क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।

बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार और आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई में। दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि सरकार ने HPV का टीका सभी 14 साल से ऊपर के बच्चों के लिए मुफ्त कर दिया है। HPV का टीका लगाना शुरू तो हो गया है, लेकिन अभी भी बहुत सारे हमारे श्रोताओं के मन में बहुत सारे सवाल हैं। तो आज हम बात करेंगे HPV टीके की और कोशिश रहेगी कि आपके मन में जो भी सवाल हैं उनके जवाब भी हम दे सके। जब भी कोई पहल होती है, खास तौर पर सेहत के मामले में, तो हमारे परिवारजनों के मन में डर रहता है और कई सारे सवाल भी रहते हैं। खासकर जब सोशल मीडिया हमारे पास है और सोशल मीडिया और मोबाइल पर चल रही बहुत सी बातें होती है, बहुत सी अफवाहें होती है, तो उन अफवाहों से लोगों के मन में उलझन और सवाल दोनों ही पैदा होते हैं। इसलिए आज हम कुछ आम सवाल उठाएंगे और आसान भाषा में उनके जवाब देंगे। तो बस आप हमारे साथ अंत तक बने रहिए, आपको आज HPV टीकाकरण से जुड़े ढेर सारे सवाल मिलने वाले हैं। इसलिए क्योंकि हमने बहुत से सवाल इकट्ठे किए हैं और एक के बाद एक हम उन सवालों को पढ़ेंगे और जवाब भी देंगे। तो पहला सवाल है, HPV टीका किस लिए लगाया जाता है? दोस्तों, HPV टीका सर्वाइकल कैंसर यानी बच्चेदानी के मुंह के कैंसर से बचाव में मदद करता है। ये कैंसर महिलाओं में होने वाली गंभीर बीमारियों में से एक है। अगर समय पर बचाव हो जाए तो बीमारी का खतरा काफी कम किया जा सकता है। इसलिए बहुत जरूरी होता है कि महिलाएं HPV टीका जरूर लगाएं। और दूसरा सवाल है कि क्या HPV टीका सुरक्षित है? जी हाँ, बिल्कुल सुरक्षित है। HPV टीका सुरक्षित माना जाता है और ये दुनिया के कई देशों में लगाया जा रहा है। ये कोई नई बात नहीं है। टीका लगने के बाद हाथ में हल्का दर्द, सूजन, हल्का बुखार, सिर दर्द या चक्कर आ सकते हैं और ये सामान्य बातें हैं। आमतौर पर जल्दी ठीक हो जाती है और कोई भी टीका आप लेते हैं तो ऐसी परेशानी थोड़ी बहुत होती है जो कि कुछ दिनों में ठीक भी हो जाती है। अब तीसरा सवाल, क्या इसका कोई बड़ा दुष्प्रभाव होता है? गंभीर दुष्प्रभाव बहुत दुर्लभ है, यानी कि गंभीर दुष्प्रभाव ना के बराबर होते हैं। इसलिए आप अफवाहों पर भरोसा ना करें कि अगर आप HPV टीका अपनी बच्ची को लगवाएंगे तो उन्हें कोई परेशानी हो जाएगी। और अगर आपके मन में फिर भी कोई सवाल बचते हैं, कोई चिंता होती है, तो आप आशा दीदी, ANM CHO या फिर नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में भी आप बात कर सकते हैं। वो आपको और भी अच्छी तरीके से समझाएंगे कि इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं होता है और बहुत रेयर होता है। चौथा सवाल कि ये टीका बच्चियों को ही क्यों लगाया जा रहा है? देखिए, क्योंकि HPV संक्रमण आगे चलकर सर्वाइकल कैंसर का कारण बन सकता है और ये बीमारी महिलाओं में होती है, इसलिए किशोरियों को, बच्चियों को बीमारी आने से पहले ही सुरक्षा देने के लिए टीका लगाया जाता है। कहते हैं ना कि बाद में इलाज से बेहतर है कि आप पहले ही बचाव कर ले, तो ये टीका बचाव के लिए है। पांचवा सवाल जो बहुत सारे लोगों के मन में उठ रहे हैं और बहुत सारी लड़कियां इस सवाल से चिंतित है कि क्या इससे भविष्य में मां बनने पर असर पड़ेगा? बिल्कुल नहीं पड़ेगा, ये बिल्कुल कोरी अफवाह है। HPV टीका मां बनने की क्षमता पर कोई असर नहीं डालता। ये कैंसर से बचाव के लिए है। बांझपन या कमजोरी से इसका कोई संबंध नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ आपको कैंसर से बचाता है, सर्वाइकल कैंसर से बचाता है। छठा सवाल ये है कि क्या मोबाइल और सोशल मीडिया पर चल रही बातें सही है? बस यही बात तो आपको हम बताने आए हैं कि हर बात जो मोबाइल और सोशल मीडिया पर चल रही है वो सही नहीं होती। कई बार बिना जांचे परखे डर फैलाया जाता है और कई बार कुछ बातें ऐसी होती है जो किन्हीं तक एक पहुंची और उसने अपने पास वाले को दो बातें पहुंचाई, फिर तीन बातें, चार बातें, इस तरीके से बहुत बड़ी चढ़ी बात हम तक पहुंचती है। इसलिए कोई भी बात आप तक सोशल मीडिया या मोबाइल के जरिए पहुंचे तो उसे बिना जांचे परखे उस पर भरोसा ना करें। स्वास्थ्य से जुड़ी जो भी जानकारी होती है वो हमेशा आपको चाहिए कि प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मी या सरकारी स्वास्थ्य केंद्र से ही ले। आपको इन्हीं जगहों से सबसे भरोसेमंद जानकारी मिल सकती है। अब सातवां सवाल कि टीका कब और कहां लगेगा? जी हां, अगर आपके मन के जो भी सवाल हैं और जो उलझन है वो दूर हो गए हैं तो सबसे जरूरी सवाल कि टीका कब और कहां लगेगा, इसके लिए आप अपनी आशा, ANM या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। वहीं आपको सही तारीख, जगह और पात्र उम्र की जानकारी देंगे। तो साथियों, याद रखिए, अफवाह से नहीं,
सही जानकारी से फैसला ले। HPV टीका बेटियों को सर्वाइकल कैंसर से बचाने की दिशा में एक बहुत जरूरी कदम है। सेहत सही लाभ कई की ओर से ये संदेश जनहित में जारी है। आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें। फिलहाल मुझे यानी कि आपकी होस्ट और दोस्त उमा को दीजिए इजाजत, लेकिन जाने से पहले खास बात की, स्वस्थ रहें, खुश रहें और अफवाहों से बचें। नमस्कार।

सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है करियर वॉच कार्यक्रम में। आज हम बातें करने वाले हैं किसी एग्जाम के बारे में नहीं, मैं आपको ये नहीं बताने वाली हूं कि फलाना एग्जाम आने वाला है, उसकी तैयारी कैसे करनी है या कुछ भी। आज हम पूरी तरीके से स्टूडेंट लाइफ के बारे में बात करने वाले हैं, छात्र जीवन के बारे में बात करने वाले हैं, खास तौर से उन स्टूडेंट्स के बारे में बात करने वाले हैं जो अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, अपने सपनों को हकीकत में बदलना चाहते हैं। दोस्तों, ये जो हमारी लाइफ होती है ना, स्टूडेंट लाइफ, खास तौर से छात्र का जो जीवन होता है, वो सबसे महत्वपूर्ण समय होता है। यही वो समय होता है जब हम अपने भविष्य की नींव रखते हैं। इस दौरान जो आदतें हम अपनाते हैं, वही आगे चलकर हमारी सफलता या असफलता तय करती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लक्ष्य की, यानी कि गोल सेटिंग की। दोस्तों, अगर आपके पास कोई लक्ष्य नहीं है तो आप कभी भी सही दिशा में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जाहिर सी बात है ना कि आपने तय ही नहीं किया है कि आपको क्या करना है, तो कल आप किसी और चीज के लिए तैयारी करेंगे, कल आप किसी और चीज के बारे में सोच रहे होंगे। लेकिन जब हमें पता होता है कि हमें किस तरफ जाना है, तो हम उसी तरफ अपने कदम बढ़ाते हैं ना। इसलिए सबसे पहले तो ये तय करना जरूरी होता है कि आपको अपने जीवन में क्या बनना है, डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक या फिर कुछ और भी। जब आपका लक्ष्य साफ हो जाता है तब आपकी मेहनत भी सही दिशा में जाती है। इसलिए सबसे पहले तो जरूरी होता है कि आप अपने स्टूडेंट लाइफ में ही ये तय कर लें कि आपको बनना क्या है, अपने जीवन से आप क्या चाहते हैं। और अब हम बात करते हैं समय प्रबंधन की। समय जो होता है ना, बहुत कीमती होता है। पैसा खो देंगे, कुछ भी खो देंगे तो आपको वो मिल जाएगा, पर समय अगर एक बार चला गया ना तो वो नहीं मिलता। इसलिए हर स्टूडेंट को चाहिए कि वो अपने दिन की एक योजना बना ले, पढ़ाई के लिए समय तय करें, खेलने के लिए समय तय करें और आराम के लिए भी समय निकालें, क्योंकि आराम भी जरूरी है ना, सेहत भी तो जरूरी होती है ना। और अगर आप अपने समय का सही तरीके से उपयोग करना सीख जाते हैं तो सफलता आपके कदम चूमती है। और तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, कंसिस्टेंसी की। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो बहुत स्मार्ट होते हैं, मतलब पढ़ाई में बहुत स्मार्ट होते हैं, लेकिन वो कंसिस्टेंट नहीं रह पाते। आज पढ़ाई की, 3 दिन पढ़ाई नहीं करेंगे, फिर चौथे दिन, पांचवें दिन पढ़ाई की, उसके बाद फिर 3 दिन गायब। तो ऐसा उनके साथ होता है। लेकिन और ये क्या करते हैं कि जब भी पढ़ाई करते हैं बहुत जोश से पढ़ाई करते हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद उनका उत्साह कम हो जाता है और पढ़ाई खत्म। लेकिन आपको पता है ना कछुआ और खरगोश वाली कहानी। खरगोश बहुत तेज था दौड़ने में और कछुआ बहुत स्लो, लेकिन वो धीरे धीरे चलता रहा और खरगोश ने क्या किया, वो रुक गया। चलता रुक जाता, चलता रुक जाता। और ये कहानी हमने बचपन में पढ़ी थी, बचपन में ही हमें सिखा दिया गया था कि कंसिस्टेंसी कितना महत्वपूर्ण है। इसलिए याद रखिए, रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ना एक दिन में बहुत ज्यादा पढ़ने से बहुत बेहतर होता है। रोज पढ़िए, पर लगातार पढ़िए, हर रोज पढ़िए। ये नहीं कि एक दिन पढ़ा, 2 दिन बंद हो गया, फिर 2 दिन पढ़ा, फिर 4 दिन बंद हो गया। ध्यान रखना है कि नियमित अभ्यास ही आपको मजबूत बनाता है। और अब बात करते हैं एकाग्रता की, ध्यान और एकाग्रता की। आज के समय में जब हमारे पास मोबाइल फोन है, अलग अलग तरह के सोशल मीडिया एप्स हैं, गेम्स हैं, तो ये सारी चीजें हमारा ध्यान बहुत आसानी से भटकाते हैं। इसलिए पढ़ाई करते समय इन सारी चीजों से आप दूरी बनाकर रखें, एक शांत जगह पर बैठकर पूरी एकाग्रता के साथ पढ़ाई करें। शुरुआत में ये बहुत मुश्किल होने वाला है, क्योंकि आपको फोन की आदत है या फिर सोशल मीडिया की आदत है, तो आपको लगेगा अगर उसने मैसेज कर दिया तो शायद मैं जवाब नहीं दे पाऊंगी, फिर आगे क्या होगा, अरे किसी का फोन तो नहीं बज रहा होगा, गेम्स में मैं पीछे रह जाऊंगा या फिर गेम्स में मैं पीछे रह जाऊंगी, अरे ये मेरे रेपुटेशन का सवाल है। बहुत सारी बातें आती है, बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस आएंगे, कोई नया गेम आएगा या फिर सोशल मीडिया पे कोई नया पोस्ट, नई कंट्रोवर्सी या फिर फोन पर किसी दोस्त से गपशप, बहुत सारी चीजें होती है। लेकिन आपको इन सारी चीजों से दूरी बनानी है, धीरे धीरे दूरी बनानी है। पहले दिन आप 5 मिनट फोकस कर पाएंगे, अगर आपका फोकस बहुत खराब हो चुका है तो आप पहले दिन 5 मिनट फोकस करेंगे, अगले दिन 10 मिनट। इस तरीके से धीरे धीरे चीजें बढ़ती जाएंगी, धीरे धीरे आपकी आदत और आपका फोकस बेहतर होता जाएगा और एक दिन आप देखेंगे कि लगातार आपने 40-45 मिनट पढ़ाई कर ली है। लगातार 40 मिनट 45 मिनट से ज़्यादा पढ़ाई करनी होती भी नहीं है, फिर 5-10 मिनट का ब्रेक लिया और फिर 45 मिनट या 40 मिनट पढ़ाई की। ये होता है एक हेल्दी तरीका पढ़ाई करने का। लेकिन आज के टाइम पे फोकस बहुत मुश्किल से होता है, तो ध्यान रखें मोबाइल फ़ोन, सोशल मीडिया, गेम्स, इन सारी चीज़ों से एक
टाइम बना ले कि 2 से 3, या फिर आपका अपने हिसाब से कोई भी टाइम आप फिक्स कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको एग्जांपल के लिए बता रही हूँ कि 2 से 3 मुझे इन सारी चीजों का इस्तेमाल नहीं करना है, आपको कुछ भी करना है लेकिन इन सारी चीजों का इस्तेमाल नहीं करना है, तो धीरे धीरे आपका दिमाग इस चीज को एक्सेप्ट कर लेगा कि हाँ इस दौरान मुझे पढ़ाई ही करनी है। और जब आप कंसिस्टेंट रहकर पढ़ाई करते हैं, फोकस के साथ पढ़ाई करते हैं, तो धीरे धीरे आत्मविश्वास भी खुद ही आने लगता है। लेकिन अगर इसके बावजूद आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है, आत्मविश्वास की कमी है, तो फिर आपकी कोई मदद नहीं कर सकता है। इसके लिए आपको खुद की मदद करनी होगी, आपको कहना होगा खुद से, खुद को समझाना होगा कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, ये मैं कर सकती हूँ। और ये छोटा सा जो सेंटेंस होता है ना, ये आपके अंदर बहुत ताकत पैदा कर सकता है, ये आपके अंदर बहुत बड़ी ताकत पैदा कर सकता है। हर रोज जगने के साथ ही आईने में देखकर कहिए कि मैं ये कर सकती हूँ, मुझसे ये होगा और मैं ये करके दिखाऊंगी, मुझे खुद पर भरोसा है। ऐसी कुछ बातें बस 5 मिनट हर रोज सुबह, अगर आपके अंदर आत्मविश्वास की कमी है। और इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण विषय है असफलता। जरूरी नहीं है कि आपके अंदर आत्मविश्वास है, आपने कंसिस्टेंट होकर पढ़ाई की, फोकस्ड रहे आप, टाइम मैनेजमेंट आपने बहुत अच्छे से की और उसके बावजूद आप सफल ही होंगे, जरूरी नहीं है। हो सकता है कि आप असफल हो और फिर क्या होता है, हम घबरा जाते हैं और सोचते हैं कि शायद मैं ही किसी काबिल नहीं हूँ। ऐसा नहीं होता है, जीवन में हर किसी को कभी ना कभी असफलता का सामना करना ही पड़ता है, करना। लेकिन असफलता से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि असफलता से सीख लेनी चाहिए कि कहीं कुछ तो छूट गया होगा ना, या फिर कहीं हमसे कोई कमी नहीं रही है, तो फिर शायद हम इसके लिए नहीं बने हैं, हमारे लिए कोई और रास्ता चुना गया है जिस पर हमें चलना होगा। तो थोड़ा ठहरिए और अपने नए रास्ते की तलाश कीजिए, या फिर अगर आप एक बार और कोशिश करना चाहते हैं तो कोशिश कीजिए, पर घबराइए मत, हारिए मत। असफलता हमें सिखाती है कि हमें कहाँ सुधार करने की ज़रूरत है, और हर असफलता कहते हैं कि आपको सफलता के और करीब और बेहतर तरीके से करीब लेके जाती है। और अभी थोड़ी देर पहले हम स्वास्थ्य के बारे में भी बातें कर रहे थे, तो स्वास्थ्य बहुत ज़रूरी होता है। कहते हैं कि एक स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। अगर आप शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं है, तो फिर पढ़ाई पर आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, आप ध्यान नहीं दे पाएंगे। इसलिए हर रोज थोड़ा सा एक्सरसाइज और सही खानपान और पूरी नींद। जी हाँ, सोशल मीडिया और मोबाइल्स ने और गेम ने भी हमारे नींद को भी बहुत बुरे ढंग से प्रभावित किया है। हम रात रात भर जाग कर इन सारी चीज़ों के पीछे अपना वक्त जाया करते हैं, और फिर हमारी नींद पूरी नहीं होती है, फिर हमारे अंदर बहुत सारी परेशानियां शुरू हो जाती है। अभी फ़िलहाल उन सारी परेशानियों के बारे में बातें नहीं करेंगे, लेकिन एक बात कि अपनी नींद पूरी ज़रूर करें, 7 से 9 घंटे की नींद बहुत ज़रूरी होती है। इसलिए एक्सरसाइज करें, सही खान पान लें और पूरी नींद लें, ताकि आप स्वस्थ रह सकें और आपके स्वस्थ शरीर के अंदर एक स्वस्थ मस्तिष्क का वास हो सके। और इसके साथ ही बहुत ज़रूरी होता है कि आप गुड कंपनी में रहें, अच्छी संगति में रहें, क्योंकि कहते हैं ना कि संगत से गुण आत है और संगत से गुण जात है। इसलिए आप कैसे लोगों के बीच रह रहे हैं, ये भी बहुत प्रभाव डालता है आपके जीवन के ऊपर, आपके सोच के ऊपर। अगर आप फोकस्ड लोगों के साथ रह रहे हैं, पढ़ाई करने वाले लोगों के साथ रह रहे हैं, तो अगर आप रास्ता भटकेंगे भी ना, तो वो आपको रास्ते पर ले आएंगे, वो बातें करेंगे पढ़ाई की, तो आपको भी लगेगा कहीं कुछ तो छूट रहा है ना, मेरी पढ़ाई में तो छूट रही है ना, वो अच्छी बातें करेंगे तो आपके ऊपर भी असर अच्छा होगा। इसलिए हमेशा ऐसे दोस्तों का चुनाव करें जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें, ना कि वो अपने साथ आपको पीछे खींच कर लेकर जाए। और अब हम बात करते हैं मोटिवेशन की। जी हाँ, हर किसी के जीवन में ऐसा समय आता है जब हम निराश हो जाते हैं, ऐसे समय में खुद को मोटिवेट करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप खुद को मोटिवेट कर पाने में नहीं सक्षम हो पा रहे हैं, तो डायरी लिखना शुरू कीजिए और उसमें एक एक पॉइंट को नोट कीजिए। देखिएगा धीरे धीरे आपको खुद के अंदर विश्वास आने लगेगा, 1 दिन में नहीं 2 दिन में नहीं पर हफ्ते भर में तो पक्का आएगा। और आप जब डायरी में लिखेंगे कि ये चीज़ें हुई और मैं अभी बहुत लो फील कर रही हूँ, मैं क्या करूँ इस वजह से मैं लो फील कर रही हूँ, तो लिखते लिखते आपको आधे जवाब मिल जाएंगे। और इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट है आत्म अनुशासन, यानी कि सेल्फ डिसिप्लिन। हमेशा आपको कोई कहने के लिए नहीं होगा कि टाइम हो चुका है, पढ़ाई करने बैठो टाइम हो चुका है, खाना खाने जाओ टाइम हो चुका है, फ़ोन नीचे रख दो सो जाओ, नहीं होगा। या आपको खुद के अंदर खुद ही ये चीज़ लानी होगी, यानी कि आत्म अनुशासन लाना होगा। अनुशासन ही सफलता की कुंजी होती है, और अगर आप खुद को नियंत्रित करना सीख गए तो कोई भी लक्ष्य आपके लिए मुश्किल नहीं होता है। इसलिए आप सेल्फ डिसिप्लिन
को अपना लें, आत्म अनुशासित रहें और अपने लक्ष्य की ओर बिल्कुल अच्छी तरीके से बढ़े। सभी को बेस्ट ऑफ लक। और अगर आपके जीवन का वो फेज चल रहा है जब आपको लग रहा है कि मुझसे नहीं होगा ये, मैं हार चुकी हूँ, थोड़ा रुकिए, डायरी लिखिए, आईने में देखकर खुद से बातें कीजिए और थोड़ा सा वक्त खुद को दीजिए, थोड़ा शांत होकर सोचिए और फिर आगे बढ़ते रहिए। क्योंकि आप आगे बढ़ते रहेंगे तो आपका जीवन किसी ना किसी सही दिशा में पहुंच ही जाएगा। और अब मैं अंत की ओर आगे बढ़ती हूँ और आपसे बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि अपने सपनों को कभी भी छोटा मत समझिए, मेहनत कीजिए, धैर्य रखिए और कभी हार मत मानिए। याद रखिए, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। तो दोस्तों, इसी प्रेरणादायक विचार के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। फिर मिलेंगे एक नए विषय और नई ऊर्जा के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहे। नमस्कार।

तैयार है आम के अद्भुत संसार से रूबरू होने के लिए। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर लेकर आ रहा है राष्ट्रीय आम समागम 2026, जिसका आयोजन 27 से 28 जून तक किया जाएगा। आइए और देखिए देश भर की सैकड़ों आम किस्मों की आकर्षक प्रदर्शनी, जहां स्वाद, सुगंध और रंगों का अनूठा संगम आपका स्वागत करेगा। इस विशेष आयोजन की थीम है स्वाद, संस्कृति और समृद्धि का संगम। आम समागम में किसानों, वैज्ञानिकों, उद्यमियों और आम प्रेमियों को एक ही मंच पर आने का अवसर मिलेगा। कार्यक्रम के दौरान आयोजित होगी राष्ट्रीय कार्यशाला, जिसका विषय है आधुनिक तकनीक से गुणवत्ता युक्त उत्पादन, भंडारण एवं प्रसंस्करण। देश के प्रतिष्ठित विशेषज्ञ आम उत्पादन, मूल्य संवर्धन और प्रसंस्करण की आधुनिक तकनीकों पर अपने अनुभव साझा करेंगे। इस अवसर पर आयोजित होगा किसान वैज्ञानिक सम्मान समारोह, जिसमें बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश के उत्कृष्ट आम उत्पादकों को बेस्ट मैंगो फार्मर अवार्ड प्रदान किया जाएगा। महिला आम उत्पादकों एवं मूल्य संवर्धन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिला उद्यमियों के लिए भी विशेष सम्मान और नगद पुरस्कार की व्यवस्था की गई है। और अब आपके लिए एक सुनहरा अवसर, यदि आपके बाग में उत्कृष्ट गुणवत्ता के आम हैं या आपके पास किसी विशेष किस्म के आम उपलब्ध हैं, आप भी आम प्रदर्शनी में अपनी आम की किस्मों को प्रदर्शित कर सकते हैं। आपकी प्रविष्टियों का मूल्यांकन विशेषज्ञों द्वारा किया जाएगा और चयनित प्रतिभागियों को आकर्षक पुरस्कार एवं नगद राशि से सम्मानित किया जाएगा। और हाँ, आम प्रेमियों के लिए होगा एक विशेष आकर्षण, मैंगो ईटिंग प्रतियोगिता। इस रोमांचक प्रतियोगिता के विजेताओं को भी आकर्षक नगद पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। तो देर किस बात की, अपने श्रेष्ठ आमों के साथ आइए, प्रदर्शनी में भाग लीजिए, विशेषज्ञों से सीखिए, नई तकनीकों को जानिए और आकर्षक पुरस्कार जीतने का अवसर पाइए। 27 से 28 जून राष्ट्रीय आम समागम 2026 बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है।

0: चलिए चलिए चलिए।
1: डॉक्टर, खांसी तो है।
0: देखिए भाई साहब, इसे हल्का मत लीजिए। 2 हफ्ते से ज्यादा अगर आपको खांसी रहा है तो टीबी हो सकता है।
1: टीबी?
0: हाँ, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए।
1: ठीक है।
0: टीबी किसी को भी हो सकता है, अगर हो गया तो बिना भूले पूरा कोर्स करिए और फिट हो जाइए। नहीं किया तो इसका इलाज बहुत मुश्किल है, समझ गए भाई साहब आप? आइए। 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए। टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
2: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 ग्रीन FM। उन्नत कृषि। नमस्कार, आपने ट्यून किया है 90.8 MHz। मैं हूँ RJ अनु और आप सभी का स्वागत करती हूँ उन्नत कृषि कार्यक्रम में। दोस्तों, उन्नत कृषि कार्यक्रम में हम अपने श्रोताओं के लिए लेकर आते हैं कुछ खास और उपयोगी बातें खेती बाड़ी से जुड़ी। और जहाँ तक आज मछली पालन की हम बात करेंगे, तो आप सभी जानते हैं किसान भाई मछली पालन करके इस व्यवसाय को बहुत ही अच्छे मुकाम पर ले जा चुके हैं और बहुत ही अच्छा आर्थिक मुनाफा भी उन्हें हो रहा है। तो इसी क्रम में आज हम विषय लेकर आए हैं आयुषवासी मछली मांगुर का पालन विधि। और इस विषय को लेकर हमारे बीच हैं आज डॉक्टर नरेंद्र कुमार वर्मा, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं कॉलेज ऑफ फिशरीज किशनगंज में। तो सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में।
3: धन्यवाद मैडम।
2: डॉक्टर साहब, आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले जो बात आती है, जैसा कि हमारा विषय है, तो बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि आयुषवासी मछली क्या होता है, तो इसके बारे में थोड़ा बताइए।
3: जी, जैसा कि हम जानते हैं कि मछली एक जलीय जीव है और पानी में मौजूद ऑक्सीजन को अपने गलफड़ों से सांस के रूप में लेती है। और अगर हम मछली को पानी से बाहर निकाल दें तो सांस ना ले पाने के कारण यह कुछ ही पलों में मर जाती है।
2: जी।
3: परंतु जल में मछली की एक ऐसी प्रजाति भी पाई जाती है जो कि पानी के बाहर भी सांस ले सकती है। इन मछलियों को आयुषवासी मछलियाँ कहते हैं।
2: अच्छा, मतलब जो पानी के बाहर भी जिंदा रह सकती है मछली, तो वैसी मछलियों को आयुषवासी मछलियां कहते हैं।
3: जी बिल्कुल। इन मछलियों में पानी से बाहर सांस लेने के लिए गलफड़ों के अतिरिक्त अलग से अंग विकसित होते हैं और इस प्रकार की मछलियां कम पानी वाले जगहों में भी आसानी से जिंदा रह सकती हैं। जैसा कि हमारे किसान भाई जानते हैं कि मछली पालन के लिए जल एक महत्वपूर्ण कारक है और बिना जल के हम मछली पालन नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो आयुषवासी मछलियाँ होती हैं उनका पालन हम कम पानी में भी कर सकते हैं।
2: तो अभी के दौर की बात करें, जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि सुखाड़ आता है, इस वजह से पानी का लेवल जो है वो भी कम हो रहा है, तो अगर मछली पालन करना चाह रहे हैं तो आयुषवासी मछली का पालन आप कर सकते हैं। इसमें पानी कम ही पानी में, मतलब कि ये रह सकते हैं, इसका पालन कर सकते हैं।
3: जी मैडम।
2: और आगे बढ़ते हैं, इसका पालन भारत में कहाँ कहाँ पर अभी हो रहा है?
3: जी, भारत के विभिन्न राज्यों, जैसे कि जो बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश आदि जगहों पर आयुषवासी मछलियों का पालन बहुत ही लोकप्रिय है। भारत में आयुषवासी मछलियों की अनेक प्रजातियाँ पाली जाती हैं, जैसे कि देसी मांगुर, सिंघी आदि। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि भारत में 2 प्रकार की मांगुर की मछलियाँ प्रजाति की उपलब्ध हैं। एक है देसी मांगुर, जो कि भारत की अपनी प्रजाति है, और एक है थाई मांगुर, जो कि दूसरे देश से भारत में लाई गई है।
2: अच्छा।
3: हम अपने किसान भाइयों को यह बताना चाहेंगे कि वो थाई मांगुर का पालन बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि भारत सरकार ने इसके पालन पर प्रतिबंध लगा रखा है, और यदि कोई किसान थाई मांगुर का पालन करते हुए पाए जाते हैं तो आवश्यकता अनुसार कार्यवाही उनके विरुद्ध की जाती है।
2: जी, अब मांगुर के प्रजनन और अंडों के बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए।
3: जी, मांगुर प्रथम वर्ष में ही प्रजनन करने योग्य हो जाती है तथा वर्षा काल में मई से अगस्त महीने के बीच ठहरे हुए जल क्षेत्रों में प्राकृतिक प्रजनन करती है। हालांकि इस मछली के कृत्रिम तरीके से प्रजनन में सफलता हासिल की जा चुकी है, किंतु कृत्रिम तरीके से प्रजनन में नर मांगुर को मारना पड़ता है। मांगुर मछली के अंडे गोल और आकार में 1.2 से 2 मिलीमीटर व्यास के होते हैं। मांगुर के अंडे देने की क्षमता उसके शरीर के आकार पर निर्भर करती है। साधारणतः 160 से 350 मिलीमीटर आकार की मांगुर लगभग 20,000 अंडे तक देती है।

0: अगर किसान भाई मांगुर का पालन कर रहे हैं तो इस दौरान कुछ ध्यान देने योग्य बातें भी होंगी, वो कौन कौन सी हैं?
1: जी सबसे पहले ध्यान रखना चाहिए कि मांगुर मांसाहारी स्वभाव की मछली है।
0: अच्छा।
1: इसलिए तालाब में इसे अकेले ही पालना चाहिए, दूसरी मछलियों के साथ इसका पालन बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि हमारे किसान भाई मांगुर के साथ और किसी मछली को पालते हैं तो यह मछली दूसरी मछलियों को नुकसान पहुँचाती है और कई बार उनको खाने लगती है। साथ ही उथले तालाब जिनकी गहराई 1.5 मीटर से कम होती है, मांगुर पालन के लिए ऐसे तालाब उत्तम माने जाते हैं। मांगुर मछली के एकल पालन के लिए 40,000 से 60,000 अंगुलिकाएं प्रति हेक्टेयर की दर से संचय किया जाता है। संचय से पहले बीजों को बीमारियों से बचाने के लिए फार्मलिन से उपचारित किया जाता है। साथ ही हमारे किसान भाई अगर देखते हैं कि मांगुर के पालन के समय मछली पर कोई घाव दिखाई दे रहा है तो मछली को एक्रोफ्लेविन के घोल से उपचारित कर सकते हैं।
0: अच्छा
1: जी। साथ में ही हमारे किसान भाइयों को ध्यान देना चाहिए कि तालाब को मछली पालन के लिए प्रयोग में लाने से पहले उसे अच्छे से सुखा लेना चाहिए, या फिर 1600 से 2500 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से महुआ की खली या 250 से 300 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग करना चाहिए, जिससे कि तालाब में उपस्थित कीड़े और परभक्षी मछलियाँ मर जाती हैं। इन मछलियों और कीड़ों को मारना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि अगर हमारे किसान भाई इन कीड़ों और मछलियों को तालाब से नहीं हटाते हैं तो आगे चलकर यह जो मांगुर का पालन है उसमें नुकसानदायक उनके लिए होता है।
0: अभी आपने कहा कि ये मछलियाँ जो होती हैं वो मांसाहारी स्वभाव की होती हैं, तो अगर आहार प्रबंधन की बात की जाए तो किस प्रकार का आहार उन्हें दिया जाए?
1: तो यह मछली मांसाहारी होती है और मांस आधारित पूरक आहार पर ही निर्भर करती है।
0: अच्छा।
1: मछलियों के बच्चे प्रारंभ में सूक्ष्म जंतु प्लवक खाते हैं और बाद में मांस आधारित पूरक आहार अधिक खाते हैं। मांस आधारित आहार में कीड़े, वर्म, लार्वा, छोटी मछलियां और बूचड़ खानों के अपशिष्ट आदि का प्रयोग किया जाता है। आहार देते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आहार की मात्रा मछली के शारीरिक वजन का 10% हो, जिससे कि हम आहार की बर्बादी को कम कर सकते हैं। आवश्यकता से अधिक पूरक आहार का प्रयोग करने से तालाब का पानी गंदा होने लगता है और तालाब में हानिकारक गैसें जैसे अमोनिया आदि की मात्रा बढ़ने लगती हैं। ऐसी स्थिति में मछलियों में बीमारियों के होने की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं। तो यदि हमारे किसान भाई देखते हैं कि तालाब का पानी गंदा हो रहा है तो समय समय पर उन्हें तालाब के पानी को बदलते रहना चाहिए, या फिर यदि तालाब का पानी बहुत ही गंदा हो गया है तो पूरे पानी को जो है बदल देना चाहिए।
0: अच्छा। और जब हम मांगुर इस मछली का पालन कर रहे हैं और उस दौरान उनकी बढ़वार सही हो रही है या नहीं, उनकी जो वृद्धि है वो सही हो रही है, ये कैसे सुनिश्चित करेंगे हम?
1: जी मैडम, तो जैसे कि जब भी हमारे किसान भाई मछली पालन करते हैं तो मछली पालन के समय किसान भाइयों को समय समय पर जो है जाल चलाकर देखते रहना चाहिए कि मछली की बढ़वार ठीक हो रही है या नहीं हो रही है, या फिर मछली में कोई रोग है कि नहीं है। तो मांगुर मछली 6 माह में बिक्री योग्य हो जाती है और इतने समय में 35 से 45 सेंटीमीटर लंबी और 200 से 400 ग्राम तक वजन की हो जाती हैं। यदि तालाब के पानी का तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और ऑक्सीजन लेवल 6 ppm से अधिक हो तो मछलियों की वृद्धि अच्छी होती है, परंतु हमारे किसान भाइयों को इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि यदि पानी का तापमान 35 डिग्री या उससे ज़्यादा होता है तो यह मछलियों के बढ़वार के लिए हानिकारक होता है।
0: और अगर अब बात करते हैं उत्पादन की, तो एक साल में कितना उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं किसान भाई?
1: जी हमारे किसान भाई मांगुर की एक वर्ष में 2 फसल ले सकते हैं, क्योंकि सामान्यतः एक फसल की अवधि 6 महीने तक की होती है। तो इसका पालन करके हमारे किसान भाई 3000 से 5000 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर प्रति 6 माह की दर से उत्पादन कर सकते हैं। और क्योंकि जो हमारी देसी मांगुर मछली है उसका जो बाज़ार भाव है वो अन्य मछलियों की तुलना में ज़्यादा होता है, तो इस व्यवसाय को अपना करके किसान भाई अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं।
0: जी, तो किसान भाइयों, अगर आप भी मछली पालन को अपना व्यवसाय बना चुके हैं तो वायुश्वासी मछली के बारे में आपने जाना, आप उनको एज अ बिजनेस आप ले सकते हैं, व्यवसाय ले सकते हैं। और इसमें बहुत सारी बातें जो इन्होंने बताई हैं कि आपको कैसे पालन करना है इनका, कौन कौन सी बातें आपको ध्यान रखनी है, वो सारी चीज़ें आप अपने दिमाग में लाकर और इसका पालन कर सकते हैं, तो आपको ज़रूर मुनाफा होगा। और इसके साथ ही आपसे फिर मुलाकात होगी अगले दिन, तब तक के लिए नमस्कार और सुनते रहिए 90.8 FM ग्रीन। उन्नत कृषि,

तैयार है आम के अद्भुत संसार से रूबरू होने के लिए। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर लेकर आ रहा है राष्ट्रीय आम समागम 2026, जिसका आयोजन 27 से 28 जून तक किया जाएगा। आइए और देखिए देश भर की सैकड़ों आम किस्मों की आकर्षक प्रदर्शनी, जहां स्वाद, सुगंध और रंगों का अनूठा संगम आपका स्वागत करेगा। इस विशेष आयोजन की थीम है स्वाद, संस्कृति और समृद्धि का संगम। आम समागम में किसानों, वैज्ञानिकों, उद्यमियों और आम प्रेमियों को एक ही मंच पर आने का अवसर मिलेगा। कार्यक्रम के दौरान आयोजित होगी राष्ट्रीय कार्यशाला, जिसका विषय है आधुनिक तकनीक से गुणवत्ता युक्त उत्पादन, भंडारण एवं प्रसंस्करण। देश के प्रतिष्ठित विशेषज्ञ आम उत्पादन, मूल्य संवर्धन और प्रसंस्करण की आधुनिक तकनीकों पर अपने अनुभव साझा करेंगे। इस अवसर पर आयोजित होगा किसान वैज्ञानिक सम्मान समारोह, जिसमें बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश के उत्कृष्ट आम उत्पादकों को बेस्ट मैंगो फार्मर अवार्ड प्रदान किया जाएगा। महिला आम उत्पादकों एवं मूल्य संवर्धन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिला उद्यमियों के लिए भी विशेष सम्मान और नगद पुरस्कार की व्यवस्था की गई है। और अब आपके लिए एक सुनहरा अवसर, यदि आपके बाग में उत्कृष्ट गुणवत्ता के आम हैं या आपके पास किसी विशेष किस्म के आम उपलब्ध हैं, तो आप भी आम प्रदर्शनी में अपनी आम की किस्मों को प्रदर्शित कर सकते हैं। आपकी प्रविष्टियों का मूल्यांकन विशेषज्ञों द्वारा किया जाएगा और चयनित प्रतिभागियों को आकर्षक पुरस्कार एवं नगद राशि से सम्मानित किया जाएगा। और हाँ, आम प्रेमियों के लिए होगा एक विशेष आकर्षण, मैंगो ईटिंग प्रतियोगिता। इस रोमांचक प्रतियोगिता के विजेताओं को भी आकर्षक नगद पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। तो देर किस बात की, अपने श्रेष्ठ आमों के साथ आइए, प्रदर्शनी में भाग लीजिए, विशेषज्ञों से सीखिए, नई तकनीकों को जानिए और आकर्षक पुरस्कार जीतने का अवसर पाइए। 27 से 28 जून राष्ट्रीय आम समागम 2026 बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है।

0: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
1: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
0: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
1: आपकी सेहत की बातें,
0: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
1: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
0: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
1: वो कहाँ पर?
0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
1: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
0: उन्नत कृषि। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है किसान भाई बहनों को संबोधित हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। किसान भाई बहनों, आज उन्नत कृषि में हम बात करने वाले हैं धान के बारे में। धान बिहार की प्रमुख खाद्यान्न फसल है और साथ ही राज्य की खाद्य सुरक्षा और कृषि अर्थव्यवस्था में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। साल 2024-25 में बिहार में लगभग 99,34,000 टन धान का उत्पादन हुआ, जो राज्य के कुल अनाज उत्पादन में 40% से भी अधिक है। अगर हम इन सारी बातों को समझें तो धान हमारे अर्थव्यवस्था के लिए, हमारे किसानों के लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ऐसे में धान की उच्च उपज भी काफी महत्वपूर्ण होती है। उच्च उपज प्राप्त करने के लिए जरूरी होता है कि हमारे किसान भाई बहन उन्नत किस्मों का चयन करें। साथ ही स्वस्थ और मजबूत फसलों के लिए पौधशाला प्रबंधन भी बहुत जरूरी है। तो इन सारी बातों की जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर श्रुति सुमन। मैम, आप हैं सहायक प्राध्यापिका सस्य विज्ञान विभाग से। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
2: धन्यवाद उमा, सबसे पहले मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि धान की खेती में पौधशाला प्रबंधन एक आवश्यक अंग है, और ऐसा कहा जाता है कि अच्छी फसल की शुरुआत ही अच्छी पौधशाला से होती है। यदि पौधशाला में वैज्ञानिक तरीके से बीज का चयन, पोषक तत्वों का प्रबंधन, सिंचाई तथा कीट रोग नियंत्रण किया जाए तो स्वस्थ एवं सशक्त पौध तैयार होते हैं, और ऐसी पौध मुख्य खेत में रोपाई के बाद अच्छी तरह से स्थापित होती है, अधिक कल्ले भी बनाती है तथा अंततः अधिक उपज भी प्रदान करती है। इसलिए किसान भाइयों, हमारे लिए पौधशाला का प्रबंधन बहुत ही आवश्यक है।
0: मैम, अभी तो आपने बताया कि पौधशाला का प्रबंधन जरूरी क्यों है, लेकिन हम बात करते हैं अब पौधशाला के लिए खेत का कैसे चयन करना चाहिए। तो किस तरीके से हमारे किसान भाई बहन पौधशाला के लिए खेत का चयन कर सकते हैं?
2: पौधशाला के लिए समतल, उपजाऊ और सिंचाई की सुविधा वाले खेत को चुनना चाहिए। अगर जो है हमारे पौधशाला का खेत मुख्य खेत के पास हो तो रोपाई में सुविधा होती है। साथ ही साथ धान में जल निकास की व्यवस्था उचित होनी चाहिए। धान की खेती के लिए जल निकास की व्यवस्था उचित होनी चाहिए, तो हमें वैसे खेत का चयन करना चाहिए जहाँ पे कि वाटर लॉगिंग भी ना हो।
0: अगर मैम एक हेक्टेयर में रोपाई की बात करें तो एक हेक्टेयर में रोपाई के लिए कितने नर्सरी क्षेत्र की जरूरत होती है?
2: एक हेक्टेयर में हमें रोपाई के लिए 800 से 1000 वर्ग मीटर नर्सरी क्षेत्र जो है वो पर्याप्त होती है।
0: और बीज की मात्रा कितनी होनी चाहिए?
2: सामान्यतः सामान्य किस्मों के लिए 20 से 30 केजी बीज पर हेक्टेयर बीज दर होना चाहिए, और संकर धान यानी कि जो हमारी हाइब्रिड धान है उनके लिए 15 केजी पर हेक्टेयर का बीज दर पौधशाला के लिए पर्याप्त होता है।
0: जी मैम, और बीज उपचार बहुत जरूरी होता है, तो किस तरीके से बुआई से पहले बीज उपचार करना चाहिए?
2: उमा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है आपने। बुआई से पूर्व बीजोपचार करना जरूरी है, क्योंकि बीज उपचार से बीज जनित रोगों से सुरक्षा मिलती है और साथ ही साथ अंकुरण अच्छा होता है। इससे पौध गलन, झुलसा और अन्य रोगों का प्रकोप भी कम होता है। तो बीजोपचार करने के दो तरीके हैं। पहला तो हम नमक के घोल से बीज का उपचार कर सकते हैं। इसे लवणीय जल उपचार भी कहते हैं। लवणीय जल उपचार के लिए हमें 1.65 केजी सादे नमक को 10 लीटर पानी में उसका घोल बना लेना चाहिए, और इस घोल में बीज को डालकर अच्छी तरह से हिला देना चाहिए। इससे क्या होता है कि स्वस्थ एवं भारी बीज जो हैं वो नीचे बैठ जाते हैं और हल्के खराब और हल्के बीज ऊपर तैरने लगते हैं, और फिर ऊपर तैरने वाले हल्के एवं खराब बीज को हम
3: बर्तन से हटा सकते हैं और शेष डूबे हुए बीज को हमें फिर से, शेष डूबे हुए बीज जो, वो बीज जो डूब जाते हैं वो स्वस्थ होते हैं और उन्हें हमें फिर से 2 से 3 बार पानी में धोकर सुखा ले, छाया में सुखा लेना चाहिए ताकि इस बीज में नमक का कोई अंश ना रहे। तो इस तरह से हम लवणीय घोल बनाकर बीज का उपचार करते हैं। इसके अलावा हम रासायनिक बीजोपचार भी कर सकते हैं। रासायनिक बीजोपचार के लिए हमें सबसे पहले फफूंदी नाशी से उपचार करना चाहिए। फफूंदी नाशी यानी कि फंगीसाइड जो है वो हमें बेविस्टीन 1 ग्राम या फिर कैप्टन या थीरम ये 2.5 ग्राम पर केजी बीज की दर से उपचारित करना चाहिए। जीवाणुनाशी दवा से उपचार हेतु स्ट्रेप्टोसाइक्लिन या फिर एग्रीमाइसिन हमें 2.5 ग्राम दवा जो है उसका 10 लीटर पानी में घोल बनाकर 10 केजी बीज हेतु प्रयोग करना चाहिए और इन उपचारित बीजों को हमें भींगे बोरी में रखकर 36 से 48 घंटों तक अंकुरित कराना चाहिए। और इस दौरान ये जो जिस समय हम उपचारित बीज को भींगे बोरी में रखते हैं इस दौरान हमें बीच बीच में बीज पर पानी का छिड़काव करते रहना चाहिए।
0: जी मैम, और अगर हम पौधशाला की तैयारी की बात करें तो किसान भाई बहन धान की खेती के लिए पौधशाला की तैयारी कैसे कर सकते हैं?
3: पौधशाला की तैयारी यानी कि जो है हमारा नर्सरी, नर्सरी जो है धान के लिए 3 प्रकार से इसकी नर्सरी बनाई जाती है, वेट बेड मेथड, ड्राई बेड मेथड और डेपोग मेथड। वेट बेड मेथड यानी कि जो है वहाँ पे जनरली वहाँ पे प्रेफर किया जाता है जहाँ इरिगेटेड कंडीशन हो यानी कि जहाँ पे जल सिंचाई की सुविधा हो, और ड्राई बेड मेथड जहाँ पे पानी की कमी हो वहाँ पे ड्राई बेड मेथड, और डेपोग मेथड एक ऐसा मेथड है ऑफ रेजिंग सीडलिंग्स है जो कि हमारे देश में फिलीपींस से ये इंट्रोड्यूस किया गया है और इसकी खासियत यह है कि ये 1 हेक्टेयर के लिए इसमें कम एरिया में ही नर्सरी देना होता है, जैसे कि बस 25 से 30 मीटर स्क्वायर एरिया में ही हम 1 हेक्टेयर के लिए इसकी नर्सरी तैयार कर सकते हैं। पर हमारे बिहार राज्य में ज़्यादा हमारे गीली नम विधि यानी कि वेट बेड मेथड का प्रचलन ज़्यादा है, तो इस विधि से जब हम करेंगे तो इसके लिए हमें पौधशाला को तैयार करने के लिए, बिचड़ा तैयार करने की प्रक्रिया जो है हमें इसमें ऐसे करने चाहिए कि हमें पौधशाला की तैयारी अच्छी तरह कदवा करके तथा खेत को समतल करके करना चाहिए। इसके लिए खेत में पानी भरकर 2 से 3 बार जुताई करें यानी कि 2-3 प्लॉइंग्स करना चाहिए और ताकि मिट्टी जो है हमारी कादोयुक्त हो जाए और उससे खरपतवार जो है वो भी नष्ट हो जाते हैं। आखिरी जुताई के बाद जब हम 3rd प्लॉइंग करते हैं तो आखिरी जुताई के बाद हमें उसके बाद पाटा लगाकर खेत को समतल करना चाहिए। जब मिट्टी की सतह पर पानी ना रहे तो फिर हमें जो है 1.5 मीटर चौड़ी लंबी क्यारी बनानी चाहिए ताकि बुआई, निराई और सिंचाई की विभिन्न शस्त्र क्रियाएं आसानी से की जा सके, और इन 2 क्यारियों के बीच में हमें 30 सेंटीमीटर चौड़ी नाली बनानी चाहिए ताकि उस नाली से हम वहां पर खड़े होकर आसानी से हम खरपतवार नाशी आदि का उपयोग कर सके और सिंचाई की क्रिया भी वहां पे कर सके। इसके बाद पौधशाला में हमें बीजोपचारित एवं अर्ध अंकुरित बीज को कदवा के ऊपर समान रूप से छींट देना चाहिए और शुरू में मिट्टी को केवल गीला रखें। जब हम उसको बीज को छींट देते हैं तो उसके बाद खेत में सिंचाई कर पहले जो है हमें पानी का 1 से 2 सेंटीमीटर तक पानी का लेवल रखना चाहिए और बाद में 4 से 5 सेंटीमीटर तक खेत में पानी को बनाए रखना चाहिए। और इस बात का हमें हमेशा किसान भाइयों आप को हमेशा ध्यान देना चाहिए कि बिचड़े पानी में डूबे नहीं।
0: और मैम, अगर हम पोषक तत्व प्रबंधन की बात करें तो पोषक तत्व प्रबंधन कैसे करना चाहिए?
3: 1000 मीटर स्क्वायर की नर्सरी में हमें सबसे पहले पोषक तत्व प्रबंधन के लिए 1.5 टन गोबर खाद या 200 से 300 केजी केचुआ खाद को बुआई के 10 से 15 दिन पहले डालना चाहिए ताकि मिट्टी में जल धारण क्षमता बढ़े तथा बिचड़े उखाड़ते समय दिक्कत ना हो। फिर 1000 मीटर स्क्वायर में बीज की बुआई के पूर्व 5 केजी नाइट्रोजन, 5 केजी फॉस्फोरस और 5 केजी पोटास को समान रूप से छिड़क देना चाहिए, को क्यारी में समान रूप से छिड़क देना चाहिए। और फिर हमें बीजों को बहुत ज़्यादा अधिक गहराई में नहीं बोना चाहिए और बीज को अधिक घना भी ना गिराएं। 20 से 30 ग्राम पर मीटर स्क्वायर बीज की मात्रा इसके लिए उपयुक्त होती है, और अगर हम ज़्यादा घना बीज गिराते हैं तो इससे बिचड़े जो हैं वो पतले और कमजोर होंगे। और इसके साथ साथ ही पौधशाला को खरपतवार से मुक्त रखना चाहिए ताकि जड़ों का समुचित विकास हो एवं बिचड़े स्वस्थ और मजबूत हों। इसके अलावा जो हमारी नर्सरी है उसमें कीट व्याधि का भी नियंत्रण पर ध्यान देना चाहिए। और साथ ही साथ वैसे खेत जिसमें जिंक की कमी हो उसमें हम तीसरे सप्ताह में जिंक सल्फेट का छिड़काव कर सकते हैं। इस हेतु प्रति हेक्टेयर 5 kg जिंक सल्फेट को घोल को 2.5 kg चूना के घोल के साथ मिलाकर 700 से 800 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। छिड़काव अगर नहीं कर पा रहे हैं ऐसे जगह पे जहाँ पे ये छिड़काव नहीं कर पा रहे हैं वहाँ पे बिचड़ों को उखाड़ने के बाद भी रोपाई के पहले 2% जिंक के घोल में डुबाकर उपचारित कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम नर्सरी में पोषक तत्व का प्रबंधन कर सकते हैं।
0: मैम अब अगर रोपनी की बात करें तो बिचड़े रोपनी के लिए किस समय पर तैयार हो जाते हैं?
3: रोपने के लिए सामान्यतः 3 सप्ताह के बिचड़े जिसमें कि 4 से 6 पत्तियां आ जाती हैं वो अच्छे माने जाते हैं, लेकिन जो है अलग प्रभेद के अनुसार बिचड़ों का जो है समय अलग अलग होता है। तो जहां पर हम बात करेंगे जो शीघ्र पकने वाली प्रभेद होती है जो कि हम ऊपरी जमीन यानी कि अपलैंड में लेते हैं, वो जैसे कि इस प्रभेद में एग्जाम्पल में आप जानते होंगे सौबर, दीप, सहभागी, शुष्क, सम्राट, इन प्रभेदों का बिचड़ा जो है जब वो 20 से 22 दिन का हो जाता है तब तैयार होता है। जबकि मध्यम जमीन हेतु और जो यानी कि मीडियम लैंड और जो मध्यम अवधि में पकने वाले ऐसे प्रभेद होते हैं वो जैसे कि राजेंद्र, श्वेता, सबौर अर्ध जल, इनका बिचड़ा जो है 25 से 30 दिन का समय लेता है। फिर निचली जमीन हेतु देर से पकने वाली प्रभेद जो होते हैं उनमें सबौर श्री, राजेंद्र मैसूरी वन, स्वर्णा सब वन, इनके लिए जो है 25 से 30 दिन का बिचड़ा लेना चाहिए।
0: तो किसान भाई बहन मैम के द्वारा बताई बातों का ध्यान रखें और धान की अच्छी पौधशाला तैयार करें ताकि आपके धान की फसल भी निरोगी और स्वस्थ हो। तो मैम आपने जो जानकारी दी उम्मीद है कि हमारे किसान भाई बहनों के लिए काफी महत्वपूर्ण और काफी उपयोगी साबित होगी। मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: धन्यवाद उमा।
0: किसान भाई बहनों आज के लिए इतना ही। मुझे यानी कि आपकी होस्ट और दोस्त उमा को दीजिए इजाजत, लेकिन जाने से पहले खास बात की अपना और अपनी फसलों का रखें विशेष ध्यान और अपनी मिट्टी से करें ढेर सारा प्यार। नमस्कार।
4: उन्नत कृषि

तैयार है आम के अद्भुत संसार से रूबरू होने के लिए। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर लेकर आ रहा है राष्ट्रीय आम समागम 2026, जिसका आयोजन 27 से 28 जून तक किया जाएगा। आइए और देखिए देश भर की सैकड़ों आम किस्मों की आकर्षक प्रदर्शनी, जहां स्वाद, सुगंध और रंगों का अनूठा संगम आपका स्वागत करेगा। इस विशेष आयोजन की थीम है स्वाद, संस्कृति और समृद्धि का संगम। आम समागम में किसानों, वैज्ञानिकों, उद्यमियों और आम प्रेमियों को एक ही मंच पर आने का अवसर मिलेगा। कार्यक्रम के दौरान आयोजित होगी राष्ट्रीय कार्यशाला, जिसका विषय है आधुनिक तकनीक से गुणवत्ता युक्त उत्पादन, भंडारण एवं प्रसंस्करण। देश के प्रतिष्ठित विशेषज्ञ आम उत्पादन, मूल्य संवर्धन और प्रसंस्करण की आधुनिक तकनीकों पर अपने अनुभव साझा करेंगे। इस अवसर पर आयोजित होगा किसान वैज्ञानिक सम्मान समारोह, जिसमें बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश के उत्कृष्ट आम उत्पादकों को बेस्ट मैंगो फार्मर अवार्ड प्रदान किया जाएगा। महिला आम उत्पादकों एवं मूल्य संवर्धन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिला उद्यमियों के लिए भी विशेष सम्मान और नगद पुरस्कार की व्यवस्था की गई है। और अब आपके लिए एक सुनहरा अवसर, यदि आपके बाग में उत्कृष्ट गुणवत्ता के आम हैं या आपके पास किसी विशेष किस्म के आम उपलब्ध हैं, आप भी आम प्रदर्शनी में अपनी आम की किस्मों को प्रदर्शित कर सकते हैं। आपकी प्रविष्टियों का मूल्यांकन विशेषज्ञों द्वारा किया जाएगा और चयनित प्रतिभागियों को आकर्षक पुरस्कार एवं नगद राशि से सम्मानित किया जाएगा। और हाँ, आम प्रेमियों के लिए होगा एक विशेष आकर्षण, मैंगो ईटिंग प्रतियोगिता। इस रोमांचक प्रतियोगिता के विजेताओं को भी आकर्षक नगद पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। तो देर किस बात की, अपने श्रेष्ठ आमों के साथ आइए, प्रदर्शनी में भाग लीजिए, विशेषज्ञों से सीखिए, नई तकनीकों को जानिए और आकर्षक पुरस्कार जीतने का अवसर पाइए। 27 से 28 जून राष्ट्रीय आम समागम 2026 बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है।

बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 24 से 28 जून के दौरान भागलपुर, बांका, मुंगेर, जमुई इन जिलों में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ हल्की वर्षा होने की संभावना है। दक्षिण बिहार के अन्य जिलों में 24 से 25 जून के दौरान लू चलने की संभावना है। इसके बाद इन जिलों के एक दो स्थानों पर बादल गरजने के साथ हल्की वर्षा की संभावना है। अधिकतम तापमान 37 से 39 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 26 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 60 से 70 प्रतिशत और दोपहर में 25 से 30 प्रतिशत रहने की संभावना है। अनुमान है कि 24 से 28 जून के दौरान 5 से 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दक्षिण पूर्वी हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए, जो किसान भाई बहन धान की खेती करना चाहते हैं उन्हें बता दे, वर्तमान में मानसून की कमजोर स्थिति को देखते हुए किसान भाई बहनों को ये सलाह दी जाती है कि ऊंची भूमि में धान की खेती ना करें। जिन किसानों के पास सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है वे मध्यम अवधि वाले धान की किस्मों का बिचड़ा गिराएं और बीज स्थली में नमी बनाए रखें, इस बात का विशेष ध्यान रखें। बीज स्थली यानी कि नर्सरी में नमी बनाए रखने के लिए जरूरत के हिसाब से जीवन रक्षक सिंचाई जरूर करें और खास तौर से ऊंची भूमि में धान के स्थान पर वैकल्पिक फसलों की खेती पर विचार करना अधिक उपयुक्त होगा। जो मक्का की खेती करना चाहते हैं उन्हें बता दे, खरीफ मक्का की बुआई तभी करें जब आसमान साफ हो और खेत की जुताई में 10 से 15 टन गोबर की सड़ी खाद प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें और ध्यान दें कि बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 30 किलोग्राम नेत्रजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटाश डालना जरूरी होता है। किसान भाई बहनों आपको बता दे, अनुशंसित मक्का की किस्में हैं सुवान, देवकी, शक्तिमान 1, शक्तिमान 2, राजेंद्र शंकर, मक्का 3, गंगा 11। जो मूंग की खेती करते हैं उन्हें बता दे, मूंग की तैयार फलियों की तुड़ाई कर ले और हरी खाद के लिए उसके पौधों को मिट्टी पलटने वाले हल से जमीन में गाड़ दे। यह आपके खेत और आपके खेत की मिट्टी के लिए फायदेमंद होता है। जिनके खेत में सब्जियां लगी हैं उन्हें बता दे, भिंडी, कद्दू, खीरा, नेनुआ और लौकी की फसलों में निराई गुड़ाई जरूर करे, साथ ही खरपतवार नियंत्रित करना भी जरूरी होता है। आपको बता दे कि पत्ती खाने वाली सुंडियों और फल छेदक कीटों की नियमित निगरानी करते रहें और अगर इन कीटों का प्रकोप दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में डाइमेथोएट 30 इसी दवा की 1 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान दें, किसी भी प्रकार का छिड़काव तभी करें जब आसमान साफ हो। किसान भाई बहन आपको बता दें कि खरीफ प्याज की खेती के लिए नर्सरी यानी कि बीज स्थली की तैयारी तभी करें जब आसमान साफ हो और स्वस्थ पौधे के लिए नर्सरी में गोबर की खाद जरूर डालें। अच्छे और स्वस्थ फसल के लिए प्याज की बीज की व्यवस्था प्रमाणित स्रोत से ही करें और बीज गिराने के पहले बीजोपचार करना बहुत जरूरी होता है। बीजोपचार करने से पौधे स्वस्थ और फसल अच्छी होती है। खरीफ प्याज के लिए बीज की दर 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दे, लीची की फल तुड़ाई के बाद बगीचों में आवश्यक छटाई जरूर कर ले जिससे पेड़ों के भीतर पर्याप्त धूप और हवा का संचार हो सके। साथ ही आपको बता दे कि बगीचे में गिरे हुए पत्तों, सूखी शाखाओं और अन्य पौध अवशेषों को इकट्ठा कर हटा दे, इससे कीट और रोगों का प्रकोप कम होता है और पेड़ों की स्वस्थ वृद्धि और विकास को बढ़ावा मिलता है। तो ध्यान दे कि बगीचे में गिरे हुए पत्तों, सूखी शाखाओं और ऐसी कोई भी अन्य जो पेड़ के अवशेष हो उन्हें इकट्ठा करके हटा दे। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दे, दुधारू पशुओं को गर्मी के प्रभाव से बचाने के लिए छायादार और हवादार स्थानों में रखें और उन्हें पर्याप्त मात्रा में साफ और ताजा पीने का पानी उपलब्ध कराएं। पशुपालक भाई बहन ध्यान दे, गला घोटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए टीकाकरण कराना बहुत जरूरी होता है, इसलिए सभी दुधारू पशुओं में टीकाकरण जरूर कराएं। सूचना समाप्त हुई। ऐसे ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

आप हर समय थकान महसूस करते हैं, छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है, ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है, बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर आप सबका स्वागत करता है स्वाद संस्कृति और समृद्धि के संगम राष्ट्रीय आम समागम सह कार्यशाला में। तारीख याद रखें 27 से 28 जून 2026।

क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खान पान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।

0: കൃഷി. नमस्कार, आपने ट्यून किया है 90.8 मेगाहर्ट्ज़। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो 90.8 एफएम ग्रीन। मैं हूं अनु और उन्नत कृषि कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पके आम के बारे में, खास तौर पर इसके उत्पाद और संरक्षण तकनीक के बारे में जानेंगे। तो इस विषय को लेकर आज हमारे बीच हैं विशेषज्ञ डॉक्टर एम ए आफ्ताब। मैं आपको बता दूँ, ये अध्यक्ष खाद्य विज्ञान एवं तुड़ाई उपरांत प्रौद्योगिकी विभाग बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से हैं। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद
0: डॉक्टर साहब। सबसे पहले तो पके आम के क्या कुछ उत्पाद बनाए जा सकते हैं, उनके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए।
1: देखिए, अभी पके आम की जहाँ तक बात है, ये पके आम का सीज़न अभी चल रहा है
0: जी,
1: और इसमें जो अर्ली वराइटीज़ हैं उसमें जरदालू आ चुके हैं, बम्बई आ चुका है, और उसके बाद फिर मालदे जिसको कि लेंगड़ा भी बोलते हैं वो है, फिर फजली है और भी मल्लिका है, ये सब सारे आम का आप सिलसिला शुरू हो गया है। तो ये आम हम लोग, हमारे किसान भाई जानते हैं कि आम का क्या इम्पोर्टेंस है। इसे फलों का राजा कहा जाता है
0: जी,
1: और इसमें प्रचुर मात्रा में विटामिन ए वो पाए जाते हैं, जो कि विटामिन ए का जो रोल है वो सब लोग जानते हैं कि ये आँख के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है
0: जी जी।
1: और ऐसे तो और भी सारे विटामिन्स की ज़रूरत पड़ती है इंसान को अपनी ज़िंदगी में, तो विटामिन ए का ये प्रचुर मात्रा आम में पाई जाती है, और आम अभी आ चुका है। अब बात ये है कि आम हाईली सीजनल क्रॉप है, हालांकि ये बहुत सी वराइटीज़ है जो कि अलग अलग टाइम में अलग अलग होते हवाते ये जुलाई अगस्त तक चला जाता है ये आम का सिलसिला, लेकिन ऐसा लीची के साथ नहीं है। आम के साथ ये हमारा सौभाग्य है कि आम की बहुत सी वैरायटीज़ यहाँ हमारे क्लाइमेट में ग्रो होती है, और आम अभी शुरू हो गया है, अब ये अगस्त तक चलता रहेगा। अब है कि आम जो है तो चूंकि इतने हाईली प्राइज्ड फ्रूट है, इतना उसका महत्वपूर्ण उसका रोल है हमारे बॉडी पर, विटामिन ए है और भी बहुत से फाइटोकेमिकल्स हैं उसमें, विटामिन्स है, मिनरल्स है, तो ये सारा जो है वो सीज़न भर ही हम इस्तेमाल कर पाते हैं। अगर आउट ऑफ सीज़न, और ये खाने में इतना स्वादिष्ट होता है कि बच्चे जवान और बूढ़े सभी इसको लाइक करते हैं। तो आम का जो है तो हम कुछ जो सीज़न भर है तभी हम इसको यूज़ कर पाएंगे। बाद में इसको यूज़ करने के लिए अगर किसी की ख्वाहिश होती है, किसी की इच्छा होती है कि आम का पेय पदार्थ हम पिएं, तो ऐसे तो बाज़ार में बहुत सी सिंथेटिक मिनरल्स, ये सिंथेटिक बिवरेजेस वगैरह भी उपलब्ध हैं, लेकिन वो कहाँ तक सही है ये कहा नहीं जा सकता है। लेकिन हम आपको आज ये बताएंगे कि आम से प्रसंस्कृत करके कैसे उसके उत्पाद बनाए जा सकते हैं, और कम से कम साल भर तो रखा ही जा सकता है। तो ये जो है तो हम आज इसमें बताना चाहेंगे कि आम से क्या क्या बन पाता है। इसमें आम से जो है प्रिजर्व्ड मैंगो पल्प, जैसे कि आम का जो गुठली होता है उसको निकाल के छिलका सा छील करके हम उसका पल्प को भी प्रिजर्व कर सकते हैं, जो कि बाद में हम यूज़ कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि स्क्वैश उसी पल्प से, जब पल्प को हमने प्रिजर्व कर लिया है और भंडार में रख के भंडारण कर लिया है, उसके बाद उसका हम स्क्वैश बना सकते हैं। स्क्वैश एक पेय पदार्थ होता है जो कि चीनी के शीरे के साथ मिला के बनाया जाता है, और उसी को जब तीन गुना पानी में मिला दिया जाता है तो ये आरटीएस बन जाता है हमारा, जो कि डायरेक्ट नुक्कड़ पर जो आप पीते हैं, फ्रूटी पीते हैं, या और भी जैसे कि माजा है, ये सब आरटीएस है, रेडी टू सर्व। तो ये माजा वगैरह को जो है तो हम लोग उसमें कुछ गम मिलाया जाता है इसलिए वो गाढ़ा होता है, लेकिन नॉर्मली इसमें 10% ही जूस रहता है, 10-15% मैंगो जूस रहता है। गाढ़ा पीने में इसलिए लगता है कि उसमें गम्स मिलाए जाते हैं, और गम्स मिला के उसको पैकिंग किया जाता है। तो ये स्क्वैश और आरटीएस बन गया मैंगो पल्प से। और अब आता है बहुत ही महत्वपूर्ण है कि मैंगो जैम। आजकल बच्चे टीवी वगैरह में एड देखते हैं, तो अब टिफ़िन में कोई जो है रोटी भुजिया ले जाना नहीं चाहता है, अब चाहता है कि वो जैम हम ले जाएं। तो मैंगो से हमारे उद्यमी भाई भी इसका व्यवसाय कर सकते हैं जैम बना करके, और घर की महिलाएं भी इसको बना करके रख सकती हैं घर में, ताकि बच्चों को भी दिया जा सके, और ये बहुत ही स्वादिष्ट रोटी में खाने के लिए बहुत अच्छा होता है। इसके बारे में भी अब ये बताएंगे। अगला प्रोडक्ट है, जो पाँचवा प्रोडक्ट हमने अभी बताने जा रहे हैं, वो है डिहाइड्रेटेड मैंगो स्लाइसेस। आप देखते होंगे कि गाँव में मैंगो या दूसरे सब्ज़ी वगैरह को भी सुखौता बनाया जाता है धूप में रख के, लेकिन धूप में रखने से इसका बहुत ही पौष्टिक ह्रास होता है, जिसमें जो विटामिन मिनरल्स जो होते हैं उसमें बहुत ही कमी आ जाती है। उसका इनहाइजीनिक कंडीशन में वो चूँकि सुखाया जाता है बाहर धूप में, उसमें डस्ट पड़ जाता है, उसमें बहुत सा इन्फेक्शन लगने का डर होता है। तो इस तरह से अभी जो है विकसित की गई है एक कैबिनेट ड्रायर, वो बिल्कुल बंद डब्बा रहता है, उसमें अंदर में हीटर लगा रहता है और फैन रहता है, तो फैन से जल्द जो है उसको मैंगो स्लाइसेस को काट के और उसको डाल दिया जाता है, और डालने के बाद वो ड्राई करके हम लोग ड्राइड मैंगो स्लाइसेस भी पैक करके रख सकते हैं, और वो काफ़ी दिनों तक रह सकता है। और वो हम लोग ट्रेवल में जा रहे हैं तो आप एक पैकेट रख लिया उसमें मैंगो स्लाइसेस है, तो इस तरह से मैंगो स्लाइसेस को सुखौता बना करके, लेकिन हाँ कैबिनेट ड्रायर में ही हो, तब उसका रंग और उसका जो पौष्टिक तत्व है वो सब इंटैक्ट रहता है। और अगला है कि कैंड मैंगो स्लाइसेस। कैंड मैंगो स्लाइसेस क्या है कि जैसे कि आप देखते होंगे कि डब्बा में, टीन के डब्बा में वो जो है तो बहुत सी चीज़ आने लगे हैं, अब तो हर जगह मिलने लगा है, ये टमाटर का प्यूरी मिल रहा है, मटर मिल रहा है, आप हल्दीराम का रसगुल्ला देखते होंगे, इसको कैनिंग बोलते हैं, कैनिंग डब्बा बंदी। तो डब्बा बंदी करके भी हम लोग मैंगो स्लाइसेस को रख सकते हैं, वो साल भर रह जाता है, और वो सबसे अच्छा और बिना प्रिजर्वेटिव का ये मेथड है। और इसके लिए लेकिन कुछ उपकरण वगैरह लगते हैं जिसके में लागत आती है, एक बार उपकरण में की लागत में आप पैसा खर्च कर दीजिए फिर अपना काम करते रहिए। तो ये सब उत्पाद हैं, उसके 6 उत्पाद का वर्णन हमने किया है, इसको अब हम बना सकते हैं। और
0: जी तो कैसे बना सकते हैं डॉक्टर साहब, ये भी थोड़ा जानना।
1: उत्पाद बनाने के लिए देखिए एक एक करके मुझे बताना होगा कि प्रिजर्वेशन ऑफ मैंगो पल्प, कैसे हम उसको संरक्षित कर सकते हैं मैंगो के पल्प को। तो मैंगो के पल्प को संरक्षित करने के लिए क्या होता है कि पहले उसको आम को बढ़िया से धो लिया जाता है, वॉशिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए कि एक्स्ट्रा डर्ट है वो है उसमें जो रस निकल जाता है ऊपर से, जो एसिड बोलते हैं उसको, वो निकल जाता है, वो भी धुल जाना चाहिए। और उसके बाद जो है तो उसको बढ़िया से धो करके उसको पीलिंग नाइफ से, स्टेनलेस स्टील का हो, लोहे का बिल्कुल नहीं हो, उससे हम लोग छील लेते हैं। और छीलने के बाद उसको जो है इसमें थोड़ा सा स्लाइसेस काट लीजिए, अगर आपके पास फ्रूट मिल है तो, फ्रूट मिल कुछ नहीं है बल्कि ये मिक्सी जो घर में है ना उसी तरह का होता है फ्रूट मिल, ज़्यादा क्वांटिटी में अगर किसी को पल्प निकालना है तो वो स्लाइसेस काट करके वो फ्रूट मिल में डाल देते हैं, और उसके बाद उसमें वो होमोजेनाइज होकर के बिल्कुल पिसा जाता है। जैसे हम लोग घर में किचन में मिक्सी वगैरह में अगर छोटे पैमाने पर करके देखना चाहते हैं कोई, तो वो जो है तो घर में मिक्सी में उसको स्लाइसेस को काट करके और उसको बिल्कुल होमोजेनाइज करके बना लेते हैं पल्प। अब पल्प निकालने के बाद क्या किया जाता है कि पल्प निकालने के बाद अगर उसमें रेशा है तो थोड़ा मोटे कपड़े से, मोटे जाल वाले कपड़े से उसको छान लेते हैं, इसलिए कि महीन कपड़े वाले जाल से अगर छानेंगे तो वो उसमें आएगा ही नहीं, बहुत कम आएगा। उसके बाद ताकि उसमें इसलिए छानना ज़रूरी है कि अगर कुछ आम में रेशा वगैरह होता है तो रेशा वाले आम को एक तो लेना ही नहीं है, और जो रेशा वाला आम नहीं है जैसे जरदालू है, उसके बाद मालदा है, जो है ये क्या नाम है, फजली है, मल्लिका है, ये सब को हम आप यूज़ कर सकते हैं इसमें। मल्लिका और फजली तो काफ़ी बड़े बड़े आम होते हैं, इसको काटने में भी स्लाइसेस उसमें ज़्यादा स्लाइस निकलता है, पल्प पार्ट ज़्यादा रहता है और गुठली की पार्ट कम होता है, इसलिए वो ज़्यादा सूटेबल है। वो करके उसको जो है हम लोग मिक्सी में ग्राइंड कर लेते हैं, छान लेते हैं, और छानने के बाद उसको जो है उसमें थोड़ा देर उसको चूल्हा पे चढ़ाते हैं, यानी वो फॉर ए फ्यू मिनट्स, ताकि उसमें से अंदर से मतलब 65 to 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म किया जाता है उसको 2-3 मिनट, जबकि और लेमैन लैंग्वेज में ऐसा बताएंगे कि आम के जो ये है पल्प है उससे भाप जब निकलने लगे, बिल्कुल हल्का भाप निकलने लगे, मतलब 100 डिग्री तक नहीं टेम्परेचर पहुंचना चाहिए, भाप जब निकलने लगे उसको उतार लीजिए, तो इसको पास्तुरीकरण कहते हैं, पास्तुरीकरण हुआ, ये पास्तुराइज कर लिया उसको, उसके बाद उतार लिया, और उतारने के बाद इसमें परिरक्षक डालते हैं, रासायनिक परिरक्षक। इसमें हम लोग नॉर्मली पोटाशियम मेटाबाइसल्फाइड या सोडियम बेंजोएट डालते हैं, सोडियम बेंजोएट अगर डालना है क्योंकि पल्पी है इसलिए सोडियम बेंजोएट ज़्यादा सूटेबल होगा, तो सोडियम बेंजोएट में बेंजोइक एसिड जो होता है वही होता है इसमें, तो वो उसमें 0.02% 200 मिलीग्राम प्रति लीटर, यानी एक एक ग्राम जो है पाँच लीटर अगर पल्प है तो आप उसमें सिर्फ एक ग्राम डालेंगे, आप 1000 मिलीग्राम एक ग्राम डाल करके उसको स्वच्छ जल में, यानी पानी है उसको बॉयल कर लीजिए, आप बॉयल करके उसमें डाल दीजिए और डालने के बाद उसमें उसको पूरे पल्प में उसको मिक्स कर दीजिए। अब मिक्स करने के बाद जो है उसको फिर हम लोग अगर अगर हेड स्पेस छोड़ा है तो थोड़ा सा पोटेशियम मेटाबाई सल्फाइड भी ऊपर में थोड़ा दे सकते हैं, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और उसके बाद बंद करके उसको सील कर देते हैं और इस पल्प को हमने प्रिजर्व कर लिया। अब ये पल्प अगले साल तक के लिए प्रिजर्व हो गया, और जब इसकी ज़रूरत पड़ी, मान लिया आपको स्क्वैश बनाना है या आरटीएस बनाना है या जैम बनाना है या कुछ भी बनाना है, तो ये आप इससे निकाल के व्यवहार कर सकते हैं। जब आम का सीज़न ख़त्म भी हो जाए फिर भी आप इसको निकाल करके आप व्यवहार कर, नॉर्मली तो वही करेंगे लोग कि जब प्रिजर्व करेंगे तो उसको जब जब तक आम चल रहा है उसी से हम अपना बना सकते हैं जो भी बनाना हो उत्पाद, तो उस तरह से वो हम लोग सील करके रख देते हैं। और अब स्क्वैश देखिए, अब स्क्वैश पर आते हैं, नेक्स्ट प्रोडक्ट है स्क्वैश। ये बीवरेजेस में आता है, पेय पदार्थ, नॉन फर्मेंटेड बीवरेजेस। तो अनफर्मेंटेड बीवरेजेस में दो आते हैं, स्क्वैश एंड आरटीएस। तो स्क्वैश बनाने के लिए क्या है कि ये पल्प को हम लोग, मान लिया अगर हम एक लीटर पल्प को हमने लिया और लेने के बाद उसको जो है उसका डेढ़ गुना चीनी का शीरा बना लेते हैं, डेढ़ गुना चीना, दुगना इसलिए नहीं देते हैं कि ऑलरेडी इसमें चीनी है। ये आम मीठा आम है, पका हुआ आम है, ये कच्चा आम अगर हम लेंगे तो कच्चे आम में फिर हमको चीनी दुगना मिलाना पड़ेगा। तो डेढ़ केजी चीनी इसमें हम डालते हैं, और इसमें नहीं डालेंगे, मतलब अलग से शीरा में डालेंगे। शीरा बनाने के लिए उसका हाफ हाफ पानी डालेंगे, यानी अगर डेढ़ केजी चीनी लिया है तो उसमें 750 मिलीग्राम मिलीलीटर पानी मिला करके उसको गर्म करके शीरा हम लोग तैयार कर लेंगे। अब है कि अगर हम जब शीरा मिला रहे हैं तो हल्का सा उसमें सिट्रिक एसिड मिलाते हैं। एक किलो चीनी अगर है तो उसमें 4 ग्राम सिट्रिक एसिड, चूँकि हमने 1.5 किलो चीनी दिया है तो इसलिए हमको 6 ग्राम सिट्रिक एसिड को पानी में घोल के उस उबलते हुए नहीं, मैंने गर्म जो हम चढ़ाए हैं गर्म करने के लिए ताकि चीनी उसका घुल जाए पानी में, तो उसको हम लोग डाल देते हैं सिट्रिक एसिड को। और सिट्रिक एसिड से क्या होता है कि वो चीनी की जो गंदगी है अगर, तो वो भी निकल जाती है, उसमें जो कीड़ा मकोड़ा मान लिया अगर आ गया है तो वो भी निकल जाता है। उसके बाद जब शीरा ये बन जाता है हमारा, चीनी घुल जाता है, सिर्फ चीनी घुलाना है, शीरा को बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है। और उसके बाद जब इसको जो है हम लोग छान लेते हैं, और छानने के बाद धीरे धीरे उसमें वो जो हमारा पल्प है, 1 केजी पल्प है, पल्प को किसी बर्तन में डाल देते हैं, बोतल से निकाल के पल्प में डाल देते हैं या डब्बे से, और उसके बाद 1 लीटर उसमें धीरे धीरे हम लोगों को ये शीरा जो है, चीनी का जो सिरप है, उसको धीरे धीरे मिलाते हैं और चलाते जाते हैं ताकि वो उसमें विलीन हो जाए, सारा शीरा जो है धीरे धीरे उसमें घुल जाए। और घुलने के बाद ये जो क्वांटिटी मेरा 1 केजी से बढ़ के 2.5 केजी हो गया, तो इसको हम लोग क्या करते हैं कि अब ये शीरा मेरा, ये स्क्वैश तैयार हो गया। चूँकि परिरक्षक हमने पहले से दे रखा है उसमें, इसलिए दोबारा परिरक्षक देने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम डायरेक्ट बना रहे हैं आम का तो उसमें हम इस समय परिरक्षक दे सकते हैं, तो उसमें 0.06% डालते हैं पोटाशियम मेटाबाई सल्फाइट, इसमें लिख लीजिए, चूँकि इसमें पानी मिल गया है, इसमें चीनी मिल गया है, हालांकि चीनी भी प्रिजर्वेटिव है लेकिन उस क्वांटिटी में हम नहीं दे रहे हैं जितना उसमें प्रिजर्व हो सके, तो उसमें एक थोड़ा बहुत जो है प्रिजर्वेटिव भी डालते हैं। तो 0.06% यानी 600 मिलीग्राम 1 लीटर में डालना है। तो अगर ये 2 लीटर हमारा बना है पूरा चीनी का सिरप और ये गूदा मिलाने के बाद, तो उसमें हम लोगों को 1200 मिलीग्राम यानी 1 ग्राम से थोड़ा ज़्यादा, सवा ग्राम के करीब उसको हम लोग पोटाशियम मेटाबाई सल्फाइड, इस चीज़ को जान लीजिए। उस समय हम लोग पल्प को प्रिजर्व करने के लिए सोडियम बेंजोएट डाले थे, अभी हमें पोटाशियम मेटाबाई सल्फाइड डालना है। और डाल के उसमें अच्छी तरह से मिक्स करके स्टरलाइज्ड बॉटल में, अगर प्लास्टिक का बॉटल है तो पानी से धो के उसको धूप में अच्छा से सुखा के, और उसको जैसे पानी का जो बॉटल मिलता है हम लोग आरओ वाटर वगैरह पीते हैं उसमें भी प्रिजर्व कर सकते हैं, उसको करके उसमें जो है बढ़िया से स्वच्छ जल से धो के धूप में सुखाने के बाद हम लोग जो है उसको उसमें भर देते हैं, भरने के बाद कैप को जो है सील कर देते हैं। तो ये हमारा स्क्वैश बन गया। अब स्क्वैश में अगर मुझे व्यवसाय करनी है तो मुझे लाइसेंस लेना होगा, FSSAI का लाइसेंस लेना होगा। लाइसेंस की भी प्रक्रिया अब गवर्नमेंट ने बहुत आसान कर दिया है, वो ऑनलाइन अप्लाई होता है। इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट हर शहर में होता है, तो इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट में ये इसका पता लगाना होगा कि भाई हमने ट्रेनिंग लिया है या सीखा है। हमारे यहाँ किसी विश्वविद्यालय सबौर में ट्रेनिंग भी हम लोग करवाते हैं, तो ट्रेनिंग आप ले लीजिए, सर्टिफिकेट हो जाएगा, तो उससे आपको बैंक का लोन भी मिलने में आसानी होगी और आपको लाइसेंस भी मिलने में आसानी होगा। तो ये आप करके व्यवसाय भी कर सकते हैं और कर सकते हैं। अब अगर मान लिया RTS बनाना है आपको, नुक्कड़ पर छोटे छोटे 100-150 ml में आपको बाहर भेज करके, जैसे लोग फेंटा कोका कोला जो कोल्ड ड्रिंक जो कार्बोनेटेड बेवरेजेस पीते हैं लोग, तो अब ये लोग जान रहे हैं कि इसमें कुछ भी नहीं है सिवाय गैस के और कुछ भी नहीं है। तो उसमें क्या है कि आप लोग बेवरेज बना, इसी स्क्वैश को अगर 3 times आप मिला देते हैं पानी इसमें, तो ये बन गया RTS। और RTS बनाने के बाद उसको बॉटलिंग कर दीजिए, क्रॉन कॉर्क सीलिंग कर दीजिए, और उसके बाद एक बड़े से पतीली में डाल करके उसको फिर से स्टरलाइज करना पड़ता है बोतल के समेत, और इसको जो है तो 70-80 degrees centigrade पर कम से कम 15 minutes तक उसको बॉयल करते हैं। तो उसमें ये सावधानी बरतनी पड़ती है कि इसमें जो बोतल है वो हीट रेसिस्टेंट होना चाहिए, नहीं तो इसमें जाने के बाद बॉयलिंग वाटर में जो पानी में जाएगा ये उबलते पानी में, गर्म पानी में, तो वो फट सकता है। तो हीट रेसिस्टेंट बोतल लेना होगा। दूसरा ये प्रॉब्लम है कि इसमें जहाँ पर आप मान लिया सेल के लिए डाल रहे हैं किसी नुक्कड़ पर, तो उसको फिर से बॉटल को वापस लेना होगा, ये एक है प्रॉब्लम। और ये बहुत आसान है, लेकिन बहुत आसान है शीशे के बोतल में करना, इसलिए कि उसको आप फिर से स्टरलाइज कर रहे हैं। और इस तरह से हम लोग RTS भी बना सकते हैं। घर में अगर आपके पास स्क्वैश का बॉटल रखा हुआ है तो आप

0: है ना। अब एक चीज और बताते चले हम कि ग्रीन मैंगो के बारे में हमने नहीं बताया।
1: जी जी।
0: अभी हरा आम का देखिए सीजन है और हरा आम बहुत टूट रहा है, गिर रहा है, आंधी तूफान आना नेचुरल है, वो आता ही है इस समय में, तो उसको हरा आम के लिए भी इसी तरह से हम लोग प्रिजर्व कर सकते हैं पल्प को। लेकिन इसमें क्या है कि आम को छीलने के बाद उसको हम लोग बॉयल कर लेते हैं। अच्छा। और बॉयल करने के बाद उसको जो है फिर उसको निकाल करके हाथ से बिल्कुल उसका पल्प निकाल कर उसको छान लेते हैं। और बॉयल जब हमने कर लिया है तो उसको पास्टोरीकरण करने की ज़रूरत नहीं है, बॉयलिंग से वो निकला है पल्प, क्योंकि कड़ा पल्प रहता है कच्चे आम में। और बॉयलिंग के बाद उसको निकाल दिया और निकालने के बाद उसको उसी तरह से प्रिजर्वेटिव हम लोग डाल देते हैं उसमें, जैसे हमने पके आम के लिए बताया। और क्वांटिटी वही रहेगी उसकी भी, सोडियम बेंजोएट और पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड। स्क्वैश बनाने के लिए भी सीख वही विधि अपनाई जाएगी, लेकिन उसमें यह है कि स्क्वैश बनाने के लिए उसमें हमने 1.5 किलो चीनी लिया था, क्योंकि आम मीठा होता है पका हुआ आम, तो कच्चे आम के लिए मुझे 2 किलो चीनी लेनी होगी। और उसमें भी सैट्रिक एसिड डालना है, क्योंकि चीनी डाल रहे हैं तो सैट्रिक एसिड उस चीनी को खट्टे मीठे में बदलने के लिए उसको सैट्रिक एसिड को डालना पड़ता है, और चीनी की सफाई के लिए भी और उसमें जो गंदगी है वो भी निकल जाए उसके लिए भी करते हैं। और फिर उसके बाद उसको उसमें तभी है कि ग्रीन मैंगो में हम लोग चूँकि रंग नहीं होता है उसमें, तो उसमें हरा आम का जो है एसेंस भी डालते हैं और कलर भी डालते हैं। तो इसमें कलर और एसेंस का जो परसेंटेज है उसमें 0.001% है, हल्का बिल्कुल। अब वो देखिए, आप लोग ये नहीं समझिएगा कि जो बाज़ार में खाने का रंग मिल रहा है, रंग जो जनरली जो हलवाई लोग यूज़ कर रहे हैं कि वो उठा के ले आते हैं रंग और डाल देते हैं, उसमें लिखा हुआ है आप देखेंगे पैकेट पर कि दिस इज़ नॉट फॉर फूड पर्पस। तो उसके लिए अलग से बुश कंपनी का या और भी बहुत सी कंपनी है, तो उसका जो है तो वो रंग होता है अलग से आता है, वो खाने वाला रंग बड़े बड़े शॉपिंग मॉल में आप देखिएगा कि वो अलग से आता है, 2 ग्राम 3 ग्राम का ही पैकेट आता है, ज़्यादा नहीं आता है, इसलिए कि बहुत कम पड़ता है वो। तो घर में किचन में रखने के लिए उतना ही बहुत है। तो ये रंग भी और एसेंस भी, एसेंस भी आपको अब देखिएगा कि एसेंस जो है FFB कंपनी का हम लोग यूज़ करते हैं, वो वोकहार्ट का भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये एसेंस भी 0.001%, कलर डालना अगर है तो 0.001%, एप्पल ग्रीन कलर डालना होगा, एप्पल ग्रीन कलर डालना है ग्रीन मैंगो के लिए। और कलर जो कलर तो राइप मैंगो में तो कलर रहता ही है, इसलिए उसमें देने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये तो हो गया RTS स्क्वैश और मैंगो पल्प को कैसे हम पके आम का और कच्चे आम का दोनों का प्रिजर्व कैसे करेंगे, इसके बारे में हमने बता दिया आप।
1: जी डॉक्टर साहब, आपको बहुत बहुत धन्यवाद इस अच्छी और विशेष जानकारी के लिए। और आशा करते हैं आम को लेकर बहुत सारे लोग उत्सुक होते हैं, सभी लोगों को ये आम फल का राजा है, इसलिए काफ़ी पसंद होता है, स्वादिष्ट भी है और पौष्टिकता भी इसमें बहुत ज़्यादा रहती है। तो इसे लेकर, इसके उत्पाद को लेकर क्या कुछ हम बना सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा लोगों के मन में उत्सुकता रहती है जो आपने जानकारी दी। तो आशा करते हैं हमारे सभी श्रोताओं को इस वार्ता को सुनकर लाभ मिलेगा।
0: विशेष जानकारी के लिए आप हमारे विभाग बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर में, हमारा डिपार्टमेंट है फूड साइंस एंड पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी, खाद्य विज्ञान एवं तुलाई उपरांत प्रौद्योगिकी विभाग, इसमें आप संपर्क कर सकते हैं और हमसे आके भी पर्सनली मिल सकते हैं। हम लोग कंसल्टेंसी भी देते हैं किसानों को, और इन उद्यमी हमारे यहाँ से बहुत से उद्यमी बने हैं, काफी लोग काम भी कर रहे हैं इस पे।
1: तो श्रोताओं, अगले दिन एक अलग विषय के साथ फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।
2: 19 कृषि

0: है।
1: क्या आप तैयार हैं आम के अद्भुत संसार से रूबरू होने के लिए? बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर लेकर आ रहा है राष्ट्रीय आम समागम 2026, जिसका आयोजन 27 से 28 जून तक किया जाएगा। आइए और देखिए देश भर की सैकड़ों आम किस्मों की आकर्षक प्रदर्शनी, जहां स्वाद, सुगंध और रंगों का अनूठा संगम आपका स्वागत करेगा। इस विशेष आयोजन की थीम है स्वाद, संस्कृति और समृद्धि का संगम। आम समागम में किसानों, वैज्ञानिकों, उद्यमियों और आम प्रेमियों को एक ही मंच पर आने का

अवसर मिलेगा। कार्यक्रम के दौरान आयोजित होगी राष्ट्रीय कार्यशाला, जिसका विषय है आधुनिक तकनीक से गुणवत्ता युक्त उत्पादन, भंडारण एवं प्रसंस्करण। देश के प्रतिष्ठित विशेषज्ञ आम उत्पादन, मूल्य संवर्धन और प्रसंस्करण की आधुनिक तकनीकों पर अपने अनुभव साझा करेंगे। इस अवसर पर आयोजित होगा किसान वैज्ञानिक सम्मान समारोह, जिसमें बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश के उत्कृष्ट आम उत्पादकों को बेस्ट मैंगो फार्मर अवार्ड प्रदान किया जाएगा। महिला आम उत्पादकों एवं मूल्य संवर्धन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिला उद्यमियों के लिए भी विशेष सम्मान और नगद पुरस्कार की व्यवस्था की गई है। और अब आपके लिए एक सुनहरा अवसर, यदि आपके बाग में उत्कृष्ट गुणवत्ता के आम हैं या आपके पास किसी विशेष किस्म के आम उपलब्ध हैं, आप भी आम प्रदर्शनी में अपनी आम की किस्मों को प्रदर्शित कर सकते हैं। आपकी प्रविष्टियों का मूल्यांकन विशेषज्ञों द्वारा किया जाएगा और चयनित प्रतिभागियों को आकर्षक पुरस्कार एवं नगद राशि से सम्मानित किया जाएगा। और हाँ, आम प्रेमियों के लिए होगा एक विशेष आकर्षण, मैंगो ईटिंग प्रतियोगिता। इस रोमांचक प्रतियोगिता के विजेताओं को भी आकर्षक नगद पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। तो देर किस बात की, अपने श्रेष्ठ आमों के साथ आइए, प्रदर्शनी में भाग लीजिए, विशेषज्ञों से सीखिए, नई तकनीकों को जानिए और आकर्षक पुरस्कार जीतने का अवसर पाइए। 27 से 28 जून राष्ट्रीय आम समागम 2026 बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है।

0: सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि। नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो 90.8 एफएम ग्रीन और हमारे खास कार्यक्रम उन्नत कृषि कार्यक्रम में हम आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, अगर बात करें हम पिछले ज़माने की, तो लोग काफ़ी ज़्यादा शरीर से बलिष्ठ हुआ करते थे। क्यों? क्योंकि उनके खान पान का एक हिस्सा मड़ुआ यानी कि रागी भी हुआ करता था, जो हमारे शरीर को पोषण युक्त जो तत्व हैं वो तो देते ही थे और शरीर को बीमारियों से भी दूर रखते थे। तो आज डॉक्टर साहब हमारे बीच हैं, डॉक्टर आनंद। मैं आपको बता दूं, ये असिस्टेंट प्रोफेसर हैं प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स डिपार्टमेंट बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सबौर से, और आज रागी की वैज्ञानिक खेती के बारे में आज आपको बहुत सारी जानकारी देंगे। तो चलिए आज डॉक्टर साहब से सबसे पहले जानते हैं कि रागी की पौष्टिक और आर्थिक उपयोगिता के बारे में।
1: किसान भाई को नमस्कार। आज हम लोग विशेष रूप से चर्चा करेंगे मोटे अनाज, जो हमारे पूर्वज पहले बहुत अच्छी तरह से खेती करते थे, लेकिन जैसे जैसे हमारा कृषि विकास की ओर दौड़ा, विकास के पथ पर आगे बढ़ता जा रहा है, तो हम लोग मोटे अनाज को छोड़ते चले गए। लेकिन अब आवश्यकता है कि मोटे अनाज की खेती विशेष रूप से की जाए। तो किसान भाई, इसके लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मोटे अनाज में रागी का एक विशिष्ट स्थान है, क्योंकि रागी ऐसा फसल है जिसमें कैल्शियम की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। जैसे 100 ग्राम दाने में 344 मिलीग्राम इसमें कैल्शियम मिलता है, जिसका उपयोग करके हमारी जो हड्डियां हैं वो मजबूत होती ही हैं। रागी बच्चों और बड़ों के लिए सबसे उत्तम आहार है। जैसा कि हम जानते हैं कि मोटे अनाज में प्रोटीन, वसा, रेसा और कार्बोहाइड्रेट प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, उसी तरह रागी में 65-70% कार्बोहाइड्रेट, 8% प्रोटीन और 15-20% जो रेसा है, डायट्री फाइबर इसको बोलते हैं, तथा 2.5-3.5% खनिज लवण पाए जाते हैं, जो हमारे शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण विटामिन्स में थायमिन, राइबोफ्लेविन, नाइसिन एवं आवश्यक अमीनो एसिड की प्रचुर मात्रा पाई जाती है, जो कि विभिन्न शारीरिक क्रियाओं के लिए हमारे लिए बहुत आवश्यक होते हैं। जैसे रागी युक्त आहार में कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है, तो जो आजकल शुगर की बीमारी है उसमें भी यह बहुत अच्छा फायदा करता है। कैल्शियम व अन्य खनिज तत्वों के प्रचुर मात्रा होने के कारण जो हम लोग को आजकल बुढ़ापा में ऑस्टियोफोरोसिस बीमारी से हम लोग ग्रसित रहते हैं, से संबंधित बीमारियों तथा बच्चों में आहार हेतु विशेष रूप से यह बहुत ही लाभदायक है। इसके दानों का इस्तेमाल खाने में कई तरह के से किया जाता है। इसके दानों को पीसकर आटा बनाया जा सकता है, जिसे मोटी डबल रोटी, साधारण रोटी और डोसा बनाया जा सकता है। अनाज भंडारण कीड़े के प्रतिरोधी होने के कारण इसको हम लोग बहुत 50 साल तक अच्छी स्थिति में रख सकते हैं। और जैसा कि आजकल खाद असुरक्षित जो हमारे गरीब किसान हैं, ये उन लोगों के लिए एक वरदान फसल है।
0: डॉक्टर साहब, अब बात करते हैं इसके उत्पादन की और उन्नत शस्य क्रियाओं की।
1: जैसे रागी की खेती शुष्क और आंध्र शुष्क जलवायु इसके लिए सबसे उपयुक्त होती है। जैसा कि हमारे बिहार में इसकी खेती गर्मियों के मौसम में खरीफ की फसल के साथ की जाती है। इसकी खेती के लिए गर्मी का मौसम सबसे उपयुक्त होता है। खरीफ की फसल होने के कारण सर्दियां शुरू होने के पहले इसे काट लिया जाता है, इस कारण सर्दी का प्रभाव इस पर नहीं देखने को मिलता है। इसकी खेती के लिए सामान्य बारिश की जरूरत होती है, अधिक बारिश होना इसके लिए उपयुक्त नहीं है। रागी के पौधे गर्मियों के मौसम में अधिकतम 35 डिग्री तापमान पर आसानी से विकास कर लेते हैं, लेकिन शुरुआत में बीजों को अंकुरित होने के लिए 20 से 22 डिग्री तापमान की ज़रूरत होती है। उसके बाद पौधों के विकास करने के लिए 30 डिग्री के आसपास तापमान का होना उपयुक्त माना गया है। तो किसान भाई, जैसा कि हम लोग रागी का यदि हम लोग खेती करते हैं, तो भूमि का चुनाव हम लोग कैसे करना चाहिए, इसके बारे में हम जरा चर्चा करेंगे। रागी की खेती उपजाऊ और कार्बनिक पदार्थों से भरपूर मिट्टी में की जा सकती है, लेकिन अच्छा उत्पादन बलुई दोमट को सबसे उपयुक्त माना जाता है। इसकी खेती के लिए भूमि में जल भराव नहीं होना चाहिए, पानी नहीं लगना चाहिए, क्योंकि जल भराव होने की वजह से इसके पौधे खराब हो जाते हैं। इसकी खेती के लिए जो हमारी भूमि है उसका पीएच मान 5.5 से 8 के बीच होनी चाहिए और भूमि की तैयारी में हम लोग को कुछ बातों पर ध्यान देना है, जैसे पूर्व फसल में कटाई के पश्चात आवश्यकता अनुसार ग्रीष्म ऋतु में 1 या 2 गहरी जुताई कर देना चाहिए किसान भाइयों को, जिससे खेत से फसलों एवं खरपतवार के अवशेष एकत्रित हो उसे नष्ट कर दें। मानसून प्रारंभ होते ही खेत में 1 या 2 जुताई करके पाटा लगा के एकदम खेत को समतल कर दें। और अच्छी उपज लेने के लिए किसान भाई को चाहिए कि बुआई के पूर्व बीज को अच्छी तरह से साफ कर लें और उसके बाद जो फफूंदी नाशक दवा होती है कार्मेंडाजिम उससे उपचारित करके वहीं बोएं। रागी की बुआई 2 तरह से की जाती है, एक होती है सीधी बुआई और दूसरा होता है रोपा पद्धति, इसको ट्रांसप्लांटेड हम लोग कहते हैं। सीधी बुआई जून के अंतिम सप्ताह से जुलाई के मध्य तक मानसून वर्षा होने पर की जाती है और छिटकवा विधि या कतारों में बोई जाती है। पंक्ति में बुआई करने हेतु जो हमारा बीज लगता है वो 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, यदि हम छिटकवा विधि से बुआई करते हैं तो उसमें बीज की मात्रा बढ़ जाती है जो 12 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखते हैं। कतार से कतार की दूरी हम लोग को हर समय 22.5 से 30 सेंटीमीटर रखनी चाहिए और पौधे से पौधे की दूरी 8 से 10 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। रोपाई के लिए नर्सरी में बीज के मध्य से जुलाई के प्रथम सप्ताह तक डाल देनी चाहिए, नर्सरी में लगा देनी चाहिए। 1 हेक्टेयर में रोपाई के लिए बीज की मात्रा 5 किलोग्राम लगती है एवं 20 से 25 दिनों का पौध जो सीडलिंग है होने पर रोपाई करनी चाहिए। रोपाई के समय कतार से कतार की दूरी 22.5 सेंटीमीटर और पौधा से पौधा की 10 सेंटीमीटर रहनी चाहिए, जिससे कि हमारा अच्छा उत्पादन मिल सके। रागी के बीजों में दोनों विधि से रोपाई के दौरान इसके बीजों को भूमि में 3 से 4 सेंटीमीटर के गहराई पर बीज को बोना चाहिए ताकि बीज का अंकुरण अच्छा हो सके। दूसरे सबसे बड़ी बात है कि खेत की तैयारी हम लोग कैसे करें। तो रागी की रोपाई के लिए भुरभुरी मिट्टी का होना बहुत आवश्यक माना जाता है, क्योंकि भुरभुरी मिट्टी होने से बीजों का अंकुरण अच्छे से होता है और रागी की खेती के लिए शुरुआत में खेतों की तैयारी के दौरान खेत में मौजूद पुरानी फसलों को अवशेषों को नष्ट कर खेत को मिट्टी पलटने वाले हल से अच्छी तरह जुताई कर दें। उसके बाद कुछ दिन के लिए खेत को खुला छोड़ दें ताकि सूरज की धूप को मिट्टी में मौजूद हानिकारक जो कीट रहते हैं उससे नष्ट हो जाए। और खेत को खुला छोड़ने के बाद खेत में जैविक खाद हम लोग को, जैसे आजकल सरकार भी बहुत ज़्यादा इस पर जोर दे रही है कि जैविक खाद को हम लोग अपनाना चाहिए, तो जैविक खाद के रूप में पुरानी गोबर की खाद को डालकर उन्हें अच्छी तरह से मिला दें और खाद को मिट्टी में मिलाने के लिए खेत को कल्टीवेटर के माध्यम से 2 से 3 तिरछी जुताई कर दें। खाद को मिट्टी में मिलाने के बाद पानी चलाकर खेत का पलेवा कर दें। पलेवा करने से एक फायदा है कि 3-4 दिन बाद जब जमीन की ऊपरी सतह हल्की सूखी हुई दिखाई देने लगे तो फिर खेत की जुताई कर दें। उसके बाद खेत में रोटावेटर चलाकर मिट्टी को भुरभुरा बना लें और मिट्टी को भुरभुरा बनाने के बाद खेत में पाटा लगाकर भूमि को समतल कर दें ताकि बारिश के मौसम में जल भराव जैसी समस्या का सामना न करना पड़े, जो एक बहुत बड़ा रागी के फसल में एक है कि यदि पानी में जल भराव होता है तो हमारा फसल नहीं अच्छा होगा। जैसे उर्वरक की मात्रा के बारे में किसान भाइयों को जरा बता दें, रागी के पौधों में उर्वरक की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। इसकी खेती के लिए शुरुआत में खेत की तैयारी के वक्त लगभग 12 से 15 गाड़ी जो होता है पुरानी गोबर की खाद को खेत में डालकर अच्छे से मिट्टी में मिला देना चाहिए। इसके अलावा यदि हम रासायनिक खाद के रूप में 1.5 से 2 बोरे NPK की मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से, यानी यदि हम रेनफेड कल्टीवेशन वर्षा आधारित खेती करते हैं तो उसमें 40-20-20 यानी 40 केजी नेत्रजन, 20 केजी फास्फोरस और 20 केजी पोटास। यदि हम इरिगेटेड कंडीशन यानी सिंचित अवस्था में रागी की खेती कर रहे हैं तो आखिरी जुताई तो उसमें जो उर्वरक की मात्रा होती है वो 60-30-30 यानी 60 केजी नेत्रजन, 30 केजी फास्फोरस P2O5 और 30 केजी पोटास प्रति हेक्टेयर की दर से देना चाहिए। तो नेत्रजन की जो आधी मात्रा होती है और फास्फोरस और पोटास की पूरी मात्रा खेत की आखिरी जुताई के वक्त खेत में छिड़क कर मिट्टी में मिला देना चाहिए और दूसरी जो आधी मात्रा शेष आधी मात्रा जो नेत्रजन की होती है वो प्रथम सिंचाई के बाद उसमें दे देना चाहिए। तो एक और सबसे बड़ी चीज़ है वो खरपतवार नियंत्रण, जो रागी के खेत में खरपतवार नियंत्रण रासायनिक और प्राकृतिक दोनों तरीकों से किया जाता है। यदि हम रासायनिक तरीके से खरपतवार के लिए नियंत्रण के लिए बीज रोपाई के पहले एक खरपतवार नाशी होता है आइसोप्रोट्रोन, उसका डोज जो है 0.5 केजी एक्टिव इंग्रेडिएंट पर हेक्टेयर, ये रेनफेड कंडीशन में जो रेनफेड जो वर्षा वर्षा क्षेत्र है उसमें हम लोग यूज करते हैं, और सिंचित क्षेत्र में ऑक्सीफ्लोरोफेन 0.1 लीटर एक्टिव इंग्रेडिएंट पर हेक्टेयर की उचित मात्रा का छिड़काव खेत में कर देना चाहिए। यदि हम प्राकृतिक तरीके से खरपतवार नियंत्रण पौधे को की गुड़ाई कर लिया जाता है तो इसके लिए शुरुआत में पौधे की रोपाई के लगभग 20 से 22 दिन बाद उसकी पहली निकाई गुड़ाई कर दें, और रागी की खेती में प्राकृतिक तरीके से खरपतवार नियंत्रण के लिए दो बार निकाई गुड़ाई काफ़ी आवश्यक है। इसके पहले निकाई गुड़ाई के लगभग 15 दिन बाद पौधों को एक बार और गुड़ाई कर दें, यानी 45 दिनों तक जो हमारा रागी का खेत हो वो खरपतवार से मुक्त हो।
0: जी, और अब बात करते हैं अधिक उपजशील और अनुशंसित किस्मों के बारे में।
1: तो किसान भाई, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अच्छी उपज लेने के लिए किसान भाइयों को चाहिए कि अनुशंसित किस्में तथा जो अधिक उपजशील हो तथा गुणवत्तापूर्ण बीज का ही चयन करना चाहिए। तो एक जो किस्म है वो है VL मांडू 379, जो हमारे विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान से शाला जो अल्मोड़ा में है वहाँ से विकसित की गई है। ये अभी 2018 में CBRC से भी नोटिफाइड वैरायटी है। इसकी परिपक्वता अवधि 103 से 111 दिन में ये मैच्योर कर जाती है, परिपक्व हो जाती है। इसकी औसत उपज बहुत अच्छी है, 31.3 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है, और इसका बुआई का समय 2 मई से जून के प्रथम सप्ताह तक इसके बुआई कर सकते हैं। दूसरी जो अच्छी प्रभेद है वो OEB 526, ये OEB 526 ओडिशा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो भुवनेश्वर में अवस्थित है वहाँ की से विकसित की गई है। इसकी परिपक्वता अवधि 110 से 115 दिनों की ये प्रभेद है। इसकी औसत उपज 25 से 26 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है, और यह जो झुलसा रोग इसमें लगता है उसके प्रति मध्यम प्रतिरोधी है। दूसरा जो अधिक उपजशील किस्म है वो OEB 532, ये भी ओडिशा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भुवनेश्वर से विकसित की गई है, 2012 में रिलीज हुई, जिसकी इसकी भी परिपक्वता इसे पकने की अवधि है 110 से 115 दिन। इसकी औसत उपज 22 से 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है, ये भी झुलसन रोग के प्रति मध्यम प्रतिरोधी है। इसके अलावा दो और प्रभेद जो हमारे बिहार के लिए अनुशंसित है, जोन के लिए अनुशंसित है, वो उसमें है VL 352 जो विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधानशाला अल्मोड़ा से विकसित की गई। इसकी परिपक्वता अवधि ये 100 ड्यूरेशन की वैरायटी है, ये 95 से 100 दिनों में तैयार हो जाती है। इसकी औसत उपज 33 से 35 क्विंटल पर हेक्टेयर है, ये भी झुलसा रोग के प्रति मध्यम प्रतिरोधी है। एक और किस्म है VL 376, इसकी परिपक्वता अवधि 103 से 109 दिनों की है, औसत उपज 29 से 31 क्विंटल की प्रति हेक्टेयर है, और झुलसा रोग के प्रति मध्यम प्रतिरोधी है। इसके अलावा दो पुरानी प्रभेद भी है, जैसे A404, ये BAU रांची से विकसित की गई, और RAU8, ये RAU ढोली से विकसित की गई। दो किस्में हैं जो 110 से 115 दिन में तैयार हो जाती है, और इसकी औसत उपज भी 22 से 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। और किसान भाई इसकी इस अनुशंसित किस्मों का यदि चयन कर खेती करते हैं तो रागी से उन्हें अच्छी मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं।
0: जी, और रागी में लगने वाले कौन कौन से रोग एवं कीट हैं उनके बारे में थोड़ा बताएं, और रोकथाम कैसे करें हम
1: रागी में? जैसे जो फफूंद जनित दो रोग इसमें मुख्यतः लगते हैं, एक है झुलसन एवं दूसरा है भूरा धब्बा। रागी की प्रमुख रोग व्याधियां हैं जिनका समय पर निदान नहीं होने से उपज में हानि होता है। जो झुलसन रोग लगता है वो रागी की फसल पर पौध अवस्था से लेकर बालियों के दाने बनने तक किसी भी अवस्था में फफूंद जनित झुलसन रोग का प्रकोप देखा गया है। संक्रमित पौधे की पत्तियों में भिन्न भिन्न माप के आँख के समान धब्बे बन जाते हैं, जो मध्य के धूसर और किनारों पर पीले पीले रंग के होते हैं। अनुकूल वातावरण में ये धब्बे आपस में मिल जाते हैं और पत्तिया को झुलसा देते हैं। बालियों की ग्रिया और उंगलियों पर भी फफूंद का संक्रमण होता है, और ग्रीवा का पूरा या आंशिक भाग काला पड़ जाता है। इससे बालियां संक्रमित भाग टूट के लटक जाती है या फिर गिर जाती है, और किसान भाइयों को इससे घाटा हो जाता है। उंगलियों पर भी आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से संक्रमित होने पर सूख जाती है, जिसके कारण उपज में गुणवत्ता जो हम लोग को गुणवत्तापूर्ण जो उपज होना चाहिए उसकी मात्रा प्रभावित होती है। इसकी रोकथाम के लिए बुआई के पूर्व बीज को जो जैसा हम जानते हैं फफूंदीनाशक दवा जैसे मेनकोजेब कार्बेंडाजिम या कार्बोक्सिन या उनके मिश्रण को 2 ग्राम प्रति किलो की दर बीज दर से उपचारित करना चाहिए। यदि खरीफ फसल में श्वसन रोग का दिखाई पड़े तो कार्बेंडाजिम कीटाजिन या ईडीफेनफॉस 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में मिलाकर या मेनकोजेब 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर मिलाकर की दर से छिड़काव करें और 10 से 12 दिन के बाद एक फिर से हमको एक छिड़काव रिपीट कर देना चाहिए, दोबारा कर दें। और जैव रसायन जैसे सीडोमोनास फ्लोरेसेंस का पर्ण छिड़काव 0.2% जो झुलसन के संक्रमण को रोकता है और रोग प्रतिरोधी किस्में भी यदि हम लगाएं तो इससे हम लोग बचाव हो सकता है। जैसे रोग रोधी किस्म है VL 379, VL 356, VL 352, OEB 536, 532 का चुनाव करें। इससे इस रोग से हम लोग उसमें जो रेसिस्टेंट है उसमें उस वैरायटी में मॉडरेटरी रेसिस्टेंट है तो उससे मध्यम प्रतिरोधी किस्म होने के कारण ये रोग नहीं लगेगा। दूसरा महत्वपूर्ण रोग उसमें लगता है वो भूरा धब्बा रोग, यह भी फफूंद जनित रोग जो संक्रमण पौधों के सभी अवस्थाओं पर हो सकता है चाहे वेजिटेटिव स्टेज हो या रिप्रोडक्टिव। प्रारंभ में पत्तियों पर छोटे छोटे हल्के हल्के भूरे अंडाकार धब्बे बन जाते हैं, बाद में इनका रंग गहरा हो जाता है। अनुकूल अवस्था में ये धब्बे आपस में मिलकर पत्तियों को समय से पूर्व सुखा देते हैं। बालियों एवं दानों पर संक्रमण होने पर दानों का उचित विकास नहीं हो पाता और दाने सिकुड़ जाते हैं जिसकी उपज में भी काफ़ी कमी होती है। इसकी रोकथाम जैसा कि मैंने पहले बताया झुलसा रोग में है वही रोकथाम इसमें भी किया जाता है। और जो कीट में तना छेदक एवं बालियों में सुनी रागी का प्रमुख कीट है तो तना छेदक कीट जो होता है उसका व्यस्क कीट एक पतंगा होता है जबकि लार्वा तने को भेद कर छेद करके अंदर प्रवेश कर जाता है एवं फसल को नुकसान पहुंचाता है। कीट के प्रकोप से डेड हर्ट लक्षण पौधे पर दिखाई देते हैं। इसकी रोकथाम के लिए कीटनाशक दवा डाइमिथोएट या फॉस्मामिडोन या न्यूअक्रोन 1 से 1.5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से छिड़काव करें और कीट प्रतिरोधक किस्म की बुवाई करें जिससे कि रोग से बचाया जा सके कीट से बचाया जा सके। और दूसरा प्रमुख कीट है और बालियों की सुंडी। इस कीट का प्रकोप बालियों में दाना बनने के समय होता है, जैसे ही दाना बनने लगता है तो बाली में ये पकड़ने का इसका प्रकोप ज़्यादा हो जाता है। भूरे रंग में रोएदार इलियाँ रागी की बालियों को नुकसान पहुँचाती हैं जिसके फलस्वरूप दाने कम एवं छोटे बनते हैं। इसकी रोकथाम के लिए जो क्यूनोलफॉस दवा आती है 1.5% थायोडाउन डस्ट 4-4% का प्रयोग 24 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से करें। और सबसे महत्वपूर्ण है कि कीट जो नई प्रभेद के बारे में हम बताए हैं वो कीट प्रतिरोधी किस्मों का चयन कर बुवाई करें तो ये कीट उसमें लगने की संभावना कम हो जाती है। इस प्रकार यदि हम रागी जैसे फसल की कटाई और मड़ाई कैसे करें तो रागी के पौधे रोपाई के लगभग 110 से 115 दिन बाद कटाई के लिए तैयार हो जाते हैं। तो जिसके बाद इसके सिरों पर पौधों को काटकर अलग कर लेना चाहिए। सिरों की कटाई करने के बाद उन्हें खेत में एकत्रित कर कुछ दिन के लिए सुखा लेना चाहिए। उसके बाद जब दाना अच्छी तरह से सूख जाए तथा मशीन की सहायता से दानों को अलग कर एकत्रित कर बोरा में भर लेना चाहिए। रागी की विभिन्न किस्मों की प्रति हेक्टेयर औसत उपज 30 से 35 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है तथा इसे 60 से 70 क्विंटल भूसा भी हम किसान भाई को प्राप्त हो जाएगा जिसका बाजार भाव 2700 रुपये प्रति क्विंटल के आसपास पाया जाता है। इस हिसाब से किसान भाई एक बार में एक हेक्टेयर में 60 से 70 हज़ार रुपये की कमाई आसानी से कर सकते हैं। इसलिए एक बहुत ही मोटे अनाज में एक ये बहुत ही महत्वपूर्ण फसल है और किसान भाई अब आवश्यकता भी है, सरकार इसके प्रति बहुत गंभीर भी है और इसीलिए 2018 में इंटरनेशनल ईयर मनाया गया कि मिलेट्स इंटरनेशनल ईयर और सरकार इसके प्रति किसानों को भी प्रेरित कर रही है।
0: जी तो किसान भाइयों इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, अगले दिन आपसे एक अलग विषय के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। उन्नत कृषि

तैयार है आम के अद्भुत संसार से रूबरू होने के लिए। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर लेकर आ रहा है राष्ट्रीय आम समागम 2026, जिसका आयोजन 27 से 28 जून तक किया जाएगा। आइए और देखिए देश भर की सैकड़ों आम किस्मों की आकर्षक प्रदर्शनी, जहां स्वाद, सुगंध और रंगों का अनूठा संगम आपका स्वागत करेगा। इस विशेष आयोजन की थीम है स्वाद, संस्कृति और समृद्धि का संगम। आम समागम में किसानों, वैज्ञानिकों, उद्यमियों और आम प्रेमियों को एक ही मंच पर आने का अवसर मिलेगा। कार्यक्रम के दौरान आयोजित होगी राष्ट्रीय कार्यशाला, जिसका विषय है आधुनिक तकनीक से गुणवत्ता युक्त उत्पादन, भंडारण एवं प्रसंस्करण। देश के प्रतिष्ठित विशेषज्ञ आम उत्पादन, मूल्य संवर्धन और प्रसंस्करण की आधुनिक तकनीकों पर अपने अनुभव साझा करेंगे। इस अवसर पर आयोजित होगा किसान वैज्ञानिक सम्मान समारोह, जिसमें बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश के उत्कृष्ट आम उत्पादकों को बेस्ट मैंगो फार्मर अवार्ड प्रदान किया जाएगा। महिला आम उत्पादकों एवं मूल्य संवर्धन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिला उद्यमियों के लिए भी विशेष सम्मान और नगद पुरस्कार की व्यवस्था की गई है। और अब आपके लिए एक सुनहरा अवसर, यदि आपके बाग में उत्कृष्ट गुणवत्ता के आम हैं या आपके पास किसी विशेष किस्म के आम उपलब्ध हैं, आप भी आम प्रदर्शनी में अपनी आम की किस्मों को प्रदर्शित कर सकते हैं। आपकी प्रविष्टियों का मूल्यांकन विशेषज्ञों द्वारा किया जाएगा और चयनित प्रतिभागियों को आकर्षक पुरस्कार एवं नगद राशि से सम्मानित किया जाएगा। और हाँ, आम प्रेमियों के लिए होगा एक विशेष आकर्षण, मैंगो ईटिंग प्रतियोगिता। इस रोमांचक प्रतियोगिता के विजेताओं को भी आकर्षक नगद पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। तो देर किस बात की, अपने श्रेष्ठ आमों के साथ आइए, प्रदर्शनी में भाग लीजिए, विशेषज्ञों से सीखिए, नई तकनीकों को जानिए और आकर्षक पुरस्कार जीतने का अवसर पाइए। 27 से 28 जून राष्ट्रीय आम समागम 2026 बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 24 से 28 जून के दौरान भागलपुर, बांका, मुंगेर, जमुई इन जिलों में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ हल्की वर्षा होने की संभावना है। दक्षिण बिहार के अन्य जिलों में 24 से 25 जून के दौरान लू चलने की संभावना है। इसके बाद इन जिलों के एक दो स्थानों पर बादल गरजने के साथ हल्की वर्षा की संभावना है। अधिकतम तापमान 37 से 39 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 26 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 60 से 70 प्रतिशत और दोपहर में 25 से 30 प्रतिशत रहने की संभावना है। अनुमान है कि 24 से 28 जून के दौरान 5 से 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दक्षिण पूर्वी हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए, जो किसान भाई बहन धान की खेती करना चाहते हैं उन्हें बता दे, वर्तमान में मानसून की कमजोर स्थिति को देखते हुए किसान भाई बहनों को ये सलाह दी जाती है कि ऊंची भूमि में धान की खेती ना करें। जिन किसानों के पास सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है वे मध्यम अवधि वाले धान की किस्मों का बिचड़ा गिराएं और बीज स्थली में नमी बनाए रखें, इस बात का विशेष ध्यान रखें। बीज स्थली यानी कि नर्सरी में नमी बनाए रखने के लिए जरूरत के हिसाब से जीवन रक्षक सिंचाई जरूर करें और खास तौर से ऊंची भूमि में धान के स्थान पर वैकल्पिक फसलों की खेती पर विचार करना अधिक उपयुक्त होगा। जो मक्का की खेती करना चाहते हैं उन्हें बता दे, खरीफ मक्का की बुआई तभी करें जब आसमान साफ हो और खेत की जुताई में 10 से 15 टन गोबर की सड़ी खाद प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें और ध्यान दें कि बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 30 किलोग्राम नेत्रजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटाश डालना जरूरी होता है। किसान भाई बहनों आपको बता दे, अनुशंसित मक्का की किस्में हैं सुवान, देवकी, शक्तिमान 1, शक्तिमान 2, राजेंद्र शंकर, मक्का 3, गंगा 11। जो मूंग की खेती करते हैं उन्हें बता दे, मूंग की तैयार फलियों की तुड़ाई कर ले और हरी खाद के लिए उसके पौधों को मिट्टी पलटने वाले हल से जमीन में गाड़ दे। यह आपके खेत और आपके खेत की मिट्टी के लिए फायदेमंद होता है। जिनके खेत में सब्जियां लगी हैं उन्हें बता दे, भिंडी, कद्दू, खीरा, नेनुआ और लौकी की फसलों में निराई गुड़ाई जरूर करे, साथ ही खरपतवार नियंत्रित करना भी जरूरी होता है। आपको बता दे कि पत्ती खाने वाली सुंडियों और फल छेदक कीटों की नियमित निगरानी करते रहें और अगर इन का प्रकोप दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में डाइमेथोएट 30 इसी दवा की 1 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान दे, किसी भी प्रकार का छिड़काव तभी करें जब आसमान साफ हो। किसान भाई बहन आपको बता दे कि खरीफ प्याज की खेती के लिए नर्सरी यानी कि बीज स्थली की तैयारी तभी करें जब आसमान साफ हो और स्वस्थ पौधे के लिए नर्सरी में गोबर की खाद जरूर डालें। अच्छे और स्वस्थ फसल के लिए प्याज की बीज की व्यवस्था प्रमाणित स्रोत से ही करें और बीज गिराने के पहले बीजोपचार करना बहुत जरूरी होता है। बीजोपचार करने से पौधे स्वस्थ और फसल अच्छी होती है। खरीफ प्याज के लिए बीज की दर 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दे, लीची की फल तुड़ाई के बाद बगीचों में आवश्यक छटाई जरूर कर ले जिससे पेड़ों के भीतर पर्याप्त धूप और हवा का संचार हो सके। साथ ही आपको बता दे कि बगीचे में गिरे हुए पत्तों, सूखी शाखाओं और अन्य पौध अवशेषों को इकट्ठा कर हटा दे, इससे कीट और रोगों का प्रकोप कम होता है और पेड़ों की स्वस्थ वृद्धि और विकास को बढ़ावा मिलता है। तो ध्यान दे कि बगीचे में गिरे हुए पत्तों, सूखी शाखाओं और ऐसी कोई भी अन्य जो पेड़ के अवशेष हो उन्हें इकट्ठा करके हटा दे। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दे, दुधारू पशुओं को गर्मी के प्रभाव से बचाने के लिए छायादार और हवादार स्थानों में रखें और उन्हें पर्याप्त मात्रा में साफ और ताजा पीने का पानी उपलब्ध कराएं। पशुपालक भाई बहन ध्यान दे, गला घोटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए टीकाकरण कराना बहुत जरूरी होता है, इसलिए सभी दुधारू पशुओं में टीकाकरण जरूर कराएं। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 एफएम ग्रीन के साथ बने रहें।

आप हर समय थकान महसूस करते हैं, छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है, ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है, बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर आप सबका स्वागत करता है स्वाद संस्कृति और समृद्धि के संगम राष्ट्रीय आम समागम सह कार्यशाला में। तारीख याद रखें 27 से 28 जून 2026।

0: क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।
1: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
0: लेडीज फर्स्ट।
2: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, आपका बहुत बहुत बहुत स्वागत है बहनों को संबोधित हमारे विशेष कार्यक्रम लेडीज फर्स्ट में। वैसे बहनों को संबोधित है, लेकिन यहां बातें ऐसी होती है जो सबके लिए फायदेमंद है। अब देखिए, आज हम बात करने वाले हैं किताबों के बारे में। भला किताबें किनके लिए फायदेमंद नहीं साबित होती है, और जो किताबें पढ़ना पसंद करते हैं उन्हें पता है कि किताबें ना सबसे अच्छी दोस्त होती है। और जब फोन का जमाना है, सब कुछ फोन पे है, तब भी जो किताबों में सुकून है ना, वो कहीं नहीं मिलता। और कई बार कुछ किताबें ऐसी होती हैं जो आपको बहुत अच्छी बातें सिखा देती हैं और इस दुनिया को देखने का, यहाँ तक कि खुद को देखने का एक नया नजरिया देती हैं। और कई बार हमें उन किताबों को बहुत गहराई से पढ़ने की जरूरत होती है। कुछ किताबें ऐसी होती हैं जिन्हें पढ़ने के बाद आप पूरी जिंदगी नहीं भुला सकते, और उन्हीं कुछ किताबों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। और खास तौर से उन किताबों के बारे में बात करने वाले हैं जो लेडीज को, जो महिलाएं हैं या फिर लड़कियां हैं, अपने टीन एज में हैं या फिर प्रौढ़ महिला भी हैं, उन्हें ये किताबें जरूर पढ़नी चाहिए। आज 10 ऐसी किताबों के बारे में बात होने वाली है जो आपको पढ़नी चाहिए, आपकी लाइब्रेरी में होनी चाहिए। और अगर आप पुरुष हैं, आप सुन रहे हैं, तो आप अपनी दोस्त को, अपनी मम्मी को या फिर आपकी बहन है, उन्हें, आप आपके आसपास जो भी महिलाएं हैं, उन्हें ये किताबें या इनमें से कुछ किताबें उन्हें आप जरूर गिफ्ट करिए। सबसे पहली किताब है मित्रों मरजानी। नाम कितना प्यारा है ना, और मित्रों मरजानी लिखा है कृष्णा सोपती ने। और अगर हम इस उपन्यास की बात करें तो ये उपन्यास मित्रों नाम की एक साहसी और बेबाक महिला की कहानी है जो कि समाज द्वारा महिला पर लगाए गए बंधनों को खुलकर चुनौती देती है। बहुत सारी बंधन है ना, आज के समय में भी आपको बहुत सारे बंधन मिलेंगे जिन्हें खत्म करने की जरूरत है। तो मित्रों यही काम करती है कि समाज जो महिलाओं पर बंधन लगाता है उसे वो चुनौती देती है। इस किताब में आपको स्त्री की इच्छाओं, उनकी स्वतंत्रता और आत्मसम्मान का एक बहुत ही बेहतरीन चित्रण मिलेगा। और अगर हम बात करें ना, तो ये किताब भले ही बहुत पहले लिखी गई हो, लेकिन ये किताब अपने समय से बहुत आगे की सोच रखता है, और ये किताब हर महिला को जरूर पढ़नी चाहिए। हिंदी साहित्य में इसे नारी विमर्श की महत्वपूर्ण कृति माना जाता है। अगली किताब है आपका बंटी। आपका बंटी मन्नू भंडारी के द्वारा लिखा गया है, और मन्नू भंडारी की भी जो शख्सियत है ना, वो बहुत ही कमाल की है। आप उनके इंटरव्यूज देखेंगे या फिर आप उनकी और भी कहानियां पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, वाकई बहुत ही कमाल की शख्सियत और बहुत ही कमाल की इनकी लेखनी। और उनकी एक लेखनी है आपका बंटी, ये बहुत ही कमाल की किताब है। ये कहानी ना एक बच्चे बंटी की नज़र से आप पढ़ेंगे, समझेंगे। बंटी की नज़र से आप देखते हैं कि किस तरीके से एक परिवार टूटता है, तो बच्चे पर असर सबसे ज्यादा पड़ता है। जब माता पिता का तलाक हो जाता है तो बच्चे पर क्या असर पड़ता है, यही इसका मुख्य विषय है। और उपन्यास में आप देखेंगे कि स्त्री के संघर्ष और उसके भावनात्मक जीवन का भी काफी बेहतरीन चित्रण है। और सबसे अच्छी बात है इस किताब की कि भाषा बहुत ही सरल और बहुत ही प्रभावशाली है। कहते हैं ना कि कुछ चीजें सरल रहते हुए भी आपके ऊपर बहुत ही गजब का प्रभाव छोड़ जाती है, तो ये किताब उन्हीं किताबों में से एक है। और ये हिंदी की, आपका बंटी हिंदी की सबसे चर्चित पारिवारिक उपन्यासों में से एक है। अगली किताब है अमृता प्रीतम की पिंजर। पिंजर उपन्यास की अगर हम बात करें तो भारत विभाजन की पृष्ठभूमि पर आधारित है ये उपन्यास, जिसमें नायिका ना, नायिका का नाम पूरो है, हालांकि नायिका पूरो के जीवन के माध्यम से स्त्री की पीड़ा को दर्शाया गया है। जब भारत विभाजन हुआ था उस दौरान स्त्रियों को भी बहुत कुछ सहना पड़ा था। इस किताब में आप धर्म, पहचान और मानवता के प्रश्न से रूबरू होंगे। जब ये सारे प्रश्न उठते हैं ना तो आपको अंदर से कचोट देते हैं। कहानी बेहद ही मार्मिक और संवेदनशील है। अगर हम विभाजन साहित्य की बात करें तो उनमें से श्रेष्ठ कृतियों में से पिंजर का नाम गिना जाता है, अमृता प्रीतम की लिखी पिंजर। अगली किताब है मन्नू भंडारी की लिखी हुई महाभोज। महाभोज अगर हम इस किताब की बात करें तो ये एक राजनीतिक व्यवस्था और भ्रष्टाचार पर तीखा व्यंग है। कहानी एक गरीब युवक की है और जब उस युवक की मृत्यु हो जाती है ना उसके बाद इस कहानी की शुरुआत होती है। किस तरीके से सत्ता और राजनीति आम जनता का शोषण करती है ये दिखाया गया है बहुत ही कमाल के तरीके से महाभोज में। और अगर हम इस उपन्यास की बात करें तो ये उपन्यास सामाजिक अन्याय को उजागर करता है और बहुत ही बेहतरीन ढंग से करता है और आज भी ये उपन्यास उतना ही प्रासंगिक माना जाता है। महाभोज एक बार जरूर पढ़िए, ये आपको समाज को देखने का, आपके आसपास के व्यवस्था को, भ्रष्टाचार को समझने का एक नजरिया देता है। अगली किताब है चाक, मैत्रेयी पुष्पा की लिखी चाक, समाज में महिलाओं के संघर्ष की कहानी है। उपन्यास में आप पढ़ेंगे जाति, पितृसत्ता और सामाजिक भेदभाव को और किस तरीके से नायिका अपने अधिकारों के लिए लड़ती है। भाषा में ग्रामीण जीवन की एक सजीव झलक आपको दिखती है और ये किताब स्त्री सशक्तिकरण की एक महत्वपूर्ण कृति है, आपको जरूर पढ़नी चाहिए मैत्रेयी पुष्पा की लिखी चाक। कुछ किताबें ऐसी होती है जिन्हें पढ़कर रोना आता है, कुछ किताबें ऐसी होती है जो आपको हंसाती है और कुछ किताबें ऐसी होती है जो आपके ऊपर प्रभाव नहीं छोड़ती है और कुछ किताबें ऐसी होती है जो ना रुलाती है ना हंसाती है बल्कि आपको कचोटती है। आप बहुत असहाय से महसूस करते हैं, आपको समझ नहीं आता कि क्या कर दे, काश उस नायिका के पास हम पहुंच जाएं और उसकी जिंदगी ठीक कर दे, उसे समझा दे, या फिर बहुत ही आपको असहाय महसूस होगा, आप विचलित होंगे पर आपके हाथों में कुछ नहीं होगा। ये किताब है कांता भारती की लिखी रेत की मछली। कांता भारती की बात करें तो कांता भारती ने सिर्फ एक किताब लिखी, रेत की मछली, और इस किताब में आप पढ़ेंगे कि किस तरीके से एक स्त्री संघर्ष करती है, आत्मसम्मान के लिए लड़ती है और अपने अस्तित्व की खोज में निकल पड़ती है। इस किताब में पितृसत्तात्मक समाज में महिलाओं की स्थिति को बहुत ही संवेदनशील तरीके से चित्रित किया गया है। नायिका सामाजिक बंधनों और अन्याय के विरुद्ध अपनी पहचान बनाने का प्रयास करती है लेकिन उसके पहले जो उसे जीवन में झेलना पड़ता है ना, अपनों से जो उसे धोखा मिलता है, दगा मिलता है, वो आपको कचोट देती है अंदर से। भाषा बहुत ही सरल है लेकिन बहुत ही प्रभावशाली और भावनात्मक गहराई इतनी है कि किताब पढ़ते हुए मैंने आपसे कहा ना आप बहुत ही असहाय महसूस करेंगे। ये किताब स्त्री अधिकार, आत्मनिर्भरता और सामाजिक बदलाव के प्रश्नों को उठाती है और अगर आप 10 प्रभावशाली हिंदी पुस्तकों की लिस्ट बना रहे हैं, सूची बना रहे हैं, तो रेत की मछली को शामिल करना एक बहुत ही अच्छा चयन हो सकता है। अगली किताब है मुझे चांद चाहिए, सुरेंद्र वर्मा की लिखी हुई ये किताब है, एक बहुत ही महत्वाकांक्षी युवती की संघर्ष गाथा है। नायिका अपने सपनों को पूरा करने के लिए बहुत ही कठिन रास्ता चुनती है और वो कला, रंगमंच, आधुनिक समाज आप इसमें देख पाएंगे, आपको इसमें झलक मिलेगी मुझे चांद चाहिए किताब में। पुस्तक स्त्री के स्वतंत्र पहचान की भी बात करती है और मुझे चांद चाहिए उपन्यास की कहानी आपको बहुत ही प्रेरणादायक लगेगी और साथ ही यथार्थवादी भी लगेगी। अगली किताब मैत्रेयी पुष्पा की ही लिखी हुई कस्तूरी कुंडल बसे। इस किताब की खास बात यह है कि ये खुद मैत्रेयी पुष्पा की आत्मकथा है। इसमें उनके बचपन, संघर्ष और जीवन यात्रा का आपको बहुत ही सजीव वर्णन मिलता है। ग्रामीण परिवेश में स्त्री जीवन की कठिनाइयों को दर्शाया गया है इस किताब में। साथ ही ये किताब आपको आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता का संदेश देती है जो बहुत जरूरी होता है किसी भी इंसान के लिए और खास तौर से एक महिला के लिए। ये हिंदी की चर्चित आत्मकथाओं में से एक है कस्तूरी कुंडल बसे मैत्रेयी पुष्पा के लिखी। अगली किताब भी कृष्णा सोपती की ही लिखी हुई है जिंदगी नामा। ये उपन्यास पंजाब के ग्रामीण जीवन को अच्छी तरीके से प्रस्तुत करता है, बहुत ही विस्तृत तरीके से प्रस्तुत करता है। इसमें अनेक पात्र आपको मिलेंगे और उनकी जीवन शैली किस तरीके से है उसका बहुत ही सजीव वर्णन है, साथ ही सामाजिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पहलुओं को भी बहुत ही खूबसूरती से उकेरा गया है जिंदगी नामा में। भाषा और शैली इसे विशेष बनाती है, साथ ही इसे हिंदी साहित्य की महान कृतियों में से भी गिना जाता है। अगली किताब है मन्नू भंडारी की ही एक कहानी ये भी ना मन्नू भंडारी की आत्मकथा है। इसमें उनके साहित्यिक जीवन और उनके जो व्यक्तिगत संघर्ष रहे उसका वर्णन है। लेखिका ने अपने वैवाहिक जीवन के अनुभव भी इस किताब में साझा किए हैं। इस किताब को बहुत ही ईमानदारी और संवेदनशीलता से लिखा गया है और जब आप इस किताब को पढ़कर खत्म करेंगे ना तो आपको लगेगा कि आपके अंदर एक अलग ही आत्मविश्वास है और आत्मचिंतन की प्रेरणा मिलती है आपको इस किताब से। हालांकि 10 किताबें हो चुकी है लेकिन एक और किताब मैं जो अंत में जोड़ना चाहूंगी वो है टेढ़ी लकीर, इस्मत चुगताई की लिखी हुई है। ये उपन्यास ना शम्मन नाम की एक लड़की की है और उसके जीवन और उसके आत्मविकास की कहानी है। इस किताब में आप पाएंगे स्त्री स्वतंत्रता की बातें, शिक्षा, प्रेम, समाज की रूढ़ियों पर एक बहुत ही गहरा विमर्श मिलता है आपको इस किताब में। और इस्मत चुगताई ने महिलाओं की भावनाओं को और उनके संघर्षों को बहुत ही बेबाकी से प्रस्तुत किया है। हालांकि इस्मत चुगताई खुद भी एक बेबाक महिला रही थी और बहुत ही कमाल की इनकी भी शख्सियत रही है। आप अगर पढ़ेंगे ये किताब टेढ़ी लकीर तो ये उस दौर के मध्यम वर्गीय समाज और उसकी मानसिकता का एक बहुत ही सजीव चित्रण आपको पेश करती है। अगर हम इस किताब की बात करें तो इस किताब को यानी कि टेढ़ी लकीर को भारतीय उपमहाद्वीप के सबसे महत्वपूर्ण नारीवादी उपन्यासों में से गिना जाता है। तो ये किताबें आप जरूर पढ़ें और लास्ट में जो मैंने ऐड की है टेढ़ी लकीर इस्मत चुगताई की लिखी हुई इसे भी जरूर अपने लिस्ट में शामिल करें। बहुत ही कमाल की ये किताबें हैं, इनमें से एक दो भी आप पढ़ लेंगे ना तो आपको लगेगा कि हाँ आज मैंने कुछ अलग ही किया है, आपको एक अलग सा सुकून मिलेगा। और उसके साथ जो सबसे अच्छी बात होती है ना वो ये होता है कि आप आत्मचिंतन करेंगे। जब आप उस किताब के

0: और सबसे बेहतर ये होगा कि आप अपने बारे में जानेंगे, समझेंगे, सीखेंगे। फिलहाल के लिए मैं चलती हूँ, लेकिन जाने से पहले खास बात की अपना और अपने अपनों का और अपने सपनों का रखे विशेष ध्यान। खुश रहे, स्वस्थ रहे, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। आपकी अपनी होस्ट और दोस्त उमा को दीजिए इजाजत, और हाँ, हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहे। नमस्कार।
1: लेडीज फर्स्ट।

तैयार है आम के अद्भुत संसार से रूबरू होने के लिए। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर लेकर आ रहा है राष्ट्रीय आम समागम 2026, जिसका आयोजन 27 से 28 जून तक किया जाएगा। आइए और देखिए देश भर की सैकड़ों आम किस्मों की आकर्षक प्रदर्शनी, जहां स्वाद, सुगंध और रंगों का अनूठा संगम आपका स्वागत करेगा। इस विशेष आयोजन की थीम है स्वाद, संस्कृति और समृद्धि का संगम। आम समागम में किसानों, वैज्ञानिकों, उद्यमियों और आम प्रेमियों को एक ही मंच पर आने का अवसर मिलेगा। कार्यक्रम के दौरान आयोजित होगी राष्ट्रीय कार्यशाला, जिसका विषय है आधुनिक तकनीक से गुणवत्ता युक्त उत्पादन, भंडारण एवं प्रसंस्करण। देश के प्रतिष्ठित विशेषज्ञ आम उत्पादन, मूल्य संवर्धन और प्रसंस्करण की आधुनिक तकनीकों पर अपने अनुभव साझा करेंगे। इस अवसर पर आयोजित होगा किसान वैज्ञानिक सम्मान समारोह, जिसमें बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश के उत्कृष्ट आम उत्पादकों को बेस्ट मैंगो फार्मर अवार्ड प्रदान किया जाएगा। महिला आम उत्पादकों एवं मूल्य संवर्धन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिला उद्यमियों के लिए भी विशेष सम्मान और नगद पुरस्कार की व्यवस्था की गई है। और अब आपके लिए एक सुनहरा अवसर, यदि आपके बाग में उत्कृष्ट गुणवत्ता के आम हैं या आपके पास किसी विशेष किस्म के आम उपलब्ध हैं, आप भी आम प्रदर्शनी में अपनी आम की किस्मों को प्रदर्शित कर सकते हैं। आपकी प्रविष्टियों का मूल्यांकन विशेषज्ञों द्वारा किया जाएगा और चयनित प्रतिभागियों को आकर्षक पुरस्कार एवं नगद राशि से सम्मानित किया जाएगा। और हाँ, आम प्रेमियों के लिए होगा एक विशेष आकर्षण, मैंगो ईटिंग प्रतियोगिता। इस रोमांचक प्रतियोगिता के विजेताओं को भी आकर्षक नगद पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। तो देर किस बात की, अपने श्रेष्ठ आमों के साथ आइए, प्रदर्शनी में भाग लीजिए, विशेषज्ञों से सीखिए, नई तकनीकों को जानिए और आकर्षक पुरस्कार जीतने का अवसर पाइए। 27 से 28 जून राष्ट्रीय आम समागम 2026 बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है।

0: कितने दोस्त हैं?
1: तीनू, मीनू, राजू, पिन्नी और...
0: और तुम्हारे वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
1: 11 दोस्त?
0: टीकू, वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
1: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
0: मगर टीकू, कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
1: लेकिन ऐसा क्यों?
0: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं, या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
1: टीकी, तो इसका हल क्या है?
0: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा, सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है, तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। UN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
2: याद रखो, आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।
3: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
4: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
3: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
4: आपकी सेहत की बातें,
3: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
4: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
3: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
4: वो कहाँ पर?
3: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
4: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
3: उन्नत कृषि। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन, और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। आज हमारा कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है उन लोगों के लिए जो उड़द की खेती करते हैं। उड़द यानी कि ब्लैक ग्राम, जो एक प्रमुख दलहनी फसल है, लेकिन कई बार इस फसल में कीट आक्रमण कर देते हैं और उत्पादन कम कर देते हैं। तो ये कीट कौन कौन से होते हैं, ये फसल को कैसे नुकसान पहुंचाते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण, हम इसका प्रबंधन कैसे कर सकते हैं, इसी विषय पर आज चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर तारकनाथ गोस्वामी। आप हैं एसोसिएट प्रोफेसर कीट विज्ञान विभाग से, बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
5: धन्यवाद। सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार।
3: तो दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं बहुत ही मूल बातों के साथ। सर, आपसे पहला सवाल यही है कि उड़द के प्रमुख कीट कौन कौन से होते हैं?
5: अच्छा, उड़द के प्रमुख कीट में से चार कीट बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रमुख है, जैसे माहू, जिसको हम लोग एफिड कहते हैं, सफेद मक्खी, व्हाइट फ्लाई कहते हैं, जैसीड, उसको वो एक लीफ ऑफर होते हैं, और एक है फली छेदक, जिसको पॉड बोरर कहते हैं। तो माहू एक बहुत ही छोटे मुलायम शरीर वाले कीट होते हैं, जो हरे या काले रंग के होते हैं। सफ़ेद मक्खी भी छोटे होते हैं, लेकिन ये सफ़ेद पंख वाले कीट होते हैं, जो पत्तियों के नीचे पाए जाते हैं। और जैसीड, जो लीफ हॉपर होते हैं, इसके हल्के इसका जो रंग होता है वो हल्के हरे रंग के होते हैं, और बहुत सक्रिय होता है, तथा पत्तियों का रस चूस के वो नुकसान पहुँचाता है। और लास्ट में जो मैंने बोला फली छेदक, जो है इसका लार्वा फूलों में और फलियों में छेद करके खाते हैं।
3: जी, तो सर, ये कीट फसल को नुकसान कैसे पहुंचाते हैं?
5: अच्छा, तो माहू और सफेद मक्खी, ये जो दो छोटे छोटे कीड़े होते हैं, वो पत्तियों और कोमल भागों से रस चूसते हैं, जिससे पत्तियां मुड़ जाते हैं, पौधा कमजोर हो जाते हैं, और प्रकाश संश्लेषण कम हो जाता है। ये दोनों ही कीट शहद जैसे पदार्थ उत्सर्जन करते हैं पत्तियों में, या तो जहां से वो रस चूसते हैं, जिससे सूटी मोल्ड विकसित हो जाता है। और जैसीड जो है वो पत्तियों से रस चूसकर खाता है, और इसके वजह से पत्तियों के किनारे से पीला पड़ना शुरू हो जाता है, और फली छेदक फूल और फलियों को नुकसान पहुंचाता है, जिससे उत्पादन घटता है।
3: तो सर, फसल के किस अवस्था में ये कीट अधिक दिखाई देते हैं?
5: तो माहू या लाही एवं सफेद मक्खी और जैसीड प्रारंभिक वृद्धि अवस्था से लेकर फली बनने तक पाए जाते हैं, और फली छेदक फूल आने और फली बनने के समय अधिक दिखाई देते हैं।
3: और इससे बचने का कोई तरीका जिससे हम शुरुआती अवस्था में ही कीट आक्रमण का पता लगा सके और अपने फसलों को बचा सके?
5: बिल्कुल, हम लोग वो पता लगा सकते हैं। जैसे किसानों को सबसे पहले जो करना चाहिए वो नियमित रूप से अपने खेत का निरीक्षण करना चाहिए, पत्तियों के निचली भाग को खास करके उसको जांच करना चाहिए ताकि उसको ये दिखाई पड़े कि सफेद मक्खी है या जैसिड है। अगर दिखाई पड़ते हैं तो प्रारंभिक पहचान संभव है और ससमय नियंत्रण संभव है।
3: यानी कि अगर समय पर पहचान कर लेते हैं तो चीजें आसान हो जाती है।
5: बिल्कुल।
3: और सर, अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न कि इन कीटों का प्रबंधन कैसे करें?
5: अच्छा, तो ये सारे जो चार कीड़ों के बारे में हमने बात किया अभी, उन सारे चार कीड़ों को नियंत्रण करने के लिए हम लोगों को समेकित कीट प्रबंधन अपनाना चाहिए। और समेकित कीट प्रबंधन में हम लोग रासायनिक नियंत्रण को आवश्यक होने पर ही हम लोग रासायनिक नियंत्रण का इस्तेमाल करते हैं। तो और कौन कौन से उपाय है हम लोगों के पास? जैसे हम लोगों के पास स्वस्थ बीज का उपयोग करना संभव है, खेत की स्वच्छता मेंटेन करना संभव है, ससमय बुआई करना संभव है, संतुलित उर्वरक उपयोग करना, प्रतिरोधी किस्में हम लोगों को लगाना चाहिए, प्राकृतिक शत्रु उनका संरक्षण बहुत महत्वपूर्ण है, कुछ यांत्रिक नियंत्रण विधि भी है हम बताएंगे, और कुछ जैविक कीटनाशी भी है। लेकिन हम किसान भाइयों को बोलेंगे कि रासायनिक नियंत्रण जब आपको बहुत जरूरत है तभी आप रासायनिक नियंत्रण आपका उसका उपयोग करेंगे। तो स्वस्थ बीज का उपयोग कैसे करेंगे? हम लोग प्रमाणित बीज को लें और उस बीज को उपचार करें, और उपचार करने के लिए हम लोग इमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL उसका 5 ml प्रति किलोग्राम बीज, इसके मतलब इस दर से हम लोग को उसको लेके उपचार करें। खेत की स्वच्छता बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। फसल अवशेष और खरपतवार जो आपका खेत में रहता है उसको आप निकालें और गहरी जुताई करें, समय पर बुआई करें, नाइट्रोजन का अधिक उपयोग ना करें। नाइट्रोजन का अधिक उपयोग करेंगे तो वो जितना भी कीड़े के बारे में हमने बात किया वो सारे उसका पॉपुलेशन बढ़ेगा।
3: अच्छा।
5: आप अनुशंसित मात्रा में नाइट्रोजन का उपयोग करें। कुछ प्रतिरोधी किस्में हैं जैसे पंथ U30, प्रताप उरद 1, ये दो किस्में वो जो रस चूसने वाला कीड़ा होता है उसका उससे वो रेजिस्टेंट है। और कुछ यांत्रिक नियंत्रण जैसे आप पीला चिपचिपा ट्रैप, हम लोग येलो स्टिकी ट्रैप बोलते हैं, उसका इस्तेमाल भी आप लोग कर सकते हैं। उसका इस्तेमाल करने के लिए आपको एक प्रति एकड़ में आपको 8 से 10 ट्रैप लगाना होता है। और जैविक कीटनाशी में नीम तेल बहुत महत्वपूर्ण होता है। नीम तेल जो बाजार में मिलता है उसका 1500 ppm 3 ml प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करने से आपका ये जो चारों कीड़े हैं उससे आपको बचाव मिल सकता है। और कुछ रासायनिक नियंत्रण जिसके बारे में हमने पहले ही बताया, जब बहुत ज़रूरत है तब आप उसका इस्तेमाल करेंगे। तो रस चूसने वाला कीड़ों के लिए आप थायामिथोक्साम 25 WG उसका इस्तेमाल करेंगे। उसका इस्तेमाल करने के लिए जो डोज होना चाहिए वो होना चाहिए 0.25 g प्रति लीटर पानी में। जो छेदक कीड़े होते हैं मतलब फल छेदक या फूल में भी छेद करते हैं उसके लिए आप इमामेक्टिन बेंजोएट 5 SG उसका 0.4 g प्रति लीटर के हिसाब से आप छिड़काव करेंगे। और आपके नज़दीक में जो कृषि विज्ञान केंद्र हो या कोई हमारा कोई कॉलेज हो वहाँ पे जो विशेषज्ञ है उनका सलाह फसल बुआई करने से पहले या बीच में भी आप उसका सलाह आप लेंगे।
3: जी, तो इन बातों का अगर ध्यान रखेंगे तो उड़द की फसल को बहुत अच्छी तरीके से बचाया जा सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण होता है कि आप समय पर पहचान कर लें, उसके बाद और उससे पहले भी ज़रूरी होता है कि बीजों का उपचार करना बहुत ज़रूरी होता है ना। और तो सर, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, किसानों के लिए आपका कोई अंतिम संदेश?
5: यस, तो उड़द मैं एक लास्ट संदेश ये देना चाहता हूँ कि उड़द हमारे लिए एक बहुत लाभदायक फसल है, लेकिन इससे जैसे मैंने बताया कीड़ों से बचाना बहुत आवश्यक है। तो इसके लिए किसान भाइयों को नियमित रूप से निगरानी करने का ज़रूरत है और पर्यावरण अनुकूल प्रबंधन जो हमने मेंशन किया उसको इस्तेमाल करने से आपका उत्पादन बढ़ेगा। तो आइए किसान भाइयों और बहनों, हम लोग IPM यानी कि समेकित कीट प्रबंधन हम लोग अपनाएं और पर्यावरण को रक्षा करें।
3: सर, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी और उम्मीद है कि हमारे आज के इस कार्यक्रम से जो किसान भाई बहन उड़द की खेती करते हैं उन्हें बहुत सहायता मिली होगी। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
5: धन्यवाद आपको भी।
3: ऐसी ही उपयोगी जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें, क्योंकि हम हैं हरियाली से खुशहाली तक।
6: उन्नत कृषि।

तैयार है आम के अद्भुत संसार से रूबरू होने के लिए। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर लेकर आ रहा है राष्ट्रीय आम समागम 2026, जिसका आयोजन 27 से 28 जून तक किया जाएगा। आइए और देखिए देश भर की सैकड़ों आम किस्मों की आकर्षक प्रदर्शनी, जहां स्वाद, सुगंध और रंगों का अनूठा संगम आपका स्वागत करेगा। इस विशेष आयोजन की थीम है स्वाद, संस्कृति और समृद्धि का संगम। आम समागम में किसानों, वैज्ञानिकों, उद्यमियों और आम प्रेमियों को एक ही मंच पर आने का अवसर मिलेगा। कार्यक्रम के दौरान आयोजित होगी राष्ट्रीय कार्यशाला, जिसका विषय है आधुनिक तकनीक से गुणवत्ता युक्त उत्पादन, भंडारण एवं प्रसंस्करण। देश के प्रतिष्ठित विशेषज्ञ आम उत्पादन, मूल्य संवर्धन और प्रसंस्करण की आधुनिक तकनीकों पर अपने अनुभव साझा करेंगे। इस अवसर पर आयोजित होगा किसान वैज्ञानिक सम्मान समारोह, जिसमें बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश के उत्कृष्ट आम उत्पादकों को बेस्ट मैंगो फार्मर अवार्ड प्रदान किया जाएगा। महिला आम उत्पादकों एवं मूल्य संवर्धन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिला उद्यमियों के लिए भी विशेष सम्मान और नगद पुरस्कार की व्यवस्था की गई है। और अब आपके लिए एक सुनहरा अवसर, यदि आपके बाग में उत्कृष्ट गुणवत्ता के आम हैं या आपके पास किसी विशेष किस्म के आम उपलब्ध हैं, तो आप भी आम प्रदर्शनी में अपनी आम की किस्मों को प्रदर्शित कर सकते हैं। आपकी प्रविष्टियों का मूल्यांकन विशेषज्ञों द्वारा किया जाएगा और चयनित प्रतिभागियों को आकर्षक पुरस्कार एवं नगद राशि से सम्मानित किया जाएगा। और हाँ, आम प्रेमियों के लिए होगा एक विशेष आकर्षण, मैंगो ईटिंग प्रतियोगिता। इस रोमांचक प्रतियोगिता के विजेताओं को भी आकर्षक नगद पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। तो देर किस बात की, अपने श्रेष्ठ आमों के साथ आइए, प्रदर्शनी में भाग लीजिए, विशेषज्ञों से सीखिए, नई तकनीकों को जानिए और आकर्षक पुरस्कार जीतने का अवसर पाइए। 27 से 28 जून राष्ट्रीय आम समागम 2026 बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है।

0: पक्षियों को उड़ता देख साथ मुझे आई एक भूली कहानी याद।
1: कौन सी कहानी टीकी?
0: उस जालिम शिकारी की जो आया था करने पंछियों का शिकार।
2: हमें भी वो कहानी बताओ ना।
0: एक था शिकारी जिसने चिड़ियों का शिकार करने को चुपके से बिछाया जाल, लेकिन जाल को सब चिड़िया फुर्र से ले उड़ी साथ।
2: माथा पीटता रह गया शिकारी, एक भी चिड़िया लगी ना हाथ।
0: तो दोस्तों, बीमारी का राक्षस भी बिछाए बैठा है एक जाल। अगर बच्चों का टीकाकरण छूटा तो कर देगा सबको बीमारी से बेहाल।
1: तो इस राक्षस से कैसे बचना है?
0: तो 5 साल या उनसे छोटे बच्चों के मम्मी पापा, सभी सुनो एक जरूरी बात। अगर सभी बच्चों का होगा टीकाकरण एक साथ, तो बीमारी के राक्षस का भी हो जाएगा खात्मा उसके साथ।
2: टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
3: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
4: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक।
5: उन्नत कृषि।
4: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। स्वागत करती हूं हमारे विशेष कार्यक्रम किसान भाई बहनों को संबोधित हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। उन्नत कृषि में आज हम बात करने वाले हैं जायद में सब्जियों के प्रमुख कीटों के बारे में, उनका प्रबंधन कैसे कर सकते हैं। इस बारे में आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर ऋचा कुमारी, जो हैं कीट विज्ञान विभाग से असिस्टेंट प्रोफेसर कम जूनियर साइंटिस्ट। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
6: धन्यवाद उमा जी।
4: मैम, सबसे पहला सवाल कि जायद में जो उगाने वाली सब्जियां होती है वो कौन कौन सी होती हैं?
6: जी नमस्ते किसान मित्रों, तो ये बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने। इस समय जो किसान मित्र हैं वो भिंडी, खीरा, लौकी, नेनुआ, करेला, तरबूज, खरबूज, ये सारी सब्जियां जो है वो लगाते हैं। हाँ, लेकिन ये है कि गर्मी के साथ साथ कीटों का हमला भी बहुत तेज होता है, तो अगर वो समय पर रह के इसकी पहचान रोकथाम करे तो नुकसान से बचा जा सकता है।
4: और मैम, इन सब्जियों के जो प्रमुख कीट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं?
6: देखिए, अगर हम भिंडी की बात करते हैं तो इसमें जयसिड है, सफ़ेद मक्खी है, उसके बाद फल एवं तना छेदक, ये कीट जो है वो प्रमुख होते हैं। फिर अगर हम बात करें कद्दू वर्ग की सब्जियों की, तो उसमें खीरा है, लौकी, नेनुआ, ये सब जो आता है, करेला, तो इसके जो प्रमुख कीट हैं वो है आपको चेपा, जिसको कि हम लाही या माहू भी कहते हैं। इसके बाद थ्रिप्स है, और एक बहुत अत्यंत मुख्य हम कीट मान सकते हैं फल मक्खी, क्योंकि वो बहुत नुकसान पहुँचाता है, तो एक वो भी आता है। इसके बाद हम खरबूज और तरबूज की बात करें तो उसमें चेपा, सफ़ेद मक्खी और चूसक कीट, ये मुख्य रूप से पाए जाते हैं।
4: और इन कीटों से जो क्षति होते हैं उनके लक्षण कैसे हो सकते हैं, कैसे होते हैं?
6: देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि जो लक्षण होते हैं उन्हीं से हम समझ सकते हैं कि कौन से कीट हैं और फिर उसका रोकथाम कैसे करें। तो मैं सबसे पहले बात करूँगी फल एवं तना छेदक कीट की। इसमें क्या होता है कि जो इसकी पौधे की जो वानस्पतिक वृद्धि होती है उसके दौरान जो ये कीट हैं उनके लार्वा, जो लार्वा होते हैं वो अंकुरों को क्या करते हैं, खोदते हैं, और उससे क्या होता है कि गांठों पर प्रभाव पड़ता है, और उसमें होता क्या है, अंत में अंकुर गिर जाएंगे। उसके बाद हम संक्रमण की बात करें तो संक्रमण बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप छोटे पौधे झड़ जाते हैं और जो पत्तियां हैं वो पूरी मर जाती हैं, और जो अगर दूसरे युवा पौधे होते हैं वो भी आपको मुरझा जाएंगे। हाँ, इसके साथ ही साथ केंद्रीय शाखाओं को भी काफ़ी नुकसान पहुंचता है। बाद में यह फल में प्रवेश कर जाएंगे, और अगर ये फल में प्रवेश कर गए तो उससे काफ़ी गंभीर नुकसान होता है। और अब फिर मैं बात करूं चूसने वाले कीट में, जिसमें कि अभी मैंने बताया चेपा आता है, ये थ्रिप्स है, उसके बाद जैसिड है, तो उसमें क्या होता है, उनकी जो प्रारंभिक चरण होती है इनके खाने से, चूसने से, उनमें पत्तियां जो है उसमें विकृति आ जाती है, और उसके बाद वो मुड़ जाएगी और अंततः वो संक्रमित हो जाती है। जो चेपा होता है, चेपा कीट के कारण जो प्रभावित पत्तियां हैं वो काफ़ी पीली पड़ जाती हैं और मुड़ जाती हैं, और अंत में क्या होता है कि जो पत्तियां हैं पूरी तरह से मुरझा गई हैं, तो पौधा क्या हो जाएगा, वो कमज़ोर हो जाता है। ये सारी चीज़ें चूसने वाले कीट के नुकसान के लक्षण हैं। फिर मैं बहुत महत्वपूर्ण एक कीट की बात कर रही हूँ जो फल मक्खी है, तो उसके जो शिशु हैं जिसे हम मैगट भी कहते हैं, वो लगभग पके हुए जो फल होता है उसको वो खाता है और उसके बाद उससे नुकसान होता है, अंत में उससे भी क्या होता है, संक्रमण हो जाते हैं और जो फल हैं वो खाने लायक नहीं बचते हैं। कुछ छोटे जो फल होते हैं उसमें वो फिर अचानक पीले होकर गिरने लग जाते हैं। इसके बाद उससे ये भी होता है कि जो फल में सड़न होती है वो हो जाती है, छेद हो जाते हैं और अंत में उसमें छोटे छोटे कीड़े लग जाते हैं। अगर मैं फिर बात कर रही हूँ आपको जैसिड की, तो जैसिड में भी जो पत्तियाँ हैं वो बिल्कुल पीली पड़ जाती है और वो नीचे की तरफ मुड़ जाती है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण लक्षण है इसका, इससे इसकी पहचान भी हो सकती है। और इसमें जो पत्तियाँ हैं उसमें चिपचिपा पदार्थ आपको दिखाई देगा कि चिपचिपा सा पदार्थ है, और इसमें भी आपको जो फल होंगे उसके बाद वो बहुत ही छोटे से हो जाएंगे, थोड़े टेढ़े मेढ़े हो जाएंगे और बिल्कुल खोखले पड़ जाते हैं। ये सारे जो प्रमुख कीट हैं उनके ये नुकसान के लक्षण आपको दिखाई देंगे।
4: और मैम, इन कीटों का प्रबंधन कैसे कर सकते हैं किसान भाई बहन?
6: सबसे जरूरी यही है कि इनका समेकित प्रबंधन करना चाहिए, मतलब कि आपको सारी जितने भी कारक हैं, जितने भी विधियां हैं नियंत्रण के जो भी हैं, उन सबको आपको साथ में लेकर के इसका नियंत्रण करना चाहिए। तो मैं सबसे पहले बात करना चाहूँगी व्यवहारिक विधि की। व्यवहारिक जो विधि है उसमें होता क्या है कि सबसे पहले किसान मित्रों को ध्यान रखना है कि प्रतिरोधी किस्मों का चयन करना चाहिए उनको। हाँ, उसके बाद एक और बात है, अधिक नाइट्रोजन खाद से उनको बचना चाहिए, वो ज़्यादा ना दें। फिर जो खेत होते हैं उसको साफ रखा करें। इसके अलावा संतुलित सिंचाई भी बहुत जरूरी होता है। उसके बाद मैं कहूँगी कि जो खरपतवार का जो नियंत्रण है वो समय समय पर किसान मित्रों को करना चाहिए। और इसके अलावा जो ठहराव होता है, जो जल का ठहराव, उसको नहीं करना चाहिए खेतों में, उस चीज़ से बचना चाहिए। ये सारे जो चीज़ें मैं बता रही हूँ वो है व्यवहारिक विधि। उसके बाद मैं बात करना चाहूँगी यांत्रिक रोकथाम की या फिर यांत्रिक नियंत्रण की। तो यांत्रिक नियंत्रण में क्या होता है, आप सबसे पहले तो पीला चिपचिपा फंदे का इसमें प्रयोग करना चाहिए। पीला चिपचिपा फंदा लाहू को, लाही जो लाहू या फिर माहू जो भी कहते हैं, चेपा भी इसको हम कहते हैं, तो उस सबको क्या करता है, आकर्षित करता है और उससे ये नष्ट हो जाते हैं। इसके अलावा नीला चिपचिपा फंदे का प्रयोग भी थ्रिप्स के लिए बहुत ही आवश्यक माना जाता है। हाँ, इसके अलावा प्रकाश प्रपंच जो है वो खेतों में जरूर से जरूर लगाएं। प्रकाश प्रपंच से जो छेदक होते हैं वो आकर्षित होते हैं। इसके बाद मैं फल मक्खी ट्रैप की बात कहना चाहूंगी, इसका उपयोग भी करना चाहिए। हाँ, एक और जरूरी आवश्यक बात कि इसमें जो ल्यूड होता है उसको 15 से 20 दिनों में बदल देना चाहिए। ये साड़ी के अलावा जो है, अगर शिशु जो होते हैं किसी छेदक के, तो उनको हाथों से पकड़ कर भी नष्ट किया जा सकता है। ये सारी विधियां यांत्रिक में आती है। उसके बाद एक है जैविक विधि, जो बहुत ही जरूरी विधि है। इसमें किसान मित्रों को क्या करना है, तो किसान मित्रों को इसमें जो भी मित्र कीट हैं उनका संरक्षण करना है, उनका संवर्धन करना है। जैसे आपको लेडी बर्ड विंग हो गया, उसके बाद ग्रीन लेस विंग है, ये सब जो है ना कीट, जैसे कि चेपा हो गया, सफ़ेद मक्खी हो गया, इन सबको ये सब खाते हैं, इसलिए ये हमारे मित्र कीट हैं। इसके अलावा परभक्षी हुए, परजीवी हुए, इन सब का संरक्षण बहुत ही जरूरी होता है। सबसे अंत में रासायनिक नियंत्रण की मैं बात करूंगी। जो रासायनिक नियंत्रण होता है वो सबसे अंत में ही इसका हम उपयोग करते हैं, लेकिन इसमें भी अगर हम जैविक कीटनाशक का प्रयोग करें तो वो बहुत ही अच्छा माना जाता है। जैविक कीटनाशक में जैसे कि निबोली सत हो गया 5%, या फिर नीम अर्क हो गया, इस सब का प्रयोग बहुत ही जरूरी होता है और ये बहुत ही अच्छा भी माना जाता है। इसके अलावा बीटी की जो कर्स्त की प्रजाति होती है वो 1 किलोग्राम 500 से 600 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर छिड़काव किया जा सकता है। फिर हम अगर बात करें इसके अलावा कुछ कीटनाशक की, तो इसमें सबसे पहले मैं इंडोक्सा कार्ब की बात करूंगी। इंडोक्सा कार्ब जो है 14.5% SC 0.5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में ये घोल कर दिया जा सकता है, या फिर स्पाइनोसैड होता है 45% SC, ये आपको 0.2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में ये भी आपको घोल कर छिड़काव किया जा सकता है। फिर अगर हम रस चूसक, ये भी जो मैंने बताया वो बताया छेदक के लिए, फिर अगर रस चूसक की बात करें तो उसमें ब्यूप्रोफेजिन एक नया है, वो बहुत ही अच्छा काम करता है। ब्यूप्रोफेजिन 25% EC 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में, या फिर एसिटामिप्रिड है। एसिटामिप्रिड जो है वो सफेद मक्खी के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। तो एसिटामिप्रिड 20% SP ये आपको 0.2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोलकर इनका छिड़काव करने से भी रस चूसक कीट जो है वो आपको कम मिलेंगे, मर जाएंगे, तो इससे आप अपने नुकसान से बच सकते हैं इस तरह से। और ये रासायनिक विधि का प्रयोग बिल्कुल अंत में ही करना चाहिए। इसके अलावा मैं 3 बातों का ध्यान रखने के लिए बोलना चाहूँगी अपने किसान बंधुओं को। पहला तो ये कि सुबह या शाम वो छिड़काव करें और उसके बाद खेतों की नियमित रूप से निगरानी करें। और तीसरी जो सबसे अंतिम बात है वो ये है कि तीसरी बात में आप सबसे अंत में आप जितने भी रासायनिक मैंने आपको विधि बताई है उनका प्रयोग करें, मतलब कीटनाशी सबसे अंत में, इसके अलावा जो भी विधि है वो आपको पहले करनी चाहिए।
4: तो किसान भाई बहन, उम्मीद है कि मैम के द्वारा बताए गए तरीकों को अपनाकर आप जायद सब्जियों की फसलों को सुरक्षित रख सकते हैं और अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं। मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
6: बहुत बहुत धन्यवाद उमा जी।
4: अभी के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, लेकिन जाने से पहले कुछ खास बात की, अपना और अपनी फसलों का रखें विशेष ख्याल और अपनी मिट्टी से करें ढेर सारा प्यार। नमस्कार।
5: उन्नत कृषि।

तैयार है आम के अद्भुत संसार से रूबरू होने के लिए। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर लेकर आ रहा है राष्ट्रीय आम समागम 2026, जिसका आयोजन 27 से 28 जून तक किया जाएगा। आइए और देखिए देश भर की सैकड़ों आम किस्मों की आकर्षक प्रदर्शनी, जहां स्वाद, सुगंध और रंगों का अनूठा संगम आपका स्वागत करेगा। इस विशेष आयोजन की थीम है स्वाद, संस्कृति और समृद्धि का संगम। आम समागम में किसानों, वैज्ञानिकों, उद्यमियों और आम प्रेमियों को एक ही मंच पर आने का अवसर मिलेगा। कार्यक्रम के दौरान आयोजित होगी राष्ट्रीय कार्यशाला, जिसका विषय है आधुनिक तकनीक से गुणवत्ता युक्त उत्पादन, भंडारण एवं प्रसंस्करण। देश के प्रतिष्ठित विशेषज्ञ आम उत्पादन, मूल्य संवर्धन और प्रसंस्करण की आधुनिक तकनीकों पर अपने अनुभव साझा करेंगे। इस अवसर पर आयोजित होगा किसान वैज्ञानिक सम्मान समारोह, जिसमें बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश के उत्कृष्ट आम उत्पादकों को बेस्ट मैंगो फार्मर अवार्ड प्रदान किया जाएगा। महिला आम उत्पादकों एवं मूल्य संवर्धन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिला उद्यमियों के लिए भी विशेष सम्मान और नगद पुरस्कार की व्यवस्था की गई है। और अब आपके लिए एक सुनहरा अवसर, यदि आपके बाग में उत्कृष्ट गुणवत्ता के आम हैं या आपके पास किसी विशेष किस्म के आम उपलब्ध हैं, आप भी आम प्रदर्शनी में अपनी आम की किस्मों को प्रदर्शित कर सकते हैं। आपकी प्रविष्टियों का मूल्यांकन विशेषज्ञों द्वारा किया जाएगा और चयनित प्रतिभागियों को आकर्षक पुरस्कार एवं नगद राशि से सम्मानित किया जाएगा। और हाँ, आम प्रेमियों के लिए होगा एक विशेष आकर्षण, मैंगो ईटिंग प्रतियोगिता। इस रोमांचक प्रतियोगिता के विजेताओं को भी आकर्षक नगद पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। तो देर किस बात की, अपने श्रेष्ठ आमों के साथ आइए, प्रदर्शनी में भाग लीजिए, विशेषज्ञों से सीखिए, नई तकनीकों को जानिए और आकर्षक पुरस्कार जीतने का अवसर पाइए। 27 से 28 जून राष्ट्रीय आम समागम 2026 बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है।

0: पैर पिट गया। बिल देना। इसको आउटसाइड द ऑफ टाइम डालना चाहिए था, इसकी यही प्रॉब्लम है।
1: कब से?
0: अरे जब से क्रिकेट खेल रहा है तभी से।
1: अरे भाई साहब क्रिकेट की नहीं, हम आपकी खांसी की बात कर रहे हैं। बुढ़बा
0: खांसी?
1: हाँ।
0: इसको तो एक आध महीना हो गया,
1: खुद की खांसी को एक आध महीने हो गए हैं और यहाँ क्रिकेट पर अपनी ही गुगली फेंक रहे हैं आप। चलिए चलिए चलिए
0: डॉक्टर, खांसी तो है।
1: देखिए भाई साहब इसे हल्का मत लीजिए, 2 हफ्ते से ज्यादा अगर आपको खांसी रहे तो टीबी हो सकता है।
0: टीबी?
1: हाँ। तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए।
0: ठीक है।
1: टीबी किसी को भी हो सकता है, अगर हो गया तो बिना भूले पूरा कोर्स करिए और फिट हो जाइए, नहीं किया तो इसका इलाज बहुत मुश्किल है। समझ गए भाई साहब आप? आइए। 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए। टीबी हारेगा देश जीतेगा।
2: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
3: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
2: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
3: आपकी सेहत की बातें,
2: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
3: युवाओं के रोजगार करियर की बातें,
2: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
3: वो कहाँ पर?
2: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
3: FM ग्रीन यानी हरियाली से खुशहाली तक।
2: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 24 से 28 जून के दौरान भागलपुर, बांका, मुंगेर, जमुई इन जिलों में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ हल्की वर्षा होने की संभावना है। दक्षिण बिहार के अन्य जिलों में 24 से 25 जून के दौरान लू चलने की संभावना है। इसके बाद इन जिलों के एक दो स्थानों पर बादल गरजने के साथ हल्की वर्षा की संभावना है। अधिकतम तापमान 37 से 39 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 26 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 60 से 70 प्रतिशत और दोपहर में 25 से 30 प्रतिशत रहने की संभावना है। अनुमान है कि 24 से 28 जून के दौरान 5 से 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दक्षिण पूर्वी हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए, जो किसान भाई बहन धान की खेती करना चाहते हैं उन्हें बता दे, वर्तमान में मानसून की कमजोर स्थिति को देखते हुए किसान भाई बहनों को ये सलाह दी जाती है कि ऊंची भूमि में धान की खेती ना करें। जिन किसानों के पास सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है वे मध्यम अवधि वाले धान की किस्मों का बिचड़ा गिराएं और बीज स्थली में नमी बनाए रखें, इस बात का विशेष ध्यान रखें। बीज स्थली यानी कि नर्सरी में नमी बनाए रखने के लिए जरूरत के हिसाब से जीवन रक्षक सिंचाई जरूर करें और खास तौर से ऊंची भूमि में धान के स्थान पर वैकल्पिक फसलों की खेती पर विचार करना अधिक उपयुक्त होगा। जो मक्का की खेती करना चाहते हैं उन्हें बता दे, खरीफ मक्का की बुआई तभी करें जब आसमान साफ हो और खेत की जुताई में 10 से 15 टन गोबर की सड़ी खाद प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें और ध्यान दें कि बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 30 किलोग्राम नेत्रजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटाश डालना जरूरी होता है। किसान भाई बहनों आपको बता दें, अनुशंसित मक्का की किस्में हैं सुवान, देवकी, शक्तिमान 1, शक्तिमान 2, राजेंद्र शंकर, मक्का 3, गंगा 11। जो मूंग की खेती करते हैं उन्हें बता दें, मूंग की तैयार फलियों की तुड़ाई कर ले और हरी खाद के लिए उसके पौधों को मिट्टी पलटने वाले हल से जमीन में गाड़ दे, यह आपके खेत और आपके खेत की मिट्टी के लिए फायदेमंद होता है। जिनके खेत में सब्जियां लगी हैं उन्हें बता दें, भिंडी, कद्दू, खीरा, नेनुआ और लौकी की फसलों में निराई गुड़ाई जरूर करें, साथ ही खरपतवार नियंत्रित करना भी जरूरी होता है। आपको बता दें कि पत्ती खाने वाली सुंडियों और फल छेदक कीटों की नियमित निगरानी करते रहें और अगर इन कीटों का प्रकोप दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में डाइमेथोएट 30 इसी दवा की 1 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान दें, किसी भी प्रकार का छिड़काव तभी करें जब आसमान साफ हो। किसान भाई बहन आपको बता दें कि खरीफ प्याज की खेती के लिए नर्सरी यानी कि बीज स्थली की तैयारी तभी करें जब आसमान साफ हो और स्वस्थ पौध के लिए नर्सरी में गोबर की खाद जरूर डालें। अच्छे और स्वस्थ फसल के लिए प्याज की बीज की व्यवस्था प्रमाणित स्रोत से ही करें और बीज गिराने के पहले बीजोपचार करना बहुत जरूरी होता है। बीजोपचार करने से पौधे स्वस्थ और फसल अच्छी होती है। खरीफ प्याज के लिए बीज की दर 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, लीची की फल तोड़ाई के बाद बगीचों में आवश्यक छटाई जरूर कर ले, जिससे पेड़ों के भीतर पर्याप्त धूप और हवा का संचार हो सके। साथ ही आपको बता दें कि बगीचे में गिरे हुए पत्तों, सूखी शाखाओं और अन्य पौध अवशेषों को इकट्ठा कर हटा दे, इससे कीट और रोगों का प्रकोप कम होता है और पेड़ों की स्वस्थ वृद्धि और विकास को बढ़ावा मिलता है। तो ध्यान दे कि बगीचे में गिरे हुए पत्तों, सूखी शाखाओं और ऐसी कोई भी अन्य जो पेड़ के अवशेष हो उन्हें इकट्ठा करके हटा दे। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दे, दुधारू पशुओं को गर्मी के प्रभाव से बचाने के लिए छायादार और हवादार स्थानों में रखें और उन्हें पर्याप्त मात्रा में साफ और ताजा पीने का पानी उपलब्ध कराएं। पशुपालक भाई बहन ध्यान दे, गला घोटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए टीकाकरण कराना बहुत जरूरी होता है, इसलिए सभी दुधारू पशुओं में टीकाकरण जरूर कराएं। सूचना समाप्त हुई। ऐसे ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

आप हर समय थकान महसूस करते हैं, छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है, ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है, बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर आप सबका स्वागत करता है स्वाद संस्कृति और समृद्धि के संगम राष्ट्रीय आम समागम सह कार्यशाला में। तारीख याद रखें 27 से 28 जून 2026।

0: क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खान पान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।
1: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM।

0: हो जाए सब दंग।
1: CIET प्रस्तुत करता है
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
1: आप सभी श्रोताओं को आपके साथी अजीत का नमस्कार, जय जोहार, जय हिंद। श्रोताओ आइए सबसे पहले सुनते हैं आज का सुविचार जो हमें भेजा है जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जयदास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतीन बाई मानिकपुरी जी ने। लिखते हैं, शांत रहना कमजोरी नहीं, ये समझदारी की निशानी है, क्योंकि हर जवाब शब्दों से ही नहीं लेकिन व्यवहार से भी दिया जाता है। इतने सुंदर विचार के लिए आप सबको उमंग कार्यक्रम की ओर से हमारा आभार। और आइए सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है मगरपारा बिलासपुर से वसीम जाटव, अकरम जाटव, आफताब जाटव, महताब जाटव, मिराज जाटव और अल्ताफ जाटव। भटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, पंकज, आयुषी और मीहू। जेल रोड कानपुर से सरफुद्दीन फातिमा थापा, वसीम अकरम बेलदार और डब्ल्यू सोनम कुटरिया। भदोही उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार विद्यार्थी और उनकी छोटी बहन कोमल। तो श्रोताओ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। जैसा कि हम हर बार कहते हैं इस बार भी कहेंगे कि जुड़े रहिए आपके प्रिय कार्यक्रम उमंग से। और आइए अब चलते हैं आज की श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी में। श्रोताओ जहां तक गुफाओं की बात है, लगभग सभी अजंता और एलोरा की गुफाओं से परिचित हैं, लेकिन उमंग कार्यक्रम में हमारा उद्देश्य है उन जानकारियों को उपलब्ध कराना जो लोक संज्ञान में कम है लेकिन पुरातत्व और इतिहास की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। जी तो श्रोताओ कल हमने बात की थी भीम बैठका की गुफाओं के बारे में, आज हम बात करेंगे कुटुम्बसर की गुफाओं के बारे में। कुटुम्बसर की गुफाओं को भारत की सबसे लंबी प्राकृतिक गुफाओं में गिना जाता है। तो आइए जानते हैं कि ये गुफाएं कहाँ स्थित हैं। श्रोताओ ये गुफाएं स्थित हैं छत्तीसगढ़ राज्य के कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में, जगदलपुर से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर। ये गुफाएं भूमि से लगभग 35 से 40 मीटर नीचे हैं। ये अत्यंत प्राचीन गुफाएं हैं, लेकिन श्रोताओ जब भी हम ऐसे स्थानों की बात करते हैं तो ये जिज्ञासा जरूर मन में आती है कि इनकी खोज कैसे हुई। तो आपको बता दें कि कुटुम्बसर गुफा का जनजातीय नाम गोपनसर था। सन 1951 की बात है, कुछ स्थानीय चरवाहे एक साही का पीछा कर रहे थे। पीछा करते करते वे एक ऐसी जगह पर पहुंचे जहां ढेर सारी झाड़ियां थीं, पत्थर भी थे। जब उन्होंने झाड़ियों को थोड़ा हटाया तो क्या देखते हैं कि वहां एक बहुत बड़ी गुफा का प्रवेश द्वार है। जी चरवाहे उस गुफा की बनावट देखकर हैरान रह गए क्योंकि वहां चट्टानों के आकार विचित्र थे। वे अद्भुत आकार के थे, जैसे किसी ने उन्हें तराश कर बनाया हो। तो आइए जानते हैं कि उन पत्थरों को तराशने वाला कौन था। श्रोताओ यही तो खास और बड़ी अनोखी बात है कुटुम्बसर की गुफाओं के बारे में। जब विशेषज्ञ यहाँ पर आए तो उन्होंने पता लगाया कि चट्टानों को तराशने वाली प्रकृति ही थी। यहाँ पानी हमेशा टपकता रहता है, पानी के लाखों वर्षों से टपकते रहने के कारण इन चट्टानों को आकार मिला। यहाँ की चट्टाने चूना पत्थर से बनी है। श्रोताओ इन गुफाओं में कुछ आकृतियां तो ऐसी हैं जो किसी पशु, मुख्य रूप से हाथी, बाघ, विशाल मानव आकृति और शिवलिंग की तरह भी दिखाई देती हैं। जरा सोचिए श्रोताओ कैसे इन आकृतियों को प्रकृति ने लाखों वर्षों से पानी की बूंदे टपकाकर बनाया, अद्भुत है ना। जी किसी ने लिखा है कि यदि प्रकृति को शिल्पकार के रूप में देखना है तो कुटुम्बसर की गुफाओं में जरूर जाइए। इन गुफाओं की ऊपर भूमि में कई भूमिगत जल के झरने हैं जहां से निरंतर पानी की बूंदे गिरती रहती है। वैज्ञानिकों ने इन गुफाओं में अनेक दुर्लभ जीवों के जीवाश्म भी ढूंढे हैं। एक बात और आपको बता दें श्रोताओं कि इन गुफाओं के अंदर हमेशा घुप अंधेरा रहता है। वहां जाने के लिए पर्यटक गाइड्स और शक्तिशाली बैटरियों वाले लैंप्स लेकर ही जाते हैं। अंदर पानी बहता रहता है, लेकिन एक बड़ी रोचक बात है इन गुफाओं की, आपको बताएं क्या है वो? वो ये कि यहाँ के पानी में जो मछलियां पाई जाती हैं वे अंधी होती हैं, देख नहीं पाती। यहाँ के अन्य जलज प्राणी भी देख नहीं सकते। लेकिन एक सवाल है श्रोताओ कि भला ऐसा क्यों है, ना ये बड़ी अजीब बात। जी हाँ श्रोताओ, वैज्ञानिकों के अनुसार यहाँ हमेशा अंधकार रहता है। इससे संभवतः मछलियों और जलज जीवों की आंखें तो हैं लेकिन उनमें देखने की क्षमता का विकास नहीं हुआ, या फिर धीरे धीरे देखने की क्षमता समाप्त हो गई। एक सिद्धांत ये भी है कि पीढ़ी दर पीढ़ी अंधकार में रहने के कारण उनकी आंखें पूर्ण विकसित नहीं हुई, लेकिन दूसरी इंद्रियां अधिक विकसित हो गईं। मछलियाँ पानी में कंपन, स्पर्श और रासायनिक संकेतों जैसे गंध इत्यादि के माध्यम से रास्ता और भोजन तुरंत पहचान लेती हैं। इसलिए श्रोताओं, कुटुंब सर की मछलियों को दुनिया भर में ब्लाइंड केव फिशेस के नाम से भी जाना जाता है। और हाँ, इन गुफाओं की एक और बड़ी खास बात है, यहाँ के कुछ भागों में यदि फुसफुसा करके भी कुछ कहा जाए तो बड़ी दूर तक ये आवाज सुनाई पड़ती है। श्रोताओं, यहाँ पर कार्यकर्ता इको या गूंज का सिद्धांत। श्रोताओं, ये कहा जा सकता है कि ये गुफाएं वैज्ञानिकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ के जंतु विकासवाद और भूविज्ञान के अध्ययन में महत्वपूर्ण है। तो श्रोताओं, ये थी जानकारी भारत की एक और रहस्यपूर्ण और अनोखी गुफा कुटुंब सर के बारे में। अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। हमारा आज का प्रश्न है, कुटुंब सर की गुफाओं में फुसफुसा कर बोलने पर भी आवाजें साफ साफ क्यों सुनाई देती हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए। कुटुंब सर की गुफाओं में फुसफुसा कर बोलने पर भी आवाजें साफ साफ क्यों सुनाई देती हैं? आप हमें हमारे IVRS नंबर 8804405559 पर या ईमेल पर यानी audio@ciet.nic.in पर इस प्रश्न का उत्तर भेज सकते हैं। और हाँ, एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं। और आइए अब सुनते हैं आज के हमारे ज्ञान और मनोरंजन से भरपूर शैक्षिक कार्यक्रम। तो सबसे पहले सुनते हैं कार्यक्रम लीव्स ऑन द ट्री आर फॉलिंग। श्रोताओं, अंग्रेजी का ये सुंदर गीत पतझड़ और वसंत के मौसमों के बीच की प्रकृति की सुंदरता का वर्णन करता है और विशेषकर संदेश देता है कि हमें प्रकृति का अवलोकन करके उनके सौंदर्य की प्रशंसा करनी चाहिए। ऐसा करके हम प्रकृति से बहुत कुछ सीख सकते हैं। द लीव्स ऑन द ट्रीज।
3: Children, have you ever seen the leaves growing in the tree? The new tender leaves spurting out from the branches? Like the flowers blossoming? Yes, we want to see them as the flowers blossom and leaves grow. But we never see them growing closely. Is a song which makes you feel that you notice the growing of leaves and blossoming of flowers. Come on, let's sing the song to know and notice. But before we sing it, let's recite the song. Repeat after me, all right?
4: Yes!
3: The leaves on the trees are turning green. Turning green, turning green.
4: The leaves on the trees are turning green, turning green, turning green.
3: The leaves on the trees are turning green, grow, grow, grow.
4: The leaves on the trees are turning green, grow, grow, grow.
3: Very nice. The flowers on the trees are beautiful, beautiful, beautiful.
4: The flowers on the trees are beautiful, beautiful, beautiful.
3: The flowers on the trees are beautiful, busy, busy bees.
4: The flowers on the trees are beautiful, busy, busy bees.
3: The leaves on the trees are falling down, falling down, falling down.
4: The leaves on the trees are falling down, falling down, falling down.
3: The leaves on the trees are falling down, yellow, red and brown.
4: The leaves on the trees are falling down, yellow, red and brown.
3: Yes, and now the leaves on the trees have fallen down, fallen down, fallen down.

0: को दिए गए योगदान के बारे में, विशेषकर तुलसी साहित्य में उनके द्वारा लिखे गए शोध की विस्तार से जानकारी देता है।
1: यूरोप के पश्चिमी भाग में एक छोटा लेकिन खूबसूरत देश है बेल्जियम। बेल्जियम में एक प्रांत है फ्लैंडर्स। इस प्रांत में एक छोटा सा शांत और सुंदर शहर है रम्स कपेला। 1 सितंबर 1909 को अडोल्फ और मारिया बुल्के के घर में एक बालक का जन्म हुआ। माता पिता ने बड़े प्रेम से उसका नाम रखा कामिल बुल्के।
2: कामिल का अर्थ होता है पूजा की वेदी और बुल्के का अर्थ है सुगंधित पुष्प। और सच में जैसा कि नाम था, उन्होंने अपने नाम को 100% चरितार्थ किया। बचपन से ही उनकी गहरी रुचि अध्यात्म और साहित्य में दिखाई देने लगी थी। माता पिता अक्सर उनके बारे में बातचीत किया करते।
3: मारिया, क्या तुम्हें नहीं लगता कि कामिल का अध्यात्म की ओर कुछ ज्यादा ही झुकाव है?
2: मुझे तो अब ये लगने लगा है कि यदि ऐसा ही रहा तो एक दिन वो चर्च में सन्यासी बन जाएगा।
3: मुझे भी ऐसा ही लगता है।
2: स्कूली शिक्षा के बाद उन्होंने ल्यूवेन विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरिंग में बीएससी डिग्री प्राप्त की और 1930 में स्पष्ट दिव्य अनुभूति प्राप्त होने पर शिक्षक और पुरोहित बनाने वाले जेसुइट समाज में शामिल हो गए।
1: 6 नवंबर 1935 को 17 दिनों की समुद्री यात्रा के बाद वो बंबई आ गए, जो अब मुंबई है। उन्होंने भारत को अपनी कर्मस्थली के रूप में चुना।
2: उन्होंने भारत भूमि को नमन किया। ये गोस्वामी तुलसीदास जी की भूमि है। दरअसल अपनी पढ़ने की आदत के कारण बेल्जियम में ही उन्होंने तुलसीदास जी की कई चौपाइयों का जर्मन अनुवाद पढ़ा था।
1: उनमें से एक चौपाई से वो बहुत प्रभावित हुए। चौपाई थी, धन्य जन्मु जग तीतल तासु, पितहि प्रमोद चरित सुनि जासु।
2: अर्थात उस बेटे का जीवन धन्य है जिसका यश और कीर्ति सुनकर पिता आनंदित होता है। इन पंक्तियों से वे इतने प्रभावित हुए कि कवि तुलसीदास जी के अनन्य भक्त बन गए। उन्होंने लिखा था,
4: विश्व साहित्य में माता और पुत्र के संबंधों की बहुत सारी चर्चा मिल जाएगी, लेकिन पिता पुत्र के संबंधों की ऐसी व्याख्या और ऐसा ऊंचा आदर्श मुझे सिर्फ भक्त कवि तुलसीदास जी की रामायण में ही मिला।
2: भारत आने पर उन्होंने जो देखा उसने उनके संपूर्ण जीवन के चिंतन और दर्शन को एक नया आयाम दे दिया। उन्होंने अपने भारत आगमन के समय को याद करते हुए अपनी एक पुस्तक एक ईसाई की आस्था राम कथा और हिंदी में लिखा है,
4: 1935 में मैं जब भारत पहुंचा, मुझे ये देखकर आश्चर्य बड़ा आश्चर्य हुआ कि रास्ते में सभी संकेत पट्टों पर सूचनाएं और स्थानों के नाम अंग्रेजी में थे। मैंने ये जाना कि अनेक शिक्षित लोग अपनी सांस्कृतिक परंपराओं से अनजान थे और इंग्लिश में बोलना गर्व की बात समझते थे। मैंने विचार किया कि मैं हिंदी भाषा में सिद्धता को प्राप्त करने का पूरा प्रयास करूंगा। हिंदी स्थानीय और जनजातीय भाषाओं में जो ज्ञान प्रणाली और सीखने की सामग्री अंतर्निहित है, उनके संरक्षण और पुनरुत्थान से ही हमारा विकास संभव है।
2: से वे दार्जिलिंग गए